0: सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के साथ ही इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि विपक्ष ने सीजेपी के विरोध प्रदर्शन को मुद्दा बना लिया है और सरकार पर जोरदार हमला बोला है। विपक्ष मांग कर रहा है कि सीजेपी की मांगों को सरकार माने।
1: सीजेपी के प्रदर्शन ने विपक्ष को सरकार के खिलाफ निशाना साधने का मौका दे दिया। आम आदमी पार्टी के दो नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह सीजेपी के समर्थन में जंतर मंतर पहुंचे, जहां पुलिस अफसर से उनकी तीखी बहस हुई।
2: आपको वहां हमने कहा था कि उस वाला वो रास्ता खुला, आप प्लीज उधर जा देंगे,
3: तो इधर से मान लो।
2: नहीं सुनो, एक मिनट सुनो ना, वो रास्ता है जंतर मंतर के लिए, यहाँ से रास्ता नहीं है सर,
3: ये रास्ता।
2: अरे जंतर मंतर बराबर आते हैं,
4: सारे लोग आ रहे हैं।
2: नहीं सुनिए मेरी बात।
1: समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव भी जंतर मंतर पहुंची, जहां पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया।
5: आज पूरे लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, इतिहास के लिए ये काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आप मीडिया रिपोर्टर्स हैं, पुलिस वाले भी उनकी आंखों में शर्मिंदगी दिख रही थी, लेकिन अपनी ड्यूटी के कारण अपने बैचेस निकाल के आए थे, गुंडे बने हुए थे कुछ पुलिस वाले। कुछ पुलिस वाले तो सहयोग कर रहे थे, लेकिन कुछ पुलिस वाले बिना वर्दी के आए थे और बच्चों को मारा है, बच्चों को करंट दिया है। और जहां रूल होता है कि आपको टांगों में मारा चाहिए, बच्चों की छातियों पे मारा है।
1: इधर संसद के गलियारे में भी सीजेपी के प्रदर्शन की गूंज सुनाई दे रही थी।
6: इससे बड़ा अहंकार क्या हो सकता है सरकार को? और जब बच्चे यहाँ आए हैं, छात्र, नौजवान, युवा जब यहाँ आए हैं और वो चाहते हैं सरकार कोई सुने, सरकार में अहंकार कितना कि सुनना भी नहीं चाहती है। सुनना तो दूर, अगर वो लोकसभा यहाँ तक आना चाहे अपनी बात कहने, तो लाठी और जो अन्याय कर सकते हैं, जो प्रताड़ना दे सकते हैं, वो दे रहे हैं।
7: बड़े बड़े इश्यूज हैं, आप डिस्कस करने के लिए राजी नहीं है, और बच्चों पे आप टियर गैस कर रहे हो और उनकी पिटाई कर रहे हो, किस लिए? बच्चे हमारे।
1: कांग्रेस पूछ रही है कि अपना हक मांगने वाले युवाओं पर लाठीचार्ज क्यों?
8: क्या मांग कर रहे हैं? अपने भविष्य की मांग कर रहे हैं, अपने भविष्य सुरक्षित रहे उनकी मांग कर रहे हैं, तो ऐसे नौबत में लाठी चार्ज की क्या जरूरत?
1: विपक्ष सरकार पर हमलावर है, लेकिन सरकार से जुड़े नेता अलग सुर साध रहे हैं।
9: अगर कुछ प्रॉब्लम है तो अच्छी तरह से डिस्कस करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ ऐसे प्रोटेस्ट करने से तो कुछ काम नहीं होगा।
10: अब जो जंतर मंतर पे हो रहा है वो विद्यार्थियों के नाम पे राजनीति हो रही है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रही है।
1: इन सब बयानों के बीच सीजेपी का प्रतिनिधि मंडल स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मिला। ये तभी की तस्वीरें हैं। सीजेपी ने अपने ज्ञापन में तीन मांगे रखी हैं। नंबर एक, सोनम वांगचुक को रिहा किया जाए। नंबर दो, धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाए या उनका इस्तीफा हो। नंबर तीन, नीट पेपर लीक की वजह से आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को 1-1 करोड़ का मुआवजा मिले।
11: सोनम वांगचुक जी को तुरंत रिलीज किया जाए, धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन तो अब आना ही पड़ेगा। और तीसरा, जो नीट के फैमिलीज है, जो बच्चे मर गए हैं 20 से ज्यादा, उन फैमिलीज को 1 करोड़ का मुआवजा मिले।
1: इस ज्ञापन के बाद सीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने भरोसा जताया है कि सरकार उनकी मांगों पर विचार करेगी। आज तक ब्यूरो।
0: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक वीडियो जारी करके मोदी सरकार पर हमला करते नजर आए। राहुल गांधी ने अपने संदेश में सरकार को युवा विरोधी बताया है।
12: दिस कंट्री हैज मेजॉरिटी ऑफ यंग पीपल। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द मोस्ट एंटी यूथ प्राइम मिनिस्टर इंडिया हैज एवर हैड। द बॉयज एंड गर्ल्स हु आर वॉकिंग द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली आर नॉट क्रिमिनल्स, दे आर डिमांडिंग देयर राइट्स। देयर राइट्स आर टू हैव एन एजुकेशन सिस्टम दैट रिस्पेक्ट्स देम, टू हैव एन एजुकेशन सिस्टम दैट इज फेयर, to have an education system that is working. There's absolutely nothing wrong in what they're doing and it's disgusting what the government is doing.
0: संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो गया, मगर सत्र की शुरुआत ही हंगामेदार रही। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने पेपर लीक का मुद्दा उठाया, उसके बाद हंगामा शुरू हुआ। सदन की कार्रवाई को कई बार स्थगित करना पड़ा।
13: समय देता हूं, सार्थक चर्चा हो, संवाद हो।
1: मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई और सदन में विपक्षी सांसद जमकर बरसे।
13: सदन नहीं चलाना चाहते।
1: लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया। बार बार कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। मुख्य मुद्दा था पेपर लीक का।
14: नीट एग्जामिनेशन अगर हुआ है और उसमें अगर ये धांधली हुई है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, क्रेडिबिलिटी किसकी है, किसको ये तैयारी करनी थी? आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं, दुनिया में आप कह रहे हैं अमृत काल है, लेकिन आपके मंत्री आप नहीं हटा पा रहे हैं।
1: लोकसभा के साथ राज्यसभा में नीट पेपर लीक का मुद्दा छाया रहा। राज्यसभा में भी जमकर हंगामा हुआ। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पेपर लीक का मुद्दा उठाया।
15: सर ये स्टूडेंट का मामला है, ये स्टूडेंट का मामला है जो लाखों बच्चों की जो भविष्य है उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, और उसके लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहाँ पर आए हैं।
1: नीट पेपर लीक का मुद्दा सिर्फ संसद के भीतर ही नहीं संसद के बाहर भी गूंजा। समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ तख्ती लेकर डिंपल यादव ने मार्च किया।
16: वी वांट कि छात्रों की बात सुनी जाए, क्योंकि अब पानी जो है सर से ऊपर से निकल चुका है। देश के लिए जहाँ किसान, चाहे हमारा एनवायरनमेंट हो, चाहे हमारा युवा हो, सभी परेशान हैं, और ये सरकार कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है, कोई भी रिफॉर्म्स लाने को तैयार नहीं है।
1: इन तमाम हंगामों के बीच कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक के पास होने के बाद देश की सर्वोच्च अदालत में जजों की संख्या बढ़ जाएगी। इस बिल का मकसद सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या एक्ट 1956 में और संशोधन करना है। प्रस्तावित कानून का मकसद केंद्र द्वारा जारी उस अध्यादेश की जगह लेना है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की गई थी। आज तक ब्यूरो।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन के बाहर अपने संबोधन में कहा कि यह सत्र काफी ऐतिहासिक है। इस सत्र में सरकार कई बिल लाने वाली है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों के सकारात्मक रवैये अपनाने और सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने की भी उनसे अपील की। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि 28 साल के नौजवानों ने अंतरिक्ष में देश का झंडा गाड़ दिया है, मैं 56 साल के युवा की बात नहीं कर रहा।
17: जहां तथ्य होते हैं, जहां तर्क होते हैं, वहां तूफान के लिए जगह नहीं होती है। अगर तर्क मजबूत है, तथ्य मजबूत है, तो शांत चित्त से भी अपनी आवाज को बुलंद बनाया जा सकता है। मैं आशा करता हूं तर्क और तथ्य के साथ सदन की चर्चा को समृद्ध किया जाए, हर आवाज को अवसर मिले, हर विचार को सम्मान मिले, ये संसद की हमारी भूमिका है।
0: बिहार विधानसभा में भी मॉनसून सत्र की शुरुआत हो गई है, मगर सदन शुरू होता है इससे पहले ही विपक्ष ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। विपक्षी विधायकों ने विधानमंडल के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। विपक्ष यहां शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।
1: हाथों में तख्तियां और जुबान पर तेवर, बिहार में विधानसभा में मॉनसून सत्र की शुरुआत का पहला दिन हंगामा खेज था। विपक्ष के विधायक तख्तियां लेकर पहुंचे थे, नीट पेपर लीक का मुद्दा यहां भी उछाला गया। विपक्ष के विधायकों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा।
10: विधानमंडल का मुख्य गेट है और इसके ठीक बाहर ही आरजेडी, माले, तमाम विपक्षी दलों के जो नेता हैं, वो विधायक हैं, वो इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं और हाथों में स्लोगन्स है, बैनर है, पोस्टर है। आरजेडी के विधायक है रणविजय साहू जी। रणविजय जी, आज पहले ही दिन सदन की कार्यवाही शुरू होने के पहले आप लोग तो आक्रामक तेवर,
18: ये सड़क पर और सदन के अंदर भी सरकार के आंख खोलने का काम करेंगे। आज पूरे देश भर में छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ है, निज छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ है, पेपर लीक हुआ है, लेकिन सरकार चुप है, मोदी सरकार खामोश है और केंद्रीय मंत्री को बर्खास्त नहीं कर रहे हैं। जब तक बर्खास्त नहीं करेंगे तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
1: विपक्ष आक्रामक था। बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री ने भी धर्मेंद्र प्रधान पर जोरदार निशाना साधा। जंतर मंतर वाली गूंज यहां भी सुनाई दी।
19: आप भी बिहार के शिक्षा मंत्री रहे चंद्रशेखर जी, केवल नीट का सवाल ही है या और भी मुद्दों पे घेरेंगे सपा?
20: ये भाजपा नीति नफरती सरकार न सिर्फ बेरोजगारों के लिए कब्र खोद रही है, संपूर्ण देश की मिल्कियत को चंद विश्वसनीय विश्वस्त उद्योगपतियों के हाथ में बेच रही है, भारत के भविष्य के लिए खतरा है। इसीलिए ऐसे निकम्मी सरकार को हटाने का संकल्प लेकर के हम लोग आंदोलन के समर्थन में हैं। जंतर मंतर पर जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या की गई है उसके खिलाफ हम लोग प्रतिकार स्वरूप यहाँ खड़े।

0: प्रतिपक्ष कहाँ है तो हम नहीं अभी बता सकते हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष और इस पार्टी के हम लोग सिपाही हैं, हर कदम हमारी पार्टी और हमारे नेता अन्याय जुल्म के खिलाफ है।
1: चलिए, तेजस्वी यादव नहीं है और विधायकों को मालूम भी नहीं है कि कब से विधानसभा की कार्यवाही में वो शामिल होंगे, और आईपी गुप्ता जो है वो भी पहुंच गए हैं, मतलब सदन के अंदर भी यही रुक रहेगा गुप्ता जी?
2: अब ये जो बेशरम सरकार है वो सारे दरवाजे बंद करके, चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो, शासन प्रशासन को, तो हमारे पास एक ही रास्ता है, सदन।
3: मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले एक और दिलचस्प तस्वीर सामने आई। देखिए, इस आदमी के कंधे पर आरजेडी का गमछा था, तभी यहाँ रामकृपाल यादव पहुँचे, इसके बाद तस्वीर बदल गई। इस आदमी ने ये हरा गमछा फेंक दिया और इसकी जगह बीजेपी का गमछा पहन लिया। कार्यकर्ताओं ने आवाज लगाई कि अब ये बीजेपी में शामिल हो गया। बहरहाल, बिहार विधानसभा से जोरदार हंगामे के साथ सत्र शुरू तो हो गया, लेकिन सत्र क्या सुचारू रूप से चल पाएगा, ये सवाल बना हुआ है। शशि भूषण सिंह, पटना आज तक।
4: मध्य प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। रविवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यूसीसी विधेयक 2026 के ड्राफ्ट को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई। सोमवार को इसे विधानसभा में पेश कर दिया गया। हालांकि इसके विरोध में कांग्रेस विधायक काले कपड़े पहनकर सदन में पहुंचे और आरोप लगाया कि सरकार ने चोरी से बिल पेश किया है।
5: इसके लिए संसद है, आप तर्क से चर्चा करें, नारेबाजी से संबंधी उल्लेख के।
6: राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी पर ऐसी सियासत जोरी है कि एक तरफ जांच एजेंसियां चोरों का पूरा हिसाब पता नहीं लगा पाई हैं, दूसरी तरफ दिल्ली में चढ़ावा चोरी पर सियासत जोरी जबरदस्त है।
7: ये सरकार नहीं, अहंकार है। बीजेपी के लोग आज से नहीं घोटाला कर रहे हैं, इनकी हमेशा ही कोशिश रहती है घोटाला करने।
8: राम मंदिर में चोरी क्यों हो रही है, तो क्या ये प्रधानमंत्री का जवाब है? शर्म आती है ऐसे प्रधानमंत्री।
9: लूट मची है, चंदा चोरी,
10: उन्होंने रखवाली नहीं, चोरी नहीं है, डकैती।
6: अयोध्या में हुई चढ़ावा चोरी पर इस सियासी शोर के बीच जांच एजेंसियां तमाम खुलासे कर रही हैं और ये खुलासे खुद आरोपियों से पूछताछ के बाद हुए हैं। एक दिन पहले करीब 40 घंटे तक पुलिस रिमांड में रहे टिन्नू यादव और उसके भतीजे मनीष यादव से हुई पूछताछ में पुलिस को बड़े राज की बातें पता चली हैं।
11: चढ़ावा चोरी के पैसे से टिन्नू ने सूत्रों के मुताबिक कुछ संपत्तियां भी अर्जित की थी, जिसके दस्तावेज पुलिस को मिल गए हैं।
6: टिन्नू यादव से 39 घंटे की पूछताछ में ही पता चला है कि अप्रैल 2026 में टिन्नू यादव ने सिफारिश कर अपने भतीजे मनीष यादव को नौकरी दिलवाई थी, जिसके बाद 15 अप्रैल 2026 से मनीष यादव को चढ़ावे की गिनती के काम में लगाया गया था। महीने भर के अंदर मई के दूसरे हफ्ते में मनीष यादव ने अविनाश शुक्ला के साथ मिलकर पहली बार चोरी की। उससे पहले मनीष यादव अनुकल्प, लवकुश और अविनाश को चोरी में मदद कर रहा था। ये भी पता चला है कि नाइट शिफ्ट के दौरान मनीष यादव को चोरी की रकम के साथ बाइक पर बैठाकर टिन्नू यादव ही बिना चेकिंग मंदिर से बाहर ले जाया करता था। दोनों आरोपियों की निशानदेही पर बुलेट गाड़ी और एक कार पुलिस ने बरामद की है।
11: पुलिस ने टिन्नू यादव की पत्नी के नाम से पंजीकृत फर्म का रिकॉर्ड भी तलब किया है। इसके लिए पुलिस ने स्टेट जीएसटी ऑफिसर्स की सहायता ली है।
6: इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट में आज एसआईटी ने सीलबंद स्टेटस रिपोर्ट सौंप दी है। इस मामले में अब अगली सुनवाई अगले हफ्ते होगी। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव और मनीष शुक्ला के साथ आज तक ब्यूरो।
4: अयोध्या का चढ़ावा चोरी मामला दिल्ली में संसद तक गूंज रहा है। दूसरी तरफ जांच एजेंसियां लगातार चोरी से अर्जित संपत्तियों को लेकर खुलासे कर रही हैं। एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में क्या स्टेटस रिपोर्ट सौंपी है, उसका पूरा खुलासा भी हो नहीं पाया, लेकिन अब चोरी कांड में सूत्रों के हवाले से आरोपी टिन्नू यादव को लेकर तमाम खुलासे जरूर हो रहे हैं।
5: इसके लिए संसद है, आप तर्क से चर्चा करें, नारेबाजी संबंधी उल्लेख।
6: राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी पर ऐसी सियासत जोरी है कि एक तरफ जांच एजेंसियां चोरों का पूरा हिसाब पता नहीं लगा पाई हैं, दूसरी तरफ दिल्ली में चढ़ावा चोरी पर सियासत जोरी जबरदस्त है।
7: ये सरकार नहीं, अहंकार है। बीजेपी के लोग आज से नहीं घोटाला कर रहे हैं, इनकी हमेशा ही कोशिश रहती है घोटाला करने।
8: राम मंदिर में चोरी क्यों हो रही है, तो क्या ये प्रधानमंत्री का जवाब है? शर्म आती है ऐसे प्रधानमंत्री।
9: लूट मची है, चंदा चोरी।
10: उन्होंने रखो

0: वाली नहीं, चोरी नहीं है डकैती।
1: अयोध्या में हुई चढ़ावा चोरी पर इस सियासी शोर के बीच जांच एजेंसियां तमाम खुलासे कर रही हैं और ये खुलासे खुद आरोपियों से पूछताछ के बाद हुए हैं। एक दिन पहले करीब 40 घंटे तक पुलिस रिमांड में रहे टिन्नू यादव और उसके भतीजे मनीष यादव से हुई पूछताछ में पुलिस को बड़े राज की बातें पता चली हैं।
2: चढ़ावा चोरी के पैसे से टिन्नू ने सूत्रों के मुताबिक कुछ संपत्तियां भी अर्जित की थी जिसके दस्तावेज पुलिस को मिल गए हैं।
1: टिन्नू यादव से 39 घंटे की पूछताछ में ही पता चला है कि अप्रैल 2026 में टिन्नू यादव ने सिफारिश कर अपने भतीजे मनीष यादव को नौकरी दिलवाई थी, जिसके बाद 15 अप्रैल 2026 से मनीष यादव को चढ़ावे की गिनती के काम में लगाया गया था। महीने भर के अंदर मई के दूसरे हफ्ते में मनीष यादव ने अविनाश शुक्ला के साथ मिलकर पहली बार चोरी की। उससे पहले मनीष यादव अनुकल्प, लवकुश और अविनाश को चोरी में मदद कर रहा था। ये भी पता चला है कि नाइट शिफ्ट के दौरान मनीष यादव को चोरी की रकम के साथ बाइक पर बैठाकर टिन्नू यादव ही बिना चेकिंग मंदिर से बाहर ले जाया करता था। दोनों आरोपियों की निशानदेही पर बुलेट गाड़ी और एक कार पुलिस ने बरामद की है।
2: पुलिस ने टिन्नू यादव की पत्नी के नाम से पंजीकृत फर्म का रिकॉर्ड भी तलब किया है। इसके लिए पुलिस ने स्टेट GST ऑफिसर्स की सहायता ली है।
1: इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट में आज SIT ने सीलबंद स्टेटस रिपोर्ट सौंप दी है। इस मामले में अब अगली सुनवाई अगले हफ्ते होगी। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव और मनीष शुक्ला के साथ आज तक ब्यूरो।
3: पहाड़ों पर भयंकर बारिश हो रही है, नतीजा ये हुआ है कि पहाड़ टूट रहे हैं, लगातार भूस्खलन फ्लैश फ्लड हो रहा है, बादल फट रहे हैं, पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं, लोगों की जानमाल का भारी नुकसान लोगों को हो रहा है और सबसे ज्यादा बुरा हाल है जम्मू कश्मीर का।
4: बारिश कहर बरपा रही है, खास तौर पर जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में तो कोहराम मचा हुआ है। कहीं बादल फट रहा है, कहीं फ्लैश फ्लड आ रहा है, कहीं पहाड़ों से पत्थर गिर रहे हैं, कहीं भारी भूस्खलन हो रहा है, कहीं पूरा पहाड़ ही भरभरा कर नीचे गिर जा रहा है।
5: देखो भाई ये डंड रही है।
4: पूरे जम्मू कश्मीर में 12 लोगों की मौत हुई है, बहुत से लोग लापता हैं। सबसे ज्यादा बुरा हाल राजौरी, पुंछ, डोडा और किश्तवाड़ में है। एहतियातन वैष्णो देवी और अमरनाथ यात्रा फिलहाल रोक दी गई है। पुंछ में भारी बारिश के बाद आए फ्लैश फ्लड में भाटा दूरिया टनल उजड़ गई। राजौरी में खेवड़ा नाला ओवरफ्लो हो गया जिसका पानी कई कॉलोनियों में घुस गया। फ्लैश फ्लड में कई गाड़ियां बह गई और कई घरों को नुकसान भी पहुंचा है। आर्मी, SDRF और पुलिस रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं और चिंता की बात यह है कि अगले 24 से 36 घंटों तक अभी और ज्यादा बारिश का अनुमान है। ये पुंछ की तस्वीरें हैं जहां एक प्रोजेक्ट के ऊपर पूरा का पूरा पहाड़ ही गिर गया। नीचे मशीनें दिख रही हैं, पूरा सुरंग प्रोजेक्ट है लेकिन ऊपर से भूस्खलन हो गया। भारी बारिश से मिट्टी कच्ची हो गई और पूरा पहाड़ ही नीचे गिर गया। अचानक से भारी बारिश के बाद आए फ्लैश फ्लड का पानी रेजिडेंशियल इलाकों में घुस गया है। इसी तरह से ये तबाही भी पुंछ में ही हुई है। यहाँ पुंछ नेशनल हाईवे 144 को बनाने का काम चल रहा है। ये कंपनी यहाँ पर 35 किलोमीटर की सड़क बना रही थी लेकिन अचानक से रात में भारी बारिश के बाद बाढ़ आ गई। यहाँ काम कर रहे मजदूरों की जान किसी तरह से बच गई लेकिन उनकी मशीनें, बाकी सामान सब कुछ बह गया। अंदर सीमेंट का गोदाम था जिसमें 5000 से ज्यादा सीमेंट के बैग थे। इतना पानी आया कि सब कुछ खराब हो गया।
6: सर इसमें काफी करीब जो रात को पानी आए हैं, फ्लड आए हैं, उसके काफी हमारे मटेरियल नुकसान हुए हैं।
4: यहाँ SGI कंपनी पिछले 3 साल से पुंछ नेशनल हाईवे को बनाने का काम कर रही है। ये पुंछ का बफलियाज इलाका है। यहाँ भी भयंकर बारिश के बाद बादल फटा और फ्लैश फ्लड आ गया। पूरा रास्ता, स्कूल, सब जगह मलबा भर गया है। किश्तवाड़ में भी रैटल पावर प्रोजेक्ट साइट पर अचानक से फ्लैश फ्लड आ गया। ये पावर प्रोजेक्ट नदी के किनारे था, बगल में नदी बह रही है और इधर ये पावर प्लांट। तस्वीरों में दिख रहा है कि ऊपर पूरा पहाड़ है और उसके अंदर से पानी आ रहा है। पूरे प्रोजेक्ट पर खतरा मंडरा रहा है। आगे फ्लैश फ्लड का यही पानी रेजिडेंशियल इलाकों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। डोडा में रागी नाला के पास भूस्खलन की वजह से ऊपर से एक बस के ऊपर पत्थर गिरे जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। यहाँ राजौरी में नदी में आई बाढ़ की वजह से एक पुल भी टूटा है और बहुत सा नुकसान हुआ है। नदी लगातार उफान पर है, आज भी बारिश हुई है।
7: तस्वीरों में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से ये हिस्सा जो है पूरी तरह से इस ब्रिज का टूट चुका है। उफान पर होने के बाद जब इस ब्रिज के नजदीक पानी पहुंचता है तो इसका आधा हिस्सा जो है वो इस तरफ वाला वो बहा के साथ में ले जाता है।
4: ये भी राजौरी की तस्वीरें हैं जहां दो भैंसें इन लहरों के बीच में फंस गई हैं। भैंसों को रस्सियों के सहारे निकालने की कोशिश हो रही है। एक शख्स भी अपनी जान जोखिम में डालकर इन भैंसों को निकाल रहा है। बताया जा रहा है कि ये गुर्जर समुदाय के जानवर हैं। ये गांदेरबल का सफापुर इलाका है जहां फ्लैश फ्लड आया है। पानी की रफ्तार देखकर आप ये धोखा खा सकते हैं कि जैसे ये कोई नदी होगी, लेकिन ये मुख्य सड़क है जिस पर गाड़ियां भी चल रही हैं, लेकिन पूरी सड़क पर मटमैला पानी भरा हुआ है। श्रीनगर शहर में भी भारी बारिश हुई है, इतनी कि यहां के प्रसिद्ध लाल चौक एरिया में पानी जमा हो गया।
8: नदियां उफान पर हैं, यहां तक कि अमरनाथ यात्रा को आज दूसरे दिन भी फिलहाल स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि अमरनाथ गुफा के आसपास इलाकों में कल से ही तेज बारिशें हो रही है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि आने वाले दो दिन तक कश्मीर के अधिकतर इलाकों में इसी तरह तेज बारिशें होंगी।
4: भारी बारिश को देखते हुए माता वैष्णो देवी की यात्रा को भी स्थगित करना पड़ा है। अब जो श्रद्धालु यहां पहुंचे थे वो इस उम्मीद में हैं कि यात्रा फिर से शुरू होगी, लेकिन खराब मौसम को देखते हुए ये उम्मीद कम लगती है।
9: दो तीन दिन लगे खुलने में, अभी दर्शन करने में थोड़ा दिक्कत हो रही है।
4: उधर खराब मौसम की वजह से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा भी रोक दी गई है। लगातार बारिश की वजह से केदारनाथ यात्रा भी प्रभावित हो रही है। केदारनाथ हाईवे और केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर भी भूस्खलन हो रहा है। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए फिलहाल अग्रिम आदेशों तक केदारनाथ यात्रा को रोका गया है और यात्रियों से सुरक्षित स्थानों पर रुकने की अपील की गई है।
10: मौसम विभाग ने वर्षा की भारी चेतावनी जारी की गई थी, जिससे कि जनपद में रात भर रुक रुक करके बारिश हो रही है और केदारनाथ और बद्रीनाथ हाईवे पर जगह जगह लैंडस्लाइड होने की स्थिति बनी हुई है और यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए और यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका जा रहा है।
4: रुद्रप्रयाग में बाबा केदार के रास्ते पर अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के अलावा अन्य सहायक नदियां भी उफान पर बह रही हैं। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी विकराल रूप धारण करते हुए वार्निंग लेवल के पास बह रही है। नदी किनारे के सभी घाट डूब गए हैं। अलकनंदा नदी से 30 मीटर दूर भगवान शिव की विशाल मूर्ति भी जलमग्न हो चुकी है।
11: पैदल यात्रा मार्ग सहित केदारनाथ हाईवे पर जगह जगह भूस्खलन हो रहा है और यात्रियों को भारी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए आज के लिए केदारनाथ यात्रा को फिलहाल अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया गया है।
4: भारी बारिश की वजह से उत्तराखंड में एक नेशनल हाईवे समेत 60 से ज्यादा सड़कें बंद हैं, जिन्हें खोलने का काम चल रहा है। सोमवार को बारिश की वजह से उत्तराखंड के सभी स्कूलों की छुट्टी घोषित करनी पड़ी। बहुत से पहाड़ी जिलों के लिए मौसम विभाग की तरफ से बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज तक ब्यूरो।
3: इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

संसद के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन, पेपर लीक और चढ़ावा चोरी को लेकर के फिर गतिरोध के आसार। पहले दिन विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरा। मानसून सत्र के बीच एनडीए की संसदीय दल की बैठक आज। प्रधानमंत्री मोदी समेत सभी सांसद होंगे शामिल। नए सांसदों का किया जाएगा औपचारिक स्वागत। सीजेपी प्रदर्शनकारियों ने की जेपी नड्डा से मुलाकात। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ रखी तीन मांगे। कहा सरकार हमारी मांगों पर करेगी विचार। केरल हाउस का करीब प्रदर्शन शिफ्ट हो गया। सिक्किम के निर्माणाधीन टनल पर लैंडस्लाइड। एंट्री गेट बंद होने से अंदर फंसे 27 मजदूर। गैस की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में आ रही है परेशानी। लगातार 10 दिन से अमेरिका के ईरान पर ताबड़तोड़ हमले। बंदर अब्बास, चाबहार, इस्फहान में धमाके। ईरान ने भी जॉर्डन के अमेरिकी बेसों को बनाया निशाना।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा। सुबह के 6 बज चुके हैं और सुबह के सबसे पहले बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे 6 बजे 6 ताजा खबरों के साथ। सबसे पहले आपको बताएंगे लगातार 10वीं रात अमेरिका के हमले से ईरान के कौन कौन से इलाके दहले हैं। दूसरी बड़ी खबर होगी कि अमेरिकी बेशतों को निशाना बनाते हुए ईरान ने मिडिल ईस्ट में कहां कहां हमले किए, उसकी भी जानकारी हम देंगे। तीसरी बड़ी खबर यह कि मॉनसून सत्र का दूसरा दिन है जो आज भी हंगामेदार होने के आसार हैं, क्योंकि नीट पेपर लीक से लेकर चढ़ावा चोरी तक इन तमाम मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। चौथी खबर बताएंगे आज संसद में एनडीए का मंगल मिलन क्यों हो रहा है। बुलेटिन में पांचवी बड़ी खबर होगी कि सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर अब क्या अपडेट है, क्या प्रदर्शन खत्म हो गया है। और आखिरी में बताएंगे कि सिक्किम में कहां पर लैंडस्लाइड होने की वजह से 27 मजदूरों की जान पर बनाई है। तो सबसे पहले बात करेंगे और शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो आ रही है मिडिल ईस्ट से, जहां पर जंग के बाद ईरान पर अमेरिका ने लगातार 10वीं रात ताबड़तोड़ हमले किए हैं। अमेरिकी सेना ने ईरान के कई इलाकों और उनके आइलैंड को निशाना बनाया है। ईरानी मीडिया प्रेस टीवी के मुताबिक बंदर अब्बास, चाबहार, कोणार्क, सिरिक, शिराज, इस्फहान, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर धमाके सुने गए हैं। प्रेस टीवी का यह भी कहना है कि सेंट्रल ईरान के इस्फहान में 2 धमाके सुने गए। इसके अलावा खोमीन शहर में एक इंडस्ट्रियल यूनिट पर भी हमला हुआ है। तो अमेरिका लगातार 10 दिनों से ईरान पर बमबारी कर रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने यहां तक कहा कि अगर किसी भी एक अमेरिकी सैनिक की जान गई तो ईरान को उसकी कई गुना ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। और उसी के बाद अमेरिकी सेना को आदेश दिया गया, वॉर मिनिस्टर जो पीटर हेक्सेथ हैं उनको आदेश दिया गया कि ईरान पर कार्रवाई हो। एक तरफ आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि आखिर किन किन इलाकों पर बमबारी के बाद, दूसरी तरफ आपको ये जानकारी दें कि आखिर हमले कहां कहां किए गए। ये ईरान का पूरा नक्शा है। अब 10वां दिन, सोचिए 10 दिन से लगातार अमेरिका हमले कर रहा है कोणार्क और चाबहार। चाबहार सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पोर्ट और इसी के पास कोणार्क जहां पर उसकी मरीन और मरीन बेस जो था वो मौजूद था। इसी के अलावा ये सिरिक का इलाका आप देख रहे हैं, सिरिक और बंदर अब्बास और शिराज, ये तीनों एक साथ के किनारे। सिरिक जहां से हॉर्मुज की ज्यादातर गतिविधियों को ईरान नियंत्रित करता है और बंदर अब्बास ईरान का सबसे बड़ा पोर्ट है, न सिर्फ उसके ऊर्जा को लेकर के, उसकी सप्लाई को लेकर के, बल्कि उसके साथ साथ ही वो जहां पर उसका कोस्टल और नेवल फोर्स भी मौजूद है। इसी के साथ दूसरा हमला कहां हुआ है, बीच ईरान के इस्फहान में। इस्फहान में ही माना जाता है कि उसके पास अपने न्यूक्लियर जो ठिकाने हैं उससे जुड़ी उसकी यूनिट यहां पर मौजूद है। और खोमीन बिल्कुल उत्तर पश्चिम ईरान में, यहां पर यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये इलाके हैं जहां पर हमले हुए हैं। अब ओमान की खाड़ी के पास से यहां पर अमेरिकी सेना मौजूद है, अमेरिकी जो नेवी है वो इस इलाके में मौजूद है। और दूसरा जिन इलाकों पर वो निशाना बनाया जा रहा है वो है गल्फ ऑफ पर्शिया, जिसको फारस की खाड़ी कहते हैं। फारस की खाड़ी में उसके पास सबसे नजदीकी इलाका जो बिल्कुल दक्षिण में है वो है सिराज और सिरिक और बंदर अब्बास, जो कि सीधे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के मुहाने पर बैठा हुआ है। ये वो इलाके हैं जहां पर बीते 10 दिनों से लगातार अमेरिका टारगेट कर रहा है। तो बड़ी खबर एक और आपको बता दें, ईरान अमेरिका जंग को लेकर के एक और बड़ी खबर है कि ईरान ने एक बार फिर जॉर्डन पर हमला किया है। हमले के बाद जॉर्डन में सायरन बज रहे हैं। हमले को लेकर के जॉर्डन की सेना ने बयान भी जारी किया है और कहा है कि 3 ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया, उन्हें तबाह किया गया, अभी तक किसी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। 24 घंटे पहले जॉर्डन ने अपने एक महत्वपूर्ण पोर्ट और हवाई सेवाओं को, एयरपोर्ट को भी अलर्ट पर रखा था। अमेरिका ने जॉर्डन में अपने तमाम नागरिकों को भी कहा था कि वो हवाई अड्डे का इस्तेमाल ना करें, वो पोर्ट की तरफ ना जाएं, लेकिन जॉर्डन निशाना बना है। और ये जो वॉर 2.0 शुरू हुआ है इसमें ईरान का कहर सबसे ज्यादा अगर कहीं बरस रहा है तो वो है बहरीन और जॉर्डन। जॉर्डन जहां पर अमेरिकी एयरफोर्स का सबसे बड़ा फ्लीट है, उसके साथ साथ उसकी ड्रोन फ्लीट वहां पर मौजूद है। तो इसी के साथ जुड़ी हुई अगली बड़ी खबर यह है कि ईरान अमेरिका के बीच मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेसों को लेकर आईआरसीसी ने बड़ा दावा किया है। बहरीन और कुवैत में अमेरिकी ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। आईआरसीसी ने कहा है कि उसके 3 हमलों में बहरीन और कुवैत स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। एडना एजेंसी के मुताबिक आईआरसीसी के बयान में कहा गया है कि बहरीन के अल साखिर एयरपोर्ट पर अमेरिकी ड्रोन मरम्मत और रखरखाव शेड नष्ट कर दिए गए हैं। बहरीन के सलमान पोर्ट पर मौजूद अमेरिकी नौसेना की टास्क फोर्स 59 के जहाजों की तैयारी वाले शेड भी हमले में क्षतिग्रस्त हुए हैं। वहीं कुवैत के आरिफजान बेस पर अमेरिकी मरीन स्पेशल फोर्सेस के शेड को भी पूरी तरह नष्ट करने का दावा किया गया है। तो आईआरजीसी ने जो दावा किया कि आखिर कहां कहां नुकसान पहुंचा गया और अब तक क्या क्या हुआ, बड़े अपडेट हम आपको दे देते हैं। लगातार 10वां दिन जब ईरान पर अमेरिका ने हमले किए हैं, उसके महत्वपूर्ण इलाकों को निशाना बनाया। इसी के साथ ईरान के कई इलाकों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं जहां पर धमाकों की आवाज सुनाई दी है। बंदर अब्बास, चाबहार, कोणार्क, सिरिक में ये धमाके हुए हैं जो अमेरिका ने किए हैं, और इसी के साथ साथ सेंट्रल ईरान के इस्फहान में भी धमाकों की आवाज सुनाई दी है। इसी के साथ साथ ईरान ने जवाबी कार्यवाही करते हुए जॉर्डन में अमेरिकी बेस को निशाना बनाया है, मिसाइलों से निशाना बनाया है, और ऐसे में 3 ईरानी मिसाइलों को जॉर्डन ने इंटरसेप्ट करने का दावा किया है। और उसके बाद उसका इंपैक्ट कहां हुआ है, आईआरजीसी ने कहा है कि बहरीन और कुवैत में जहां पर भी अमेरिकी ठिकाने हैं उन पर हमला किया गया है। इस बीच ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिकी किसी एक सैनिक की मौत होती है तो ईरान का उसका कई गुना खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ लगातार 10वें दिन यह हमला ईरान पर होता हुआ, उधर ईरान की ओर से जवाबी कार्रवाई होती हुई। चलिए, युद्ध के बाद अब बात करेंगे दूसरी बड़ी खबर की, जो है संसद के मॉनसून सत्र की। सत्र के पहले दिन विपक्ष ने दोनों सदनों में हंगामा किया, इसके बाद दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। इतना ही नहीं, संसद के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी हंगामे के आसार हैं, क्योंकि विपक्षी दलों की ओर से नीट, पेपर लीक, राम मंदिर चढ़ावा, ये वो मुद्दे हैं जिसको लेकर के पहले दिन तो जबरदस्त हंगामा देखने को मिला, लेकिन लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही दोनों सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। अब 13 अगस्त तक चलने वाले मानसून सत्र के दौरान मोदी सरकार कई अहम बिल लाने की भी तैयारी में है।
1: समय देता हूं, सार्थक चर्चा हो, संवाद हो।
2: मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई और सदन में विपक्षी सांसद जमकर बरसे।
1: सदन नहीं चलाना चाहते।
2: लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया, बार बार कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। मुख्य मुद्दा था पेपर लीक का।
3: नीट एग्जामिनेशन अगर हुआ है और उसमें अगर ये धांधली हुई है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, क्रेडिबिलिटी किसकी है, किसको ये तैयारी करनी थी? आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं, दुनिया में आप कह रहे हैं अमृत काल है, लेकिन आपके मंत्री आप नहीं हटा पा रहे हैं।
2: लोकसभा के साथ राज्यसभा में नीट पेपर लीक का मुद्दा छाया रहा, राज्यसभा में भी जमकर हंगामा हुआ। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पेपर लीक का मुद्दा उठाया।
4: सर, ये स्टूडेंट का मामला है, ये स्टूडेंट का मामला है जो लाखों बच्चों की जो भविष्य है उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं, और उसके लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहां पर आए हैं।
2: नीट पेपर लीक का मुद्दा सिर्फ संसद के भीतर ही नहीं, संसद के बाहर भी गूंजा। समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ तख्ती लेकर डिंपल यादव ने मार्च किया।
5: वी वांट कि छात्रों की बात सुनी जाए, क्योंकि अब पानी जो है सर से ऊपर से निकल चुका है। देश के लिए जहाँ किसान, चाहे हमारा एनवायरनमेंट हो, चाहे हमारा युवा हो, सभी परेशान हैं, और ये सरकार कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है, कोई भी जॉब्स लाने को तैयार नहीं है।
2: इन तमाम हंगामों के बीच कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक के पास होने के बाद देश की सर्वोच्च अदालत में जजों की संख्या बढ़ जाएगी। इस बिल का मकसद सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या एक्ट 1956 में और संशोधन करना है। प्रस्तावित कानून का मकसद केंद्र द्वारा जारी उस अध्यादेश की जगह लेना है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की गई थी। आज तक ब्यूरो।
0: तो पहला दिन तो हंगामे की भेंट चढ़ गया। सत्र का पहला दिन था, विपक्ष ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरा, खासकर नीट मुद्दे को लेकर के इसी के साथ साथ लगातार सरकार को घेरा। अब आज दूसरा दिन है, दूसरे दिन क्या होगा? दूसरे दिन भी हंगामे के पूरे आसार हैं, क्योंकि विपक्ष धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के समर्थन में है। उसी के साथ साथ वो नीट के मुद्दे पर भी सरकार को घेर रहा है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी भी मुद्दा, और वो चाहता है कि इन पर सदन में चर्चा हो। इसी के साथ साथ बीते दिन जो पुलिस की कार्यवाही हुई है प्रदर्शनकारियों पर, उसको लेकर के भी। लेकिन सरकार इस बीच सदन में कई सारे बिल लाने की तैयारी में। कौन कौन से बिल आपको बता देते हैं। इनकम टैक्स संशोधन बिल, ये पहला बिल है जो सरकार इसी सदन के मॉनसून सत्र में लेकर के आना चाहती है। दूसरा है सुप्रीम कोर्ट संशोधन बिल, जिसमें जजों की संख्या सुप्रीम कोर्ट में बढ़ाया जाए, इसको भी संसद से मान्यता लेनी होगी। इसी के साथ जन्म और मृत्यु पंजीकरण बिल जो है ये भी सरकार इसी सत्र में लाने की तैयारी में। चौथा महत्वपूर्ण विधेयक है राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन बिल यानी वंदे मातरम को जनगणमन के बराबर का दर्जा देना। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन बिल ये भी एक कानून आने वाला है। इसी के साथ विदेशी अंशदान विनियम संशोधन FCRA अमेंडमेंट जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन फॉरेन डोनेशन होता है उसमें भी संशोधन किया जा रहा है। इसी के साथ विकसित भारत शिक्षा और ये वो महत्वपूर्ण अधिनियम है। लेकिन इसी के साथ एक और बड़े बता देते हैं एक और बड़ी खबर की मॉनसून सत्र के दूसरे दिन आज NDA की बड़ी बैठक होने वाली है। इस सत्र के बीच NDA के संसदीय दल की बैठक बुलाई गई है। सुबह करीब 9:30 बजे संसद परिसर में ये बैठक होगी। इस बैठक को मंगल मिलन नाम दिया गया है। जानकारी ये भी आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी समेत NDA के सभी सांसद इस बैठक में शामिल होंगे। इस मंगल मिलन में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू NDA सांसदों का स्वागत करेंगे। बैठक में हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर राज्यसभा पहुंचे नए सांसदों का भी स्वागत किया जाएगा। इनमें आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए राज्यसभा सांसद शामिल होंगे। हालांकि सूत्र ये भी कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ऑफ इंडिया NCPI के मंगलवार को होने वाले इस मंगल मिलन कार्यक्रम में शामिल होने की फिलहाल संभावना नहीं है। तो ये मंगल मिलन 9:30 बजे होगा। NDA के संसदीय की बैठक होगी और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित रहने वाले प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी जाएगी। तो NDA का मंगल मिलन होने वाला है। मॉनसून सत्र का दूसरा दिन है और NDA की बैठक होगी। जाहिर है अपने जो तमाम सारे मुद्दे उन पर तो चर्चा होगी, लेकिन संसदीय दल की बैठक क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है? दूसरा दिन है, जो नए सांसद चुन करके आए हैं और दूसरा जो दूसरी पार्टियों से आए हैं वो भी इसका हिस्सा होंगे। प्रधानमंत्री मोदी समेत सभी सांसद जब शामिल होंगे तो वहां पर बात भी करेंगे, संबोधित भी करेंगे। सांसदों को पीएम मोदी का संबोधन भी मिलेगा, इससे वो आगे की रणनीति बताएंगे। खासकर तब देखते हुए कि आने वाले 5 राज्यों के भी चुनाव है, वहां पर भी तैयारियों का जिक्र हो सकता है। नए सांसदों का स्वागत किया जाएगा अलग अलग पार्टियों से, जो सांसद खासकर आम आदमी पार्टी छोड़कर राघव चड्ढा स्वाति मालीवाल समेत वो सांसद जो बीजेपी का हिस्सा हो चुके हैं। इसी के साथ NCPI के बैठक में यानी TMC के जो सांसद थे जिन्होंने NCPI में शामिल हो ली थी वो शामिल होंगे कि नहीं, उस पर सस्पेंस बरकरार है। तो NDA की बड़ी बैठक होने वाली है। आगे की नीति रणनीति और सदन के बीच जो अभी हंगामा चल रहा है इन तमाम मुद्दों को लेकर के माना जा रहा है कि चर्चा भी हो सकती है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर एक और है। इधर संसद का मानसून सत्र चल रहा है और दूसरे दिन भी कॉकरोच जनता पार्टी का धरना प्रदर्शन जारी है। जंतर मंतर पर CJP ने फिर से प्रदर्शन शुरू कर दिया है। देर रात अभिजीत दीपके के साथ CJP समर्थक धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। इससे पहले कल संसद तक मार्च निकालने के दौरान कई बार प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई। पुलिस ने शाम जंतर मंतर को खाली करा दिया था, लेकिन दोबारा से CJP ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। वहीं कल CJP का प्रतिनिधिमंडल स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा से भी मिला था, मुलाकात भी हुई सरकार के साथ। उन्होंने अपना ज्ञापन भी दिया। ज्ञापन में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ CJP की ओर से 3 मांगे रखी गई। नड्डा ने प्रदर्शनकारियों से धरना खत्म करने की अपील भी की है और यह भी कहा है कि धरना प्रदर्शन खत्म हो, लोग घर जाएं, कानूनी व्यवस्था फिर से बहाल हो। तस्वीरें में हम आपको दिखा रहे हैं उस बैठक की जिसमें JP नड्डा ने सौरभ दास और CJP समर्थकों से मुलाकात की। आप बता देते हैं आपको कि आखिर बड़ी मांगे क्या है। ये वो तस्वीर है जब सौरभ दास और रांका, ये वो लोग जब JP नड्डा से मिलने गए, उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाए या इस्तीफा हो, इससे कम पे मंजूर कुछ भी नहीं है। सोनम वांगचुक को रिहा किया जाए, वांगचुक ने भी कल चिट्ठी लिखी थी, अगर मेरी तबीयत ठीक है, पैरामीटर्स नॉर्मल है तो उन्हें छोड़ दिया जाए। तो ये सबसे बड़ी मांगे हैं, ये वो चिट्ठी है जब उन्होंने ज्ञापन दिया। इस ज्ञापन पर सरकार आगे क्या करेगी अभी कोई नहीं जानता। उसी के साथ आत्महत्या करने वाले नीट अभ्यर्थियों के परिवार वालों को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, ये भी CJP ने बहुत महत्वपूर्ण मांग रखी है। तो कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर से संसद तक कल मार्च किया। देश की राजधानी दिल्ली में संसद से लेकर सड़क तक हंगामा नजर आया। कॉकरोच जनता पार्टी के सांसद मार्च को रोकने के लिए संसद भवन के पास आंसू गैस के गोले दागे गए। संसद के सभी दरवाजों पर सुरक्षा अभेद्य कर दी गई, जिसकी वजह से अब स्थिति नियंत्रित है।

0: जबरदस्त हंगामा बरपा है। कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक संसद भवन का घेराव कर रहे हैं और पुलिस उन्हें रोकने का प्रयास कर रही है। प्रदर्शनकारी बेकाबू हुए तो पुलिस को उन्हें रोकने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा, फिर लाठियां चली, आंसू गैस के गोले दागे गए। प्रदर्शनकारी सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए राजीव चौक और मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन तक में घुस गए, जबकि कई लोग बैरिकेडिंग तोड़कर सीधे पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने तक पहुंच गए। कर्तव्य पथ पर भी जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। देखिए, ये दोपहर में करीब 1:30 बजे की तस्वीरें हैं।
1: कर्तव्य पथ का चौराहा है जहां आपको सिर्फ पुलिस के साइरेंस सुनाई देंगे और ये तस्वीर है जहां प्रोटेस्टर्स कुछ इस तरीके से घूम रहे हैं और पुलिस ये प्रोटेस्टर अभी बाहर निकले हैं। आप देखिए,
0: सोशल मीडिया पर बताया गया कि प्रदर्शनकारियों में बहुत सारे घायल हैं, जिस पर दिल्ली पुलिस ने सफाई दी। दिल्ली पुलिस की ओर से कहा गया कि सोशल मीडिया पर गीतांजलि नाम की 12 साल की लड़की के साथ मारपीट, बाल खींचने और सिर में चोट लगने और साथ ही लगभग 40 से 50 अन्य लोगों के सिर फूटने के दावों वाली पोस्ट में गलत जानकारी फैलाई जा रही है। ये जानकारी गलत है, पोस्ट में किए जा रहे दावे सच नहीं है। कृपया गलत या गुमराह करने वाली जानकारी न फैलाएं और न ही उसे आगे बढ़ाएं। बहरहाल, काफी देर तक यूं ही बवाल चलता रहा, लेकिन कुछ घंटों में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर काबू पा लिया।
1: कर्तव्य पथ पर हम लोग खड़े हुए हैं और अभी यहाँ पे स्थिति जो है, आप कह लीजिए कि यातायात जो है वो चालू हो गया है। स्थिति यहाँ पे ये है कि प्रदर्शनकारियों को हटा दिया गया है, लेकिन 2 घंटे पहले यहाँ पे तस्वीर बेहद अलग थी। तमाम प्रदर्शनकारी इन लॉन्स में पीछे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे भरे हुए थे और उसके अलावा खाकी का जो आपको तैनाती दिख रही है, बिल्कुल एक्शन में दिल्ली पुलिस और अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी नजर आ रहे थे। एंटी राइड व्हीकल्स पीछे और तमाम दिल्ली पुलिस के बसें यहां पे तैनात थी, लेकिन अब वो खाली करा दिया गया है।
0: कुछ देर पहले तक रेल भवन के पास भी प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा था, लेकिन वहां भी थोड़ी देर में स्थिति नियंत्रण में आ गई।
2: मैं इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं, जो कि रफी मार्ग है, जो कि रेल भवन से कुछ ही दूरी पर मौजूद है। कुछ घंटे पहले यहां पर तमाम प्रदर्शनकारी मौजूद थे। दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के द्वारा इस पूरे इलाके को अब खाली करा लिया गया है।
0: संसद भवन के आसपास भी सड़कें अब खाली हैं। संसद से विजय चौक तक का इलाका खाली और सामान्य दिख रहा है।
3: यहाँ पर एकदम नॉर्मल सी है, जिस तरीके के बैरिकेड्स लगाए गए थे ताकि जो प्रदर्शनकारी थे जब वो यहाँ आने की कोशिश कर रहे थे, वो सभी बैरिकेड्स को एक तरफ साइड में खड़ा कर दिया गया है और संसद परिसर के बाहर भी जो सामान्य तौर पर जो पुलिस कर्मी होते हैं वही लोग इस समय मौजूद हैं।
0: जंतर मंतर पर भी जहाँ सीजेपी का प्रदर्शन चल रहा था उसे भी खाली करा लिया गया है। कुल मिलाकर अब स्थिति नियंत्रण में है। आज तक ब्यूरो।
4: उधर बिहार विधानसभा में भी मॉनसून सत्र की शुरुआत हो गई, लेकिन सदन शुरू होता इसके पहले ही विपक्ष ने जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया। विपक्षी विधायकों ने विधानमंडल के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। विपक्ष यहां शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा है।
5: हाथों में तख्तियां और जुबान पर तेवर, बिहार में विधानसभा में मॉनसून सत्र की शुरुआत का पहला दिन हंगामा खेज था। विपक्ष के विधायक तख्तियां लेकर पहुंचे थे, नीट पेपर लीक का मुद्दा यहां भी उछाला गया। विपक्ष के विधायकों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा।
6: विधानमंडल का मुख्य गेट है और इसके ठीक बाहर ही आरजेडी माले तमाम विपक्षी दलों के जो नेता हैं, वो विधायक हैं, वो इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं और हाथों में स्लोगन्स है, बैनर है, पोस्टर है। आरजेडी के विधायक हैं रणविजय साहू जी। रणविजय जी, आज पहले ही दिन सदन की कार्यवाही शुरू होने के पहले आप लोग तो आक्रामक तेवर।
7: ये सड़क पर और सदन के अंदर भी सरकार के आंख खोलने का काम करेंगे। आज पूरे देश भर में छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ है, नीट छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ है, पेपर लीक हुआ है, लेकिन सरकार चुप है, मोदी सरकार खामोश है और केंद्रीय मंत्री को बर्खास्त नहीं कर रहे हैं। जब तक बर्खास्त नहीं करेंगे तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
5: विपक्ष आक्रामक था। बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री ने भी धर्मेंद्र प्रधान पर जोरदार निशाना साधा। जंतर मंतर वाली गूंज यहां भी सुनाई दी।
6: आप भी बिहार के शिक्षा मंत्री रहे चंद्रशेखर जी, केवल नीट का सवाल ही है या और भी मुद्दों पर घेरेंगे सवाल?
8: ये भाजपा नीति नफरती सरकार न सिर्फ बेरोजगारों के लिए कब्र खोद रही है, संपूर्ण देश की मिल्कियत को चंद विश्वसनीय विश्वस्त उद्योगपतियों के हाथ में बेच रही है, भारत के भविष्य के लिए खतरा है। इसीलिए ऐसे निकम्मी सरकार को हटाने का संकल्प लेकर के हम लोग आंदोलन के समर्थन में हैं। जंतर मंतर पर जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या की गई है उसके खिलाफ हम लोग प्रतिकार स्वरूप यहां खड़े हैं। आंदोलन होगा, गली में होगी, सड़क पर होगा, सदन में होगा।
9: नेता प्रतिपक्ष क्या शामिल हो रहे हैं आज की कार्रवाई में या अभी भी बाहर?
8: नेता प्रतिपक्ष कहाँ है तो हम नहीं अभी बता सकते हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष और इस पार्टी के हम लोग सिपाही हैं। हर कदम हमारी पार्टी और हमारे नेता अन्याय जुल्म के खिलाफ है।
9: चलिए, तेजस्वी यादव नहीं है और विधायकों को मालूम भी नहीं है कि कब से विधानसभा की कार्यवाही में वो शामिल होंगे, और आईपी गुप्ता जो है वो भी पहुंच गए हैं, मतलब सदन के अंदर भी यही रुक रहेगा गुप्ता जी?
10: अब ये जो बेशरम सरकार है वो सारे दरवाजे बंद करके, चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो, शासन प्रशासन को, तो हमारे पास एक ही रास्ता है, सदन।
5: मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले एक और दिलचस्प तस्वीर सामने आई। देखिए, इस आदमी के कंधे पर आरजेडी का गमछा था, तभी यहाँ रामकृपाल यादव पहुँचे, इसके बाद तस्वीर बदल गई। इस आदमी ने ये हरा गमछा फेंक दिया और इसकी जगह बीजेपी का गमछा पहन लिया। कार्यकर्ताओं ने आवाज लगाई कि अब ये बीजेपी में शामिल हो गया। बहरहाल, बिहार विधानसभा से जोरदार हंगामे के साथ सत्र शुरू तो हो गया, लेकिन सत्र क्या सुचारू रूप से चल पाएगा, ये सवाल बना हुआ है। शशि भूषण सिंह, पटना आज तक।
4: उधर अयोध्या का चढ़ावा चोरी मामले में दिल्ली में संसद तक आवाज गूंज रही है। दूसरी तरफ जांच एजेंसियां लगातार चोरी से अर्जित संपत्तियों को लेकर खुलासे कर रही हैं। एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में क्या स्टेटस रिपोर्ट सौंपी है उसका खुलासा भी नहीं हो पाया है, लेकिन चोरी कांड में सूत्रों के हवाले से आरोपी टिन्नू यादव को लेकर के तमाम खुलासे जरूर हो रहे हैं।
11: इसके लिए संसद है, आप तर्क से चर्चा करें।
0: राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी पर ऐसी सियासत जोरी है कि एक तरफ जांच एजेंसियां चोरों का पूरा हिसाब पता नहीं लगा पाई हैं, दूसरी तरफ दिल्ली में चढ़ावा चोरी पर सियासत जोरी जबरदस्त है।
12: ये सरकार नहीं, अहंकार है। बीजेपी के लोग आज से नहीं घोटाला कर रहे हैं, इनकी हमेशा ही कोशिश रहती है घोटाला करने।
13: राम मंदिर में चोरी क्यों हो रही है, तो क्या ये प्रधानमंत्री का जवाब है? शर्म आती है ऐसे प्रधानमंत्री।
14: लूट मची है, चंदा चोरी,
15: उन्होंने रखवाली नहीं, चोरी नहीं है, डकैती।
0: अयोध्या में हुई चढ़ावा चोरी पर इस सियासी शोर के बीच जांच एजेंसियां तमाम खुलासे कर रही हैं, और ये खुलासे खुद आरोपियों से पूछताछ के बाद हुए हैं। एक दिन पहले करीब 40 घंटे तक पुलिस रिमांड में रहे टिन्नू यादव और उसके भतीजे मनीष यादव से हुई पूछताछ में पुलिस को बड़े राज की बातें पता चली हैं।
16: चढ़ावा चोरी के पैसे से टिन्नू ने सूत्रों के मुताबिक कुछ संपत्तियां भी अर्जित की थी, जिसके दस्तावेज पुलिस को मिल गए हैं।
0: टिन्नू यादव से 39 घंटे की पूछताछ में ही पता चला है कि अप्रैल 2026 में टिन्नू यादव ने सिफारिश कर अपने भतीजे मनीष यादव को नौकरी दिलवाई थी, जिसके बाद 15 अप्रैल 2026 से मनीष यादव को चढ़ावे की गिनती के काम में लगाया गया था। महीने भर के अंदर मई के दूसरे हफ्ते में मनीष यादव ने अविनाश शुक्ला के साथ मिलकर पहली बार चोरी की। उससे पहले मनीष यादव अनुकल्प, लवकुश और अविनाश को चोरी में मदद कर रहा था। ये भी पता चला है कि नाइट शिफ्ट के दौरान मनीष यादव को चोरी की रकम के साथ बाइक पर बैठाकर टिन्नू यादव ही बिना चेकिंग मंदिर से बाहर ले जाया करता था। दोनों आरोपियों की निशानदेही पर बुलेट गाड़ी और एक कार पुलिस ने बरामद की है।
16: पुलिस ने टिन्नू यादव की पत्नी के नाम से पंजीकृत फर्म का रिकॉर्ड भी तलब किया है। इसके लिए पुलिस ने स्टेट जीएसटी ऑफिसर्स की सहायता ली है।
0: इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट में आज एसआईटी ने सीलबंद स्टेटस रिपोर्ट सौंप दी है। इस मामले में अब अगली सुनवाई अगले हफ्ते होगी। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव और मनीष शुक्ला के साथ आज तक ब्यूरो।
4: रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो।
17: दिस इज द साउंड ऑफ क्लेयर कुकिंग डिनर एट होम एंड दैट्स द साउंड ऑफ अ फ्रॉड अलर्ट फ्रॉम वेल्स फार्गो फ्लैगिंग अ चार्ज फॉर अ प्राइसी रेस्टोरेंट इन पेरिस। कंसीडरिंग क्लेयर इजंट इन पेरिस राइट नाउ, That seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
18: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
19: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
20: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
21: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
22: कौन सा पाप ग्रह आपको जीवन में अनुशासित बनाता है? कौन सा पाप ग्रह आपसे लोगों की सेवा करवाता है? और कौन सा पाप ग्रह आपको तीर्थ स्थानों की यात्रा करवाता है? पाप ग्रह कब देते हैं पुण्य, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र।
17: This is the sound of Claire cooking dinner at home, and that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
18: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
21: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

0: संसद के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन पेपर लीक और चढ़ावा चोरी को लेकर के फिर गतिरोध के आसार। पहले दिन विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरा। मानसून सत्र के बीच एनडीए की संसदीय दल की बैठक आज। प्रधानमंत्री मोदी समेत सभी सांसद होंगे शामिल। नए सांसदों का किया जाएगा औपचारिक स्वागत। सीजेपी प्रदर्शनकारियों ने की जेपी नड्डा से मुलाकात। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ रखी तीन मांगे। कहा सरकार हमारी मांगों पर करेगी विचार। केरल हाउस का खरीफ प्रदर्शन शिफ्ट हो गया। सिक्किम के निर्माणाधीन टनल पर लैंडस्लाइड। एंट्री गेट बंद होने से अंदर फंसे 27 मजदूर। गैस की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में आ रही है परेशानी। लगातार 10 दिन से अमेरिका के ईरान पर ताबड़तोड़ हमले। बंदर अब्बास, चाबहार, इस्फहान में धमाके। ईरान ने भी जॉर्डन के अमेरिकी बेसों को बनाया निशाना। ईरान पर अमेरिका का ताबड़तोड़ हमला। लगातार 10वीं रात जारी अमेरिकी कार्रवाई में कई नए हमले किए गए। अमेरिकी सेना ने ईरान के कई इलाकों और द्वीपों को निशाना बनाया। ईरानी मीडिया प्रेस टीवी ने दी जानकारी। ईरानी मीडिया प्रेस टीवी के मुताबिक बंदर अब्बास, चाबहार, कोणार्क, सिरिक, शिराज और इस्फहान में धमाके सुने गए। प्रेस टीवी के मुताबिक सेंट्रल ईरान के इस्फहान में दो धमाके हुए। इसके अलावा खोमिन शहर में एक औद्योगिक केंद्र पर भी हमला हुआ। ईरान पर हमले को लेकर अमेरिकी सेना का बयान। कमांडर इन चीफ के निर्देश पर यूएस सेना ने ईरान के खिलाफ हमले का नया दौर शुरू किया। आज मानसून सत्र का दूसरा दिन है। आज भी हंगामे के आसार हैं। पेपर लीक, चढ़ावा चोरी मामले को लेकर दोनों सदनों में गतिरोध के आसार। आज कोलकाता में कांग्रेस की रैली। पूर्व नेताओं को पार्टी में वापस आने का न्योता। बिहार में कांग्रेस ने छात्रों की गूंज, महारैली करने का ऐलान किया। इस रैली में राहुल गांधी भी शामिल होंगे। सोनम वांगचुक ने कहा अनशन नहीं तोड़ूंगा। शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने बर्बरतापूर्व कार्रवाई की। दिल्ली हाईकोर्ट में सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि की याचिका पर सुनवाई को तैयार। वांगचुक की हेल्थ रिपोर्ट मांगी गई। आज फिर होगी सुनवाई। आज प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में एनडीए का मंगल मिलन होगा। एनसीपीआई के नए राज्यसभा सांसदों का स्वागत किया जा सकता है। पीएम मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक चुने गए प्रधानमंत्री बनने पर बधाई भी दी जाएगी। एनसीपीआई की आज मंगल मिलन में शामिल होने की संभावना कम है। हालांकि आप छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए नए राज्यसभा सांसदों का स्वागत जरूर किया जाएगा। आज यूपी की कैबिनेट बैठक होने वाली है। सीएम योगी की अध्यक्षता में सुबह 10:30 बजे ये बैठक होगी। सीएम योगी का बहराई, श्रावस्ती का भी दौरा है। 748 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे योगी। किसान संगठनों ने आज दिल्ली में महापंचायत का ऐलान किया है। भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में यह महापंचायत होनी है। दिल्ली के किसान घाट पर एक महापंचायत बुलाई गई है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, एमपी, महाराष्ट्र के किसान यहां मौजूद रहेंगे। डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया का आज दिल्ली दौरा है। कर्नाटक में कैबिनेट की लिस्ट फाइनल कराने के लिए दिल्ली आ रहे हैं। बुधवार को शपथ ग्रहण हो सकता है। बिहार में शराबबंदी के बाद अब जुए पर भी सरकार की सख्ती। जुआ सट्टेबाजी के खिलाफ विधानसभा में बिल लाएगी राज्य सरकार। मानसून सत्र में बिहार जुआ प्रतिषेध बिल लाएगी सम्राट सरकार। और ब्रेक के बाद देश के कई राज्यों में मानसून हुआ एक्टिव। मैदानी इलाकों में गर्मी और उमस से राहत मिलने की उम्मीद है। बारिश से प्रभावित 6 राज्यों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश और बिहार के कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। मेघालय के लिए भी मौसम ने रेड अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा जैसे इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी है। पश्चिमी तटीय इलाकों में भारी बारिश होने की भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है। राजस्थान के 24 जिलों में बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर में हो सकती है भारी बारिश। दिल्ली एनसीआर में भी मौसम का मिजाज बदला है। कई इलाकों में बारिश होने से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। तो बड़ी खबर यह कि मिडिल ईस्ट में जंग का 10वां दिन है। ईरान पर अमेरिका ने लगातार 10वीं रात ताबड़तोड़ हमले किए हैं। बीते 10 दिनों से पश्चिम एशिया में एक बार फिर तनाव की स्थिति है। ईरान पर अमेरिका ने बड़ा हमला किया है और अमेरिकी सेना ने ईरान के कई इलाकों और द्वीपों को निशाना बनाया है। ईरानी मीडिया प्रेस टीवी के मुताबिक बंदर अब्बास, चाबहार, कोनार्क, सिरिक, शिराज और इस्फहान में धमाके भी सुनाई दिए हैं। इसी के साथ साथ सेंट्रल ईरान के इस्फहान में 2 धमाके सुनाई दिए। इसके बाद खुमीन शहर में एक इंडस्ट्रियल यूनिट पर भी हमला हुआ है। तो लगातार 10वां दिन जब ये हमले हुए हैं ईरान पर, किन किन इलाकों में हुए हैं आपको ये भी बता देते हैं। एक तरफ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं उन हमलों के, दूसरे अलावा नक्शे पर आप समझें कि आखिर कहां पर हमला हुआ है। 10 दिन से यानी 10वीं रात लगातार ये बमबारी। तो सबसे पहले दक्षिण पूर्व में कोनार्क और चाबहार सिरिक, यहां पर वो जो मिसाइलें दागी गई हैं और उसके साथ साथ यूएस एयरफोर्स ने यहां हवाई हमले किए। इसके अलावा सीधे बंदर अब्बास यानी हॉर्मुज पर, जहां से ईरान नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा है, बंदर अब्बास और शिराज में, और जैसे आप ओमान, गल्फ ऑफ ओमान से आगे बढ़ते हैं गल्फ ऑफ पर्शिया में पारस की खाड़ी में, तो पारस की खाड़ी से बिल्कुल ऊपर सेंट्रल ईरान में इस्फहान में भी धमाका गया है। और बिल्कुल इस्फहान से उत्तर पश्चिम ईरान जो कि खुमीन शहर है, वहां पर एक इंडस्ट्रियल यूनिट पर भी अमेरिका ने बमबारी की है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे शहर हैं, इन 7 को निशाना बनाया गया है। अब ज्यादातर आप हमले अगर अमेरिका के देखेंगे तो वो इन तटीय इलाकों में, गल्फ ऑफ पर्शिया से लेकर के गल्फ ऑफ ओमान, जहां से ईरान की नौसैनिक गतिविधियां चलती हैं, जहां से वो हॉर्मुज में जहाजों को निशाना बनाता है और उस पर कंट्रोल करता है। हमने वो तस्वीरें देखी जब चाबहार में जो कमांड टावर है उसको निष्क्रिय किया गया, कोनार्क में उसकी सबमरीन जो थी उसको निष्क्रिय की गई, और इसी के साथ सिरिक और शिराज में उसके ऊर्जा जो संयंत्र हैं उसको भी अमेरिका ने हमला करके निशाना बनाया है। लेकिन बंदर अब्बास, इस्फहान, खुमीन, अब उसके जो हमले हैं वो लगातार आक्रामक हो रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर एक और, ईरान अमेरिका जंग को लेकर के ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की है। ईरान ने जॉर्डन पर हमला किया है। हमले के बाद जॉर्डन में सायरन बजे। हमले को लेकर के जॉर्डन की सेना ने बयान जारी किया और कहा कि 3 ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया गया। अभी तक किसी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जॉर्डन पर जहां पर अमेरिकी एयरफोर्स का सबसे बड़ा स्टेशन है, उसका ड्रोन फोर्स का सबसे बड़ा स्टेशन है, अब उस बेस को भी निशाना बनाया गया है। तो इस बीच एक और बड़ी खबर यह भी है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेसों को लेकर के IRGC का भी बड़ा बयान आया है। IRGC ने कहा है कि बहरीन और कुवैत में अमेरिकी ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। उसके हमलों में बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाया गया है। IRNA के मुताबिक IRGC ने कहा है कि बहरीन के अलसाखिर एयरपोर्ट पर अमेरिकी ड्रोन मरम्मत रखरखाव शेड नष्ट कर दिए गए हैं। बहरीन के सलमान पोर्ट पर मौजूद अमेरिकी नौसेना की टास्क फोर्स 59 के जहाजों की तैयारी वाले शेड भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। वहीं कुवैत के आरिफजान बेस पर अमेरिकी मरीन स्पेशल फोर्सेस के शेड को भी नष्ट करने का दावा IRGC ने किया है। तो अब तक बड़े घटनाक्रम क्या हुआ ये भी आपको बता देते हैं। पीछे 10 दिनों से जो हमले हो रहे हैं, लगातार 10वीं रात ईरान के अलग अलग शहरों में बमबारी की है, अमेरिका ने कार्रवाई की है। इसी के साथ साथ कई इलाकों पर जहां पर धमाके सुनाई दिए हैं एयर स्ट्राइक के बाद, कई ऐसे शहर हैं जहां पर धमाके कहां हुए हैं, बंदर अब्बास, कोनार्क, चाबहार, सिरिक, इस्फहान, ये वो शहर हैं जहां पर बीती रात भी धमाके सुनाई दिए। यहां तक कि सेंट्रल ईरान के इस्फहान में भी अब अमेरिकी एयर स्ट्राइक तेज हो गई है। जवाबी कार्रवाई ईरान ने की है, उसने जॉर्डन में अमेरिकी बेस को निशाना बनाया, वहां पर मिसाइलें दागी जिन्हें इंटरसेप्ट किया गया। जॉर्डन ने 3 ईरानी मिसाइल इंटरसेप्ट की हैं। उसी के साथ साथ ये जो हमला है इसकी तीव्रता बढ़ रही है। IRGC ने दावा किया है कि बहरीन और कुवैत में जो टास्क फोर्स है, उसकी डिफेंस यूनिट है, वहां पर उसको नुकसान पहुंचाया गया। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी है, एक भी सैनिक की मौत का हर्जाना और भरपाई ईरान को कई गुना करनी पड़ेगी। तो ये अब तक के वो बड़े डेवलपमेंट है जो पश्चिम एशिया में बीते 10 दिनों से लगातार चल रहे हैं। लेकिन इस बीच बड़ी खबर एक और, आप उसका भी रुख कर लेते हैं कि एक तरफ जहां पश्चिम एशिया में तनाव की स्थिति है, इस तनाव के बीच में अब आज भारत में क्या होगा। आज भारत में संसद के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन है। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन फिर हंगामे के आसार है। पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया, सदन की कार्यवाही बार बार रोकनी पड़ी, लोकसभा राज्यसभा को बार बार स्थगित करना पड़ा, तो दूसरे दिन भी विपक्ष लगातार नीट राम मंदिर चंदा चोरी यानी चढ़ावा चोरी के मामले पर सरकार को घेर रहा है, जवाब मांग रहा है, चर्चा चाहता है, जिसको लेकर के दूसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ सकता है। आज इसका दूसरा दिन है और आज भी विपक्ष इस मुद्दे पर आक्रामक रहेगा, लेकिन सरकार की तैयारी है कि इसी मौजूदा सत्र में कुछ अहम कानून लाए जाएं। तो घेरेबंदी विपक्ष की जो होगी वो नीट, राम मंदिर चढ़ावा चोरी, एथेनॉल, सोनम वांगचुक इन है। लेकिन आपको सबसे पहले ये बताते हैं कि इस सत्र में सरकार की तैयारी क्या है, कौन कौन से महत्वपूर्ण कानून आने वाले हैं। इनकम टैक्स संशोधन बिल, ये सरकार लाने की तैयारी में इसी सत्र में। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट संशोधन बिल, जिसके जरिए जजों की संख्या सुप्रीम कोर्ट में बढ़ाई जाए, ये महत्वपूर्ण बिल। इसी के साथ साथ जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम जो है, एक बिल, ये भी सरकार इसी सत्र में लाने की तैयारी में है। राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन बिल, जिसके जरिए वंदे मातरम को राष्ट्रगान के बराबर का दर्जा दिया जाए। और साथ में सूक्ष्म लघु यानी एमएसएमई विकास संशोधन बिल जो है वो भी सरकार इसी सत्र में लाना चाहती है। छठवां है एफसीआरए अमेंडमेंट, फॉरेन फंडिंग जो होती है उसमें अमेंडमेंट को लेकर के भी सरकार आगे बढ़ेगी। साथ ही विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल। लेकिन हंगामा किस बात पर है, विपक्ष किस मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है, ये भी देख लीजिए। घेरेबंदी की विपक्ष की रणनीति क्या है, किस मुद्दे पर, नीट पेपर लीक जिसको लेकर के पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ा, दूसरा राम मंदिर चढ़ावा चोरी जिसको लेकर के लगातार विपक्ष सड़कों पर भी है तो अब सदन में भी यह मुद्दा गूंजेगा, तीसरा एथेनॉल विवाद, E20 को लेकर के सरकार की सफाई, विशेषज्ञों की बात लेकिन लोगों की शिकायत, और वो अब शिकायत उनके प्रतिनिधियों के जरिए विपक्ष के जरिए संसद में गूंजेगी, दूसरा सोनम वांगचुक जिनको प्रदर्शन के बाद 20 दिन के अनशन के बाद पुलिस अस्पताल ले गई है, अब उनके मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई भी चल रही है, सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का, आपके हमारे सबसे जुड़ा हुआ इस मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरेगा, विदेश नीति, हाल फिलहाल के दिनों में जो डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट्स हुए हैं उसको लेकर के भी विपक्ष सरकार से जवाब चाहता है, और भ्रष्टाचार करप्शन के मुद्दे को लेकर के भी विपक्ष सरकार को घेरेगा। तो संसद में सरकार की घेरेबंदी के लिए ये तैयारी विपक्ष की ओर से की गई है। लेकिन सबसे पहले जब मॉनसून सत्र शुरू हुआ पहले दिन क्या हुआ, पहले ही दिन विपक्ष ने दोनों सदनों में भारी हंगामा किया, दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित कर दी गई और उस हंगामे के बीच लगातार जवाब सवाल की नौबत आई ही नहीं, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने पेपर लीक का मुद्दा उठा दिया, जिसके बाद हंगामा हुआ, सदन की कार्यवाही को कई बार स्थगित करना पड़ा।
1: समय देता हूं, सार्थक चर्चा हो, संवाद हो, गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रहे हैं, संसद की मर्यादा नहीं बनती है।
2: मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई और सदन में विपक्षी सांसद जमकर बरसे,
1: सदन नहीं चलाना चाहते।
2: लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया, बार बार कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। मुख्य मुद्दा था पेपर लीक का।
3: नीट एग्जामिनेशन अगर हुआ है और उसमें अगर ये धांधली हुई है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, क्रेडिबिलिटी किसकी है, किसको ये तैयारी करनी थी। आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं, दुनिया में आप कह रहे हैं अमृत काल है, लेकिन आपके मंत्री आप नहीं हटा पा रहे।
2: लोकसभा के साथ राज्यसभा में नीट पेपर लीक का मुद्दा छाया रहा, राज्यसभा में भी जमकर हंगामा हुआ। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पेपर लीक का मुद्दा उठाया।
1: सर ये स्टूडेंट का मामला है, ये स्टूडेंट का मामला है जो लाखों बच्चों की जो भविष्य है उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, और उसके लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहाँ पर आए हैं।
2: नीट पेपर लीक का मुद्दा सिर्फ संसद के भीतर ही नहीं संसद के बाहर भी गूंजा। समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ तख्ती लेकर डिंपल यादव ने मार्च किया।
4: वी वांट कि छात्रों की बात सुनी जाए, क्योंकि अब पानी जो है सर से ऊपर से निकल चुका है। देश के लिए जहाँ किसान, जहाँ हमारा एनवायरनमेंट हो, चाहे हमारा युवा हो, सभी परेशान हैं, और ये सरकार कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है, कोई भी रिफॉर्म्स लाने को तैयार नहीं है।
2: इन तमाम हंगामों के बीच कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक के पास होने के बाद देश की सर्वोच्च अदालत में जजों की संख्या बढ़ जाएगी। इस बिल का मकसद सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या एक्ट 1956 में और संशोधन करना है। प्रस्तावित कानून का मकसद केंद्र द्वारा जारी उस अध्यादेश की जगह लेना है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की गई थी। आज तक ब्यूरो।
0: तो दूसरे दिन क्या होगा इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन आज एक और चीज होने वाली है, वो है एनडीए की बैठक। एनडीए संसद के मॉनसून सत्र के बीच आज एनडीए के संसदीय दल की बैठक बुलाई गई है। ये बैठक सुबह करीब 9:30 बजे संसद परिसर में होगी। इस बैठक को मंगल मिलन नाम दिया गया है। सूत्रों का कहना है कि बैठक में प्रधानमंत्री मोदी समेत एनडीए के सभी सांसदों के शामिल होने की उम्मीद है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू बैठक में एनडीए सांसदों का स्वागत करेंगे। बैठक में हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर राज्यसभा पहुंचे नए सांसदों का भी स्वागत किया जाएगा। इनमें आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए राज्यसभा सांसद भी शामिल हैं। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई के मंगलवार को होने वाले इस मंगल मिलन कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना फिलहाल नहीं है। यानी जो टीएमसी के बागी सांसद थे जो एनसीपीआई में गए, उनका स्वागत होगा कि नहीं, वो आएंगे कि नहीं, उस पर अभी सस्पेंस बरकरार है। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित रहने वाले प्रधानमंत्री बनने पर भी बधाई दी जाएगी। तो ये मंगल मिलन समारोह होगा और क्या क्या होगा इसमें आपको बता देते हैं कि सत्र का दूसरा दिन है तो एनडीए की बैठक है। अब कई मामलों में बैठक महत्वपूर्ण होती है। एनडीए का अपना आपस में जो समन्वय है वो बना रहेगा। संसदीय दल की बैठक है सांसदों के साथ। प्रधानमंत्री का जो संबोधन होगा उसमें वो संदेश देंगे। सभी सांसद इसमें शामिल होंगे और जब सारे सांसद संसद के उस सभागार में जब बैठेंगे वहां पर प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। कई मुद्दों पर वो अपनी बात रखेंगे और इसी के साथ साथ संभवतः आने वाले दिनों में जो राजनीतिक रणनीति होगी उसके बारे में भी बताएंगे। नए सांसद जो दूसरी पार्टियों से हैं, खासकर आम आदमी पार्टी के वो सांसद जो बीजेपी में हाल ही में शामिल हुए, राघव चड्ढा, स्वाति मालीवाल, संदीप पाठक, उन सब का स्वागत भी यहां पर किया जाएगा। लेकिन एनसीपीआई के जो सांसद है जो तृणमूल के बागी थे, क्या वो आएंगे या नहीं, उनका स्वागत होगा, इस पर अभी सस्पेंस बरकरार है। तो मॉनसून सत्र के बीच एनडीए की बैठक होने वाली है। आज सदन का दूसरा दिन है और एक तरफ जहां विपक्ष हंगामे के मूड में है उसी के साथ साथ एनडीए का ये बैठक। तो एक तरफ संसद का मानसून सत्र

0: विपक्ष के विधायक तख्तियां लेकर पहुंचे थे, नीट पेपर लीक का मुद्दा यहां भी उछाला गया। विपक्ष के विधायकों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा।
1: विधानमंडल का मुख्य गेट है और इसके ठीक बाहर ही आरजेडी माले तमाम विपक्षी दलों के जो नेता हैं, वो विधायक हैं, वो इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं और हाथों में स्लोगन्स है, बैनर है, पोस्टर है। आरजेडी के विधायक हैं रणविजय साहू जी। रणविजय जी, आज पहले ही दिन सदन की कार्यवाही शुरू होने के पहले आप लोग तो आक्रामक तेवर
2: ये सड़क पर और सदन के अंदर भी सरकार के आंख खोलने का काम करेंगे। आज पूरे देश भर में छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ है, नीच छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ है, पेपर लीक हुआ है, लेकिन सरकार चुप है, मोदी सरकार खामोश है और केंद्रीय मंत्री को बर्खास्त नहीं कर रहे हैं। जब तक बर्खास्त नहीं करेंगे तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
0: विपक्ष आक्रामक था। बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री ने भी धर्मेंद्र प्रधान पर जोरदार निशाना साधा। जंतर मंतर वाली गूंज यहां भी सुनाई दी।
1: आप भी बिहार के शिक्षा मंत्री रहे चंद्रशेखर जी, केवल नीट का सवाल ही है या और भी मुद्दों पे घेरेंगे सवाल?
3: ये भाजपा नीति नफरती सरकार न सिर्फ बेरोजगारों के लिए कब्र खोद रही है, संपूर्ण देश की मिल्कियत को चंद विश्वसनीय विश्वस्त उद्योगपतियों के हाथ में बेच रही है। भारत के भविष्य के लिए खतरा है, इसीलिए ऐसे निकम्मी सरकार को हटाने का संकल्प लेकर के हम लोग आंदोलन के समर्थन में हैं। जंतर मंतर पर जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या की गई है उसके खिलाफ हम लोग प्रतिकार स्वरूप यहां खड़े हैं। आंदोलन होगा, गली में होगी, सड़क पर होगा, सदन में होगा।
1: नेता प्रतिपक्ष क्या शामिल हो रहे हैं आज की कार्यवाही में या अभी भी बाहर?
3: नेता प्रतिपक्ष कहाँ है तो हम नहीं अभी बता सकते हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष और इस पार्टी के हम लोग सिपाही हैं, हर कदम हमारी पार्टी और हमारे नेता अन्याय जुल्म के खिलाफ है।
1: चलिए, तेजस्वी यादव नहीं है और विधायकों को मालूम भी नहीं है कि कब से विधानसभा की कार्यवाही में वो शामिल होंगे और आईपी गुप्ता जो है वो भी पहुंच गए हैं, मतलब सदन के अंदर भी यही रुक रहेगा गुप्ता जी?
4: अब ये जो बेशरम सरकार है वो सारे दरवाजे बंद करके, चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो, शासन प्रशासन को, तो हमारे पास एक ही रास्ता है, सदन।
0: मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले एक और दिलचस्प तस्वीर सामने आई। देखिए, इस आदमी के कंधे पर आरजेडी का गमछा था, तभी यहाँ रामकृपाल यादव पहुँचे। इसके बाद तस्वीर बदल गई। इस आदमी ने ये हरा गमछा फेंक दिया और इसकी जगह बीजेपी का गमछा पहन लिया। कार्यकर्ताओं ने आवाज लगाई कि अब ये बीजेपी में शामिल हो गया। बहरहाल, बिहार विधानसभा से जोरदार हंगामे के साथ सत्र शुरू तो हो गया, लेकिन सत्र क्या सुचारू रूप से चल पाएगा, ये सवाल बना हुआ है। शशि भूषण सिंह, पटना आज तक।
5: उधर पहाड़ों पर भयंकर बारिश हो रही है, नतीजा ये हुआ कि पहाड़ टूट रहे हैं, लगातार भूस्खलन, फ्लैश फ्लड हो रहे हैं, बादल फट रहे हैं, पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं, लोगों की जानमाल का भारी नुकसान हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा बुरा हाल जम्मू कश्मीर का है।
6: बारिश कहर बरपा रही है, खास तौर पर जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में तो कोहराम मचा हुआ है, कहीं बादल फट रहा है, कहीं फ्लैश फ्लड आ रहा है, कहीं पहाड़ों से पत्थर गिर रहे हैं, कहीं भारी भूस्खलन हो रहा है, कहीं पूरा पहाड़ ही भरभरा कर नीचे गिर जा रहा है।
7: देखो भाई, ये टंड रही है।
6: पूरे जम्मू कश्मीर में 12 लोगों की मौत हुई है, बहुत से लोग लापता हैं। सबसे ज्यादा बुरा हाल राजौरी, पुंछ, डोडा और किश्तवाड़ में है। एहतियातन वैष्णो देवी और अमरनाथ यात्रा फिलहाल रोक दी गई है। पुंछ में भारी बारिश के बाद आए फ्लैश फ्लड में भाटा दूरिया टनल उजड़ गई। राजौरी में खेवड़ा नाला ओवरफ्लो हो गया जिसका पानी कई कॉलोनियों में घुस गया। फ्लैश फ्लड में कई गाड़ियां बह गई और कई घरों को नुकसान भी पहुंचा है। आर्मी, SDRF और पुलिस रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं और चिंता की बात यह है कि अगले 24 से 36 घंटों तक अभी और ज्यादा बारिश का अनुमान है। ये पुंछ की तस्वीरें हैं जहां एक प्रोजेक्ट के ऊपर पूरा का पूरा पहाड़ ही गिर गया। नीचे मशीनें दिख रही हैं, पूरा सुरंग प्रोजेक्ट है, लेकिन ऊपर से भूस्खलन हो गया, भारी बारिश से मिट्टी कच्ची हो गई और पूरा पहाड़ ही नीचे गिर गया। अचानक से भारी बारिश के

0: बाद आए फ्लैश फ्लड का पानी रेजिडेंशियल इलाकों में घुस गया है। इसी तरह से यह तबाही भी पुंछ में ही हुई है। यहाँ पुंछ नेशनल हाईवे 144 को बनाने का काम चल रहा है। ये कंपनी यहाँ पर 35 किलोमीटर की सड़क बना रही थी, लेकिन अचानक से रात में भारी बारिश के बाद बाढ़ आ गई। यहाँ काम कर रहे मजदूरों की जान किसी तरह से बच गई, लेकिन उनकी मशीनें, बाकी सामान सब कुछ बह गया। अंदर सीमेंट का गोदाम था जिसमें 5000 से ज्यादा सीमेंट के बैग थे। इतना पानी आया कि सब कुछ खराब हो गया।
1: सर, इसमें काफी करीब जो रात को पानी आए हैं, फ्लड आए हैं, उसके काफी हमारे मटेरियल नुकसान हुए हैं।
0: यहाँ SGI कंपनी पिछले 3 साल से पुंछ नेशनल हाईवे को बनाने का काम कर रही है। ये पुंछ का बफलियाज इलाका है। यहाँ भी भयंकर बारिश के बाद बादल फटा और फ्लैश फ्लड आ गया। पूरा रास्ता, स्कूल, सब जगह मलबा भर गया है। किश्तवाड़ में भी रैटल पावर प्रोजेक्ट साइट पर अचानक से फ्लैश फ्लड आ गया। ये पावर प्रोजेक्ट नदी के किनारे था, बगल में नदी बह रही है और इधर ये पावर प्लांट। तस्वीरों में दिख रहा है कि ऊपर पूरा पहाड़ है और उसके अंदर से पानी आ रहा है। पूरे प्रोजेक्ट पर खतरा मंडरा रहा है। आगे फ्लैश फ्लड का यही पानी रेजिडेंशियल इलाकों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। डोडा में रागी नाला के पास भूस्खलन की वजह से ऊपर से एक बस के ऊपर पत्थर गिरे जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। यहाँ राजौरी में नदी में आई बाढ़ की वजह से एक पुल भी टूटा है और बहुत सा नुकसान हुआ है। नदी लगातार उफान पर है, आज भी बारिश हुई है।
2: तस्वीरों में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से ये हिस्सा जो है पूरी तरह से इस ब्रिज का टूट चुका है।
3: उफान पर होने के बाद जब इस ब्रिज के नजदीक पानी पहुंचता है तो इसका आधा हिस्सा जो है वो इस तरफ वाला वो बहा के साथ में ले जाता है।
0: ये भी राजौरी की तस्वीरें हैं जहां 2 भैंसें इन लहरों के बीच में फंस गई हैं। भैंसों को रस्सियों के सहारे निकालने की कोशिश हो रही है। एक शख्स भी अपनी जान जोखिम में डालकर इन भैंसों को निकाल रहा है। बताया जा रहा है कि ये गुर्जर समुदाय के जानवर हैं। ये गांदेरबल का सफापुर इलाका है जहां फ्लैश फ्लड आया है। पानी की रफ्तार देखकर आप ये धोखा खा सकते हैं कि जैसे ये कोई नदी होगी, लेकिन ये मुख्य सड़क है जिस पर गाड़ियां भी चल रही हैं, लेकिन पूरी सड़क पर मटमैला पानी भरा हुआ है। श्रीनगर शहर में भी भारी बारिश हुई है, इतनी कि यहां के प्रसिद्ध लाल चौक एरिया में पानी जमा हो गया।
4: नदियां उफान पर हैं, यहां तक कि अमरनाथ यात्रा को आज दूसरे दिन भी फिलहाल स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि अमरनाथ गुफा के आसपास इलाकों में कल से ही तेज बारिशें हो रही है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि आने वाले 2 दिन तक कश्मीर के अधिकतर इलाकों में इसी तरह तेज बारिशें होंगी।
0: भारी बारिश को देखते हुए माता वैष्णो देवी की यात्रा को भी स्थगित करना पड़ा है। अब जो श्रद्धालु यहां पहुंचे थे वो इस उम्मीद में हैं कि यात्रा फिर से शुरू होगी, लेकिन खराब मौसम को देखते हुए ये उम्मीद कम लगती है।
5: 2-3 दिन लगे खुलने में, अभी दर्शन करने में थोड़ा दिक्कत हो रही है।
0: उधर खराब मौसम की वजह से उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा भी रोक दी गई है। लगातार बारिश की वजह से केदारनाथ यात्रा भी प्रभावित हो रही है। केदारनाथ हाईवे और केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर भी भूस्खलन हो रहा है। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए फिलहाल अग्रिम आदेशों तक केदारनाथ यात्रा को रोका गया है और यात्रियों से सुरक्षित स्थानों पर रुकने की अपील की गई है।
6: मौसम विभाग ने वर्षा की भारी चेतावनी जारी की गई थी, जिससे कि जनपद में रात भर रुक रुक करके बारिश हो रही है और केदारनाथ और बद्रीनाथ हाईवे पर जगह जगह लैंडस्लाइड होने की स्थिति बनी हुई है और यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए और यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका जा रहा है।
0: रुद्रप्रयाग में बाबा केदार के रास्ते पर अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के अलावा अन्य सहायक नदियां भी उफान पर बह रही हैं। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी विकराल रूप धारण करते हुए वार्निंग लेवल के पास बह रही है। नदी किनारे के सभी घाट डूब गए हैं। अलकनंदा नदी से 30 मीटर दूर भगवान शिव की विशाल मूर्ति भी जलमग्न हो चुकी है।
7: पैदल यात्रा मार्ग सहित केदारनाथ हाईवे पर जगह जगह भूस्खलन हो रहा है और यात्रियों को भारी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए आज के लिए केदारनाथ यात्रा को फिलहाल अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया गया है।
0: भारी बारिश की वजह से उत्तराखंड में 1 नेशनल हाईवे समेत 60 से ज्यादा सड़कें बंद हैं, जिन्हें खोलने का काम चल रहा है। सोमवार को बारिश की वजह से उत्तराखंड के सभी स्कूलों की छुट्टी घोषित करनी पड़ी। बहुत से पहाड़ी जिलों के लिए मौसम विभाग की तरफ से बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज तक ब्यूरो।
8: वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए आज तक।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
10: Hey, it's your ceiling vent, so I'm dripping. Could be the rain, could be the upstairs bathroom. Yikes. You could hire the guy your neighbor recommended, but I'm pretty sure that's just his cousin. Do we know if he's licensed, or does he just own a ladder?
11: Listen to your home. Go with Thumbtack. Upload a photo or voice note, and we'll diagnose your project and match you with the right pro for the job. Thumbtack. We know homes. Hire the right pro today.
12: ग्रह आपको जीवन में अनुशासित बनाता है, कौन सा पाप ग्रह आपसे लोगों की सेवा करवाता है, और कौन सा पाप ग्रह आपको तीर्थ स्थानों की यात्रा करवाता है? पाप ग्रह कब देते हैं पुण्य, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र।
9: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

संसद के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन, पेपर लीक और चढ़ावा चोरी लेकर फिर गतिरोध के आसार। पहले दिन विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरा। मानसून सत्र के बीच आज एनडीए के संसदीय दल की बैठक, पीएम मोदी समेत सभी सांसद होंगे शामिल। नए सांसदों का किया जाएगा औपचारिक स्वागत। सीजेपी प्रदर्शनकारियों ने जेपी नड्डा से की मुलाकात, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ रखी तीन मांगे, कहा सरकार हमारी बातों पर करेगी विचार। केरल हाउस के करीब प्रदर्शन शिफ्ट हो गया। सिक्किम के निर्माणाधीन टनल पर लैंडस्लाइड, एंट्री गेट बंद होने से अंदर फंसे 27 मजदूर, गैस की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में आ रही है परेशानी, 7 की मौत। लगातार 10 दिन से अमेरिका के ईरान पर ताबड़तोड़ हमले, बंदर अब्बास, चाबहार, इस्फहान में धमाके, ईरान ने भी जॉर्डन के अमेरिकी बेसों को निशाना बनाया।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष में कुछ ग्रहों के नाम से लोग डरते हैं, घबराते हैं और पाप ग्रहों से डर करके तमाम तरह के उपाय करते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि ये पाप ग्रह भी कभी कभी बहुत फायदा पहुंचाते हैं, बहुत लाभ पहुंचाते हैं। पाप ग्रहों से किस तरीके का लाभ हो सकता है, आज इस विषय पर बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 21 जुलाई 2026 दिन मंगलवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र, रात के 8:49 तक चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं, प्रातः काल 7:54 तक राहु काल का समय दोपहर 3:04 तक उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पाप ग्रह होते हैं वो इतने बुरे नहीं होते हैं और पाप ग्रहों का भी जीवन पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, पड़ सकता है। किन ग्रहों को पाप ग्रह कहते हैं और जिंदगी पर कैसे असर डालते हैं, पहले ये समझिए। देखिए, कुल मिलाकर ज्योतिष में हम 9 ग्रहों का अध्ययन करते हैं। इसमें कुछ शुभ ग्रह हैं, कुछ क्रूर ग्रह हैं और कुछ पाप ग्रह हैं। बृहस्पति, शुक्र, बुध और शुभ चंद्रमा ये शुभ ग्रह की श्रेणी में आते हैं। सूर्य और मंगल क्रूर ग्रह माने जाते हैं और पाप ग्रहों में शनि, राहु और केतु माने जाते हैं। ये पाप ग्रह इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि ये जीवन को पाप कर्मों की तरफ या पाप भावना की तरफ ले जाने की, प्रेरित करने की क्षमता रखते हैं। ऐसा नहीं कि ले ही जाते हैं, लेकिन ले जा सकते हैं, वो इनकी टेंडेंसी है। इनके बुरे प्रभाव में आकर भी बिना इच्छा के व्यक्ति पाप कर्मों की तरफ चला जाता है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि कभी कभी यही पाप ग्रह अत्यंत शुभ हो जाते हैं और व्यक्ति को पुण्य की तरफ और मुक्ति की तरफ भी ले जाते हैं। यानी आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि शनि पापी है, राहु केतु पाप ग्रह हैं, तो जीवन में हमेशा बुरा ही करेंगे, हमेशा नुकसान ही करेंगे। नहीं, इनके अंदर भी शुभता होती है, छुपी हुई होती है, और अगर ये कुंडली में थोड़े भी बेहतर होते हैं तो ये भी आपको जीवन में अच्छे परिणाम दे सकते हैं। तो कोई आपसे कहे कि भाई शनि यहां बैठा है बुरा करेगा, तो आप ये समझिए कि ऐसा नहीं है कि वो केवल बुरा करेगा,
उसके कुछ प्लस भी होंगे, उसके कुछ फायदे भी होंगे। पाप ग्रहों पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ है और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक जीवन आपका बेहतर होगा। हनुमान जी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वृषभ राशि, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मिथुन राशि, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, करियर में सुधार होगा, लेकिन आज परिवार में शांति बनाए रखिएगा। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। अब पहला जो पाप ग्रह है वो है शनि। तो पहले ये समझते हैं कि शनि का पाप प्रभाव क्या है, और शनि अगर शुभता दे तो जीवन में किस तरह का पुण्य आता है, किस तरह की शुभता आती है। देखिए, शनि का दुष्प्रभाव अगर है, शनि का पाप प्रभाव अगर जीवन में है, तो व्यक्ति आलसी, लापरवाह और स्वभाव से कठोर होता है। शनि का पाप प्रभाव अगर जीवन पर है तो व्यक्ति क्षुद्र देवताओं की उपासना करता है, बिना साफ सफाई के रहता है, और निम्न कार्यों की तरफ, जो काम अच्छे नहीं हैं, घटिया काम हैं, थोड़े से लाभ के लिए घटिया कार्यों में या निम्न कार्यों की तरफ जाता है। लेकिन यही शनि जब शुभ परिणाम देता है तो व्यक्ति अनुशासित होता है, डिसिप्लिन्ड होता है, सिस्टम से तरीके से काम करता है। ध्यान और धर्म के माध्यम से ईश्वर की तरफ चलता है। शनि की शुभता होगी तो व्यक्ति जीवन में हर जगह अनुशासित होगा, डिसिप्लिन में पूजा उपासना करके ईश्वर की तरफ चलेगा, लोगों को सन्मार्ग दिखाएगा और सत्य के रास्ते पर चलेगा, सत्य की स्थापना करेगा। देखिए, शनि की शुभता इतनी है कि अगर शनि शुभता वाला हो
तो आप दुनिया में एक बड़ा नाम पैदा करके जाते हैं और आने वाली पीढ़ियां उस रास्ते पर चलती हैं। अगर आपको अपने जीवन में शनि का शुभ प्रभाव बढ़ाना है तो हनुमान जी की उपासना करिए, नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा करिए, जितना संभव हो भोजन का, वस्त्र का और धन का दान करिए, जितना आप अफोर्ड कर सकें। अगर नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा करें, निर्बलों और निर्धनों को दान करें, तो शनि का शुभ प्रभाव आपके जीवन में बढ़ेगा। राहु और केतु पर भी आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, वाद विवाद से बचाव करें, जल्दबाजी में निर्णय ना लें, लाल फल का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। सिंह राशि, धन लाभ के योग हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, यात्रा के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में लाभ होगा, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। अब दूसरे पाप ग्रह की बात करते हैं जिसका नाम है राहु। राहु का पाप प्रभाव क्या है और राहु अगर शुभता दे तो जीवन में क्या पुण्य काम करवाएगा, देखिए। राहु एक बड़ा रहस्यमयी ग्रह है और आज के समय में राहु का प्रभाव लोगों के ऊपर सबसे ज्यादा है। अगर राहु का पाप प्रभाव हो जीवन में तो ये चरित्र पतन की तरफ और नशे की तरफ ले जाता है। राहु किसी व्यक्ति को षड्यंत्र करने की और दूसरों को परेशान करने की आदत देता है। राहु अगर निगेटिव हो तो आपको सैडिस्टिक प्लेजर मिलेगा, दूसरों के कष्ट में आपको चैन मिलेगा। और राहु अगर निगेटिव है तो ऐसा व्यक्ति धर्म की, आध्यात्म की बुराई करेगा, आलोचना करेगा
और जो लोग पूजा उपासना ध्यान साधना करेंगे उनको मूर्ख कहकर उनका मजाक उड़ाएगा। राहु अगर कुंडली में शुभ प्रभाव में हो तो व्यक्ति जन्म से सिद्ध होता है, जन्म से उसके अंदर आध्यात्मिकता आ जाती है। राहु अगर शुभता दे तो व्यक्ति की अतींद्रिय क्षमता इंट्यूटिव पावर बहुत ताकतवर होती है। ऐसे लोगों को भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान हो जाता है। और राहु अगर शुभ प्रभाव दे तो ऐसी दशा में व्यक्ति आध्यात्म के नए रास्ते पर चलता है, कुछ ऐसा करके ईश्वर को पाने की कोशिश करता है जिसको बाकी लोग न तो जान सकते हैं न तो समझ सकते हैं। राहु की शुभता आदमी को परंपरा से हटाती है, आदमी रूढ़िवादिता को नहीं मानता, नए रास्ते पर चल के एक बहुत बढ़िया रास्ता बनाता है। अगर आप चाहते हैं कि राहु का शुभ प्रभाव आपके जीवन में बढ़े, सबसे पहले अपना खान पान सात्विक करिए, मांस मदिरा का प्रयोग करना बिल्कुल बंद कर दीजिए और जितना संभव हो शिव जी की उपासना करिए। रोगियों और दिव्यांगों की यानी

पाप प्रभाव क्या है, पुण्य प्रभाव क्या है, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, रुका हुआ काम आपका बन जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वृश्चिक राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, महत्वपूर्ण काम टाल दें, परिवार में शांति बनाए रखें। लाल फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। धनु राशि, मानसिक तनाव समाप्त होगा, करियर में नए अवसर मिलेंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं। हनुमान जी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब तीसरे पाप ग्रह की बात करते हैं जो है केतु। केतु का पाप प्रभाव क्या है और अगर केतु शुभता दे तो इसका पुण्य असर कैसा पड़ता है जीवन पर। देखिए, अगर केतु का पाप प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है तो व्यक्ति धर्म का, ईश्वर का, आध्यात्म का विरोधी हो जाता है। बहुत सारे लोग होते हैं ना, कहते हैं कि भैया मेरी पत्नी पूजा नहीं करेगी या खुद भी नहीं करेंगे, मंदिर भी नहीं जाएंगे, भगवान की तरफ देखेंगे भी नहीं, सोचेंगे भी नहीं और दूसरों को करने भी नहीं देंगे, वो केतु का अशुभ प्रभाव है। और जिनका केतु अशुभ होता है ना, वो भगवान को वैसे तो नहीं मानेंगे लेकिन जीवन में कुछ भी होगा भगवान को ही कोसेंगे, यानी जीवन की हर समस्या के लिए ईश्वर को जिम्मेदार ठहराएंगे और कभी कभी उल्टे सीधे प्रयोग करेंगे। मोबाइल पर रील्स देखकर, उल्टी सीधी किताब पढ़कर, उल्टे सीधे तंत्र मंत्र के प्रयोग करेंगे और गड़बड़ हो जाने पर मेंटली डिस्टर्ब भी हो जाएंगे। जिनका केतु निगेटिव होता है ना, ऐसे लोग उल्टे सीधे तंत्र मंत्र के रास्ते पर चलते हैं बिना किसी से पूछे जाने समझे हुए, पढ़कर या देखकर, और उसके बाद वो मेंटली डिस्टर्ब भी हो सकते हैं। अब अगर केतु कुंडली में शुभ है, पुण्य की तरफ आपको ले जाता है तो आप जीवन में चाहें या न चाहें बहुत सारी तीर्थ यात्राएं करेंगे, बहुत सारे तीर्थ स्थानों पर जाएंगे। केतु अगर आपका शुभ परिणाम दे तो आपको जीवन में सद्गुरु जरूर मिलेंगे, ऐसा गुरु मिलेगा जो वास्तव में ईश्वर तुल्य हो। और केतु अगर शुभ है तो व्यक्ति के अंदर संतत्व होगा,
ऐसा व्यक्ति संत समान होगा। और केतु अगर शुभ होगा तो जीवन में अद्भुत आध्यात्मिक उपलब्धि मिलेगी और जीवन में मुक्ति और मोक्ष भी प्राप्त होगा। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि केतु द्वादश में हो तो मोक्ष देता है। ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। केतु अकेला द्वादश में बैठ के मोक्ष नहीं देगा। शनि का एंगल या अष्टम भाव का एंगल जब तक उसमें ऐड नहीं होगा तब तक द्वादश में बैठा केतु मुक्ति मोक्ष नहीं देगा। हालांकि द्वादश में केतु के बैठने पर आध्यात्मिक स्पार्क आपके अंदर हो सकता है। अगर आप अपने जीवन में केतु की शुभता बढ़ाना चाहते हैं तो नियमित रूप से स्नान करिए और जब मौका मिले तीर्थ स्थानों की, शुभ और पवित्र जगहों की यात्रा करें और जितना संभव हो भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। देखिए, पाप ग्रह केवल जीवन में नुकसान करेंगे, केवल अशुभता पैदा करेंगे, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। पाप ग्रह अगर कुंडली में बेहतर स्थिति में बैठे हुए हैं तो ये आपके जीवन में शुभता लाएंगे। इनके अंदर भी शुभता लाने की क्वालिटी होती है। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं बताऊं कि पाप ग्रहों की जो शुभता होती है वो लंबे समय तक बनी रहती है, जीवन भर आपका साथ निभाती है। जो नाम के शुभ ग्रह हैं इनकी शुभता ऊपर नीचे होती रहती है। जिनको आप बहुत शुभ समझते हैं, बृहस्पति, शुक्र, बुध या शुभ चंद्रमा, अगर ये जीवन में शुभ परिणाम देते हैं तो इनके शुभ परिणाम बहुत लंबे समय तक जीवन में काम नहीं करते, थोड़े थोड़े समय पर ये ऊपर नीचे होने लगते हैं। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल। मकर राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, अतिथि का आगमन होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। कुंभ राशि, धन लाभ के योग हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा, काम की अधिकता रहेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। मीन राशि, पारिवारिक समस्या परेशान करेगी, ऑफिस में विवादों से बचें, आज वाहन सावधानी से चलाएंगे, लाल फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं।
ऐसा कहा जाता है कि गंगा नदी का जल आप कहीं से भी लेकर अपने घर आ सकते हैं, लेकिन वाराणसी से बनारस से गंगा का जल नहीं लाना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, जल में तमाम तरह के जीव रहते हैं और ऐसा माना जाता है कि बनारस के गंगा जल में जो जीव रहते हैं वो अपने पुण्य की वजह से वहां पड़े हुए हैं और मृत्यु के बाद उनको मुक्ति और मोक्ष मिलेगा, इसीलिए बनारस से जल लाने पर उसमें जीव भी आ सकते हैं और आप उनकी मुक्ति मोक्ष का अधिकार छीन सकते हैं। इसीलिए दुनिया में किसी भी गंगा जल से आप जल ले आइए, गंगा नदी से, लेकिन बनारस की जो गंगा नदी है वहां से जल लाने की मनाही है। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 2, धन की स्थिति में सुधार होगा। नंबर 3, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 4, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 5, परिवार में कोई मांगलिक कार्य होगा। नंबर 6, करियर में कुछ बदलाव होगा। नंबर 7, चोट चपेट से बचाव करें। नंबर 8, रिश्तों की समस्या से बचें। नंबर 9, धन लाभ के योग बन रहे हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो गुड़ खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है तो भी गुड़ खाकर घर से जाइए, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो एक बार हनुमान चालीसा पढ़ के जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है इलाज के लिए, तो सिंदूर का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, वस्त्र, तो नारंगी रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ है और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा।

राशि वालों के लिए हर कार्य में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज का दिन मंगलमय होगा। धनु राशि वालों के लिए धन का लाभ होगा, करियर में सफलता मिलेगी। आज सावधान रहना होगा। मीन राशि के लोगों को सेहत बिगड़ सकती है, करियर में दिक्कत आ सकती है। कार्यक्रम के अंत में अब जान लेते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। आज अष्टमी तिथि है, मंगलवार की अष्टमी सिद्धिदा होती है, यानी मंगलवार की अष्टमी विशेष शुभ होती है। आज नया और शुभ कार्य कर सकते हैं। आज थोड़ा समय निकाल के शाम के समय शिव मंदिर में दीपक जलाइएगा, आपको लाभ होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

ईरान पर अमेरिका का ताबड़तोड़ हमला लगातार 10वीं रात जारी अमेरिकी कार्रवाई में कई नए हमले। अमेरिकी सेना ने ईरान के कई इलाकों और द्वीपों को निशाना बनाया। ईरानी मीडिया प्रेस टीवी ने दी इसकी जानकारी। ईरानी मीडिया प्रेस टीवी के मुताबिक बंदर अब्बास, चाबहार, कोणार्क, सिरिक, शिराज और इस्फहान में धमाके सुने गए। ईरानी टीवी के मुताबिक सेंट्रल ईरान के इस्फहान में दो धमाके हुए। इसके अलावा खोमीन शहर में एक इंडस्ट्रियल यूनिट पर भी अमेरिका ने हमला किया। ईरान पर हमले को लेकर के अमेरिकी सेना ने बयान दिया कि कमांडर इन चीफ के निर्देश पर यूएस की सेना ईरान के खिलाफ हमले का नया दौर शुरू करने जा रही है। अमेरिकी सेना ने कहा कि इन हमलों का मकसद ईरान की उन सैन्य क्षमताओं को और कमजोर करना है जिनका इस्तेमाल हॉर्मुज में कमर्शियल जहाजों पर हमले के लिए किया जाता है। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए एक बार फिर जॉर्डन पर हमले किए। हमले को लेकर के जॉर्डन की सेना ने बयान जारी करते हुए कहा कि 3 ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया। मिडल ईस्ट में अमेरिकी बेसों को लेकर आईआरजीसी ने बड़ा दावा किया है। बहरीन, कुवैत में अमेरिकी ठिकानों को भारी नुकसान हुआ है। आईआरजीसी ने कहा कि बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। बहरीन के अल साखिर एयरपोर्ट पर अमेरिकी ड्रोन मरम्मत, रखरखाव, शेड नष्ट कर दिए गए। ईरान युद्ध पर न्यूयॉर्क टाइम्स से बड़ी खबर है कि घायल सैनिकों की संख्या सार्वजनिक नहीं कर रहा अमेरिका। रिपोर्ट के मुताबिक हमलों में कई अमेरिकी सैनिक जख्मी हुए हैं। आज मानसून सत्र का दूसरा दिन है। आज भी हंगामे के आसार हैं। पेपर लीक, चढ़ावा चोरी मामले को लेकर के दोनों सदनों में गतिरोध के आसार। कोलकाता में आज कांग्रेस की रैली है। पूर्व नेताओं को पार्टी में वापस आने का न्योता दिया जाएगा। बिहार में कांग्रेस ने छात्रों की गूंज महारैली का ऐलान किया है। इस रैली में राहुल गांधी शामिल होंगे। सोनम वांगचुक ने कहा कि अनशन नहीं तोड़ूंगा। शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की। दिल्ली हाईकोर्ट में सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि की याचिका पर सुनवाई को तैयार हो गया है। वांगचुक की हेल्थ रिपोर्ट मांगी गई, आज फिर अदालत में सुनवाई होगी। सोनम वांगचुक मामले में आज दिल्ली हाईकोर्ट में फिर से सुनवाई होगी, जहां दिल्ली एम्स डायरेक्टर को रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सबसे युवा विरोधी प्रधानमंत्री हैं। राहुल ने कहा कि पेपर लीक का मुद्दा उठाने वाले छात्रों को पीटा जा रहा है। सीजेपी के प्रोटेस्ट को लेकर राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पेपर लीक करने वाले अपराधी आजाद, एक इस्तीफा भी नहीं ले सकते। केंद्र सरकार पर भड़के अखिलेश यादव, कहा यह सरकार नहीं अहंकार है, छात्रों के साथ प्रताड़ना क्यों। अखिलेश यादव का केंद्र पर तंज, शायरी करते हुए पूछा कैसे कहेंगे ये वतन आजाद है। पेपर लीक के खिलाफ सीजेपी के प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने। बोले सुबह आया था बातचीत का प्रस्ताव, अच्छे माहौल में बातचीत हुई है, धरना खत्म करने की अपील की गई। सीजेपी के प्रतिनिधि सौरभ दास ने कहा कि ठोस आश्वासन नहीं मिला, 3 मांगों को पूरा करने का ज्ञापन भी उन्होंने सौंपा। सीजेपी ने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा। सोनम वांगचुक की तत्काल रिहाई और नीट 2026 से जिन अभ्यर्थियों ने आत्महत्या की उनके परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की मांग की है। भारी हंगामे के बाद अब दिल्ली में हालात लगभग सामान्य हो चुके हैं। बच्चों से मारपीट, 50 लोगों के घायल होने की खबर का पुलिस ने खंडन किया। आज प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में एनडीए का मंगल मिलन बैठक होने वाला है। एनसीपीआई के नए राज्यसभा सांसदों का स्वागत भी हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक चुने गए प्रधानमंत्री बनने पर इस बैठक में बधाई दी जाएगी। एनसीपीआई के मंगल मिलन में शामिल होने की संभावना कम है, लेकिन आप छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए नए राज्यसभा सांसदों का स्वागत किया जाएगा। आज यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक भी होने वाली है। सीएम योगी की अध्यक्षता में सुबह 10:30 बजे लखनऊ में बैठक होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज बहराइच और श्रावस्ती के दौरे पर होंगे। 748 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ होगा। देशभर के किसान संगठनों ने आज दिल्ली में महापंचायत बुलाई है। भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में दिल्ली में महापंचायत होनी है। दिल्ली के किसान घाट पर एक महापंचायत बुलाई गई है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, एमपी, महाराष्ट्र के किसान इसमें मौजूद रहेंगे। आज डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया का दिल्ली दौरा है। कर्नाटक में कैबिनेट की लिस्ट फाइनल कराने के लिए दोनों नेता दिल्ली आ रहे हैं। बुधवार को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। बिहार में शराबबंदी के बाद भी जुए पर अब सरकार की सख्ती। जुआ सट्टेबाजी के खिलाफ विधानसभा में कानून लाएगी राज्य सरकार। बिहार के विधानसभा के मानसून सत्र में बिहार जुआ प्रतिषेध बिल पास कराएगी सम्राट सरकार। चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। सीजेआई ने एसआईटी के पुनर्गठन का आदेश दिया है। सीनियर अधिकारी की अगुवाई में हो जांच, अब अगले हफ्ते होगी सुनवाई। आज संभल की शाही मस्जिद को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। मस्जिद के सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका पर अदालत में सुनवाई होगी।
यूपी के बलरामपुर से एटीएस ने आईएसआई एजेंट को गिरफ्तार किया। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई एजेंट शहरोज अहमद गिरफ्तार। आरोपी पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट के संपर्क में था। यासीन मलिक को मौत की सजा पर आज सुनवाई है। एनआईए की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। मध्य प्रदेश विधानसभा में यूसीसी बिल पेश कर दिया गया है। एमपी विधानसभा में यूसीसी बिल पर आज चर्चा होगी। आज एक दिवसीय पटना यूनिवर्सिटी के सभी कॉलेजों में हड़ताल है। पटना विश्वविद्यालय के कर्मचारी संघ ने यह हड़ताल बुलाई है। नवादा में शराब माफिया के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर बड़ी कार्रवाई की गई। फरार आरोपी के संपत्ति को कुर्क किया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को मिलेगा लोकमान्य तिलक पुरस्कार। 1 अगस्त को पुणे में आयोजित समारोह में गृहमंत्री अमित शाह देंगे पुरस्कार। देश की सुरक्षा में कूटनीति के योगदान का बड़ा सम्मान है। नई दिल्ली में एससी देव होमियो रिसर्च लेबोरेटरी की वर्षगांठ समारोह में गोवा के पूर्व राज्यपाल समेत देशभर के कई विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। सिक्किम में लैंडस्लाइड के बाद निर्माणाधीन सुरंग का हिस्सा गिरा। 25 मजदूर फंसे, 7 की मौत। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। असम में बाढ़ की स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है। 16 जिलों में 3,62,000 से अधिक लोग प्रभावित हैं। 5 लोगों की अब तक मौत हो गई है। 2 लोग अभी भी लापता है। असम में 794 गांव जलमग्न है। साथ ही 19,000 हेक्टेयर से ज्यादा फसल बर्बाद हो गई है। राहत बचाव कार्य जारी है। असम के जोरहट में बाढ़ बारिश का कहर है। लगातार हो रही बारिश के कारण कई नदियां उफान पर हैं। कई इलाके जलमग्न हुए। आवाजाही बुरी तरह प्रभावित। जोरहट के अलावा शिवसागर चराईदेव में भी बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित लोग हैं। प्रमुख उनकी सहायक नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। तमिलनाडु के वेल्लोर शहर के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। करगिल में बादल फटने से तबाही मची। फ्लैशपल में पेड़, वाहन और खेत बह गए। बाढ़ बारिश से अब तक 12 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भूस्खलन से मिट्टी का घर ढह गया। मलबे में दबने से 8 लोगों की मौत हो गई। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। भारी बारिश के कारण जम्मू श्रीनगर NH44 पर यातायात बाधित हो गया। अधिकारियों ने यात्रियों से जोखिम भरे मार्गों से बचने की अपील की है। जम्मू कश्मीर में 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ गया। लोगों से नदी किनारे से दूर रहने की अपील की गई है। भारी बारिश के बीच जम्मू भद्रवाह हाईवे पर बड़ा हादसा। चलती गाड़ी पर गिरे बोल्डर, बस समेत कई वाहन चपेट में आए। 2 की मौत, कई घायल। जम्मू कश्मीर के राजौरी में मुनावर नदी से भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने एक शव को बाहर निकाला। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। राजौरी में भारी बारिश से नदी में फंसे मवेशी। लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया। प्रशासन के लोगों ने नहीं जाने की अपील की है। बाढ़ वाले इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पहलगाम में सीआरपीएफ ने गर्भवती महिला की जान बचाई। समय रहते अस्पताल पहुंचाने से डिलीवरी सुरक्षित हुई। उत्तराखंड के देहरादून हरिद्वार टिहरी में भारी बारिश का रेड अलर्ट। टपकेश्वर मंदिर के पास तमसा नदी में उफान। मंदिर परिसर जलमग्न। भारी बारिश के चलते स्कूल बंद किए गए। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में भारी बारिश के रेड अलर्ट के बीच प्रशासन पूरी तरह सतर्क। स्कूल बंद रखने के आदेश। देश के कई राज्यों में मॉनसून एक्टिव हुआ। मैदानी इलाकों में गर्मी और उमस से भरी राहत मिलने की उम्मीद। बारिश से प्रभावित 6 राज्यों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया। उत्तर प्रदेश और बिहार के कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना। मेघालय के लिए भी मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा इलाकों के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी। पश्चिमी तटीय इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना। राजस्थान के 24 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी। जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर में हो सकती है भारी बारिश। दिल्ली एनसीआर में भी मौसम ने मिजाज बदला। कई इलाकों में बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। बिहार के वैशाली में देर रात पूर्व मुखिया के घर के पास बमबाजी और फायरिंग हुई। अज्ञात बदमाशों की इलाके में दहशत फैलाने की कोशिश। बेगूसराय में डाकघर और पासपोर्ट कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी। 3 मंजिला बिल्डिंग को खाली कराया गया। पटना में शराब तस्करी के लिए रैपिडो का इस्तेमाल कर रहे तस्कर। पुलिस ने रैपिडो कार से विदेशी शराब बरामद की। तस्कर कार से कूदकर भागा। मुजफ्फरपुर में रिटायर बैंक कर्मी और पत्नी की चाकू गोदकर हत्या। टेप और ग्लव्स लेकर पहुंचे थे कातिल। बिजनौर में चारा काटने जंगल के बुजुर्ग महिला पर तेंदुए ने हमला किया। बुजुर्ग महिला की मौके पर ही मौत। पटना में भारी बारिश से अस्पताल में घुसा पानी। मरीजों की बड़ी परेशानी। कई विभाग जलमग्न। ऑर्थो विभाग में सांप देखे जाने से हड़कंप। मोतिहारी में नेपाल से छोड़े गए पानी से बाढ़ आई। नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई इलाके जलमग्न हुए। लखनऊ के जवाहर भवन की 4th मंजिल की कैंटीन में आग लग गई। 15 दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। कोई हताहत नहीं। पुणे में इलेक्ट्रिक स्कूटर में चार्जिंग के दौरान भीषण आग लग गई। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में बारिश के दौरान ट्रक और कार के बीच जोरदार टक्कर हुई। दुर्घटना में 3 लोग घायल। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में चलते ट्रक का ब्रेक फेल। पहले पिकअप स्कूटर को टक्कर मारी। हादसे के बाद लंबा जाम लग गया। गुरुग्राम में रिटायर्ड एयर मार्शल से 2,68,00,000 की ठगी का भंडाफोड़। दुबई से चल रहा था नेटवर्क, 6 गिरफ्तार। जालंधर में ट्रैक्टर ट्रॉली ने साइकिल सवार को कुचला। हादसे में शख्स की मौके पर ही मौत। राजस्थान के टोंक में शराब के ठेके में घुसा तेंदुआ। अफरा तफरी मची। अचानक हमले का पूरा वाकया सीसीटीवी में कैद हुआ।
समस्तीपुर में एक तरफा प्यार में छात्रा की हत्या, धमकी देने के अगले दिन युवक ने मारी गोली। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के लोगों ने थाने का घेराव किया। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर की गुल्लक तोड़कर चोरी की गई, नोटों से भर लिया बैग, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। सवाईमाधोपुर में दवा वापस नहीं लेने पर विवाद हो गया, ग्राहक ने मेडिकल संचालक पर कैंची से हमला किया, दुकानदार घायल हो गया। गुजरात के आनंद में 4 साल की मासूम से दुष्कर्म का मामला, हत्या के आरोपी सुरेश परमार की पुलिस मुठभेड़ में मौत, आरोपी ने हिरासत से भागने के दौरान पुलिस पर चाकू से हमला किया। गुजरात के जामनगर में फैक्ट्री में कामकाज के दौरान भट्टी में विस्फोट, 3 मजदूर झुलसे, 2 की हालत गंभीर। गुजरात के जूनागढ़ में अवैध बायोडीजल रैकेट का भंडाफोड़, नगर निगम ने 3 ठिकानों पर छापेमारी की, 2,13,00,000 रुपए का अवैध बायोडीजल जब्त किया, 8 गिरफ्तार। फिल्म रामायण में जटायु के किरदार में नजर आएंगे अनुपम खेर, रावण के साथ युद्ध करते नजर आएंगे। 8 अगस्त को बेंगलुरु में होगा फिल्म टॉक्सिक का ट्रेलर जारी, 26 अगस्त को फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक देगी। द ओडिसी का बॉक्स ऑफिस पर तूफान देखने को मिल रहा है, 3rd दिन भी डबल डिजिट में कमाई हुई, 60 करोड़ के पार हुआ कलेक्शन। आप लोगों की तबीयत कैसी है, सलमान खान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, बीमार होने की खबरों से खंडन किया। तारक मेहता के निर्माता आसिफ मोदी ने त्रियुगी नारायण मंदिर में शिव पार्वती विवाह स्थल पर विशेष पूजा की, पुत्र के विवाह के लिए पौराणिक स्थल भी देखा। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने मॉस्को में उत्तर कोरिया के विदेश मंत्री चो इसन से मुलाकात की, दोनों नेताओं के बीच रिश्तों को मजबूत करने पर बात हुई। एंडी बर्नहम बने ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री, के स्टामर की जगह संभाला पद, किंग चार्ल्स की सहमति के बाद बने प्रधानमंत्री। एंडी बर्नहम के पीएम बनने के बाद ब्रिटिश सरकार में इस्तीफे की झड़ी लग गई, ब्रिटेन के रक्षा मंत्री जॉन हिलो ने अपने पद से इस्तीफा दिया।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स। और अब लाइन लाइना डेट्स, इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
2: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
3: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
4: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
5: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी पर ऐसी सियासत चोरी है कि एक तरफ जांच एजेंसियां चोरों का पूरा हिसाब पता नहीं लगा पाई है, दूसरी तरफ दिल्ली में चढ़ावा चोरी पर सियासत चोरी जबरदस्त है।
1: ये सरकार नहीं अहंकार है, बीजेपी के लोग आज से नहीं घोटाला कर रहे हैं, इनकी हमेशा ही कोशिश रहती है घोटाला करने।
2: राम मंदिर में चोरी क्यों हो रही है, तो क्या ये प्रधानमंत्री का जवाब है? शर्म आती है ऐसे प्रधानमंत्री।
3: इतना पाप करने के बाद मानसून का भगवान भी बख्शेगा नहीं हमें, लूट मची है, चंदा चोरी।
4: सरकार इतनी कठोर, इतनी निष्ठुर सरकार है, ये अपने आगे किसी की चलने नहीं देती।
5: उन्होंने रखवाली नहीं, चोरी नहीं है, डकैती।
0: अयोध्या में हुई चढ़ावा चोरी पर इस सियासी शोर के बीच जांच एजेंसियां तमाम खुलासे कर रही हैं, और ये खुलासे खुद आरोपियों से पूछताछ के बाद हुए हैं। एक दिन पहले करीब 40 घंटे तक पुलिस रिमांड में रहे टिन्नू यादव और उसके भतीजे मनीष यादव से हुई पूछताछ में पुलिस को बड़े राज की बातें पता चली है। 39 घंटे की पूछताछ में ही पता चला है कि अप्रैल 2026 में टिन्नू यादव ने सिफारिश कर अपने भतीजे मनीष यादव को नौकरी दिलवाई थी, जिसके बाद 15 अप्रैल 2026 से मनीष यादव को चढ़ावे की गिनती के काम में लगाया गया था। महीना भर के अंदर मई के दूसरे हफ्ते में मनीष यादव ने अविनाश शुक्ला के साथ मिलकर पहली बार चोरी की। उससे पहले मनीष यादव अनुकल्प लवकुश

0: और अविनाश को चोरी में मदद कर रहा था। ये भी पता चला है कि नाइट शिफ्ट के दौरान मनीष यादव को चोरी की रकम के साथ बाइक पर बैठाकर टिन्नू यादव ही बिना चेकिंग मंदिर से बाहर ले जाया करता था। दोनों आरोपियों की निशानदेही पर बुलेट गाड़ी और एक कार पुलिस ने बरामद भी की है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अब तक की जांच में 3 कारों के साथ एक बुलेट की बरामदगी की गई है। उसके अलावा शेयर मार्केट में निवेश के दस्तावेजों से लेकर सोने की कुछ चीजें भी बरामद की गई है। सूत्रों के मुताबिक टिन्नू ने बताया कि किस गणना कर्मी की ड्यूटी कब लगाई जाएगी, यह वही तय करता था। उसी हिसाब से प्रभारी सुभाष श्रीवास्तव ड्यूटी लगाता था। उसके बाद रमाशंकर, अनुकल्प, लवकुश, मनीष, करुणेश और अविनाश आसानी से रकम पार करते थे। पता चला है कि जब भी गणना कक्ष में कोई चेकिंग की सुगबुगाहट होती थी तो टिन्नू यादव ही इस चोर गैंग को अलर्ट कर दिया करता था। 4 जून को चोरी के शक में कर्मियों की तलाशी लेने की बात भी टिन्नू ने लीक की थी, जिसके बाद अनुकल्प मिश्रा ने बाथरूम में 2,25,000 रुपए छिपाए थे।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
1: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions. Hexa Organic, radiant skin and nourished hair, pure Ayurvedic beauty.

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: वीकेंड पर परिवार के साथ खाना खाना किसे पसंद नहीं होता। मन पसंद रेस्टोरेंट में बैठकर लजीज व्यंजनों का स्वाद लेना हर किसी को सुकून देता है, लेकिन कई बार खाने के बाद बिल हाथ में आते ही मूड खराब हो जाता है। इसकी वजह बनता है सर्विस चार्ज, जिसे लेकर लंबे समय से विवाद चलता रहा है। अब इस मामले में सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी CCPA ने सख्ती दिखाते हुए CCPA ने सर्विस चार्ज से जुड़ी गाइडलाइन के उल्लंघन के मामलों में 41 रेस्टोरेंट्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। इनमें चायोस और बारबीक नेशन जैसे बड़े ब्रांड्स भी शामिल हैं। नेशन कंज्यूमर्स हेल्पलाइन पर मिली शिकायतों के आधार पर ये कार्रवाई की गई है। उपभोक्ता संगठनों और ग्राहकों की तरफ से लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कई जगहों पर ग्राहकों की सहमति के बिना बिल में सर्विस चार्ज जोड़ा जा रहा है। इसी बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने 28 मार्च 2025 को CCPA की गाइडलाइन को बरकरार रखा था। इसके बावजूद कुछ प्रतिष्ठानों के खिलाफ नियमों के उल्लंघन की शिकायतें सामने आई, जिसके बाद रेगुलेटर ने कार्रवाई तेज कर दी। गाइडलाइन के मुताबिक सर्विस चार्ज स्वैच्छिक है, जिसे अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत भ्रामक और अनुचित कारोबारी गतिविधियों पर कार्रवाई का प्रावधान है। सरकार का रुख भी इस मुद्दे पर एकदम साफ है। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सर्विस चार्ज देना या न देना पूरी तरह ग्राहक की इच्छा पर निर्भर करता है और इसे जबरन नहीं वसूला जा सकता। इसी कड़ी में CCPA ने कई मामलों में अंतिम आदेश जारी किए हैं। इस कार्रवाई में सबसे चर्चित मामला चायोस का है। CCPA के आदेश के मुताबिक कंपनी पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। संबंधित ग्राहक से वसूला गया सर्विस चार्ज लौटाने और सभी आउटलेट्स की बिलिंग प्रक्रिया को गाइडलाइंस के हिसाब से बनाने के निर्देश दिए गए हैं। चायोस के अलावा भी कई प्रतिष्ठानों के खिलाफ अंतिम आदेश जारी किए गए हैं। इनमें पटना का कैफे ब्लू बॉटल और चाइना गेट रेस्टोरेंट, अहमदाबाद का फू रेस्टोरेंट, एल ओपेरा फ्रेंच बेकरी और जोरो द लग्जरी नाइट क्लब जैसे नाम शामिल हैं। वहीं दूसरे मामलों में जांच और सुनवाई की प्रक्रिया जारी है। CCPA की गाइडलाइन साफ कहती है कि सर्विस चार्ज ना देने पर किसी ग्राहक को सेवा देने से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर किसी ग्राहक को लगता है कि उससे नियमों के खिलाफ सर्विस चार्ज वसूला गया है तो वो नेशन कंज्यूमर हेल्पलाइन या संबंधित उपभोक्ता मंच पर शिकायत दर्ज करा सकता है। आज तक ब्यूरो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

सदन हंगामे के आसार, पेपरली का चढ़ावा चोरी पर घेरने के लिए विपक्ष तैयार, पूरे सेशन में 7 अहम बिल लाने वाली है सरकार। सत्र शुरू होने से पहले आज एनडीए के संसदीय दल की बैठक, सभी सांसद होंगे शामिल, मोदी को दी जाएगी रिकॉर्ड समय तक पीएम पद संभालने की बधाई। सोनम वांगचुक उपवास मामले पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में फिर से सुनवाई, प्रदर्शन के दौरान 118 पुलिस वाले और 60 आंदोलनकारी घायल हुए, कई सरकारी वाहनों को भी पहुंचा नुकसान। सिक्किम की निर्माणाधीन टनल पर लैंडस्लाइड, एंट्री गेट बंद होने से अंदर फंसे 7 मजदूरों की मौत, 20 अब भी फंसे, गैस की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में आ रही है परेशानी। लगातार 10 दिन से अमेरिका के ईरान पर ताबड़तोड़ हमले जारी, बंदर अब्बास, चाबहार, इस्फहान में धमाके की आवाज, ईरान ने भी जॉर्डन के अमेरिकी बेस को बनाया निशाना, 2 की मौत की पुष्टि।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पूजा पराश। सुबह के 8 बजे और अब वक्त हो चला है खास बुलेटिन सुपर 8 का। इस बुलेटिन में तमाम अहम खबरें आपके सामने होंगी। आपको बताएंगे कि आखिर क्यों संसद के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। ये भी बताएंगे कि संसद में आज एनडीए सांसदों के मंगल मिलन में आखिर क्या होने वाला है। खबर जंतर मंतर से जुड़ी भी होगी। आपको बताएंगे कि सीजेपी का आगे का पूरा प्लान क्या होगा। साथ ही दिल्ली में आज किसानों की महापंचायत क्यों हो रही है, इस पर भी होगी बात। खबर सिक्किम से, जहां पर टनल में जिंदगी की जंग अभी भी फिलहाल जारी है। वहीं ईरान पर अमेरिका के ताजा हमले पर भी एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। अमेरिकी ठिकानों पर ईरानी पलटवार की खबर भी पूरी डिटेल के साथ आपको देंगे। और ये भी बताएंगे कि पहाड़ों में कहां पर मुसीबत बनकर बादल फिलहाल बरस रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सिक्किम की खबर के साथ। दरअसल सिक्किम से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर नामची जिले में हुए लैंडस्लाइड में अब तक 7 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। सोमवार की दोपहर निर्माणाधीन समुद्रगंज और टनल के गेट पर यह पूरा हादसा हुआ। एनएचपीसी के तीस्ता हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से जुड़े टनल के पास लैंडस्लाइड की वजह से लगभग 25 मजदूर टनल के अंदर ही फंस गए। भूस्खलन के बाद टनल का एंट्री पॉइंट मलबे से बंद हो गया और फंसे हुए मजदूरों को वहां से बाहर निकालना पड़ा, जिसके लिए तुरंत प्रशासन ने यह मोर्चा संभाला, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। आशंका यह जताई जा रही है कि टनल के अंदर मिथेन गैस का खतरा है और इसी वजह से बचाव अभियान की रफ्तार थोड़ी सुस्त है। अब कई घंटे के ऑपरेशन के बाद आज सुबह तक 7 लोगों की मौत की पुष्टि भी हुई है। वहीं ताजा जानकारी के मुताबिक सभी शवों को गंगटोक के अस्पतालों में भी भेज दिया गया है। तो इस टनल के अंदर लगभग 25 मजदूर फंस गए और उनको बचाने का पूरा प्रयास किया गया है। मोर्चा संभाल लिया गया समय रहते हुए और कुछ लोगों को फिलहाल अस्पताल में भी भेज दिया गया है। तो कुल 25 मजदूरों के फंसे होने की खबर सामने आई। वहीं 7 लोगों की अब फिलहाल मौत की पुष्टि भी हो चुकी है और आज इस रेस्क्यू ऑपरेशन का दूसरा दिन है। ऐसे में एनडीआरएफ एसडीआरएफ पुलिस दमकल कर्मी सब वहां पर मौजूद है और लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। तीस्ता वीआई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जहां पर यह पूरा हादसा हुआ, 25 मजदूर वहां पर फंस गए और 7 लोगों की मौत की पुष्टि अब फिलहाल हो चुकी है। ये रिपोर्ट के जरिए पूरी खबर जानिए।
1: सिक्किम के नामची में बड़ा हादसा, निर्माणाधीन टनल के एंट्री गेट पर लैंडस्लाइड, गेट बंद होने से टनल में फंसे मजदूर। ये तस्वीरें सिक्किम के नामची में बन रही टनल के अंदर की है, जब लैंडस्लाइड के बाद वहां काम कर रहे मजदूर फंस गए। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि टनल के अंदर कितना अंधेरा है और पानी और मलबा भी साफ देखा जा सकता है। टनल के अंदर फंसे मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन टनल के अंदर गैस होने की वजह से राहत और बचाव कार्य में काफी मुश्किलें आ रही हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी टीम के कई बचाव कर्मियों को अंदर जाने के दौरान चक्कर आए और कुछ बेहोश भी हो गए। लैंडस्लाइड के बाद जमीन और चट्टानों की परतें खिसकने से गैस बाहर निकली। इसके अलावा टनल का संकरा रास्ता और अंधेरा भी राहत कार्य में रुकावट बन रहा है। एसडीआरएफ, जिला पुलिस और फायर सर्विस की टीमें मौके पर मौजूद हैं। पश्चिम बंगाल से भी एक विशेष रेस्क्यू टीम बुलाई गई है। ये टीम गैस से बचाव के लिए विशेष सुरक्षा उपकरणों के साथ पहुंची है। बताया गया कि ये टनल तीस्ता स्टेज 6 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के तहत बनाई जा रही है। आज तक ब्यूरो।
0: बात कर लेते हैं अब जम्मू कश्मीर की, जहां पर पुंछ में एक बार फिर से लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड से भारी नुकसान पहुंचा है। लगातार वहां पर बारिश हो रही है और उसके बीच अचानक से आए फ्लैश फ्लड की वजह से 7 लोगों की मौत हो चुकी है। एलजी मनोज सिन्हा ने मौत पर दुख जताया। वहीं अमरनाथ यात्रा को भी 2 दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया है।
1: पहाड़ों पर मानसूनी आफत का सिलसिला जारी। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक बारिश का रेड अलर्ट। बादल फटने के बाद राजौरी और करगिल में हालात नाजुक। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर इस वक्त मानसून का कहर झेल रहा है। पूछम के बफलियाज इलाके में कुदरत का रौद्र रूप दिखा। लगातार हो रही बारिश के बाद बादल फटा और फ्लैश फ्लड की चपेट में कई इलाके आ गए। ये तस्वीर पुंछ की है, जहां एक सुरंग पर पूरा का पूरा पहाड़ गिर गया, जिसकी चपेट में वहां काम कर रही मशीनें भी आ गई। वहीं भारी बारिश के बाद शहर के बीच बह रहा पानी भी लोगों को डरा रहा है। अब किश्तवाड़ से आई डरावनी तस्वीर देखिए। यहां राइटल पावर प्रोजेक्ट साइट पर अचानक से फ्लैश फ्लड से तबाही मच गई। क्षतिग्रस्त हुआ पावर प्रोजेक्ट नदी के किनारे था। वहीं डोडा में रागी नाला के पास लैंडस्लाइड की वजह से ऊपर से एक बस के ऊपर पत्थर गिरे जिसमें दो लोगों की मौत हो गई। राजौरी के नौशहरा की वाई ये तस्वीर देखिए जहां भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर की मदद से नदी के बीच टापू में फंसे को निकाला गया। श्रीनगर से अशरफ वाणी के साथ आज तक ब्यूरो।
0: तो जम्मू कश्मीर के कई इलाके जहां पर मूसलाधार बारिश हो रही है, इसका असर यह हुआ कि नदियों के जलस्तर में उफान है। डैम में भी बेहिसाब पानी भरा हुआ है। रिहायशी के सलाल डैम में भी जलस्तर बढ़ने के बाद गेट खोलने पड़े रिहायशी में। वहीं भारी बारिश की वजह से ऐसा कदम उठाना पड़ रहा है। मूसलाधार बारिश की वजह से जम्मू कश्मीर में भी संकट गहरा गया है। नदियां उफान पर है, डैम में भी बेहिसाब पानी नजर आ रहा है। बात कर लेते हैं पहाड़ों पर मानसूनी आफत की। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भी बादल फटने से भारी तबाही मची है। लाहौल स्पीति के खांगसर और शुगु गांव में पहाड़ियों पर बादल फटने के कारण भारी तादाद में पानी और मलबा नीचे आया। बाढ़ के चलते खेत और सड़कों को भारी नुकसान पहुंचा और एक कार भी मलबे की चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि कोई भी जनहानि नहीं हुई है। सबसे ज्यादा असर शुगु गांव में देखने को मिला। बाढ़ के साथ आए पत्थर और मलबा सीधे किसानों के खेतों में जाकर पहुंचा। खेतों में तैयार खड़ी मटर, गोभी और साथ ही अन्य नकदी फसलें मलबे के नीचे दब गई और पूरी तरह से नष्ट हो गई है। इससे किसानों को भी भारी नुकसान पहुंचा है।
1: हिमाचल से उत्तराखंड तक कुदरत का कहर। लाहौल स्पीति में बादल फटने से तबाही, मलबा घुसने खेतों की फसल तबाह। जम्मू कश्मीर के बाद अब हिमाचल में भी बादल फट रहे हैं। लाहौल स्पीति में खराब मौसम के बीच कुदरत का कहर देखने को मिला। ये तस्वीर लाहौल स्पीति के खांगसर और शुगु गांव की है जहां बादल फटने के बाद भारी तादाद में पानी और मलबा नीचे आ गया। कुछ ही देर में मलबे ने खेतों और की रास्तों को अपनी चपेट में ले लिया। बाढ़ के साथ आए पत्थर और मलबा ने खासकर किसानों को काफी नुकसान पहुंचाया। कई एकड़ की फसल तबाह हो गई। हिमाचल ही नहीं, उत्तराखंड में भी भारी बारिश से पहाड़ों से पत्थर गिरने के कई मामले बढ़े। ये तस्वीर देहरादून मसूरी हाईवे की है जहां लैंडस्लाइड होने से रास्ते को बंद करना पड़ा। पत्थर गिरने से हाईवे का एक हिस्सा टूट गया और गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई। उत्तराखंड में खराब मौसम को देखते हुए चारधाम यात्रा भी रोक दी गई। वहीं बारिश की वजह से केदारनाथ यात्रा भी प्रभावित हो रही है। केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर भी लैंडस्लाइड हो रहा है। यात्रियों की सुरक्षा को देखते फिलहाल अग्रिम आदेशों तक केदारनाथ यात्रा को रोका गया है और यात्रियों से सुरक्षित स्थानों पर रुकने की अपील की गई है। मनाली से मनविंदर अरोड़ा और देहरादून से अंकित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: अब असम की बात कर लेते हैं जहां पर बाढ़ बारिश कहर बरपा रही है। खासतौर पर अपर असम के जिले बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। असम के 16 जिले ऐसे हैं जहां पर करीब 3,62,000 लोग बाढ़ के चलते प्रभावित हुए हैं और अब तक 5 लोगों की मौत की पुष्टि भी हो चुकी है।
1: जुलाई खत्म होते होते मॉनसून ने पकड़ी रफ्तार। असम में बाढ़ बारिश से बिगड़े हालात। मूसलाधार बारिश के चलते उफान पर नदी नाले। लगातार हो रही बारिश की वजह से असम के ऊपरी इलाकों में बाढ़ से गंभीर हालात होते जा रहे हैं। जोरहाट, शिवसागर और चराइदेव समेत 16 जिले काफी प्रभावित हैं। ये तस्वीर असम के जोरहाट की जहां बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस गया है जिसके चलते लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए नावों का सहारा लिया जा रहा है। मस्जिद में फंसे लोगों को भी निकालने के लिए रेस्क्यू टीम जुटी नजर आई। बाढ़ के पानी में कई गांवों में जलमग्न से नजर आ रहे हैं जिसके चलते लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। असम के बाकी इलाके भी बाढ़ से अछूते नहीं रहे हैं। शिवसागर में हालात काफी खराब नजर आ रहे हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते बाढ़ का पानी पुल तक पहुंच गया है। कई रिहायशी क्षेत्रों, स्कूलों और सरकारी संस्थानों में पानी भर गया है। बाढ़ के पानी के तेज बहाव में रेल की पटरियों को भी नुकसान पहुंचा है। पटरियों के नीचे से पानी के साथ मिट्टी भी बह गई है। रेल की पटरियां भी इस बाढ़ की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई है। जगह जगह ये पटरियां टूट गई हैं। बाढ़ के चलते असम में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 3,62,000 लोग प्रभावित हैं। बाढ़ की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए असम सरकार ने आपदा प्रबंधन तंत्र को पूरी तरह सक्रिय कर दिया है। SDRF, NDRF और जिला प्रशासन की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। असम के जोरहाट से पूर्णो विकास के साथ आज तक ब्यूरो।
0: अब बात कर लेते हैं अफगानिस्तान की, जहां पर भारी बारिश के बाद अचानक से बाढ़ आई जिससे भारी तबाही हुई है। अफगानिस्तान के नूरिस्तान में बाढ़ से 10 लोगों की मौत हो चुकी है और 100 से ज्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। लापता लोगों में पारून इलाके के मेयर और उनके 2 अंगरक्षक भी शामिल है। बाढ़ ने नूरिस्तान की राजधानी पारून में भी कमर्शियल इलाकों और साथ ही जो वहां पर रिहायशी कॉलोनियां हैं उनको भी तबाह कर दिया है। भारी तबाही वहां पर मची है। लापता लोगों का पता लगाने के लिए राहत और बचाव कार्य अभी भी फिलहाल जारी। तो बाढ़ के बाद नूरिस्तान में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। ये तस्वीरें आप देखिए, इससे तबाही का मंजर साफ तौर पर समझ आ रहा है कि बाढ़ के बाद वहां पर कितनी तबाही मची है। चलिए अब बात कर लेते हैं मिडिल ईस्ट में मची जंग की। दरअसल ईरान पर अमेरिका ने लगातार 10वीं रात ताबड़तोड़ हमले किए। अमेरिकी सेना ने ईरान के कई इलाकों और द्वीप को निशाना बनाया है। ईरानी मीडिया प्रेस टीवी के मुताबिक बंदर अब्बास, चाबहार, कोणार्क, सिरिक और साथ ही शिराज और इस्फान में भी धमाके की आवाज सुनी गई है। प्रेस टीवी के मुताबिक सेंट्रल ईरान के इस्फान में 2 धमाके हुए। इसके अलावा खोमेनी शहर में भी औद्योगिक केंद्र पर हमला किया गया है। तो ईरानी मीडिया अलग अलग जगह का दावा कर रही है कि कहां कहां पर हमले हुए, यानी अभी भी ये भीषण जंग जारी है। ऐसे में कहां कहां पर हमले हुए हैं, अमेरिका ने ईरान के किन ठिकानों को निशाना बनाया है वो आप समझिए। इस्फहान, बंदर अब्बास, कोणार्क और शिराज साथ ही सिरिक में भी कई धमाकों की आवाज सुनाई दी गई है। खोमेनी में भी धमाके की आवाज सुनी गई। वहीं कोणार्क और चाबहार को भी निशाना बनाया गया। तो 10वीं रात है ये पूरे भीषण हमलों की और ईरान के ये वो ठिकाने हैं जहां पर हमले किए गए हैं। वहीं ईरान पर हमले को लेकर अमेरिकी सेना ने भी बयान जारी कर कहा है कि कमांडर इन चीफ के निर्देश पर यूएस सेना ने ईरान के खिलाफ हमले का एक नया दौर शुरू किया। यूएस सेंट्रल कमांड के मुताबिक इन हमलों का मकसद ईरान की उन सैन्य क्षमताओं को और कमजोर करना है जिनका इस्तेमाल होर्मुज में कमर्शियल जहाजों पर हमले के लिए किया जाता है। ईरान के खिलाफ हमले का नया संकट, ऐसे में ईरान की सैन्य क्षमताओं को निशाना बनाया जा रहा है ये कहा गया। उधर ईरान ने एक बार फिर से जॉर्डन पर हमले किए हैं। इसके बाद जॉर्डन में खतरे के सायरन बज रहे हैं। हमले को लेकर जॉर्डन की सेना ने बयान जारी कर कहा है कि 3 ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर तबाह किया गया। वहीं अभी तक किसी भी तरह के जानमाल का कोई भी नुकसान नहीं हुआ है ये भी दावा किया जा रहा है। जॉर्डन पर ईरान ने कई मिसाइल अटैक किया है। तो वही ईरान ने कुवैत पर भी अटैक किया है। ईरान की सरकारी टीवी के मुताबिक उसकी सेना ने कुवैत के आरिफजान बेस पर मौजूद अमेरिकी मिसाइल सिस्टम को निशाना बनाया। सरफेस टू सरफेस मिसाइलों से हमला किया गया, हालांकि इस दावे की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं कुवैती सेना का कहना है कि एयर डिफेंस सिस्टम अभी ईरानी मिसाइलों और साथ ही ड्रोन को रोक रहे हैं। तो वही अमेरिकी बेस को लेकर भी एक खबर आपको बता दें, IRGC ने एक बड़ा दावा किया है। IRGC ने दावा किया है कि बहरीन और कुवैत में अमेरिकी ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा। IRGC की माने तो उसके 3 हमलों में बहरीन और कुवैत स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। IRNA के मुताबिक IRGC ने कहा है कि बहरीन के अल साखिर एयरपोर्ट पर अमेरिकी ड्रोन मरम्मत और रखरखाव शेड नष्ट कर दिए गए। तो वही बहरीन के सलमान पोर्ट पर भी मौजूद अमेरिकी नौसेना की टास्क फोर्स 59 के जहाजों की तैयारी वाले शेड में भी हमले में क्षतिग्रस्त हुए हैं। कुवैत के अरिफजान बेस पर अमेरिकी मरीन स्पेशल फोर्सेस के शेड को भी पूरी तरह से नष्ट करने का दावा किया जा रहा है। तो कई बेस को निशाना बनाया गया। एक और अपडेट आपको दे दे, लगातार आज 10वीं रात है, ईरान पर अमेरिका का हमला अभी भी जारी है। ऐसे में ईरान के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की गई है। बंदर अब्बास, चाबहार, कोणार्क, सिरिक में धमाकों की आवाज लगातार सुनाई दे रही है। वहीं सेंट्रल ईरान के इस्फहान में भी 2 धमाके हुए हैं, इसका भी दावा किया गया है। वहीं ईरान ने भी जॉर्डन पर मिसाइल से अटैक किया है। लगातार एक के बाद एक मिसाइल ईरान भी बरसाए जा रहा है। जॉर्डन सेना 3 ईरानी मिसाइलें इंटरसेप्ट कर चुकी है, ये दावा उन्होंने किया है। वहीं IRGC का भी एक दावा है कि बहरीन कुवैत में US ठिकानों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। ट्रंप की धमकी भी इस बीच सामने आई है, उन्होंने कहा कि अमेरिकी सैनिक की मौत का कोई भी अभी तक जवाब सामने नहीं आया, कई गुना जवाब उसको लेकर वो देंगे, यानी मिसाइल से अटैक किया जाएगा, कई जो जगह है उनको भी निशाना बनाया जाएगा। एक और बड़ी खबर अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ी। दरअसल चढ़ावा चोरी मामले को लेकर एक नई SIT का गठन किया जा सकता है। खबरों के मुताबिक आज इसका ऐलान हो सकता है। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार नई SIT की अध्यक्षता एक वरिष्ठ IPS अधिकारी करेंगे। सूत्रों के मुताबिक IG रेंज लखनऊ किरण S को भी नई SIT का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। SIT में वित्त और प्रशासनिक विभाग के अन्य अधिकारियों को भी शामिल किए जाने की संभावना जताई जा रही है। दरअसल वर्तमान SIT के अध्यक्ष लखनऊ मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत और साथ ही विशेष सचिव वित्त नील रतन को हटाया जाएगा और नई SIT पहले की जांच रिपोर्ट को अपनी तफ्तीश का हिस्सा बनाएगी। साथ ही नई SIT सभी तथ्यों और साक्ष्यों की दोबारा तस्दीक भी करेगी। सूत्रों के अनुसार मामले की जांच इस महीने के अंत तक पूरी किए जाने की संभावना भी है। जांच के लिए नई SIT का गठन किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक ऐसा बताया जा रहा है, नई SIT के प्रमुख होंगे वरिष्ठ IPS अधिकारी। तो नई SIT का गठन इस पूरे मामले में अब किया जाएगा। पहली SIT रिपोर्ट को जांच का आधार नई SIT बनाएगी, यानी पहली SIT रिपोर्ट नई SIT की जो टीम है उसको सौंपी जाएगी। आज से ये नया गठन हो सकता है, इसका ऐलान किया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार ये खबर आपको बता रहे हैं। अब नई SIT चढ़ावा चोरी की जांच करने वाली है। आशीष हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए। आशीष, क्या अपडेट है? सूत्र बता रहे हैं कि नई SIT का गठन अब कर दिया गया है।
2: देखिए, अभी जो सोर्स हमारे हैं, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन हुआ उसके बाद उत्तर प्रदेश में जो SIT अब बनेगी वो उसमें जो वरिष्ठ IPS अधिकारी रहेंगे। ऑलरेडी अभी जो 3 लोगों के मेंबर की SIT है उसमें लखनऊ के किरण S को नई SIT का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, सोर्स कह रहे हैं, और साथ ही साथ नए IPS को भी इसमें जगह दी जाएगी। यानी कि जिस तरीके से IPS को डिपेंड होकर ये पूरी SIT तैयार की जाएगी और उसकी कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद ही इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ये तो साफ हो गया है कि जो पहले केस में विजय विश्वास पंत थे मंडलायुक्त, तो उसके साथ साथ विशेष सचिव वित्त नील रतन इनको हटाया जाएगा क्योंकि ये IAS होने के नाते। तो कहीं ना कहीं ये जो SIT की नई प्रारूप होगा वो पूरी तरीके से पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बेस्ड होगा और इसी वजह से उसमें IPS को शामिल किया जा रहा है और जिसको लेकर ये साफ किया जाएगा कि कहीं ना कहीं जो जांच हो रही है वो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट तरीके से। तो इसलिए अब नई SIT बहुत काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, जो राम मंदिर चढ़ावे मामले पर पूरी तरीके से जांच करके इसको रिपोर्ट को सबमिट करेगी।
0: चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जानकारी के लिए। और अब बात कर लेते हैं संसद के मानसून सत्र की। दरअसल आज सत्र का दूसरा दिन है, ऐसे में सत्र के पहले दिन विपक्ष ने दोनों सदनों में भारी हंगामा किया और इसके बाद दोनों सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। अब आज संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन भी हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं क्योंकि विपक्षी दलों की ओर से नीट पेपर लीक, राम मंदिर चढ़ावा विवाद जैसे मुद्दे उनको लेकर वो पहले दिन ही जबरदस्त हंगामा कर चुके हैं। ऐसे में आज भी हंगामा देखने को मिल सकता है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। वहीं 13 अगस्त तक चलने वाले मानसून सत्र के दौरान मोदी सरकार कई अहम बिल लाने भी वाली है। तो कई बिल पेश किए जा सकते हैं मानसून सत्र के दौरान। आज दूसरा दिन है इस सत्र का, जो माना जा रहा है कि दूसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ने वाला है। दरअसल इनकम टैक्स संशोधन बिल सरकार पेश कर सकती है इस मानसून सत्र के दौरान। सुप्रीम कोर्ट संशोधन बिल भी पेश किया जा सकता है। 7 बिल है लगभग जो पेश किए जा सकते हैं। जन्म और मृत्यु पंजीकरण बिल उसमें होगा, राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन बिल, साथ ही सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन बिल, वहीं विदेशी अंशदान नियम संशोधन विधेयक भी पेश किया जा सकता है। तो कुल 7 बिल है। विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक भी पेश किया जा सकता है। आज दूसरा दिन है संसद सत्र का और ऐसे में यह भी हंगामे की भेंट चढ़ सकता है, ऐसा माना जा रहा है। बात कर लेते हैं NDA की एक बैठक की। एक NDA की बैठक भी इसके अलावा होने वाली है। संसद के मानसून सत्र के बीच आज एनडीए के संसदीय दल की बैठक बुलाई गई है और ये बैठक करीब एक घंटे बाद संसद परिसर में होगी। इस बैठक को मंगल मिलन नाम दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में पीएम मोदी समेत एनडीए के सभी सांसदों के शामिल होने की उम्मीद है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू बैठक में एनडीए सांसदों का स्वागत करेंगे और बैठक में हाल ही में बीजेपी में शामिल होकर राज्यसभा पहुंचे नए सांसदों का भी स्वागत किया जाएगा। इनमें आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए राज्यसभा सांसद भी शामिल हैं। तो आज एक बड़ी बैठक एनडीए की भी होने वाली है और एक तरफ मॉनसून सत्र और उसके बीच एनडीए की एक बड़ी बैठक होगी जिसमें एनडीए की संसदीय दल की बैठक मानी जा रही है, जहां पर पीएम मोदी समेत सभी सांसद शामिल होने वाले हैं। सांसदों को पीएम मोदी का संबोधन भी होगा और कई मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। आम आदमी पार्टी छोड़कर जो सांसद बीजेपी में आए हैं उनका स्वागत वहां पर किया जाएगा। तो एनडीए की एक बड़ी बैठक एनसीपीआई के बैठक में भी शामिल होने की संभावना अभी तक नहीं जताई जा रही है। वहीं एक बात कर लेते हैं अब सीजेपी की। दरअसल जंतर मंतर पर सीजेपी ने फिर से प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इस वक्त ये बड़ी खबर, देर रात अभिजीत दीपके के साथ सीजेपी समर्थक धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। इससे पहले कल संसद तक मार्च निकालने के दौरान कई बार प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई थी। इसके बाद पुलिस ने कल शाम जंतर मंतर को खाली करा दिया था, लेकिन दोबारा से सीजेपी ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। सीजेपी के प्रदर्शन के पीछे मांगे क्या है वो आप समझिए। उन्होंने कहा है कि सोनम वांगचुक को रिहा किया जाए, जो पहली मांग है सीजेपी की। तीन बड़ी मांगे, धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाए, उनका इस्तीफा मंजूर किया जाए, इस्तीफा उनका होना चाहिए, और वहीं आत्महत्या करने वाले जो नीट अभ्यर्थी हैं उनके परिवारों को एक एक करोड़ का मुआवजा देना चाहिए। ये तीन मांगे सीजेपी की तरफ से रखी गई है। तो दिल्ली में हुए सीजेपी प्रदर्शन को लेकर एक और बड़ी खबर, दरअसल दिल्ली पुलिस ने पार्लियामेंट थाने और कनॉट प्लेस थाने में बीएनएस की अलग अलग धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है। इनमें सरकारी संपत्ति और साथ ही पुलिस पर अटैक करने जैसी धाराएं भी शामिल है। कनॉट प्लेस में जो बवाल मचा है और गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, इस पूरे मामले में एफआईआर भी दर्ज हुई। इसके साथ ही 70 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। सभी सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल वीडियो की जांच की जा रही है। अब खबर फुटबॉल के विश्व विजेता स्पेन की। दरअसल मैड्रिड लौटने पर टीम का जोरदार स्वागत हुआ है और वहां खिलाड़ियों का वेलकम करने के लिए हजारों की भीड़ हुई। लोगों ने उनका भव्य तरीके से अभिवादन किया। पूरे शहर में विजय टीम का जुलूस निकला। इस दौरान फैंस का भी खिलाड़ियों ने अभिवादन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सुपर 8 में वक्त हो गया है फटाफट खबरों का। पुणे में चार्जिंग के दौरान इलेक्ट्रिक स्कूटर में लगी भीषण आग, एक व्यक्ति गंभीर रूप से हुआ घायल। मोबाइल लोकल ट्रेन में यात्री के साथ किन्नरों ने की मारपीट, आरोपी गिरफ्तार, वीडियो हो रहा है तेजी से वायरल। जयपुर में आधी रात कुछ लोगों ने लाठी डंडों से शख्स पर किया हमला, बाद में कार से लोगों को कुचला, सीसीटीवी फुटेज आया सामने। समस्तीपुर में धमकी देने के एक दिन बाद मनचले ने छात्रा की हत्या की, भड़के लोगों ने जमकर किया बवाल। पटना में नाले में गिरी चलती कार, बाल बाल बचा कार चालक, बारिश की वजह से अनियंत्रित हुई कार। एमपी के ग्वालियर में हिट एंड रन का मामला आया सामने, तेज रफ्तार कार की टक्कर से पति पत्नी घायल। सवाई माधोपुर के गंगपुर सिटी में दवा वापस नहीं लेने पर विवाद हुआ, ग्राहक ने मेडिकल संचालक पर किया कैची से हमला। चलिए यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आपका ही मत जाइएगा, देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
1: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
2: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
3: देख इतना बड़ा आदमी मुझे इन्वेस्टमेंट टिप्स दे रहा है
4: अच्छा सिर्फ तुझे ही दे रहा है
3: ओह अर्ज किया है दूर से लगा कि एक जाना पहचाना चेहरा हंसकर सच कह रहा था पास जाकर देखा तो झूठे वीडियो के जाल में मैं फंस रहा था सेबी और एनएससी का कहना है किसी भी वीडियो में पलके और लिप सिंक पर ध्यान दें सिर्फ ऑथराइज्ड सोर्सेज पे ही विश्वास करें वाह
5: सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर
6: एनएससी द्वारा निवेशकों के हित में जारी

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
2: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
3: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
4: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: In association with
2: Sarah Sanitaryware, it's your moment of Sarah. E3 HDMR, ye rishta lamba chalega.
3: अभी कुछ दिन पहले ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन और विश्व में बहुत कम देश ऐसे हैं कि जिनके पास ये सुविधा है, लेकिन भारत ने जो हाइड्रोजन ट्रेन देशवासियों को समर्पित की है वो सबसे ताकतवर इंजन वाली है और सबसे लंबी है। ये अपने आप में भारत के वैज्ञानिक, भारत के इंजीनियर्स, भारत के इनोवेटर्स, भारत के उद्यमी, भारत के श्रमिक, ये जो एक लक्ष्य लेकर के देश के लिए जी रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, उसी का परिणाम है। साथ ही हम भले भांति जानते हैं और पूरी दुनिया चिंतित भी है, लगातार कहीं न कहीं युद्ध की स्थितियां बनती रही है। पश्चिम एशिया के युद्ध के कारण भारत जैसे देश जो एनर्जी के लिए औरों पर डिपेंडेंट है, उनके लिए ये पश्चिम एशिया का युद्ध एक बहुत ही बड़ा संकट का कारण रहा। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, फर्टिलाइजर, केमिकल्स, यानी हर विषय में अनेक बाधाएं, अनेक संकट आए। उसके बावजूद भी भारत 7.7% के ग्रोथ से दुनिया की मेजर इकोनॉमी में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश बन के रहा। यह भारत के सामर्थ्य का परिचायक है।
4: भारत में नौकरी का तरीका तेजी से बदल रहा है, क्योंकि अब केवल ऑफिस जाकर काम करना ही रोजगार का अकेला विकल्प नहीं रह गया। इसकी वजह है बड़ी संख्या में लोग ऐप और इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्म्स के जरिए कमाई कर रहे हैं। फूड डिलीवरी, कैब सर्विस, ऑनलाइन ट्यूटरिंग, कंटेंट क्रिएशन, ई कॉमर्स और फ्रीलांसिंग जैसे क्षेत्रों में गिग वर्कर्स।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

बार पेपर लीक और चढ़ावा चोरी पर घेरने के लिए विपक्ष तैयार, पूरे सेशन में 7 अहम बिल लाने वाली है सरकार। सत्र शुरू होने से पहले आज एनडीए संसदीय दल की बैठक, मोदी को दी जाएगी रिकॉर्ड समय तक पीएम पद संभालने की बधाई, सभी सांसदों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। चढ़ावा चोरी मामले की जांच में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बदलेगा एसआईटी का स्वरूप, विजय विश्वास पंत की जगह सीनियर आईपीएस किरण एस करेंगे लीड, महीने के आखिर तक आ सकती है रिपोर्ट। जंतर मंतर पर फिर से बैठे सीजेपी समर्थक, नड्डा से मीटिंग के बाद रखी 3 मांग, प्रदर्शन में 118 पुलिस वाले और 60 आंदोलनकारी घायल, वांगचुक मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज भी सुनवाई। सिक्किम की निर्माणाधीन टनल पर लैंडस्लाइड, एंट्री गेट बंद होने से अंदर फंसे 7 मजदूरों की मौत, 20 अब भी फंसे, गैस की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में आ रही है परेशानी।

भूस्खलन, एंट्री गेट बंद होने की वजह से अंदर फंसे 7 मजदूरों की मौत हुई, 20 अब भी फंसे। एनएचपीसी की तीस्ता स्टेज 6 परियोजना में बड़ा हादसा हुआ। ऑक्सीजन की कमी के बीच एनडीआरएफ और प्रशासन का बचाव अभियान जारी। टनल में जहरीली गैस बनी बड़ी चुनौती, रेस्क्यू ऑपरेशन में आ रही है दिक्कत। असम में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति गंभीर, अब तक इस प्राकृतिक आपदा में 5 लोगों की मौत जबकि 3.5 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए। ब्रह्मपुत्र समेत कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। राहत और बचाव कार्यों के लिए सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात, प्रभावित लोगों की हर संभव मदद जारी। पुंछ में एक बार फिर से लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड से भारी नुकसान, लगातार हो रही भारी बारिश के बीच अचानक से आए फ्लैश फ्लड से 7 लोगों की हुई मौत। भारी बारिश के बीच जम्मू भद्रवाह हाईवे पर बड़ा हादसा, चलती गाड़ी पर गिरे बोल्डर वहीं बस समेत कई वाहन चपेट में आए, 2 की मौत हुई, कई घायल। जम्मू कश्मीर में 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ा, लोगों से नदी किनारे से दूर रहने की अपील। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बादल फटने के कारण भारी तबाही हुई। खांगसर और शुगु गांव में पहाड़ियों पर बादल फटने से भारी तादाद में पानी और मलबा नीचे गिरा। एक कार भी मलबे की चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हुई। हालांकि कोई भी जनहानि नहीं हुई है लेकिन इस प्राकृतिक आपदा से फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में मुनावर नदी से भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने किया एक शव को बाहर निकाला, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। राजौरी में भी भारी बारिश की वजह से नदी में फंसे मवेशी, लोगों ने किया रेस्क्यू। प्रशासन की लोगों से नदी में नहीं जाने की अपील, बाढ़ वाले इलाकों में बढ़ाई गई सुरक्षा। पहलगाम में सीआरपीएफ ने गर्भवती महिला की बचाई जान, समय पर अस्पताल पहुंचाने से सुरक्षित डिलीवरी हुई। उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार और टिहरी में भारी बारिश का रेड अलर्ट। टपकेश्वर मंदिर के पास तमसा नदी में उफान मचा, मंदिर परिसर जलमग्न, भारी बारिश के चलते स्कूल किए गए बंद। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में भारी बारिश के रेड अलर्ट के बीच प्रशासन पूरी तरह से सतर्क, स्कूल बंद रखने के आदेश। देश के कई राज्यों में मॉनसून हुआ एक्टिव, मैदानी इलाकों में गर्मी और उमस से राहत मिलने की उम्मीद, बारिश से प्रभावित 6 राज्यों के लिए रेड अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश और बिहार के कई इलाकों में भारी बारिश होने की वजह से संभावना तेज हुई, मेघालय के लिए भी मौसम का रेड अलर्ट जारी। महाराष्ट्र, कोंकण और साथ ही गोवा इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। पश्चिमी तटीय इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना, राजस्थान के 24 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया। जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा और बीकानेर में हो सकती है भारी बारिश। दिल्ली एनसीआर में बदल रहा है मौसम, कई इलाकों में बारिश होने की वजह से लोगों को गर्मी से मिली राहत। हल्द्वानी में मौसम का कहर बरसा, मूसलाधार बारिश से सड़कें बनी दरिया, घरों तक घुसा पानी, निचले इलाकों में जलभराव से जनजीवन अस्त व्यस्त। यूपी के उन्नाव में 4 घंटे हुई मूसलाधार बारिश से आम जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त, अस्पताल, सड़क, हर जगह जलभराव से लोगों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। आज मॉनसून सत्र का दूसरा दिन, आज भी हंगामे के आसार, पेपर लीक चढ़ावा चोरी मामले को लेकर दोनों सदनों में गतिरोध के आसार। आज कोलकाता में कांग्रेस की रैली, पूर्व नेताओं को पार्टी में वापस आने का न्योता। बिहार में कांग्रेस ने छात्रों की गूंज महारैली करने का किया ऐलान, इस रैली में राहुल गांधी भी होंगे शामिल। सोनम वांगचुक बोले कि अनशन नहीं तोड़ूंगा, शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की। दिल्ली हाईकोर्ट में सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि की याचिका पर सुनवाई को तैयार, वांगचुक की हेल्थ रिपोर्ट मांगी, आज फिर से होगी इस मामले पर सुनवाई। सोनम वांगचुक मामले में आज दिल्ली हाईकोर्ट में फिर से सुनवाई, दिल्ली एम्स डायरेक्टर को रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर निशाना, कहा मोदी सबसे युवा विरोधी प्रधानमंत्री है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि पेपर लीक मुद्दा उठाने वाले छात्र पीटे जाते हैं। सीजेपी के प्रोटेस्ट को लेकर राहुल गांधी का सरकार पर हमला, बोले पेपर लीक करने वाले अपराधी आजाद, एक इस्तीफा भी नहीं ले सकते। केंद्र सरकार पर भड़के अखिलेश यादव, कहा यह सरकार नहीं अहंकार है, छात्रों के साथ प्रताड़ना क्यों। अखिलेश यादव का केंद्र पर तंज, शायरी से पूछा कैसे कहें ये वतन आजाद है। पेपर लीक के खिलाफ सीजेपी के प्रदर्शनकारियों से केंद्रीय मंत्री नड्डा की मुलाकात, बोले सुबह आया था बातचीत का प्रस्ताव, अच्छे माहौल में हुई बात, धरना खत्म करने की अपील। जेपी नड्डा से मिले सीजेपी के प्रतिनिधि सौरभ दास, बोले ठोस आश्वासन नहीं मिला, 3 मांगों को पूरा करने का सौंपा ज्ञापन। सीजेपी ने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, सोनम वांगचुक की तत्काल रिहाई और नीट 2024 के जिन अभ्यर्थियों ने आत्महत्या की उनके परिजनों को 1-1 करोड़ रूपये का मुआवजा देने की मांग उठाई। भारी हंगामे के बाद अब दिल्ली में हालात लगभग सामान्य, बच्ची से मारपीट और 50 लोगों के घायल होने की खबर का पुलिस ने किया खंडन।
आज प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में होगी एनडीए की मंगल मिलन बैठक। एनसीपीआई के नए राज्यसभा सांसदों का होगा स्वागत। पीएम मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक चुने गए प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी जाएगी। एनसीपीआई के आज मंगल मिलन में शामिल होने की संभावना कम है। आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए नए राज्यसभा सांसदों का स्वागत किया जाएगा। आज यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक, सीएम योगी की अध्यक्षता में सुबह 10:30 बजे होगी बैठक। आज सीएम योगी का बहराइच श्रावस्ती दौरा, 748 करोड़ रुपए की विकास परियोजना की देंगे सौगात। आज दिल्ली में किसानों की बड़ी रैली की तैयारी, इंडिया अमेरिका प्रस्तावित एफटीए के विरोध में किसानों का प्रदर्शन। किसानों का आरोप, भारत अमेरिका एफटीए से कृषि और डेयरी क्षेत्र पर पड़ सकता है बड़ा असर। किसान संगठनों की मांग, भारत अमेरिका व्यापार समझौते के दस्तावेज किए जाएं सार्वजनिक, बिना चर्चा के ना हो कोई भी फैसला। दिल्ली कूच से पहले शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी, शंभू बॉर्डर पर बीएनएस की धारा 163 लागू, पुलिस बल तैनात। किसान महापंचायत को लेकर दिल्ली ट्रैफिक अलर्ट, किसान घाट और साथ ही आसपास के इलाकों में रूट डायवर्जन की तैयारी, सत्याग्रह मार्ग समेत कई रास्तों से बचने की सलाह। आज एक दिवसीय पटना यूनिवर्सिटी के सभी कॉलेज में हड़ताल, पटना विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ का फैसला। नवादा में शराब माफिया के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर बड़ी कार्रवाई, फरार आरोपी की संपत्ति को किया गया है कुर्क। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को मिलेगा लोकमान्य तिलक पुरस्कार। 1 अगस्त को पुणे में आयोजित समारोह में गृहमंत्री शाह देंगे पुरस्कार। देश की सुरक्षा में कूटनीतिक योगदान का बड़ा सम्मान। जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड बहाली की मांग तेज, जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रदर्शन। बिहार के वैशाली में देर रात पूर्व मुखिया के घर के पास बमबाजी और फायरिंग हुई, अज्ञात बदमाशों के इलाके में दहशत फैलाने की कोशिश। बेगूसराय में डाकघर और पासपोर्ट कार्यालय को बम से उड़ाने की मिली धमकी, 3 मंजिला बिल्डिंग कराई गई खाली। पटना में शराब तस्करी के लिए रेपिडो का इस्तेमाल कर रहे तस्कर, पुलिस ने रेपिडो कार से विदेशी शराब बरामद की, तस्कर कार से कूदकर भागा। मुजफ्फरपुर में रिटायर्ड बैंक कर्मी और पत्नी की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई, टेप और ग्लव्स लेकर पहुंचे थे कातिल। बिजनौर में चारा काटने जंगल गई बुजुर्ग महिला पर तेंदुए ने किया हमला, बुजुर्ग महिला की मौके पर हुई मौत। पटना में भारी बारिश से अस्पताल में घुसा पानी, मरीजों की बढ़ी परेशानी, कई विभाग जलमग्न हुए, ऑर्थो विभाग में सांप देखे जाने के से हड़कंप मचा। मोतिहारी में नेपाल से छोड़े गए पानी से आई बाढ़, नदियों का जलस्तर बढ़ने के कारण कई इलाके पानी में डूबे, जनजीवन प्रभावित। लखनऊ के जवाहर भवन की 4th मंजिल पर कैंटीन में लगी भीषण आग, 15 दमकल की गाड़ियों ने पाया काबू, कोई हताहत नहीं। पुणे में इलेक्ट्रिक स्कूटर में चार्जिंग के दौरान लगी भीषण आग, एक व्यक्ति गंभीर रूप से हुआ घायल। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में बारिश के दौरान ट्रक और कार के बीच जोरदार टक्कर, दुर्घटना में 3 लोग हुए घायल। छत्तीसगढ़ के महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में चलते ट्रक का ब्रेक फेल हुआ, पहले पिकअप फिर से स्कूटी को मारी टक्कर, हादसे के बाद लगा लंबा जाम। गुरुग्राम में रिटायर्ड एयर मार्शल से 2,68,00,000 की ठगी का भंडाफोड़, दुबई से चल रहा था नेटवर्क, 6 लोग गिरफ्तार। जालंधर में ट्रैक्टर ट्रॉली ने साइकिल सवार को कुचला, हादसे में शख्स की मौके पर मौत हो गई। राजस्थान के टोंक में शराब के ठेके में घुसा तेंदुआ, मची अफरा तफरी, अचानक हमले को लेकर पूरा वीडियो सीसीटीवी पर कैद हुआ, वायरल हो रहा है। समस्तीपुर में एक तरफा प्यार में छात्रा की हत्या, धमकी देने के अगले ही दिन युवक ने मारी गोली, आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने थाने का घेराव किया। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में गुल्लक तोड़कर चोरी, चोर ने नोटों से भरा लिया बैग, सीसीटीवी में हुआ कैद। सवाई माधोपुर में दवा वापस नहीं लेने पर विवाद मचा, ग्राहक ने मेडिकल संचालक पर किया कैंची से हमला, दुकानदार घायल। गुजरात के आनंद में 4 साल के मासूम से दुष्कर्म, हत्या के आरोपी सुरेश परमार की पुलिस मुठभेड़ में मौत, आरोपी ने हिरासत से भागने के दौरान पुलिस पर चाकू से किया था हमला। गुजरात के जामनगर में फैक्ट्री में कामकाज के दौरान भट्टी में विस्फोट, 3 मजदूर झुलसे, 2 की हालत गंभीर। गुजरात के जूनागढ़ में अवैध बायोडीजल रैकेट का भंडाफोड़, नगर निगम ने 3 ठिकानों पर छापेमारी कर 2,13,00,000 रुपए का अवैध डीजल किया जब्त, 8 गिरफ्तार। ईरान पर अमेरिका का ताबड़तोड़ हमला, लगातार 10वीं रात जारी अमेरिकी कार्रवाई में कई नए हमले किए गए। अमेरिकी सेना ने ईरान के कई इलाकों और द्वीप को निशाना बनाया, ईरानी मीडिया प्रेस टीवी ने दी है इसकी जानकारी। ईरानी मीडिया प्रेस टीवी के मुताबिक बदरअब्बास, चाबहार, कोणार्क, सिरिक, शिराज और साथ ही इस्फहान में धमाके की आवाज सुनी गई। प्रेस टीवी के मुताबिक सेंट्रल ईरान के इस्फहान में 2 धमाके हुए, इसके अलावा खोमिन शहर में एक औद्योगिक केंद्र पर भी हमला हुआ। ईरान पर हमले को लेकर अमेरिकी सेना का बयान, कमांडर इन चीफ के निर्देश पर यूएस सेना ने ईरान के खिलाफ हमले का एक नया दौर शुरू किया। यूएस सेना ने कहा कि इन हमलों का मकसद ईरान की उन सैन्य क्षमताओं को और कमजोर करना है जिनका इस्तेमाल होर्मुज में कमर्शियल जहाजों पर हमले के लिए किया जाता है। ईरान ने एक बार फिर से जॉर्डन पर किया हमला, हमले को लेकर जॉर्डन की सेना ने बयान जारी कर कहा कि 3 ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर तबाह किया गया। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर उसको लेकर IRGC का बड़ा दावा, बहरीन और कुवैत में अमेरिकी ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा। IRGC ने कहा
कहा कि बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों में भारी नुकसान पहुंचा। बहरीन के अल साखिर एयरपोर्ट पर अमेरिकी ड्रोन मरम्मत और रखरखाव शेड नष्ट कर दिए गए। ईरान युद्ध पर न्यूयॉर्क टाइम्स से बड़ी खबर, घायल सैनिकों की संख्या सार्वजनिक नहीं कर रहा अमेरिका। रिपोर्ट के मुताबिक हमलों में कोई भी अमेरिकी सैनिक जख्मी हुआ ऐसी कोई भी पुष्टि नहीं की गई है। हेलीकॉप्टर तबाह हुए। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने मॉस्को में उत्तर कोरिया के विदेश मंत्री चोए सोंग से मुलाकात की और दोनों नेताओं के बीच रिश्तों को मजबूत करने पर बातचीत हुई। एंडी बर्नहैम बने ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री। के स्टार्मर की जगह संभाला पद किंग चार्ल्स की सहमति के बाद बने पीएम। एंडी बर्नहैम के पीएम बनने के बाद ब्रिटिश सरकार में लगी इस्तीफे की झड़ी। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने अपने पद से दिया इस्तीफा। गाजा पर हुआ इजराइल का बड़ा हमला। अलजाला स्ट्रीट पर हुए हमले में 14 लोगों के घायल होने की खबर। इजरायली सेना का बयान, इलाके में हमास के एक सदस्य को बनाया गया निशान। फिलीपींस का चीन पर बड़ा आरोप। दक्षिण चीन सागर के विवादित शोल में चीनी कोस्ट गार्ड के जवानों ने एक फिलिपिनी नौसैनिक बोट पर डंडों से किया हमला।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की। ये जानेंगे कि आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है

बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, वाद विवाद से बचाव करें, जल्दबाजी में निर्णय ना लें, लाल फल का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। सिंह राशि, धन लाभ के योग हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, यात्रा के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल।

योग बन रहे हैं, करियर में लाभ होगा, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। तुला राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, रुका हुआ काम आपका बन जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वृश्चिक राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, महत्वपूर्ण काम टाल दें, परिवार में शांति बनाए रखें। लाल फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। धनु राशि, मानसिक तनाव समाप्त होगा, करियर में नए अवसर मिलेंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं। हनुमान जी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। मकर राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, अतिथि का आगमन होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा

योग हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा, काम की अधिकता रहेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। मीन राशि, पारिवारिक समस्या परेशान करेगी, ऑफिस में विवादों से बचें, आज वाहन सावधानी से चलाएंगे। लाल फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

0: पहाड़ों पर जमकर कर बरस रहे हैं मानसूनी बादल। उत्तराखंड में लगातार बारिश से बिगड़ रहे हालात। लैंडस्लाइड के चलते उत्तराखंड की कई सड़कों पर मलबा। मैदानों में जहां बारिश का सूखा पड़ा है, वहीं दूसरी तरफ पहाड़ों पर मानसून का प्रचंड रूप देखा जा रहा है। उत्तराखंड के 6 जिलों में कल जमकर बादल बरसे। ये तस्वीर देहरादून के संतला देवी मंदिर के पास की है, जहां बारिश के बाद नदी का जलस्तर बढ़ जाने के बाद 7 लोगों की जान पर बनाई। नदी के बीच बने टापू पर लोगों को बचाने के लिए SCDRF की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और उन्हें बचा लिया। देहरादून का IT पार्क भी बारिश के प्रचंड रूप से अछूता नहीं रहा। भारी बारिश के बाद पूरे इलाके में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। सड़कें दरिया में तब्दील हो गई। लोगों को गाड़ियां चलाने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। उत्तराखंड के दूसरे इलाकों में भी भारी बारिश का दौर जारी है। टिहरी में हो बारिश के चलते इलाकों में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं बारिश के साथ साथ पहाड़ों से हो रही लैंडस्लाइड के चलते उत्तराखंड के लोगों में दहशत का माहौल है। मालदेवता इलाके के सिल्ला मोटर मार्ग पर लैंडस्लाइड होने से आवाजाही प्रभावित हुई है। देहरादून से अंकित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
1: देश की बेटी ने लहराया तिरंगा। देश की आन बान शान बनी PV सिंधु। जापान ओपन जीतने वाली पहली भारतीय बनी PV सिंधु। जी हां, कमाल हो गया, धमाल हो गया। जापान ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीयों को गर्व करने का मौका मिला है। 31 साल की सिंधु ने रविवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में जापान की अकाने यामागुची को 21-17 से हराया। ये मैच 50 मिनट तक चला। सिंधु 4 साल बाद यामागुची को किसी फुल मैच में हरा सकी हैं। उन्हें पिछली जीत थाईलैंड ओपन में 2022 में मिली थी। पिछले साल मलेशिया ओपन में यामागुची रिटायर्ड हर्ट हो गई थी। सिंधु ने 2 साल बाद कोई खिताब जीता है। उन्होंने 2024 में सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीता था। वो 2022 में सिंगापुर ओपन सुपर 500 में चैंपियन बनी थी। ये सिंधु के करियर का पहला सुपर 750 खिताब है। 2019 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के बाद ये उनका सबसे बड़ा इंटरनेशनल खिताब है। आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी

0: मानसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद में हंगामे के आसार। पेपर लीक और चढ़ावा चोरी मामले पर सरकार को घेरने के लिए विपक्ष तैयार। एनडीए के मंगल मिलन में सांसदों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। चढ़ावा चोरी मामले की जांच में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बदल सकता है एसआईटी का स्वरूप। विजय विश्वास पंत की जगह सीनियर आईपीएस किरण एस कर सकते हैं लीड। एक महीने में आ सकती है रिपोर्ट। दिल्ली के पास शंभू बॉर्डर पर आज किसानों की महापंचायत। भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में जुटेंगे कई राज्यों के किसान। हरियाणा दिल्ली पुलिस अलर्ट पर। जंतर मंतर पर फिर बैठे सीजेपी के समर्थक। नड्डा से मीटिंग के बाद रखी तीन मांगे। प्रदर्शन में 118 पुलिस वाले और 60 आंदोलनकारी घायल। वांगचुक मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई। सिक्किम के निर्माणाधीन टनल पर लैंडस्लाइड। एंट्री गेट बंद होने से अंदर फंसे 7 मजदूरों की मौत। 20 अब भी फंसे। गैस की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में आ रही है परेशानी।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद भारत की।
0: नमस्कार, स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बज गए हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। सुबह का सबसे पहला संपूर्ण न्यूज बुलेटिन लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं खबरें रफ्तार से और विस्तार से। लेकिन सबसे पहले खबरों की झलकियों पर एक नजर डाल लेते हैं। फिर सड़कों पर आए किसान। पंजाब और हरियाणा से दिल्ली पहुंच रहे अन्नदाता। क्या है उनका मुद्दा दिखाएंगे आपको। संसद के मानसून सत्र में हंगामा है बरपा। क्या आज बदलेगी सूरत, इस पर भी होगी चर्चा। पहाड़ों पर आ रही है बादल फोड़ आफत। मूसलाधार मुसीबत की खबर इस बुलेटिन में विस्तार से शामिल होगी। और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 100 शहर 100 खबर बुलेटिन की शुरुआत करें किसानों के दिल्ली कूच की खबर के साथ। क्योंकि पंजाब और हरियाणा के किसान महापंचायत करने के लिए दिल्ली कूच कर चुके हैं। दिल्ली किसान आज महापंचायत का आयोजन रख चुके हैं। देश बचाओ मोर्चा ने इस महापंचायत का आयोजन किया है। पंजाब और हरियाणा के अलावा हिमाचल, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, एमपी, महाराष्ट्र के किसान भी यहां पर पहुंचेंगे, ये खबरें आ रही हैं। शंभू बॉर्डर पर बड़ी संख्या में किसान जमा हो चुके हैं। ये महापंचायत भारत अमेरिका प्रस्तावित ट्रेड डील के खिलाफ की जा रही। किसानों का आरोप है कि अमेरिका के साथ होने वाली व्यापारिक डील से छोटे किसान, मजदूर और डेयरी उद्योग प्रभावित होंगे, इसीलिए वो इसे रद्द करने की मांग कर रहे हैं। कंवलजीत संधू मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। कंवलजीत, बॉर्डर पर क्या तैयारी है, कैसे इन किसानों को रोका जाएगा आगे कूच करने से?
2: आपको नजर आ रहा है बैरिकेड्स लगाए गए हैं और सरवन सिंह पंडेर कह रहे हैं हम शांतिपूर्ण आगे जाएंगे, नहीं जाने दिया जाएगा तो यहीं पर प्रोटेस्ट करेंगे। कैमरा पर्सन अमन के साथ कमलजीत संधू, शंभू बॉर्डर आज तक।
0: तो तस्वीरें ये शंभू बॉर्डर की आप देख रहे हैं जहां पर बड़ी संख्या में किसान जुट रहे हैं। उनका यह कहना है कि अगर आगे जाने से रोका गया तो वो बॉर्डर पर ही प्रदर्शन करेंगे, यहीं पर धरना देंगे। कई किसानों के जुटने की यहां पर संभावना जताई जा रही है कि आसपास के इलाकों से ये वहां पर पहुंचेंगे। कंवलजीत मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं। कंवलजीत, तैयारियां दिखाइए किस तरीके से वहां पर इन्हें बॉर्डर पर ही रोक दिया जाएगा, क्या कर रहा है पुलिस और प्रशासन?
2: हजारों किसान आए हैं और आप देख सकते हैं कि आपको यही जमावड़ा यहां पे नजर आएगा। और शंभू बॉर्डर वो आपको टोल गेट नजर आ रहा है। आपको ये भी बता दें कि देश बचाओ मोर्चा के तहत ये मार्च निकाला जा रहा था, दिल्ली के किसान घाट में जाना था और पंजाब के अलावा हरियाणा, हिमाचल, उड़ीसा तक के किसान यहां पर बैठेंगे। तो वहां पे इनको रोक दिया गया है। हैवी बैरिकेडिंग है, कंक्रीट ब्लॉक्स लगाए गए हैं और आपको बता दें वाटर कैनन तक लगाया गया है। तो कोशिश जरूर है कि यहां पे रोक दी जाए। अब हमने सरवन सिंह पंडेर से पूछा कि आपको आगे नहीं जाने दिया जा रहा तो क्या विकल्प है आपके पास, तो उन्होंने कहा हम बातचीत करेंगे और अगर नहीं जाने दिया जाएगा तो विरोध प्रदर्शन यहीं पे रहेगा। तो खास तौर पे एक दिन का विरोध प्रदर्शन है और अब जिस तरह से किसानों को रोक दिया गया है ऐसा लग नहीं रहा है वो आगे जाएंगे। लेकिन कह रहे हैं कि पिछले सालों के तहत जिस तरह से हमने देखा कि टेयर गैस और लाठीचार्ज चला था, इस बार ऐसा नहीं होगा। तो आप देखिए कि सड़क के किनारे यहां पे किसान बैठे हुए हैं और आपको दूर से अगर हम दिखाएं तो आपको नजर आएगा वहां पे बैरिकेडिंग हो चुकी है और आप ये देखिए यहां से रास्ता बंद है और दोनों तरफ का रास्ता शंभू बॉर्डर में बंद कर दिया गया है और अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। आप देख सकते हैं कि खास तौर पे स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली में और अब किसान भी बात कर रहे हैं वहां पे जाने की, लेकिन इनका कहना है कि इनका जो यूएस इंडिया ट्रेड अग्रीमेंट है उसके खिलाफ ये मोर्चा है और स्टूडेंट्स के साथ इनका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि हमने पहले से ही तय करके रखा था और सरकार को हमारी सुनवाई करनी चाहिए।
0: कमल जी, तो क्या कुछ किसान नेताओं को भी हिरासत में लिया गया है ताकि ये आंदोलन बड़ा रूप ना ले सके?
2: देखिए, कुछ किसान नेता हैं जिनको हिरासत में कल लिया गया था हरियाणा में। हमने चुडूनी साहब की बात की, वहां पे एक्शन लिया गया, वो बोल रहे हैं कि उनको भी छुड़ाना चाहिए। लेकिन जहां तक बात आ रही है, क्योंकि ये पंजाब के किसान हैं और ये जो शंभू बॉर्डर है पटियाला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, लेकिन अगर हम बात करें ये शंभू बॉर्डर जाता है अंबाला डिस्ट्रिक्ट में जो कि हरियाणा के पास पड़ता है, तो पंजाब की तरफ से तो कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन हरियाणा की तरफ से जो पुलिस वाले वो खड़े हुए हैं और मोर्चा संभाले हुए हैं और आगे जाने की इजाजत नहीं दी गई है। जो हम बात कर रहे हैं सेक्शन 163 बीएनएस लगा दिया गया, यानी कांग्रीगेशन नहीं हो सकता, तो इसका मतलब संकेत साफ है कि ये मोर्चा आगे नहीं जाएगा। और
0: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। बात करेंगे संसद के मॉनसून सत्र की, जो कि कल शुरू हो चुका है। सड़क से संसद तक हंगामा मचा हुआ है। कल संसद के दोनों सदनों का पहला ही दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। लोकसभा की कार्यवाही 6 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 5 बार स्थगित कर दी गई।
3: जहां तथ्य होते हैं, जहां तर्क होते हैं, वहां तूफान के लिए जगह नहीं होती है। अगर तर्क मजबूत है, तथ्य मजबूत है, तो शांत चित्त से भी अपनी आवाज को बुलंद बनाया जा सकता है।
4: माननीय अध्यक्ष जी,
5: प्रश्नकाल प्रश्न नंबर 1 12 बजे तक के लिए स्थगित। कल मंगलवार प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
6: संसद का मानसून सत्र शुरू होने से ठीक पहले पीएम मोदी ने जो नसीहत दी थी वो घंटे भीतर सांसद भूल गए।
5: उचित नियमों के तहत पर्याप्त समय।
6: लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई और हंगामे की वजह से 12 मिनट के भीतर उसे 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा।
5: सदन नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, चर्चा नहीं करना चाहते, सदन की कार्यवाही आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
6: दोपहर 12 बजे जब दोबारा लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो सभाध्यक्ष की कुर्सी पर दिलीप सैकिया थे, लेकिन सदन का नजारा वही था।
7: आप सब लोग सहयोग कीजिए, पहला दिन है, देश के जनता को एक अच्छा मैसेज दीजिए। सदन सहमति से चलता है, सदन आपको भी सुनेगा, सबका सुनेगा। प्लीज आप अपने आसन पर जाके विराज कीजिए। प्लीज नहीं, ऐसा नहीं होता। सदन नहीं चलना चाहते, सदन की कार्यवाही 12:30 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
4: माननीय सभापति जी,
6: सिर्फ 6 मिनट में दूसरा स्थगन, लेकिन अभी ये जारी रहने वाला था।
7: इट्स नॉट गुड, आई एम रिपीटेडली टेलिंग यू, दिस टाइप ऑफ बिहेवियर इज नॉट गुड फॉर द हेल्थी डेमोक्रेसी। दिस इज नॉट गुड, नो। आप सदन नहीं चलना चाहते, सदन नहीं चलने देंगे। सदन की कार्यवाही 1 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। 1 बजे तक
5: सब लोग कृपा करके सब लोग अपने आसन पे बैठे प्लीज।
6: 1 बजे दोबारा कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन 2 मिनट बाद ही फिर स्थगित कर दी गई।
7: ये सुस्त गणतंत्र के लिए उचित नहीं है, ये ठीक नहीं है। बार बार आपका हर विषय और ये बैनर पोस्टर, ये क्या नया परंपरा आपने शुरू किया है, ये उचित नहीं है।
4: माननीय सभापति जी,
6: चौथे स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे कार्यवाही शुरू हुई तो चेयर पर जगदम्बिका पाल थे, लेकिन सदन में पहले वाली स्थिति बनी रही।
5: द होल नेशन इज वॉचिंग यू, व्हाट परफॉर्मेंस यू आर शोइंग। आप यहाँ बेल में नहीं आने के लिए आए हैं, आप यहाँ बेल में आने के लिए नहीं आए हैं, आप अपनी सीट से देश के आप चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, अपने सवाल को उठाने के लिए आए हैं। प्लीज, मैं चाहता हूँ नियम 377 में चले, मैं सभा की कार्रवाई 3 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।
0: तो कल दोनों सदनों में हंगामा देखा गया, सदन सुचारू रूप से चल नहीं पाई, कोई बिल नहीं पेश हो पाया, लगातार विपक्ष हंगामा करता रहा सदन के अंदर सदन के बाहर। पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा जो विपक्ष लगातार उठा रहा है। इसके अलावा विपक्ष ने हंगामा किया राज्यसभा में, लोकसभा में वंदे मातरम से जुड़ा भी बिल पेश नहीं हो पाया राज्यसभा में। मानसून सत्र के पहले दिन दोनों सदनों को स्थगन देखना पड़ा। नीट पेपर लीक मामला अहम मुद्दा, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला, एथेनॉल, विपक्ष में तोड़फोड़ और विदेश नीति को लेकर लगातार ये मांग की जा रही है कि सरकार जवाब दे। और अब बात एनडीए की बैठक की करेंगे। इस बीच बड़ी खबर यह है कि मॉनसून सत्र में आज एनडीए के संसदीय दल की बैठक बुलाई गई है और यह बैठक करीब 1 घंटे बाद संसद परिसर में ही होगी। इस बैठक को मंगल मिलन का नाम दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में पीएम मोदी समेत एनडीए के सभी सांसदों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू बैठक में एनडीए सांसदों का स्वागत करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें बैठक में बीजेपी में शामिल होकर राज्यसभा पहुंचे नए सांसदों का भी स्वागत किया जाएगा। इनमें आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए राज्यसभा सांसद भी शामिल होंगे। हालांकि सूत्रों के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई के मंगलवार को होने वाले इस मंगल मिलन कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना नहीं है। इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित रहने वाले प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी जाएगी। तो सरकार और विपक्ष लगातार आमने सामने है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और विडंबना यह है कि दोनों पक्ष चर्चा चाहते हैं लेकिन असल में चर्चा की जगह हंगामा हो रहा है।
8: हम सब कह रहे हैं डिस्कस करो, एजुकेशन पॉलिसी में प्रॉब्लम्स हैं, बड़े बड़े इश्यूज हैं, आप डिस्कस करने के लिए राजी नहीं है और बच्चों पे आप टियर गैस कर रहे हो और उनकी पिटाई कर रहे हो, किस लिए? बच्चे हमारे।
9: सरकार कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, पार्लियामेंट के अंदर अगर चर्चा चले तो सबके लिए अच्छा है। चर्चा से इनका क्या डर है मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि सरकार के पास तो बहुत बहुत बहुत बहुत मेजोरिटी है, तो सुनने दो, देश की आवाज सुनाइए पार्लियामेंट में, यही है पार्लियामेंट का काम। तो आप मना कर रहे हैं कि सिर्फ आपके विषय उठाएंगे तो विपक्ष नेचुरली असंतुष्ट है।
10: हम लोग चाहते हैं कि सत्र चले और जो है ये अपने प्रश्न जो है वहाँ रखे, लेकिन अगर हुड़दंग करेंगे और वहाँ पे उत्पात मचाएंगे और जैसे जिस तरह से ये प्रोटेस्ट भी चल रहा है तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि जनता ने जिस सरकार को चुना है वो कैसे सरकार चलाएगी ये उनका अधिकार है। अगर आपको इतना ही है तो आप भी खड़े हो जाइए, तो आप नहीं, आप आर्म ट्विस्ट नहीं कर सकते गवर्नमेंट को कि आपको किसको सैक करिए किसको रखिए, तो ये आर्म ट्विस्टिंग अच्छी नहीं है।
11: हम अपनी मांग पर जो छात्रों की गूंज में राहुल गांधी जी ने कोटा में उठाया, राहुल गांधी जी ने देहरादून में उठाया, हम उस पर अडिग हैं।
12: इनकी रुचि भी नहीं है कि पार्लियामेंट चले। लोकतंत्र में जिस पार्टी का विश्वास ना हो तो उसकी सरकार कैसे पार्लियामेंट चलाएगी। सरकार का काम होता है सहमति बनाना, लेकिन सरकार सहमति बनाने में बिल्कुल असफल है। बहुत बड़े मुद्दे हैं जो हुए हैं, चाहे नीट की बात हो, चाहे राम मंदिर चोरी की बात हो, और बहुत से मुद्दे हैं लोगों के, लेकिन सरकार गंभीरता दिखा नहीं रही है।
13: अगर कुछ प्रॉब्लम है तो अच्छी तरह से डिस्कस करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ ऐसे प्रोटेस्ट करने से तो कुछ काम नहीं होगा। और आप अगर देश के जितने युवा है, एजुकेशन सिस्टम है, इसके लिए हमारी मोदी सरकार हमेशा साथ रहा है, बहुत काम किया है उसके लिए। अभी ये जो आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसका कोई मतलब ही नहीं है।
14: आई थिंक द होल प्रोसेस इज करप्टेड और इसका जो खामियाजा है, इसका जो
0: मानसिक जो तनाव से जो है वो हमारे देश का युवा और छात्र गुजर रहे हैं। और ये खाली नीट के पेपर की बात नहीं, न जाने कितने और पेपर लीक हुए हैं पूरे देश भर में। उत्तर प्रदेश में कितने पेपर लीक हुए हैं, हर नौकरी जो निकलती है उसका पेपर ही लीक हो जाता है। तो आखिर कमी कहाँ है, आखिर भ्रष्टाचार कहाँ है, और आखिर अकाउंटेबिलिटी और जिम्मेदारी यह सरकार लेगी कि नहीं देगी, लेगी, प्रश्न इस बात का है। और इस बीच बड़ी खबर, अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी हुई। इस पूरे मामले को लेकर एक नई एसआईटी का गठन किया जा सकता है। खबरों के मुताबिक आज इसका ऐलान हो सकता है। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार नई एसआईटी की अध्यक्षता एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी करेंगे। सूत्रों के मुताबिक आईजी रेंज लखनऊ किरण एस को एक नई एसआईटी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। एसआईटी में वित्त और प्रशासनिक विभाग के अन्य अधिकारियों को शामिल किए जाने की संभावना है। वर्तमान एसआईटी के अध्यक्ष लखनऊ मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत और विशेष सचिव वित्त नील रतन को हटाया जाएगा। नई एसआईटी पहले की जांच रिपोर्ट को अपनी तफ्तीश का हिस्सा बनाएगी और साथ ही नई एसआईटी सभी तथ्यों और साक्ष्यों की दोबारा तस्दीक करेगी। मामले की जांच इसी महीने के अंत तक पूरी किए जाने की संभावना है। आशीष श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशीष, ये नए एसआईटी के गठन की जरूरत क्यों पड़ गई है, जिसमें नए मेंबर्स हैं, पुराने को हटाया जाएगा लेकिन पुराने के जो फाइंडिंग्स हैं उनको शामिल किया जाएगा?
14: देखिए भैया, सबसे बड़ी बात है कि राम मंदिर जो चढ़ावा चोरी का मामला है वो जब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो कहीं ये ऑब्जर्वेशन में किया गया कि जो एसआईटी है उसमें आईपीएस का होना बहुत जरूरी है और इस वजह से जो आईएएस उसमें कर रहे थे उनको की जगह अब आईपीएस को रखा जाएगा। यानी कि जो विश्वास पंत है वो आईएएस है तो उनको अब हटाकर आईपीएस को रखा जाएगा। हालांकि किरण एस इसमें आईपीएस है तो उनकी लीडिंग में ही एसआईटी को आगे प्रोसीड किया जा सकता है। तो ये तो साफ है कि जो नए मेंबर है यानी एसआईटी जो अब बनाई जाएगी उसमें नए आईपीएस को रखा जाएगा, साथ ही साथ किरण एस जो ऑलरेडी आईएएस है उनको रखा जाएगा, जो आईपीएस है उनको रखा जाएगा और जो आईएएस है उनको हटाया जाएगा। क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन है और इसी वजह से जो पुरानी जो एसआईटी की रिपोर्ट है उसको भी इसमें शामिल किया जाएगा, उसके जो पॉइंट है वो भी शामिल किए जाएंगे। तो ये तो साफ है कि जो नए आईपीएस आएंगे, जो नई एसआईटी बनेगी वो पुरानी ऑब्जर्वेशन को भी साथ में रखेगा और उसके हिसाब से इस चढ़ावा चोरी की पूरी तरीके से जांच की जाएगी। और ये तो साफ है कि इस चढ़ावा चोरी के मामले में जो भी मुद्दों चाहे वो पुलिस के हो, एसआईटी के हो, सभी को कंसोलिडेट करके एक जगह लाया जाएगा और उसी रिपोर्ट को आगे बढ़ाया जाएगा कोर्ट में। तो ये तो क्लियर हो गया कि अब आईपीएस क्योंकि एक विवेचक भी उसमें होता है, उसमें आईपीएस की कैपेसिटी में अपनी एक क्षमता होती है जांच करने की, इस वजह से भी कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन में रखा गया है कि आईपीएस ही उसको जांच करे इस पूरे चोरी के मामले को, क्रिमिनल एक्ट के मामले में, और किस तरीके से इन्वेस्टिगेट करे। तो ये पूरा, हालांकि उसमें रिवेन्यू के अधिकारी भी शामिल किए जा सकते हैं एसआईटी में, ये भी है। तो ये तो जरूर है कि आईपीएस के नेतृत्व में ये अब एसआईटी रन करेगी उत्तर प्रदेश में और वहीं पर इसकी जांच होगी। जो पुराने इसमें आईएएस हैं उनको इसमें हटाकर इसमें नए को भी रखा जाएगा। तो ये क्लियर हो गया, जो एसआईटी बनेगी
0: ठीक है
14: वो कहीं ना कहीं अहम हो जाती है शराब चोरी के मामले को लेकर।
0: बहुत बहुत शुक्रिया आशीष इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आप सिक्किम से एक बड़ी खबर आ रही है, वहां नामची जिले में हुए लैंडस्लाइड में अब तक 7 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। सोमवार की दोपहर निर्माणाधीन समरदुंग टनल के गेट पर यह हादसा हुआ। एनएचपीसी के तीस्ता हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से जुड़े टनल के पास लैंडस्लाइड की वजह से 25 मजदूर टनल के अंदर ही फंस गए। भूस्खलन के बाद टनल की एंट्री पॉइंट मलबे से बंद हो गई। फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए तुरंत प्रशासन ने मोर्चा संभाला है, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। आशंका यह जताई जा रही कि टनल के अंदर मीथेन गैस का खतरा है, इसी वजह से बचाव अभियान की रफ्तार सुस्त है। कई घंटे के ऑपरेशन के बाद आज सुबह तक 7 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। ताजा जानकारी के मुताबिक सभी शवों को गैंगटॉक के अस्पताल में भेज दिया गया है।
15: सिक्किम के नामची में बड़ा हादसा, निर्माणाधीन टनल के एंट्री गेट पर लैंडस्लाइड, गेट बंद होने से टनल में फंसे मजदूर। ये तस्वीरें सिक्किम के नामची में बन रही टनल के अंदर की है, जब लैंडस्लाइड के बाद वहां काम कर रहे मजदूर फंस गए। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि टनल के अंदर कितना अंधेरा है और पानी और मलबा भी साफ देखा जा सकता है। टनल के अंदर फंसे मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन टनल के अंदर गैस होने की वजह से राहत और बचाव कार्य में काफी मुश्किलें आ रही हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी टीम के कई बचाव कर्मियों को अंदर जाने के दौरान चक्कर आए और कुछ बेहोश भी हो गए। लैंडस्लाइड के बाद जमीन और चट्टानों की परतें खिसकने से गैस बाहर निकली। इसके अलावा टनल का संकरा रास्ता और अंधेरा भी राहत कार्य में रुकावट बन रहा है। एसडीआरएफ,
6: जिला पुलिस और फायर सर्विस की टीमें मौके पर मौजूद हैं। पश्चिम बंगाल से भी एक विशेष रेस्क्यू टीम बुलाई गई है। ये टीम गैस से बचाव के लिए विशेष सुरक्षा उपकरणों के साथ पहुंची है। बताया गया कि ये टनल तीस्ता स्टेज 6 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के तहत बनाई जा रही है। आज तक ब्यूरो।
0: तापस सिंह गुप्ता मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। तापस, मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है क्योंकि जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन काफी धीमा है, वहां पर गैस का रिसाव है, दिक्कतें आ रही हैं, क्या जानकारी मिल रही है?
16: जी देखिए, रात भर ये राहत कार्य जो था वो चालू रखने की कोशिश की गई थी। हालांकि लगातार बारिश और खासकर अलग अलग जगहों पे भूस्खलन की वजह से कुछ हद तक ये राहत कार्य जो है वो इफेक्ट हुआ है। जो अभी तक ताज़ा जानकारी मिल रही है कि 27 लोग अंदर फंसे होने का अंदेशा लगाया जा रहा है। 7 लोगों की मौत की पुष्टि अभी तक आधिकारिक रूप से की गई है। 1 शख्स को अभी बाहर निकाला गया है लेकिन उस बारे में अभी भी कोई पुष्टि नहीं की गई है। SDRF NDRF की टीम और फायर सर्विसेज की टीम भी मौके पर तैनात है लेकिन अंदर ये जाने की जो कोशिश कल की गई थी वो विफल हुई थी क्योंकि अंदर कुछ हद तक जाने के बाद, कुछ 100 मीटर जाने के बाद अंदर मीथेन गैस के होने के वजह से जो राहत कार्य है वो ठप पड़ गया था। वापिस आ गए थे जो टुकड़ी गई थी अंदर लेकिन फिलहाल नए सिरे से कोशिश की जा रही है। अलग अलग बड़े मशीनों को लाया गया है ताकि उन पत्थरों को हटाकर अंदर प्रवेश किया जाए लेकिन ये काफी ज्यादा समय लगेगा। लेकिन ये 27 का जो आंकड़ा है ये एग्जैक्ट आंकड़ा है या फिर इससे ज्यादा लोग फंसे हैं इस बारे में अभी भी आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं की गई है लेकिन जितना कंस्ट्रक्शन साइट पे मौजूद जो थे उनसे बातचीत करके 27 का ये आंकड़ा आया है सामने। लेकिन समय बहुत कम है और समय के खिलाफ ये लड़ाई है, ये जंग है जो जीतने की कोशिश की जा रही है क्योंकि जितना समय अंदर ये लोग फंसे हुए रहेंगे उतना ही इनकी जीवित होने की संभावना कम होगी। लेकिन सरकार की ओर से बताया गया है कि हर मुमकिन कोशिश की जा रही है और आज उम्मीद किया जा रहा है कि बड़े मशीन आने के बाद इन मशीनों को काम पे लगाया जाएगा और फिर से अंदर प्रवेश करने की कोशिश की जाएगी, अंदर जाकर लोगों को बाहर लाने की कोशिश होगी। लेकिन ये बहुत जल्द ये काम नहीं हो पाएगा, ये काफी ज्यादा समय लग सकता है ऐसा ही अंदेशा लगाया जा रहा है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया तापस इस तमाम जानकारी के लिए आपका। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, NDA के मंगल मिलन की तस्वीरें आ रही हैं। यहां पर आज तमाम बीजेपी के और घटक दलों के नेता इस मंगल मिलन में शामिल होने वाले हैं। संसद सत्र के दौरान इसे आयोजित किया गया है। सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने वाले प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी जाएगी इस मिलन समारोह में। ललन सिंह JDU के पहुंच चुके हैं। इसी तरीके से तमाम अन्य दलों के वरिष्ठ नेता आज इस मंगल मिलन में पहुंचने वाले हैं। साथ ही आपको यह भी बता दें कि आज जो नए सांसद अलग दलों से NDA में शामिल हुए हैं उन्हें भी यहां पर आज बुलाया गया है। आपसे बीजेपी में आए राज्यसभा के 6 सांसदों का आज स्वागत किया जाएगा। इसी तरह से TMC से जो सांसद शामिल हुए हैं उनका भी स्वागत होगा। इसे मंगल मिलन का नाम दिया गया है। बात मूसलाधार बारिश ही करेंगे क्योंकि जम्मू कश्मीर में पुंछ सेक्टर में एक बार फिर लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड से भारी नुकसान हुआ है। लगातार हो रही भारी बारिश के चलते अचानक आए फ्लैश फ्लड से 7 लोगों की जान चली गई।

0: तिनके की तरह बहती गाड़ियां, ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के कारगिल की है। बादल फटने से यहां पानी का ऐसा उफान आया कि पेड़ और गाड़ियां तिनके की तरह बहती नजर आई। राजौरी के नौशेरा की तस्वीर भी देखिए, भारी बारिश से यहां मानवर नदी उफान पर है। दब्बड़ क्षेत्र में नदी के बीचों बीच एक व्यक्ति का शव दिखाई देने की सूचना मिली तो प्रशासन ने बड़े स्तर पर राहत बचाव अभियान शुरू किया। दो दिन तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन में कल दोपहर सेना के हेलीकॉप्टर की मदद से शव को बाहर निकाल लिया गया। पुंछ जिले के बफलियाज इलाके में कुदरत का रौद्र रूप देखिए। लगातार हो रही बारिश के बाद बादल फटा और फ्लैश फ्लड की चपेट में कई इलाके आ गए। ये स्कूल भी पानी की मार से बुरी तरह बर्बाद हो गया। ये तस्वीर पुंछ की है, जहां एक सुरंग पर पूरा का पूरा पहाड़ गिर गया, जिसकी चपेट में वहां काम कर रही मशीनें आ गईं। भारी बारिश के बाद शहर के बीचों बीच बह रहा पानी भी लोगों को डरा रहा है। पुंछ जिले में बारिश ने भारी बर्बादी मचाई है। भूस्खलन से सूरनकोट के मुर्रा इलाके में एक घर मलबे में दब गया, जिसमें 7 लोग जिंदा दब गए। अब किश्तवाड़ से आई डरावनी तस्वीर भी देखिए। रैटल पावर प्रोजेक्ट साइट पर अचानक से फ्लैश फ्लड से तबाही मच गई। पावर प्रोजेक्ट नदी के किनारे था, जो क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं डोडा में रागी नाला के पास लैंडस्लाइड की वजह से एक बस के ऊपर पत्थर गिरे, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। मीर फरीद के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक।
1: और अब बात उत्तराखंड में आसमानी आफत की करेंगे। हल्द्वानी में मूसलाधार बारिश से सड़कों पर सैलाब जैसा मंजर देखा गया, तो वहीं देहरादून में तमसा नदी इस वक्त उफान पर है।
0: उत्तराखंड के हल्द्वानी में सोमवार को जमकर आफत बरसी। कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहलाने वाले हल्द्वानी में मूसलाधार बारिश से सड़कों पर ऐसा मंजर दिखा मानो सड़कें समंदर बन गई हैं। भारी बारिश के चलते शहर की कई प्रमुख सड़कें देखते ही देखते पानी में डूब गई। जगह जगह बरसाती पानी सैलाब की तरह सड़कों पर बहता नजर आया, जिससे यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया। भारी बारिश से देहरादून में तमसा नदी में उफान आ गया। आम दिनों में शांत दिखने वाली तमसा पूरे वेग से बह रही है। तमसा नदी के किनारे बने मशहूर टपकेश्वर मंदिर की सीढ़ियों को देखिए, इस पर पानी इस तरह गिर रहा है मानो कोई झरना हो।
2: इस समय हम देहरादून के मशहूर टपकेश्वर मंदिर में मौजूद हैं और ये मंदिर के बीचों बीच से तमसा नदी यहाँ पर बह रही है। कितना विकराल रूप धारण की हुई है। पिछले कुछ दिनों से मौसम जो है वो बदला हुआ था और मानसून की बेरुखी की वजह से ऐसा लग रहा था कि ये नदियाँ जो है सूख जाएंगी, लेकिन एक बार फिर से ये ना सिर्फ रिचार्ज हुई है बल्कि पूरे उफान पर बह रही हैं। पिछले 24 घंटों में उत्तराखंड के अधिकतर शहरों में 100 mm के पास बारिश हुई, जिसमें पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार और आपको बताएं नैनीताल भी शामिल है, लगातार बारिश हो रही है। वहीं मसूरी के पहाड़ियों में बारिश होने की वजह से जो देहरादून की रिस्पना और बिंदाल नदी है वो भी उफान पर बह रही है।
0: उत्तराखंड में मानसून अक्सर काफी बर्बादी लेकर आता है। देहरादून मसूरी मार्ग का हाल देख लीजिए। भारी बारिश से पानी वाले बैंड के पास सड़क में दरार पड़ गई, जिससे मार्ग पर यातायात प्रभावित हो गया।
3: में बारिश का अलर्ट जारी है, कई रास्ते बंद हैं और नदियों का स्तर की बात करें तो नदियां जो हैं वो अपने पूरे प्रवाह के साथ बह रही हैं। ऐसे में कई स्थानों पर जो है वो जबरदस्त इम्पैक्ट देखने को मिला है। मसूरी की 707 हाईवे पर भी जबरदस्त इम्पैक्ट है और यहाँ पर सड़क का एक पूरा हिस्सा जो है वो भरभरा कर नीचे गिर चुका है। ये वो नज़ारा है जो हम दिखा रहे हैं। इस वक्त सड़क जो है वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है, जिसके बाद रास्ते को जो है वो बंद कर दिया गया है। सामने की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये वो गाड़ियां हैं जो फंस चुकी थी, जिनको निकाला जा रहा है।
0: भारी बारिश का असर चारधाम यात्रा पर भी पड़ा। ओडाधार से आगे कुराड़ गदेरे के पास मलबा और पत्थर आने से घनसाली केदारनाथ मोटर मार्ग कई घंटे बंद रहा। चारधाम यात्रियों और स्थानीय लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ा। लगातार बारिश के बीच प्रशासन ने लोगों से पहाड़ी मार्गों पर यात्रा के दौरान विशेष सावधानी बरतने, मौसम और सड़क की स्थिति की जानकारी लेकर ही सफर करने की अपील की है। हल्द्वानी से लीला सिंह बिष्ट और देहरादून से सागर शर्मा के साथ अंकित शर्मा आज तक।
1: और अब बात हिमाचल प्रदेश की करेंगे, जहां से तबाही की खबर आ रही है। लाहौल स्पीति में बादल फटने से भारी तबाही वहां मची है। यहां पर खांगसर और शुगु गांव में पहाड़ियों पर बादल फटा है। भारी तादाद में पानी और मलबा नीचे आया है। बाढ़ के चलते खेत और सड़कों को भारी नुकसान हुआ है। कार भी मलबे की चपेट में आई है। हालांकि कोई जनहानि इसमें नहीं हुई है। सबसे ज्यादा असर शुगु गांव में देखने को मिला। बाढ़ के साथ आए पत्थर और मलबा सीधे किसानों के खेतों में घुस गया। खेतों में तैयार खड़ी मटर, गोभी और अन्य नकदी फसलें मलबे के नीचे दब गई। पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं फसलें। इससे किसानों को भारी नुकसान पहुंचा है। और बात फुटबॉल की विश्व विजेता स्पेन की। मैड्रिड लौटने पर टीम का जोरदार स्वागत हुआ है। वहां खिलाड़ियों का स्वागत करने के लिए हजारों संख्या में लोग उमड़े। पूरे शहर में विजयी टीम का जुलूस निकला। फीफा वर्ल्ड कप विजेता की टीम के खिलाड़ी ओपन बस पर सवार होकर जुलूस में शामिल हुए। रविवार को न्यूजर्सी में खेले गए फाइनल में अर्जेंटीना को 1-0 से शिकस्त देकर स्पेन की टीम 16 साल बाद फीफा वर्ल्ड कप की चैंपियन बनी है। बिना ब्रेक की खबरों का सिलसिला लगातार 9 बज गए में जारी रहेगा। वक्त हो गया हेडलाइंस का।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो। इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद में हंगामे की स्थिति। पेपर लीक और चढ़ावा चोरी पर सरकार को घेरने के लिए विपक्ष तैयार। एनडीए के मंगल मिलन में सांसदों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। चढ़ावा चोरी मामले की जांच में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बदल सकता है एसआईटी का स्वरूप। विजय विश्वास पंत की जगह सीनियर आईपीएस किरण एस कर सकते हैं लीड। एक महीने में आ सकती है रिपोर्ट। दिल्ली के पास शंभू बॉर्डर पर आज किसानों की महापंचायत। भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में जुटेंगे कई राज्यों के किसान। हरियाणा और दिल्ली पुलिस अलर्ट पर। जंतर मंतर पर फिर बैठे सीजेपी समर्थक। नड्डा से मीटिंग के बाद रखी तीन मांगे। प्रदर्शन में 118 पुलिस वाले और 60 आंदोलनकारी घायल। वांगचुक मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई। सिक्किम के निर्माणाधीन टनल पर लैंडस्लाइड। एंट्री गेट बंद होने से अंदर फंसे 7 मजदूरों की मौत। 20 अब भी फंसे। गैस की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में आ रही है परेशानी। और इस बीच 100 शहर 100 खबर का हम रुक करें, उससे पहले आपको तस्वीरें मंगल मिलन जो कि एनडीए द्वारा आयोजित है उसकी तस्वीरें दिखा देते हैं। वहां पर लगातार नेताओं का आना जारी है। गृहमंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। ये संसदीय दल की बैठक को मंगल मिलन का नाम दिया गया है। इसमें उन सांसदों को भी उनका स्वागत किया जाएगा जो हाल ही में दूसरी पार्टियों से एनडीए में शामिल हुए हैं। और सबसे लंबे समय तक निर्वाचित रहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सम्मानित किया जाएगा। मंगल मिलन का इसे नाम दिया गया है। संसद के मॉनसून सत्र के बीच आज एनडीए के संसदीय दल की बैठक बुलाई गई है और यह बैठक करीब एक घंटे बाद संसद परिसर में ही शुरू होगी। और अब रुक करेंगे 100 शहर 100 खबर का। जम्मू कश्मीर के गुरेज में चूरा और बरनाई इलाकों में कई जगह बादल फटने और घरों में खड़ी फसलों को भारी नुकसान। जम्मू कश्मीर के रियासी में लगातार बारिश के कारण उफान पर चिनाब नदी, सलाल डैम के गेट खोले गए। नदी का दिख रहा है रौद्र रूप। जारी हुआ अलर्ट। अमरनाथ यात्रा अगले 2 दिन के लिए अगले आदेश तक स्थगित। श्रद्धालुओं को बेस कैंप से आगे जाने की इजाजत नहीं। लाहौल स्पीति में बारिश के बीच चंद्रभागा नदी का रौद्र रूप। नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण पुल डूबा। लोगों का जनजीवन प्रभावित। प्रशासन ने लोगों से अपील की जलस्तर कम होने तक पुल पार ना करें। नदी के उफान के बीच किसी भी तरह का जोखिम ना उठाएं। जम्मू कश्मीर के रजौरी में मुनावर नदी से भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने एक शव को बाहर निकाला। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। रजौरी में भारी बारिश से नदी में फंसे मवेशी। लोगों ने किया रेस्क्यू। प्रशासन की लोगों से नदी में न जाने की अपील। पहलगाम में सीआरपीएफ ने गर्भवती महिला की बचाई जान। समय पर अस्पताल पहुंचाया। सुरक्षित हुई डिलीवरी। उत्तराखंड के देहरादून हरिद्वार टिहरी में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी। टपकेश्वर मंदिर के पास तमसा नदी में उफान। पूरा मंदिर परिसर जलमग्न। भारी बारिश के चलते स्कूल बंद। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में भारी बारिश का रेड अलर्ट। प्रशासन पूरी तरह सतर्क। स्कूल बंद रखने के आदेश। सिक्किम की निर्माणाधीन टनल में भूस्खलन। एंट्री गेट बंद होने से अंदर फंसे 7 मजदूरों की मौत। एनएचपीसी की तीस्ता स्टेज 6 परियोजना का बड़ा हादसा। ऑक्सीजन की कमी के बीच एनडीआरएफ प्रशासन का बचाव काम जारी। टनल में जहरीली गैस बनी चुनौती। रेस्क्यू ऑपरेशन में आ रही हैं दिक्कतें। असम में लगातार हो रही है बारिश। बाढ़ की स्थिति गंभीर। अब तक प्राकृतिक आपदा में 5 की गई जान। 3 लाख से ज्यादा लोग हुए प्रभावित। ब्रह्मपुत्र समेत कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर। राहत और बचाव कार्य के लिए सेना एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम तैनात। प्रभावित लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पुंछ में एक बार फिर लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड से भारी नुकसान। लगातार हो रही बारिश के बीच अचानक आए फ्लैश फ्लड से 7 की मौत। भारी बारिश के बीच जम्मू भद्रवाह हाईवे पर बड़ा हादसा। चलती गाड़ी पर गिरे बोल्डर। बस समेत कई वाहन चपेट में आए। जम्मू कश्मीर में 2 दिन से हो रही लगातार बारिश की वजह से चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ा। लोगों से नदी किनारे से दूर रहने की अपील। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बादल फटने से भारी तबाही। खांगसर और शुगु गांव में पहाड़ियों पर बादल फटने से भारी तादाद में पानी और मलबा नीचे आया। मलबे के नीचे एक कार क्षतिग्रस्त। हालांकि कोई जनहानि नहीं लेकिन प्राकृतिक आपदा से फसलों को नुकसान। देश के कई राज्यों में मानसून हुआ एक्टिव। मैदानी इलाकों में गर्मी और उमस से राहत मिलने की उम्मीद। 6 राज्यों में रेड अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश और बिहार के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना। मेघालय के लिए मौसम का रेड अलर्ट जारी।
महाराष्ट्र कोंकणा गोवा इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी, पश्चिमी तटीय इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना। राजस्थान के 24 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी, जयपुर भरतपुर अजमेर कोटा और बीकानेर में हो सकती है भारी बारिश। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में बारिश होने से लोगों को गर्मी से मिली राहत। हल्द्वानी में मानसून का कहर, मूसलाधार बारिश के बाद सड़कें बनी दरिया, घरों तक घुसा पानी। यूपी के नाव में 4 घंटे हुई बारिश से आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त। अफगानिस्तान में अचानक आई बाढ़ ने मचाई तबाही, 10 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा लोग लापता। लापता लोगों में पारून शहर का मेयर शामिल, बाढ़ की वजह से 80 लोग घायल, लापता लोगों की तलाश के सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बाढ़ से नूरिस्तान की राजधानी पारून सबसे ज्यादा प्रभावित, कई घर और बुनियादी ढांचे क्षतिग्रस्त, जगह जगह जमे मलबे को हटाने का काम जारी। आज मॉनसून सत्र का दूसरा दिन, आज भी हंगामे के आसार, पेपर लीक चढ़ावा चोरी मामले को लेकर दोनों सदनों में गतिरोध के आसार। कोलकाता में कांग्रेस की रैली, पूर्व नेताओं को पार्टी में वापस आने का न्योता। बिहार में कांग्रेस ने छात्रों की गूंज महारैली करने का किया ऐलान, इस रैली में राहुल गांधी होंगे शामिल। सोनम वांगचुक बोले अनशन नहीं तोड़ूंगा, शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की। दिल्ली हाईकोर्ट सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि की याचिका पर सुनवाई को तैयार, रिपोर्ट मांगी, आज फिर होगी सुनवाई। सोनम वांगचुक मामले में आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई, दिल्ली एम्स डायरेक्टर को रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश। राहुल गांधी का केंद्र सरकार में निशाना, कहा मोदी सबसे युवा विरोधी प्रधानमंत्री हैं। राहुल गांधी का पेपर लीक मुद्दा उठाने से छात्र पीटे जाते हैं। सीजेपी के प्रोटेस्ट को लेकर राहुल गांधी का सरकार पर हमला, बोले पेपर लीक करने वाले अपराधी आजाद हैं, इस्तीफा भी नहीं ले सकते। केंद्र सरकार पर बढ़के अखिलेश यादव का, ये सरकार नहीं अहंकार है, छात्रों के साथ प्रताड़ना क्यों। आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी एनडीए के मंगल मिलन की बैठक, एनसीपीआई के नए राज्यसभा सांसदों का होगा स्वागत। प्रधानमंत्री मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक चुने गए प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी जाएगी। एनसीपीआई में आज मंगल मिलन में शामिल होने की संभावना कम है, आप छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए राज्यसभा सांसदों का स्वागत किया जाएगा। आज यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक है, सीएम योगी की अध्यक्षता में 10:30 बजे ये बैठक शुरू होगी। सीएम योगी का बहराइच और श्रावस्ती दौरा आज, 748 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। आज दिल्ली में किसानों की बड़ी रैली की तैयारी, इंडिया अमेरिका प्रस्तावित एफटीए के विरोध में किसानों का हो रहा है प्रदर्शन। किसानों का आरोप, भारत अमेरिका एफटीए से कृषि और डेयरी क्षेत्र पर पड़ सकता है बड़ा असर। किसान संगठनों की मांग, भारत अमेरिका व्यापार समझौते में दस्तावेज किए जाएं सार्वजनिक, बिना चर्चा के ना हो कोई फैसला। दिल्ली कूद से पहले शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी, शंभू बॉर्डर पर बीएनएस की धारा 163 लागू। किसान महापंचायत लेकर दिल्ली ट्रैफिक अलर्ट मोड पर, किसान घाट और आसपास के इलाकों में रूट डायवर्जन की तैयारी, सत्याग्रह मार्ग समेत कई रास्तों से बचने की सलाह। आज एक दिवसीय पटना यूनिवर्सिटी के सभी कॉलेजेस में हड़ताल, पटना विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ का फैसला। नवादा में शराब माफिया के खिलाफ कोर्ट के आदेश की बड़ी कार्रवाई, फरार आरोपी की संपत्ति को किया गया कुर्क। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को मिलेगा लोकमान्य तिलक पुरस्कार, 1 अगस्त को पुणे में आयोजित समारोह में गृहमंत्री शाह देंगे सम्मान। जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड बहाली की मांग तेज, जम्मू नेशनल कॉन्फ्रेंस का हुआ प्रदर्शन। बिहार के वैशाली में देर रात पूर्व मुखिया के घर के बाहर बमबाजी और फायरिंग, अज्ञात बदमाशों के इलाकों में दहशत फैलाने की कोशिश। बेगूसराय में डाकघर और पासपोर्ट कार्यालय को बम चढ़ाने की धमकी, 3 मंजिला बिल्डिंग कराई गई खाली। पटना में शराब तस्करी के लिए रैपिडो का इस्तेमाल कर रहे तस्कर, पुलिस ने रैपिडो कार से विदेशी शराब बरामद की, तस्कर कार से कूदकर भागा। मुजफ्फरपुर में रिटायर्ड बैंक कर्मी और पत्नी की चाकू गोदकर हत्या, टेप और ग्लास लेकर पहुंचे थे कातिल। बिजनौर में चारा काटने गए जंगल पर बुजुर्ग महिला पर तेंदुए ने किया हमला, बुजुर्ग महिला की मौके पर मौत। पटना में भारी बारिश से अस्पताल में घुसा पानी, मरीजों की बड़ी परेशानी, कई विभाग जलमग्न। मोतिहारी में नेपाल से छोड़े गए पानी से आई बाढ़, नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई इलाके पानी में डूबे। लखनऊ के जवाहर भवन की 4th मंजिल पर कैंटीन में लगी भीषण आग, 15 दमकल की गाड़ियों ने पाया काबू, कोई हताहत नहीं। पुणे में इलेक्ट्रिक स्कूटर में चार्जिंग के दौरान लगी भीषण आग, 1 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में बारिश के दौरान ट्रक और कार के बीच जोरदार टक्कर, दुर्घटना में 3 घायल। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में चलते ट्रक का ब्रेक फेल, पहले पिकअप फिर स्कूटी को मारी टक्कर। गुरुग्राम में रिटायर्ड एयर मार्शल से 2 करोड़ 68 लाख की ठगी का बंडाफोड़, दुबई से चल रहा था नेटवर्क, 6 गिरफ्तार। जालंधर में ट्रैक्टर ट्रॉली में साइकिल सवार को कुचला, हादसे में शख्स की मौके पर मौत।
राजस्थान के टोंक में शराब के ठेके में घुसा तेंदुआ, मची अफरा तफरी, अचानक हमले का व्यक्त वाक्या पूरे सीसीटीवी में कैद। समस्तीपुर में एक तरफा प्यार में छात्रा की हत्या, धमकी देने के दिन अगले दिन युवक को मारी गई गोली, आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने थाने का किया घेरा। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर की गुल्लक तोड़कर चोरी, चोर ने नोटों से भरा बैग लिया, सीसीटीवी में हुआ कैद। सवाई माधोपुर में दवा वापस नहीं लेने पर विवाद, ग्राहक ने मेडिकल संचालक पर किया कैंची से हमला। गुजरात के आनंद में 4 साल की मासूम से दुष्कर्म, हत्या के आरोपी सुरेश परमार की पुलिस मुठभेड़ में मौत। गुजरात के जामनगर फैक्ट्री के कामकाज दौरान भट्टी में विस्फोट, 3 मजदूर झुलसे, 2 की हालत गंभीर। गुजरात के जूनागढ़ में अवैध बायोडीजल राखन का भंडाफोड़, नगर निगम के 3 ठिकानों पर छापेमारी, 2,13,00,000 रुपए का अवैध बायोडीजल जब्त, 8 गिरफ्तार। ईरान पर अमेरिका के ताबड़तोड़ हमले जारी, 10वीं रात जारी अमेरिकी कार्रवाई में कई नए हमले किए गए। अमेरिकी सेना ने ईरान के कई इलाकों और द्वीपों को निशाना बनाया, ईरानी मीडिया प्रेस टीवी ने दी जानकारी।

0: ईरानी मीडिया प्रेस टीवी के मुताबिक बंदर अब्बास, चाबहार, गुड़ाक, सिरिक, शिराज और इस्फहान में धमाके सुने गए। प्रेस टीवी के मुताबिक सेंट्रल ईरान के इस्फहान में दो धमाके हुए। इसके अलावा खोमिन शहर में एक औद्योगिक केंद्र पर हमला किया गया है। ईरान पर हमले को लेकर अमेरिकी सेना का बयान। कमांडर इन चीफ के निर्देश पर यूएस सेना ने ईरान के खिलाफ हमले का एक नया दौर शुरू किया है। यूएस सेना ने कहा है कि हमलों का मकसद ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना है, जिनका इस्तेमाल हॉर्मुज में कमर्शियल जहाजों पर हमले के लिए किया जाता है। ईरान एक बार फिर जॉर्डन पर किया हमला। हमले को लेकर जॉर्डन की सेना ने जारी किया बयान। 3 ईरानी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर तबाह किया गया है। मिडल ईस्ट में अमेरिकी बेसिस को लेकर आईजीसी का बड़ा दावा। बहरीन और कुवैत में अमेरिकी ठिकानों को भारी नुकसान। आईजीसी ने कहा बहरीन और कुवैत की तो अब से कुछ ही देर बाद एनडीए की बैठक शुरू होने वाली है, जिसमें तमाम घटक दलों के शीर्ष नेता शामिल हो रहे हैं। हमने आपको तस्वीरें लगातार दिखाई हैं, कौन कौन से नेता अब तक पहुंच चुके हैं। ये बैठक मंगल मिलन के नाम से हो रही है। इसमें जो अन्य दलों के नेता हैं वो भी शामिल होंगे। संसद परिसर में ही इस बैठक को आयोजित किया गया है और मंगल मिलन इसे नाम दिया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर बधाई दी जाएगी। इसके अलावा जो घटक दलों से अन्य पार्टियों से जो एनडीए में पहले नहीं थे, उन सांसदों को भी उनका स्वागत किया जाएगा। अमित शाह सहित एनडीए के अन्य सांसद भी इस बैठक में पहुंच चुके हैं। तो मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। कल हंगामे की भेंट मानसून सत्र चढ़ गया था और लगातार कई मुद्दों पर मांग विपक्ष रख रहा है चर्चा की, लेकिन इस बीच ये मंगल मिलन नाम का समारोह आयोजित किया गया है एनडीए द्वारा। हिमांशु मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है, अब बैठक किसी भी वक्त शुरू होगी?
1: देखिए, बैठक जो है वो लगभग शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंच चुके हैं और ये एनडीए की पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग है। इससे पहले ये एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग मानी जाती थी, लेकिन ये हर मंगलवार हो रही है, इसीलिए इस बैठक का नाम जो है मंगल मिलन बैठक कर दिया गया है। साथ ही साथ नया सबसे बड़ी बात यह है कि बंगाल में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है और सबसे लंबे समय तक जो है एक इलेक्टेड प्रधानमंत्री के तौर पर जो है वो नरेंद्र मोदी का कार्यकाल रहा है, जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड तो उन्होंने तोड़ दिया इलेक्टेड प्रधानमंत्री के तौर पर, उसको लेकर एक जो है प्रस्ताव लाया जाएगा और उसमें प्रधानमंत्री का जो है बहुत जोर शोर से स्वागत भी होगा। और बंगाल में जो बड़ी जीत मिली है, भारतीय जनता पार्टी को पहली बार बंगाल में कमल खिला और वहां पे सरकार बनाई है, इन दोनों ही चीजों के लिए उनका जो है जोरदार एनडीए की बैठक के अंदर जो है वो स्वागत भी किया जाएगा। और साथ ही साथ इस रणनीति पे चर्चा की जाएगी कि सदन के अंदर किस तरीके से जो है सबको रहना है, सदन में तैयारी करके आना है आपको, सदन के अंदर जो भी चाहे किसी भी बिल पे चर्चा है, किसी भी विषय पे चर्चा हो रही है, उसके लिए आप तैयारी से रहे, सदन के अंदर हमेशा मौजूद रहे, तो ऐसा ना हो कि जब भी कोई जरूरत हो सदन के अंदर आप मौजूद ना हो, अनुपस्थिति जो है वो नहीं होनी चाहिए। इस तरीके के इंस्ट्रक्शन जो है वो दिए जाएंगे और अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है वो संबोधन भी होगा।
0: इसके अलावा हिमांशु, जो नए सांसद शामिल हुए हैं उनका कैसे स्वागत किया जाएगा? क्या एक एक करके सबको मंच पर बुलाया जाएगा या फिर किसी तरह का संबोधन होगा और सभी को एक साथ सम्मानित किया जाएगा?
1: देखिए, क्योंकि नए सांसद जो हैं हर साल आते हैं राज्यसभा के, कुछ सांसद का जब कार्यकाल खत्म होता है और नए सांसद का कार्यकाल शुरू होता है तो ये प्रक्रिया है। खुद ही संसदीय कार्य मंत्री जो है उनका स्वागत करते हैं पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग पर। मंच पे बुलाना बहुत वैसा नहीं रहता है, लेकिन एनसीपीआई एक ऐसा दल बना है टीएमसी के बागी सांसदों का जो एनडीए का पार्ट बना है, वो जरूर इस बैठक में शामिल हो सकते हैं और अगर वो हुए तो उनका भी स्वागत जो है वो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा जो है मंच से किया जाएगा।
0: और प्रधानमंत्री सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर उन्हें बधाई दी जाएगी, ये बधाई संदेश कौन देगा? ये भी किरण रिजिजू द्वारा होगा?
1: देखिए, ये जो पूरा का पूरा एक सम्मान रहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे लंबे समय तक रहने का, उस कार्यक्रम का संचालन जो है वो किरण रिजिजू करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री का स्वागत जो है वो नितिन नवीन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनडीए के सभी सहयोगी और गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं। उनको माला पहनाकर, उनको शॉल देकर और उनको जो है पुष्प देकर।
0: बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।

0: हमारी स्वास्थ्य रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी। वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
1: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
3: एयू
4: सोच बदलो और बैंक भी।
1: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
5: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
6: आगे आगे करेक्ट करेक्ट
7: मिल गया।
8: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
9: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
10: ये देखो, एक इन्वेस्टमेंट गुरु के टिप से पैसे डबल होंगे, बस ऑफर क्लेम करना है।
11: पैसे डबल ऐसे कोई भी ग्रुप से
12: तो अर्ज किया है। डबल रिटर्न्स के लालच में तुम्हें उलझाएंगे ये शेयर बाजार के अनवेरिफाइड ग्रुप, फेक टिप्स भेजकर तुम्हारी जेबें खाली कर जाएंगे।
13: वाह वाह वाह वाह।
12: सेबी और NSE का कहना है सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लें और पेमेंट सिर्फ वेरीफाइड अकाउंट या UPI पे करें।
14: समझ कर, इन्वेस्ट कर।
15: NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: Honey, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं.
2: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा. रुंगटा स्टील टीएमटी से बना.
3: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं. रुंगटा स्टील टीएमटी बार एकदम सॉलिड.

0: इन एसोसिएशन विद हिंट, बड़े आराम से शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू?
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
4: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस,
5: हेक्सा ऑर्गेनिक, रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
2: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

0: राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी पर ऐसी सियासत चोरी है कि एक तरफ जांच एजेंसियां चोरों का पूरा हिसाब पता नहीं लगा पाई है, दूसरी तरफ दिल्ली में चढ़ावा चोरी पर सियासत चोरी जबरदस्त है।
1: ये सरकार नहीं अहंकार है, बीजेपी के लोग आज से नहीं घोटाला कर रहे हैं, इनकी हमेशा ही कोशिश रहती है घोटाला करने।
2: राम मंदिर में चोरी क्यों हो रही है, तो क्या ये प्रधानमंत्री का जवाब है? शर्म आती है ऐसे प्रधानमंत्री।
3: इतना पाप करने के बाद मानसून का भगवान भी बख्शेगा नहीं हमें, लूट मची है, चंदा चोरी।
4: सरकार इतनी कठोर, इतनी निष्ठुर सरकार है, ये अपने आगे किसी की चलने नहीं देती।
5: उन्होंने रखवाली नहीं, चोरी नहीं है, डकैती।
0: अयोध्या में हुई चढ़ावा चोरी पर इस सियासी शोर के बीच जांच एजेंसियां तमाम खुलासे कर रही हैं, और ये खुलासे खुद आरोपियों से पूछताछ के बाद हुए हैं। एक दिन पहले करीब 40 घंटे तक पुलिस रिमांड में रहे टिन्नू यादव और उसके भतीजे मनीष यादव से हुई पूछताछ में पुलिस को बड़े राज की बातें पता चली। 39 घंटे की पूछताछ में ही पता चला है कि अप्रैल 2026 में टिन्नू यादव ने सिफारिश कर अपने भतीजे मनीष यादव को नौकरी दिलवाई थी, जिसके बाद 15 अप्रैल 2026 से मनीष यादव को चढ़ावे की गिनती के काम में लगाया गया था। महीना भर के अंदर मई के दूसरे हफ्ते में मनीष यादव ने अविनाश शुक्ला के साथ मिलकर पहली बार चोरी की। उससे पहले मनीष यादव अनुकल्प, लवकुश और अविनाश को चोरी में मदद कर रहा था। ये भी पता चला है कि नाइट शिफ्ट के दौरान मनीष यादव को चोरी की रकम के साथ बाइक पर बैठाकर टिन्नू यादव ही बिना चेकिंग मंदिर से बाहर ले जाया करता था। दोनों आरोपियों की निशानदेही पर बुलेट गाड़ी और एक कार पुलिस ने बरामद भी की है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अब तक की जांच में 3 कारों के साथ एक बुलेट की बरामदगी की गई है। उसके अलावा शेयर मार्केट में निवेश के दस्तावेजों से लेकर सोने की कुछ चीजें भी बरामद की गई है। सूत्रों के मुताबिक टिन्नू ने बताया कि किस गणना कर्मी की ड्यूटी कब लगाई जाएगी, यह वही तय करता था। उसी हिसाब से प्रभारी सुभाष श्रीवास्तव ड्यूटी लगाता था। उसके बाद रमाशंकर, अनुकल्प, लवकुश, मनीष, करुणेश और अविनाश आसानी से रकम पार करते थे। पता चला है कि जब भी गणना कक्ष में कोई चेकिंग की सुगबुगाहट होती थी तो टिन्नू यादव ही इस चोर गैंग को अलर्ट कर दिया करता था। 4 जून को चोरी के शक में कर्मियों की तलाशी लेने की बात भी टिन्नू ने लीक की थी, जिसके बाद अनुकल्प मिश्रा ने बाथरूम में 2,25,000 रुपए छिपाए थे।
6: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: नीलामी के आसार, पेपर लीक और चढ़ावा चोरी पर सरकार को घेरने के लिए विपक्ष तैयार, एनडीए के मंगल मिलन में पीएम मोदी का होगा संबोधन। चढ़ावा चोरी मामले की जांच में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बदल सकता है एसआईटी का स्वरूप, विजय विश्वास पंत की जगह सीनियर आईपीएस किरण एस कर सकते हैं लीड, एक महीने में आ सकती है रिपोर्ट। दिल्ली के बाद शंभू बॉर्डर पर आज किसानों की महापंचायत, भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में जुटेंगे कई राज्यों के किसान, हरियाणा और दिल्ली पुलिस अलर्ट पर बॉर्डर सील। जंतर मंतर पर फिर बैठे कॉकरोच जनता पार्टी समर्थक, नड्डा से मीटिंग के बाद रखी तीन मांगे, प्रदर्शन में 118 पुलिस वाले और 60 आंदोलनकारी घायल, वांगचुक मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज भी सुनवाई। सिक्किम की निर्माणाधीन टनल में लैंडस्लाइड, एंट्री गेट बंद होने से अंदर फंसे 7 मजदूरों की मौत, 20 अब भी फंसे, मीथेन गैस की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में आ रही है परेशानी।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
1: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: बड़ी खबर से। सबसे पहले आपको जम्मू कश्मीर के गुरेज की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जहां बादल फटने से भारी तबाही हुई है। बादल फटने के बाद कई गांवों में मलबा भर गया है और काफी नुकसान हुआ है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, पहाड़ों की तरफ से अचानक पूरा मलबा गांव की आबादी वाले इलाकों की ओर बढ़ने लगा और चीख पुकार मच गई। आप तस्वीरों में कुदरत के क्रोध की हाहाकारी तस्वीरें भी देख सकते हैं और घबराए हुए लोगों के चीखने की आवाज भी सुन सकते हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से मलबा अचानक से आया और गांव में आबादी वाले इलाकों में आ गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं साथ में लकड़ी, पत्थर, कंकड़, मिट्टी सब बहता हुआ आ रहा है। बादल फटने का ये मामला बताया जा रहा है जहां अचानक से फिर उसके ये पानी का भाव आया। तो तस्वीरें आपको गांव के अलग अलग इलाकों की दिखा रहे हैं जहां पानी आ गया, मलबा बहता हुआ आया और लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। जम्मू कश्मीर के गुरेज का यह इलाका है। ज्यादा जानकारी के लिए आइए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी मीर फरीद का। मीर, पानी बहुत ज्यादा आया है और उसके साथ मलबा भी बहुत आया है, नुकसान कितना हुआ?
1: अंजलि, बारिश की तबाही देखने को हमें मिल रही है पूरे जम्मू कश्मीर में और ये गुरेज से तस्वीरें जैसे आपने सही तरीके से डिस्क्राइब किया। गुरेज के अलग अलग गांवों में बादल फटने की घटनाएं हुई हैं जिससे सैलाबी रैले नीचे आए हैं और तबाही मचाई है। इन तस्वीरों में कम से कम तीन लोकेशंस पे आप देख सकते हैं कि कैसे बादल जो फटने से पानी नीचे आया है, अफरा तफरी मची है। हर जगह सैलाबी रेले में कहीं पत्थर जो जंगल के बीच से आते हुए पेड़ों को उखाड़ते हुए नीचे ये रेले आ रहे हैं और फ्लैश फ्लड की जो सबसे बड़ा चुनौती होती है कि अचानक सब कुछ इतना आनंद फानंद में होता है कि लोगों को जो है बचने का भी मौका नहीं मिलता। इसमें वैसी ही तस्वीरें हैं जहां लोग बहुत ज्यादा पैनिक में हैं, एक दूसरे को जो अलर्ट कर रहे हैं, बचने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन साफ तौर पे मकानों और गांवों के बीच से ये जो पानी है तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, जो भी इसके रास्ते में आता है उसको तबाह करके ले जाता है। पूरे जम्मू कश्मीर में अभी भी 48 घंटे का रेड रेनफॉल अलर्ट है, यानी कि भूस्खलन और फ्लैश फ्लड आ सकते हैं और सभी को जो है
0: जी बिल्कुल एहतियात बरतने की बेहद जरूरत है। शुक्रिया आपका। और अब चलिए दिल्ली, संसद के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है और पहले दिन की तरह ही आज भी दोनों सदनों में हंगामे के पूरे आसार हैं। सत्र के पहले दिन विपक्ष के हंगामे के चलते कार्रवाई नहीं चल सकी, लोकसभा को 7 जबकि राज्यसभा को 6 बार स्थगित करना पड़ा। विपक्षी सांसद नीट पेपर लीक, राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर चर्चा की मांग कर रहे थे। कुछ सांसद पोस्टर और बैनर लेकर भी सदन के अंदर आ गए थे। माना यह जा रहा है कि आज भी इन्हीं मुद्दों पर संसद के दोनों सदनों में भारी हंगामा हो सकता है। वहीं कल कांग्रेस जनता पार्टी यानी कि सीजेपी के प्रदर्शन और पुलिस के एक्शन को लेकर भी हंगामा और ज्यादा बढ़ सकता है। तो आपको बता दें कि कल जिस तरह का हाल देखा गया सदनों में, हो सकता है कि आज भी वैसा ही दिन देखा जाए।
2: हम सब कह रहे हैं डिस्कस करो, एजुकेशन पॉलिसी में प्रॉब्लम्स हैं, बड़े बड़े इश्यूज हैं, आप डिस्कस करने के लिए राजी नहीं है और बच्चों पे आप टियर गैस कर रहे हो और उनकी पिटाई कर रहे हो, किस लिए? बच्चे हमारे।
3: सरकार कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, पार्लियामेंट के अंदर अगर चर्चा चले तो सबके लिए अच्छा है। चर्चा से इनका क्या डर है मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि सरकार के पास तो बहुत बहुत बहुत बहुत मेजोरिटी है, तो सुनने दो, देश की आवाज सुनाइए पार्लियामेंट में, यही है पार्लियामेंट का काम। तो आप मना कर रहे हैं कि सिर्फ आपके विषय उठाएंगे, तो विपक्ष नेचुरली असंतुष्ट है।
4: हम लोग चाहते हैं कि सत्र चले और जो है ये अपने प्रश्न जो है वहाँ रखे, लेकिन अगर हुड़दंग करेंगे और वहाँ पे उत्पात मचाएंगे और जैसे जिस तरह से ये प्रोटेस्ट भी चल रहा है, तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि जनता ने जिस सरकार को चुना है वो कैसे सरकार चलाएगी ये उनका अधिकार है। अगर आपको इतना ही है तो आप भी खड़े हो जाइए, तो आप नहीं, आप आर्म ट्विस्ट नहीं कर सकते गवर्नमेंट को कि आपको किसको सैक करिए किसको रखिए, तो ये आर्म ट्विस्टिंग अच्छी नहीं है।
5: हम अपनी मांग पर जो छात्रों की गूंज में राहुल गांधी जी ने कोटा में उठाया, राहुल गांधी जी ने देहरादून में उठाया, हम उस पर अडिग हैं।
6: इनकी रुचि भी नहीं है कि पार्लियामेंट चले। लोकतंत्र में जिस पार्टी का विश्वास ना हो तो उसकी सरकार कैसे पार्लियामेंट चलाएगी। सरकार का काम होता है सहमति बनाना, लेकिन सरकार सहमति बनाने में बिल्कुल असफल है। बहुत बड़े मुद्दे हैं जो हुए हैं, चाहे नीट की बात हो, चाहे राम मंदिर चोरी की बात हो, और बहुत से मुद्दे हैं लोगों के, लेकिन सरकार गंभीरता दिखा नहीं रही।
2: अगर कुछ प्रॉब्लम है तो अच्छी तरह से डिस्कस करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ ऐसे प्रोटेस्ट करने से तो कुछ काम नहीं होगा। और आप अगर देश के जितने युवा है, एजुकेशन सिस्टम है, इसके लिए हमारी मोदी सरकार हमेशा साथ रहा है, बहुत काम किया है उसके लिए। अभी ये जो आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसका कोई मतलब ही नहीं है।
4: आई थिंक द होल प्रोसेस इज करप्टेड, और इसका जो खामियाजा है, इसका जो मानसिक जो तनाव से जो है वो हमारे देश का युवा और छात्र गुजर रहे हैं। और ये खाली नीट के पेपर की बात नहीं, न जाने कितने और पेपर लीक हुए हैं पूरे देश भर में, उत्तर प्रदेश में कितने पेपर लीक हुए हैं, हर नौकरी जो निकलती है उसका पेपर ही लीक हो जाता है। तो आखिर कमी कहाँ है, आखिर भ्रष्टाचार कहाँ है, और आखिर अकाउंटेबिलिटी और जिम्मेदारी यह सरकार लेगी कि नहीं देगी, लेगी, प्रश्न इस बात का है।
0: तो संसद के मानसून सत्र के बीच एनडीए की संसदीय दल की बैठक जारी है। ये बैठक संसद परिसर में ही हो रही है, जिसे मंगल मिलन का नाम दिया गया है। बैठक में हाल ही में बीजेपी में शामिल होकर राज्यसभा पहुंचे नए सांसदों का भी स्वागत किया जाएगा। इनमें आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए राज्यसभा सांसद भी शामिल है। और आइए रुक करते हैं हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा का। हिमांशु, मंगल मिलन शुरू हो चुका है, प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंच चुके हैं, संबोधन भी करेंगे, लेकिन नए सांसद कौन कौन से रहेंगे? सिर्फ आम आदमी पार्टी ही नहीं, कुछ और नए सांसद भी रहेंगे?
7: देखिए, आम आदमी पार्टी के साथ साथ जो टीएमसी से जो सांसद आए हैं, तीन राज्यसभा में सुखेंदु शेखर राव हैं, सुष्मिता देव हैं, एक अन्य राज्यसभा में सांसद हैं जो चुनकर आई हैं, तो ये इस तरीके से अगर देखा जाएगा तो ये नौ सांसद जो हैं वो अब जो है वो इस एनडीए की जो मंगल मिलन बैठक है पार्लियामेंट्री पार्टी की, उसमें शामिल हुए हैं। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि इस बैठक के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे लंबे समय तक जो है निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर जो उनका कार्यकाल है उसके लिए सम्मान किया जाएगा। उसके साथ साथ जो है पश्चिम बंगाल में जो भारतीय जनता पार्टी ने टीएमसी का किला ढहा है और वहाँ अपनी सरकार बनाई है, उसके लिए भी जो है उनको सम्मानित किया जाएगा। और साथ ही साथ ये बताया जाएगा कि संसद के अंदर किस तरीके से एनडीए की जो है वो रणनीति रहेगी, और सदन के अंदर सांसदों की मौजूदगी जो है वो जरूरी है। अगर आप किसी डिबेट के अंदर किसी बिल पर चर्चा के में शामिल होना चाहते हैं तो उसके लिए पूरी तैयारी करके आइए। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है अंत में संबोधन होगा और वो बताएंगे कि किस तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सांसदों को जो है जमीन पर जाके कार्यकर्ताओं को बताना चाहिए कि ये नीट के जो पेपर लीक का मामला है वो छात्रों का रहा है, लेकिन साथ में अब नीट पेपर लीक का जो मामला था उसको सरकार ने दोबारा कंडक्ट कराया, और उसके साथ साथ
0: जी मानसू तो रणनीति तैयार कर रही है सरकार अपनी। तो दूसरी तरफ सरकार की घेराबंदी की रणनीति पर चर्चा के लिए इंडिया गठबंधन की भी एक बैठक हो रही है। आपको बता दें कि विपक्ष लगातार सरकार को घेरने के लिए मुद्दों को उठाना चाहता है, जिनमें चंदा चोरी, नीट, इस जैसे कुछ मुद्दे हैं जिनको वो चर्चा के लिए पटल पर लाना चाहता है, लेकिन ऐसा अभी हुआ नहीं है और इसको लेकर वो बार बार सदन की कार्रवाई को भी स्थगित करता रहा है। तो आज बैठक होगी जिसमें इंडिया गठबंधन के सांसद पहुंचेंगे और चर्चा की जाएगी कि कैसे एकता के साथ इन मुद्दों को उठाया जाए, लेकिन चिंता भी रही है कुछ जिन पर मंथन हो सकता है। तो दिल्ली में कल हुए कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को लेकर पुलिस ने कनॉट प्लेस थाने में एक नई एफआईआर दर्ज की है। ये एफआईआर कनॉट प्लेस में हुए बवाल और गाड़ियों की तोड़फोड़ के मामले में दर्ज की गई है। सोमवार को कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल में रीगल सिनेमा के पास पुलिस की गाड़ियों में उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की थी और पुलिस टीम पर पत्थरबाजी की थी, जिसे लेकर ये एफआईआर दर्ज की गई है। तो बड़ी खबर यह है कि एक दिन पहले भी दिल्ली पुलिस ने अलग अलग जगहों से मिली शिकायतों के आधार पर एफआईआर दर्ज की थी, साथ ही 70 से ज्यादा लोगों को हिरासत में भी लिया था। इस बीच पुलिस सभी सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल वीडियो की जांच कर रही है। आपको बता दें कि झड़प के दौरान ड्यूटी पर तैनात 115 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए, जबकि 60 प्रदर्शनकारी भी घायल हुए हैं। वहीं प्रदर्शन के दौरान 15 से 20 सरकारी वाहनों में तोड़फोड़ भी की गई। और इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए आइए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी अंशुल सिंह का। अंशुल, एक बार फिर प्रदर्शन की तैयारी, क्या वहां पर लोग जुट रहे हैं, क्योंकि एक बार फिर से कॉल किया गया है?
8: जी हाँ, कल देर शाम को अभिजीत दुबे जो हैं यहाँ केरला भवन के पास आकर के धरने पे एक बार फिर बैठते हैं और फिर एक बार कॉल देते हैं कि हम ये धरना जो है इसको जारी रखेंगे। लेकिन आज सुबह की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ भारी संख्या में पुलिस बल तो मौजूद है ही, लेकिन उसके अलावा जो कांग्रेस जनता पार्टी के नेता हैं वो भी स्टेज पर मौजूद हैं और कुछ संख्या में भीड़ भी जो है वो यहाँ इस वक्त आने लगी है। आज सुबह से ही जो दिल्ली पुलिस है उन्होंने कई बार प्रोटेस्टर्स को समझाने की कोशिश की है कि वो कहीं बाहर ना रहें और अगर उन्हें धरना देना है तो एक बार फिर यहां आकर रहें, ताकि जो सड़कों पर अराजकता हमने कल देखी वो अराजकता सड़कों पर ना फैले। अब ये देखना होगा कि परमिशन तो अभी भी नहीं है इनके पास, तो अब दिल्ली पुलिस इन लोगों को कैसे कन्विंस करती है कि ये जगह खाली कर दे, क्योंकि यहां पे परमिशन धरना देने की अभी तक ना ही मांगी गई है और ना ही दिल्ली पुलिस ने दी है। और मैं आपको दिखाऊं, अगर यहां पे सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स जो हैं पूरी सड़क जो जंतर मंतर की तरफ आती है इसको एक बार फिर से बैरिकेड्स लगा करके बंद कर दिया गया है। हालांकि लोगों के आने जाने में अभी भी किसी तरह की पाबंदी नहीं है, गाड़ियों की मूवमेंट को बस रोका गया है और जो लोग यहां आना चाहते हैं वो अभी भी आकर के यहां धरने पर बैठ सकते हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस अभी भी नेताओं से बात करने की कोशिश कर रही है और बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है, ताकि बिना किसी भी तरह की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को दूषित किए बिना प्रोटेस्ट
0: जी अंशुल शांत हो, बिल्कुल बातचीत की कोशिश है। लेकिन दूसरी तरफ खबर आ रही है और ये बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से 4 एफआईआर अब तक दर्ज की जा चुकी हैं। इसमें आरोप लगे हैं प्रदर्शनकारियों पर कि उन्होंने बवाल किया और इसको लेकर 4 एफआईआर दर्ज की गई है। सार्वजनिक तौर पर व्यवस्था भंग करने का आरोप लगा है और एफआईआर दर्ज की गई है। कल की तस्वीरें जिस तरह सामने आई थी उसके बाद दिल्ली पुलिस ने 4 एफआईआर कर दी हैं। उन पर आरोप यह भी लगा है कि उन्होंने सरकारी काम पर बाधा डालने की कोशिश की। तो ये तस्वीरें कुछ हैं जो दिल्ली पुलिस की सामने आई हैं, जिसमें प्रदर्शनकारियों पर वो आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने कल उपद्रव किया। हमारे सहयोगी अरविंद ओझा हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। ये तस्वीरें अब हम देख रहे हैं जो सामने आ रही हैं अरविंद, जिनमें दिल्ली पुलिस ये दावा कर रही है कि हिंसक हुआ कल का प्रदर्शन, उपद्रवी थे, उन्होंने नुकसान पहुंचाया और अब एफआईआर 4।
9: और देखिए अंजलि, इस मामले में अब तक 4 एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जबकि 2 एफआईआर और दर्ज करने की प्रक्रिया चालू है। जो 4 एफआईआर दर्ज हुई है उसमें 1 एफआईआर जिसमें नई दिल्ली इलाके में ड्रोन उड़ाने को लेकर दर्ज हुई है। दूसरी एफआईआर हिंसा की साजिश को लेकर दर्ज की गई है, जबकि तीसरी एफआईआर में जो सरकारी काम में बाधा डालने, पुलिस पार्टियों पर, पुलिस कर्मियों पर हमला करने, सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की एफआईआर दर्ज हुई है। तो कुल मिलाकर 4 एफआईआर दर्ज हुई है, 2 एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया है। कल जिस तरीके से जो प्रोटेस्टर थे उनको एक जगह पर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने की इजाजत थी, लेकिन उसके बाद वो संसद मार्च का चूंकि ऐलान हुआ था, संसद की तरफ कूच करने की कोशिश कर रहे थे, जिनको पुलिस ने रोकने की कोशिश की और उसके बाद ये देखा गया और ये तस्वीरें सामने आई कि कनॉट प्लेस की पार्लियामेंट थाने के आसपास की बात करें, जंतर मंतर इलाके की बात करें तो वो तस्वीरें आई हैं कि जिसमें पुलिस पर पत्थरबाजी की गई, उसके अलावा जो पुलिस की गाड़ियां हैं उनमें तोड़फोड़ की गई, वो सब तस्वीरें सामने हैं, जिसको आधार बनाकर दिल्ली पुलिस ने 4 एफआईआर अब तक दर्ज की है और 2 एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है। इसमें कुल मिलाकर 118 लोग घायल हुए, जिसमें प्रोटेस्टर और पुलिसकर्मी भी शामिल
0: हैं। जी अरविंद, शुक्रिया। तो आज की कार्रवाई पर भी नजर रहेगी। उधर दिल्ली में कल हुए सीजेपी प्रदर्शन की नई तस्वीरें भी अब सामने आ रही है। नए वीडियो के जरिए यह दावा किया जा रहा है कि प्रदर्शन के दौरान उपद्रव हुआ, पत्थरबाजी हुई और पुलिस की गाड़ियों को निशाना बनाया गया।
10: दिल्ली के जंतर मंतर पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है। कल सोमवार के दिन जिस तरीके से प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन किया, उस वक्त जो बवाल था जब ज्यादा बढ़ गया, जब पुलिस प्रदर्शनकारियों को आगे जाने से रोक रही थी और पुलिस के ऊपर जबरदस्त प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया। ये जंतर मंतर का रोड है जो कि आगे सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो वहां पर प्रदर्शन जो है वो अभी भी जारी है सीजेपी का, और यह महज 500 मीटर की दूरी, और इस पूरी रोड पर अगर आप देखेंगे तो आपको पत्थर ही पत्थर जिस तरीके से पुलिस के ऊपर पथराव किया गया जब पुलिस प्रदर्शनकारियों को रोक रही थी, ये उस वक्त की तस्वीरें आप ये देखिए कि किस तरीके से पूरी सड़कों पर आपको इस वक्त पत्थर ही पत्थर जो है वो नजर आएंगे। जो प्रदर्शनकारी थे वो किस तरीके से प्रदर्शन में शामिल थे, पुलिस की बैरिगेटिंग करी रखी थी, पुलिस की बैरिगेटिंग को यहाँ पर जो है पूरी तरीके से तोड़ दिया गया, कई लेयर की बैरिगेटिंग थी। अगर आप देखेंगे तो पुलिस की तरफ से कई लेयर की बैरिगेटिंग जो है वो यहाँ पर कर रखी थी ताकि प्रदर्शनकारी आगे ना बढ़े, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने, वो आगे की तरफ बढ़ने लगे। और आप ये देखिए कि तमाम प्रदर्शनकारियों के जूते इस वक्त जो है वो आपको पूरी जंतर मंतर की सड़क पर जो है वो यहाँ पर नजर आएंगे। एक के बाद एक जो प्रदर्शनकारियों की तरफ से बवाल किया गया, दिल्ली के कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल पर प्रदर्शनकारियों की तरफ से गाड़ियों को तोड़ा गया, इसमें 118 से ज्यादा पुलिसकर्मी जो है वो घायल हुए, जिनमें IPS अधिकारी भी शामिल है, जिसमें स्पेशल सीपी ज्वाइंट सीपी रैंक के भी अधिकारी शामिल है। 70 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को जो है पुलिस के फिलहाल जो है वो हिरासत में लिया है। लगातार इस पूरे मामले के अंदर जो है वो जांच की जा रही है। आपको तस्वीर दिखेगी ये किस तरीके के हालात हैं, किस तरीके से बैरिगेटिंग को प्रदर्शनकारियों ने तोड़ा। जो प्रदर्शनकारी यहाँ पर शामिल थे उनके जो बैग है वो भी अभी यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे हालात थे क्योंकि जिस वक्त ये हालात बिगड़े उसके बाद जो भी प्रदर्शनकारी शामिल थे वो अपने बैग अपने सामान को यहीं पर छोड़ करके चले गए, प्रदर्शन में शामिल थे। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले पर दिल्ली पुलिस की तरफ से अलग अलग कई धाराओं के तहत जो है वो अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR जो है वो दर्ज की गई है। पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन के बाहर भी जबरदस्त तोड़फोड़ की गई।
0: उधर कल हुए कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के बाद आज भी दिल्ली संसद और उसके आसपास बेहद सख्त सुरक्षा की गई है।
11: आप देखिए कि पार्लियामेंट के प्रेमिसेस में हम आए हैं और पीछे बैरिकेड आपको नजर आ रहा है, यहाँ एंटी राइट व्हीकल्स और कुछ इस तरीके की बैरिकेडिंग रेल भवन में है, जहाँ पे कल हमने देखा था कि काफी प्रदर्शनकारियों का हुजूम था और टियर गैस जो है चलाई गई थी। उसके बाद पार्लियामेंट की सुरक्षा कुछ इस कदर 24 घंटे बाद नजर आ रही है रेल भवन के पॉइंट पर। मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।
0: तो सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई पर सियासत भी जोर पकड़ चुकी है। इस बीच कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने इस मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर संसद में नोटिस भी दिया है। तो सियासत लगातार गर्मा रही है सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर, क्योंकि कल जिस तरह के टकराव देखने को मिले सुरक्षा बलों और सीजेपी के जो प्रदर्शनकारी थे उसको लेकर अब कांग्रेस MP मणिकम टैगोर ने नोटिस की है और पुलिस एक्शन पर चर्चा की मांग की गई है। कुछ तस्वीरें शुरुआत में सामने आई थी जिसमें रैपिड एक्शन फोर्स की तरफ से डंडे बरसाए जा रहे थे छात्रों पर, अब कांग्रेस MP मणिकम टैगोर इस पर सवाल उठा रहे हैं और लोकसभा में चर्चा की मांग कर रहे हैं। जो एक्शन पुलिस का कल हुआ है छात्रों और सीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर। इस बीच शिवसेना UBT सांसद संजय राउत ने कहा है कि हम छात्रों के साथ खड़े हैं।
12: जो मारपीट हुई है उस पर आपकी क्या कहना है सर?
13: डरपोक है सरकार, बात नहीं करती, डरपोक।
12: चार FIR दर्ज की गई है सर,
13: FIR दर्ज करो, फिर भी बच्चे लड़ते रहेंगे और हम उनके साथ हैं।
0: तो सीजेपी प्रदर्शन पर दिल्ली पुलिस को का जो एक्शन हुआ उसको लेकर सियासत जोर पकड़ रही है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वीडियो जारी कर मोदी सरकार पर हमला बोला और सरकार को युवा विरोधी बताया है। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार अहंकार में डूबी हुई है।
14: दिस कंट्री हैज मेजॉरिटी ऑफ यंग पीपल, प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द मोस्ट एंटी यूथ प्राइम मिनिस्टर इंडिया हैज एवर हैड। द बॉयज एंड गर्ल्स हु आर walking the streets of Delhi are not criminals, they are demanding their rights. Their rights are to have an education system that respects them, to have an education system that is fair, to have an education system that is working. There's absolutely nothing wrong in what they are doing, and it's disgusting what the government is doing.
0: तो मानसून सत्र के पहले दिन दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी के संसद मार्च को लेकर भारी बवाल हुआ है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले भी दागे, जिसके बाद इस पर अब सियासत हो गई है। हालांकि विरोध प्रदर्शन के बीच सीजेपी के प्रतिनिधियों से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की 2 बार मुलाकात भी हुई। इस दौरान सीजेपी के प्रतिनिधियों ने अपनी मांगे सरकार के सामने रखी, उन्हें ज्ञापन सौंपा। सरकार को सौंपे गए इस ज्ञापन में सीजेपी ने 3 प्रमुख मांगे रखी हैं। तो आपको बता दें सीजेपी की मांगे हैं क्या। पहली मांग है कि सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को फौरन रिहा किया जाए। इस वक्त वो सफदरजंग अस्पताल में है, निगरानी में है डॉक्टरों की। दूसरी मांग ये है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटा दिया जाए, क्योंकि उनकी जिम्मेवारी बनती थी नीट परीक्षा के लीक होने की, ये उनका कहना है। वहीं तीसरी मांग के तहत नीट पेपर लीक के बाद खुदकुशी करने वाले छात्रों के परिवार वालों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की है। तो सीजीपी की ओर से कहा गया है कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो आंदोलन जारी रहेगा।
15: सर, से मुलाकात
0: तो वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
16: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से पर इन एसोसिएशन विद
17: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
16: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंस। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा इन एसोसिएशन विद
17: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
16: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
3: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
4: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
5: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
6: सोच बदलो और बैंक भी।
7: पापा।
8: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
9: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
8: छक्का?
9: सब कैशलेस हो गया है।
8: हाँ
10: टाटा AIG है तो भरोसा है।
11: इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
12: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
13: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: in association with
1: Sera Sanitaryware. It's your moment of Sera. E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा.
2: जहां खबर वहां न्यूज तक, ग्राउंड रिपोर्ट से लेकर एक्सक्लूसिव कवरेज तक, खबरों का सच तथ्यों के साथ, जनता के सवालों से लेकर सत्ता के जवाबों तक, देश दुनिया की हर बड़ी खबर सिर्फ न्यूज तक पर.

0: अभी कुछ दिन पहले ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन, और विश्व में बहुत कम देश ऐसे हैं कि जिनके पास ये सुविधा है, लेकिन भारत ने जो हाइड्रोजन ट्रेन देशवासियों को समर्पित की है वो सबसे ताकतवर इंजन वाली है और सबसे लंबी है। ये अपने आप में भारत के वैज्ञानिक, भारत के इंजीनियर्स, भारत के इनोवेटर्स, भारत के उद्योग।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: Hexa Organic, Radiant Skin and Nourished Hair, Pure Ayurvedic Beauty.

0: मानसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद में हंगामे के आसार, पेपर लीक और चढ़ावा चोरी पर सरकार को घेरने के लिए विपक्ष तैयार। एनडीए के मंगल मिलन में पीएम मोदी का होगा संबोधन। चढ़ावा चोरी मामले की जांच में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बदल सकता है एसआईटी का स्वरूप। विजय विश्वास पंत की जगह सीनियर आईपीएस किरण एस कर सकते हैं लीड। एक महीने में आ सकती है रिपोर्ट। दिल्ली के पास शंभू बॉर्डर पर आज किसानों की महापंचायत। भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में जुटेंगे कई राज्यों के किसान। हरियाणा और दिल्ली पुलिस अलर्ट पर, बॉर्डर सील। जंतर मंतर पर फिर बैठे सीजेपी समर्थक। जेपी नड्डा से मीटिंग के बाद रखी तीन मांगे। प्रदर्शन में 118 पुलिस वाले और 60 आंदोलनकारी घायल। वांगचुर मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज भी सुनवाई। सिक्किम की निर्माणाधीन टनल पर लैंडस्लाइड। एंट्री गेट बंद होने से अंदर फंसे 9 मजदूरों की मौत। 20 अब भी फंसे। गैस की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में आ रही परेशानी।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी। लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परो। इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।
0: सुबह में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब रुक करते हैं बड़ी खबर का। पेपर लीक मामले में प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोल दिया है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि यह बेहद गंभीर मुद्दा है, सरकार को छात्रों की बात सुननी चाहिए।
4: दिस अ वेरी डीप प्रॉब्लम। दिस प्रॉब्लम हैज बीन देयर फॉर मेनी इयर्स एंड वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट इट फॉर मेनी इयर्स। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन यूकी आई वाज टेकिंग दिस प्रॉब्लम अप बिकॉज एवरी यंग पर्सन आई मेट, यू विल नॉट बिलीव, आई मेट अ पर्सन हु वाज, ही वाज 28 इयर्स ओल्ड एंड ही वाज क्राइंग बिकॉज ही सेड दैट एवरी टाइम ही हैज गिवन द एग्जाम एंड ही हैज गिवन द एग्जाम सो मेनी टाइम्स, इट्स द पेपर लीक, समथिंग गोज रॉन्ग एंड ही at the same time he feels ki now I've invested so much in this, if I leave it now and try to start looking for a job now or try to do something, I will have no future. So he gets stuck in that cycle of going on and on, giving more and more exams and tests and preparing, and the boy is 28 years old and it's not one person, there are thousands and thousands of children like this. Everybody, every parent who is a parent of a child who is studying for an exam, every parent, we know what the children go through. We know how much they struggle. And these children are children who don't have resources. So they have a genuine problem. They are genuinely just asking. They had said they were going to do a peaceful protest. They were genuinely simply asking that they should be heard. Now the Prime Minister, he is the leader of the country. This is the youth of the nation. This country belongs to them. This parliament belongs to them. We are all here because of them. So the least he can do is hear them out. Listen to them. Call them. Understand what the issue is. They are asking rightly for the resignation of the minister. He is the person who is responsible. देखिए, हम राहुल जी लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं काफी समय से, ये कोई और कोई नया मुद्दा नहीं है, लेकिन इशू ये है कि ये बार बार बार बार हो रहा है और इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। मुझे याद है जब मैं यूपी में काम कर रही थी तो जो पेपर लीक हो रहे थे वो एक दो जो एकदम जो नीचे वाले अधिकारी हैं उनको आपने अरेस्ट कर लिया या दो दिनों के लिए रख लिया थाने में, उसके बाद बात वहीं पे रुक जाती है। किसी पर कार्रवाई नहीं हुई है, किसी पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। अब ये मुद्दा इतना ज्वलंत इसलिए है क्योंकि देश के युवा हैं ये और ये समझ रहे हैं कि हमारे फ्यूचर, हमारे भविष्य के लिए क्या है। हमारे माँ बाप लोन लेकर मुश्किल से हमें पढ़ाते हैं, हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारे लिए इतना मुश्किल है। आप कोचिंग सेंटर्स को देखिए, मैंने बहुत सारे देखे और कोचिंग सेंटर्स में जाइए और कोई भी माँ बाप जानता है, मतलब किसी भी लेवल का, किसी भी सोसाइटी में आप जानते होंगे आपके बच्चे जब पढ़ते हैं तो कितना टेंशन होता है, कितना जब एग्जाम होता है कितना टेंशन होता है। एज इट इज इतनी मुश्किल परिस्थिति है, ऊपर से आपने जॉब्स क्रिएट नहीं किए हैं इतने समय से, तो बच्चा अपने फ्यूचर को देख रहा है, कह रहा है कि मतलब मेरे फ्यूचर में फिर है क्या, मैं स्ट्रगल ही करते रहूं। मैं कह रही थी इंग्लिश में, मैं कह रही थी कि मैं कुछ ऐसे बच्चों से मिली थी जब मैं यूपी में काम कर रही थी, तो 26 साल के, 27 साल के, 28 साल के बच्चे कह रहे हैं हमारी तो शादी भी नहीं हो रही है, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं कि हमारी नियुक्ति की लिस्ट आएगी, पेपर लीक हो जाता है, हम एग्जाम देते हैं कुछ पता नहीं चलता, उसके बाद फिर हम दोबारा देते हैं। तो मतलब ये एक बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम है और इसको हल्के में कोई नहीं ले सकता। ये एक बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है। आज युवा बहुत ही दुखी है एक्चुअली। ये जो आप नाराजगी देख रहे हैं, ये एक्चुअली दुख है कि हमारे फ्यूचर, हमारे भविष्य के बारे में कौन सोच रहा है। और इनकी सिंपल सी चीज है, आप प्रधानमंत्री हैं, आपकी जिम्मेदारी है, ये युवा है, हम सब इस सदन में रोज आते हैं। आप ना तो यहाँ पे आप चर्चा करना चाहते हैं, ना ऑपोजिशन को आप पॉइंट उठाने देते हैं, आप डिस्कस नहीं करना चाह रहे हैं। ये सदन है किसका? ये उन्हीं युवाओं का है ना जिसको आप रोक रहे हैं बाहर, जिन पर आप लाठी चार्ज कर रहे हैं, जिन पर आप आंसू गैस चला रहे हैं। ये तो मतलब ये सदन ही उनका है, हम सब यहाँ है, किसने हमें यहाँ रखा है, उन्होंने ये रखा है, तो उनकी बात तो सुन ले। बिल्कुल एंटी यूथ है, देखिए एंटी यूथ है, एंटी गरीब है, एंटी किसान है। अब 12 साल हो गए हम सब देख रहे हैं ना, किसान आंदोलन कर रहे हैं, आप उनपे दमन कर रहे हो, अब बच्चों पे दमन कर रहे हो। बच्चे हैं, सुन लीजिए इनकी बात, क्या होने जा रहा है। अगर इनकी बात शांति से सुन लें, आप मंत्री जी की जिम्मेदारी है, उनसे रिजाइन करवाइए। देखिए एक जमाना था जब मंत्री जिम्मेदारी लेते थे, मुझे याद है एक ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था शायद 80s में, अगले दिन उन्होंने इस्तीफा दिया।
0: मंगल मिलन के बाद संसदीय कार्य मंत्री इस वक्त संबोधित कर रहे हैं प्रेस को, आगे सीधा सुनते हैं।
5: पार्टी का अध्यक्ष बनने के बाद राज्यसभा सदस्य बनकर के आज पहले बार मीटिंग में भाग लिया। मीटिंग बहुत अच्छी रही, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर इस मंगल मिलन में एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी को संबोधित किया, मार्गदर्शन दिया है। सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश ने इस कुछ महीने के अंदर में जो सफलता प्राप्त की है उनके बारे में जानकारी दिया है, और कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं उसका भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कई देशों के साथ भारत ने किया है, उस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है जितना भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं उसमें किसानों को लेकर के, किसानों का इंटरेस्ट उसको प्राथमिकता देते हुए कोई नुकसान होने नहीं देंगे। किसी भी देश के साथ, किसी भी गुट के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं उसमें किसानों का हित को सबसे सर्वोच्च ध्यान दिया जाएगा और दिया गया है, इसलिए ये किसानों के हित में और देश हित में रहेगा। नीट के एग्जाम के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब पेपर लीक का खबर आए तुरंत सरकार ने कार्रवाई किया और 13 लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया है, और साथ साथ जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका भविष्य को नुकसान ना हो इसलिए री एग्जामिनेशन नीट का प्राथमिकता दिया गया और री एग्जामिनेशन को सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक कंडक्ट किया गया और उसका रिजल्ट निकालने में कोई विलंब नहीं किया। तो दोबारा इस तरह का पेपर लीक ना हो इसके लिए सख्ती से कदम जो उठाया गया है, जिन्होंने पेपर लीक धंधे में जो लिप्त है, जो लोग दोषी पाए गए हैं जिसको अरेस्ट किया गया है उसको जेल में डाल करके प्रधानमंत्री जी ने अपील भी किया है कि उनका जो सजा है उसको सख्ती से सख्ती सजा कैसे दिया जाए उसमें सारा टॉप क्लास के वकील लोग भी साथ दे ताकि जो पेपर लीक जैसे पाप काम किया है उन लोगों को घोर सख्त सजा मिले और आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया। और प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, पूरा देश का हर एक राज्य में जहां जहां पेपर लीक करने में जो लोग लिप्त हैं, जो लोग इस धंधे में इन्वॉल्व है, जिन्होंने काम इस तरह का घिनौना किया है, पाप काम किया है, उनको सजा देने के लिए सब एकजुट होना चाहिए। ये कोई दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें, इसको प्रधानमंत्री जी ने बल दिया है। और साथ में अभी जो सत्र, जो मानसून सत्र चल रहे हैं उसमें पूरा एनडीए सकारात्मक भूमिका निभाएंगे। हम देश के लिए जो भी बिल्स बिजनेस लेके आए हैं इसके लिए पूरा एनडीए एकजुट होकर के हम इसको पारित कराएंगे और हम विपक्ष के साथियों से भी हम अनुरोध करते हैं कि हम मतभेद हो सकते हैं अलग अलग पार्टियों का, लेकिन संसद देश के लिए, देश का भविष्य के लिए, युवाओं के लिए काम करे और इसके लिए हम संसद के सदस्य चुन के आए हैं, सब मिलकर के काम करें, इसमें बल दिया।
6: धन्यवाद। डिड पीएम स्पीक एनीथिंग अबाउट यस्टरडेज प्रोटेस्ट?
5: प्राइम मिनिस्टर हैड स्टेटेड वेरी क्लियरली दैट ऑल दोस हु वर इन्वॉल्व इन पेपर लीक्स इन द रिसेंट नीड पेपर लीक्स आर अरेस्टेड, 13 ऑफ देम आर पुट इन टू जेल एंड प्राइम मिनिस्टर डिजायर्स दैट दीज पीपल शुड बी गिवन मोस्ट स्ट्रिंजेंट पॉसिबल punishment. And also Prime Minister stressed that to prevent any future leaks for any examination for any state, we must come together to ensure.
0: और हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा जुड़ गए हैं। हिमांशु, सड़क पर जिन मुद्दों को लेकर किसान और छात्र आंदोलन कर रहे हैं उन्हीं मुद्दों को आज मंगल मिलन में प्रधानमंत्री ने भी उन पर कुछ बोला, ये क्यों अहम हो जाता है?
7: देखियो, क्योंकि जिस तरीके से कल मार्च निकाला गया और प्रोटेस्ट चल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया कि जो नीट का पेपर लीक हुआ है उसके लिए जो है हम रिस्पॉन्सिबल हैं, हमने आगे कार्रवाई जो है की है और ये एक घोर पाप है, जिन लोगों ने किया है उनको सजा दी जाएगी, हम अकाउंटेबल लोग हैं, हम जानते हैं जिम्मेदारियां। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि जो भी लोग इसके दोषी हैं उनको सजा मिलेगी और जिस तरीके से लोगों को अरेस्ट किया गया है और आगे पूरा जो एक नेक्सस है उसको कैसे ध्वस्त किया जाएगा उस पर जो है वो सरकार काम कर रही है।
0: जी शुक्रिया हिमांशु इस पूरी जानकारी के लिए। तो ट्रेड डील के बारे में भी बात की आज प्रधानमंत्री मोदी ने, उनका कहना है कि इससे किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन संसद सत्र के बीच अब किसान संगठनों ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज दिल्ली के किसान घाट पर किसान संगठनों ने महापंचायत बुलाई है जिसमें पंजाब हरियाणा समेत कई राज्यों के किसान शामिल होंगे। किसान संगठनों ने ये महापंचायत भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते यानी कि एफटीए फ्री ट्रेड डील के विरोध में बुलाई है। किसान नेताओं का कहना है कि यह समझौता देश के किसानों के हितों को नुकसान पहुंचाएगा। तो आइए सीधा रुक करते हैं हमारी सहयोगी कमलजीत संधू का, जो जुड़ रही है हमारे साथ शंभू बॉर्डर से, जहां पर पंजाब के किसान जुटने शुरू हो गए हैं। कमलजीत, आरोप ये लगाते हैं कि एफटीए की वजह से उन्हें नुकसान हो सकता है और इसकी जानकारी उन्हें व्हाइट हाउस से मिल रही है। सरकार उनसे क्या कोई डायलॉग नहीं कर रही है कि एफटीए से उन्हें नुकसान होगा या नहीं?
8: यही रोना है किसान नेताओं का। उन्होंने कहा है कि एक दिन का आंदोलन कर रहे थे वो दिल्ली के किसान घाट में, लेकिन उन्हें रोका गया है। हम इस वक्त हैं शंभू बॉर्डर पे, आप देख सकते हैं कि किसान रुके हुए हैं। आपको यहाँ पे किसान, किसान नेता और किसान के आपको ट्रैक्टर भी यहाँ पे नजर आ जाएंगे, लेकिन ये जो सारे आए हैं बिना ट्रैक्टर के आए हैं, आपको बता दें ये बसों में आए थे। इनका पूरा उद्देश्य था कि दिल्ली में जाके वो विरोध प्रदर्शन करें, और खासतौर पर जैसे यूएस और भारत का ट्रेड, जिनका इनका कहना है कि भाई जो छोटे किसान हैं उन्हें भारी नुकसान होगा, क्योंकि अमेरिका के किसान हैं वो उनको काफी भारी सब्सिडी मिलती है, उनके पास मॉडिफाइड क्रॉप है, ये सारी तमाम चीजें हैं। और उन्होंने कहा है कि जो जानकारी उन्हें मिली है वो उन्हें व्हाइट हाउस के प्रेस रिलीज से मिली है, उन्हें कोई साझा जानकारी नहीं दी गई थी। और यही चीज वो कह रहे हैं कि वो डायरेक्ट बातचीत करना चाहते हैं मोदी सरकार से, लेकिन क्योंकि ये अब जा रहे थे और उसी वक्त है जहां पे जो बच्चे हैं खासतौर पे स्टूडेंट्स हैं वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हालांकि इनका कहना है कि हमारा कोई लेना देना उनसे नहीं है, हम सहानुभूति जरूर रखते हैं, लेकिन हमारा अपना ही एक आंदोलन था जिसपे सुनवाई होनी चाहिए। आपको बता दें कि शंभू बॉर्डर के अलावा खनौरी बॉर्डर पे भी हजारों किसान रोके गए हैं, पहवा बॉर्डर पे भी रोके गए हैं, इसी तरह से करनाल में, सोनीपत में जगह जगह बैरिकेड लगाए गए हैं। तो जाहिर सी बात है किसान कह रहे हैं कि भाई हमारी नाराजगी जो है सरकार से उस पर सुनवाई की जाए। तो यहां पे अब उनको क्योंकि रोक दिया गया है, आपको बता दें कि सेक्शन 163 बीएनएस लगा दिया गया है, पोस्टर्स लगा दिए गए हैं कि 100 मीटर के तहत किसान नहीं जा सकते, अगर जाएंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और किसान नेता किसानों के साथ यहां पे रुक गए हैं, आपको देख सकते हैं कि कुछ किसान हैं, आपको बता दें गुलाब सिंह चंदूनी है, उन्हें हिरासत में ले लिया गया, कई और किसान हैं जिन्हें डिटेन किया गया। तो ये चाह रहे हैं कि ये दिल्ली पहुंचे और अपनी आवाज बुलंद करें, लेकिन इनका कहना है कि सेरी सरकार और मोदी सरकार दोनों ही इनको रोक रही है। आपको बता दें कि पंजाब सरकार की तरफ से यहां पे आवाजाही पे कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन क्योंकि ये पटियाला डिस्ट्रिक्ट है और अंबाला से सटा हुआ है, तो वहां पे हरियाणा पुलिस की तैनाती है, कमांडोज है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, और एंटी रायट गियर के अलावा अगर हम वाटर कैनन की बात करें और पूरी तैयारी की गई है। लेकिन किसानों ने कहा है कि जो भी वो विरोध प्रदर्शन करेंगे वो शांतिपूर्ण रहेगा, और पिछले समय की तरह जिस तरह से हमने देखा कि कन्फ्रंटेशन हुआ था जहां पे टियर गैस और लाठीचार्ज हुआ था, उस तरह की गुंजाइश इस बार नहीं है। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण है, और हमने देखा कि सरवंत सिंह पंडेरा आगे जाके उन्होंने बातचीत भी की, और हरियाणा पुलिस की तरफ से बोला गया कि भाई आप आगे नहीं जा सकते हैं, आपकी सुनवाई जरूर होगी, लेकिन कौन करेगा सुनवाई उसके ऊपर कोई बातचीत नहीं की गई।
9: जी शुक्रिया कमलजीत, और इसी महापंचायत को लेकर किसान नेता सरवंत सिंह पंडेर से बात की थी कमलजीत ने।
8: देश बचाओ मोर्चा ने एक बार फिर कमर कस ली है और दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं, लेकिन बैरिकेडिंग लगा दी गई है। और खासतौर पे हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त हैं किसान नेता सरवंत सिंह पंडेर। सर, दिल्ली में एक दिन का मोर्चा है लेकिन उससे पहले हैवी बैरिकेडिंग है, कंक्रीट ब्लॉक्स लगा दिए गए हैं, अब आपके पास क्या विकल्प है और किन मांगों को लेकर आप दिल्ली जा रहे हैं?
10: नहीं देखिए, मांग तो हमारी एक ही थी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है देश हित में नहीं किया जाना चाहिए। पीयूष गोयल का जो हम कल न्यूज में देख रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि हम कृषि के साथ और डेयरी क्षेत्र के साथ कोई भी समझौता नहीं करेंगे, उनका कहना। हम कहते हैं जो व्हाइट हाउस ने, आपने तो हमें कुछ नहीं बताया, व्हाइट हाउस ने जो प्रेस रिलीज दी उनमें कपास, सोयाबीन, मक्का, ड्राई फ्रूट, सेब, नाशपाती और आगे था अनदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, उसमें सब हो जाता। एक आपने व्हाइट रेंज ट्रेड एग्रीमेंट, व्हाइट रिंगिंग ट्रेड एग्रीमेंट, कुछ भी कह लीजिए इसको, व्यापक व्यापारक समझौता आप कर रहे हो, और हमें बोल रहे हैं कुछ भी नहीं है, आप हम देश के

0: के अंत तक पूरी किए जाने की संभावना है। और रुक करते हैं जम्मू कश्मीर के गुरेज का, जहां की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां बादल फटने से भारी तबाही की खबरें आ रही हैं। बादल फटने के बाद कई गांवों में मलबा भर गया है और काफी नुकसान भी हुआ है। पहाड़ों की तरफ से अचानक पूरा मलबा गांव की तरफ आबादी वाले इलाकों में आने लगा और चीख पुकार मच गई। आप तस्वीरों में कुदरत के क्रोध की हाहाकारी तस्वीरें भी देख सकते हैं और घबराए हुए लोगों की चीखने की आवाजें भी सुन सकते हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग तस्वीरें अलग अलग गांव की, जहां पर बादल फटने के बाद पानी के साथ बहता हुआ पहाड़ से मलबा गांव की तरफ बढ़ चला। और जब ऐसा हुआ तो गांव वाले डर गए, वो अपने घरों से बाहर निकल आए। नालों में जिस तरीके से पहाड़ों से पेड़ों को आते हुए आप देख सकते हैं, चट्टाने मिट्टी ये सारा मलबा लेकर ये पानी गांव में घुस गया। और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
3: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
4: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit-disclosures for fees and details.
5: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you nonstop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
6: Sokudo.
7: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
8: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
9: सोच बदलो और बैंक भी।
1: इन एसोसिएशन विद
10: सेरा सैनिटरी वेयर, इट्स योर मोमेंट ऑफ सेरा। E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
11: देश की बेटी ने लहराया तिरंगा, देश की आन बान शान बनी पीवी सिंधु, जापान ओपन जीतने वाली पहली भारतीय बनी पीवी सिंधु। जी हां, कमाल हो गया, धमाल हो गया। जापान ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीयों को गर्व करने का मौका मिला है। 31 साल की सिंधु ने रविवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में जापान की अकाने यामागुची को 21-17 से हराया। ये मैच 50 मिनट तक चला। सिंधु 4 साल बाद यामागुची को किसी फुल मैच में हरा सकी हैं। उन्हें पिछली जीत थाईलैंड ओपन में 2022 में मिली थी। पिछले साल मलेशिया ओपन में यामागुची रिटायर्ड हर्ट हो गई थी। सिंधु ने 2 साल बाद कोई खिताब जीता है। उन्होंने 2024 में सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीता था। वो 2022 में सिंगापुर ओपन सुपर 500 में चैंपियन बनी थी। ये सिंधु के करियर का पहला सुपर 750 खिताब है। 2019 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के बाद ये उनका सबसे बड़ा इंटरनेशनल खिताब है। आज तक ब्यूरो।

0: पीछे छह फुट वाली रखी, पीछे दुणाली, आगे हैट पे लिखा था गुजर। बात करा दे दीदी ते वर्षे मेरे निकले जान हुआ के ते वर्षे।
1: वाह, ये अलग लेवल पे भाई।
2: वाहन का क्या है? जब तक इस देश में एथनॉल है।
1: पानी हल्का गर्म है, मिर्ची अपने मुंह पे डाल लिया, हल्दी वो पानी उन्हें गिरा के रो रहा हो कि एक लाइक दे दो। हम उसको स्वाइप कर मिले तो लाते लात मारो कि क्या पागलपन कर रहा है भाई।
3: भाई अरबी
4: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health.
1: एनडीए की मीटिंग में पेपर लीक पर पीएम का संदेश, कहा पता चलते सरकार ने लिया एक्शन, री एग्जाम के बाद फौरन निकाला रिजल्ट, नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने देंगे।
2: मानसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद में हंगामे के असर, पेपर लीक और चढ़ावा चोरी पर हल्ला बोलने को विपक्ष तैयार, प्रियंका गांधी ने पूछा युवाओं पर लाठी क्यों चला रही है सरकार।
1: दिल्ली के पास शंभू बॉर्डर पर किसानों की महापंचायत, भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में जुटने लगे हैं किसान, कई नेता हिरासत में, हरियाणा और दिल्ली पुलिस अलर्ट, बॉर्डर सील।
2: जंतर मंतर पर फिर बैठे सीजेपी समर्थक, नड्डा से मीटिंग के बाद रखी तीन मांगे, प्रदर्शन में 118 पुलिस वाले और 60 आंदोलनकारी घायल, वांगचुक मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई भी।
1: सिक्किम के निर्माणाधीन टनल पर लैंडस्लाइड, एंट्री गेट बंद होने से अंदर फंसे 9 मजदूरों की मौत, 20 अब भी फंसे हुए हैं, गैस की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में आ रही है परेशानी।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथ।
2: नमस्कार, आपके साथ मैं हूं राजीव ढौंडियाल। संसद का मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन, लेकिन क्या आज संसद चल पाएगी, बहुत बड़ा सवाल है। कल हंगामे की भेंट संसद की कार्यवाही चलती रही, कई बार स्थगित हुई, और आज संसद के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन है। विपक्ष के तेवर ये बता रहे हैं कि आसान तो होगा नहीं, क्योंकि कल जो दिल्ली में प्रदर्शन हुआ और उसमें जो हिंसा हुई, पत्थरबाजी भी हुई तो लाठीचार्ज भी हुआ है, तो कुल मिलाकर हंगामा हुआ है। ऑपोजिशन उससे भी बहुत ज्यादा खफा दिख रहा है। हंगामे के चलते कल कार्यवाही नहीं हो पाई थी, लेकिन आज बड़ा सवाल है कि क्या सुचारू रूप से चल पाएगी संसद।
1: नीट पेपर लीक मुद्दा, अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर लगातार हंगामा विपक्ष द्वारा किया जा रहा है। संसद के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है और माना यही जा रहा है कि आज भी संसद हंगामे की भेंट चढ़ सकती है।
3: Healthy and happy life, many happy returns of the day, Garge ji. I am sure his leadership will guide as an exemplary inspiration for the young leaders to have faith in the constitution, democracy and the integrity of the nation. Honorable members, I may also inform that birthday greetings and brief biodata of members whose birthday...
4: पटेल पर है
5: उमेश भाई पटेल, उमेश भाई पटेल सामने,
4: माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि दादरा नगर हवेली तथा दमन दीव की ग्राम पंचायतों, नगर परिषदों एवं नगर पालिका में वर्तमान में कितने एमपीएस सहित स्वच्छता कर्मी कार्यरत हैं, इनमें से कितने नियमित संविदा आउटसोर्स एवं दैनिक वेतन भोगी है, क्या 5 साल से अधिक समय से अनियमित पद पर काम करने वाले कर्मचारियों को फिक्स करने के लिए सरकार कोई नीति बना रही है, यदि हाँ तो क्या, नहीं तो क्यों नहीं, इसका विवरण सदन में सहयोग करा जाए।
5: प्रश्नकाल के बाद आपको उचित नियम प्रक्रियाओं के तहत सभी मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर दिया जाएगा। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
1: तो लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है। शुरू होते ही लगभग 2 मिनट के अंदर ही कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। हंगामा वहां पर हो रहा है, किसी स्पीकर को बोलने नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में एक बार फिर से लोकसभा की कार्यवाही आज दूसरे दिन भी स्थगित।
2: तो ये इब्तिदा है, आगे आगे होगा क्या इसका अंदाजा लगाना भी बहुत मुश्किल है नहीं, क्योंकि अपने तेवरों अपने प्रश्नों के साथ ओपोजिशन तो आया है, लेकिन दूसरी तरफ चेयर से ये बार बार कहा जा रहा है कि आपको नियमों के तहत बोलने का समय जरूर दिया जाएगा। कम से कम जो प्रश्नकाल है वो तो चलने थे, लेकिन अब प्रश्नकाल का समय भी गया, क्योंकि अब 12 बजे तक लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है।
1: हिमांशु मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, 12 बजे तक के लिए स्थगित तो है, लेकिन लग नहीं रहा है कि आज एक बार फिर से संसद सुचारू रूप से चल पाएगी, जैसा कल हुआ था वैसा ही आज भी होगा।
6: देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से विपक्ष जो है हमलावर है, और विपक्ष का यह मानना है कि नीट पेपर लीक के मामले पर चर्चा हो, उसके साथ साथ जो है राम मंदिर में जो चंदा चोरी है उसके ऊपर जो है चर्चा हो, और कल जिस तरीके से जब स्टूडेंट्स का जो मार्च था उस पर लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उसको लेकर सदन के अंदर चर्चा होनी चाहिए, और इसको लेकर पूरे नीट पेपर लीक को लेकर अभी संसद जो है वो धरना दिया गया है संसद के मकर द्वार पर। तो कहीं ना कहीं सरकार के सामने ये है कि इस पूरे हंगामे को लेकर किसी तरीके की रणनीति हो सरकार के पास, क्योंकि जो
7: इन द वैकेंसी कॉज ड्यू टू द रिटायरमेंट ऑफ श्रीमती ममता मोहंता फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ राज्यसभा ऑन 2 अप्रैल 2026 सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट।
3: मोशन मोड, दोस इन फेवर विल प्लीज से आई, दोस अगेंस्ट विल प्लीज से नो। I think the eyes have it, the eyes have it, the eyes have it. The motion is adopted.
8: Dr. L. Murugan to move a motion for appointment of two members to the Joint Committee on the Constitution. 129th Amendment Bill.
2: लेकिन राज्यसभा की कार्यवाही चल रही है और हमारे संवाददाता हिमांशु हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं. हिमांशु, क्या ऑपोजिशन की स्ट्रैटेजी अब बिल्कुल क्लियर कि वो अब सरकार पर प्रेशर बनाना चाहते हैं कि अब प्रश्नकाल जीरो और सब एक तरफ, जो ऑपोजिशन की मांग है वो हंगामे के साथ प्रेशर बनाकर उस पर बातचीत करना चाहते हैं कि सरकार इस पर आए और इस पर ही बात करे पहले.
6: और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है एनडीए की जो पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग थी मंगल मिलन, उसमें साफ कर दिया कि इस नीट मामले को लेकर जो है विपक्ष जो है वो छात्रों को भड़काने का काम कर रहा है. उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि नीट पेपर एग्जाम के रिजल्ट सरकार की तरफ से जल्दी लाए गए हैं और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि छात्रों को लेकर जो है वो राजनीति नहीं करनी चाहिए, छात्रों के बच्चों को लाकर राजनीति नहीं होनी चाहिए. और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि विपक्ष को ये इंश्योर करना चाहिए सिस्टम फुल
1: ठीक है. नजर बनाए रखिए, आज दिन भर संसद में इसी तरह से गतिरोध देखने को मिलेगा. वक्त हो गया है शतक आज तक का.

0: मॉनसून सत्र के बीच एनडीए का मंगल मिलन, पीएम ने संसदीय दल की बैठक में नीट परीक्षा पर की बात, आरोपियों पर सख्त कार्रवाई का आदेश दिया। बैठक में हुई चर्चा पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने जानकारी दी, पीएम ने नीट पेपर लीक पर चर्चा करते हुए सभी राज्यों को इसके रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाने का आदेश दिया। मीटिंग में राज्यसभा में नए सदस्य का स्वागत भी हो, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पहली बार बतौर सांसद लिया हिस्सा। बैठक में किसानों के हितों को प्राथमिकता दी गई है कहा गया और उनके हितों को नुकसान भी नहीं होने देंगे। प्रियंका गांधी ने नीट मुद्दे को लेकर सरकार पर साधा निशाना, बोले कि पीएम मोदी पूरी तरह से युवा विरोधी, अगर सरकार उनकी बात शांति से सुन लेती समाधान निकल सकता था। आज मॉनसून सत्र का दूसरा दिन है, बीते दिन हंगामे के साथ संसद की कार्यवाही की शुरुआत हुई थी और आज भी लोकसभा स्थगित हो गई। संसद में गतिरोध के संकेत हैं, पेपर लीक और दान मामले को लेकर लगातार सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। मॉनसून सत्र के बीच में संसद की सुरक्षा बढ़ाई गई, आज विजिटर्स पास जारी नहीं किए जाएंगे। संसद भवन और आसपास के इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, रेल भवन पर भी भारी पुलिस बल की तैनाती।
1: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नई एसआईटी का गठन संभव, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी संभाल सकते हैं जांच की कमान। राम मंदिर दान मामले में नई एसआईटी पुराने जांच रिपोर्ट के आधार बनाएगी, सभी तथ्यों और साक्ष्यों की फिर से होगी जांच। अयोध्या चढ़ावा चोरी मामले में जांच तेज, सूत्रों के हवाले से खबर, महीने के आखिर तक रिपोर्ट आने की उम्मीद। आज
0: और राज्यसभा को लेकर चलते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं।
1: राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है, हालांकि दोनों सदन 12 बजे तक के लिए स्थगित किए गए हैं, लेकिन इस बीच लगातार हंगामा विपक्ष द्वारा किया जा रहा है। दो अहम मुद्दे जिस पर विपक्ष से कहा गया है कि वो प्रोटोकॉल फॉलो करें, उसी के हिसाब से चर्चा संभव है, हंगामा करने से कुछ हासिल नहीं होगा, एक गलत संदेश जनता के बीच जाता है।
0: तो लोकसभा के बाद अब राज्यसभा भी दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा की कार्यवाही मुश्किल से 2 मिनट चल पाई हो और राज्यसभा की कार्यवाही वो लगभग 7-8 मिनट चल पाए और वो भी स्थगित कर दी गई है दोपहर 12 बजे तक के लिए। अब दोपहर 12 बजे जब लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होगी तब देखना ये होगा कि तब कितनी देर चल पाती है। ऑपोजिशन के हंगामे के चलते अभी तो कार्यवाही चल नहीं पा रही है। ऑपोजिशन की दो प्रमुख मांगे हैं, नीट पर वो चर्चा चाहते हैं और दूसरी तरफ अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर वो चर्चा की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ से दलील दी जा रही है कि चर्चा आप करें लेकिन उसके लिए नियम है, जो एक संसदीय प्रणाली है उसमें नियम बनाए गए, नियमों के तहत चर्चा होती है। तो कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है, यानी कि जो एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है क्वेश्चन आर वो नहीं हो पाया।
1: इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, एनडीए की बैठक में नीट पेपर लीक मामले को लेकर पीएम मोदी ने सख्त एक्शन लेने की बात कही है। उन्होंने कहा कि जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। लगातार इस मुद्दे को लेकर विपक्ष हमलावर है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बड़ा बयान, उन्होंने कहा कि जो दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई होगी।
0: तो पेपर लीक पर मंगल मिलन में पीएम की तरफ से कहा गया, बाद में किरण रिजिजू ने इसकी जानकारी भी दी कि पेपर लीक पर सरकार ने तुरंत एक्शन लिया। सरकार ने तत्काल फिर नीट का री एग्जामिनेशन करवाया और रिजल्ट भी जल्दी जारी किया। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल जो लगातार विपक्ष भी उठा रहा था और सीजेपी की तरफ से भी और तमाम तरफ से उठ रहे थे कि नीट पेपर लीक हुआ ही क्यों, उस मामले पर लोग चिंता व्यक्त कर रहे थे और इस्तीफे की मांग भी कर रहे थे। लेकिन आज पीएम ने दलगत राजनीति का विषय ये ना बने, ये पेपर लीक ना बने, ये कहा।
2: प्रधानमंत्री जी ने यह अपील भी किया है कि उनका जो सजा है उसको सख्ती से सख्ती सजा कैसे दिया जाए, उसमें सारा टॉप क्लास के वकील लोग भी साथ दें ताकि जो पेपर लीक जैसे पाप काम किया है उन लोगों को घोर सख्त सजा मिले और आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया। और प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, पूरा देश का हर एक राज्य में जहां जहां पेपर लीक करने में जो लोग लिप्त हैं, जो लोग इस धंधे में इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने काम इस तरह का घिनौना किया है, पाप काम किया है, उनको सजा देने के लिए सब एकजुट होना चाहिए। ये कोई दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें, इसको प्रधानमंत्री जी ने बल दिया है।
0: पेपर लीक मामले में प्रियंका गांधी ने भी केंद्र सरकार पर हमला बोला और प्रियंका गांधी ने कहा कि ये तो बेहद गंभीर मुद्दा है, सरकार को छात्रों की बात सुननी चाहिए।
1: प्रदर्शन करना छात्रों का अधिकार है और यही प्रदर्शन किया जा रहा है, सरकार को छात्रों की बात सुननी चाहिए। प्रियंका गांधी ने कल भी बयान दिया था कि इस तरीके से बच्चों को मारना नहीं चाहिए, उनके साथ हिंसा नहीं करनी चाहिए, छात्रों के भविष्य पर सरकार संवेदनशील नहीं है।
3: सरकार इस मुद्दे को उठा रहे हैं काफी समय से, ये कोई और कोई नया मुद्दा नहीं है, लेकिन इशू ये है कि ये बार बार बार बार हो रहा है और इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। मुझे याद है जब मैं यूपी में काम कर रही थी तो जो पेपर लीक हो रहे थे वो एक दो जो एकदम जो नीचे वाले अधिकारी हैं उनको आपने अरेस्ट कर लिया या दो दिनों के लिए रख लिया थाने में, उसके बाद बात वहीं पे रुक जाती है, किसी पर कार्रवाई नहीं हुई है, किसी पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। अब ये मुद्दा इतना ज्वलंत इसलिए है क्योंकि देश के युवा हैं ये और ये समझ रहे हैं कि हमारे फ्यूचर हमारे भविष्य के लिए क्या है। हमारे माँ बाप लोन लेकर मुश्किल से हमें पढ़ाते हैं, हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारे लिए इतना मुश्किल है। आप कोचिंग सेंटर्स को देखिए, मैंने बहुत सारे देखे और कोचिंग सेंटर्स में जाइए और कोई भी माँ बाप जानता है, मतलब किसी भी लेवल का किसी भी सोसाइटी में आप जानते होंगे आपके बच्चे जब पढ़ते हैं तो कितना टेंशन होता है, कितना जब एग्जाम होता है कितना टेंशन होता है, एज इट इज इतनी मुश्किल परिस्थिति है, ऊपर से आपने जॉब्स क्रिएट नहीं किए हैं।
1: तो राज्यसभा की कार्यवाही तो 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलना था लेकिन उससे पहले ही कार्यवाही स्थगित हो गई। उन्होंने बोलने से वहां सदन में बोलने से पहले क्या कुछ कहा सुनिए।
4: धन्यवाद सर आपको, मुझे चार शब्द बोलने का मौका आपने। बोलो और क्या बोलना है, बोलो। तो मौका आपने दिया कि कल एक बहुत दुर्दैवी घटना हो गई और वो दुर्दैवी घटना में हमारे जो स्टूडेंट्स पेपर लीक और नीट एग्जामिनेशन के बारे में जो आवाज उठा रहे हैं उनके ऊपर लाठी चार्ज किए, टियर गैस किए, उनको
0: और हमारे संवाददाता पीयूष इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, लगभग 6-7 मिनट ही चल पाई राज्यसभा की कार्यवाही, लेकिन इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे बेहद ज्यादा आक्रामक दिखाई दिए और खासतौर पर कल जो लाठी चार्ज हुआ है, हालांकि उधर से भी पत्थरबाजी हुई लेकिन लाठी चार्ज पर बहुत ज्यादा आक्रोशित दिखाई दिए।
5: जी बिल्कुल, विपक्ष सरकार पर काफी हमलावर है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, और दोनों सदनों की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित हो गई है क्योंकि दोनों सदनों में इसी मुद्दे को लेकर विपक्ष सरकार को घेरा। लोकसभा में भी ये मांग हुई कि जो कल घटना हुई और जिस तरह से लाठीचार्ज हुई छात्रों के ऊपर उस पर सरकार का जवाब दे। इसी के साथ राज्यसभा में भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपनी बात रखी और जब अपनी बात रख रहे थे तब बात रखने के बाद हंगामा हुआ और उसके बाद राज्यसभा भी 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गया है। आपको बता दें कि इस मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर रहेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो ये तक साफ कह दिया कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है तब तक संसद नहीं चलेगी। हालांकि सरकार इस पूरे मुद्दे को लेकर काफी ज्यादा गंभीर है। आज जो मंगल मिलन हुआ, पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग हुई एनडीए की, उसमें साफ साफ संदेश प्रधानमंत्री की तरफ से युवा को दिया गया, यूथ को दिया गया कि उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। नीट को लेकर सरकार काफी गंभीर है, पिछले कुछ दिनों में जिस तरह की घटनाएं हुई, नीट पेपर लीक हुआ, उसके बाद सरकार ने कड़े से कड़े कदम उठाए, 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसी के साथ साथ एक बहुत बड़ी बात आज प्रधानमंत्री ने कही कि सरकार इस बात पर भी विचार कर रही है कि इसके बड़े से बड़े वकीलों को हायर किया जाए, बड़े से बड़े जो लीगल फेटर्निटी के लोग हैं उनसे बात की जाए और इस चीज के ऊपर समझाया जाए कि पेपर लीक के खिलाफ कितना कड़ा और कानून बन सकता है, इसमें और कितनी कड़ी कार्रवाई हो सकती है, इस तरह की बातें भी प्रधानमंत्री ने कही। साथ साथ बताया कि न सिर्फ बीजेपी की सरकारें बल्कि अलग अलग राजनीतिक दलों की जो सरकारें अलग अलग राज्यों में, उन सभी को एक साथ मिलकर इस पूरे मुद्दे पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि ये प्रश्न युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ है। तो सरकार एक तरफ जहां गंभीर होती हुई नजर आ रही है इस पूरे मुद्दे को लेकर, वहीं विपक्ष काफी हमलावर है। विपक्ष ने तो ये कह दिया है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता तब तक वो संसद में इस पूरे मुद्दे को उठाते रहेंगे। हालांकि संसद की कार्यवाही चाहे लोकसभा की हो राज्यसभा की हो दोनों की कार्यवाही स्थगित हो गई है। 12 बजे से फिर से दोनों सदनों की कार्यवाही जो है वो सुचारू रूप से चलती है या नहीं वो देखना होगा। लेकिन हाँ, सरकार ने कहा है विपक्ष को कि वो आए पटल पर बात करें, अपनी बात रखें, अपना संबोधन दें, लेकिन सदन को सुचारू रूप से चलने दें। अगर हम बात करें सरकार की तरफ से तो सरकार कई सारे बिल लेके आई है। ऑल पार्टी मीटिंग में भी आपको याद होगा सरकार ने बताया था कि कैसे वंदे मातरम का बिल हो, चाहे FCRA का हो, एजुकेशन बिल हो, सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल हो, कई सारे ऐसे बिल है जिनको लेकर सरकार आगे बढ़ रही है। और विपक्ष के बारे में
0: पटल पर तब रखे जाएंगे, ठीक है, आपके पास लौटते हैं। इस बीच में संजय सिंह ने भी बताया जा रहा है कि प्रोटेस्ट किया है, एक बार दिखा देते हैं कि क्या कुछ आज संसद भवन में परिसर में हुआ है।
6: लोकतंत्र में मोदी शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र में मोदी शाही
7: नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
6: पुलिस की बर्बरता पर जवाब दो,
7: जवाब दो, जवाब दो।
6: पुलिस की गुंडागर्दी पर जवाब दो,
7: जवाब दो, जवाब दो।
6: आंदोलनकारियों पर जवाब दो,
7: जवाब दो, जवाब दो।
1: पीयूष मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। पीयूष देखिए, इंडिया गठबंधन इसीलिए फॉर्म हुआ था ताकि एक आवाज बुलंद की जा सके एनडीए सरकार के खिलाफ, क्योंकि वोट के माध्यम से तो लगभग ये समझ में आ ही चुका है कि अलग अलग राज्यों में कैसे हर बार हार का सामना करना पड़ता है। तो अब आंदोलन के जरिए, इस तरह के प्रोटेस्ट के जरिए सरकार को डाउन किया जाए, उनसे सवाल जवाब किया जाए, सदन के भीतर नहीं सदन के बाहर।
5: जी बिल्कुल, और वही करते हुए संजय सिंह नजर आए। संजय सिंह के साथ साथ कुछ आम आदमी पार्टी के दूसरे सांसद भी मौजूद थे और लगातार नारेबाजी संजय सिंह के द्वारा की जा रही थी। दरअसल पूरा विपक्ष इस वक्त एक साथ एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, या बाकी जो नेता हो कांग्रेस पार्टी की, वो और आम आदमी पार्टी हो, इसके अलावा जो दूसरे राजनीतिक दल है जो इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, वो सब के सब एक आवाज में एक स्वर में सरकार के खिलाफ अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। संजय सिंह ने आज जब धरना प्रदर्शन किया तब उस वक्त उन्होंने नारे लगाए सरकार के खिलाफ और कहा कि इस तरह की दमनकारी नीति सरकार की नहीं चलेगी। हालांकि वो धरना प्रदर्शन कुछ देर तक चलता रहा और अभी की अगर हम स्थिति की बात करें तो फिलहाल संसद भवन के बाहर धरना प्रदर्शन नहीं हो रहा है, अंदर जरूर लगातार नारेबाजी और मांग की जा रही है सांसदों के द्वारा, विपक्ष के सांसदों के द्वारा कि सरकार इस पूरे मुद्दे पर जवाब दे।
0: संसद के भीतर भी वही नारेबाजी, बाहर भी वही नारेबाजी, और इस वजह से संसद चल नहीं पा रही है। और आपको सुनाते हैं कि सांसद रवि किशन ने इस पर क्या कुछ कहा है।
8: सांसद रवि किशन हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, आज आप भी मंगल मिलन में मौजूद थे, क्या सबसे मंगल बात आपको लगी आज के?
9: मंगल बात है कि आज यंगस्टर्स के जो भविष्य हैं, भारत के भविष्य, उनके बारे में जो उन्होंने बात की, नीट पेपर में आने वाले में कभी अपराध ना हो, जो 13 अपराधी पकड़े गए उनको कितनी कड़ी सजा और कितने जल्द मिले उस पर बात हुई। आज बहुत फॉर्म थे, हाइड्रोजन ट्रेन जो विश्व का सबसे पहली ट्रेन, सबसे बड़ी ट्रेन है, उस पर स्पेस में जो 28 साल के बच्चे काम कर रहे हैं, जो अब हमारे माउंटेनियर्स जो जाके वहां ऊपर जो भी हायर पोस्ट पे जो भी गंदगी होती है उसको ट्रेस करके डिस्ट्रॉय करने वाला एक बहुत बड़ा आविष्कार हुआ है, उस पर बात हुई।
8: आज
9: फोकस पॉइंट वाज ओनली यंगस्टर्स।
8: प्रधानमंत्री का सीधा संवाद यूथ से रहा, आपको क्या लग रहा है इससे? आप जो युवा पीढ़ी है, आपको लग रहा है कि वो बात सुनेगी और जो बात कही प्रधानमंत्री?
9: ऑफ कोर्स, यस, प्राइम मिनिस्टर वेरी सेंसिटिव अबाउट यंगस्टर्स, हमारे देश के यंगस्टर्स के लिए बहुत सेंसिटिव।
8: आपको लग रहा है कि जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं जो बात है वो उसको लेकर?
9: देखिए, कानूनी चीजें हो गई हैं, उस पर अब टिप्पणी नहीं, कल संवाद सरकार ने की, और डेफिनेटली प्रधानमंत्री जी भाई अपने देश के बच्चों के भविष्य के लिए सेंसिटिव क्यों नहीं रहे।
1: और संजय सिंह को आपसे कुछ ही देर पहले आपने देखा कि किस तरीके से वहां पर नारेबाजी संसद परिसर में उन्होंने की, किस तरीके से बहस करते हुए भी दिखाई दिए, सुनिए।
7: नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
6: लोकतंत्र में मोदी शाही
7: नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
6: पुलिस की बर्बरता पर जवाब दो,
7: जवाब दो, जवाब दो।
6: पुलिस की गुंडागर्दी पर जवाब दो,
7: नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
6: लोकतंत्र में मोदी शाही
7: नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
6: लोकतंत्र में मोदी शाही
7: नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
6: पुलिस की बर्बरता का जवाब दो,
7: जवाब दो, जवाब दो।
6: पुलिस की गुंडाबंदी का जवाब दो,
7: जवाब दो, जवाब दो।
6: आंदोलनकारियों पे जवाब दो,
7: जवाब दो, जवाब दो। चलेगी नहीं चलेगी।
6: लोकतंत्र में मोदी शाही
7: नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
6: लोकतंत्र में मोदी शाही
7: नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
6: पुलिस ये भारतीय जनता पार्टी का सदन नहीं है, ये हम सब का सदन है। यहां गुंडे, ये भारतीय जनता पार्टी का सदन नहीं है, ये हम सब का सदन है। यहां गुंडे।
0: और अब रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परो। इन एसोसिएशन विद
11: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
10: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा। हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो।
1: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
2: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
1: छक्का?
2: सब कैशलेस हो गया है।
1: हाँ, ला भाई मेरा बैट।
3: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
4: चार्ज हुआ यार।
5: बैट किसका है?
6: टाटा AIG है तो भरोसा है।
7: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
8: सोच बदलो और बैंक भी।
9: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: Honey, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं.
2: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा. रुंगटा स्टील टीएमटी से बना.
3: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं. रुंगटा स्टील टीएमटी बार एकदम सॉलिड.
4: In association with Hind, bade aaram se. Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
5: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
4: Vimal, bolo zuba kesri.
6: Bharat ke yuvaon ne.
4: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा. हेक्सा ऑर्गेनिक, रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी.

0: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद में जबरदस्त हंगामा। संसद 12 बजे तक के लिए स्थगित। पेपर लीक और चढ़ावा चोरी पर विपक्ष का अल्ला बोल। प्रियंका गांधी ने पूछा, युवाओं पर लाठी क्यों चला रही है सरकार।
1: एनडीए की मीटिंग में पेपर लीक पर पीएम का संदेश, कहा पता चलते ही सरकार ने एक्शन लिया, री एग्जाम करवाया, फौरन निकाला रिजल्ट, नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने देंगे।
0: दिल्ली के पास शंभू बॉर्डर पर किसानों की महापंचायत। भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में जुटने लगे किसान, कई नेता हिरासत में। हरियाणा और दिल्ली पुलिस अलर्ट पर, बॉर्डर सील।

0: 18 पुलिस वाले और 60 प्रदर्शनकारी घायल। भांगचुक मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज भी सुनवाई।
1: सिक्किम के निर्माणाधीन टनल पर लैंडस्लाइड, एंट्री गेट बंद होने से अंदर फंसे 9 मजदूरों की मौत, 20 अब भी फंसे हुए हैं। गैस की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में आ रही है परेशानी।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से पर।
1: मानसून सत्र में यूं तो कई मुद्दों पर पहले से ही मोर्चाबंदी हो रही है, लेकिन दो दिन के एक्शन से ये साफ है कि इस सत्र में पेपर लीक पर हो रही राजनीति पूरी तरह गर्म रहने के आसार हैं, क्योंकि पेपर लीक पर सड़क से संसद तक केंद्र सरकार घिरी दिख रही है।
0: एक तरफ जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का धरना जारी है, तो सीजेपी के कल के प्रदर्शन के बाद से विपक्ष भी अब पेपर लीक पर सरकार की और मजबूती से घेराबंदी की तैयारी में दिख रहा है। कल पहले दिन भी पेपर लीक पर विपक्ष का लगातार हमला जारी रहा, आज भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है, क्योंकि शुरुआत होते ही लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी दोपहर 12 बजे तक के लिए। तो छात्रों का विरोध कल जंतर मंतर पर देखने को मिला, लेकिन बहुत बड़ा सवाल भी, क्योंकि बहुत सारे विजुअल्स ऐसे आए जब हाथों में पत्थर देखे, गाड़ियों को तोड़ते हुए, तो बहुत सारे विजुअल्स हैं ही, लाठीचार्ज भी हुआ।
1: वही नीट पेपर लीक को लेकर विपक्ष के हमलों का जवाब देने पीएम मोदी आज खुद मोर्चे पर उतरे। एनडीए सांसदों के साथ मंगल मिलन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री कहा कि विपक्ष इस मुद्दे पर देश को गुमराह कर रहा है। पीएम ने कहा विपक्ष बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद कर दे।
0: तो नीट पेपर लीक पर प्रधानमंत्री मोदी की आज मंगल मिलन कार्यक्रम के समय सांसदों के साथ एक संवाद भी था, और पेपर लीक पर हमने फौरन कार्रवाई ये की। हालांकि दूसरी तरफ अगर आप पेपर लीक पर गंभीर थे, ये आरोप ऑपोजिशन का है कि आप धर्मेंद्र प्रधान को हटाना चाहे थे, मामला इतना लंबा नहीं खींचता, और बच्चों का राजनीतिक इस्तेमाल भी नहीं होना चाहिए। पीएम की तरफ से संदेश दिया गया कि विपक्ष एक भ्रम फैला रहा है।
3: प्रधानमंत्री जी ने अपील भी किया है कि उनका जो सजा है उसको सख्ती से सख्ती सजा कैसे दिया जाए, उसमें सारा टॉप क्लास के वकील लोग भी साथ दे, ताकि जो पेपर लीक जैसे पाप काम किया है उन लोगों को घोर सख्त सजा मिले, और आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया। और प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, पूरा देश का, हर एक राज्य में जहां जहां पेपर लीक करने में जो लोग लिप्त है, जो लोग इस धंधे में इन्वॉल्व है, जिन्होंने काम इस तरह का घिनौना किया है, पाप काम किया है, उनको सजा देने के लिए सब एकजुट होना चाहिए। ये कोई दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है, और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को, और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें, इसको प्रधानमंत्री जी ने बल दिया है।
1: उधर विपक्ष की तरफ से भी हमलों की बौछार जारी है। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार इस मुद्दे का समाधान ही नहीं चाहती है, छात्रों से बात करने में सरकार को क्या दिक्कत है, तो प्रदर्शन करना छात्रों का अधिकार है, ये प्रियंका गांधी कह रही हैं। कल भी उन्होंने छात्रों के मुद्दे को उठाया था, उन्होंने कहा कि सरकार को छात्रों की बात सुननी चाहिए, इस तरीके से हिंसा जो छात्रों के साथ की जा रही है वो ठीक नहीं है, भविष्य पर सरकार संवेदनशील नहीं।
4: मंत्री जी की जिम्मेदारी है, उनसे रिजाइन करवाइए। देखिए, एक जमाना था जब मंत्री जिम्मेदारी लेते थे, मुझे याद है एक ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था शायद 80s में, अगले दिन उन्होंने इस्तीफा दिया, जो मंत्री रिस्पॉन्सिबल थे, जो उसके समय के रेल मंत्री थे। तो इस्तीफा दीजिए, जिम्मेदारी लीजिए, और सबसे जरूरी तो यह है कि सिस्टम को दुरुस्त करिए।
0: इधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि सदन में विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ये आरोप लगा रहे हैं कि बोलने ही नहीं दिया जा रहा है, हालांकि इतना हंगामा हो रहा है, इतना ज्यादा बोला जा रहा है और इतना ऊंचा बोला जा रहा है कि कार्यवाही चल नहीं पा रही, लोकसभा की भी राज्यसभा की, और ऑपोजिशन हंगामा कर रहा है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा, यानी कि जो वो मुद्दा उठाना चाहते हैं, चाहे नीट का हो चाहे वो चंदा चोरी का हो, उसको रखने नहीं दिया जा रहा।
5: अनार्की क्रिएट करने के लिए सब कर रही है, कोई अपोजिशन, कोई स्टूडेंट्स, कोई अनएम्प्लॉयमेंट ग्रेजुएट या कोई जनता नहीं कर रही है, सरकार खुद उचका रही है कि देश में अनार्की हो और फिर उसको दबाया जाए, लाठी चार्ज करा जाए, मारा जाए और डरा के उनको जेल में रखा जाए। दूसरी बात यह है कि कल भी जो हम बात करना चाहते थे उठाए, उस वक्त भी मौका नहीं दिया, लेकिन हमको जेल के जैसा अंदर रखा गया, बाहर आने नहीं दिया, क्या बात है? अरे पार्लियामेंट के बाहर भी अगर एमपी नहीं आ सकते तो उनको सुरक्षा नहीं है तो किनको है? तो देश आज एक अराजकता के तरफ चल रही है और मोदी जी होम मिनिस्टर इसको कंट्रोल करना नहीं चाहते हैं और वो अपनी बात सदन में रखना भी नहीं चाहते हैं, इसीलिए ऐसे एटीट्यूड को हम कंडम करते हैं।
6: युवाओं के साथ है
5: सरकार और पार्टी, अगर युवाओं के साथ है क्या बच्चियों के कपड़े फाड़ने?
1: तो सदन में बोलने दिया जा रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं। इधर विपक्षी नेताओं ने स्पीकर से मुलाकात की है, अब से कुछ ही देर पहले विपक्षी नेताओं की मुलाकात हुई है लोकसभा स्पीकर से, ये मुलाकात बताई जा रही है।
0: तो एक बड़ी खबर है क्योंकि संसद में अभी गतिरोध चल रहा है और स्पीकर के साथ एक मीटिंग हुई जिसकी हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। लोकसभा स्पीकर से मुलाकात हुई है, इसमें आपको सामने राहुल गांधी भी बैठे हुए तस्वीरों में दिखाई देंगे और ये मुलाकात बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल यह है कि लोकसभा स्पीकर से मुलाकात के बाद क्या ऑपोजिशन जो प्रदर्शन कर रहा था क्या वो अब रोकेगा?
1: मौसमी सिंह मेरी सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। मौसमी, क्या माने कि लोकसभा स्पीकर से मुलाकात के बाद अब गतिरोध नहीं होगा और ठीक तरीके से सदन चल पाएगी या फिर इसका उल्टा है?
0: मौसमी, आपको आवाज मिल रही है? लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, हम दोबारा उनका रुख करेंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट जो हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है मॉनसून सत्र, क्योंकि दूसरा दिन है और दोनों दिन सदन चल नहीं पाए। पहले दिन कई बार सदन की कार्यवाही स्थगित हुई, आज भी शुरू होते ही कार्यवाही स्थगित हो गई।
5: लेकिन ऐसा नहीं, और हम ये चाहते हैं कि तुम चर्चा करने के लिए मौका दो, हम अपनी बात बताएंगे, क्यों लाठी चार्ज हुआ, क्यों उनको बच्चों को मारा गया, इसके लिए हम पूछने के लिए भी अगर यहाँ फोरम नहीं है तो कहाँ बात करें। और मैं वार्न करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट अनार्की क्रिएट करने वाली है, अनार्की क्रिएट करने के लिए सब कर रही है, कोई अपोजिशन, कोई स्टूडेंट्स, कोई अनएम्प्लॉयमेंट ग्रेजुएट या कोई जनता नहीं कर रही है, सरकार खुद उचका रही है कि देश में अनार्की हो और फिर उसको दबाया जाए, लाठी चार्ज करा जाए, मारा जाए और डरा के उनको जेल में रखा जाए। दूसरी बात यह है कि कल भी जो हम बात करना चाहते थे उठाए, उस वक्त भी मौका नहीं दिया, लेकिन हमको जेल के जैसा अंदर रखा गया, बाहर आने नहीं दिया, क्या बात है? अरे पार्लियामेंट के बाहर भी अगर एमपी नहीं आ सकते तो उनको सुरक्षा नहीं है तो किनको है? तो देश आज एक अराजकता के तरफ चल रही है और मोदी जी होम मिनिस्टर इसको कंट्रोल करना नहीं चाहते हैं और वो अपनी बात सदन में रखना भी नहीं चाहते हैं, इसीलिए ऐसे एटीट्यूड को हम कंडम करते हैं।
6: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार और पार्टी युवा के साथ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार और पार्टी युवाओं के साथ है।
5: सरकार और पार्टी अगर युवाओं के साथ है, क्या बच्चियों के कपड़े फाड़ने के लिए, क्या बच्चों को लाठी मारने के लिए, क्या युवकों को दबाने के लिए और उनको आंसू बहाने के लिए लगाए आप और सुरक्षित रखने के लिए बोल रहे हैं? अरे आपको दूसरों को टॉन्ट मारने के बजाय दूसरी कोई भाषा नहीं आती।
1: मौसमी सिंह मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। मौसमी, सरकार पर ही आरोप खड़गे जी लगा रहे हैं कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है, इस तरीके से लगातार गतिरोध अगर जारी रहेगा तो बोलने का मौका, जवाब देने का मौका, सवाल पूछने का मौका कैसे मिलेगा?
7: दरअसल देखिए, इससे पहले ही जब खड़गे साहब बोले उससे आधे घंटे पहले ही विपक्ष की बैठक हुई थी नेहा, और इसमें ये चर्चा हुई थी कि सरकार कामकाज की बात करेगी लेकिन हम चेयरमैन साहब और स्पीकर का रुख देखेंगे कि हमको बोलने का मौका नीट पर। कल दो मुद्दे थे लेकिन आज जिस तरीके से कल की जो घटनाक्रम हुई नीट के मसले पर और जो जो तस्वीरें कल राजधानी में देखने को मिली उसको लेके उन मुद्दों को विपक्ष उठाना चाहता है। उसका कहना है कि छात्रों के साथ मारपीट हुई और यही खड़गे साहब लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं वहां पे कि बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है, माइक म्यूट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम जानना चाहते थे कि अमित शाह साहब और की जो बैठक हुई मंत्रियों के साथ उसका क्या निष्कर्ष रहा। तो कुल मिला के सियासत अपने चरम पर है। विपक्ष चाहता है कि नीट के मसले पर सरकार की अग्नि परीक्षा हो, जो छात्रों के साथ कल घटा उसको लेके अब और तूल देने के मूड में विपक्ष नजर आ रहा है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव साझा एक मार्च भी कर सकते हैं नेहा, हमें बताया जा रहा है कि विपक्ष पूरा एक मार्च इस मसले पर निकाल सकता है और मानसून सत्र के दूसरे दिन भी ये मसला जो है जोरदार तरीके से छाया रह सकता है।
0: मार्च आप बता रहे हैं निकाल सकते हैं। आज लोकसभा स्पीकर से भी तो बातचीत हुई, तो क्या क्या बात रखी गई स्पीकर के साथ और स्पीकर ने क्या कहा है?
7: बिल्कुल देखिए, जैसे राहुल गांधी की संसद में एंट्री हुई थी हमने खुद उनसे दो तीन सवाल पूछे थे कि क्या उनकी क्या राय है। 4 FIR हो गई है छात्रों के साथ जो हुआ, कई छात्रों को चोटें आई हैं, लाठीचार्ज हुआ, तो राहुल गांधी कुछ नहीं बोले लेकिन उसके बाद 15 मिनट बाद देखा गया कि स्पीकर के पास वो पहुंच गए हैं और इसी मसले पर नीट के मसले पर विस्तार से चर्चा की मांग अब लोकसभा राज्यसभा में विपक्ष करेगा। इस मसले पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पीछे कुछ कम नहीं पर मानेगा विपक्ष और यही वजह है कि अब देखना होगा कि क्या सरकार इसके लिए तैयार होती है, क्योंकि फिर बात दिल्ली पुलिस की भी होगी और जो आरोप लगातार विपक्ष लगा रहा है उस पर विस्तार पे चर्चा होती है। तो पूरा जिस तरीके से तमाम पूरे देश की राजधानी में जो मंजर कल देखा गया उसको लेकर भी विपक्ष जो है जोरदार तरीके से घेरना चाहेगा सरकार को। तो ये लगातार आप एक तरीके से बिल्कुल लॉकडाउन कह लीजिए हो गया है, जहाँ पे हाउस कामकाज नहीं चल रहा है और सारा फोकस नीट के मसले को लेकर धर्मेंद्र प्रधान और सरकार की जवाबदेही पे आ गया है। प्रधानमंत्री उधर कह चुके हैं कि विपक्ष इस पे राजनीति कर रहा है, यानी कि तलवारें तन गई हैं, लकीरें खिंच गई हैं। प्रधानमंत्री का ये वक्तव्य अपने आप में इस बात को जाहिर करता है कि सरकार इस मसले पर बैकफुट पर नहीं आएगी। उसको लगता है विपक्ष जो है छात्रों के कंधों पर रख के बंदूक भाग रहा है और ये
1: ठीक है बने रहे हमारे साथ। इस बीच कल से आज तक पेपर लीक पर विपक्ष लगातार आक्रामक दिख रहा है, कल सीजेपी के प्रदर्शन के बाद इसमें तेजी आती दिख रही है। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने स्थगन प्रस्ताव दिया है, विपक्ष धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा है।
8: प्लीज कृपा करके आप सब लोग बैठ जाइए प्लीज। उचित नियमों के तहत
9: ये स्टूडेंट का मामला है।
10: इस्तीफा दो, इस्तीफा दो।
11: मानसून सत्र में नीट पर पड़ा रण,
12: पर्याप्त मौका दूंगा, प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते।
11: मानसून सत्र में नीट मुद्दा नंबर 1। मानसून सत्र में नीट पर शक्ति प्रदर्शन, दो दिनों की कार्यवाही ने साफ कर दिया कि संसद के मॉनसून सत्र में नीट पर तनातनी अभी खत्म नहीं होने वाली। सत्र की शुरुआत में मुद्दे तो बहुत थे, लेकिन पहले दिन के घमासान ने तय कर दिया कि परीक्षा के सवाल पर ही मॉनसून सत्र में शक्ति परीक्षण होना है। इसका ट्रेलर कल ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में दिखा दिया था।
13: स्टूडेंट का मामला है, ये स्टूडेंट का मामला है जो लाखों बच्चों की जो भविष्य है उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, और उसके लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहाँ पर आए हैं, वहाँ लाठी चार्ज हो गया है, गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट दबाने की कोशिश।
11: समाजवादी पार्टी ने भी कल नीट पर अपनी आक्रामकता दिखा दी। अखिलेश अपने तमाम सांसदों के साथ मीडिया के सामने आए थे और सरकार पर धावा बोला था।
14: भाजपा सरकार नहीं, अहंकार की तरह काम कर रही है, अहंकार है उनके अंदर। कम से कम बच्चों की बात तो सुननी चाहिए थी। नीट में इतना बड़ा घोटाला हुआ, घपला हुआ, आज भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, तो कैसी सरकार है? क्या यही अमृतकाल है?
11: अखिलेश ने छात्रों के प्रदर्शन का समर्थन करने अपने सांसदों को जंतर मंतर पर भी भेजा था। उधर सरकार ने भी नीट पर विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए तमाम तैयारियां कर ली हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से कल 3 घंटे से भी ज्यादा लंबी मीटिंग हुई है। आज तक ब्यूरो।
0: तो नीट पेपर लीक पर विपक्ष के तमाम नेता सरकार को घेर रहे हैं। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत से भी खास बातचीत की गई, उन्होंने क्या कहा सुनिए।
15: जो मारपीट हुई है उस पे आपकी क्या कहना है सर?
16: डरपोक है सरकार, बात नहीं करती, डरपोक।
15: चार FIR दर्ज की गई है सर।
16: FIR दर्ज करो, फिर भी बच्चे लड़ते रहेंगे और हम उनके साथ है।
1: और अब आपको सुनाते हैं कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी का बयान।
17: कल जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर हम लोगों को स्काफल देखने को मिला प्रोटेस्टर्स के बीच में, पुलिस वालों के बीच में, वो आप कैसे देखते हैं? क्योंकि पुलिस का ये आरोप है कि 118 पुलिसकर्मी जख्मी हैं हमारे, और प्रोवोकेशन स्टूडेंट की तरफ से किया गया, बार बार मना किया, उसके बाद भी ये लोग मार्च करते रहे।
18: तो कब से गैरकानूनी काम है मार्च करना, मैं ये समझूं? मुझे अफसोस है कि इतने पुलिस घायल पड़े हैं, मगर उसके साथ ये भी आंकड़े जोड़िए कि कितने स्टूडेंट घायल पड़े हैं, सांसद को भी घायल पड़े हैं, आपको पता ही नहीं। जो लोग वहां गए थे उनको भी मारपीट हुई। तो कि ये सब अगर आप दूर से देखेंगे तो समझ में आ जाएगी, इट इज अ टोटल गवर्नमेंट फेलियर। ये सरकारी तौर से दे आर एब्सोल्यूटली अ निकम्मा सरकार। ये सोचते हैं कि कोई गब्बर सिंह बन के आ गए, वो बल से, आपको पता नहीं कि पार्लियामेंट के बाहर गाड़ियां में तोप लेकर गन लगाकर खिड़कियों पे लोग बैठे थे। क्या जरूरी थी कि पुलिस को सिविल क्लोथ्स में आके उठाने को? मैं पुलिस को मैं बिल्कुल निंदन नहीं ठहरा रही हूं, वो भी बेचारे वहीं फंसे हुए हैं, क्या करें, वर्दी पहने हुए। मैं वर्दी की बेटी हूं तो वर्दी पहने हुए तो जान कुर्बान।
17: मैम, कल पार्लियामेंट के गेट भी सील कर दिए गए जब प्रोटेस्टर्स बहुत आसपास पहुंच गए थे, आप अंदर मौजूद थी, आपने कोशिश भी करी बाहर निकलने की लेकिन आपको रोका गया। फिर
18: देखिए इस बात पे तो मैं अड़ गई, व्हाट नॉनसेंस, हम सबको सांसदों को पार्लियामेंट में कैद रखे हैं, खबरदार जो ये बकवास करें, व्हाट डू दे थिंक दे आर। हमारा फोन कट गई, व्हाट्सएप नहीं लग रही है, सारे दरवाजे बंद हो गए, गेट्स बंद हो गए, कह रहे पीएम का मूवमेंट है, तो क्या ये पहला पीएम है क्या जो हमने देखा, और ना आखिरी होगा।
0: संसद में आज दूसरे दिन भी कार्यवाही जो है नहीं चल सकी और कार्यवाही लगातार बाधित हो रही है। लोकसभा राज्यसभा दोनों ही सदनों में कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा हुआ और सदन की कार्यवाही चंद ही मिनटों में खत्म करनी पड़ी है।
19: एक बजे तक के लिए स्थगित, 2 बजे तक के लिए स्थगित।
11: ये कल यानी 20 जुलाई का वाकया है जब पलक झपकते ही लोकसभा की कार्यवाही स्थगित होती रही।
19: सदन नहीं चलाना चाहते,
11: पहले 11 बजे स्थगित हुई
19: सदन की कार्यवाही, आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
11: फिर 12 बजे स्थगित हुई,
20: सदन नहीं चलाना चाहते, सदन की कार्यवाही 12:30 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
11: 12:30 बजे भी वही हाल रहा,
20: सदन नहीं चलने देंगे, सदन नहीं चलने देंगे, सदन की कार्यवाही 1 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है, 1 बजे तक के लिए।
11: 1 बजे भी सदन स्थगित करनी पड़ी, 2:30 बजे भी स्थगन का आदेश आया।
21: मैं सभा की कार्यवाही 3 बजे तक के लिए

0: गया। आसन पर बैठने वाले चेहरे बदलते गए, लेकिन हालात नहीं बदले। स्पीकर ओम बिरला हो, पीठासीन अधिकारी सैकिया हो या जगदम्बिका पाल, हालात जस के तस रहे। राज्यसभा का हाल भी वही रहा। कायदे से दोनों सदनों में कार्यवाही 6 घंटे कम से कम चलना था, लेकिन कार्यवाही आधे घंटे से ज्यादा नहीं चल पाई। लोकसभा स्पीकर लगातार कह रहे हैं कि प्रक्रिया का पालन होना चाहिए, सबको अपनी बात रखने का मौका मिलेगा।
1: मैं सभी माननीय सदस्यों को उचित नियमों के तहत पर्याप्त समय पर्याप्त मौका दूंगा। मेरा आपसे आग्रह है कि तख्तियां और नारेबाजी से सदन की मर्यादा नहीं बनती है। आपको पर्याप्त अवसर पर्याप्त समय मिलेगा, नियमों के तहत नोटिस दीजिए, सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है।
0: लेकिन विपक्ष का तेवर बता रहा है कि नीट पेपर लीक जैसे मामले पर तनातनी अभी पहले दिन की तरह जारी रहने वाली है।
2: चोरी हो गई, कौन जिम्मेदार है?
0: राज्यसभा में खड़गे कल इसका साफ संकेत दे चुके हैं।
3: स्टूडेंट का मामला है, ये स्टूडेंट का मामला है, जो लाखों बच्चों की जो भविष्य है उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूँ।
0: मानसून सत्र में कई महत्वपूर्ण बिल पेश होने हैं, लेकिन कल पूरे दिन और आज की शुरुआत से ही साफ है कि इन विधेयकों का भविष्य सवालों के घेरे में रहने वाला है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
4: प्लीज कृपा करके आप सब लोग बैठ जाइए प्लीज।
5: वहीं संसद सत्र के बीच अब किसान संगठनों ने भी केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दिल्ली के किसान घाट पर किसान संगठनों ने महापंचायत बुलाई, जिसमें पंजाब हरियाणा समेत कई राज्यों के किसान शामिल होंगे। किसान संगठनों ने महापंचायत भारत अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते के विरोध में बुलाई है। किसान नेताओं का कहना है कि यह समझौता देश के किसानों के हित में नहीं है।
6: तो किसान घाट पर किसान संगठनों का ये प्रोटेस्ट का आह्वान है, और हम आपको कुछ तस्वीर भी दिखा रहे हैं। आपको बता दें, कुछ किसान नेताओं किसान नेताओं को आने से रोकने का हर संभव प्रयास भी किया गया है। हम कुछ तस्वीरें आपको बॉर्डर की दिखा रहे हैं, और बॉर्डर पर ही उनको रोक दिया गया है, बैरिकेडिंग की गई है, पुलिस बल बड़ी संख्या में मुस्तैद है, और महापंचायत ना हो पाए इसका भी भरसक प्रयास किया जा रहा है।
7: कल जिस तरह से सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ है और जो लाठीचार्ज हुआ, अपोजिशन उसका बहुत ज्यादा विरोध कर रहा है, किस तरह से कल के पूरे एक्शन को देख रहे हैं?
8: नहीं, मैं कल के पुलिस एक्शन को पूरी तरह से मैं उसका खंडन करती हूँ, निंदा करती हूँ। ये हमारे देश का भविष्य है, हमारे देश के बच्चे हैं, 10वीं 12वीं छोटे छोटे बच्चे तक वहाँ पे आए हुए थे। आप उनको वो अपने जो मुश्किलें हैं इधर आपको सुनाने के लिए हमारी मुश्किलें हल करिए, आप हर करने के बजाय आप उनको डंडों से लाठियों से मार के सिर फोड़ दे पैर फोड़ दे, तो ये टोटली अनएक्सेप्टेबल है। ये वायलेंस नहीं होना चाहिए और यूथ के साथ इंगेज करना चाहिए, क्योंकि ये यूथ ने ही आपको चुनकर यहाँ पे भेजा है।
7: हम लेकिन सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और सरकार रेडी है एंगेज करने के लिए। कल यूनियन मिनिस्टर जेपी नड्डा भी मिले थे डेलीगेशन से, इसके बावजूद सड़कों पे उनका कहना है कि पॉलिटिकल इस्तेमाल हो रहा है।
8: देखिए, जब आप ऐसे मैदान तैयार कर देंगे, वो 20 दिन से वो अनशन पे बैठे हुए हैं, लाखों लोगों के ये जो री एग्जाम होते हैं, लाखों बच्चे इससे इफेक्ट होते हैं, कईयों ने खुदकुशी कर ली है, और आप कहते हैं कि हमने बहुत स्विफ्ट एक्शन लिया, हमने दोबारा एग्जाम रख दिया, तो जो बच्चे मर गए वो तो मुड़ के आएंगे नहीं ना। सो बिल्कुल जी, आप ऐसे मैदान खुला छोड़ेंगे और बच्चों में एंगर बिल्डअप होगा तो वो सड़कों पर उतरेंगे और उसका एडवांटेज दूसरे ले सकते हैं। पर ये कहना कि पॉलिटिकल एडवांटेज नहीं, मैं मानती हूँ, लेकिन आप इस नौबत पे आने ना दीजिए।
7: आखिरी सवाल मैम, आप जिस राज्य से आती हैं, पंजाब के किसान आज दिल्ली मार्च करने के लिए आ रहे थे, हरियाणा के बॉर्डर पे उनको रोका गया है, सरकार राज्य सरकार हरियाणा की कह रही है कि हम बातचीत करने वाले हैं, इस पे आप क्या कहेंगे?
8: मैं इसका भी निंदा करती हूँ, और हरियाणा सरकार ने पिछली बारी भी हमारे पंजाब के जमीन में जाके, और हमारे भगवंत मान आम आदमी के मुख्यमंत्री ने हरियाणा की पुलिस को पंजाब की जमीन में आके पंजाब को किसानों को कुटवाया था, मरवाया था, और मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के 18 साल के बच्चे को गोली से वो उसकी जान भी चली गई।
5: रुके यहाँ इस से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, टिकते रहिए आज तक।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
9: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ
11: टू 15-year-old हार्पर बाइंग एन $80 विंटेज रॉक टी-शर्ट इज अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट टू हार्पर्स मॉम दिस लॉजिक हैज अ फ्यू होल्स इन इट
12: So she helped Harper

0: इन एसोसिएशन विद हिंट, बड़े आराम से शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू?
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

मानसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद में जबरदस्त हंगामा, अखड़ गया और प्रियंका का हल्ला बोल, कहा छात्रों पर हुआ अत्याचार, आवाज दबाने की हुई कोशिश, विपक्षी नेताओं से स्पीकर की मीटिंग, कहा संसद चलने दें। एनडीए की मीटिंग में पेपर लीक पर पीएम का संदेश, कहा पता चलते ही सरकार ने एक्शन लिया, री एग्जाम के बाद फौरन निकाला रिजल्ट, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। दिल्ली के पास शंभू बॉर्डर पर किसानों की महापंचायत, भारत हमारे गट ट्रेड डील के विरोध में जुटने लगे किसान, कई नेता हिरासत में, हरियाणा और दिल्ली पुलिस अलर्ट, बॉर्डर सील। जंतर मंतर पर फिर बैठे सीजेपी समर्थक, नड्डा से मीटिंग के बाद रखे तीन मांगे, प्रदर्शन में 118 पुलिस वाले और 60 आंदोलनकारी घायल, दिल्ली पुलिस ने दर्ज की 4 FIR, सैकड़ों सीसीटीवी की जांच। जम्मू कश्मीर में बादल फटने से भारी तबाही, गुरेज, बड़गाम में पहाड़ों से गिरा मलबा, सिक्किम में टनल धंसी, एंट्री गेट बंद होने से अंदर फंसे 9 मजदूरों की मौत, 20 सब भी फंसे।

0: कार्यवाही में लिए चलते हैं। दोबारा से संसद की कार्यवाही शुरू हो गई है। पहले 11 बजे शुरू तो हुई लेकिन हंगामे के चलते 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था और हंगामे के बाद एक बार फिर से शुरुआत हुई है।
1: ऊपर मेरे नाम के समक्ष उल्लेखित पत्रों को सदन के पटल पर रखता हूँ।
2: आइटम नंबर 3, माननीय सदस्य रामनाथ ठाकुर जी,
1: मैं आपकी अनुमति से आज की पुनरीक्षित कार्य सूची में क्रम संख्या 3 पर अपने नाम के समक्ष 10 पद सभापटल पर रखता हूँ।
2: आइटम नंबर 4, माननीय मंत्री श्री नित्यानंद राय जी,
3: महोदया मैं आज की पुनरीक्षित कार्य सूची में मेरे नाम के समूह को लिखित क्रमांक संख्या 4 पर दस्तावेज को सभापटल।
2: आइटम नंबर 5, माननीय मंत्री श्री एसपी सिंह बघेल जी,
1: मैं आज की लोकसभा की संशोधित कार्य सूची में क्रम संख्या 5 पर मेरे नाम के समक्ष रखे गए पत्र सदन के पटल पर रखता हूँ।
2: आइटम नंबर 6, माननीय मंत्री श्री बीएल वर्मा जी,
4: आदरणीय अध्यक्ष महोदय आपकी अनुमति से आज की लोकसभा की संशोधित कार्य सूची में क्रम संख्या 6 पर अपने नाम के पत्र सभापटल पर रखता हूँ।
2: आइटम नंबर 7, माननीय मंत्री श्री बंटी संजय कुमार जी,
5: उसी कार्यसूची में क्रम संख्या 7 पर मेरे नाम के समूह को लेकर देता हुए सभापटल रखता हूँ।
2: आइटम नंबर 8
0: चल तो रही है लेकिन हंगामे के बीच चल रहे हैं। इसी बीच में आपको बता दें कि राज्यसभा की कार्यवाही महज 1 मिनट के अंदर स्थगित हो गई। 12 बजे शुरू तो हुई थी लेकिन 1 मिनट के अंदर ऐसा हंगामा कि कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी है। लोकसभा की कार्यवाही अभी चल रही है लेकिन कितनी देर तक चल पाएगी ये बहुत बड़ा सवाल है। हमारे संवाददाता ऐश्वर्या पालीवाल हमारे साथ जुड़ गए। ऐश्वर्या, लोकसभा की कार्यवाही पर कितना जो है जबरदस्त इम्पैक्ट पड़ा है, राज्यसभा की कार्यवाही फिर से बाधित हो गई है। लोकसभा हालांकि हंगामे के बीच में चल रही है तो क्या यही स्ट्रैटेजी है ऑपोजिशन की, सिर्फ हंगामा होगा?
6: देखिए बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां जो हैं वो ये बोल रही हैं कि उनके जो मुद्दे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा कि नीट पेपर लीक हुआ, सबसे पहले तो ये कि आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवाइए, ये है जो कि विपक्षी पार्टियों का कहना है। दूसरा वो कह रहे हैं कि कल जिस तरीके से लाठीचार्ज स्टूडेंट्स पर हुआ तो इसका जिम्मेदार आखिरकार कौन है, अगर पुलिस कर्मी है तो वो जो पुलिस कर्मी है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अयोध्या के अंदर जिस तरीके से चोरी का मामला जो सामने आया है उस पर लेके भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो हमने देखा किस तरीके से लगभग 40 मिनट पहले विपक्षी पार्टियां जो है उन सब ने स्पीकर, लोकसभा के जो स्पीकर है ओम बिरला, उनके साथ बातचीत करी। उस बातचीत के अंदर ये जो बात विपक्षी पार्टियों ने रखी सामने वो ये है कि उनके जो मुद्दे हैं उनके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए, लेकिन जब तक उनकी बातों पर डिस्कशन नहीं होगा ऐसा लगता है कि विपक्षी पार्टियां लोकसभा के अंदर इसी तरीके का हंगामा करती रहेंगी।
0: जी ऐश्वर्या, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। वहीं से पहले राज्यसभा की कार्यवाही जब 11 बजे शुरू हुई तो लगभग 6 मिनट तक कार्यवाही चली। इस दरमियान मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा था आपको सुनाते हैं।
7: कल एक बहुत दुर्दैवी घटना हो गए और वो दुर्दैवी घटना में हमारे जो स्टूडेंट्स पेपर लीक और नीट एग्जामिनेशन के बारे में जो आवाज उठा रहे हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज किए, टियर गैस किए, उनको हॉस्पिटल में सुनना चाहिए।
0: और 12 नून पर जब शुरुआत हुई तो 1 मिनट के अंदर राज्यसभा की कार्यवाही फिर से बाधित हो गई। इधर मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में हंगामे के लिए सरकार पर ठीकरा फोड़ा है। उनका कहना है कि सरकार इस मामले को दबा रही है, सुलझाना नहीं चाहती है, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है।
7: कल भी जो हम बात करना चाहते थे उठाए, उस वक्त भी मौका नहीं दिया, लेकिन हमको जेल के जैसे अंदर रखा गया, बाहर आने नहीं दिया, क्या बात है। अरे पार्लियामेंट के बाहर भी अगर एमपीज नहीं आ सकते तो उनको सुरक्षा नहीं है तो किनको है। तो देश आज एक अराजकता के तरफ चल रही है और मोदी जी होम मिनिस्टर इसको कंट्रोल करना नहीं चाहते हैं और वो अपनी बात सदन में रखना भी नहीं चाहते हैं, इसीलिए ऐसे एटीट्यूड को हम कंडम करते हैं।
0: संसद के अंदर और संसद के बाहर दोनों ही जगहों पर माहौल गर्म है। संसद भवन के बाहर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह आज नारेबाजी करते दिखाई दिए। उनके साथ जो है आपके दूसरे सांसद भी मौजूद थे।
8: नहीं, हमारे लोगों को वहां खड़ा होने से रोक रहे हैं, ये क्या तरीका? कभी मीडिया को भगाओ, कभी लोगों को भगाओ, ये कोई भारतीय जनता पार्टी का सदन थोड़ी है। उनके नाम पे अलॉटमेंट थोड़ी हो गया संसद का। कल इतनी बर्बरता पूर्वक लाठी चार्ज हुआ, आपने देखा किस तरीके से नौजवानों को लाठियों से पीटा गया। हम नारे नहीं लगाएंगे।
0: 12:12 रिपोर्टर में अब अगली रिपोर्ट आपको देते हैं। एनडीए के मंगल मिलन के इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए सांसदों को संबोधित किया। पेपर लीक पर विस्तार से बातचीत की। पीएम ने कहा कि पेपर लीक पर सरकार ने तुरंत कार्रवाई की, 13 लोगों को गिरफ्तार किया, उनको जेल में डाला और परीक्षा दोबारा आयोजित करवाई। पेपर लीक ना हो इसके लिए सरकार ने सख्त कदम उठाए, आगे पेपर लीक ना हो इसके लिए भी कदम उठाए गए हैं। उन्होंने दलगत राजनीति का विषय नहीं है ये जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं ये भी कहा। और बैठक में पीएम ने कहा कि नेट पेपर लीक पर विपक्ष गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। मंगल मिलन कार्यक्रम में सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर पीएम मोदी का अभिनंदन भी किया गया। पीएम मोदी ने और क्या क्या बातें कही बता रहे हैं संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और बीजेपी सांसद कंगना रनौत।
9: प्रधानमंत्री जी ने अपील भी किया है कि उनका जो सजा है उसको सख्ती से सख्ती सजा कैसे दिया जाए, उसमें सारा टॉप क्लास के वकील लोग भी साथ दें ताकि जो पेपर लीक जैसे पाप काम किया है उन लोगों को घोर सख्त सजा मिले और आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया।
10: प्रधानमंत्री जी ने हमारा मार्गदर्शन किया और बहुत सारी चीजों पर जो है हमें जो है इंस्ट्रक्शंस मिले हैं, स्पेशली युवाओं को लेकर, जो है उनकी महत्वाकांक्षाओं को लेकर किस तरह से हम जनप्रतिनिधि जो है उसके साथ जस्टिस करें। और प्रधानमंत्री जी ने नीट को लेकर जो अपनी स्ट्रैटेजीज हैं और उन्होंने किस तरह से जो करप्शन एक चाहे आप जो जो लोग हैं कोचिंग सेंटर्स के लिए अपनी महत्वाकांक्षाओं से लेकर के युवाओं को किस तरह से भटका रहे हैं और हम लोगों का इसमें क्या दायित्व बनता है और किस तरह से हमें उसको टैकल करना है।
0: पीएम कह रहे हैं कि सरकार ने तुरंत एक्शन लिया लेकिन विपक्ष इतने से खुश नहीं है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने मंत्री के इस्तीफे की मांग वापस की और कहा कि एक समय था जबकि मंत्री इस्तीफा दे देते थे लेकिन आज तो देते ही नहीं।
11: मंत्री जी की जिम्मेदारी है, उनसे रिजाइन करवाइए। देखिए, एक जमाना था जब मंत्री जिम्मेदारी लेते थे। मुझे याद है एक ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था शायद 80s में, अगले दिन उन्होंने इस्तीफा दिया जो मंत्री रिस्पॉन्सिबल थे, जो उसके समय के रेल मंत्री थे। तो इस्तीफा दीजिए, जिम्मेदारी लीजिए और सबसे जरूरी तो यह है कि सिस्टम को दुरुस्त करिए।
0: 12:12 रिपोर्ट में अगली रिपोर्ट किसानों से जुड़ी हुई है। दिल्ली कूच की किसानों के बाद पंजाब और हरियाणा के किसान महापंचायत करने दिल्ली के लिए आ रहे हैं और किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए बॉर्डर को सील कर दिया गया है। दिल्ली कूच कर रहे किसानों को हरियाणा पुलिस ने खनौरी के पास में रोका है। भारत माला जम्मू कटरा एक्सप्रेस वे पर किसानों का रास्ता रोकने के लिए बैरिकेड कर दिया गया है। शंभू बॉर्डर को भी सील कर दिया गया है। देश बचाओ मोर्चा के आह्वान पर किसान महापंचायत करने के लिए दिल्ली आ रहे हैं।
12: आपको बता दें कि शंभू बॉर्डर के अलावा खनौरी बॉर्डर पे भी हजारों किसान रोके गए हैं, पहवा बॉर्डर पे भी रोके गए हैं। इसी तरह से करनाल में, सोनीपत में जगह जगह बैरिकेड लगाए गए हैं। किसान नेता किसानों के साथ यहाँ पे रुक गए हैं। आपको देख सकते हैं कि कुछ किसान हैं, आपको बता दें गुलाब सिंह चुडूनी है, उन्हें हिरासत में लिया गया। कई और किसान हैं जिन्हें डिटेन किया गया। तो ये चाह रहे हैं कि ये दिल्ली पहुंचे और अपनी आवाज बुलंद करें लेकिन इनका कहना है कि सेरी सरकार और मोदी सरकार दोनों ही इनको रोक रही है। आपको बता दें कि पंजाब सरकार की तरफ से यहाँ पे आवाजाही पे कोई रोक टोक नहीं है लेकिन क्योंकि ये पटियाला डिस्ट्रिक्ट है और अम्बाला से सटा हुआ है तो वहां पे हरियाणा पुलिस की तैनाती है, कमांडोज है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है और एंटी रायड गियर के अलावा अगर हम वॉटर कैनन की बात करें और पूरी तैयारी की गई है लेकिन किसानों ने कहा है कि जो भी वो विरोध प्रदर्शन करेंगे वो शांतिपूर्ण रहेगा। और पिछले समय की तरह जिस तरह से हमने देखा कि कन्फ्रंटेशन हुआ था जहां पे टियर गैस और लाठी चार्ज हुआ था उस तरह की गुंजाइश इस बार नहीं है, उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण है।
0: किसानों के महापंचायत पर किसान नेता सरवन सिंह पंढेर से हमारे संवाददाता कमलजीत ने खास बातचीत की, आपको सुनाते हैं।
13: व्यापक व्यापारिक समझौता आप कर रहे हो और हमें बोल रहे हो कुछ भी नहीं है। आप हम देश के स्टेक होल्डर हैं, किसान हैं, हमसे बात नहीं की। इतना आपका मसौदा बढ़िया, आप देश की पार्लियामेंट में रखिए तो सही, विपक्ष और सत्ता पक्ष मिलकर इस पे डिबेट करे, हमसे वार्ता करिए, मीडिया बुला लिया, आपके पास तो बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं, हम तो आपके जैसे एक्सपर्ट नहीं है। उनकी जो अमेरिका की स्टेटअप सेक्रेटरी है वो किसानों के बीच जा रही है, शैंपिंग बोतलें खोल रही है, वो कर रही हो हल्ला भी भारत की मंडी हमें मिल गई, वो क्यों चिल्ला रहे हैं भाई, आप बोल रहे हैं हमारे हित में।
0: पंजाब और हरियाणा से चले किसान फिलहाल बॉर्डर पर रोक लिए गए हैं, दिल्ली में उन्हें लेकर क्या इंतजाम और क्या एहतियात बरते जा रहे हैं, बता रहे हैं आज तक संवाददाता अंशुल सिंह।
14: उत्तर भारत के किसान नेताओं ने एक बार फिर से किसानों से दिल्ली में इकट्ठा होने की अपील की है। किसानों का ये मानना है कि जिस तरीके से यूएस इंडिया की ट्रेड डील हुई है उससे उनकी आमदनी पे काफी असर पड़ सकता है और उनके लिए जो ये ट्रेड डील है ये काफी नुकसानदेह है, जिसके चलते ये अपील की गई है कि सारे किसान जो आसपास के राज्यों में है वो सेंट्रल दिल्ली पहुंचे। हालांकि इस प्रोटेस्ट की या इस जमावड़े की किसी भी तरह की परमिशन दिल्ली पुलिस द्वारा नहीं दी गई है और दिल्ली पुलिस ने आसपास के राज्यों की पुलिस को भी लिखा है, चिट्ठी लिखी है और उनसे ये अपील की है कि किसानों को बॉर्डर तक ना आने दिया जाए क्योंकि उससे काफी ज्यादा ट्रैफिक और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है एक बार फिर से पनप सकती है। हालांकि कुछ किसान जो है वो दिल्ली के बॉर्डरों पर पहुंचे हैं लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस वक्त जो पूरा मामला है वो अपने कंट्रोल में कर लिया है और किसानों को दिल्ली में घुसने की अभी इजाजत नहीं दी जा रही। अब ये देखना होगा कि जिस तरीके से एक तरफ कांग्रेस जनता पार्टी जो कि जंतर मंतर पे धरने पे पहले से ही बैठी है और कल जिस तरीके से हिंसा हुई उसके बाद किसानों को क्या किसी भी तरीके से जंतर मंतर तक पहुंचने की इजाजत दी जाएगी या नहीं।
0: अब संसद से बड़ी खबर आपको देते हैं। दोपहर 2 बजे तक के लिए दोनों ही सदनों की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है, यानी कि कल ही की तरह आज एक बार फिर से वही नीट पेपर लीक का मुद्दा, वही राम मंदिर चंदा चोरी का मामला, इस पर विपक्ष एक बार फिर हमलावर दिखाई दिया। विपक्ष लगातार संसद के अंदर और संसद के बाहर दोनों ही तरफ काफी एग्रेसिव दिखाई दे रहा है, हंगामा करता दिख रहा है। संसद के अंदर लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्यवाही स्थगित हो गई है। दोपहर 2 बजे एक बार फिर से संसद की कार्यवाही शुरू होगी। क्या तब कार्यवाही चल पाएगी ये बड़ा प्रश्न है, क्योंकि आज 11 बजे जब कार्यवाही शुरू हुई तो कुछ ही मिनटों के बाद स्थगित कर दी गई दोपहर 12 बजे के लिए। 12 बजे जब शुरू हुई तो फिर अब स्थगित कर दी गई है, दोपहर 2 बजे तक के लिए काम नहीं हो पा रहा। 12 बजे 12 रिपोर्टर में आप अगली रिपोर्ट उत्तर प्रदेश से है, चढ़ावा चोरी के मामले से जुड़ी हुई एक नई SIT का गठन कर दिया गया। खबरों के मुताबिक आज इसका ऐलान हो सकता है। ये बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार नई SIT की अध्यक्षता एक वरिष्ठ IPS अधिकारी करेंगे और पूरी खबर बता रहे हैं हमारे संवाददाता आशीष श्रीवास्तव।
15: राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार अब नई SIT का गठन करेगी। यह SIT का गठन सुप्रीम कोर्ट में ऑब्जर्वेशन के बाद दिया गया है, यानी कि पहले जो इनिशियल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में रखी गई थी उसके बाद ये ऑब्जर्वेशन किया और सुप्रीम कोर्ट ने जिसके बाद अब ये फैसला लिया गया है, यानी कि अब इस SIT में नए IPSO को जगह दी जाएगी, क्योंकि अभी SIT में जो जिम्मेदारी है वो IAS की है। विश्वास पंत जो IAS है उनकी लीडिंग में ये पूरी SIT की जाँच हो रही थी, लेकिन अब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है उसके बाद अब नई SIT में IPS रखे जाएंगे, उन्हीं के नेतृत्व में ये पूरी जांच की जाएगी और साथ ही साथ जरूरत पड़ने पर IAS को भी शामिल किया जाएगा, यानी कि ये SIT पूरी तरीके से IPS से भरी होगी और जो अपनी जांच रिपोर्ट अयोध्या चढ़ावा चोरी के मामले में 1 महीने में सबमिट करेगी। हालांकि इसमें जो पुरानी रिपोर्ट के जांच बिंदु है उसको भी शामिल किया जाएगा, लेकिन नई रिपोर्ट बनने के बाद जो IPS के संरक्षण में होगी उसको सौंपा जाएगा।
0: अब रिपोर्ट कोलकाता से, जहां पर आज शहीद दिवस पर लगातार सियासत हो रही है, आज 3-3 कार्यक्रम हो रहे हैं। 21 जुलाई 1993 को पुलिस फायरिंग यूथ कांग्रेस के 13 कार्यकर्ताओं की पुलिस फायरिंग में मौत हुई थी, उसी की याद में हर साल बंगाल में कार्यक्रम आयोजित किया जाता है।
16: इस बार शहीद दिवस हर बार की तरह मनाया जा रहा है, लेकिन इस बार बहुत हद तक अलग है क्योंकि इस बार अलग अलग गुटों में बंट चुका है तृणमूल कांग्रेस। एक तरफ ममता बनर्जी जो पीछे के स्टेज से भाषण देंगी उनका एक मनाया जा रहा है, दूसरे छोर पर ऋतुप्रत बंदोपाध्याय की ओर से भी एक तृणमूल कांग्रेस का शहीद दिवस मनाया जा रहा है रानी राशमनी रोड पे। लेकिन इस जगह पर यह आरोप लगाया गया था कल रात को कि ममता बनर्जी के इस प्रोग्राम से पहले यहाँ पर प्लकार्ड्स को तोड़ा जा रहा है, स्टेज को तोड़ा जा रहा है, बीजेपी पर यह आरोप लगाया गया था। और उसके बाद ममता बनर्जी रात को तकरीबन 12:45 बजे खुद यहाँ पर आई, रात भर यहाँ पर रुकी रही और उसके बाद आज सुबह वो घर वापस गई है। ये उम्मीद लगाया जा रहा है कि ममता बनर्जी आज यहाँ स्टेज पे लौटने के बाद अपने समर्थकों को उद्देश्य करके कुछ ऐसा बोलेंगी, क्योंकि एक रोड मैप बना देंगी कि आने वाले समय में ममता बनर्जी गुट के इस तृणमूल कांग्रेस का रणनीति क्या होगा, किस तरीके से वो आगे जाकर बीजेपी का मुकाबला करेगी।
0: सिक्किम के नामची जिले में हुए लैंडस्लाइड में मृतकों की संख्या अब 9 हो गई है। कल दोपहर निर्माणाधीन यहां पर समरटुंग टनल का गेट लैंडस्लाइड से बंद हो गया था। एनएचपीसी ने तीसरा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से जुड़े हुए टनल के पास में लैंडस्लाइड की वजह से 25 मजदूर टनल के अंदर ही फंस गए और मृतकों का आंकड़ा अब 9 हो गया।
17: सिक्किम टनल हादसे में अब तक 9 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं और अभी भी जो डिस्ट्रिक्ट प्रशासन बोल रहा है कि 17 से 18 लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि जो उद्धार कार्य है वो चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस, दमकल, विभिन्न एजेंसियां संयुक्त रूप से लगातार काम कर रही हैं, लेकिन लगातार बारिश और भीतर में मीथेन गैस और ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें समस्या हो रही है। खास तौर पर विभिन्न तरह के उपकरण पहनकर अंदर टनल में जाना पड़ रहा है। लगभग 3 किलोमीटर के बाद वो जगह आ रही है जहां पर ये हादसा बताया जा रहा है। हादसे की वजह भी जानने की कोशिश हो रही है, लेकिन अभी पहली प्राथमिकता है कि जो लोग फंसे हुए हैं भीतर उनको किसी तरह बाहर निकाला जाए।
0: 12:12 रिपोर्टर में आप अगली रिपोर्ट जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर पर मानसूनी आफत बरसी है, कहीं पर लैंडस्लाइड तो कहीं पर फ्लैश फ्लड, और पूरी रिपोर्ट बता रहे हैं आज तक संवाददाता शफानी।
18: जम्मू कश्मीर में मौसम इस तरह बदला कि मुसीबत बनकर लोगों के लिए ये कहर बन के आया है। जम्मू कश्मीर में पिछले 3 दिन के दौरान खासतौर से पहाड़ी जिलों में बादल फटने से 20 लोग मारे गए हैं, जबकि 7 लोग अभी भी लापता हैं। सबसे ज्यादा तबाही पुंछ और रजौरी जिलों में देखी गई। बीती रात बांडीपोरा जिले के गुरेज घाटी में भी बादल फटने से नदियां उफान पर आई। बाढ़ से कई सारे घर ढह गए और साथ ही साथ किशनगंगा पर बने कई सारे पुल भी बह गए। अब एनडीआरएफ की टीम्स यहां पर रेस्क्यू के काम में लगी हुई हैं, लेकिन पहले ही मौसम विभाग ने और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 2 दिन कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बादल फटने की घटनाओं को लेकर और फ्लैश फ्लड्स को लेकर लोगों को आगाह किया था। जम्मू कश्मीर में जबरदस्त हो रही बारिशों के चलते आज भी अमरनाथ यात्रा स्थगित रही और कल भी अमरनाथ यात्रा बंद रहेगी, क्योंकि अमरनाथ यात्रा के सभी रास्तों पर भारी बारिश हो रही है।
0: उत्तराखंड में भी आसमानी आफत बरसी है। हल्द्वानी में मूसलाधार बारिश के चलते सड़कों पर सैलाब जैसा मंजर दिखाई दिया, तो देहरादून में तमसा नदी उफान पर है। आज तक संवाददाता अंकित शर्मा विस्तृत रिपोर्ट दे रहे हैं।
19: इस समय हम देहरादून के मशहूर टपकेश्वर मंदिर में मौजूद है और ये मंदिर के बीचों बीच से तमसा नदी यहाँ पर बह रही है। कितना विकराल रूप धारण की हुई है। पिछले कुछ दिनों से मौसम जो है वो बदला हुआ था और मानसून की बेरुखी की वजह से ऐसा लग रहा था ये नदियाँ जो है सूख जाएंगी, लेकिन एक बार फिर से ये ना सिर्फ रिचार्ज हुई है बल्कि पूरे उफान पर बह रही हैं। पिछले 24 घंटों में उत्तराखंड के अधिकतर शहरों में 100 mm के पास बारिश हुई, जिसमें पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार और आपको बताएं नैनीताल भी शामिल है, लगातार बारिश हो रही है। वहीं मसूरी के पहाड़ियों में बारिश होने की वजह से जो देहरादून की रिस्पना और बिंदाल नदी है वो भी उफान पर बह रही है। इसके साथ साथ 60 से ज्यादा जो सड़कें हैं वो बंद हो गई हैं और लगातार हमको छुटपुट लैंडस्लाइड की भी खबरें आ रही है। मालदेवता में जिस तरह से लैंडस्लाइड हुआ, चमोली और पौड़ी में भी लैंडस्लाइड देखने को मिला और उत्तरकाशी में भी कई जगह से बीच बीच में जो सड़कें अवरुद्ध हैं, इस वजह से चारधाम यात्रा भी जो है वो बीच बीच में रोकी जा रही है, जिससे भक्त जो है वो जोखिम भरकर ऊपर की तरफ यात्रा ना करें।
0: अमेरिका के द्वारा लगातार हमले जारी हैं और ईरान पर लगातार 10वीं रात भी ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं। अमेरिकी सेना ने ईरान के कई इलाकों और द्वीपों को निशाना बनाया है। ईरानी मीडिया प्रेस टीवी के मुताबिक बंदर अब्बास, शाबाहार, कोणार्क, सिडिक, शिराज और इस्फहान में धमाके सुने गए हैं। प्रेस टीवी के मुताबिक सेंट्रल ईरान के इस्फहान में दो धमाके हुए हैं। इसके अलावा खुमीन शहर में एक औद्योगिक केंद्र पर भी हमला हुआ है। जंग के बीच में जंग रोकने की कोशिशें भी चलती दिख रही हैं। आज तक संवाददाता प्रणय उपाध्याय ज्यादा जानकारी दे रहे हैं।
20: अमेरिका ईरान के साथ हुए उस समझौते पर जिस पर खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दस्तखत किए थे ठंडे बस्ते में डाल चुका है। इस समय ट्रंप प्रशासन की तरफ से यही दलील दी जा रही है कि इस समय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को सजा देना चाहते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंधक बनाने की सजा, व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाने की सजा और साथ ही इस पूरे संघर्ष के अंदर अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने की सजा। फिलहाल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को झुकाना चाहते हैं। हालांकि जानकार इस बात से इनकार नहीं करते कि यदि इस मिशन के अंदर भी कामयाबी नहीं मिली तो कुछ दिनों बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिर उस समझौते की फाइल को निकाल लेंगे और इस बात का दबाव बनाएंगे कि ईरान उनकी शर्तों को मान ले।
0: अब रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।
21: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से इन एसोसिएशन विद
22: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
21: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर।
23: दिस इज द साउंड ऑफ क्लेयर कुकिंग डिनर एट होम एंड दैट्स द साउंड ऑफ अ फ्रॉड अलर्ट फ्रॉम वेल्स फार्गो फ्लैगिंग अ चार्ज फॉर अ प्राइसी रेस्टोरेंट इन पेरिस। कंसीडरिंग क्लेयर इजंट इन पेरिस राइट नाउ, दैट सीम्ड ऑड टू द बैंक एंड टू क्लेयर. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
24: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
25: Tune in's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
26: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
21: Pure Ayurvedic Beauty.
27: Dekh. इतना बड़ा आदमी मुझे इन्वेस्टमेंट टिप्स दे रहा है।
28: अच्छा, सिर्फ तुझे ही दे रहा है?
27: ओ, अर्ज किया है दूर से लगा कि एक जाना पहचाना चेहरा हंसकर सच कह रहा था, पास जाकर देखा तो झूठे वीडियो के जाल में मैं फंस रहा था। सेबी और एनएससी का कहना है किसी भी वीडियो में पलके और लिप सिंक पर ध्यान दें, सिर्फ ऑथराइज्ड सोर्सेज पे ही विश्वास करें। वाह,
29: सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर।
30: एनएससी द्वारा निवेशकों के हित में जारी।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। हेक्सा ऑर्गेनिक, रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
1: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
2: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
3: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने.
4: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ.
5: सोच बदलो और बैंक भी.
6: पापा,
7: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा.
8: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा.
7: छक्का?
8: सब कैशलेस हो गया है.
7: हाँ, ला भाई मेरा बैट.
9: वो अभी तो ठीक हुआ. तू
10: चार्ज हुआ यार.
11: बैट किसका है?
12: टाटा AIG है तो भरोसा है.
13: In association with
14: Sera Sanitaryware, it's your moment of Sera. E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा.
15: पत्रकारिता के गुर यहां नहीं सीखे तो क्या सीखे, नाम ही काफी है. इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें.
16: इंडिया फरारी है और यहाँ पर कई मल्टी बैगर्स मिलेंगे. सेंसेक्स 1.5 लाख का हो सकता है टिल 2030, ऐसी प्रोबेबिलिटी है. और 2036 तक 3 लाख का सेंसेस हो जाएगा.
17: स्टॉक मार्केट में क्या है, एक खास बात क्या है कि एक ऐसा सबसे बड़ी वेल्थ क्रिएटिंग मशीन है इन द वर्ल्ड. सी, देयर आर ओनली टू थिंग्स, प्राइस एंड वैल्यू. बफेट साहब ने एक सबसे बड़ी चीज सिखाया, दे डू व्हाट दे अंडरस्टैंड. एक का हजार दिखे तो भी लिवरेज लेने का नहीं. बाजार आपको डराएगा रोज आकर, एक टका नीचे दो टका नीचे, तू आ ना भाई, हमारा तो पार्टी चालू रहेगा. हम वही के वही हैं भैया, रायपुर से आए हैं, वही से हैं अभी भी.

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर से सरकार को घेरा है। प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। नीट पेपर लीक और कल जो बवाल हुआ उस पर राहुल गांधी ने नाराजगी जाहिर की कि सवाल पूछने पर छात्रों को पीटा जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि छात्र परीक्षा को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनको मारा गया, लाठीचार्ज हुआ, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं देते हैं, ये भी उन्होंने सवाल पूछा। युवाओं के भविष्य पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है, इन छात्रों के साथ प्रधानमंत्री बात क्यों नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ राहुल गांधी ने सरकार से इस पूरे मामले पर माफी की भी मांग की है। राहुल गांधी लगातार हमलावर हैं। आज सदन फिर से चल नहीं पाया है क्योंकि लगातार कार्यवाही पर असर पड़ रहा है, हंगामे के चलते। लेकिन इस बीच में राहुल गांधी ने आज लोकसभा स्पीकर से भी मुलाकात की, उनके सामने भी अपने बातें रखी और अब कहा कि छात्र सवाल पूछ रहे हैं तो उनको पीटा जा रहा है।
1: स्पीकर के पास गए हम एंड हमने कहा कि देखिए हम स्टूडेंट इशू पे डिस्कस करना चाहते हैं और स्पीकर ने हमें कहा कि डिस्कशन के लिए उन्हें सरकार से पूछना है। मतलब आप समझिए, स्पीकर इज टेलिंग अस दैट टू डिबेट इन पार्लियामेंट ही हैज टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। ही इज ओपनली टेलिंग अस दैट। ठीक है, देखिए इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है और ये जो किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, दिस इज कंप्लीटली अन इंडियन। मोदी जी हैज नॉट इवन अपोलोजाइज्ड फॉर व्हाट हैज हैपेंड यस्टरडे। नाउ ये जो युवा हैं, ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में, टेस्टिंग सिस्टम के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरा देश जानता है कि एजुकेशन सिस्टम, टेस्टिंग सिस्टम इज ब्रोकन, इट हैज सीज टू एग्जिस्ट। टेस्टिंग सिस्टम हैज बीन हॉलोड आउट बाय टर्माइट्स, दैट इज ऑल दे सेइंग, नथिंग रॉन्ग विद इट। We've been saying it. I've been doing presentation after presentation about this. Why is the Prime Minister silent? What is the reason? He should apologize to the students and he should stop this nonsense.
0: और अब शुरुआत करते हैं यूपी एक्सप्रेस वे की। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद जांच में बड़ा बदलाव संभव नहीं, एसआईटी के गठन की तैयारी। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी संभाल सकते हैं जांच की कमान, नई एसआईटी पुराने जांच रिपोर्ट को आधार बनाएगी, सभी तथ्यों और साक्ष्यों की फिर से होगी जांच। अयोध्या चढ़ावा चोरी केस में जांच तेज, सूत्रों के मुताबिक महीने के अंतिम तक रिपोर्ट भी आने की उम्मीद है। राम मंदिर ट्रस्ट के खाली पदों को लेकर अहम बैठक, कल 3 नए सदस्यों के नाम पर लगेगी मोहर। राम मंदिर परिसर की व्यवस्था और समितियों के पुनर्गठन पर चर्चा, अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन को स्थायी जिम्मेदारी मिलने की भी चर्चा। लखनऊ में योगी कैबिनेट की अहम बैठक, 20 से ज्यादा प्रस्तावों पर चर्चा, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर हो सकता है फैसला। प्रयागराज से सोनभद्र तक 330 किलोमीटर लंबे विंध्य एक्सप्रेस वे का प्रस्ताव, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे को पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से जोड़ने का प्लान। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने योगी सरकार पर उठाए सवाल, एक्सप्रेस वे परियोजनाओं में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। सपा नेता दीपक रंजन ने विकास कार्यों को लेकर सरकार पर बोला हमला, एक्सप्रेस वे की गुणवत्ता पर उठाए सवाल। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले बीजेपी ने उम्मीदवार चयन के लिए 5 चरणों वाला सर्वे अभियान किया शुरू, सर्वे रिपोर्ट के आधार पर कई मौजूदा विधायकों का टिकट भी खतरे में। आज बहराइच दौरे पर सीएम योगी, 352 करोड़ से ज्यादा की 70 विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। बहराइच में और श्रावस्ती में सीएम योगी का कार्यक्रम, लोकार्पण शिलान्यास के साथ जनसभा को करेंगे संबोधित। लखनऊ में ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती में अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास पर पहुंचे छात्र। लखनऊ अलीगंज अग्निकांड वाली बिल्डिंग पर चला हथौड़ा, एलडीए ने भवन हटाने के लिए 25 जुलाई तक का समय दिया। एलडीए की निगरानी में सावधानी से तोड़ी जा रही इमारत, बिल्डिंग मालिक ने खुद शुरू कराया ध्वस्तीकरण का काम।

0: दिल्ली में देश की सबसे बड़ी पंचायत बैठी है तो पूरे देश के मुद्दों पर सियासत गर्म है, लेकिन इन मुद्दों के उत्तर प्रदेश के मुद्दों पर भी दिल्ली में राजनीति हो रही है। पेपर लीक से लेकर चढ़ावा चोरी तक के मामलों को लेकर दिल्ली में समाजवादी पार्टी जितनी आक्रामक राजनीति कर रही है उतनी कांग्रेस नहीं कर पा रही है। जंतर मंतर से संसद भवन तक चल रही लखनवी सियासत की कुछ झलकियां आपको दिखाते हैं।
1: यूपी की सियासत की तस्वीर कुछ ऐसी है कि एक तरफ सत्ता पक्ष के यूपी वाले भागीदार यानी यूपी में एनडीए के सहयोगी दल मंगल मिलन कर रहे हैं, तो सत्ता के लिए लड़ रहा विपक्ष अपने अपने हिसाब से दंगल कर रहा है। संसद से सड़क तक मचे शोर में विपक्षी दलों की ओर से उठाए जा रहे यूपी के मुद्दे और यूपी की आवाज सबसे ऊंची सुनाई दे रही है। चाहे वो अयोध्या के चढ़ावा चोरी का मुद्दा हो या पेपर लीक के खिलाफ चल रहे आंदोलन का, समाजवादी पार्टी अपने हिस्से की सियासत बखूबी कर रही है, क्योंकि यूपी की सियासत में जिन राजनीतिक दलों का स्टेक है उसमें कांग्रेस प्रदर्शनकारियों के साथ नजर आई। राहुल प्रियंका से सवाल पूछा जाता रहा, वो कुछ बोले तक नहीं। बीएसपी सड़क पर कभी उतरती नहीं। चंद्रशेखर आजाद जरूर 9 बजे रात तक छात्रों पर कार्रवाई के विरोध में धरना देते दिखे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन में थे, यूपी का कोई नेता नहीं था। यूपी की सत्ता में हक का दावा करने वाले ओवैसी की पार्टी के नुमाइंदे भी सड़कों पर नहीं दिख रहे थे। बस एक समाजवादी पार्टी थी जो मंच से सड़क तक और सड़क से थाने तक जुझारू सियासत कर रही थी। कहने को तो यूपी में इंडिया लड़ने वाला है। पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन की चिंगारी भी राहुल खुद जलाने का दावा करते हैं, लेकिन जब सड़क पर संघर्ष की बारी आई तो कॉकरोच जनता पार्टी के मंच पर डिंपल यादव नजर आई। कॉकरोच जनता पार्टी के साथ सड़क पर डिंपल यादव नजर आई। घायल प्रदर्शनकारियों से लेकर बैरिकेडिंग और पुलिस थाने तक गिरफ्तारी देती डिंपल यादव नजर आई।
2: भाजपा सरकार नहीं, अहंकार की तरह काम कर रही है। अहंकार है उनके अंदर। कम से कम बच्चों की बात तो सुननी चाहिए थी।
3: बेसिकली इतिहास के लिए ये काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आप मीडिया रिपोर्टर्स हैं, पुलिस वाले भी उनकी आंखों में शर्मिंदगी दिख रही थी।
2: तो कैसी सरकार है, क्या यही अमृतकाल है?
3: एजुकेशन मिनिस्टर को हटाए, सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, जिम्मेदारी ले, अकाउंटेबिलिटी दिखाए।
1: संसद सत्र के पहले दिन सीजेपी के प्रोटेस्ट के दौरान जब बाकी दलों के नेता संसद भवन परिसर में जुबानी बयानबाजी और ट्वीट पोस्ट करके आंदोलन को वर्चुअल समर्थन देते रहे, उसके मुकाबले यूपी के दो नेता सड़कों पर थे। ये डिंपल यादव और चंद्रशेखर आजाद थे। कांग्रेस के नेता संसद भवन परिसर में बयानबाजी से आगे नहीं बढ़े।
4: राहुल जी, स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज हुआ है, 4 FIR भी दर्ज हो गई है, संसद में उठा रहे हैं, कुछ कहेंगे? राहुल जी आपने बाइट भी दिया है कल।
1: हालांकि जंतर मंतर पर जली आंदोलन की आग की तपिश यूपी के अलग अलग शहरों में काशी से लेकर लखनऊ तक नजर आई, जहां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध मार्च किया है। अब देखना होगा कि संसद सत्र के बाकी 18 दिनों तक दिल्ली में यूपी की चुनावी राजनीति के मुद्दों की मशाल कौन विपक्षी दल कितनी मजबूती से थामे रखता है। आज तक ब्यूरो।
0: वैसे तो पेपर लीक का मुद्दा पूरे देश के युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन जिस तरह दिल्ली की सड़कों पर यूपी की सियासत उबल रही है उसकी बड़ी वजह चुनावी उत्तर प्रदेश में हुए पेपर लीक की घटनाएं भी हैं, क्योंकि यूपी में डबल इंजन की सरकार के पहले से लेकर बाद तक के पेपर लीक की घटनाएं कभी बंद ही नहीं हुई है। एक डेटा आपके सामने रखते हैं, 10-12 बरस के अंदर ही करीब 15 बड़े पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं। साल 2015 में यूपी लोअर सबऑर्डिनेट परीक्षा का पर्चा लीक हुआ, 2017 में यूपी पुलिस दरोगा भर्ती परीक्षा की ऑनलाइन परीक्षा में धांधली हुई और पेपर लीक के आरोप लगे, 2018 में यूपी ट्यूबवेल ऑपरेटर भर्ती परीक्षा पर सवाल उठे, 2020 में यूपी के शिक्षकों की भर्ती परीक्षा पर सवाल उठे, 2021 में यूपी टेट का पर्चा लीक हुआ, 2022 में यूपी बोर्ड के 12वीं का पर्चा लीक हुआ, 22 में ही लेखपाल भर्ती में धांधली की जांच भी हुई, 2024 में 12वीं बोर्ड से लेकर कांस्टेबल भर्ती आरओ भर्ती परीक्षाओं में पर्चा लीक हुआ। अब सरकार कहती है कि इसी समस्या से निपटने के लिए सख्त कानून बनाए गए हैं, लेकिन विपक्ष कहता है कि उसी कानून ने आज तक दोषियों को सजा ही नहीं दी है। राहुल गांधी तो देश भर में 152 परीक्षाओं के पर्चे लीक का आरोप लगाते हैं।
5: देखिए, हम राहुल जी लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं काफी समय से, ये कोई नया मुद्दा नहीं है। लेकिन इशू ये है कि ये बार बार बार बार हो रहा है और इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। मुझे याद है जब मैं यूपी में काम कर रही थी तो जो पेपर लीक हो रहे थे वो एक दो जो एकदम जो नीचे वाले अधिकारी हैं उनको आपने अरेस्ट कर लिया या दो दिनों के लिए रख लिया थाने में, उसके बाद बात वहीं पे रुक जाती है। किसी पर कार्रवाई नहीं हुई है, किसी पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।
0: एक तरफ जब विपक्षी दलों के नेता कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन की आवाज में अपनी आवाज मिलाकर सियासत की भागीदारी जता रहे थे, दूसरी तरफ सरकार भी लगातार मुद्दों की राजनीति में टक्कर दे रही थी। जिस तरह सोशल मीडिया पर विपक्षी नेता पुलिस लाठी चार्ज को लेकर विरोध दर्ज करवा रहे थे, सोशल मीडिया पर ही सरकार भी सक्रिय थी। चाहे वो सीजेपी के लोगों के साथ मुलाकात हो या उनका ज्ञापन लेने की तस्वीर हो या फिर अब पीएम मोदी का वो बयान जिसमें बीजेपी बच्चों के लिए पीएम का संदेश प्रचारित कर रही है, देश देश के नौजवानों को संबोधित करता हुआ प्रधानमंत्री मोदी का एक बयान बीजेपी ने सोशल मीडिया पर जारी किया है, पहले आपको सुनाते हैं।
6: ये मोदी इसलिए मेहनत करता है कि जब आप 40-45 साल के हो, जब आपके घर में बच्चे बड़े हो रहे हो, तब आप अपने बच्चों को विकसित भारत में बड़े करते देख सके, इसलिए मैं मेरी जिंदगी खपा रहा हूं आपके बच्चों के भविष्य के लिए।
0: तो सरकार क्या आंदोलन कर रहे प्रदर्शनकारियों से संपर्क और बातचीत आगे बढ़ाने के लिए सकारात्मक और आशावादी माहौल बनाने की कोशिश कर रही है? दिल्ली में एनडीए के सहयोगी दलों के साथ हुई मंगल मेलन बैठक के बाद हमारे सहयोगी ने यूपी में बीजेपी के सांसद रवि किशन से बातचीत की है।
7: क्या सबसे मंगल बात आपको लगी आज के?
8: मंगल बात है कि आज यंगस्टर्स के जो भविष्य हैं, भारत के भविष्य, उनके बारे में जो उन्होंने बात की, नीट पेपर में आने वाले में कभी अपराध ना हो, जो 13 अपराधी पकड़े गए उनको कितनी कड़ी सजा और कितने जल्द मिले उस पर बात हुई। आज बहुत फॉर्म थे, हाइड्रोजन ट्रेन जो विश्व का सबसे पहली ट्रेन, सबसे बड़ी ट्रेन है, उस पर स्पेस में जो 28 साल के बच्चे काम कर रहे हैं। आज फोकस पॉइंट वॉज ओनली यंगस्टर।
7: प्रधानमंत्री का सीधा संवाद से रहा, आपको क्या लग रहा है इससे? आप जो युवा पीढ़ी है, आपको लग रहा है कि वो बात सुनेगी और जो बात कही प्रधानमंत्री?
8: ऑफ कोर्स यस, प्राइम मिनिस्टर वेरी सेंसिटिव अबाउट यंगस्टर्स, हमारे देश के यंगस्टर्स के लिए बहुत सेंसिटिव।
7: नीट को लेकर आपको लग रहा है कि जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं जो बात है वो उसको लेकर?
8: देखिए, कानूनी चीजें हो गई हैं, उस पर आप टिप्पणी नहीं, कल संवाद सरकार ने की और डेफिनेटली प्रधानमंत्री जी भाई अपने देश के बच्चों के भविष्य के लिए सेंसिटिव क्यों नहीं रहेंगे?
7: तो बात बताते हुए बीजेपी सांसद रवि किशन, उनका ये कहना है कि नीट को लेकर सरकार काफी संवेदनशील है और उसको लेकर आगे कड़े कदम उठाने की भी सोच रही है। आज तक के लिए
0: नौजवान नौकरी रोजगार से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर है। इस वक्त यूपी से बड़ी खबर मिल रही है। यूपी में सैकड़ों की संख्या में नौजवानों ने डिप्टी सीएम के आवास के बाहर प्रदर्शन किया है। लखनऊ में यह प्रदर्शन 4 साल से इंतजार कर रहे उन नौजवानों का है जिन्होंने ग्राम पंचायत अधिकारी की परीक्षा तो दी है लेकिन नतीजे घोषित ही नहीं हो रहे। पंचायती राज विभाग की इस भर्ती में हो रही देरी से नाराज अभ्यर्थियों ने अब प्रदर्शन किया है।
9: अधिकारी की यह भर्ती, आप अगर पदों की बात करेंगे तो 1468 यानी कि 1450 के ऊपर ये पद हैं, 200-300 के ऊपर ये लड़के लड़कियां यहां खड़े हैं। सामने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का आपको आवाज दिखाई पड़ेगा। डिप्टी सीएम की चौखट पर इसलिए इनको आना पड़ा है क्योंकि पंचायती राज मंत्री के यहां इनकी सुनवाई नहीं हो पाई है या जो डिपार्टमेंट है वो इनकी नहीं सुन पाया है। अग्नि सेवा चयन आयोग के दफ्तर भी कई बार जा चुके हैं लेकिन कुछ नहीं हुआ है। थक हार कर डिप्टी सीएम से उनको आस है कि डिप्टी सीएम उनकी आवाज जो है वो सरकार तक पहुंचाए और मुख्यमंत्री तक कुल मिलाकर उनकी आवाज पहुंचे, उसको लेकर ज्ञापन सौंपने यहां पर ये 100-200 जितने मैं लड़के यहां देख रहा हूं वो यहां पर आए हैं।
10: तरफ दिखाई दे रहे हैं, ये सिर्फ किसी एक जिले से नहीं, सिर्फ लखनऊ से आए हुए नहीं है, इसमें बच्चे सहारनपुर से, बांदा से, झांसी, कुशीनगर, मतलब पूरे प्रदेश भर से बच्चे आए हुए
9: हैं। ये ज्ञापन देखिए इनके हाथ में है, हालांकि हम डिप्टी सीएम के आवास पर हैं, ये ज्ञापन आप अगर पढ़ेंगे तो डिप्टी सीएम के आवास पर ये ज्ञापन उन्होंने दिया है और डिटेलिंग दी है कब की भर्ती है, 22 का पेट एग्जाम, सारी चीजें हैं, ये भी बता रहे हैं अन्य भर्तियां पूरी हो गई हैं लेकिन ये नहीं हो पाई। मुख्यमंत्री योगी से आप लोग की कोई गुहार है इस मामले में?
11: हमारी गुहार है कि हमारा रिजल्ट जल्दी दिया जाए। हम लोग बहुत बार 4 साल हो गए भर्ती को आए हुए, अभी हमारी भर्ती का कोई रिजल्ट के लिए कब आएगा ये भी नहीं पता है, तो हमारा रिजल्ट जल्दी दिया जाए कि हम बच्चे बहुत बार आयोग भी गए हैं और पंचायती राज मंत्री से भी मिलने गए, निदेशालय भी गए हैं लेकिन अभी तक हमारा रिजल्ट नहीं आया है और यही गुहार है कि हमारा रिजल्ट जल्दी दिया जाए।
12: सर हमें सीएम से ये कहना है कि जैसे पुलिस वालों की वैकेंसी 3-4 महीने में क्लियर हो जाती है और सारी वैकेंसीज क्लियर हो जाती हैं, हमारे आयोग में ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि ये लोग एग्जाम करके रिजल्ट नहीं दे पाते हैं और 4-4 साल क्यों लग जाता है।
9: अमन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: दरअसल यूपी में ये परीक्षा तो काफी समय पहले हो चुकी है लेकिन भर्तियां नहीं हुई हैं। ये क्यों नहीं हुई है, ये बड़ा सवाल है। यूपी ट्रिपल एससी ने ये परीक्षाएं ली हैं। इस भर्ती का विज्ञापन 16 मई 2023 को प्रकाशित हुआ था और ऑनलाइन आवेदन 23 मई 2023 को लिए गए थे। इस पद के लिए लिखित परीक्षा 27 अप्रैल 2025 को हुई थी और दस्तावेज सत्यापन का परिणाम 17 अक्टूबर 2025 को घोषित कर दिया गया था। परिणाम घोषित होने के पश्चात लगभग 9 महीने बीत चुके हैं लेकिन अभी तक अंतिम परिणाम जारी नहीं किया गया है। अब इसी को लेकर मांग कर रहे हैं नौजवान और खुद डिप्टी सीएम के आवास के बाहर पहुंचकर इन्होंने अपनी मांग रखी है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को फौरन फोन भी लगवाया गया, बताया जा रहा है। आश्वासन भी मिला कि 45 दिनों में अंतिम परिणाम भी आ जाएगा। अखिलेश यादव इस समय कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं।
13: इस तरह का एक गैंग बनाया था, लगता है इस तरह के लोग थे जो प्राइवेट ड्रेस में थे और लाठी लेकर के लोगों को मार रहे थे। कभी हिटलर ने बनाया था और आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देख रहे हैं। ये कभी स्वीकार नहीं हो सकता है लोकतंत्र में। हम लोगों ने उस दिन भी विरोध किया, आज भी विरोध कर रहे हैं और ऐसी सरकार को हटाने के लिए लगातार हम लोग लड़ते रहेंगे। और हम तो सरकार से आग्रह करेंगे, आंदोलनकारियों को क्यों हटाते हो, सम्मान के साथ खुद ही छोड़ दो अपनी कुर्सी।
14: सर जिसे आपने कहा सर
15: हिटलर से कंपेयर किया, जो आपने हिटलर से कंपेयर किया,
13: देखिए कंपेयर क्यों ना करें, जो मीडिया में अगर वीडियोस आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि आरएसएस, तो जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की जिम्मेदारी है सच्चाई को बाहर लाना। क्या सरकार उसमें भी शामिल है वीडियो चलवाने में? क्या अगर वीडियोस आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, मैं आपको भेज सकता हूं, अगर आप कहें तो आपको भेज दूं मैं। तो कंट्रोल किसके पास है? अगर सरकार ऐसे चलने क्यों दे रही है? अगर सरकार की बदनामी हो रही है और सरकार की लाठी से ही छात्रों का, नौजवानों का, युवाओं का सर फूट रहा है, आंसू गैस गोले चल रहे हैं, आप करंट लगा रहे हो, किसने नहीं देखा, किसको नहीं समझा? और दुर्भाग्य देखिए क्या है कि कई मीडिया के लोगों को वहां खड़ा होने पर भी उनको भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए कम से कम आप लोग भी तो क्रेडिबिलिटी थोड़ा बचाओ। और जो डॉक्टर्स, जो वीडियो मैंने भी पोस्ट किया है, डॉक्टर्स क्या बता रहे हैं कि सर खुले हुए आए लोगों के, बच्चों के। क्या इसीलिए सरकार बनी थी? इसलिए इनका नारा था सबका साथ सबका विकास, यही सबका साथ है और यही युवाओं के लिए संदेश है और यही विकसित भारत है, यही अमृतकाल है क्या? यही विश्वगुरु बनने का रास्ता है क्या? क्या आप छात्रों पर लाठी मारेंगे, आप नौकरी नहीं देंगे? और अगर नीट में हेरा फेरी हुई है, नीट का पेपर लीक हुआ है, तो किसकी जिम्मेदारी थी? ये सरकार की जिम्मेदारी थी और सरकार ने स्वीकार किया, इसीलिए तो नीट एग्जाम दोबारा किया। और ये केवल दिल्ली में नहीं हो रहा है, देश में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पेपर लीक हो रहे हैं। और यूपी में तो 20 पेपर लीक हुए हैं एक के बाद एक, और लगातार पेपर लीक हुए हैं। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने संगी साथी मंत्रियों पर कोई दबाव नहीं बना पा रही है क्योंकि वो जानती है कि जिस समय उन पर दबाव बनाकर इस्तीफा लेंगे तो दबे खुचे राज भी वो मंत्री लोग

0: बढ़ते हैं तो दिल्ली में चल रही यूपी की राजनीति का दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर का चढ़ावा चोरी मुद्दा है, चंदा चोरी का मुद्दा है। संसद सत्र के पहले दिन राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चर्चा में था। संसद में विपक्षी दल जो है राम धन की चोरी का सवाल उठा रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट इस चोरी की जांच के लिए बनाए गए एसआईटी से संतुष्ट नहीं था और आखिरकार नई एसआईटी से जांच करवाने के आदेश दे दिए गए हैं। अब उत्तर प्रदेश सरकार राम मंदिर चंदा चोरी केस की जांच के लिए नई एसआईटी के गठन का ऐलान कर सकते हैं, जिसमें सदस्य जो अधिकारी हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक रखे जाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट की सलाह के बाद अब एसआईटी की कमान एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर संभाल सकते हैं। नई एसआईटी में 3 आईपीएस अधिकारी शामिल होंगे। एसआईटी में कोई भी आईएएस अधिकारी शामिल नहीं होगा, कोई आईएएस नहीं होगा। वर्तमान एसआईटी के अध्यक्ष लखनऊ मंडल आयुक्त विजय विश्वास पंत और विशेष सचिव वित्त नील रतन को हटाया जाएगा। हालांकि नई एसआईटी पहले की जांच रिपोर्ट को अपनी तफ्तीश का हिस्सा बनाए रखेगी। एसआईटी अपनी रिपोर्ट यूपी सरकार को नहीं बल्कि सीधे सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। संभावना है कि मौजूदा एसआईटी सदस्य आईपीएस किरण एस, जो पहले आईबी, सीबीआई और एनआईए में काम कर चुके हैं, वो टीम की अगुवाई कर सकते हैं। योगी सरकार ने एसआईटी को 1 महीने का और समय दिया है। सूत्रों के मुताबिक मामले की जांच इस महीने के अंत तक पूरी किए जाने की संभावना है। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
3: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
4: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
5: Summer Hits blends old school jams with fresh favorites so you can get the party started. Listen to your summer soundtrack made for sunshine, vibes, and summer heat. Hear all your favorites and more right here on TuneIn. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Summer Hits and start listening now.
1: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health Ka Sach. In association with
2: Bharat Ki Apni Electric Sawari, Sokudo.
1: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of...
3: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
4: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
1: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health Ka Sach. Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions. Hexa Organic, radiant skin and nourished hair, pure Ayurvedic beauty.

0: पहाड़ों पर जमकर कर बरस रहे हैं मानसूनी बादल। उत्तराखंड में लगातार बारिश से बिगड़ रहे हालात। लैंडस्लाइड के चलते उत्तराखंड की कई सड़कों पर मलबा। मैदानों में जहां बारिश का सूखा पड़ा है, वहीं दूसरी तरफ पहाड़ों पर मानसून का प्रचंड रूप देखा जा रहा है। उत्तराखंड के 6 जिलों में कल जमकर बादल बरसे। ये तस्वीर देहरादून के संतला देवी मंदिर के पास की है, जहां बारिश के बाद नदी का जलस्तर बढ़ जाने के बाद 7 लोगों की जान पर बनाई। नदी के बीच बने टापू पर लोगों को बचाने के लिए SCDRF की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और उन्हें बचा लिया। देहरादून का IT पार्क भी बारिश के प्रचंड रूप से अछूता नहीं रहा। भारी बारिश के बाद पूरे इलाके में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। सड़कें दरिया में तब्दील हो गई। लोगों को गाड़ियां चलाने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। उत्तराखंड के दूसरे इलाकों में भी भारी बारिश का दौर जारी है। टिहरी में हो बारिश के चलते इलाकों में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं बारिश के साथ साथ पहाड़ों से हो रही लैंडस्लाइड के चलते उत्तराखंड के लोगों में दहशत का माहौल है। मालदेवता इलाके के सिल्ला मोटर मार्ग पर लैंडस्लाइड होने से आवाजाही प्रभावित हुई है। देहरादून से अंकित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
1: देश की बेटी ने लहराया तिरंगा। देश की आन बान शान बनी PV सिंधु। जापान ओपन जीतने वाली पहली भारतीय बनी PV सिंधु। जी हां, कमाल हो गया, धमाल हो गया। जापान ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीयों को गर्व करने का मौका मिला है। 31 साल की सिंधु ने रविवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में जापान की अकाने यामागुची को 21-17 से हराया। ये मैच 50 मिनट तक चला। सिंधु 4 साल बाद यामागुची को किसी फुल मैच में हरा सकी हैं। उन्हें पिछली जीत थाईलैंड ओपन में 2022 में मिली थी। पिछले साल मलेशिया ओपन में यामागुची रिटायर्ड हर्ट हो गई थी। सिंधु ने 2 साल बाद कोई खिताब जीता है। उन्होंने 2024 में सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीता था। वो 2022 में सिंगापुर ओपन सुपर 500 में चैंपियन बनी थी। ये सिंधु के करियर का पहला सुपर 750 खिताब है। 2019 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के बाद ये उनका सबसे बड़ा इंटरनेशनल खिताब है। आज तक ब्यूरो।

मॉनसून सत्र में पेपर लीक बैन कर गतिरोध, सरकार की घेराबंदी में जुटा विपक्ष। स्पीकर से मिलने के बाद राहुल ने कहा, जब युवाओं पर चर्चा नहीं तो किस काम की संसद। अखिलेश बोले, हिटलर जैसा व्यवहार। एनडीए की मीटिंग में पेपर लीक पर पीएम का संदेश, का पता चलते ही सरकार ने लिया एक्शन। री एग्जाम के बाद फौरन निकाला रिजल्ट, नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। दिल्ली के पास शंभू बॉर्डर पर किसानों की महापंचायत, भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में जुटने लगे किसान, कई नेता हिरासत में। हरियाणा और दिल्ली पुलिस अलर्ट पर, बॉर्डर सील।

पुलिस वाले और 7 आंदोलनकारी घायल। दिल्ली पुलिस ने दर्ज की FIR, सैकड़ों CCTV की जांच। जम्मू कश्मीर में बादल फटने से भारी नुकसान, गुरेज। बडगाम में पहाड़ों से गिरा मलबा, सिक्किम में टनल धंसा, एंट्री गेट बंद होने से अंदर फंसे 10 मजदूरों की मौत, 20 अब भी फंसे।

मानसून सत्र के दूसरे दिन विपक्ष के जोरदार हंगामे के बाद लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित। राज्यसभा में छात्रों के प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का सरकार पर हमला, बोले छात्रों पर आंसू गैस छोड़ी गई, कई छात्र अस्पताल में भर्ती। संसद परिसर में सुरक्षा कर्मियों से संजय सिंह की तीखी बहस, गुस्से में नारेबाजी करते आए नजर।

संसद भवन में इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक, सदन की रणनीति पर मंथन। नीट मामले में प्रदर्शन करे छात्रों पर बल प्रयोग करने पर गरमाई सियासत, राहुल गांधी का सरकार पर हमला, पूछा इस मामले पर पीएम चुप क्यों। राहुल गांधी का आरएसएस से बड़ा हमला, बोले पूरी शिक्षा व्यवस्था पर आरएसएस का कब्जा, छात्रों के मुद्दे पर संसद में चर्चा होगी तो फिर संसद किस काम की। युवाओं के प्रदर्शन पर प्रियंका गांधी का सरकार पर हमला, बोली पेपर लीक पर ठोस कार्रवाई नहीं, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, मोदी सरकार को बताया एंटी यूथ। छात्रों के प्रदर्शन पर बीते दिन कार्रवाई को अरविंद केजरीवाल तानाशाही करार देते हुए कहा, बच्चों पर लाठीचार्ज बर्दाश्त नहीं, पूरा देश उनके साथ है। छात्र प्रदर्शन पर अखिलेश यादव का सरकार पर हमला, बोले हिटलर की तरह अपने ही लोगों पर ताकत का इस्तेमाल कर रही है सरकार। जेपी नड्डा पहुंचे आरएमएल अस्पताल, डॉक्टरों से की बातचीत। सीजेपी प्रदर्शन मामले में दिल्ली पुलिस की कार्रवाई, अब तक 4 एफआईआर दर्ज, 2 और केस दर्ज करने की प्रक्रिया जारी। प्रदर्शन के दौरान हिंसा और ड्रोन उड़ाने पर एफआईआर, पुलिस ने साजिश और सरकारी काम बाधा समेत कई धाराओं में दर्ज की एफआईआर। छात्र के प्रदर्शन में आए पंजाबी गायक, बोले जो हुआ बहुत गलत हुआ, छात्रों की मांगे सुनी जानी चाहिए। सीजेपी प्रदर्शन में हिंसा का आरोप, 118 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल, सरकारी संपत्ति को नुकसान, पुलिसकर्मियों पर हमले का आरोप। मॉनसून सत्र के बीच एनडीए का मंगल मिलन, पीएम ने संसद दल की बैठक में नीट परीक्षा पर बात की, आरोपियों पर सख्त कार्रवाई का आदेश। बैठक में हुई चर्चा पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने दी जानकारी, पीएम के नीट पेपर लीक पर चर्चा करते हुए सभी राज्यों को इसके रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाने के आदेश। मीटिंग में राज्यसभा के नए सदस्यों का स्वागत हुआ, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पहली बार बतौर सांसद हिस्सा लिया। बैठक में किसानों के हितों को प्राथमिकता दी गई है, उन्होंने कहा कि किसान के हितों को नुकसान नहीं होने देंगे। प्रियंका गांधी ने नीट मुद्दे को लेकर सरकार पर सवाल उठाया, बोली पीएम मोदी पूरी तरह से युवा विरोधी हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नई एसआईटी का गठन संभव, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी संभाल सकते हैं जांच की कमान। राम मंदिर दान मामले में नई एसआईटी पुरानी जांच रिपोर्ट को आधार बनाएगी, सभी तथ्यों और साक्ष्यों की फिर से होगी जांच। अयोध्या चढ़ावा चोरी केस में जांच तेज, सूत्रों के अनुसार महीने के आखिर तक रिपोर्ट आने की उम्मीद। आज बहराइच दौरे पर सीएम योगी, 52 करोड़ से ज्यादा की 70 विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। बहराइच और श्रावस्ती में सीएम योगी का कार्यक्रम, लोकार्पण शिलान्यास के साथ जनसभाओं को करेंगे संबोधित। आज दिल्ली में किसानों की बड़ी रैली की तैयारी, इंडिया अमेरिका प्रस्तावित एफटीए के विरोध में किसानों का प्रदर्शन। किसानों का आरोप, भारत अमेरिका एफटीए से कृषि और डेयरी क्षेत्र पर पड़ सकता है बड़ा असर। किसान संगठनों की मांग, भारत अमेरिका व्यापार डील के दस्तावेज किए जाएं सार्वजनिक, बिना चर्चा के ना हो कोई फैसला। दिल्ली कूद से पहले शंभू बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा, बीएनएस की धारा 163 लागू, पुलिस बल तैनात। किसान महापंचायत को लेकर दिल्ली ट्रैफिक अलर्ट पर, किसान घाट और आसपास के इलाकों में रूट डायवर्जन की तैयारी, सत्याग्रह मार्ग समेत कई रास्तों से बचने की सलाह। दिल्ली कूच कर रहे किसानों को हरियाणा पुलिस ने खनौरी के पास रोका, भारतमाला जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे पर भारी बैरिकेडिंग। किसानों की दिल्ली मार्च को रोकने के लिए पुलिस तैनात, एक्सप्रेसवे पर पुलिस और किसानों के बीच आमना सामना। किसानों की दिल्ली मार्च पर बीजेपी सांसद अशोक मित्तल बोले, माहौल अच्छा हो रहा है तो इसे बिगाड़ना नहीं चाहिए। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर जयराम रमेश का दावा, कहा किसानों के मुद्दे उठाने पर उन्हें इस्तीफा देने को मजबूर किया गया। किश्तवाड़ में तेज बहाव के साथ आए मलबे ने मचाई तबाही, फ्लैश फ्लड को लेकर प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर भूस्खलन, आवाजाही बाधित, बीआरओ द्वारा मलबा हटाने का काम जारी। केदारनाथ हाईवे पर सोनप्रयाग के नजदीक फंसी महिला यात्री के लिए देहदूत बने एसडीआरएफ के जवान। चंबा के जनजातीय क्षेत्र पांगी में 4 घंटे बाद सुरक्षित निकाले गए नाले में फंसे 11 मजदूर, प्रशासन ने लोगों से नदी नाले से दूर रहने की अपील की। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से मची तबाही, चंबा को कांगड़ा से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण सड़क पानी के तेज बहाव में बहा। जम्मू कश्मीर के गुरेज में चूरा और बरनाई इलाकों में कई जगह बादल फटने और घरों से खड़ी फसलों को भारी नुकसान, लोगों ने भाग कर बचाई जान, 20 की मौत। जम्मू कश्मीर के रियासत में लगातार बारिश के कारण उफान पर चिनाब नदी, सलाल डैम के सभी गेट खोले गए, नदी का दिखा रौद्र रूप। अमरनाथ यात्रा के अगले 2 दिन अगले आदेश तक स्थगित है यात्रा, श्रद्धालुओं को बेस कैंप से आगे जाने की इजाजत नहीं। लाहौल स्पीति में बारिश के बीच चंद्रभागा नदी का रौद्र रूप, नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण पुल डूबा, लोगों का जनजीवन प्रभावित। प्रशासन लोगों से अपील की कि जलस्तर कम होने तक पुल पार न करें, नदी के उफान के बीच किसी भी तरह का जोखिम न उठाएं। जम्मू कश्मीर के रजौरी में मुनावर नदी से भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने एक शव को बाहर निकाला, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। रजौरी में भारी बारिश से नदी में फंसे मवेशी, लोगों ने किया रेस्क्यू ऑपरेशन, प्रशासन की लोगों से नदी में न जाने की अपील, बाढ़ वाले इलाकों में बढ़ाई गई सुरक्षा। पहलगाम में सीआरपीएफ ने गर्भवती महिला की बचाई जान, समय पर अस्पताल पहुंचने से हुई सुरक्षित डिलीवरी। उत्तराखंड के देहरादून हरिद्वार टिहरी में भारी बारिश का रेड अलर्ट, टपकेश्वर मंदिर के पास तमसा नदी में उफान, मंदिर परिसर जलमग्न, भारी बारिश के चलते स्कूल बंद।
हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में भारी बारिश से रेड अलर्ट के बीच प्रशासन पूरी तरह सतर्क, स्कूल बंद रखने के आदेश। सिक्किम के निर्माणाधीन टनल में भूस्खलन, एंट्री गेट बंद होने से 10 मजदूरों की मौत, 19 अब भी फंसे। एनएचपीसी की तीस्ता स्टेज 6 परियोजना में बड़ा हादसा, ऑक्सीजन की कमी के बीच एनडीआरएफ प्रशासन का बचाव अभियान जारी। टनल में जहरीली गैस बन रही है बड़ी बाधा, रेस्क्यू ऑपरेशन में आ रही है दिक्कत। असम में लगातार हो रही बारिश कारण बाढ़ जैसी स्थिति, अब तक प्राकृतिक आपदा में 5 की मौत, 3.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। ब्रह्मपुत्र समेत कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर, राहत एवं बचाव कार्यों के लिए सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम तैनात, प्रभावित लोगों के लिए हर संभव मदद का भरोसा। पुंछ में एक बार फिर लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड से भारी नुकसान, लगातार हो रही भारी बारिश के बीच अचानक आए फ्लैश फ्लड से 7 की मौत। भारी बारिश के बीच जम्मू भद्रवाह हाईवे पर बड़ा हादसा, चलती गाड़ी पर गिरे बोल्डर, कई वाहन चपेट में आए, 2 की मौत, कई घायल। जम्मू कश्मीर में 2 दिन से हो रही लगातार बारिश की वजह से चेनाब नदी का जलस्तर बढ़ा, लोगों से नदी किनारे से दूर रहने की अपील। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बादल फटने से भारी तबाही, खांगसर और शुगु गांव में पहाड़ियों पर बादल फटने से भारी तादाद में पानी और मलबा नीचे आया। एक कार भी मलबे की चपेट में आकर क्षतिग्रस्त, हालांकि कोई जनहानि नहीं। इस प्राकृतिक आपदा से फसलों को भारी नुकसान। हल्द्वानी में मानसून का कहर, मूसलाधार बारिश से सड़कें बनी दरिया, घरों तक पहुंचा पानी, निचले इलाकों में जलभराव से जनजीवन अस्त व्यस्त। यूपी के उन्नाव में 4 घंटे मूसलाधार बारिश से आम जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त, अस्पताल, सड़क, हर जगह जलभराव से लोगों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। बिहार के वैशाली में देर रात पूर्व मुखिया के घर के पास बमबाजी और फायरिंग, अज्ञात बदमाशों के इलाकों से दहशत फैलने की कोशिश। बेगूसराय में डाकघर और पासपोर्ट कार्यालय को बम चढ़ाने की धमकी, 3 मंजिला बिल्डिंग खाली कराई गई। पटना में शराब तस्करी के लिए रैपिडो का इस्तेमाल कर रहे तस्कर, पुलिस ने रैपिडो कार से विदेशी शराब बरामद की, तस्कर कार से कूदकर भागा। मुजफ्फरपुर में रिटायर्ड बैंक कर्मी और पत्नी की चाकू कूदकर हत्या, टेप और ग्लास लेकर पहुंचे थे कातिल। बिजनौर में चारा काटने जंगल गई बुजुर्ग महिला पर तेंदुए ने किया हमला, बुजुर्ग महिला की मौके पर मौत। पटना में भारी बारिश से अस्पताल में घुसा पानी, मरीजों की बड़ी परेशानी, कई विभाग जलमग्न, ऑर्थो विभाग में सांप देखे जाने से हड़कंप। मोतिहारी में नेपाल से जुड़े गए पानी से आई बाढ़, नदियों का जलस्तर बढ़ा, इलाके पानी में डूबे, जनजीवन प्रभावित। लखनऊ के जवाहर भवन की 4थी मंजिल पर कैंटीन में लगी आग, 15 दमकल गाड़ियों ने आग पर पाया काबू, कोई हताहत नहीं। पुणे में इलेक्ट्रिक स्कूटर चार्जिंग के दौरान लगी आग, 1 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में बारिश के दौरान ट्रक और कार के बीच जोरदार टक्कर, दुर्घटना में 3 लोग घायल। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में ट्रक का ब्रेक फेल, पहले पिकअप और फिर स्कूटी मारी टक्कर, हादसे के बाद लगा लंबा जाम। गुरुग्राम में रिटायर्ड एयर मार्शल से 2,68,00,000 की ठगी का भंडाफोड़, दुबई से चल रहा था नेटवर्क, 6 गिरफ्तार। जलंधर में ट्रैक्टर ट्रॉली ने साइकिल सवार को कुचला, हादसे में शख्स की मौके पर मौत। राजस्थान के टोंक में शराब के ठेके में घुसा तेंदुआ, मची अफरा तफरी, अचानक हमले का पूरा वाकया सीसीटीवी में कैद। समस्तीपुर में एक तरफा प्यार में छात्रा की हत्या, धमकी देने के अगले दिन युवक ने मारी गोली, आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने थाने का किया घेरा। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर की गुल्लक तोड़कर चोरी, नोटों से भरा बैग लिया, सीसी में कैद हुई घटना। सवाई माधोपुर में दवा वापस नहीं लेने पर विवाद, ग्राहक ने मेडिकल संचालक पर किया कैंची से हमला, दुकानदार घायल। गुजरात के आनंद में 4 साल की मासूम से दुष्कर्म, हत्या के आरोपी सुरेश परमार की पुलिस मुठभेड़ में मौत। गुजरात के जामनगर में फैक्ट्री कामकाज के दौरान भट्टी में विस्फोट, 3 मजदूर झुलसे, 2 की हालत गंभीर। गुजरात के जूनागढ़ में अवैध बायोडीजल रैकेट का भंडाफोड़, नगर निगम ने 3 ठिकानों पर छापेमारी कर 2,13,00,000 रुपए का अवैध बायोडीजल जब्त किया, 8 गिरफ्तार। फिल्म एवेंजर्स डूम्सडे का पहला ट्रेलर रिलीज, रॉबर्ट डाउनी जूनियर डॉक्टर डूम्स के रोल में नजर आएंगे। दिल्ली मिसेज इंडिया इंटरनेशनल क्वीन 2026 का सजा ताज, बॉलीवुड अभिनेत्री नीलम कुठारी ने विजेताओं को किया सम्मानित। एक्टर सलमान खान की फिल्म मातृभूमि को लेकर नया और अहम अपडेट, साल 2026 में ही सिनेमाघरों में दस्तक देगी फिल्म। इमरान हाशमी साहब फिल्म आवारापन 2 के सॉन्ग ये आवारापन को अरिजीत सिंह ने दी आवाज, आज रिलीज होगा ये गाना। धमाल 4 की रिलीज के 11वें दिन कमाई के मामले में वर्ल्ड वाइड किया धमाल, 11वें दिन करीब 7 करोड़ का ग्लोबल कलेक्शन। ईरान पर अमेरिका के ताबड़तोड़ हमले, लगातार 10वीं रात जारी है अमेरिकी कार्रवाई। अमेरिकी सेना ने ईरान के कई इलाकों द्वीपों को निशाना बनाया, ईरानी मीडिया प्रेस टीवी ने दी जानकारी। ईरानी मीडिया प्रेस टीवी के मुताबिक बंदर अब्बास, चाबहार, कोड़ा, सिरिक, शिराज और इस्फहान में धमाके सुने गए। प्रेस टीवी के मुताबिक सेंट्रल ईरान के इस्फहान में 2 धमाके हुए, इसके अलावा कौमिन शहर में एक औद्योगिक केंद्र पर हमला हुआ। ईरान पर हमले को लेकर अमेरिकी सेना का बयान, कमांडर इन चीफ के निर्देश पर यूएस सेना ने ईरान के खिलाफ हमले का एक नया दौर शुरू किया है।
यूएस सेना ने कहा इन हमलों का मकसद ईरान की उन सैन्य क्षमताओं को और कमजोर करना है जिनका इस्तेमाल होर्मुज में कमर्शियल जहाजों पर अटैक के लिए किया जा रहा है। ईरान ने एक बार फिर जॉर्डन पर किया हमला। हमले को लेकर जॉर्डन की सेना ने बयान जारी कर कहा तीन ईरानी मिसाइल को इंटरसेप्ट कर तबाह किया गया है। मिडल ईस्ट में अमेरिकन बेसिस को लेकर आईजीसी का बड़ा दावा, बहरीन और कुवैत में अमेरिकी ठिकानों को भारी नुकसान। आईजीसी ने कहा बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान। बहरीन के अल साखिर एयरपोर्ट पर अमेरिकी ड्रोन मरम्मत और रखरखाव शेड नष्ट कर दिए गए। ईरान युद्ध पर न्यूयॉर्क टाइम्स से बड़ी खबर, घायल सैनिकों की संख्या सार्वजनिक नहीं कर रहा है अमेरिका।

0: संसद के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी हंगामा जारी रहा। आज फिर संसद के दोनों सदन की कार्यवाही में अब तक दो बार व्यवधान आ चुका है। पहले सदन 12 बजे तक के लिए हुआ, दूसरी बार संसद के दोनों सदन कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर चुके हैं। इस बीच लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात कर चुके हैं। राहुल गांधी ने स्पीकर से छात्रों के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग की है। और इस मीटिंग के बाद राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, सुनिए।
1: स्पीकर के पास गए हम एंड हमने कहा कि देखिए हम स्टूडेंट इशू पे डिस्कस करना चाहते हैं और स्पीकर ने हमें कहा कि डिस्कशन के लिए उन्हें सरकार से पूछना है। मतलब आप समझिए, स्पीकर इज टेलिंग अस दैट टू डिबेट इन पार्लियामेंट He has to take permission from the government. He's openly telling us that. ठीक है, देखिए इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है, और ये जो किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, दिस इज कंप्लीटली अन इंडियन। मोदी जी हैज नॉट इवन apologized for what has happened yesterday. Now, ये जो युवा हैं, ये education system के बारे में, testing system के बारे में protest कर रहे हैं। पूरा देश जानता है कि education system, testing system is broken. It has ceased to exist.
0: और इस बीच आपको बता दें, आज दोनों सदन स्थगित हो चुके हैं। 2 बजे तक के लिए राहुल गांधी सरकार पर हमलावर हैं, तो सत्ता पक्ष राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा कर रहा है। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने संसद में गतिरोध के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया।
2: बार बार आग्रह के बावजूद कल सदन नहीं चला। आज महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट में जजेज की संख्या के बढ़ाने का विधेयक रखा हुआ है, उस पर नहीं चर्चा किया। और यही नहीं, ये जानबूझ करके कल भी जिस तरह से विपक्ष के सांसद कल के उस प्रदर्शन में गए हैं, तो एक तरफ मैं कह रहा हूँ कि इस प्रदर्शन में जाना और उकसाना, दूसरी तरफ इस सदन को लगातार बाधित करना, तो इनकी इस कोई प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कोई रुचि हो, भाग लेने की हो, तो मैं तो जानबूझ करके विपक्ष और खुद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सदन में 5 मिनट के लिए आए। अगर कोई चर्चा करना चाहते हैं तो चर्चा स्पीकर साहब किसी विषय पर करेंगे, आप उसको नियमों में तो दीजिए कि कोई किसी पे चर्चा मांग रहा है, कोई किसी पे चर्चा, लेकिन सदन चलाने का काम स्पीकर साहब का है, तो आप नियमों में दीजिए, उस पर चर्चा होगी। लेकिन सदन को जानबूझ के विपक्ष बाधित कर रहा है, ये देश की जनता की गाढ़ी कमाई का अपव्यय है।
0: तो लगातार चर्चा की मांग हो रही है, लेकिन कल दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन में हुए बवाल का मुद्दा आज भी छाया हुआ है। विपक्ष की तरफ से दिल्ली पुलिस और सरकार चौतरफा हमला हो रहा है उन पर। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पुलिस एक्शन पर सवाल उठाए, सुनिए।
3: और जो कल छात्रों के साथ, युवाओं के साथ हुआ है, कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि आजादी के बाद इस तरह का व्यवहार किसी सरकार ने किया हो। सर पर चोट है, आंसू गैस के गोले चले, लोगों के सर पे टांके आए हैं, पैरों की हड्डी टूटी है, हाथ की हड्डी टूटी है या टांके आए हैं। कई बच्चे जो दूर दूर से चल करके आए हैं, जिन्हें दिल्ली का रास्ता नहीं पता था, केवल सरकार के खिलाफ नाराज होकर करके आए थे, उनके साथ जो व्यवहार हुआ है और यहां तक सुनने को आया और सोशल मीडिया पर जो वीडियोज आए हैं कि कभी हिटलर ने अपने पॉलिटिकल लोगों के साथ इस तरह का एक गैंग बनाया था, लगता है इस तरह के लोग थे जो प्राइवेट ड्रेस में थे और लाठी लेकर के लोगों को मार रहे थे, कभी हिटलर ने बनाया था और आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देख रहे हैं।
0: संसद के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर माहौल इस वक्त गर्म है। संसद भवन के बाहर आम आदमी पार्टी के जो कल छात्र पहुंचे थे और जो तमाम युवा युवतियां पहुंचे थे प्रोटेस्ट के दौरान, उन्हें लाठी चार्ज का सामना करना पड़ा था। अब घायलों का हाल चाल जानने पहुंचे हैं जेपी नड्डा, कल आंसू गैस भी छोड़ी गई थी छात्रों के ऊपर जो प्रदर्शन कर रहे थे, और लाठियों का भी इस्तेमाल किया गया था। इस बीच कई छात्र चोटिल हुए हैं, उनका हालचाल जानने नड्डा जी पहुंचे हैं।

0: तो आपने देखा किस किस तरीके से लगातार विपक्ष ये कह रहा था कि आखिरकार हिंसा की जरूरत क्या थी, पुलिस को क्यों जरूरत पड़ी लाठियां भांजने की, जिससे कई छात्र घायल हो गए, उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा, कई छात्रों का इलाज इस वक्त भी चल रहा है। आंसू गैस के गोले छोड़े जाने से भी कई छात्र बीमार हो गए। तो कल जो प्रोटेस्ट था वो दरअसल जब संसद तक पहुंचने लगा उसके बाद पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा, और संसद के अंदर दोनों जगहों पर इस वक्त माहौल गर्म है। संजय सिंह नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए, उनके साथ आपके दूसरे सांसद मौजूद थे।
1: लोकतंत्र में मोदी शाही
2: नहीं, हमारे लोगों को वहाँ खड़ा होने से रोक रहे हैं, ये क्या तरीका? कभी मीडिया को भगाओ, कभी लोगों को भगाओ, ये कोई भारतीय जनता पार्टी का सदन थोड़ी है, उनके नाम पे अलॉटमेंट थोड़ी हो गया संसद का। कल इतनी बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज हुआ, आपने देखा किस तरीके से नौजवानों को लाठियों से पीटा गया, हम नारे नहीं लगाएंगे।
0: और पेपर लीक पर संसद में हंगामा बरपा है, इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए के मंगल मिलन में बड़ी बातें कही। एनडीए सांसदों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक पर सरकार ने तुरंत कार्रवाई की, 13 लोगों को गिरफ्तार कर जेल में डाला, पुनर्परीक्षा आयोजित की गई, पेपर लीक ना हो इसके लिए सख्त कदम उठाए गए, आगे पेपर लीक ना हो भविष्य में इसके लिए भी कदम उठाए गए। उन्होंने ये दलगत राजनीति का विषय नहीं है ये कहा। बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि नीट पेपर लीक पर विपक्ष गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। मंगल मिलन कार्यक्रम में सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर प्रधानमंत्री का अभिनंदन भी किया गया।
3: प्रधानमंत्री जी ने ये अपील भी किया है कि उनका जो सजा है उसको सख्ती से सख्ती सजा कैसे दिया जाए, उसमें सारा टॉप क्लास के वकील लोग भी साथ दें, ताकि जो पेपर लीक जैसे पाप काम किया है उन लोगों को घोर सख्त सजा मिले, और आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया।
4: प्रधानमंत्री जी ने हमारा मार्गदर्शन किया और बहुत सारी चीजों पर जो है हमें इंस्ट्रक्शंस मिले हैं, स्पेशली युवाओं को लेकर जो है उनकी महत्वाकांक्षाओं को लेकर किस तरह से हम जनप्रतिनिधि जो है उसके साथ जस्टिस करें। और प्रधानमंत्री जी ने नीट को लेकर जो अपनी स्ट्रैटेजीज हैं और उन्होंने किस तरह से जो करप्शन एक चाहे आप जो जो लोग हैं कोचिंग सेंटर्स के लिए अपनी महत्वाकांक्षाओं से लेकर के युवाओं को किस तरह से भटका रहे हैं और हम लोगों का इसमें क्या दायित्व बनता है और किस तरह से हमें इसको टैकल करना है।
0: तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सरकार ने तुरंत एक्शन लिया, लेकिन विपक्ष इतने पर खुश नहीं है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि एक समय था जब मंत्री इस्तीफा दे देते थे।
5: जिसकी जिम्मेदारी है उनसे रिजाइन करवाइए। देखिए, एक जमाना था जब मंत्री जिम्मेदारी लेते थे। मुझे याद है एक ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था शायद 80s में, अगले दिन उन्होंने इस्तीफा दिया, जो मंत्री रिस्पॉन्सिबल थे, जो उसके समय के रेल मंत्री थे। तो इस्तीफा दीजिए, जिम्मेदारी लीजिए, और सबसे जरूरी तो यह है कि सिस्टम को दुरुस्त करिए।
0: रुकेंगे आज से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, दिखते रहिए आज।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
6: हेक्सा ऑर्गेनिक, रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर।
8: नीड बेटर इंटरनेट? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 meg internet with a 2-year plan, price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah! So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
9: This is the sound of Lucy staying on top of her spending. You see, even though she's buying a new pair of jeans, she knows that it fits within her monthly budget. Because Wells Fargo will send an alert if her balance drops below her set amount. Yep, nothing gets past Lucy. Or Wells Fargo, for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
10: Wells Fargo Bank N.A. Member FDIC.
6: Presented by पतंजलि गाय का घी लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
6: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी

0: इन एसोसिएशन विद हिंद बड़े आराम से शारदा यूनिवर्सिटी द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी वेयर आर यू
1: पंजाब नेशनल बैंक भरोसे का प्रतीक
0: विमल बोलो जुबां केसरी
2: वेट लाइफस्टाइल के लिए 10 अलग पेजेस क्यों फॉलो करना हेल्थ फिटनेस योगा मेंटल वेलनेस सब कुछ एक ही जगह फिट तक सिंपल टिप्स एक्सपर्ट इंसाइट्स रियल कॉन्वर्सेशंस लाइफ अपग्रेड करो इजी वे वॉच ओनली ऑन फिट तक यूट्यूब
3: भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में नई उड़ान भरी है बहुत बड़ी सफलता है और ये जो स्काईरूट स्टार्टअप है उसमें जो नौजवान काम कर रहे हैं मुझे बताया गया उनकी पूरी टीम की जो एवरेज एज है वो सिर्फ 28 साल है ऐसे नौजवानों ने ये काम करके दिखाया है मैं किसी 56 साल के नौजवान की बात नहीं कर रहा हूं
4: अब आर्थिक तूफान आ रहा है और उन्होंने जो स्ट्रक्चर बनाया है अदानी अंबानी वाला वो अब खड़ा नहीं रहेगा वो टूटेगा पूरा का पूरा और दुख की बात है कि नुकसान आम जनता को मतलब वो अपने महलों में बैठे रहेंगे और यूपी के जो युवा हैं यूपी के जो की जो जनता है उनको पूरा का पूरा शॉक उनको लगेगा जो आर्थिक शॉक आ रहा है वो अब अदानी अंबानी को नहीं लगेगा मोदी को नहीं लगेगा अब उत्तर प्रदेश और देश के युवाओं को किसानों को मजदूरों को छोटे बिजनेस वालों को लगने वाला है और ऐसे लगने वाला है जो शायद बहुत सालों में नहीं हुआ

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

मॉनसून सत्र में पेपर लीक पर भयंकर गतिरोध, सरकार की घेराबंदी में जुटा विपक्ष। स्पीकर से मिलने के बाद राहुल ने कहा, जब युवाओं पर चर्चा नहीं तो किस काम की संसद। अखिलेश बोले, हिटलर जैसा व्यवहार। एनडीए की मीटिंग में पेपर लीक पर पीएम का संदेश, का पता चलते सरकार ने लिया एक्शन। री एग्जाम के बाद फौरन निकाला रिजल्ट, नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। किसानों की महापंचायत, भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में जुटने लगे किसान, कई नेता हिरासत में। हरियाणा और दिल्ली पुलिस अलर्ट पर, बॉर्डर सील। जंतर मंतर पर फिर बैठे सीजेपी समर्थक, नड्डा से मीटिंग के बाद रखी तीन मांगे। प्रदर्शन में 118 पुलिस वाले और 60 आंदोलनकारी घायल, दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। सैक्रो सीसीटीवी की जांच। बादल फटने से भारी तबाही, गुरेज बड़गाम के पहाड़ों से गिरा मलबा। सिक्किम में टनल धंसा, एंट्री गेट बंद होने से अंदर फंसे 10 मजदूरों की मौत, 20 अब भी फंसे।

0: नमस्कार, मैं इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। देश के पहाड़ी राज्यों में मॉनसून काल में सबसे खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। अलग अलग राज्यों में हालात ऐसे हैं कि बड़े पैमाने पर तबाही है। कई जाने जा चुकी हैं। जम्मू कश्मीर हो या हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी भारी संकट है। विनाश की हाहाकारी तस्वीरें जम्मू कश्मीर से आई हैं और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का भी हाल आप देख सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर बीते कई दिन से अलग अलग हिस्सों में मूसलाधार बारिश हो रही है। जम्मू में रेयारी और रजौरी में बेहिसाब संकट है। वहीं कश्मीर के करगिल, बांदीपुरा, गुरेज और अन्य हिस्सों में हालात खराब हैं। करगिल में कल भारी बारिश हुई है, वहां तबाही आई और कई कारें सैलाब का शिकार हो गई।
1: सैलाब का ऐसा रौद रूप जो विनाश की नई तस्वीर बन गया। देखिए कैसे कारें बह रही हैं, बिल्कुल माचिस के डिब्बों की तरह। ऐसे सैलाबी संकट के बीच लोग बेबस हैं, लाचार हैं, अपनी आंखों के सामने सब कुछ तबाह होते देख रहे हैं, लेकिन कुदरत के इस कहर के आगे कुछ नहीं कर सकते। ये तस्वीरें करगिल से आई हैं। 20 जुलाई को वहां पहाड़ों पर आफत आई, ऐसी आफत जिसका अंदेशा वहां के लोगों को नहीं था। बादल फटे तो अचानक पहाड़ों पर सैलाब का ये कहर टूटा। करगिल से 19 किलोमीटर दूर कार किच्चू इलाके में बादल फटने की घटना हुई। उसके बाद ऊंचाई वाले इलाके से लहरें निचले इलाके की ओर दौड़ी और जो सामने आया उसे अपने साथ बहा ले गई। कारों के साथ ढेर सारा मलबा रिहायशी इलाकों की तरफ पहुंचा। ये सब देखकर स्थानीय लोगों के होश उड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। जब सैलाब का तांडव थमा तो काफी कुछ खत्म हो चुका था। चारों तरफ मलबा ही मलबा फैला था, पेड़ पौधे धराशायी हो चुके थे। तबाही के बीच स्थानीय लोगों ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। एक दूसरे का हाथ बटाते लोग प्रभावित इलाकों में पहुंचे, लेकिन मलबे में एक एक कदम आगे बढ़ाना उनके लिए मुश्किल भरा था। बादल फटने की घटना के बाद कई घरों में मलबा भर गया। वहां स्थानीय लोगों ने पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। खुद लोग घर के अंदर से मलबा निकालने में जुटे रहे।
2: सबसे भयानक तस्वीर बादल फटने की करगिल से सामने आई है, जहां पर बादल फटने के बाद फ्लश फ्लड्स ने कई सारे वाहनों, पेड़ पौधों और खेती की जमीन को अपने साथ ले लिया। लेकिन गनीमत यह रही कि इस फ्लैश फ्लड में कोई व्यक्ति घायल नहीं हुआ।
1: तबाही का मंजर गुरेज में भी दिखा है। सोमवार की शाम तुलेल घाटी के जेडगाई गांव और गुरेज के अचूरा गांव में लगातार बादल फटने की घटनाएं हुई। देखिए कैसे सैलाब का कहर टूटा। कई घर इस तबाही की चपेट में आए। आंखों के सामने बर्बादी देखकर हर कोई हैरान रह गया। बादल फटने से प्रभावित इलाकों में कई घरों और कृषि भूमि को नुकसान पहुंचा है। फ्लैश फ्लड के बाद पानी के बहाव में अचानक बढ़ोतरी से नुकसान बढ़ने की चिंता है। एक हफ्ते में बांदीपुरा जिले में बादल फटने की 3 घटनाएं हो चुकी हैं। अब प्रशासन स्थानीय लोगों और पर्यटकों को आगाह कर रहा है कि नदियों, नालों और जोखिम वाले इलाकों से दूर रहें।
3: बादल फटने की वजह से एक जो यहाँ का नाला बहता है इस गांव के बीच से, वहाँ एक सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई, जिसकी वजह से यहाँ पे जो इर्द गिर्द जो रिहायशी मकान थे उनको नुकसान पहुँचा। उसके साथ साथ हमारा जो यहाँ पे BSNL टावर हमारा नस्ब किया गया था उसको नुकसान पहुँचा, और यहाँ पे इर्द गिर्द जो एग्रीकल्चर लैंड थी वो तकरीबन ऑलमोस्ट सब के सब डैमेज हो चुके हैं।
1: अब एक हाहाकारी तस्वीर किश्तवाड़ की देखिए। 20 जुलाई को वहां भी बेहिसाब संकट दिखा। मारवा नाले में अचानक बाढ़ आ गई। हालात ऐसे हो गए कि कीचड़ और भारी भरकम मलबा भी बहता दिखा। पुंछ में 19 जुलाई को जो तबाही मची उसमें कई लोगों की जान चली गई। 20 जुलाई को भी हालात नहीं सुधरे। इस मुश्किल घड़ी में लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए SDRF की टीम प्रभावित इलाके में पहुंची। वहां अभी भी नदियों का उफान डराने वाला है। पुंछ के बुफलियास के सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में एसडीआरएफ की टीम ने जाकर पूरी जानकारी जुटाई और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। उधर जम्मू के राजौरी में भी हालात गंभीर बने हुए हैं। वहां भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। वहां हुई तबाही की तस्वीरें डराने वाली हैं। जो बर्बादी हुई उसके बाद के हालात होश उड़ाने वाले हैं। एक दिन पहले राजौरी में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना की संयुक्त राहत टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। नदी के पास से एक शव मिला। इस रेस्क्यू ऑपरेशन को हेलीकॉप्टर की मदद से अंजाम दिया गया। उधर रियासी इलाके में भी कई घंटे से भारी बारिश हो रही है। इससे सलाल बांध के जलाशय में पानी का स्तर काफी बढ़ गया है। इस वजह से अतिरिक्त पानी छोड़ने और जलाशय के स्तर को नियंत्रित करने के लिए सलाल बांध के सभी गेट खोल दिए गए हैं। भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने से चिनाब नदी का जल स्तर बढ़ा है। ऐसे हालात में निचले इलाकों और चिनाब के किनारे रहने वाले लोगों को आगाह किया गया है कि वो नदी के पास जाने से बचे। मीर फरीद के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक।
0: तो जम्मू के कई इलाकों में आज भी भारी बारिश हो रही है। इसका असर नदियों के जलस्तर पर पड़ रहा है। इस पर और जानकारी दे रहे आज तक संवाददाता सुनील जी भट्ट।
4: कश्मीर में मॉनसून का कहर लगातार जारी है। पिछले तीन दिनों से जम्मू कश्मीर के कई क्षेत्रों में भारी वर्षा हो रही है, जिसके कारण कई स्थानों पर बाढ़ आ गई है। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाके सबसे अधिक प्रभावित हैं इस बाढ़ और बारिश के कारण। राजौरी और पुंछ जिलों में जानो माल का काफी नुकसान हुआ है इस बाढ़ और बारिश के कारण। राजौरी और पुंछ जिलों में अगर मृतकों की संख्या हम देखें तो वो 17 हो गई है और अभी भी कई लोग जो हैं लापता है। राजौरी और पुंछ जिलों में काफी तबाही हुई है, मकान जो है ढह गए हैं, रिहायशी इलाकों में भी पानी आ गया है और लोग वहां त्राही त्राही कर रहे हैं। वहीं प्रशासन जो है लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और प्रभावित इलाकों में टीम्स भेजी जा रही हैं ताकि लोगों को कुछ राहत पहुंचाई जा सके। वहीं प्रशासन ने सैकड़ों की संख्या में लोगों को जो है सुरक्षित भी निकाला है खतरनाक इलाकों से और उनको अब सुरक्षित स्थानों पर लाया गया है। कई स्कूल जो हैं राजौरी में उनको राहत शिविर के तौर पर अब बनाया गया है और वहां पर लोगों के ठहरने की व्यवस्था रखी गई है। वहां प्रशासन जो है उनको भोजन भी मुहैया करवा रहा है। लेकिन बाढ़ की स्थिति जो है राजौरी और पुंछ जिलों में काफ़ी गंभीर होती जा रही है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। इसके कारण जो वहां पर कई मकान हैं वो ढह रहे हैं, लोग जो है काफ़ी मुसीबत में हैं, काफ़ी परेशानी में हैं। प्रशासन जो है लगातार जो है अपनी टीम्स तमाम प्रभावित इलाकों में भेज रहा है।
0: तो जम्मू कश्मीर में मौसम की मार की तस्वीरें आपने देख ली। अब आपको दिखाते हैं हिमाचल प्रदेश के हालात। वहां आज भी कई हिस्सों में फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड जैसी घटनाओं से हड़कंप मचा हुआ है। चंबा, मनाली कई हिस्सों में तबाही हुई है।

0: पहाड़ों पर कुदरत का कहर टूटा है, तबाही ऐसी हुई है कि जिंदगी खतरे में आ गई। हिमाचल की ये तस्वीरें चंबा की हैं। चंबा के होली इलाके में कलाह नाले में फ्लैश फ्लड आया तो हड़कंप मच गया।
1: पानी बहुत आ रहा है पीछे से।
0: लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पानी के तेज बहाव के बीच नाले में तीन मजदूर फंस गए। नाले का जलस्तर इतनी तेजी से बढ़ा कि किसी को भी वहां से सुरक्षित निकलने का वक्त नहीं मिला।
1: पानी बहुत आ रहा है पीछे से।
0: तीनों के फंसे होने की खबर मिलते ही स्थानीय लोग, प्रशासन मौके पर पहुंचे। उन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। कुछ देर बाद जब नाले का जलस्तर कम हुआ तो तीनों मजदूर सुरक्षित बाहर निकल पाए। अभी सबसे ज्यादा संकट चंबा में ही है। वहां पांगी इलाके में भी 11 मजदूर उफनते नाले में फंसे रहे। तीन अलग अलग इलाकों में बादल फटने की घटनाओं के बाद नालों में बाढ़ आ गई। उसी दौरान उदीन इलाके में उफनता नाला डराने लगा। उस वक्त 11 मनरेगा श्रमिक काम में जुटे थे, लेकिन नाले में ऐसा संकट आया कि सभी 4 घंटे तक वहीं फंसे रहे। बहुत मेहनत के बाद अन्य मजदूरों ने सीढ़ी लगाकर सभी 11 मजदूरों को सुरक्षित निकाला। आज सुबह चंबा के तीसा चंबा मार्ग पर भी बड़ा हादसा हुआ। कंदला नाला में अचानक बाढ़ आने से एक बस फंस गई। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से वहां फ्लैश फ्लड के हालात बने। इस संकट में चांजू से चंबा जा रही बस को आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। घटना के वक्त बस में कई यात्री सवार थे। खबर मिलते ही स्थानीय लोग और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, फिर सभी यात्रियों को बस से सुरक्षित निकाला। उधर भारी बारिश के बाद चंबा में एक सड़क का बड़ा हिस्सा देखते ही देखते चक्की नदी में समा गया। सड़क का हिस्सा बह जाने से इस मार्ग पर यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो गया। ये सड़क चंबा जिले के भटियात क्षेत्र को कांगड़ा जिले से जोड़ती है। सड़क क्षतिग्रस्त होने के बाद स्थानीय लोगों और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। हिमाचल के अन्य कई हिस्से भी भारी बारिश से प्रभावित हैं। एक तस्वीर लाहौल स्पीति से आई, जहां मूसलाधार बारिश के बाद चंद्रभागा नदी का रौद्र रूप देखने को मिला। वहां चंद्रभागा नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि पट्टन घाटी का जोबरंग पुल पूरी तरह से पानी में डूब गया। इस पुल से होकर ग्रामीण रोजाना आवाजाही करते थे, अब इस पुल पर उफनती नदी का पानी है। पुल का बड़ा हिस्सा पानी में समा चुका है और ऊपर से बहते तेज पानी ने हालात को और खतरनाक बना दिया। इस घटना से पट्टन घाटी के 3 गांव की आवाजाही पर ब्रेक लग गया।
2: देखिए भाई, रिस्क लेके बंदा पुल को क्रॉस कर रहा है, मजबूरी है।
0: लाहौल स्पीति से मनमिंदर अरोड़ा के साथ विशाल आनंद, चंबा आज तक।
3: और अब बात असम की बाढ़ की करेंगे। वहां पर बारिश अब भी हो रही है, खासतौर पर अपर असम के जिले बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित है। असम के 16 जिलों के करीब 360,000 लोग बाढ़ की मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। संकट से अब तक 5 की जान भी जा चुकी है।

0: ये असम है, बाढ़ में डूबा असम। सैलाब से जूझ रहा असम, जहां रेल की पटरियों के नीचे से जमीन खिसक गई है। इस ट्रैक की हालत देखिए, भारी बारिश और सैलाब के संकट में जमीन खिसकी तो ट्रैक भी तबाह हो गया। रेलवे ट्रैक का ये हाल शिवसागर के सिमलगुड़ी इलाके में हुआ है। इस इलाके में हालात बेहद गंभीर है। शिवसागर के अन्य इलाकों में भी बाढ़ के पानी में रेलवे के पुल तक खतरा पहुंच गया है। असम का ये दर्द नया नहीं है। निचले इलाकों में हर साल एक ही सा मंजर दिखता है। इस बार भी हालात नहीं बदले। जोरहाट से आई तस्वीरें चिंताजनक हैं। वहां हाल की मूसलाधार बारिश ने ऐसा हाल कर दिया कि बाढ़ के गंभीर हालात बन गए। लोगों के घरों में पानी घुस गया, कहीं कारें पूरी तरह पानी में डूबी नजर आई। सड़कों पर सिर्फ पानी ही पानी दिखा। लोग जुगाड़ टेक्निक से एक जगह से दूसरी जगह जाते दिखे। बाढ़ के बेहिसाब संकट का अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर भी लगाया जा सकता है। वहां सैलाब की वजह से लोग अपने घरों में फंसे हैं। एक बुजुर्ग महिला भी उसी संकट में फंसी रही, तब रेस्क्यू टीम ने उन्हें बचाया और सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। जोरहट के इस इलाके में मस्जिद में भी पानी भर गया। वहां फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए प्रशासन ने रेस्क्यू बोट की मदद से ऑपरेशन चलाया। अब जोरहट के नेशनल हाईवे 715 का मंजर देखिए। नेशनल हाईवे का ज्यादातर हिस्सा पानी में डूब चुका है। हालात ऐसे हैं कि लोगों को वहां से गुजर पाना मुश्किल हो रहा है। असम के 16 जिले बाढ़ से बेहिसाब प्रभावित हैं, लेकिन ताजा संकट का सबसे गंभीर असर जोरहट, शिवसागर और चराई देव जिलों में दिख रहा है। वहां लाखों की आबादी इस मुसीबत का सामना कर रही है। प्रभावित जिलों में 794 गांव पानी में डूब चुके हैं। 19,000 हेक्टेयर से ज्यादा की खेती की जमीन डूब चुकी है। अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। 4 की मौत जोरहट में, जबकि 1 की मौत करबी में हुई है। 2 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। भारी बारिश की वजह से असम की प्रमुख नदियों और उनकी सहायक नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इस वजह से कई सड़कों और तटबंधों को नुकसान पहुँचा है।
1: थोड़ा ज्यादा ही है। हम लोग कल से रेस्क्यू कर रहे हैं। अभी तक कल हम लोग रात से 10-11 बजे से स्टार्ट किया है, अभी तक पूरा वो लागू है रेस्क्यू।
2: रात से
1: कोई जैसे हम लोग का अफेक्टेड जगह है, सेलंगर हो गया, वहाँ पे ज्यादा अभी रेस्क्यू हो गया। काकोजन एरिया, अभी यहाँ पे ट्योक एरिया में हमें हम लोग बहुत रेस्क्यू अपने को रेस्क्यू किया है।
2: एमबापे कहाँ कहाँ पर टूटा, आप लोग देखा है कोई एमबापे?
1: नहीं नहीं, ऐसे यहाँ पे तो टूटा नहीं है, जस्ट ओवर टॉप हुआ है। अभी तक तो टूटने का ऐसे हम लोग का तो मैसेज नहीं है।
0: बाढ़ की गंभीर होती स्थिति को देखते हुए असम सरकार ने आपदा प्रबंधन तंत्र को पूरी तरह एक्टिव कर दिया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और जिला प्रशासन की अन्य टीमें लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। इन सब के बीच मौसम विभाग ने आगाह किया है कि अभी और जोरदार बारिश हो सकती है। ऐसे में किसी भी खतरे से निपटने के लिए आर्मी और एयरफोर्स को भी अलर्ट पर रखा गया है। पूर्ण विकास बोरा, जोरहट, आज तक।
3: उधर उत्तराखंड में भी हालात खराब हैं। रुद्रप्रयाग, चंबा, देहरादून और कई अन्य जिलों में लगातार बारिश हो रही। कई जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट है और ऐसी चेतावनी के बीच नदियां उफान पर हैं।

0: उत्तराखंड में भी भारी बारिश का गंभीर असर दिख रहा है। ये तस्वीरें हल्द्वानी की हैं। 20 जुलाई को मानसून ने जमकर कहर बरपाया। मूसलाधार बारिश के चलते शहर की तमाम सड़कें देखते ही देखते पानी में डूब गई। हालात इतने बदतर हो गए कि यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया। हालात ऐसे रहे कि कार और अन्य वाहन भी पानी के तेज बहाव के बीच रेंगते हुए नजर आए। कई इलाकों में लोगों को पैदल चलना भी दूभर हो गया।
1: क्योंकि अभी रेड अलर्ट था और उसको लेकर आशंका भी सच साबित हुई है। काफी बड़ी मात्रा में बारिश होने से हमारे खासकर जो पंचक्की चौराहा और उसके आसपास का क्षेत्र है वहां पर

0: जी।
1: और किस तरह के चोट हैं, क्या पथराव लाठी डंडे के?
0: बिल्कुल, सिर पे चोट है, हाथ है, कुछ फ्रैक्चर्स हैं, तो इस तरफ से काफी चोट लगी है और तो सबका अभी इलाज चल रहा है।
1: वीडियोस आपको काफी मिल रहे हैं इस तरह के पत्थरबाजी के, और ये सारे वीडियोस मिले हैं?
0: हाँ, कुछ जो भी है अभी सब कंपाइल कर रहे हैं, जो हमारे सीसीटीवीज लगे हुए थे, वीडियोग्राफर्स थे, तो दैट कंपाइलेशन इज गोइंग ऑन।
1: हमारे साथ एडिशनल डीसीपी जगदेव जी हैं, इनके भी हाथ में चोट लगी है। सर, कहाँ कहाँ चोट लगी? तो पूरा हाथ आपका लाल पड़ गया।
2: हाँ, ये थोड़ा सा माइनर सा फ्रैक्चर है और थोड़ा सा स्वेलिंग हो गया, मसल टियर हुआ है, क्योंकि इस पे पत्थर लगे थे, क्योंकि वो सर पे मार रहे थे, मुंह पे मार रहे थे, तो हाथों पे रोकना पड़ा, तो उस वजह से इससे हो गया। और काफी सारे लोगों से स्कफल हो रहा था, जो प्रोटेस्टर थे वो काफी ज्यादा नंबर में थे, तो उनसे स्कफल होने में, उनको पुश करने में, उनको रोकने में जो परेशानियां हुई उसके दौरान ये चोट लग गई। बालाजी हालांकि इस पे आइसिंग वगैरह कर रहे हैं, ट्रीटमेंट ले रहे हैं, अभी डॉक्टर से एडवाइस लिए, फ्रैक्चर की एक्सरे वगैरह कराया, तो एज पर डॉक्टर की जो एडवाइस है उसके अकॉर्डिंगली अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं।
1: चुनौती ये भी है, चोट लगी है लेकिन दूसरे दिन ड्यूटी पे भी आना है, क्योंकि बड़ा प्रोटेस्ट, कल जिस तरह से प्रोटेस्ट हुआ, हुड़दंग भी हुआ, उसमें पत्थरबाजी हुई, पुलिस वालों पर अटैक हुआ।
2: ठीक है, ये तो पुलिस का काम है, पुलिस का काम 24/7 जनता की सेवा में खड़े रहना है। अगर आप
1: नई दिल्ली इलाके में खासतौर से जंतर मंतर में कोई प्रोटेस्ट होता है तो उसकी जिम्मेदारी डीसीपी और एडिशनल डीसीपी की मुख्य तौर पर होती है। आनंद जी, ये चोट आपको कैसे लगा?
3: बस जिस तरह से कल प्रोटेस्ट चल रहा था उसमें से कुछ इस तरह के कुछ पत्थर वगैरह आए तो उसमें चोट लग गई।
1: किस तरह से वहाँ पथराव, क्योंकि जो पुलिस है वो तो रोक रही थी जो प्रोटेस्टर थे उनको, फिर ऐसा क्या हुआ कि चोट लग, मतलब होने लगी, मतलब पुलिस की तरफ से हुआ या उनकी तरफ से हुआ, कैसे हुआ?
3: नहीं, ये तो देखिए, ये अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कैसे क्या वो हम देख रहे हैं, बट उस समय क्राउड कुछ ऐसा क्राउड था कि जो कि हम लोग बराबर उनको समझा रहे थे, काफी समझा रहे थे, काफी उनको पर्सुएट कर रहे थे कि भाई आप लोग जो है आगे ना बढ़े, क्योंकि ये मार्च लीगल है, और उनको काफी समझाने की कोशिश की जा रही थी, बराबर अनाउंसमेंट चल रहा था। और
4: ब्रेक का हौसला, देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
7: दिस इज द साउंड ऑफ क्लेयर कुकिंग डिनर एट होम, एंड दैट्स द साउंड ऑफ अ फ्रॉड अलर्ट फ्रॉम वेल्स फार्गो फ्लैगिंग अ चार्ज फॉर अ प्राइसी रेस्टोरेंट इन पेरिस। Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
8: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
9: TuneIn is bringing together your music, news, sports, and more all in one place. Whether you love music... want to stay in the know with top news?
10: Continue to face political pressure to reach a peace deal? Local.
9: Or hear your favorite teams with live sports? Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. So you'll never miss a beat. Just sit back and listen.
11: Sokudo.

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने

0: पीछे छह फुट वाली रखी, पीछे दुणा लिया गए, हैट पे लिखा था गुजर। बात करा दे दीदी दे से मेरी निकले जान हुआ के ते वर्ष है।
1: वाह, ये अलग लेवल पे है भाई।
2: वाहन का क्या है? जब तक इस देश में एथनॉल है।
1: पानी हल्का गर्म है, मिर्ची अपने मुंह पे डाल लिया, हल्दी वो पानी उन्हें गिरा के रो रहा हो कि एक लाइक दे दो। हम उसको स्वाइप कर मिले तो लाते लात मारो कि क्या पागलपन कर रहा है भाई।
3: भाई अरबी
4: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस

मानसून सत्र में पेपर लीक पर भयंकर गतिरोध, सरकार की घेराबंदी में जुटा विपक्ष। स्पीकर से मिलने के बाद राहुल ने कहा, युवाओं पर चर्चा नहीं तो किस काम की संसद। अखिलेश बोले, हिटलर जैसा व्यवहार। एनडीए की मीटिंग में पेपर लीक पर पीएम का संदेश, कहा पता चलते ही सरकार ने लिया एक्शन। री एग्जाम के बाद फौरन निकाला रिजल्ट, नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। हरियाणा सरकार से बातचीत के बाद मानी गई किसानों की मांगे, दिल्ली की ओर नहीं आएंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात को तैयार, भारत अमेरिका ट्रेड डील का विरोध कर रहे हैं किसान। जंतर मंतर पर फिर बैठे सीजेपी समर्थक, नड्डा से मीटिंग के बाद रखी तीन मांगे। प्रदर्शन में 118 पुलिस वाले और 60 आंदोलनकारी घायल, दिल्ली पुलिस ने दर्ज की FIR, सैकड़ों सीसीटीवी की जांच। जम्मू कश्मीर में बादल फटने से भारी तबाही, गुरेज बडगाम में पहाड़ों से गिरा मलबा, सिक्किम में टनल धसी, एंट्री गेट बंद होने से अंदर फंसे 10 मजदूरों की मौत, 20 अब भी फंसे।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। दो बज चुके हैं, न्यूज रूम लाइव में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। और सीधे अभी आपको लिए चलते हैं लोकसभा की कार्रवाई।
1: अपने महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, अपने कंस्टिट्यूएंस के मुद्दे हैं, देश के मुद्दे हैं। मैं चाहता हूं आप सब लोग सहयोग करें, प्लीज कोऑपरेट टू कंटिन्यू। नो, प्लीज आप बैठिए, प्लीज सदन में चर्चा हो। सदन में जो आदरणीय सांसदों का जो विषय है 377 महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर माननीय सांसदगणों को अपने मुद्दे को यहाँ पर बुलाने के लिए आप लोग कृपया महत्वपूर्ण मुद्दे 377 इसको सदन में पेश करने के लिए आप सबसे मैं सहयोगिता चाहता हूँ। प्लीज कोऑपरेट। आप सभी से मेरा निवेदन है, अपने आसन पर जाइए और आप सब लोग अपने आसन पर बैठिए। कृपा करके आप सभी से मेरा अनुरोध है, आप सब अपने आसन पर जाइए। प्लीज गो टू योर सीट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज अंडर रूल 377 प्लीज अलाउ टू जिन माननीय सांसद को नियम 377 के अधीन मामले को उठाने का अनुमति दी गई है, वे व्यक्तिगत रूप से 20 मिनट के भीतर मामले को अनुमोदित पाठ सभा पटल पर प्रस्तुत कर सकते हैं। देखिए, आप सब लोग अपने ऐसा मत कीजिए। ये बैनर पोस्टर, ये काले कपड़े, ये सदन का गरिमा को ठेस पहुंचाता है। ये ठीक नहीं है। आप सदन नहीं चलना चाहते, दो दिन हो गया है, बार बार वेल में आकर के आप सदन के कार्यवाही को बाधित कर रहे हैं। ये गलत है, ये ठीक नहीं है। प्लीज सदन को चलने में आप सब लोग मदद कीजिए। प्लीज सदन को चलने के लिए आप सहयोग कीजिए। आप दो दिन से ऐसे व्यवहार कर रहे जो सदन नहीं चल रहा है। आप सदन नहीं चलाना चाहते, सदन चलने दे रहा है, सदन नहीं चलाना चाहते हैं। सदन की कार्यवाही कल सुबह बुधवार दिनांक 22 जुलाई 2026 को प्रातः 11 बजे।
0: देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे, लोकसभा की कार्यवाही भी कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा लोकसभा जैसे ही 2 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई, दोबारा से हंगामा शुरू हुआ। विपक्ष की मोर्चा बंदी, जोरदार हंगामा, नारेबाजी। और इस दौरान पहले राज्यसभा की कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित किया जाता है और उसके बाद लोकसभा की कार्यवाही को भी कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दिलीप टेकिया लगातार कह रहे थे कि जो मुद्दे हैं वो उठाए जाए, इस तरह से हंगामा नहीं किया जा सकता, लेकिन लगातार हंगामा होता रहा। दिलीप टेकिया लगातार समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद जब हंगामा जारी रहा तो कल तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई। ऐश्वर्या हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुई है। ऐश्वर्या, पहले राज्यसभा और उसके बाद फिर लोकसभा, कल तक के लिए कार्यवाही स्थगित, फिर से हंगामा।
2: देखिए, मैं आपको बता दूं, विपक्ष का ये मानना है कि उनके जो मुद्दे हैं उनके ऊपर बातचीत होनी चाहिए। सरकार का ये कहना है कि आपके मुद्दे तो ठीक है, लेकिन एक सही तरीका होता है जिसके थ्रू अगर आपको बातचीत करनी है तो कम से कम आप उसको लिखित के अंदर दें और जो प्रोसीजर है आप उसको फॉलो करें। हम देख रहे हैं किस तरीके से, देखिए सुबह से लेके अब दोपहर होने को आई है, आप देखेंगे कि कैसे एक एक मिनट, दो दो मिनट के अंदर जो लोकसभा है, जो राज्यसभा है, क्योंकि उसके अंदर जिस तरीके से हंगामा हो रहा है उसको स्थगित किया जा रहा है। और अब तो दोनों ही राज्यसभा लोकसभा की अगर बात करें तो दोनों को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। विपक्षी पार्टियों का मानना है कि उनके जो बड़े मुद्दे हैं उनके ऊपर सरकार को विचार विमर्श करना चाहिए और समय देना चाहिए जिससे कि उस हो सके। बड़े बड़े विपक्षी
0: शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए कल जो कुछ हुआ, कांग्रेस जनता पार्टी और प्रदर्शन होता है, उसके बाद फिर पुलिस और छात्रों के बीच में झड़प होती है, यह मुद्दा उठाया गया, जमकर विपक्ष की तरफ से हंगामा किया गया और विपक्ष इस मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहा था। आज एक के बाद एक बार फिर से जब कार्रवाई शुरू होती है फिर स्थगित हो जाती है। मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में ये मुद्दा उठाते और कहते हैं कि छात्रों के मुद्दे पर बात होनी चाहिए, लेकिन हंगामा हुआ, फिर कल तक के लिए कार्रवाई स्थगित हो गई।
3: क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21
4: एग्जामिनेशन के बारे में जो आवाज उठा रहे हैं उनके ऊपर लाठी चार्ज किए
5: हवा पटेल पर है।
3: उमेश भाई पटेल,
4: स्टूडेंट्स पेपर लीक और नीट एग्जामिनेशन के बारे में जो आवाज उठा रहे हैं।
3: क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21।
4: जो स्टूडेंट्स पेपर लीक और नीट एग्जामिनेशन के बारे में जो आवाज उठा रहे हैं उनके ऊपर
6: 5 साल से अधिक समय से अनियमित तौर पर काम करने वाले
3: सदन की कार्रवाई।
0: तो देखिए ये तो 11 बजे हुआ, लेकिन उसके बाद एक घंटे बाद 12 बजे दोबारा से कार्रवाई शुरू हुई और 12 बजे जब कार्रवाई शुरू हुई लोकसभा और राज्यसभा की, फिर से हंगामा हुआ और फिर से उसे 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा।
7: व्यवहार उचित है, पूरा देश सदन की कार्रवाई देख रहा है। मैं आप सबसे प्रार्थना करती हूं कि आप सब अपने
8: मैसेज फ्रॉम लोकसभा सेक्रेटरी जनरल सर,
7: व्यवहार उचित है, पूरा देश सदन के
9: दे हाउस विल मीट अगेन एट 2 PM टुडे।
8: मैसेज फ्रॉम लोकसभा सेक्रेटरी जनरल
10: सर, विथ योर काइंड परमिशन आई राइज टू रिपोर्ट।
7: व्यवहार उचित है, पूरा देश सदन की कार्यवाही देख रहा है।
0: जो 11 बजे हुआ वही 12 बजे हुआ और फिर 2 बजे भी वही हुआ, हंगामा हंगामा हंगामा। कल से शुरुआत हुई थी लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई की और उसके बाद वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। तो ये तस्वीरें आप देखिए, इन तस्वीरों में 11 बजे शुरू होती है, फिर 12 बजे तक स्थगित कर दी जाती है, फिर 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी जाती है, फिर 12:30 बजे शुरू हुई तो उसके बाद 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई, 1 बजे शुरू हुआ फिर हंगामा हुआ फिर 2 बजे तक के लिए, फिर 2 बजे फिर से हंगामा हुआ तो 3 बजे तक के लिए, और जब 3 बजे शुरू हुई फिर हंगामा हुआ फिर आज तक के लिए स्थगित कर दी गई। और यही हुआ, विपक्ष की तरफ से जमकर हंगामा और पक्ष कह रहा है कि व्यवधान डालने की कोशिश की जा रही है।
4: तो मौका आपने दिया।
0: अभी राज्यसभा में भी देखिए, राज्यसभा में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें आई कि कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा, जमकर हंगामा होता हुआ यहां पर भी दिखा। मॉनसून सत्र पहला दिन हंगामा लगातार जारी रहा और उसके बाद कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा और यहां भी वही हुआ, पहले 11:30, फिर 12:30, 2:30। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी की जब बात की जाती है तो उन्होंने ओम बिरला से मुलाकात की और अब भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मुलाकात हुई क्यों। लोकसभा में नेता विपक्ष है राहुल गांधी और ओम बिरला स्पीकर से उनकी मुलाकात होती है। राहुल गांधी ने स्पीकर से छात्रों के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग की, जो खबर सामने आई। तो लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी स्पीकर ओम बिरला से मिलते हैं, छात्रों के मुद्दों को उठाते हैं और कहते हैं कि छात्रों के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। कल जो हुआ छात्रों और पुलिस के बीच वो सभी ने देखा।
11: स्पीकर के पास गए हम एंड हमने कहा कि देखिए हम स्टूडेंट इशू पे डिस्कस करना चाहते हैं
5: और स्पीकर ने हमें कहा कि डिस्कशन के लिए उन्हें सरकार से पूछना है, मतलब आप समझिए, स्पीकर इज टेलिंग अस दैट टू डिबेट इन पार्लियामेंट ही हैज टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, ही इज ओपनली टेलिंग अस दैट। ठीक है, देखिए इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है, और ये जो किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, दिस इज कंप्लीटली अन इंडियन। मोदी जी हैज नॉट इवन अपोलोजाइज्ड फॉर व्हाट हैज हैपेंड यस्टरडे। नाउ ये जो युवा हैं, ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में, टेस्टिंग सिस्टम के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरा देश जानता है कि एजुकेशन सिस्टम, टेस्टिंग सिस्टम इज ब्रोकन, इट हैज सीज्ड टू एग्जिस्ट।
0: तो देखिए, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जगदम्बिका पाल वो आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष जो है वो व्यवधान डाल रहा है कार्रवाई में।
11: बार बार आग्रह के बावजूद कल सदन नहीं चला, आज महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट में जजेज की संख्या के बढ़ाने का विधेयक रखा हुआ है, उस पर नहीं चर्चा किया। और यही नहीं, ये जानबूझ करके कल भी जिस तरह से विपक्ष के सांसद कल के उस प्रदर्शन में गए हैं, तो एक तरफ मैं कह रहा हूँ कि इस प्रदर्शन में जाना और उकसाना, दूसरी तरफ इस सदन को लगातार बाधित करना, तो इनकी इस कोई प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कोई रुचि हो, भाग लेने की हो, तो मैं तो जानबूझ करके विपक्ष और खुद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सदन में 5 मिनट के लिए आए, अगर कोई चर्चा करना चाहते हैं तो चर्चा स्पीकर साहब किसी विषय पर करेंगे, आप उसको नियमों में तो दीजिए कि कोई किसी पे चर्चा मांग रहा है, कोई किसी पे चर्चा, लेकिन सदन चलाने का काम स्पीकर साहब का है, तो आप नियमों में दीजिए, उस पर चर्चा होगी, लेकिन सदन को जानबूझ के विपक्ष बाधित कर रहा है, ये देश की जनता की गाढ़ी कमाई का अपव्यय है।
0: तो कल दिल्ली में छात्रों को लेकर जो जमकर हंगामा हुआ, बवाल हुआ, वो सबने देखा। अखिलेश यादव यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं, सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि छात्रों के साथ जो बर्बरता हुई है उसका जिम्मेदार कौन है,
12: और जो कल छात्रों के साथ, युवाओं के साथ हुआ है, कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि आजादी के बाद इस तरह का व्यवहार किसी सरकार ने किया हो। सर पर चोट है, आंसू गैस के गोले चले, लोगों के सर पे टांके आए हैं, पैरों की हड्डी टूटी है, हाथ की हड्डी टूटी है, या टांके आए हैं, कई बच्चे जो दूर दूर से चल करके आए हैं, जिन्हें दिल्ली का रास्ता नहीं पता था, केवल सरकार के खिलाफ नाराज होकर करके आए थे, उनके साथ जो व्यवहार हुआ है, और यहां तक सुनने को आया और सोशल मीडिया पर जो वीडियोस आए हैं कि कभी हिटलर ने अपने पॉलिटिकल लोगों के साथ इस तरह का एक गैंग बनाया था, लगता है इस तरह के लोग थे जो प्राइवेट ड्रेस में थे और लाठी लेकर के लोगों को मार रहे थे, कभी हिटलर ने बनाया था, और आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देख रहे हैं।
0: तो विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए सवाल पूछ रहा है, विपक्ष अपना काम कर रहा है, प्रियंका वाड्रा उनकी तरफ से भी सवाल उठाया गया, और प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से सवाल उठाते हुए ये कहा गया कि इस मुद्दे का समाधान सरकार चाहती नहीं है निकालना, छात्रों से बात करने में सरकार को आखिर दिक्कत क्या है, ये प्रियंका पूछ रही है।
13: मंत्री जी की जिम्मेदारी है, उनसे रिजाइन करवाइए। देखिए, एक जमाना था जब मंत्री जिम्मेदारी लेते थे, मुझे याद है एक ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था शायद 80s में, अगले दिन उन्होंने इस्तीफा दिया, जो मंत्री रिस्पॉन्सिबल थे, जो उसके समय के रेल मंत्री थे, तो इस्तीफा दीजिए, जिम्मेदारी लीजिए, और सबसे जरूरी यह है कि सिस्टम को दुरुस्त करिए।
0: अब विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बोलने का मौका नहीं दिया जाता, इससे पहले भी विपक्ष ने ये कहा था, मल्लिकार्जुन खड़गे यही कह रहे हैं कि संसद में हमको बोलने ही नहीं दिया जा रहा, मौका ही नहीं मिल रहा है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे का केंद्र सरकार पर हमला, और मल्लिकार्जुन खड़गे ये कह रहे हैं कि सदन में विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है। इससे पहले भी विपक्ष की तरफ से ये कहा जाता है कि विपक्ष की आवाज को दबाने का काम केंद्र सरकार करती रही है और सदन में हमको बोलने नहीं दिया जा रहा, मौका नहीं दिया जाता।
14: अनार्की क्रिएट करने के लिए ये सब कर रही है। कोई अपोजिशन, कोई स्टूडेंट्स, कोई अनएम्प्लॉयमेंट ग्रेजुएट या कोई जनता नहीं कर रही है। सरकार खुद उचका रही है कि देश में अनार्की हो और फिर उसको दबाया जाए, लाठी चार्ज करा जाए, मारा जाए और डरा के उनको जेल में रखा जाए। दूसरी बात यह है कि कल भी जो हम बात करना चाहते थे उठाए, उस वक्त भी मौका नहीं दिया, लेकिन हमको जेल के जैसे अंदर रखा गया, बाहर आने नहीं दिया। क्या बात है? अरे पार्लियामेंट के बाहर भी अगर एमपी नहीं आ सकते तो उनको सुरक्षा नहीं है तो किनको है? तो देश आज एक अराजकता के तरफ चल रही है और मोदी जी होम मिनिस्टर इसको कंट्रोल करना नहीं चाहते हैं और वो अपनी बात सदन में रखना भी नहीं चाहते हैं, इसीलिए ऐसे एटीट्यूड को हम कंडम करते हैं। सरकार और पार्टी अगर युवाओं के साथ है, क्या बच्चियों के कपड़े फाड़ने?
0: और देखिए नीट पेपर लीक मामले पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बड़ा बयान दिया है। नीट पेपर लीक मामले की बात की जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विपक्ष इस मुद्दे पर देश को गुमराह कर रहा है। पीएम ने कहा कि विपक्ष बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद कर दे। एनडीए सांसदों के साथ मंगल मिलन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विपक्ष बच्चों के साथ खिलवाड़ बंद करे। विपक्ष इस मुद्दे पर देश को गुमराह करना बंद करे।
15: प्रधानमंत्री जी ने यह अपील भी किया है कि उनका जो सजा है उसको सख्ती से सख्ती सजा कैसे दिया जाए, उसमें सारा टॉप क्लास के वकील लोग भी साथ दे ताकि जो पेपर लीक जैसे पाप काम किया है उन लोगों को घोर सख्त सजा मिले और आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया। और प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, पूरा देश का हर एक राज्य में जहां जहां पेपर लीक करने में जो लोग लिप्त है, जो लोग इस धंधे में इन्वॉल्व है, जिन्होंने काम इस तरह का घिनौना किया है, पाप काम किया है, उनको सजा देने के सब एकजुट होना चाहिए। ये कोई दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें, इसको प्रधानमंत्री जी ने बल दिया है।
0: अब एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सोनम वांगचुक मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है और अब ये खबर आ रही है सोनम वांगचुक को लेकर कि उनको मेदांता हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश आया है सोनम वांगचुक को लेकर, हॉस्पिटल चेंज करने को लेकर मांग की गई थी परिवार वालों की तरफ से, अब सोनम वांगचुक को मेदांता अस्पताल शिफ्ट किया जाएगा। डॉक्टरों की एक टीम बनाने को कहा गया है, डॉक्टर्स के पैनल की निगरानी में उनका इलाज होगा। संजय शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, क्या मांग परिवार की तरफ से की गई थी और क्या कहा गया है हाईकोर्ट की तरफ से?
16: परिवार की तरफ से जो मांग की गई थी वो तो दो दिन से चली आ रही है, जिसमें कहा गया कि उन्हें आईसीयू की जरूरत नहीं है और उन्हें शिफ्ट कर दिया जाए। हालांकि कोर्ट के आदेश के बाद भी गीतांजलि आंगमो यह कह रही थी कि उन्हें आईसीयू में भर्ती करने की जरूरत नहीं थी, वो बिल्कुल सही है। लेकिन एम्स के डॉक्टरों की माने तो डॉक्टर कक्कड़ वहां पर कोर्ट के आदेश के बाद वहां उपस्थित हुए थे और उन्होंने ये कहा था कि उनके व्हाइट ब्लड सेल्स कम हैं और संख्या घटी हुई है, प्लेटलेट्स भी घटे हुए हैं, लिहाजा उनके इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा है। जरूरी है कि उन्हें आईसीयू में रखा जाए और उनसे हर कोई बिना किसी एहतियात के मुलाकात ना करे। एहतियात में उनको पूरी तरह से सैनिटाइज होना है मुलाकाती को, और उन्हें ग्लव्स पहनने हैं और टोपी पहननी है, कैप लगानी है और साथ ही मास्क के साथ जाना चाहिए, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा प्रोन है वो इन्फेक्शन के खतरे से। तो ऐसे में कोर्ट ने रिपोर्ट्स देखी और सारी चीजें देखने के बाद कोर्ट ने कहा, डॉक्टरों से पूछा कि क्या इन्हें दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है, उन्होंने कहा कि हाँ, इसी एहतियात के साथ अगर दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इस पर कोर्ट ने कहा कि जैसा वो चाहते हैं उन्हें वैसी जगह शिफ्ट कर दिया जाए और उन्हें मेदांता में शिफ्ट किया जा सकता है। इस पर सरकार ने भी कहा कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, उन्हें शिफ्ट कर दिया जाए।
0: शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए, और यहां रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए आज तक,
17: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो, हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंस।
18: दिस इज द साउंड ऑफ लूसी स्टेइंग ऑन टॉप ऑफ हर स्पेंडिंग। यू सी, इवन दो शी इज बाइंग अ न्यू पेयर ऑफ जींस, शी नोज दैट इट फिट्स विद इन हर मंथली बजट, बिकॉज़ वेल्स फार्गो विल सेंड एन अलर्ट इफ हर बैलेंस ड्रॉप्स बिलो हर सेट अमाउंट। यप, nothing gets past Lucy, or Wells Fargo for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
19: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
20: TuneIn has all of your favorite audio in one spot, so you can enjoy listening to anything, anywhere. From breaking news...
21: After multiple assassination attempts, they can't even get...
22: They're reliable.
23: Always when I need them.
20: To live sports action.
24: One-hand jam by LeBron on the break.
25: That's another three, Steph Curry.
20: And your favorite music.
26: Well, the dawn begins to crack.
20: TuneIn has got it all. Discover new stations in the app. Or ask your device to play TuneIn.
27: In a nudged head.
28: ये देखो, एक इन्वेस्टमेंट गुरु के टिप से पैसे डबल होंगे, बस ऑफर क्लेम करना है।
29: पैसे डबल ऐसे कोई भी ग्रुप से?
30: तो अर्ज किया है, डबल रिटर्न्स के लालच में तुम्हें उलझाएंगे ये शेयर बाजार के अनवेरिफाइड ग्रुप, फेक टिप्स भेजकर तुम्हारी जेबें खाली कर जाएंगे।
31: वाह वाह वाह वाह।
30: सेबी और एनएससी का कहना है, सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लें और पेमेंट सिर्फ वेरिफाइड अकाउंट या UPI पे करें।
32: सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर।
33: एनएससी द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
34: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
35: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
36: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
37: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार, एकदम सॉलिड।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
3: AU सोच बदलो और बैंक भी।
4: पापा
5: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
6: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
5: छक्का
6: सब कैशलेस हो गया है।
5: हाँ ला भाई मेरा बैट।
7: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
8: चार्ज हुआ यार।
9: बैट किसका है?
10: टाटा AIG है तो भरोसा है।
11: In association with
12: Cera Sanitaryware, it's your moment of Cera. E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
13: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
14: Hexa Organic, Radiant Skin and Nourished Hair, Pure Ayurvedic Beauty।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: In association with
2: Sarah Sanitary Wear, it's your moment of Sarah. E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा.
3: हम सिखाएंगे आपको मास कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट बनने का हुनर. ज्वाइन कीजिए इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट.
4: रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें.

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: मानसून सत्र में पेपर लीक पर भयंकर गतिरोध, सरकार के घेराबंदी में जुटा विपक्ष। स्पीकर से मिलने के बाद राहुल ने कहा, युवाओं पर चर्चा नहीं तो किस काम की संसद। अखिलेश बोले, हिटलर जैसा व्यवहार। एनडीए की मीटिंग में पेपर लीक पर पीएम का संदेश, कहा पता चलते ही सरकार ने लिया एक्शन। री एग्जाम के बाद फौरन निकाला रिजल्ट, नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। हरियाणा सरकार से बातचीत के बाद मानी गई किसानों की मांगे, दिल्ली की ओर नहीं आएंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात को तैयार, भारत अमेरिका ट्रेड डील का विरोध कर रहे हैं किसान। जंतर मंतर पर फिर बैठे सीजेपी समर्थक, नड्डा से मीटिंग के बाद रखी तीन मांगे। प्रदर्शन में 118 पुलिस वाले और 60 आंदोलनकारी घायल, दिल्ली पुलिस ने दर्ज की FIR, सैकड़ों CCTV की जांच। जम्मू कश्मीर में बादल फटने से भारी तबाही, गुरेज बरगाम में पहाड़ों से गिरा मलबा। सिक्किम में टनल धसी, एंट्री गेट बंद होने से अंदर फंसे 10 मजदूरों की मौत, 20 अब भी फंसे हैं।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से पर...
0: और आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के बहराइच। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं,
2: यहाँ की उर्वरा भूमि उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे अधिक नेचुरल फार्मिंग के लिए यानी प्राकृतिक खेती के लिए किसी एक जनपद के अन्नदाता किसानों ने कार्य किया है तो बहराइच उनमें से एक जनपद आता है। बहराइच उनमें से एक जनपद है और इसलिए मैं इस उर्वरा भूमि को, यहां के अन्नदाता किसानों को और ईश्वर प्रदत्त इस प्राकृतिक धरोहर कर्तनिया घाट और सरयू मैया के द्वारा प्रदत्त इस प्राकृतिक धरोहर के लिए भी आप सबको मैं बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और बहनों और भाइयों, इसीलिए आज दो विधानसभाओं की 70 नई परियोजनाओं को लेकर के हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। याद करिए, बहराइच जनपद आज से 9 वर्ष पहले ये एस्पिरेशनल जनपद था। एस्पिरेशनल जनपद का मतलब आकांक्षी बनकर के रह गया था, हाथ फैलाने के लिए मजबूर था, लैंड माफिया, भू माफिया, सैंड माफिया, वन माफिया, ये सभी इस जनपद पे हावी होकर के यहां की प्राकृतिक संसाधनों को लूटते थे, बदनाम यहां का आम नागरिक होता था, हर प्रकार की अवैध और अनैतिक गतिविधियों का संचालन सत्ता के संरक्षण में रहने वाले वे माफिया करते थे, बदनाम बहराइच जनपद होता था और आर्थिक स्थिति भी खराब होती थी, न केवल यहां के नागरिकों की बल्कि पूरे जनपद की। विकास के पायदान पर सबसे पीछे की श्रेणी में जो देश के अंदर 600 जनपदों में से सबसे बीमार 100 जनपदों की सूची प्रधानमंत्री मोदी जी ने नीति आयोग के माध्यम से जारी करवाई थी, उनमें से बहराइच एक जनपद था। लेकिन बहन और भाइयों, आज जब बहराइच की इस विकास यात्रा को हम देखते हैं, कोई सोचता था ये बहराइच का बीमारूपन हर उस भारतीय को चिंतित करता था, बहराइच के बच्चों के असमय बीमारी की चपेट में आना हर एक नागरिक के लिए चिंता का विषय था और वह हर व्यक्ति जो हजार वर्ष पहले महाराजा सुहेलदेव के शौर्य से परिचित रहा होगा। वह हर व्यक्ति जिसने महाराज बालार्थ ऋषि के साधना और सिद्धि को देखा होगा, अनुभव क्या होगा, वे हर व्यक्ति चिंतित हुआ करते थे। 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर के अमर बलिदानी महाराजा बलभद्र सिंह चौहलारी के बलिदान को जिसको भी स्मरण होगा, वह हर व्यक्ति चिंतित होता था। चिंतित नहीं होते थे तो ये कांग्रेसी और समाजवादी नहीं होते थे।
0: और बात किसानों की कर लेते हैं। अपनी मांगों को लेकर किसान दिल्ली आ रहे थे, लेकिन उनको हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर रोका गया और ये बताया गया कि जब सरकार से बात हुई तो कुछ मांगे किसानों की मान ली गई हैं। अब बातचीत के बाद किसानों की कुछ मांगे मान ली गई, जिसके बाद किसानों ने दिल्ली नहीं आने की बात कही। साथ ही वो कृषि मंत्री से भी मुलाकात को तैयार है। महापंचायत के लिए दिल्ली आ रहे थे किसान और उसी वक्त उनको हरियाणा पुलिस ने खनौरी के पास रोका और फिर बातचीत हुई और ये कहा जा रहा है कि कुछ मांगे उनकी मान ली गई हैं। कमल जीत हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सिंधु बॉर्डर से जुड़ चुकी हैं। कमल जीत, इस वक्त क्या तस्वीरें वहां पर दिखाई दे रही हैं? क्या किसानों की मांगे मानने के बाद अब किसान वापस लौट रहे हैं?
3: किसान एकजुट हुए थे और पंचायत के लिए दिल्ली कूच करना था, लेकिन शंभू बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर, पहवा बॉर्डर, इस सब पर किसानों को रोक दिया गया। नाराजगी ये भी थी कि कई किसान नेताओं को उठाया गया है और खासतौर पे गुरनाम सिंह ट्रिब्यूनी है, बीएन सिंह है, तो अब हरियाणा ने अपनी तरफ से किसान नेताओं को छोड़ दिया है। लेकिन किसानों का कहना है कि दिल्ली में कुछ चंद किसान हैं और नेता हैं जिनको अभी भी डिटेन किया हुआ है और अभी फिलहाल आपको बता दें दोपहर का समय है तो लंगर वगैरह चल रहा है, लेकिन उन्होंने कहा जैसे ही उन किसानों को छोड़ दिया जाएगा तो ये वापस चले जाएंगे। यानी खुश है कि कुछ बातें तो उनकी मानी गई, खासतौर पे ये के जो यूएस इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था जहां पे किसानों के कई कंसर्न्स थे उनको लेके आज किरण रिजिजू ने भी बात की, पर उन्होंने कहा भाई किसानों से तो किसी ने बातचीत नहीं की है और इसलिए शिवराज चौहान अब बात करेंगे। और ऐसा बताया जा रहा है 8 से 10 दिन में हरियाणा सरकार के सहित ये पूरी मीटिंग है वो की जाएगी, लेकिन क्या वो कन्विंस कर पाएंगे किसानों को वो अलग बात है। लेकिन दूसरी बड़ी मांग ये थी कि जो नेता डिटेन किए गए हैं उनको छोड़ा जाए, तो ये दो मांगे हैं जिनके ऊपर हामी भरी गई हरियाणा सरकार द्वारा और काफी हद तक ये बोला गया है कि किसानों को छोड़ा गया है हरियाणा में, लेकिन दिल्ली में ऐसे कुछ किसान हैं जिनको अभी भी डिटेन किया गया है, तो वो बस इंतजार कर रहे हैं कि वहां से कोई हरी झंडी मिले और पता चले कि किसान नेताओं को छोड़ दिया गया है तो यहां से जाएंगे। और अब जो तैयारी है वो ये है कि चाहे हम बात करें यूनियन मिनिस्टर शिवराज चौहान से किस तरह से बातचीत करेंगे और पंजाब के किसान हैं या फिर बाकी राज्य के किसान हैं उनके क्या कंसर्न्स हैं फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को, क्योंकि इनका कहना है कि जो छोटे किसान हैं, जो मार्जिनलाइज किसान हैं, उनको काफी नुकसान होगा इससे। जो सब्सिडी यूएस के किसानों को मिलती है वो भारतीय किसानों को नहीं मिलती और उनको कम्पीट करना इस पूरे लेवल में सही नहीं लग रहा है और ये कंसर्न्स एड्रेस करने बहुत ही जरूरी हैं। और ये बात क्योंकि श्याम सिंह राणा हरियाणा के जो कृषि मंत्री है वो खुद आए और खुद भी वो किसान रहे हैं, उन्होंने कन्विंस किया और उसके बाद ये हामी भरी गई कि ये एक मीटिंग 8 से 10 दिन में दिल्ली में होगी या जो शिवराज चौहान है वो मुलाकात जरूर करने के लिए, वो कहां क्या मोडेलिटी होगी वो बाद में तय किया जाएगा, पर फिलहाल किसानों ने भी बात मांगी है। अब क्योंकि हम बोल सकते हैं कि बॉल सेंटर के कोर्ट में है, अब वो जैसे ही छोड़ते हैं तो वैसे ही ये जो काफिला आपको दिखा दे पहले शंभू बॉर्डर की तरफ था और अब ये जो किसान है काफी हद तक अपने बसों में और एक लंबा इंतजार है, क्योंकि आपको बता दें कि 6-7 बजे से ये सारे किसान बैठे हैं और बीच में काफी बारिश भी हुई और उसके बाद धूप है, उमस है, उसके बावजूद यहाँ पे डटे हुए हैं। तो
0: देखिए मौसम जैसा भी हो लेकिन किसान यहाँ पर डटे हुए हैं और ये किसान बता रहे हैं कि वो अपनी मांगों को लेकर सरकार से मिलने वाले हैं। और कमलजीत, जो आप जानकारी दे रही थी, आप ही ने सरवन सिंह पंडित जो किसान नेता है उनसे बातचीत की है, तो जरा वो बातचीत सुनवा देते हैं कि तब उन्होंने क्या कहा,
3: किन मांगों को लेकर आप दिल्ली जा रहे
4: हैं? नहीं देखिए, मांग तो हमारी एक ही थी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है देश हित में नहीं किया जाना चाहिए। पीयूष गोयल का जो हम कल न्यूज में देख रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि हम कृषि के साथ और डेयरी क्षेत्र के साथ कोई भी समझौता नहीं करेंगे, उनका कहना। हम कहते हैं जो व्हाइट हाउस ने, आपने तो हमें कुछ नहीं बताया, व्हाइट हाउस ने जो प्रेस रिलीज दी उनमें कपास, सोयाबीन, मक्का, ड्राई फ्रूट, सेब, नाशपाती और आगे था अनदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, उसमें सब हो जाता। एक आपने व्हाइट रेंज ट्रेड एग्रीमेंट, व्हाइट रिंगिंग ट्रेड एग्रीमेंट, कुछ भी कह लीजिए इसको, व्यापक व्यापारक समझौता आप कर रहे हो और हमें बोल रहे हैं कुछ भी नहीं है। आप, हम देश के स्टेक होल्डर हैं, किसान हैं, हमसे बात नहीं की। इतना आपका मसौदा बढ़िया, आप देश की पार्लियामेंट में रखिए तो सही, विपक्ष और सत्ता पक्ष मिलकर इस पे डिबेट करे, हमसे वार्ता करिए, मीडिया बुला लिए, आपके पास तो बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं, हम तो आपके जैसे एक्सपर्ट नहीं है। उनकी जो अमेरिका की स्टेट ऑफ सेक्रेटरी है, वो किसानों के बीच जा रही है, शैंपिंग बोतलें खोल रही है, वो कर रही हो हल्ला भी भारत की मंडी हमें मिल गई, वो क्यों चिल्ला रहे हैं भाई? आप बोल रहे हैं हमारे हित में।
0: देखिए, किसानों का मुद्दा हो, किसान प्रदर्शन हो, तो ऐसे में राजनीति होती है, दल एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। और अमरिंदर राजे सिंह वर्डिंग की बात की जाए, अशोक मित्तल की बात की जाए, तो एक दूसरे पर वो आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, क्या कह रहे हैं सुनते हैं।
5: भगवंत मान ने सुबह कुछ किसानों जैसे दिलबाग सिंह, किसान मजदूर एकता के एक साथी को घर में सुबह 5 बजे उठाने की कोशिश कर ली। पूरी आम आदमी पार्टी लगी हुई है, ऐसा लगता है कि अमित शाह के इशारे पर भगवंत मान तमाम किसानों को पकड़ के रोकना चाहता है, तो लगता है कि गांठ सांठ हो गई है। लेकिन किसानों को जो रोकेगा वो रोकेंगे नहीं, आने दिया जाना चाहिए। ये दिल्ली उनकी किसी की अपनी थोड़ी है, ये दिल्ली उन्हीं किसानों की है, तमाम उन नौजवानों की है। यहाँ आने से क्यों रोकते हैं ये मेरे को पता नहीं, पर सैनी साहब लगे हुए हैं रास्ते में, बैरिकेडिंग लगा दी है, भगवंत मान लगा हुआ है कि लोगों को सुबह सुबह पकड़ने में लगा हुआ है।
6: जो किसानों की समस्याएं हैं वो तो हम सबको मिलकर हल करनी चाहिए और मुझे उम्मीद है कि इसका एक अच्छा हल निकल कर आए।
0: देखिए, किसानों की बात होती है तो हरसिमरत सिंह कौर किसानों का मुद्दा पहले भी उठाती रही है और इस बार उनसे बात की हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज ने।
7: कल जिस तरह से सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ है और जो लाठी चार्ज हुआ, अपोजिशन उसका बहुत ज्यादा विरोध कर रहा है, किस तरह से कल के पूरे एक्शन को देख रही है?
8: नहीं, मैं कल के पुलिस एक्शन को पूरी तरह से मैं उसका खंडन करती हूँ, निंदा करती हूँ। ये हमारे देश का भविष्य है, हमारे देश के बच्चे हैं, 10वीं 12वीं छोटे छोटे बच्चे तक वहाँ पे आए हुए थे। आप उनको वो अपने जो मुश्किलें हैं इधर आपको सुनाने के कि हमारी मुश्किलें हल करिए, आप हर करने के बजाय आप उनको डंडों से, लाठियों से मार के सिर फोड़ दे, पैर फोड़ दे, तो ये टोटली अनएक्सेप्टेबल है। ये वायलेंस नहीं होना चाहिए और यूथ के साथ एंगेज करना चाहिए, क्योंकि ये यूथ ने ही आपको चुनकर यहाँ पे भेजा है।
7: हम लेकिन सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और सरकार रेडी एंगेज करने के लिए। कल यूनियन मिनिस्टर जेपी नड्डा भी मिले थे डेलीगेशन से, इसके बावजूद सड़कों पे उनका कहना है कि पॉलिटिकल इस्तेमाल हो रहा है।
8: देखिए, जब आप ऐसे मैदान तैयार कर देंगे, वो 20 दिन से वो अनशन पे बैठे हुए हैं, लाखों लोगों के ये जो री एग्जाम होते हैं, लाखों बच्चे इससे इफेक्ट होते हैं, कईयों ने खुदकुशी कर ली है, और आप कहते हैं कि हमने बहुत स्विफ्ट एक्शन लिया, हमने दोबारा एग्जाम रख दिया, तो जो बच्चे मर गए वो तो मुड़ के आएंगे नहीं ना। सो बिल्कुल जी, आप ऐसे मैदान खुला छोड़ेंगे और बच्चों में एंगर बिल्डअप होगा तो वो सड़कों पर उतरेंगे और उसका एडवांटेज दूसरे ले सकते हैं। पर ये कहना कि पॉलिटिकल एडवांटेज नहीं, मैं मानती हूँ, लेकिन आप इस नौबत पे आने ना दीजिए।
0: और देखिए, इसी बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो हम आपको बता देते हैं, और सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि किसानों और सरकार के बीच में बातचीत का रास्ता सरकार खुला रखना चाहती है, जो बातचीत के दरवाजे हैं वो खुले रखना चाहती है। बातचीत करने से परहेज नहीं है, आगे की बातचीत और संवाद पर जल्द ही फैसला भी लिया जाएगा सरकार की तरफ से। सीजेपी के प्रदर्शनकारियों से बातचीत के रास्ते खुले हैं, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, ये बताया जा रहा है कि सरकार की ओर से बातचीत से परहेज नहीं है और रास्ते दरवाजे खुले हुए हैं, क्या जानकारी आपके पास आ रही है?
9: देखिए हिमांशु, बिल्कुल सरकार की तरफ से जो है प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत के जो दरवाजे हैं वो हमेशा खुले हुए हैं, ये संस्था का कहना है, और साथ साथ किसी भी तरीके की बातचीत से कोई भी परहेज जो है वो सरकार को नहीं है। आगे की बातचीत और संवाद पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा, जो प्रोटेस्टर अभी बैठे हुए हैं सीजेपी के नीट मामले को लेकर।
0: जी, और बिल्कुल ये हम देख रहे थे कि भांशो की बहुत लंबे वक्त से जो प्रदर्शन चला आ रहा था और ये गतिरोध जो इस वक्त इतना ज्यादा बढ़ गया है, क्या ये माना जा सकता है कि अब ये गतिरोध दूर होगा, क्योंकि सरकार की तरफ से, पीएम मोदी की तरफ से और कई मंत्रियों की तरफ से बयान भी आया इस पर?
9: देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आज मंगल जो एनडीए की पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग थी उसने कह दिया है कि पेपर लीक के लिए जो दोषी हैं उनको सजा दी जाएगी और ये एक बहुत बड़ा पाप है। के लिए जो भी उचित कदम उठाने सरकार उठा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कह दिया, इसको लेके राजनीति नहीं होनी चाहिए, सिस्टम को फूल प्रूफ बनाना चाहिए जिससे आगे भविष्य में ऐसी कोई गलती ना हो। विपक्ष जो है वो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करे और राजनीति में बच्चों को ना घसीटे, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से साफ कर दिया है और ये कहा गया है कि हाँ हम सबको मिलकर काम करना चाहिए, ये राज्य और केंद्र के पेपर लीक का मामला नहीं है, ये एक बड़ा मामला है और इसके लिए सिस्टम को फुल प्रूफ करने की जरूरत है, इस पर सरकार जो है वो काम कर रही है।
0: सरकार काम कर रही है, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं इस बीच ये भी खबर है कि कल जो बवाल हुआ, हंगामा हुआ, कई पुलिस वाले भी इसमें घायल हुए थे, FIR दर्ज हुई है इस पूरे मामले में और ये बताया जा रहा है कि 5 FIR अभी तक दर्ज की गई हैं। FIR में सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने, सरकारी काम में बाधा डालने, हिंसक गतिविधियों में शामिल होने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। नई दिल्ली के DCP सचिन शर्मा ने बताया कि प्रदर्शन में 110 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हुए हैं, कई पुलिस वालों के सर पर चोट लगी, कुछ पुलिसकर्मियों के हाथ फ्रैक्चर हुए हैं। पुलिस के मुताबिक सभी वीडियो CCTV फुटेज जुटाए जा रहे हैं और उसी के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी।
10: क्या स्थिति है नई दिल्ली इलाके की?
11: हमने प्रिवेंटिव अरेंजमेंट लगा रखा है और स्थिति को मॉनिटर किया जा रहा है।
10: कितनी FIR अब तक दर्ज हुई है और किस किस क्या क्या मतलब सामने आया इन्वेस्टिगेशन?
11: अभी वो लीगल डेटा कंपाइल हो रहा है, सो अभी तक करीब 4 से 5 जो भी जहां पे भी लीगल एक्शन लेने की जरूरत थी।
10: क्या इस पूरे घटना में जो तस्वीरें भी सामने आई हैं, पुलिस पर अटैक हुआ, पत्थरबाजी हुई सरकारी गाड़ियों पर, किस तरह के वीडियोस आपके सामने आए हैं?
11: वो सब अभी कंपाइल कर रहे हैं।
10: अभी विजय चौक इलाके में यहाँ भी सिक्योरिटी अरेंजमेंट लगा रहे हैं?
11: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वाइटल इंस्टॉलेशन है।
10: कल के बारे में जरा एक बार फिर जानना चाहेंगे क्योंकि कई वीडियो वायरल हैं, आज तक इंडिया टुडे को भी वीडियोस मिले हैं जिसमें देखा गया है कि पथराव हो रहा है, पुलिस पर अटैक हुए हैं, कितने पुलिसकर्मी घायल हुए इसमें लगभग?
11: मोर देन 110
10: पुलिसकर्मी घायल
11: जी।
10: और किस तरह के चोट है, क्या पथराव लाठी डंडे के?
11: बिल्कुल सिर पे चोट है, हाथ है, कुछ फ्रैक्चर्स हैं, तो इस तरफ से काफी चोट लगी है।
0: अरविंद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। अरविंद, क्या ये माना जाए कि जो CCTV फुटेज जुटाए जा रहे हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं, तो उनमें जो लोग भी अराजक तत्व हैं, जो हंगामा कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, वो उन पर कार्रवाई निश्चित है, क्या ये माना जाए ऐसा है?
10: बिल्कुल ऐसा निश्चित है और देखिए अभी तक 70 लोगों को हिरासत में दिल्ली पुलिस ने लिया हुआ है। कल जो उपद्रव हुआ, कई जगह पर तोड़फोड़ हुई, नई दिल्ली इलाके से तोड़फोड़ हुई जो ITO तक पहुंची है, कई CCTV फुटेज दिल्ली पुलिस को मिले हैं, कई वीडियोस मिले हुए हैं और कई ऐसे CCTV फुटेज हैं जो खंगाले जा रहे हैं। एडिशनल DCP 2 से भी आज तक ने बातचीत की, उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि पहले बच्चे बच्चियां थे जिनको खूब समझाया गया, लेकिन बाद में जो क्राउड था वो मॉब में तब्दील हो गया और उस मॉब में न सिर्फ बच्चे बच्चियां बल्कि उम्र दराज लोग भी शामिल थे जो काफी मोटिवेटेड थे और ऐसा लगता है कि किसी उद्देश्य से आए। तो शुरुआत में स्टूडेंट थे, बच्चे बच्चियां थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो मॉब में तब्दील हो गया और फिर वो संसद भवन की तरफ जाना चाहते थे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस को लाठियां भाजनी पड़ी, जिसमें कुछ प्रदर्शनकारी उनको भी चोट लगी, पुलिस को भी चोट लगी। अब तक 4 से 5 FIR दर्ज हो चुकी है और FIR की संख्या ज्यादा बढ़ेगी। ड्रोन उड़ाने की भी FIR दर्ज हुई है, उसके अलावा साजिश, हिंसा को लेकर साजिश को लेकर FIR दर्ज हुई है। तो लगातार जो दिल्ली पुलिस का इन्वेस्टिगेशन है वो जारी है। 70 से ज्यादा लोग अभी तक हिरासत में है, कितने लोग को पुलिस गिरफ्तार करती है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन जैसे जैसे CCTV फुटेज आएगा

0: जिस तरह से प्रोटेस्ट हुआ, हुड़दंग भी हुआ, उसमें पत्थरबाजी हुई, पुलिस वालों पर अटैक हुआ।
1: ठीक है, ये तो पुलिस का काम है, पुलिस का काम 24/7 जनता की सेवा में खड़े रहना है। अगर आप ग्रीवियसली, अगर आपको चोटिल नहीं है, ग्रीवियसली अगर चोट नहीं है आपको, तो आपको आना चाहिए और हम आते ही हैं।
2: और अब बात करते हैं अयोध्या की। अयोध्या श्री राम मंदिर मामले में कल श्री राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक होने वाली है और उस बैठक में 3 नए सदस्यों के नाम पर मोहर लगने वाली है। ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। श्री राम मंदिर ट्रस्ट की कल होने वाली बैठक में ट्रस्ट के 3 नए सदस्यों के नाम पर मोहर लगने वाली है। अयोध्या में मणिराम दास छावनी में कल 2 चरणों में बैठक होने वाली है। इसमें ट्रस्ट के अध्यक्ष मंत्र नृत्य गोपाल दास की आवास पर आयोजित होने वाली बैठक में 3 रिक्त पदों पर नए सदस्यों के नामों को अंतिम मंजूरी दी जाने की संभावना है। अब इसमें ट्रस्ट के महासचिव पद, राम मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं, विभिन्न समितियों के पुनर्गठन और सीईओ नियुक्ति प्रक्रिया जैसी महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा होगी। यहां वक्त चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. 2 taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
6: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
7: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all of your favorite music, news, sports, and more all in one place. Hear all of the audio you love, whether you're a music lover, interested in what's going on around the world.
8: We know that Hamas has agreed to a deal at some point.
7: Or want to catch your team's live play-by-play. It's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
3: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health ka Sach in association with
4: Bharat ki apni electric sawari Sokudo.
2: ईरान और अमेरिका के बीच में अभी भी तनाव लगातार जारी है और 10वें दिन भी अमेरिका के हमले ईरान पर लगातार जारी हैं और बताया जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से ईरान के चाबहार सिरिक केशव द्वीप पर जोरदार हमले किए गए हैं और इसके साथ ही औद्योगिक क्षेत्र को भी निशाना बनाया गया है।
9: आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल पावर्ड बाय वेक्टर्स। अगली बार दुकान पर जाना तो टंकी नहीं वेक्टर्स मांगना। टंकी मतलब
5: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. 2 taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
6: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
10: Hey, it's Stormy, and previously on my show, Riley Green shared that he's motivated to make more music as he sees his audience size grow while he's on tour.
11: You know, when I started out, I was very southeastern. You know, I was down there in Alabama, and I've gone to a lot of places that I've never been. It's kind of motivation for me to keep writing music and keep traveling because there's country music fans everywhere.
10: Listen to the Stormy Warren Show on the Big 615 weekdays, 7 a.m. to 1 p.m. Central, right here on TuneIn.
12: देश की बेटी ने लहराया तिरंगा, देश की आन बान शान बनी पीवी सिंधु, जापान ओपन जीतने वाली पहली भारतीय बनी पीवी सिंधु। जी हां, कमाल हो गया, धमाल हो गया। जापान ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीयों को गर्व करने का मौका मिला है। 31 साल की सिंधु ने रविवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में जापान की अकाने यामागुची को 21-17 से हराया। ये मैच 50 मिनट तक चला। सिंधु 4 साल बाद यामागुची को किसी फुल मैच में हरा सकी हैं। उन्हें पिछली जीत थाईलैंड ओपन में 2022 में मिली थी। पिछले साल मलेशिया ओपन में यामागुची रिटायर्ड हर्ट हो गई थी। सिंधु ने 2 साल बाद कोई खिताब जीता है।

मानसून सत्र में पेपर लीक पर भयंकर गतिरोध, लगातार दूसरे दिन संसद ठप। स्पीकर से मिलने के बाद राहुल ने कहा, युवाओं पर चर्चा नहीं तो किस काम की संसद है। अखिलेश बोले, ये हिटलर जैसा रवैया। एनडीए की मीटिंग में पेपर लीक पर पीएम का संदेश, कहा पता चलने पर ही सरकार ने एक्शन ले लिया था। री एग्जाम के बाद फौरन निकाला रिजल्ट, नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। हरियाणा सरकार से बातचीत के बाद मान गए किसानों की मांगे, अब दिल्ली की ओर नहीं आएंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात को लेकर तैयार, भारत अमेरिका ट्रेड डील का विरोध कर रहे हैं किसान। दिल्ली प्रदर्शन में घायल छात्रों से मिले जेपी नड्डा, जंतर मंतर पर अब भी जमे हैं सीजेपी समर्थक। कल हुई हिंसक झड़प में दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। जम्मू कश्मीर में बादल फटने से भारी तबाही, गुरेज बड़गाम में पहाड़ों से गिरा मलबा। सिक्किम में टनल धंसी, एंट्री गेट बंद होने से अंदर फंसे 10 मजदूरों की मौत, 20 अब भी फंसे।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं राजीव ढोंडियाल। सुपरफास्ट अंदाज में अब शुरुआत करते हैं 100 शहर 100 खबर के।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
0: नवसारी में बारिश का कहर जारी। खेरगांव में 8 इंच तक बारिश हुई। कावेरी नदी उफान पर 70 से ज्यादा रास्तों पर आवाजाही हुई प्रभावित। सूरत में भारी बारिश का असर। उधना, कड़ोदरा समेत कई इलाकों में जल भरा। सड़कों पर पानी भरने से यातायात प्रभावित। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में लगातार भारी बारिश के चलते दिल्ली यमुनोत्री मार्ग पर भयंकर लैंडस्लाइड। मलबा और बड़े बड़े पत्थर सड़क पर आ गए हैं। आवाजाही प्रभावित हुई है। जम्मू कश्मीर में लगातार बाढ़ बारिश से भीषण तबाही। गुलमर्ग श्रीनगर सड़क पर नाला ओवरफ्लो है और प्रशासन ने लोगों से उफान में बह रहे नाले से दूर रहने की चेतावनी दी है। कारगिल में अचानक आई बाढ़ से बड़ी तबाही। फ्लैश फ्लड के बाद दिखा खौफनाक मंजर। मवेशियों को बचाने में रेस्क्यू टीमें जुटी। जम्मू कश्मीर के गुरेज में अचूरा और बरना इलाके में बादल फटने से घरों और खड़ी फसलों को बड़ा नुकसान। लोगों की भी जान बचाई गई। अब तक 20 लोगों की कुल्हाला की मौत भी हुई। किश्तवाड़ में तेज बहाव के साथ आए मलबे ने मचाई तबाही। फ्लैश फ्लड को लेकर प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा। जम्मू कश्मीर की रियासी में लगातार बारिश के चलते उफान पर चिनाब नदी, सलार डैम के सभी गेट खोले गए। नदी का रौद्र रूप दिखा। अलर्ट भी जारी। जम्मू कश्मीर के राज्यों में मुनावर नदी से भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने एक शव को निकाला बाहर। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर भूस्खलन, आवाजाही प्रभावित। बीआरओ के द्वारा मलबा हटाने का काम जारी। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से मची तबाही। चंबा को कांगड़ा से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण सड़क पानी के तेज बहाव के चलते बह गया है। अनावश्यक यात्रा न करने की अपील। चंबा के जनजातीय क्षेत्र पांगी में 4 घंटे के बाद सुरक्षित निकाले गए नाले में फंसे 11 मजदूर। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। लाहौल स्पीति में बारिश के चलते चंद्रभागा नदी का रौद्र रूप। नदी का जलस्तर बढ़ने के चलते पुल डूबा है। लोगों का जनजीवन प्रभावित। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में भारी बारिश के रेड अलर्ट के बीच में प्रशासन पूरी तरह से सतर्क। स्कूल बंद रखने का आदेश। उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार और टिहरी में भारी बारिश का रेड अलर्ट है। टपकेश्वर मंदिर के पास तमसा नदी का उफान। मंदिर परिसर जलमग्न। भारी बारिश के चलते स्कूल बंद। सिक्किम में निर्माणाधीन टनल में भूस्खलन। एंट्री गेट बंद होने से अंदर फंसे 7 मजदूरों की मौत। 20 अभी फंसे। एनएचपीसी की तीसरा स्टेज 6 परियोजना पर बड़ा हादसा। ऑक्सीजन की कमी के चलते एनडीआरएफ और प्रशासन का बचाव अभियान चल रहा है। टनल में जहरीली गैस बनी बड़ी चुनौती। रेस्क्यू में लगातार परेशानी आ रही। असम में लगातार भारी बारिश के चलते बाढ़ की स्थिति अब गंभीर। लगातार इस प्राकृतिक आपदा में 5 लोगों की मौत भी हुई और 3.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। ब्रह्मपुत्र समेत नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही। राहत एवं बचाव कार्यों के लिए सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा टीमें लगातार हर संभव मदद के लिए तैयार। हल्द्वानी में मॉनसून का कहर। मूसलाधार बारिश के चलते सड़कें बनी दरियां। घरों तक में घुसा पानी। निचले इलाके प्रभावित। यूपी के उन्नाव में 4 घंटे की मूसलाधार बारिश से आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त। अस्पताल, सड़क, हर तरफ जल भराव। लोग परेशान। अफगानिस्तान में अचानक आई बाढ़ ने तबाही मचाई। अब तक 10 लोगों की मौत। 100 से ज्यादा लोग लापता। लापता लोगों में पारून शहर का मेयर भी शामिल है। बाढ़ की वजह से 80 लोग घायल हैं। लापता लोगों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी। बाढ़ से नूरिस्तान की राजधानी पारून सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका। यहां पर कई घर बुनियादी ढांचे क्षतिग्रस्त। जगह जगह जमे मलबे को हटाने का काम चल रहा है। मानसून सत्र का दूसरा दिन है। विपक्ष के जोरदार हंगामे के साथ शुरुआत। हंगामे के बीच लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। राज्यसभा में छात्रों के प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का सरकार पर हमला। बोले कि छात्रों पर आंसू गैस छोड़ी गई। छात्र अस्पताल में भर्ती हैं। संसद परिसर में सुरक्षा कर्मियों से संजय सिंह की तीखी बहस। गुस्से में नाराजगी नारेबाजी भी करते नजर आए।

संसद भवन में गठबंधन इंडिया के नेताओं की बड़ी बैठक और आगे की रणनीति पर मंथन। नीट मामले पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर बल प्रयोग करने पर गरमाई सियासत। राहुल गांधी का सरकार पर हमला, कहा कि पीएम मोदी इस पर चुप क्यों है। राहुल गांधी का आरएसएस पर भी हमला, बोले कि पूरी शिक्षा व्यवस्था पर आरएसएस का कब्जा है। छात्रों के मुद्दे पर संसद में चर्चा तक नहीं होगी तो फिर संसद किस काम की है। युवाओं के प्रदर्शन पर प्रियंका गांधी भी सरकार पर हमला, बोली कि पेपर लीक पर ठोस कार्रवाई नहीं। शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, मोदी सरकार को एंटी यूथ बता। छात्रों के प्रदर्शन पर बीते दिन की कार्रवाई को अरविंद केजरीवाल तानाशाही करार देते हुए कहते हैं कि बच्चों पर लाठीचार्ज बर्दाश्त नहीं, पूरा देश उनके साथ। छात्र प्रदर्शन पर अखिलेश यादव का सरकार पर हमला, बोले कि हिटलर की तरह अपने ही लोगों पर ताकत का इस्तेमाल कर रही है सरकार। जेपी नड्डा पहुंचे आरएमएल हॉस्पिटल, डॉक्टर्स से की बातचीत। सीजेपी प्रदर्शन मामले में दिल्ली सरकार की कार्रवाई, अब तक 4 एफआईआर, 2 पर केस दर्ज की प्रक्रिया जारी। प्रदर्शन के दौरान हिंसा और ड्रोन उड़ाने पर एफआईआर, पुलिस ने साजिश और सरकारी काम में बाधा समेत कई धाराओं में केस किया दर्ज। छात्रों के समर्थन में आए पंजाबी गायक, बोले कि जो हुआ बहुत गलत हुआ, छात्रों की मांगे सुनी जानी चाहिए। सीजेपी प्रदर्शन में हिंसा का आरोप, 118 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल, सरकारी संपत्ति को नुकसान, पुलिसकर्मियों पर भी हमले का आरोप। भोपाल में विधानसभा सदन में यूजीसी पर चर्चा हुई, यूसीसी पर चर्चा हुई है। सदन के अंदर कांग्रेस ने हंगामा भी कर दिया। यूसीसी विधेयक के विरोध में कांग्रेस विधायकों का हंगामा, चर्चा का बहिष्कार कर सदन से बाहर निकल गए। बिहार विधान परिषद की कार्यवाही के दौरान गांव में होल्डिंग टैक्स पर घमासान मचा हुआ, विपक्ष ने सरकार के फैसले को ग्रामीणों के खिलाफ बताया। होल्डिंग टैक्स विवाद पर सीएम सम्राट चौधरी का विपक्ष पर पलटवार, बोले कि गरीबों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, परेशानी जो है उन प्रावधानों पर हम विचार करेंगे। बिहार में जुआ और सट्टेबाजी पर सरकार का अब शिकंजा, ऑनलाइन जुए को अपराध बनाने की तैयारी, 7 साल तक की सजा का प्रावधान, 10 लाख तक का जुर्माना भी। मानसून सत्र के बीच एनडीए का मंगल मिलन, पीएम ने संसदीय दल की बैठक में नीट परीक्षा पर की बात, आरोपियों पर सख्त कार्रवाई का आदेश। बैठक में हुई चर्चा पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने जानकारी दी, पीएम के नीट पेपर लीक पर चर्चा करते हुए सभी राज्यों को इसके रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाने का आदेश। मीटिंग में राज्यसभा के नए सदस्य का स्वागत भी हुआ, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पहली बार बतौर सांसद लिया हिस्सा। बैठक में किसानों के हितों को प्राथमिकता दी गई, कहा कि उनके हितों को नुकसान नहीं होने देंगे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नई एसआईटी का गठन संभव, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी संभाल सकते हैं जांच की कमान। राम मंदिर दान मामले में नई एसआईटी पुरानी जांच रिपोर्ट को आधार बनाएगी, सभी तथ्यों और साक्ष्यों की फिर से जांच होगी। अयोध्या चढ़ावा चोरी केस में जांच से सूत्रों के अनुसार महीने के आखिर तक रिपोर्ट आने की उम्मीद है। आज महराज के दौरे पर सीएम योगी, 352 करोड़ से ज्यादा की 70 विकास परियोजनाओं की सौगात। बहराइच को सीएम योगी के बड़े सौगात, विपक्ष पर बोला हमला, कहा कि विदेशी आक्रांता खासी के नाम पर लगने वाला मेला रोका गया, महाराजा सुहेलदेव के नाम पर आयोजन होगा। आज दिल्ली में किसानों की बड़ी रैली की तैयारी थी, इंडिया अमेरिका प्रस्तावित एफटीए के विरोध में किसानों का प्रोटेस्ट। किसानों का आरोप है कि भारत अमेरिका एफटीए से कृषि डेयरी क्षेत्र पर बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ेगा। किसान संगठनों की मांग है कि भारत अमेरिका व्यापार समझौते के दस्तावेज सार्वजनिक किए जाने चाहिए और बिना चर्चा के कोई फैसला न हो। दिल्ली कूद से पहले शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी, शंभू बॉर्डर पर बीएनएस की धारा 163 लागू, पुलिस बल भी तैनात। किसान महापंचायत को लेकर दिल्ली में ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी हुई, किसान घाट और आसपास के इलाकों में रूट डायवर्जन की तैयारियां भी की गई। दिल्ली कूच कर रहे किसानों को हरियाणा पुलिस ने खनौरी के पास में रोका, भारत माला जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे पर बैरिकेटिंग भी की गई। किसानों के दिल्ली मार्च को रोकने के लिए पुलिस भी तैनात दिखी, एक्सप्रेसवे पर पुलिस और किसानों के कामना सामना भी हुआ था। किसानों के दिल्ली मार्च पर बीजेपी के सांसद अशोक मित्तल बोले कि माहौल अच्छा हो रहा है और तो इसे बिगाड़ना नहीं चाहिए। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर जयराम रमेश का दावा, कहा कि किसानों के मुद्दे उठाने पर उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया। गुरुग्राम सेक्टर 84 की एक सोसाइटी में बास्केटबॉल खेलते समय अचानक गिराए भारी पोल, 20 वर्षीय युवक इसमें गंभीर रूप से घायल।
अलवर में फिल्मी गिरफ्तारी, चलती कार से के बोनट पर लटक कर पकड़ा हथियार तस्कर। दिल्ली के फतेह नगर में मकान की पार्किंग में अचानक आग लगी, दो सिलेंडर भी फट गए, हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। गाजियाबाद में डबल मर्डर से सनसनी, दो बेटों के माता पिता को पीट पीट कर दो बेटों ने मार डाला। बिहार के बगहा में पुलिस को गौतस्करी की सूचना देना एक मुखिया को पड़ा भारी, बदमाशों ने घर में घुसकर परिवार पर जानलेवा हमला किया। देहरादून में युवाओं का प्रदर्शन, जेई भर्ती की मांगों को लेकर सचिवालय कूच, और पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में तीखी बहस, धक्का मुक्की भी। इंदौर में बिजली कंपनी के चीफ इंजीनियर के ठिकानों पर लोकायुक्त का छापा, तनख्वाह से 258% ज्यादा कमाई का मामला। अहमदाबाद में लगभग 40 करोड़ के अवैध पटाखे जब्त, दो गोदाम सील, दो गिरफ्तार। कोलकाता के वीआईपी रोड पर दो गुटों में भयंकर झड़प, बीजेपी कार्यकर्ता पर शहीद दिवस में शामिल होने जाने जा रहे कांग्रेस और टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर पिटाई का आरोप। तेलंगाना के संगारेड्डी में नेशनल हाईवे 161 पर भयानक सड़क हादसा, एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत, बाइक सवार को बचाने के दौरान एसयूवी कई बार पलट गई। बिहार के वैशाली में देर रात पूर्व मुखिया के घर पर बमबाजी और फायरिंग हुई, अज्ञात बदमाशों ने इलाके में दहशत फैलाई। बेगूसराय में डाकघर और पासपोर्ट कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी, 3 मंजिला बिल्डिंग खाली करवाई गई। पटना में शराब तस्करी के लिए रैपिडो का इस्तेमाल कर रहे तस्कर, पुलिस ने रैपिडो कार से विदेशी शराब बरामद की, तस्कर कार से कूद कर भाग गया। मुजफ्फरपुर में रिटायर्ड बैंक कर्मी और पत्नी के चाकू गोद कर हत्या कर दी गई, टेप और ग्लव्स लेकर ये कातिल पहुंचे थे। बिजनौर में चारा काटने जंगल गई बुजुर्ग महिला पर तेंदुए ने हमला कर दिया, बुजुर्ग महिला की मौके पर मौत। फिल्म एवेंजर्स डूम्सडे का पहला ट्रेलर आउट, रॉबर्ट डाउनी जूनियर डॉक्टर डूम के रोल में दिखाई देंगे। एक्टर सलमान खान की फिल्म मातृभूमि को लेकर एक नया और अहम अपडेट आया सामने, 2026 में ही सिनेमा घरों में आएगी। इमरान हाशमी स्टार आवारापन 2 के सॉन्ग ये आवारापन को अरिजीत सिंह ने दी है आवाज, और रिलीज आज ही होगा इस सॉन्ग। धमाल 4 की रिलीज के 11वें दिन की कमाई के मामले में वर्ल्ड वाइड धमाल 11वें दिन लगभग 7 करोड़ का ग्लोबल कनेक्शन किया। ईरान पर अमेरिका का ताबड़तोड़ हमला, लगातार 10वीं रात अमेरिकी कार्रवाई, कई हमले किए गए। अमेरिकी सेना ने ईरान के इलाकों और द्वीपों को निशाना बनाया, ईरानी मीडिया प्रेस टीवी ने इसकी जानकारी दी। ईरानी मीडिया प्रेस टीवी के मुताबिक बंदर अब्बास, शाबहार, कोणार्क, सिडिक, शिराज और इस्फहान में धमाके सुने गए। प्रेस टीवी के मुताबिक सेंट्रल ईरान के इस्फहान में 2 धमाके हुए, इसके अलावा खुमेन शहर में एक औद्योगिक केंद्र पर भी हमला। ईरान पर हमले को लेकर अमेरिकी सेना का बयान, कमांडर इन चीफ के निर्देश पर यूएस सेना ने ईरान के खिलाफ हमले का एक नया दौर शुरू किया। यूएस सेना ने कहा कि इन हमलों का मकसद ईरान की उन सैन्य क्षमताओं को और कमजोर करना है जिनका इस्तेमाल हुर्मुज में कमर्शियल जहाजों पर हमले के लिए किया जाता है। ईरान ने एक बार फिर से जॉर्डन पर किया हमला, हमले को लेकर जॉर्डन की सेना ने बयान किया जारी, कहा 3 ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करके तबाह किया गया। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेसों को लेकर आईआरजीसी का बड़ा दबा, बहरीन और कुवैत में अमेरिकी के ठिकानों को बड़ा नुकसान हुआ। आईआरजीसी ने कहा कि बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाया, बहरीन के अल साखिर एयरपोर्ट पर अमेरिकी ड्रोन मरम्मत और रखरखाव शेड नष्ट किया गया। ईरान युद्ध पर न्यूयॉर्क टाइम्स से एक बड़ी खबर है, घायल सैनिकों की संख्या सार्वजनिक नहीं कर रहा अमेरिका, रिपोर्ट के मुताबिक हमलों में कई अमेरिकी सैनिक जख्मी हैं, कई हेलीकॉप्टर भी तबाह हुए हैं।

0: देश के पहाड़ी राज्यों में मॉनसून काल में सबसे खौफनाक तस्वीरें अब दिखाई देने लगी हैं। अलग अलग राज्यों में हालात ऐसे हैं कि बड़े पैमाने पर तबाही मची है। कई जाने जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भारी संकट है। विनाश की हाहाकारी तस्वीरें ये जम्मू कश्मीर से आए हैं, हिमाचल प्रदेश से आए हैं, उत्तराखंड से आए हैं। अब देखिए नदियों का रौद्र रूप देखिए, सड़कों पर आप देखिए फ्लैश फ्लड के चलते कितना नुकसान पहुंचा है और डरा देने वाली ये लहरें हैं। हिमाचल प्रदेश में भी उफनता नाला और उसमें कैसी जिंदगी अटकी हुई दिखाई दे रही है कि एकाएक जलस्तर इतना बढ़ गया कि लोगों को बचने का समय तक नहीं मिला। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बीते कई दिनों से अलग अलग हिस्सों में मूसलाधार बारिश हो रही है। जम्मू में, रियासी में, इसके साथ साथ राजौरी में बेहिसाब संकट है। कश्मीर के कारगिल, बांदीपोरा, गुरेज और दूसरे हिस्सों में हालात लगातार खराब हैं। लद्दाख के कारगिल में कल जबरदस्त नुकसान हुआ, तबाही हुई, वहां पर कई कारें सैलाब का शिकार बन गई।
1: सैलाब का ऐसा रौद रूप जो विनाश की नई तस्वीर बन गया। देखिए कैसे कारें बह रही हैं, बिल्कुल माचिस के डिब्बों की तरह। ऐसे सैलाबी संकट के बीच लोग बेबस हैं, लाचार हैं, अपनी आंखों के सामने सब कुछ तबाह होते देख रहे हैं, लेकिन कुदरत के इस कहर के आगे कुछ नहीं कर सकते। ये तस्वीरें करगिल से आई हैं। 20 जुलाई को वहां पहाड़ों पर आफत आई, ऐसी आफत जिसका अंदेशा वहां के लोगों को नहीं था। बादल फटे तो अचानक पहाड़ों पर सैलाब का ये कहर टूटा। करगिल से 19 किलोमीटर दूर कार किच्चू इलाके में बादल फटने की घटना हुई। उसके बाद ऊंचाई वाले इलाके से लहरें निचले इलाके की ओर दौड़ी और जो सामने आया उसे अपने साथ बहा ले गई। कारों के साथ ढेर सारा मलबा रिहायशी इलाकों की तरफ पहुंचा। ये सब देखकर स्थानीय लोगों के होश उड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। जब सैलाब का तांडव थमा तो काफी कुछ खत्म हो चुका था। चारों तरफ मलबा ही मलबा फैला था, पेड़ पौधे धराशायी हो चुके थे। तबाही के बीच स्थानीय लोगों ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। एक दूसरे का हाथ बटाते लोग प्रभावित इलाकों में पहुंचे, लेकिन मलबे में एक एक कदम आगे बढ़ाना उनके लिए मुश्किल भरा था। बादल फटने की घटना के बाद कई घरों में मलबा भर गया। वहां स्थानीय लोगों ने पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। खुद लोग घर के अंदर से मलबा निकालने में जुटे रहे।
2: सबसे भयानक तस्वीर बादल फटने की करगिल से सामने आई है, जहां पर बादल फटने के बाद फ्लश फ्लड्स ने कई सारे वाहनों, पेड़ पौधों और खेती की जमीन को अपने साथ ले लिया। लेकिन गनीमत यह रही कि इस फ्लश फ्लड में कोई व्यक्ति घायल नहीं हुआ।
1: तबाही का मंजर गुरेज में भी दिखा है। सोमवार की शाम तुलेल घाटी के जेडगाई गांव और गुरेज के अचूरा गांव में लगातार बादल फटने की घटनाएं हुई। देखिए कैसे सैलाब का कहर टूटा, कई घर इस तबाही की चपेट में आए। आंखों के सामने बर्बादी देखकर हर कोई हैरान रह गया। बादल फटने से प्रभावित इलाकों में कई घरों और कृषि भूमि को नुकसान पहुंचा है। फ्लैश फ्लड के बाद पानी के बहाव में अचानक बढ़ोतरी से नुकसान बढ़ने की चिंता है। एक हफ्ते में बांदीपुरा जिले में बादल फटने की 3 घटनाएं हो चुकी हैं। अब प्रशासन स्थानीय लोगों और पर्यटकों को आगाह कर रहा है कि नदियों, नालों और जोखिम वाले इलाकों से दूर रहें।
3: बादल फटने की वजह से एक जो यहाँ का नाला बहता है इस गांव के बीच से, वहाँ एक सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई, जिसकी वजह से यहाँ पे जो इर्द गिर्द जो रिहायशी मकान थे उनको नुकसान पहुँचा। उसके साथ साथ हमारा जो यहाँ पे BSNL टावर हमारा नस्ब किया गया था उसको नुकसान पहुँचा, और यहाँ पे इर्द गिर्द जो एग्रीकल्चर लैंड थी वो तकरीबन ऑलमोस्ट सब के सब डैमेज हो चुके हैं।
1: अब एक हाहाकारी तस्वीर किश्तवाड़ की देखिए। 20 जुलाई को वहां भी बेहिसाब संकट दिखा। मारवा नाले में अचानक बाढ़ आ गई। हालात ऐसे हो गए कि कीचड़ और भारी भरकम मलबा भी बहता दिखा। पुंछ में 19 जुलाई को जो तबाही मची उसमें कई लोगों की जान चली गई। 20 जुलाई को भी हालात नहीं सुधरे। इस मुश्किल घड़ी में लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए एसडीआरएफ की टीम प्रभावित इलाके में पहुंची। वहां अभी भी नदियों का उफान डराने वाला है। पुंछ के बुफलियास के सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में एसडीआरएफ की टीम ने जाकर पूरी जानकारी जुटाई और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। उधर जम्मू के राजौरी में भी हालात गंभीर बने हुए हैं। वहां भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। वहां हुई तबाही की तस्वीरें डराने वाली हैं। जो बर्बादी हुई उसके बाद के हालात होश उड़ाने वाले हैं। एक दिन पहले राजौरी में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना की संयुक्त राहत टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। नदी के पास से एक शव मिला। इस रेस्क्यू ऑपरेशन को हेलीकॉप्टर की मदद से अंजाम दिया गया। उधर रियासी इलाके में भी कई घंटे से भारी बारिश हो रही है। इससे सलाल बांध के जलाशय में पानी का स्तर काफी बढ़ गया है। इस वजह से अतिरिक्त पानी छोड़ने और जलाशय के स्तर को नियंत्रित करने के लिए सलाल बांध के सभी गेट खोल दिए गए हैं। भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने से चिनाब नदी का जल स्तर बढ़ा है। ऐसे हालात में निचले इलाकों और चिनाब के किनारे रहने वाले लोगों को आगाह किया गया है कि वो नदी के पास जाने से बचे। मीर फरीद के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर आज तक।
0: जम्मू कश्मीर में मौसम की मार की तस्वीरें आपने देखी। अब आपको हिमाचल प्रदेश के हालात दिखाते हैं। वहां पर भी कई हिस्सों में फ्लैश फ्लड आया, लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं हुई हैं। सड़क मचा, चंबा, मनाली, इनके कई हिस्से वहां तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं।

0: पहाड़ों पर कुदरत का कहर टूटा है, तबाही ऐसी हुई है कि जिंदगी खतरे में आ गई। हिमाचल की ये तस्वीरें चंबा की हैं। चंबा के होली इलाके में कलाह नाले में फ्लैश फ्लड आया तो हड़कंप मच गया।
1: पानी बहुत आ रहा है पीछे से।
0: लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पानी के तेज बहाव के बीच नाले में तीन मजदूर फंस गए। नाले का जलस्तर इतनी तेजी से बढ़ा कि किसी को भी वहां से सुरक्षित निकलने का वक्त नहीं मिला।
1: पानी बहुत आ रहा है पीछे से।
0: तीनों के फंसे होने की खबर मिलते ही स्थानीय लोग, प्रशासन मौके पर पहुंचे। उन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। कुछ देर बाद जब नाले का जलस्तर कम हुआ तो तीनों मजदूर सुरक्षित बाहर निकल पाए। अभी सबसे ज्यादा संकट चंबा में ही है। वहां पांगी इलाके में भी 11 मजदूर उफनते नाले में फंसे रहे। तीन अलग अलग इलाकों में बादल फटने की घटनाओं के बाद नालों में बाढ़ आ गई। उसी दौरान उदीन इलाके में उफनता नाला डराने लगा। उस वक्त 11 मनरेगा श्रमिक काम में जुटे थे, लेकिन नाले में ऐसा संकट आया कि सभी 4 घंटे तक वहीं फंसे रहे। बहुत मेहनत के बाद अन्य मजदूरों ने सीढ़ी लगाकर सभी 11 मजदूरों को सुरक्षित निकाला। आज सुबह चंबा के तीसा चंबा मार्ग पर भी बड़ा हादसा हुआ। कंदला नाला में अचानक बाढ़ आने से एक बस फंस गई। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से वहां फ्लैश फ्लड के हालात बने। इस संकट में चांजू से चंबा जा रही बस को आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। घटना के वक्त बस में कई यात्री सवार थे। खबर मिलते ही स्थानीय लोग और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, फिर सभी यात्रियों को बस से सुरक्षित निकाला।
2: अब वक्त चला है छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परो।
4: इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: Hexa Organic Radiance.
7: Looking to trade in your current vehicle? We'll get you the most for your trade. At Buyers Volkswagen, we've been putting customers first since 1897. And when you're ready to buy, our team will do whatever it takes to help you drive home in the Volkswagen that's right for you.
8: Drive home a new 26 Volkswagen Tiguan S, front-wheel drive, 229 for 36 months with $3,999 to its signing.
7: Experience the buyer's difference and see why generations of customers continue to choose us. Visit us at columbusvw.com or by the airport.
8: Offer ends 8/31/26. See dealer for details.
9: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo, flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd. To the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
10: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
11: If you love podcasts, you never want to be without your favorite shows. That's where TuneIn comes in. Here's a quick tip. You can listen anytime, even without the internet. Just open a podcast, tap the 3 dots next to an episode, and hit download. Simple as that. Now you're free to listen wherever you are. On a flight, underground, or totally offline. Your downloads are always waiting on your library page. From true crime to lifestyle to health and science, TuneIn makes it easy to take your podcasts anywhere.
12: Skin and nourished hair. Pure Ayurvedic beauty.
13: AU करेंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
14: AU
15: सोच बदलो और बैंक भी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आगे आगे
3: उधर
2: उधर
3: करेक्ट करेक्ट करेक।
4: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
5: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
3: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: मॉनसून सत्र में पेपर लीक पर भयंकर गतिरोध, लगातार दूसरे दिन संसद ठप। स्पीकर से मिलने के बाद राहुल ने कहा, युवाओं पर चर्चा नहीं तो किस काम की संसद। अखिलेश बोले, हिटलर जैसा रवैया। एनडीए की मीटिंग में पेपर लीक पर पीएम का संदेश, कहा पता चलते ही सरकार ने लिया एक्शन। री एग्जाम के बाद फौरन निकाला रिजल्ट, नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। हरियाणा सरकार से बातचीत के बाद मानी गई किसानों की मांगे, दिल्ली की ओर नहीं आएंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात को तैयार, भारत अमेरिका ट्रेड डील का विरोध कर रहे हैं किसान। सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा, बहराइच में बोले, पहले की सरकारें कब्रिस्तान और गाजी मियां के मेले तक रहीं सीमित, हमने करवाया महाराजा सुहेल देव का स्मारक का निर्माण। जम्मू कश्मीर में बादल फटने से भारी तबाही, गुरेज बडगाम में पहाड़ों से गिरा मलबा, सिक्किम में टनल धंसी, एंट्री गेट बंद होने से अंदर फंसे 10 मजदूरों की मौत, 20 अब भी फंसे।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से इन एसोसिएशन विद भारत की।
0: नमस्कार, मैं हूँ श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। सोनम वांगचुक के मामले में जो आ रही है बड़ी खबर, उससे हम शुरुआत करते हैं। सोनम वांगचुक को तुरंत मेदांता अस्पताल शिफ्ट करने के आदेश हैं। कल इस मामले में सुनवाई हुई थी। सोनम वांगचुक की पत्नी जो है वो इस बात को लेकर अदालत पहुंची थी कि वांगचुक को सफदरजंग से शिफ्ट किया जाए, और अब ये आदेश आए हैं कि सफदरजंग से मेदांता शिफ्ट किया जाए सोनम वांगचुक को। लगातार लगभग 22 दिनों से भूख हड़ताल पर सोनम वांगचुक रहे, हालांकि उन्हें जो प्रोटेस्ट की जगह है जंतर मंतर में, वहां से दिल्ली पुलिस द्वारा ले जाया गया और सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उन्होंने भूख हड़ताल को तोड़ा नहीं। इस समय हमारे संवाददाता संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या क्या है डिटेल्स इसकी संजय?
2: इसमें श्वेता, हाईकोर्ट ने, जिसमें चीफ जस्टिस की कोर्ट ने इस पूरे मामले की सुनवाई की और अभी जो विस्तार से ऑर्डर पास किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि सोनम वांगचुक को अस्पताल मेदांता मेडिसिटी में शिफ्ट किया जा सकता है, और वहां के मेडिकल डायरेक्टर को कोर्ट ने निर्देश दिया है कि वो एक विशेषज्ञ डॉक्टरों का पैनल बनाए, जो पैनल 24 घंटे उनकी निगरानी करे। कोर्ट ने अपने आदेश के पीछे हवाला दिया है एम्स के 3 डॉक्टरों के साथ जो कोर्ट में उपस्थित हुए थे, उनसे बातचीत की, रिपोर्ट देखी। उससे डॉक्टरों ने भी ये कहा कि उनको एहतियात बरतने की जरूरत है। ये अलग बात है कि इसमें सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने कहा कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं है, लेकिन विशेषज्ञ डॉक्टरों का, एम्स के डॉक्टरों का ये कहना है कि उन्हें अभी व्हाइट ब्लड सेल्स उनके ब्लड में कम है और प्लेटलेट्स कम है, जिससे उनपे इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज्यादा है। तो किसी भी आदमी, एक तो मिलने वालों की संख्या कम रखी जाए और दूसरा जो भी मिलने जाए वो पूरे एहतियात के साथ जाए, क्योंकि उस समय उनको मास्क भी लगाना आवश्यक है, टोपी भी पहनना है, कैप, और साथ ही उनको पूरी तरह से सैनिटाइज होकर जाना है। और एक और चीज ये सामने आ रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि जब सोनम वांगचुक ने लद्दाख में भूख हड़ताल की थी और उस समय हिंसा हुई तो उन्होंने अपना आंदोलन वापस ले लिया था, लेकिन यहाँ पर हिंसा हुई तो सोनम वांगचुक ने अपना आंदोलन आगे बढ़ा दिया है। हाँ। तो इसे लेकर भी चर्चा है, और फिलहाल कोर्ट ने ये कह दिया है कि उनकी पत्नी, सोनम वांगचुक की पत्नी, मेदांता मेडिसिटी हॉस्पिटल में अपने पति से मिल सकती है, लेकिन हाँ। वो डॉक्टरों की सलाह मानेंगे और बाकी उनसे मिलने वाले भी डॉक्टरों की सलाह मानेंगे। तो ये आगाह किया और उनसे कहा कि वो बिल्कुल प्रोटेक्शन गियर्स के साथ लोग मिल सकते हैं।
0: यानी कि अदालत ने इस बात को स्वीकारा है कि क्योंकि वहां पर एम्स के डॉक्टर्स भी थे जो ये सलाह दे रहे थे कि एहतियात बरतने की आवश्यकता है, और अब उन्हें तुरंत मेदांता अस्पताल में शिफ्ट करने की का आदेश जारी किया गया है। हम आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। राहुल गांधी प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचे हैं। प्रदर्शन, ये सरकार के विरुद्ध जो प्रदर्शन चल रहा है अयोध्या मामले पर, ये नारे लग रहे हैं जिसमें राहुल गांधी धरने पर पीएम आवास के पास राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा इस समय बैठे हैं। कांग्रेस पार्टी के तमाम जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सब सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे हैं और इस प्रदर्शन में धरने पर बैठे हैं राहुल और प्रियंका। हमारे साथ हमारे संवाददाता राहुल गौतम इस समय जुड़ गए हैं। राहुल, क्या ये प्रदर्शन है, क्या कांग्रेस नेताओं का प्रदर्शन है, प्रधानमंत्री आवास के निकट बताया जा रहा है?
3: देखिए, ये कांग्रेस का प्रदर्शन है। तमाम जो सांसद हैं वो पहले मल्लिकार्जुन खड़गे के घर के बाहर घर पर पहले जुटे और उसके बाद फिर पैदल ही उस तरफ जो घर है, प्रधानमंत्री का जो आवास है, उस तरफ गए हैं और वहां पर बाहर बैठकर फिलहाल नारेबाजी कर रहे हैं। दरअसल ये जो प्रदर्शन है वो सरकार से मांग की जा रही है कि जो कल जिस प्रकार से पुलिस एक्शन हुआ उसमें न्याय मिलना चाहिए छात्रों को, छात्रों की जो मांगे हैं उनको सरकार सुने। आज पार्लियामेंट के अंदर भी बहुत हंगामा देखने को मिला और अब आप कह सकते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है वो सड़क पर अब उतर गई है। पूरे मुद्दे को लेकर आप जैसे आप सुन के पा रहे हैं और नारेबाजी जिस तरह से हो रही है, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि सरकार को छात्रों की जो मांगे हैं उनको मानना पड़ेगा, उनके जो ग्रीवांसेस हैं वो सुनने पड़ेंगे, वरना जो जो आक्रोश है वो ठंडा नहीं होगा। और इसीलिए आप देखिए उसमें प्रियंका गांधी हैं, राहुल गांधी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, कीर्ति वेणुगोपाल हैं, दीपेंद्र हुड्डा है, यानी जो प्रमुख तौर से जो सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के वो वहां पर धरने पर बैठे हैं और कुल मिलाकर कोशिश है उनकी कि सरकार को इस पूरे मुद्दे पर घेरा जाए।
0: तो कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ राहुल ये मांगे सदन में भी उठ रही हैं जिस कारण दो दिन से संसद वहां पर चली नहीं है। हम अयोध्या मामले पे भी अभी नारेबाजी देख रहे थे नेताओं की और अब ये जो कल का प्रदर्शन था जंतर मंतर से निकलकर जो संसद तक पहुंचने वाला प्रदर्शन था जिसकी मुख्य मांगे कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से आ जाती है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, ये इस्तीफे की मांग भी तो संसद के भीतर भी चल रही है राहुल।
3: बिल्कुल बिल्कुल, ये जो मांग है कि इस्तीफा हो एचआरडी मिनिस्टर का, ये लगातार मांग की जा रही है विपक्ष के द्वारा। राहुल गांधी ने कल एक वीडियो भी ट्वीट किया था उसमें, इसके अलावा आप जानती है कि ये कार्यक्रम भी कांग्रेस पार्टी चला रही है छात्रों की गूंज, तो नीट का मुद्दा, पेपर लीक का मुद्दा, एचआरडी मंत्री का इस्तीफा, ये तमाम जो मुद्दे हैं उनको कांग्रेस लगातार उठा रही है। उनको लगता है, उनका मानना है कि जो छात्र हैं उनमें आक्रोश है, उनमें गुस्सा भरा हुआ है और उनको इस पूरे मामले पर सरकार को घेरने का मौका मिला है। और इसीलिए आप देखिए बहुत कम ऐसा होता है उमन कि जो नेता विपक्ष है, यानी दो नेता विपक्ष राज्यसभा और लोकसभा दोनों चले जाए प्रधानमंत्री के आवास के बाहर और फिर वहां पर इस प्रकार से नारेबाजी और जो तस्वीरें हैं जाहिर है ये दर्शाता है कि कांग्रेस को कम से कम ये लगता है कि एक बड़ा मुद्दा है लोक जनता के लिए, छात्रों के लिए। कल काफी बड़ा आंदोलन हुआ तो ऐसे में वो चाहती है कि वो छात्रों के साथ में दिखे, इस आंदोलन के साथ में दिखे और इसीलिए आप देखिए ये पूरी कवायद की जा रही है।
0: और इस प्रोटेस्ट का प्लान क्या है, धरने पर बैठे हैं लेकिन क्या कोई समय सीमा सोची है, क्या इस जगह पर वो आगे प्रदर्शन करेंगे, क्या क्या है कांग्रेस पार्टी की रणनीति आगे?
3: देखिए अभी तो जो बताया गया है कि प्रदर्शन अभी जारी है, जाहिर है क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न है, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे उसके अलावा तमाम सांसद हैं, प्रधानमंत्री का घर का की अपनी सुरक्षा कंसर्न है, तो जाहिर है इनको हटाने की कोशिश होगी। मान कोई रीच आउट किया जाएगा कि आप देखिए इस तरीके से जो सिक्योरिटी थ्रेट भी बढ़ता है, तो तमाम जो चीजें हैं उनको ध्यान में रखते हुए कांग्रेस इस प्रोटेस्ट को अपने आगे बढ़ाएगी। लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी ये मैसेज देना चाह रही है कि वो इस मुद्दे को लेकर बहुत बहुत गंभीर है, उनके लिए प्रायोरिटी है इस वक्त की हम छात्रों के साथ दिखें, हम जो ये प्रोटेस्ट है उसके साथ में दिखें और इसीलिए फिलहाल जो है ये नारेबाजी और ये तमाम जो विजुअल्स आप देख पा रहे हैं, आप कह सकते हैं कि धीरे धीरे जो कांग्रेस है वो तापमान बढ़ाने की कोशिश कर रही है इस पूरे मामले के ऊपर कि सरकार को इस पर फुट पर घेरा जाए, भेजा जाए ताकि इस पूरे मामले में कार्रवाई हो और जैसे कि वो मांग कर रहे हैं छात्रों को इंसाफ मिल सके।
0: तो हालांकि कई बार संसद सत्र जब चलता रहता है तो संसद परिसर में हम सांसदों का विरोध प्रदर्शन देखते हैं, पर संसद सत्र एक तरफ सोमवार से शुरू हुआ और उसके पैरेलल एक प्रोटेस्ट कम देखने के लिए मिलता है जब सांसद बाहर निकलकर प्रधानमंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन करते हैं। राहुल,
3: बिल्कुल देखिए, ये बहुत ही आप कह सकते हैं रेयर साइट है। बहुत ही कम ऐसे मौके आते हैं जब दो दो नेता विपक्ष यानी मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी दोनों स्वयं एक एक एक तरीके से एक डेलीगेशन को लीड करके प्रधानमंत्री आवास तक पहुंच गए। जाहिर है उनकी कोशिश होगी कि वो प्रधानमंत्री से मिलें इस पूरे मुद्दे पर। वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री और सरकार इस पूरे मामले पर अपनी चुप्पी तोड़े। यहाँ तक कि खुद राहुल गांधी ने और प्रियंका गांधी ने तो ये भी मांग की थी कि सरकार की तरफ से माफी मांगी जाए जो कल जिस प्रकार से पुलिस क्रैकडाउन हुआ छात्रों के ऊपर। तो देखिए, ये पॉलिटिकल मैसेजिंग है, आप कह सकते हैं ये ऑप्टिक्स है कांग्रेस की तरफ से, जिसमें वो ये बताना चाह रहे हैं कि मजबूती से छात्रों के साथ खड़े हैं, जो जो जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो मांगे हैं उनको हम सपोर्ट करते हैं। और जाहिर है वो एक तरीके से सरकार को कटघरे में भी खड़ा कर रहे हैं कि देखिए अभी तक जो भी आपने एक्शन लिया है इस पूरे मामले के अंदर वो पूरा नहीं है, वो इनफ नहीं है, आपको और एक्शन लेना पड़ेगा। मात्र पेपर को आपने रिकनेक्ट करा दिया, दोबारा करा देने से आपकी जिम्मेदारी नहीं खत्म होती है, आपको अकाउंटेबल होना होगा। जो जो जो अफसरान है जिनकी गलती है उनको आपको सजा देनी पड़ेगी और एक फूल प्रूफ कह सकते हैं सिस्टम बनाना पड़ेगा ताकि जो छात्र हैं उनका भरोसा वापस सिस्टम के अंदर आ सके।
0: क्या संसद में इस बात पर चर्चा आगे संभव है, क्योंकि पार्लियामेंट सेशन होने के नाते और कांग्रेस की तरफ से ये कहा भी जा रहा है, विपक्ष की बाकी पार्टियों की तरफ से भी कहा जा रहा है कि वो नीट, कम से कम नीट पेपर लीक का जो मुद्दा था और शिक्षा मंत्री को लेकर जो मांग है इस्तीफे की, उन सारी चीजों को संसद में भी उठाना चाह रहे थे।
3: देखिए, आज भी राहुल गांधी तमाम जो विपक्ष के नेता हैं उनको अपने साथ में लेकर गए लोकसभा स्पीकर के ऑफिस के अंदर। उन्होंने वहां पर भी ये मांग अपनी दोहराई कि हम चाहते हैं कि सरकार इस पूरे मामले पर चर्चा कराए, सरकार इस पर जवाब दे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी मांग दोहराई कि जो एचआरडी मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान उनका इस्तीफा हो। तो कुल मिलाकर विपक्ष तो ये लगातार मांग कर ही रहा है और सेशन शुरू होने से पहले भी ये बता दिया गया था कि हमारी ये मांगे हैं कि आप नीट पर चर्चा कराइए और नीट में अभी तक क्या किया गया है और अभी तक क्या होना बाकी है उसको लेकर आप छात्रों को और देश भर को इन्फॉर्म करिए। तो कुल मिलाकर देखिए विपक्ष को ये लगता है या उन्होंने ये सेंस कर लिया है कि सरकार इस मामले पर बैकफुट पर है और क्योंकि बैकफुट पर है तो अब उन्हें और पीछे धकेला जाए और साथ में मजबूती के साथ खड़ा हो जाए छात्रों के साथ में, क्योंकि उनको कम से कम कांग्रेस का ऐसा मानना है कि पूरे देश भर में छात्र आंदोलित है, युवा जो है वो नाराज है सरकार से। तो ऐसे में अगर साथ में खड़ी होती है पार्टी तो सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है, उसके लिए मुश्किलें पैदा की जा सकती हैं। इसीलिए आप देखिए, चाहे मीडिया के अंदर बयान हो, चाहे वीडियो मैसेज रिलीज करना हो, चाहे स्पीकर से मुलाकात करनी हो, अब ये मार्च, तो कुल मिलाकर जितने भी टैक्टिक्स अवेलेबल हैं, जितने भी आप कह सकती हैं रास्ते हैं, वो कांग्रेस पार्टी अपना रही है ये बताने के लिए कि देखिए हम आपके साथ खड़े हैं, आपकी जो मांगे हैं वो जायज हैं और हम सरकार पर दबाव बना रहे हैं।
0: क्या कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा वो ले पाएंगे?
3: देखिए, अभी तो उनको ऐसा लगता है क्योंकि सरकार के पास अभी बहुत कुछ ऑफर करने के लिए नहीं है छात्रों के लिए और जो भी वो सरकार ने अभी तक कदम उठाए हैं उनसे छात्र अभी तक सेटिस्फाई नहीं है। ऐसे में उनको लगता है कि शायद सरकार प्रेशर में आकर एचआरडी मिनिस्टर का इस्तीफा ले सकती है और इसीलिए आप देखिए इस पूरे से पूरे मामले में प्रधानमंत्री को और पूरी सरकार को आप कह सकते हैं घसीटने की कोशिश हो रही है, उनको ड्रैग करने की कोशिश हो रही है कि ताकि जो दबाव है वो सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ जाए और फाइनली कुछ एक्शन हो इस पूरे मामले के अंदर और किसी ना किसी की आप कह सकते हैं कि कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए। तो कुल मिलाकर कांग्रेस को ऐसा लगता है कि फिलहाल सरकार जो है वो इस पूरे मामले के अंदर एक तरीके से फंसी हुई है और उसको उसके पास कोई ज्यादा रास्ते अवेलेबल नहीं है और इसीलिए आप देखिए इसलिए दबाव की राजनीति की जा रही है और तमाम जो चीजें एक पॉलिटिकल पार्टी के पास अवेलेबल होती हैं वो तमाम चीजों का इस्तेमाल करने की कोशिश कोशिश की जा रही है। ये बड़े अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है जिस प्रकार से जो जो दोनों नेता नेता विपक्ष जाकर धरने पर बैठ जाना, तमाम इतने बड़े सांसद तमाम लोग पहुंच जाना, ये एक अनप्रेसिडेंटेड है। और जाहिर है वो जानते हैं इससे कितना ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा सरकार के ऊपर, और फाइनली उनको लगता है कि कुछ एक्शन भी होगा इस मामले में।
0: कुल मिलाकर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने जब से पहले अयोध्या साथ में नीट ये दोनों मामले जब सामने रहे उस समय से पूरा विपक्ष आक्रामक रहा है कि सरकार को एक्शन लेने के लिए मजबूर किया जाए, और राहुल जिस तरीके से हम कांग्रेस पार्टी को अब तक देख रहे हैं, या फिर जो कल का प्रदर्शन हुआ कांग्रेस जनता पार्टी का, उससे पहले भी जो छात्रों के साथ संवाद का राहुल गांधी का कार्यक्रम इस समय चलता रहा, हम कुल मिला के ये कह सकते हैं कि एक तरफ बीजेपी आक्रामक रहती है राहुल गांधी के विरुद्ध, और कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी उम्र को लेकर और एक युवा स्टार्टअप को लेकर एक बड़ा कटाक्ष किया था जिस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने रिएक्ट किया, लेकिन क्या ये एक कोशिश भी है ये दिखाने की कि कांग्रेस पार्टी उन सभी आरोपों से बेपरवाह अपने प्रदर्शन को और सरकार पर दबाव को जारी रखेगी?
3: नो हाँ
0: बंधे हुए हाथों के साथ आप मल्लिकार्जुन खड़गे की भी तस्वीर देख सकते हैं। राहुल गांधी सबको ये हाथों को बांधने के लिए ये दे रहे हैं, हालांकि वहां पर शायद दिल्ली पुलिस की मौजूदगी हो गई है। ये अति संवेदनशील एरिया है और यहां पर प्रदर्शन की इजाजत नहीं होती है, लेकिन राजनीतिक रूप में एक लक्ष्य भी यह हो जाता है साथ में कि वहां से अगर हटाया जाता है तो आवाज दबाने की बात भी आती है। बहरहाल अभी पुलिस की यह कार्रवाई वहां पर शुरू हो रही है, लेकिन राहुल गांधी हाथों को बांधने के लिए एक कड़ी जैसी चीज वो कुछ सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं को बांट रहे हैं। राहुल गौतम आपको आवाज आ रही है?
3: आप देखिए, मैं चाहूंगा मेरे सहयोगी अनुराग आपको दिखाए, ये राहुल गांधी खड़े हैं और तमाम जो नेता है कांग्रेस पार्टी के वो खड़े हैं, और सब लोग अभी अपने हाथों पर एक तरीके से हैंडकफ या हथकड़ी लगा रहे हैं। आप देखिए राहुल गांधी को, राहुल गांधी तमाम सांसदों को अपना हाथ बांधने के लिए एक तरह की रस्सी दे रहे हैं प्लास्टिक की, ताकि तमाम लोग इसको पहने। और आप देखिए
0: आपकी आवाज कुछ कटकट कर आ रही है। अनमोल बाली भी वहीं से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनमोल आपको आवाज आ रही है तो दिखाएं वहां की तस्वीरें। राहुल गांधी हाथों को बांधने के लिए एक सूत्र सब में बांट रहे हैं, क्या चल रहा है?
4: चेता इस समय 7 लेन मार्ग पे खड़ा हूँ और आपको मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि इस समय कैसे जो पुलिस है यहाँ पर, जो कांग्रेस नेता है उनको डिटेन करने की कोशिश कर रही है। चाहे जयराम रमेश की बात की जाए, राहुल गांधी की बात की जाए, प्रियंका गांधी की बात की जाए, और कांग्रेस के और भी जो आला नेता है यहाँ पर पहुंचे हैं। हाथ में उन्होंने एक प्लास्टिक का बैंड पकड़ रखा है, कहीं ना कहीं एक सांकेतिक उनका धरना प्रदर्शन है, क्योंकि कल दिल्ली में देखा गया था कि कांग्रेस पार्टी के धरना प्रदर्शन को लेकर देखा गया था कि बहुत से छात्रों को पीटा गया, उसको लेकर राहुल गांधी अस्पताल भी उनको मिलने जाते हैं। उसी बीच प्रधानमंत्री के घर के पास कांग्रेस पार्टी का जो धरना प्रदर्शन, उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कैसे हाथ जो है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है उनके हाथ है वो बांध रखे, अगर आप देख सके विजुअल्स में कि कैसे जो हाथ है वो बांध लिए हैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, तो कहीं ना कहीं उनका ये सांकेतिक धरना प्रदर्शन पर। वही मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि और भी जो कांग्रेस पार्टी के नेता थे उनको यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने डिटेन करना शुरू कर लिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सेक्टर 7 लोकल लैंडमार्क हाई प्रोफाइल इलाका, प्रधानमंत्री मोदी के घर के पास, और खुद नेता विपक्ष राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचते हैं, साथ ही प्रियंका गांधी भी यहाँ पर पहुंचती है, और कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं, चाहे जयराम रमेश की बात की जाए, और भी सुखजिंदर रंधावा आप देख सकते हैं मेंबर पार्लियामेंट, और भी जो मेंबर पार्लियामेंट है चरणजीत सिंह चन्नी, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी भी यहां पर हैं, सुखजिंदर रंधावा भी यहां पर है जो पंजाब के मेंबर पार्लियामेंट है, इनको भी यहां पर डिटेन करने की जो दिल्ली पुलिस है कोशिश कर रही है। आप देख सकते हैं कि हाई ड्रामा, हाई वोल्टेज ड्रामा यहाँ पर श्वेता आप देख सकती हैं तस्वीरों में। पर वहीं दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनको डिटेन करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कांग्रेस जनता पार्टी के प्रोटेस्ट को लेकर देखा जा रहा था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पार्लियामेंट में इस चीज को लेकर आवाज उठाई, राहुल गांधी ने भी आवाज उठाई उसको लेकर। अब जो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी से जुड़े और संगठन है वो सड़कों पर उतर आए हैं और अभी प्रधानमंत्री मोदी के घर के पास धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। श्वेता,
0: कितनी दूरी पर होंगे ये अनमोल, जो प्रदर्शन स्थल है वो कितनी दूरी पर है प्रधानमंत्री के आवास से?
4: कुछ ही, अगर मैं बताऊं 100-200 मीटर की दूरी से ही, अगर आपको बताऊं प्रधानमंत्री का निवास है, सेवन लोक कल्याण मार्ग का ये इलाका है, बहुत हाई प्रोफाइल श्वेता इलाका माना जाता है, बहुत हाई सिक्योरिटी रहती है। एकदम सडन ये प्रोटेस्ट था, इससे पहले मीडिया को या किसी को भी इस प्रोटेस्ट के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई। एकदम से देखा जाता है कि नेता विपक्ष राहुल गांधी यहां पर पहुंचते हैं, प्रियंका गांधी यहां पर पहुंचती हैं और एक ही कॉल पर देखा जाता है 10 से 15 मिनट में और भी जो अन्य कांग्रेस पार्टी से सांसद हैं देश भर से जो सांसद है यहां पर पहुंचना शुरू कर देते हैं। NSY यूथ कांग्रेस को भी फोन चले जाते हैं, उनके प्रेसिडेंट को भी, कि आप यहां पर पहुंचे हो। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा चेता की, इस समय कैसे यहां पर धक्का मुक्की चल रही है। तो युवा कांग्रेस और NSY के कार्यकर्ता उनको डिटेन करना यहां पर शुरू कर दिया। पर वहीं दूसरी तरफ मैं तस्वीर आपको ये भी दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं कि सांकेतिक धरना प्रदर्शन है, मेंबर पार्लियामेंट को यहां पर कहीं ना कहीं डिटेन करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। मेंबर पार्लियामेंट अलग अलग क्षेत्रों से जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े यहां पर पहुंचे हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि हाथ बांधे हुए हैं, आप देख सकती है तस्वीरें, आप देखिए गुरजीत औजला जो पंजाब से अमृतसर से सांसद है और मेंबर पार्लियामेंट है, तुम सब ने अपने एक दूसरे ने जो हाथ है वो बांध रखे हैं। तस्वीरें आप देख सकती होंगी कि कैसे हाथ बांध कर ये सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। लोग सर की कांग्रेस बात कर रही है डेमोक्रेसी व्हेन वर्सेस आर बीटन, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी और जो कल कांग्रेस जनता पार्टी में हमने धरना प्रदर्शन देखा, कांग्रेस जनता पार्टी में जो लोगों को पीटा गया उसके विरोध में धरना प्रदर्शन, वही तस्वीरें आप देख सकती है श्वेता। कैसे यहाँ पर देखिए कैसे यहाँ पर दिल्ली पुलिस का एक्शन जो है शुरू हो चुका है, दिल्ली पुलिस के जो जवान है भारी संख्या में यहाँ पर पहुंच गए और देखिए यहाँ पर डिटेन किया जा रहा है। देखिए ये डिटेन किया जा रहा है कांग्रेस नेताओं, कैसे कैसे

0: तस्वीरों में क्या कहना चाहेंगे आप? देखा गया है मोदी की,
1: ये लोग हिंसा है, हम तो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऐसा फेंकना क्या? नो डेमोक्रेसी।
0: देखिए श्वेता तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे जो कांग्रेस के नेता है उनको यहाँ से डिटेन किया है, कई नेताओं को फेंका भी गया और सीधा सीधा नेताओं का कहना है कि कोई डेमोक्रेसी नहीं यहाँ पर रही। एक और नेता है, क्या कहना चाहेंगी मैम?
2: ये लोकतंत्र की हत्या है, पीसफुली जो लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको ऐसे पकड़ कर ले जाया जा रहा है। हमारे नेता विपक्ष और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष
0: श्वेता, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मार की, आप देख सकते हैं हाई वोल्टेज ड्रामा, दिल्ली पुलिस का यहाँ जो है वो चल रहा है, पंजाब से भी मेंबर पार्लियामेंट जो है वो लाए गए। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि एक और मेंबर पार्लियामेंट चरणजीत सिंह चन्नी को यहाँ पर डिटेन कर लिया गया है। श्वेता तस्वीरों में देख सकती है कि चरणजीत सिंह चन्नी को यहाँ दिल्ली पुलिस के जो जवान है उन्होंने उठा लिया है। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ज्यादा जो जवान है उन्होंने यहाँ उठा रखा है उनको। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी को डिटेन कर रखा है। तो यहीं से आप समझ गए होंगे, यहाँ दिखाना चाहूंगा कि दिल्ली पुलिस की अतिरिक्त बल भी यहाँ पर श्वेता पहुंच गए हैं। तस्वीरें तो आप मेरे साथ देख रही हैं, लोक कल्याण मार्ग की मैं दिखा रहा हूँ।
3: छात्रों की सुन रही
4: है, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद।
5: की आखिर इस देश की हो रही है, बच्चे कल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सर इसी लोग सड़क पर उतरे हैं,
6: ये गुंडागर्दी है
7: जी। सर
6: ऊपर
7: अंदर हो जाओ
8: सर, आपको डिटेन किया गया। चलो सर अंदर बैठ के
9: बात कर, बात तो करने दो, अंग्रेजों का राज है।
8: नहीं नहीं सर,
9: कमाल है, आप तो अंग्रेजों से भी आगे बढ़ गए हैं। वो भी की है, मोदी की है, विद्यार्थी प्रगति पर उतर आए हैं।
10: साफ तौर से स्वास्थ्य यादव को भी ले जाया जा रहा है, गिरफ्तारी करो आप।
11: मौसमी सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मौसमी बताएं क्या चल रहा है इस समय?
12: देखिए श्वेता जो तस्वीर आप पीछे हमारे देख रहे हैं, ये तस्वीर है तमाम कांग्रेस सांसद यहाँ पे तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चली चलेगी के नारे लगा रहे हैं, और तमाम राहुल गांधी समेत तमाम नेताओं को इन बसों में भर के डिटेन किया जा रहा है। पूरा प्रधानमंत्री आवास के बाहर जो गोल चक्कर है वो कुछ इस तरीके से श्वेता जाम हो गया है, और यहाँ पे कैमरों के बीच में आप देख रहे हैं किस तरह से अमर सिंह जो सांसद है उनको भी डिटेन किया गया, तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता उस बस में भरे हुए हैं, और सांसद अभी भी खड़े हुए हैं जो कि लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, और राज्यसभा और लोकसभा के सांसद राहुल गांधी खड़गे समेत संसद से लेके अब ये पूरा प्रदर्शन श्वेता सड़क पर आ गया है। राहुल गांधी ने संसद से निकलते वक्त कहा था कि वो छात्रों से मिलने जाएंगे, उसके बाद वो आरे मिल जाते हैं, और एकाएक एक तरीके से आप कह लीजिए कि एकदम से ये प्रोटेस्ट जो है फ्लैश प्रोटेस्ट कांग्रेस के सांसदों द्वारा किया गया है, जिसमें कल तमाम कार्यकर्ता भी अब आते हुए नजर आ रहे हैं, और सबसे पहले हमने देखा कि कितने सारे कांग्रेस के सांसद यहाँ पे लगातार नारेबाजी कर रहे थे, और ये वो वक्त है जब दिल्ली पुलिस ने कल काफी बड़ा विरोध का सामना किया है, तमाम प्रदर्शनकारी सड़कों पर थे, पर शायद दिल्ली पुलिस ने भी ये कल्पना नहीं की होगी कि प्रधानमंत्री आवास पीछे आप देखिए तो प्रधानमंत्री आवास है और उसका जो गेट है उसके सामने बैरिकेड के सामने राहुल गांधी नेता विपक्ष लोकसभा नेता विपक्ष राज्यसभा खड़गे जिनका जन्मदिन है वो खड़े हुए हैं, और कहा गया सारे सांसदों को ये बताया नहीं गया कि उनको क्या करना है। दरअसल आज है खड़गे साहब का जन्मदिन होता है श्वेता, और उस जन्मदिन के उपलक्ष्य पर तमाम सांसदों को बोला गया 10 राजा जी मार्ग जो यहाँ से बहुत दूर नहीं है वहां पे आने को बोला गया, और उसके बाद एक तरीके से पूरा ये फ्लैश प्रोटेस्ट जो है वो किया गया। कौन कौन है वहाँ पे मौजूद? अभी सारे नेता है, सारे लोकसभा और राज्यसभा के नेता अभी वहीं पे आप तस्वीरें भी देख रही है, कि वहाँ पे मौजूद है।

0: टुकड़ी लगातार यहाँ पे बढ़ती चली जा रही है।
1: ड्रोन पर दिल्ली पुलिस का एक्शन था, उसके विरोध में आज कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी खुद आप पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, चरणजीत सिंह चन्नी को डिटेन कर लिया गया है और कांग्रेस का बड़ा एक्शन।
2: बीजेपी सरकार
1: दिल्ली पुलिस ने अब डिटेंशन का जो की कार्रवाई है उसको शुरू कर दिया है। एक करके कांग्रेस के सांसदों को लेकर आया जा रहा है और उनको डिटेन किया जा रहा है। ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि राहुल गांधी अपने सांसदों को लेकर सीधे यहां पर पहुंचे थे प्रधानमंत्री के आवास के पास और धरने पर बैठ गए थे। उसके बाद एक एक करके पुलिस की गाड़ियां आ रही हैं और धीरे धीरे करके सांसदों को डिटेन करके यहां लाया जा रहा है। पंजाब कांग्रेस के सांसद हैं इनको डिटेन करके बस में लाया गया। चरणजीत सिंह चन्नी को पहले ही डिटेन कर लिया गया है। कल जिस तरह से छात्रों पर दिल्ली पुलिस का एक्शन था उसके विरोध में आज कांग्रेस पार्टी के सांसद और राहुल गांधी खुद पहुंचे हैं प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। चरणजीत सिंह चन्नी को डिटेन कर लिया गया है और कांग्रेस का बड़ा एक्शन।
2: बीजेपी सरकार
1: दिल्ली पुलिस ने अब डिटेंशन का जो की कार्रवाई है उसको शुरू कर दिया है। एक करके कांग्रेस के सांसदों को
3: आपको ताजा तस्वीरें इस समय हम दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लोक कल्याण मार्ग निवास के निकट नेता विपक्ष राहुल गांधी, वायनाड से कांग्रेस पार्टी की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं का ये धरना प्रदर्शन इस समय चल रहा है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी दिल्ली से। धरने पर बैठे हैं राहुल और प्रियंका, मांग हो रही है प्रधानमंत्री के इस्तीफे की। हालांकि हम आपको ये भी बता दें कि पुलिस ने अभी अब से थोड़ी देर पहले कुछ नेताओं को और कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया है। और मेरे सहयोगी अनमोल बाली ताजा जानकारी के साथ इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनमोल, क्या यहां पर धरने की प्रदर्शन की इजाजत थी या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास से सीधे ये पहुंचे प्रदर्शन के लिए और अब वहां पर पुलिस बड़ी संख्या में पहुंची हुई है?
4: गौरव, देखा गया कि कांग्रेस पार्टी का फ्लैश प्रोटेस्ट था, किसी को नहीं बताया जाता कि कांग्रेस पार्टी के खुद नेता पक्ष राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट और अन्य जो मेंबर पार्लियामेंट यहां सेवन लोक कल्याण मार्ग जो एक हाई प्रोफाइल एरिया यहां पर पहुंचेंगे, अपना सांकेतिक धरना प्रदर्शन करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करेंगे और साथ उनके मेंबर पार्लियामेंट भी थे। और देखा जाता कुछ मिनटों में अन्य जो और कांग्रेस वर्कर सेंट्रल दिल्ली में थे, आसपास के जो इलाके में थे, यहां पर भारी संख्या में पहुंच जाते हैं, साथ उनके साथ जो मेंबर पार्लियामेंट है वो भी पहुंच जाते हैं। और देखते देखते दिल्ली पुलिस के जवान यहां पर पैरामिलिट्री के जो जवान है यहां पर आ जाते हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, इस समय आप देख सकते हैं कि कैसे जो अतिरिक्त बल है यहां पर डिटेन करने के लिए कांग्रेस नेताओं को यहां पर बुलाया गया। तस्वीरें आप खास पर देख सकते हैं सेवन लोक कल्याण मार्ग की कुछ ही मीटर्स दूरी पर ये इलाका है प्रधानमंत्री के निवास से, हाई सिक्योरिटी वाला इलाका है जहां एकदम देखा जाता है नेता पक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सब पहुंच जाते हैं धरना प्रदर्शन करने के लिए। अगर आपको मैं दिखाऊं कि आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कैसे यहां पर एक एक कर जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता उनको डिटेन कर लिया गया है, चरणजीत चन्नी, सुखजिंदर रावा को डिटेन कर लिया गया, खुद राहुल गांधी यहां पर पहुंचे। मैं आपको दिखाना चाहूंगा तस्वीरों में कि आप देख सकते हैं कि गौरव कैसे यहां पर भीड़ हो रखी है। आप देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी नेता, मीडिया कर्मी और दिल्ली पुलिस के जवानों का जो जमावड़ा है और अभी एक जद्दोजहद चल रही है, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, मेंबर पार्लियामेंट को यहां से डिटेन करने के लिए। तस्वीरें आप देख सकते हैं हाई प्रोफाइल हाई सिक्योरिटी वाला इलाका है सेवन लोक कल्याण मार्ग, कुछ ही मीटर की दूरी पर प्रधानमंत्री मोदी का यहां पर निवास। और कल कांग्रेस जनता पार्टी का जो धरना प्रदर्शन हुआ उसको लेकर कांग्रेस आज सुबह से ही देखा जा रही है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुखर हो रखी है कहीं ना कहीं। तो आप देख में गौरव की कैसे यहाँ पर इस समय जो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है उनको ट्रेन करने की यहाँ पर गौरव कोशिश की जा रही है और कहीं ना कहीं ये जो देखिए
3: गौरव पीछे से लोगों को जबरदस्ती वहां से उठाने की कोशिश भी की जा रही है नेताओं को। क्या पुलिस को बताया था कांग्रेस पार्टी ने कि इस तरह का धरना करेंगे या एकाएक ये फ्लैश प्रोटेस्ट है कांग्रेस पार्टी का जैसा बता रहे, पहली बात। दूसरी बात, मांग इनकी क्या क्या है प्रधानमंत्री के इस्तीफे और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के अलावा, ये किस तरह से अपने धरने को आगे बढ़ाने की बात कर रही है कांग्रेस?
4: जैसे कि आप जानते हैं फ्लैश प्रोटेस्ट था, पहले किसी को नहीं बताया गया, ना कि मीडिया को भी मालूम नहीं था कि खुद नेता विपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यहां पर पहुंचेंगे और कांग्रेस पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट यहां पहुंचेंगे। कांग्रेस के और जो अन्य नेता है उनको भी इस बात का नहीं पता था, पर एकदम जैसे देखा जाता है कि अभी से कुछ मिनटों पहले राहुल गांधी यहां पर पहुंचते हैं, एक विजुअल वायरल होता है जिसको देखकर और मेंबर पार्लियामेंट भी यहां पर पहुंचना शुरू करते हैं और भी जो अन्य कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है यहां पर पहुंचते हैं। हालांकि पुलिस से कोई परमिशन नहीं ली गई होगी क्योंकि 7 लोक कल्याण मार्ग एक बड़ा हाई प्रोफाइल इलाका है प्रधानमंत्री मोदी का घर, यहां से कुछ ही मीटर्स की दूरी पर है। वही मैं आपको ये भी बताऊं गौरव कि ये जो प्रदर्शनकारी हैं कांग्रेस पार्टी के जो मेंबर पार्लियामेंट है यहां पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं, खुद राहुल गांधी है, उनकी बड़ी मांग ये है कि एक तो प्रधानमंत्री मोदी इस्तीफा दे, दूसरा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग, जो पहले से ही छात्रों की गूंज कांग्रेस पार्टी की जो एक मुहिम चल रही है उसको लेकर कांग्रेस पार्टी इतने दिनों से कर रही है। पर वही तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कैसे यहाँ पर जो अभी कार्यकर्ता है उनको डिटेन किया जा रहा है और जो अतिरिक्त बल है उसको यहाँ पर गौरव जो है बुलाया जा रहा है। साथ ही शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग भी कांग्रेस पार्टी गौरव कर रही है।
3: अच्छा ये बताइए कि अभी तक जो आंदोलन चल रहा था वो कॉकरोच जनता पार्टी का चल रहा था, उसमें आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता, दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, सांसद संजय सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना, कई बड़े नेता कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में जुड़े। क्या कांग्रेस को ये लग रहा है कि उनके जमीन पैर के नीचे से जमीन खिसक रही है, इसीलिए कांग्रेस ने भी एक बड़ा आंदोलन और एक अलग आंदोलन किया इस समय?
4: गौरव जैसे कि आप जानते हैं कांग्रेस पार्टी की एक मुहिम चल रही थी छात्रों की गूंज एक तरफ, तो कांग्रेस जनता पार्टी का प्रोटेस्ट था जिसमें आम आदमी पार्टी का कहीं ना कहीं समर्थन देखने को मिला क्योंकि खुद जो दीपके हैं कहीं किसी समय आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे और आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं का आना जाना देखने को मिला। और जब देखा गया कि सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठते हैं तो और भी जो विपक्षी दल के नेता वहां आते जाते दिखे। पर इसी बीच कांग्रेस पार्टी का एक पैरेलल जो प्रदर्शन देश भर में चला NSY और यूथ कांग्रेस को, जिसमें उन्होंने जिम्मेदारी दी छात्रों की गूंज, वो चल रहा था। पर जैसे ही कल देखा गया कि बच्चों के साथ मारपीट हुई, दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगे, बच्चों को मारा पीटा गया और आज सुबह देखा गया कि कांग्रेस के जो नेता विपक्ष है राहुल गांधी खुद अस्पताल पहुंचे बच्चों से मिलने के लिए, तो कहीं ना कहीं जो इतने दिन से कांग्रेस पार्टी न्यूट्रल थी कांकरेज जनता पार्टी को लेकर, कहीं ना कहीं आज कांकरेज जनता पार्टी और जो विद्यार्थी नीट पेपर लीक के मुद्दे को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, इस सब मामले को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अब सपोर्ट करती दिख रही है। हमारे सूत्रों ने यह भी बताया कि कुछ NSU और IYC के कार्यकर्ताओं को पार्टी हाईकमान से यह भी कहा गया था कि आप अब जंतर मंतर जाएं वहां छात्रों की हेल्प करें, छात्रों जो छात्र
3: रहिए मेरे साथ। बिल्कुल राहुल गौतम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल क्या और नेता कांग्रेस पार्टी के यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं या पुलिस की मुहिम या कोशिश है कि उनको यहाँ से हटाया जाए इस फ्लैश प्रोटेस्ट के बाद प्रधानमंत्री के घर के पास?
5: देखिए यहाँ पर बिल्कुल केओस है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए तस्वीरों के जरिए समझिए यहाँ पर क्या हो रहा है। ये फ्लैश प्रोटेस्ट था कांग्रेस पार्टी का मल्लिकार्जुन खड़गे के घर से, यानी 10 राजाजी मार्ग से पैदल चलकर तमाम सांसद यहां पर पहुंचे हैं। ना सिर्फ ये दोनों हैं बल्कि प्रियंका गांधी भी यहां पर मौजूद हैं, KC वेणुगोपाल हैं। और देखिए जो कांग्रेस पार्टी का ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि एक मैसेज लगातार खड़ी है। तमाम जो जो जो जो सांसद हैं उन्होंने अपने हाथों में बैंड बांधे हुए हैं, वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि हथकड़ी की शेप में है, वो ये बता तो सरकार ने बांध दिए हैं। हम लगातार सरकार से ये मांग करते रहे कि हमको संसद के अंदर इस मुद्दे को उठाने की आप अलाउ करिए, लेकिन सरकार ने माना नहीं और अब हमको हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। हम लगातार सरकार से 2 दिन ये मांग करते रहे तो फिलहाल फिर हमने हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा तो हम यहाँ 7 लोक कल्याण मार्ग जो कि प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास है वहां पर तमाम जो सांसद हैं और पूरी कांग्रेस पार्टी एसेंशियली आप कह सकते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता भी यहां पहुंचे और ये बताने की कोशिश है उनकी तरफ से कि देखिए हम सरकार से जवाब मांगने के लिए आए हैं। जो कुछ कल घटा, जो उससे पहले घटा, नीट के पेपर लीक हुए, छात्रों के जो कथित सुसाइड्स हैं, वो तमाम चीजों को लेकर सरकार को आप कह सकते हैं घेरने के लिए और अपना ये मैसेज देने के लिए कि सरकार भले ही आपकी नहीं सुन रही हो, विपक्ष आपके साथ मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। आप देखिए अभी भी लगातार बने हुए हैं। मैं चाहूंगा जयराम जी जय। देखिए यहाँ पर जयराम मौजूद हैं, तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं, नासिर हुसैन यहाँ पर हैं, और ये लगातार ये मांग कर रहे हैं कि सरकार से हमारी। अब मेरे साथ सैयद नासिर हुसैन है, सांसद हैं। अचानक आपने ये फैसला किया कि हम यहाँ पर मार्च करके पहुंचेंगे?
6: अचानक फैसला नहीं है, आज सुबह से दोनों हाउसेस में हमारे दोनों
7: उस पर चर्चा हो, जिस तरीके से हमारे लोकतंत्र और हमारे संविधान पर हत्या हो रही है, जो हमारे युवाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उनके भविष्य पर अंधेरा छाया। पैंतालीस दिन से कर रहे हैं
8: सर, कई सालों के पिछले लोकतंत्र।
7: अभी अभी रुक जाइए,
3: एक और बड़ी खबर इस समय हम आपको बता दें कि शरद पवार भी पहुंच रहे हैं। अभी हम आपको वो भी तस्वीरें दिखाएंगे। एनसीपी के वरिष्ठ नेता शरद पवार भी पहुंच रहे हैं यहां पर प्रधानमंत्री आवास के पास। कांग्रेस पार्टी का धरना और विपक्ष के अन्य दल भी वहां पहुंच रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग, और ये तस्वीरें आप देखिए, एकाएक कांग्रेस पार्टी का फ्लैश प्रोटेस्ट। कांग्रेस पार्टी के फ्लैश प्रोटेस्ट में यहां पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता आपको नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, जयराम रमेश, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल। खबर यह आ रही है कि चरणजीत चन्नी को हिरासत में लिया गया है। खबर दूसरी ये भी आ रही है कि शरद पवार जंतर मंतर पहुंचे हैं। शरद पवार जंतर मंतर पहुंचे हैं और ये विपक्ष एक तरह से सरकार के खिलाफ लामबंद हो रहा है। ये तस्वीर आप राहुल गांधी की देख रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि नए सांसद बने पवन खेड़ा को भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। कल ही उन्होंने राज्यसभा में शपथ ली। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि नरेंद्र मोदी सरकार में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, युवाओं पर अत्याचार हो रहा है। दो दिन से प्रयास उनका चल रहा था कि संसद में इस मुद्दे को उठाया जाए, लेकिन जब संसद में इस मुद्दे को उठाने की अनुमति नहीं मिली तो अब सड़क पर उठाने की नौबत आई है। और राहुल गौतम मेरे सहयोगी हमारे साथ है। राहुल, पुलिस कार्यकर्ताओं को तो जबरदस्ती उठा रही है, इन तस्वीरों में हमें दिख रहा है, लेकिन नेता अभी यहां पर बने हुए हैं।
5: देखिए तमाम नेता यहाँ बने हुए हैं गौरव, और आप देखिए कितना जमावड़ा है यहाँ पर पुलिस का। ना सिर्फ जमावड़ा पुलिस का है, बल्कि जो कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा लोकसभा सांसद हैं वो तमाम यहाँ पर मौजूद हैं, और उनकी तरफ से कोशिश है कि सरकार को घेरा जाए, और इसीलिए पार्लियामेंट से लगातार लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इसके अलावा राहुल गांधी यहाँ पर मौजूद हैं, केसी वेणुगोपाल हैं, और इनका साफ तौर पर कहना है कि हम पूरे दिन से ये मांग कर रहे थे कि हमको छात्रों से जुड़े मुद्दे उठाने दिए जाएं। सरकार से मांग करी, लोकसभा स्पीकर से मुलाकात करी राहुल गांधी ने, लेकिन उसके बावजूद सरकार ने कोई समय अलॉट नहीं किया, सरकार की तरफ से कोई वक्तव्य नहीं आया। कल जो घटना घटी, नीट के जो पेपर लीक हुआ, उन तमाम चीजों को लेकर, और उसके बाद उनके पास उनका ये कहना है, जैसा मैंने आपको अभी सुनवाया, सैयद नासिर हुसैन जो कि खुद सांसद हैं, कि हमारे पास कोई चारा नहीं था क्योंकि पार्लियामेंट में हमारी बात नहीं सुनी जा रही थी, सिवाय इसके कि हम प्रधानमंत्री के घर पर पहुंचे और उनसे ही ये जवाबदेही मांगे कि भाई आपकी लीडरशिप के अंदर और आपके राज के अंदर जिस प्रकार से पेपर लीक हुआ, कल छात्रों के ऊपर जो एक्शन हुआ, उन तमाम चीजों को लेकर अकाउंट।
3: और आज तक के तीन तीन कैमरों पर आप तीन अलग अलग तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं। ये राजधानी दिल्ली में सात लोक कल्याण मार्ग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निवास, और इसमें आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। एक नेता विपक्ष राहुल गांधी और उनके साथ वायनाड की सांसद और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और सांसद वो मौजूद हैं। और दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, छात्र नेता, NSUI और यूथ कांग्रेस दोनों के नेता वो पहुंचे सात लोक कल्याण मार्ग पर। ये बिल्कुल फ्लैश एक तरह से स्ट्राइक या धरना प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का बिना कोई औपचारिक नोटिस दिए जल्दी से वहां पहुंचे, पुलिस भी खासा हक्का बक्का रही, क्या इस पर अभी ये कोई क्लैरिटी मिल रही है? राहुल गौतम हमारे साथ है, राहुल गौतम मेरे सहयोगी हमारे साथ है, और राहुल क्या ये पता चल पा रहा है कि संसद में सरकार क्यों इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार नहीं, या संसद में क्यों नहीं चर्चा हो पा रही है?
5: सरकार का साफ तौर पर कहना है अगर हाउस में डेकोरम होगा तो तमाम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, लेकिन जैसे ही संसद का अगर आपके पास कुछ भी कोई ग्रीवांसेस हैं तो आप आइए लोकसभा स्पीकर के पास, जिसको लेकर उसके बाद तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी, लेकिन क्योंकि हाउस में डेकोरम नहीं होता है ऐसे में कोई चर्चा पॉसिबल नहीं है। हम चाहते हैं कि चर्चा हो तमाम मुद्दों पर। आप देखिए सुबह किरण रिजिजू की तरफ से ये वक्तव्य आया कि प्रधानमंत्री ने भी चिंता व्यक्त की है, उन्होंने भी ये कहा है कि ये गंभीर मुद्दा है, नीट से जुड़ा जो मुद्दा है वो बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है और हमने तमाम वो तरीके कोशिशें की हैं ताकि छात्रों को रिलीफ मिले, लेकिन जो विपक्ष है वो बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं है गौरव, वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है, उनको लगता है कि सरकार बैकफुट पर है, सरकार की तरफ से कुछ गलतियां हुई हैं जिस प्रकार से कल पूरी सिचुएशन को हैंडल किया गया, तो ऐसे में सरकार की जवाबदेही बनती है। इसीलिए ये अनप्रेसिडेंटेड यानी अप्रत्याशित विजुअल्स हैं, यानी राज्यसभा पर जाहिर
3: जी
5: कि उसके आप कहिए जो मुख्यमंत्री हैं वो तो मुख्यमंत्री कम से कम मैं देख पा रहा हूँ, डीके शिवकुमार और वीडी सतीशन वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और वो भी अपने नेता के साथ सड़क पर बैठे हैं। कुल मिलाकर कोशिश है कि सरकार को इस मामले पर घेरा जाए, उनसे पूरे मामले पर जवाबदेही उनकी तय की जाए और ये भी मैसेज दिया जाए छात्रों को कि कांग्रेस पार्टी आपके साथ मजबूती से खड़ी है गौरव,
3: और यह बड़ा संदेश कांग्रेस पार्टी की तरफ से देने का प्रयास कि वहां पर न केवल कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष, नेता, विपक्ष मौजूद हैं बल्कि दो दो राज्यों के मुख्यमंत्री, डीके शिवकुमार कर्नाटक के और वीडी सतीशन केरलम के मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं और कई नेताओं को हिरासत में लिया गया है। खबर यह है सुखजिंदर सिंह रंधावा, चरणजीत सिंह चन्नी, दिल्ली पुलिस ने उनको हिरासत में लिया है, कई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। कितनी देर तक यह फ्लैश धरना यहां पर चलने की उम्मीद है, संभावना है, कांग्रेस पार्टी का क्या कहना है उस पर, क्या ये अनिश्चितकाल यहां बैठने का प्रयास करेंगे?
5: देखिए फिलहाल तो ये लोग यहाँ पर डटे हुए हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक सरकार की तरफ कोई आश्वासन नहीं आता है इस पूरे मामले पर तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। इसी बीच में जो प्रशासन है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, पुलिस पर्सनल है, वो तमाम लोग बातचीत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कुछ बातचीत कर आप सांसद हैं कि आप इन मुद्दों को गंभीरता लेंगे, इन दो पर चर्चा कराएंगे और साथ ही अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेंगे और उसके बाद ही हम यहां से वापस जाएंगे। तो कुल मिलाकर आप कहते हैं कि जो लड़ाई अभी तक संसद के अंदर थी वो कांग्रेस अब दरवाजे तक लेकर चली गई है सरकार के और कोशिश कर रही है कि उनको घेरा जाए।
3: बड़ी बात आप हमें बता रहे हैं और ये तीन तस्वीरें इस समय हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, संसद से लेकर सड़क तक हंगामा और सड़क पर जो हंगामा है वो और बड़ा होता जा रहा है। कल ये जंतर मंतर के पास और संसद के पास था, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लोक कल्याण मार्ग निवास के पास आ गया है। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, क्या दिल्ली पुलिस को इसकी जानकारी थी, क्या दिल्ली पुलिस तैयार थी, या ये एकाएक ऐसा हो गया कि दिल्ली पुलिस दो दिन में दूसरी बार वो भौचक्का रह गई है?
9: बिल्कुल, और देखिए चौंकाया है कहीं ना कहीं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने। जो तस्वीर में एक बार अगर आपको दिखाता चलूं, देखिए वो सामने की तरफ है जहां पर जो राहुल गांधी और तमाम कांग्रेस के लीडर्स बैठे हुए हैं, और अगर दूर तक आप पैन करके दिखाइए जरा सत्या, यहां पर जो तमाम सिक्योरिटी फोर्सेज है, दिल्ली पुलिस है, इसकी कई वैन यहां पर खड़ी है। और कल की अगर बात की जाए तो कल जिस तरीके से प्रदर्शन था पार्लियामेंट के आसपास, 7 लोक कल्याण मार्ग के आसपास सुरक्षा बेहद चौकस थी, पुलिसकर्मी तैनात थे, लेकिन उन सभी को गच्चा देते हुए राहुल गांधी यहां पर पहुंचे हैं। जबकि दिल्ली पुलिस आसपास अमूमन और तैनाती ही रहती है, सिक्योरिटी काफी टाइट रहती है, बेहद संवेदनशील ये इलाका है, प्रधानमंत्री आवास ये इलाका है। लेकिन कल जो 20 मार्च को जो संसद मार्च का ऐलान था कांग्रेस जनता पार्टी का, उसके बाद तो और ज्यादा सिक्योरिटी यहाँ पर थी। बावजूद इसके राहुल गांधी गच्चा देते हुए यहाँ पर पहुंचे और सामने की तरफ बैठे हुए, कुछ नेताओं को जरूर डिटेन किया गया है, लेकिन अभी भी राहुल गांधी यहाँ पर बैठे हुए और धीरे धीरे करके जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है कदुका, वो भी धीरे धीरे करके यहाँ पर आ रहे हैं। क्योंकि ये जो पूरा इलाका है, इस पूरे इलाके में कई जगह बैरिकेडिंग की गई है, आम लोगों के लिए आवाजाही नहीं है, पैदल चलकर 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर आना पड़ता है, बैरिकेडिंग लगी हुई है। मैं खुद भी 1.5 किलोमीटर पैदल चल के आया, लेकिन अब धीरे धीरे करके जो समर्थक है वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। जबकि ये बेहद संवेदनशील इलाका है, ये सभी को मालूम है। उन सबके बीच जरा सत्य आपको दिखाइए, जो पुलिस है, पुलिस के अधिकारी है, RAF की टीम है, वो यहाँ पर अब धीरे धीरे करके और एक्स्ट्रा पहुंचती चली जा रही है। शुरुआत में कुछ लीडर्स को डिटेन भी किया गया। सत्य जरा बेहद करीब आए और करीब से एक बार हम कोशिश करते हैं तस्वीर दिखाने की। फिलहाल पुलिस यहाँ पर मौजूद है, एक दो लीडर्स जरूर डिटेन किए गए, लेकिन सामने की तरफ अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इस वक्त RAF की टीम भी मौजूद है और सामने की तरफ जो कांग्रेस के लीडर है वो यहाँ मौजूद है। ये देखिए, ये 7 लोक कल्याण मार्ग की ये तस्वीर है। RAF की टीम अब यहाँ पर भारी तादाद में पहुंच चुकी है। सत्य आपको तस्वीर दिखाएंगे RAF की टीम की, जबकि दिल्ली पुलिस की टीम भी यहाँ पर पहुंच गई है। और चूंकि कल तो स्टूडेंट थे, काफी देर तक रोकने के बाद, और इस तरीके से देखिए सामने की तरफ तस्वीर आप दिखाइए, दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो तमाम लाठी डंडों के साथ, हेलमेट के साथ यहाँ पर मौजूद है। और ठीक इसके पीछे जो राहुल गांधी है, कांग्रेस के लीडर और तमाम बड़े टॉप लीडरशिप, वो बैठी हुई है। आप ये जो पूरी घेरेबंदी है क्यों की गई है, क्या किसी रणनीति के तहत की गई है, ये भी एक देखने वाली बात है, ताकि बाहर की तरफ लोग निकल करके नहीं आए। लेकिन दिल्ली पुलिस, जैसा आपने पूछा, दो बार गच्चा खा चुकी है। 20 मार्च को जब सरप्राइज किया जो स्टूडेंट और जो कांग्रेस जनता पार्टी का प्रोटेस्ट था उसने, और अब सबसे बड़ा सरप्राइज दिया है, सरकार के दरवाजे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर के ठीक बाहर राहुल गांधी और कांग्रेस के लीडर बैठ गए हैं। और ये जो पुलिस है, ये देख पा रहे हैं पुलिस है, और पुलिस के ठीक पीछे की तरफ जो हिस्सा है, सत्य आपको इधर दिखाइए, आप वो बैक साइड में अगर देखेंगे तो जो कांग्रेस के लीडर है वो आपको बैठकर प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई देंगे। और ज्वाइंट कमिश्नर जो दिल्ली पुलिस के हैं दीपक पुरोहित, वो भी यहाँ पर पहुंच गए हैं। ये स्थिति यहाँ पर आपको दिखाई देगी। RAF की टीम, बहुत मुमकिन है कि बातचीत की जा रही होगी कांग्रेस के लीडर से कि वो हट जाए या फिर उनको डिटेन करना पड़ेगा, चूंकि इस पूरे इलाके में BNS की धारा 163 भी लगी हुई होती है। सर, क्या किसी तरह आप क्या डिटेन करेंगे, आप बातचीत हुई है कांग्रेस की? ये ज्वाइंट CP दीपक पुरोहित है जो यहाँ मौजूद है, और तमाम फोर्स जो दिल्ली पुलिस की टीम है यहाँ पर मौजूद है अंदर की तरफ। ये देखिए, अगर आप तो ये घेर दिया गया, बहुत मुमकिन है इसलिए भी हो कि जो और जो कांग्रेस के बड़े लीडर है राहुल गांधी, उनकी भी सुरक्षा देखनी है, साथ ही साथ जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंच पाए। हम ये कोशिश करते हैं कि आपको अंदर से और बेहद करीब से,
3: बिल्कुल आप निकट पहुंचने का प्रयास कीजिए। आज तक की सबसे बड़ी टीम, सबसे ज्यादा रिपोर्टर इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, और पल पल की जानकारी, चाहे कांग्रेस जनता पार्टी का एक अलग प्रदर्शन चल रहा हो जंतर मंतर पर, वहां पर शरद पवार पहुंचे हैं, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता कल से वहां पर है, या फिर एक दूसरा धरना प्रदर्शन, कांग्रेस का एक फ्लैश धरना प्रदर्शन जो 7 लोक कल्याण मार्ग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निवास पर इस समय चल रहा है। आप 6 अलग अलग कैमरों पर 6 अलग अलग तस्वीरें वहां देख सकते हैं, और बिल्कुल इंटेलिजेंस ऑपरेशन एक तरह से, अरविंद, अगर देखा जाए तो ये कांग्रेस ने किया कि किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता, सांसद सब वहां पर पहुंचे, 2 राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे हैं अरविंद, और अभी उनका वहां से हटने का कोई विचार नहीं, प्रधानमंत्री से जवाबदेही वो चाहते हैं, प्रधानमंत्री से जवाब चाहते हैं अरविंद।
9: यहाँ लेकिन राहुल गांधी ने सरप्राइज किया है, ये सरप्राइज प्रोटेस्ट ही आप कहेंगे जो यहाँ पर हुआ है, क्योंकि अब चूंकि यहाँ पर बैठ भी गए हैं तो पुलिस हटाए तो हटाए कैसे। मौसमी सिंह भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। मौसमी, क्या
0: जी जी
9: बताइए, क्या जो कांग्रेस कमिश्नर है राहुल गांधी को यहाँ से हटने को कह रहे हैं, क्योंकि ज्वाइंट कमिश्नर दीपक पुरोहित है, उनसे हमने बात की, वो कह रहे हैं वो कोई जवाब देने को तैयार नहीं, तो क्या आप हटाएंगे?
0: जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जो है कांग्रेस अब ये पूरा प्रोटेस्ट जो है संसद से सड़क पर ले आई है। पहले राहुल गांधी अपनी अपना वक्तव्य कहते हैं कल, उसके बाद आज कहते हैं कि आरएमएल चाहते हैं वो, और उसके बाद प्रधानमंत्री आवास पर ये एक तरीके से फ्लैश प्रोटेस्ट कह लीजिए आप अरविंद। कांग्रेस का देखिए 10 राजा जी मार्ग बहुत दूर नहीं है, और 10 राजा जी मार्ग पे जन्मदिन मनाने के लिए तमाम सांसदों को बुलाया जाता है, उनको नहीं बताया जाता कि उनको राजा जी मार्ग आना है, और उसके बाद जो कांग्रेस है एकदम से प्लान करती है कि प्रधानमंत्री आवास पे करेंगे ताकि पुलिस को इसकी खबर ना लगे।
9: यही जो सरप्राइज जो आप प्रोटेस्ट कह रहे हैं, जो वो सरप्राइज प्रोटेस्ट यहाँ पर दिख भी रहा है, जरा तस्वीर आप सत्य दिखाएंगे, क्योंकि देखिए दिलचस्प तस्वीर ये भी है कि चारों तरफ से जो दिल्ली पुलिस है उसने घेरेबंदी कर दी है, ताकि जो जो ये प्रोटेस्ट है राहुल गांधी और कुछ नेता उनके उनके बीच में कुछ मीडिया कर्मी जरूर है, लेकिन अब अंदर की तरफ कोई नहीं जा रहा है। ये देखिए जरा ये दिखाइए, तस्वीर दिखाइए, ये इस तरीके से जो ह्यूमन चैन दिल्ली पुलिस ने बना लिया, अब इसके अंदर किसी को नहीं जाने दे रहे, ताकि ये तरीका भी होता है कि अगर हिरासत में लिया जाए तो सीधे जो लीडर है उनको हिरासत में लिया जाए। जयराम रमेश भी है सर, यहाँ पे तमाम जो बड़े लीडर्स हैं, आप सर ये क्या है?
6: हम लोग यहाँ बैठे हैं जब तक जवाब नहीं मिलता है।
9: जो तमाम कांग्रेस के लीडर हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, और फिलहाल जो गहमा गहमी है तो राहुल गांधी ने सीधे सीधे एक सरप्राइज प्रोटेस्ट किया है, यहाँ पर पहुंच गए हैं, दिल्ली पुलिस की टीम भी यहाँ पर मौजूद है, इक्के दुक्के जो कार्यकर्ता है अगर आप यहाँ पर देखें जो पहुंचे तो उनको भी हिरासत में दिल्ली पुलिस की टीम ले रही है। कांग्रेस के टॉप लीडर है राहुल गांधी, तो जाहिर सी बात है दिल्ली पुलिस उनसे बातचीत करके मान मनोबल करने की कोशिश कर रही होगी ताकि वो खुद भी यहाँ से चले जाए, लेकिन जो छोटे कार्यकर्ता थे जो धीरे धीरे यहाँ आने की कोशिश कर रहे थे उनको हिरासत में दिल्ली पुलिस के टीम ने ले लिया है। क्योंकि आपको ये नहीं भूलना होगा, हमें ये नहीं भूलना होगा कि ये बेहद संवेदनशील इलाका भी है, और 20 मार्च को जब प्रोटेस्ट हो रहा था तब भी यहाँ पर सिक्योरिटी चौकस कर दी गई थी, लेकिन जैसा कि हम बार बार करें और आपने भी पूछा, आर्यन मिश्रा जी भी यहाँ पर पहुंच चुके, तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंच गए, तो धीरे धीरे करके जो पुलिस ऐसा लगता था कि कम यहाँ पर थी, वो पुलिस की तादाद धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। आरएफ की टीम यहाँ पर बहुत ही पहुंच रही है, जो छोटे कार्यकर्ता है और कुछ लीडर्स को पुलिस ने हिरासत में लिया, और ये जो गाड़ी है सत्य आप दिखाइएगा, इस गाड़ी में ये दिल्ली पुलिस की गाड़ी आई है, इस गाड़ी में हिरासत में ले लिया है। अब राहुल गांधी क्या खुद दिल्ली पुलिस की टीम जाहिर सी बात है बातचीत करी तो क्या खुद वहां से हटेंगे, जिसकी जो आशंका भी काफी कम है कि वो यहां से हटने वाले हैं, तो बातचीत होगी या फिर उनको हिरासत में लिया जाएगा, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन ये एक बेहद दिलचस्प तस्वीर है कि जरा एक बार ये दिखाइएगा, इस तरीके से ह्यूमन चेन बना लिया है, ये दिल्ली पुलिस की टीम है यहाँ सामने की तरफ खड़ी है, उसके ठीक पीछे राहुल गांधी खड़े हैं, और अब कुछ लोगों को हिरासत में लेके दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ से जा भी रही है, ये स्थिति यहाँ पर है। तो जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट चल रहा था, कन्हैया कुमार है ये देखिए, कन्हैया कुमार को हिरासत में लिया, ये भी यहाँ पर पहुंचे थे प्रोटेस्ट के लिए, तो इनको हिरासत में लेकर दिल्ली पुलिस की टीम जा रही है। अब ये दूसरी बस यहाँ पर आ गई है, तो बस जो दिल्ली पुलिस है उसकी कई लंबी लाइन है, और धीरे धीरे करके रणनीति के तहत, चूंकि ये संवेदनशील इलाका है, यहाँ पर बहुत ज्यादा गहमा गहमी न हो, कोई स्कफल न हो, इस वजह से धीरे धीरे करके दिल्ली पुलिस की टीम एक एक करके लोगों को ले जा रही है, और हमने आपको तस्वीर दिखाई जो कन्हैया कुमार है उनको हिरासत में लिया गया। लेकिन अभी
3: अच्छा ये बताइए, इस समय यहाँ पर कांग्रेस के कितने नेता मौजूद है, बड़े नेताओं कोई तस्वीरें तो हम इस समय देख रहे हैं अरविंद, नेता विपक्ष यहाँ पर है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश, कई बड़े नेता, दो बड़े मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के, वीडी सतीशन केरलम के और डीके शिवकुमार कर्नाटक के, उनको तो हमने देखा। कार्यकर्ताओं की अगर बात की जाए, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, कितने कांग्रेस के कार्यकर्ता इस समय यहां मौजूद है?
9: बिल्कुल, हम सीधे तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए इस तरह से जो छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं एनएसयूआई के, वो धीरे धीरे यहाँ पर पहुंचने भी लगे हैं और उनको पुलिस ने हिरासत में लिया। जयराम रमेश को हमने आप अभी देखा इस साइड, और एक दौर जो कांग्रेस के लीडर्स हैं उनको हमने देखा, और साथ ही साथ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे, डीके शिवकुमार समेत कई नेता यहाँ पर हैं आए थे, कन्हैया कुमार भी आए थे लेकिन उनको हिरासत में ले लिया गया। और भी धीरे धीरे करके जो कार्यकर्ता है वो जुटने शुरू हो गए, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं, वो जुटने शुरू हो गए। लेकिन इन्हीं कार्यकर्ताओं,
7: और हमारे संविधान पर हत्या हो रही है, जो हमारे युवाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उनके भविष्य पर अंधेरा छाया हुआ है, उस पर एक बयान दे, और हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग हम 20 करीब 45 दिन से कर रहे हैं।
10: सर, कई सालों के पिछले लोकतंत्र में
7: अभी रुक जाइए,
3: तो दो बड़ी बातें इस समय आपने मल्लिकार्जुन खड़गे को करते सुना। एक, वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में बयान दे कि आखिर क्यों पेपर लीक बार बार हो रहा है, और दूसरी बात धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री वो अपना इस्तीफा दे। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी ताजा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रही है। मौसमी, कांग्रेस पार्टी का ये बड़ा विरोध प्रदर्शन प्रधानमंत्री के घर के पास, एक अलग विरोध प्रदर्शन चल रहा है जंतर मंतर पर, तो क्या ये माना जाए कि विपक्ष भी दो फाड़ अलग अलग प्रदर्शन कर रहे
0: हैं? गौरव, देखिए ये कहना नहीं सही होगा कि विपक्ष वहां पे प्रदर्शन कर रहा है या कांग्रेस यहाँ प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि कांग्रेस जो है कोशिश ये कर रही है कि अपनी अलग लकीर खींचे। वहां पे आप जान रहे हैं कि जंतर मंतर पे सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है, प्रदर्शनकारी काफी दिनों से बैठे हुए हैं, और एक तरीके से कांग्रेस यहाँ पे मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पे अपनी हाजिरी दर्ज करना चाहती है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव कर सड़क पर नजर आई, जंतर मंतर से लेके आरएमएल में नजर आई, उसके बाद आज कांग्रेस ने रणनीति के तौर पे पहले देखिए आप राहुल गांधी आरएमएल जाते हैं प्रियंका गांधी के साथ, और उसके बाद यहाँ जहाँ हम लोग खड़े हैं आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 गिन लीजिए तो दर्जनों पुलिसकर्मी हैं। ये खाकी हमका समुंदर हमने कल भी देखा था, लेकिन शायद किसी ने नहीं, दिल्ली पुलिस ने भी नहीं सोचा होगा ऐसे औचक कांग्रेस फ्लैश प्रोटेस्ट करेगी। और यहाँ पे पीछे ये कोई मामूली आवास नहीं है, ये देश के प्रधानमंत्री का आवास है, यहाँ पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और यहाँ पे बैठ गए हैं तमाम कांग्रेस के सांसद और नेता, दोनों नेता विपक्ष यहाँ पे बैठे हुए हैं। संसद यहाँ से बहुत दूर नहीं है गौरव, और संसद से सड़क तक इस तरीके से बेहद आक्रामक देवर इख्तियार करते हुए कांग्रेस अपनी हाजिरी दर्ज करने का ये तरीका इख्तियार कर रही है।
3: ये बड़ी बात है, क्योंकि शरद पवार की अगर बात की जाए तो वो जंतर मंतर पर है, डिंपल यादव का आपने जिक्र किया वो जंतर मंतर गई, उद्धव ठाकरे कल जंतर मंतर जा रहे हैं, और कांग्रेस का प्रदर्शन यहां पर हो रहा है। ये बड़ी बात, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अपनी अलग यहां पर मौजूदगी दर्ज करा रही है कि कांग्रेस पार्टी नीट के मुद्दे पर अपना अलग प्रदर्शन कर रही है, वो कॉकरोच जनता पार्टी के की पिछलग्गू नहीं है, क्या ये बताने का प्रयास यहां पर चल रहा है?
0: बिल्कुल, देखिए यहाँ पे प्रयास ये है कि किसी तरीके से सरकार पर दबाव बनाया जाए। आप देखिए यहाँ पे जो पुलिसकर्मी हैं ये अपनी रायट गियर्स में हैं, इनके हाथों में बेटन है। कल आपने देखा कि रैपिड एक्शन फोर्स के पास तमाम बेटन था, ये लोग हेलमेट पहने हुए, यानी कि दिल्ली पुलिस पूरी तैयारी के साथ आई है। और इसकी वजह ये है कि अगर ये जंतर मंतर होता और राहुल गांधी गए होते तो शायद ये तस्वीर देखने को नहीं मिलती, लेकिन ये जंतर मंतर नहीं है, ये प्रधानमंत्री का आवाज है। लोक कल्याण मार्ग का जो दूसरा गोल चक्कर है उसके बाहर ये लोग बैठे हुए हैं और जैमर्स इस कदर काम कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि अगर हम भीतर क्यों नहीं जा रहे, अंदर के घेरे में क्यों नहीं जा रहे। जो जैमर्स पूरा इंटरनेट अंदर ठप कर दिया गया है, हाई सिक्योरिटी जोन है चारों तरफ, इसके इर्द गिर्द बहुत सुरक्षा होती है, कभी कोई प्रदर्शन यहाँ तक नहीं पहुँच पाया। और शायद ये देखिए आप जितेंद्र सिंह राहुल गांधी सर क्या ये जिस तरीके से आप देखिए सुरक्षा प्रधानमंत्री इस कांग्रेस मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री यहाँ हैं। सर दो लाइन तो ये देखिए जितेंद्र सिंह बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जो मंत्री हैं जितेंद्र सिंह यहाँ पे पहुंच गए हैं। अब ये संसद का दूसरा दिन है, इतना हंगामा बरपा है गौरव, और उसके बाद जिस तरीके से यहाँ पे कांग्रेस खड़ी हुई है आप देखिए वो भीतर जा रहे हैं। जाहिर तौर पे राहुल गांधी और खड़गे से बात करेंगे। चलिए हम भी कोशिश करते हैं अगर थोड़ा नेटवर्क की अनुमति होती है कि बात करें कि किस तरीके से तस्वीर संजय आपको दिखा रहे हैं, इसके मायने क्या है, यानी कि सरकार इस दबाव की राजनीति में कहीं ना कहीं सुरक्षा के मद्देनजर ये अपील करने आई होगी कि ये आप इलाके को छोड़ दीजिए। कई एलिमेंट्स हो सकते हैं जो इसका फायदा उठा सकते हैं। और शकील साहब आप भी पहुंच गए यहाँ पे, अभी केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह आए हैं, ये जो विरोध का तरीका है, बात करते हैं शकील अहमद साहब से, बिहार के कांग्रेस के बड़े नेता हैं, बताइए शकील साहब क्या वजह है?
11: जब प्रधानमंत्री और अमित शाह दोनों मिलकर के पार्लियामेंट के प्रोसेस को नहीं चलाएं, पार्लियामेंट में क्वेश्चन नहीं उठने देंगे, जिस तरह से व्यवहार किया स्टूडेंट के सामने, सवाल का जवाब नहीं देंगे, तो डेमोक्रेसी में हमारे पास ऑप्शन क्या बच जाता है सिवाय प्रोटेस्ट के, सिवाय अपनी बात को सदन
0: प्रधानमंत्री कार्यालय है, केंद्रीय मंत्री भी आ गए शायद सुरक्षा
11: भाई, अरे अरे भाई सवाल सुरक्षा का, इतने लोग मारे गए कल, हजारों लाखों बच्चे थे उनके ऊपर पिटाए हुए, उनकी सुरक्षा कोई ख्याल नहीं है? प्रधानमंत्री होम मिनिस्टर सुरक्षा के लिए तो होते हैं, और किस बात के लिए होते हैं?
0: दिखाते हैं आपको तस्वीर गौरव, क्योंकि यहाँ पे और ये देखिए पकड़ पकड़ के कार्यकर्ताओं को ले जाया जा रहा है, पकड़कर
3: हम आपसे एक बार फिर संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। बड़ी बात इस समय हम अपने दर्शकों को बता दें, केंद्रीय मंत्री प्रधानमंत्री कार्यालय में डॉक्टर जितेंद्र सिंह वो अभी सात लोक कल्याण मार्ग पर पहुंचे हैं और वो नेता विपक्ष राहुल गांधी से, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बात करके उन्हें मनाने का प्रयास करेंगे। यानी जो बात संसद में होनी चाहिए वो सड़क पर हो रही है, वो भी प्रधानमंत्री के घर के बिल्कुल सामने। और सुरक्षा की अगर बात करें तो दिल्ली पुलिस के लिए, एसपीजी के लिए अरविंद, ये बहुत चिंताजनक स्थिति होगी कि कोई भी यहां पर इस समय आ सकता है, कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो जाए, ये सुरक्षा की दृष्टि से एक बहुत बड़ी चुनौती है।
9: बिल्कुल बहुत बड़ी चुनौती, और दिल्ली पुलिस के हाथ पांव भी फूले हुए हैं। राहुल गांधी भी लोकसभा में विपक्ष के लीडर हैं, प्रधानमंत्री आवास है, और पुलिस की संख्या भी बढ़ रही है धीरे धीरे करके जो।
3: और ये सीधी तस्वीर इस समय हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस समय बात कर रहे हैं नेता विपक्ष राहुल गांधी के साथ, उनकी बात सुन रहे हैं, उनको मनाने का प्रयास यहां पर चल रहा है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ राहुल गांधी की ये तस्वीरें आज तक पर आप देख रहे हैं, बाहर ये सुरक्षा का घेरा, बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता, और एक तस्वीर आप देख रहे हैं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी को हिरासत में लिया गया, सुखजिंदर सिंह रंधावा को हिरासत में लिया गया, कन्हैया कुमार को हिरासत में लिया गया है। लेकिन अब प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह पहुंचे हैं, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह धरना स्थल पर पहुंचे और नेता विपक्ष राहुल गांधी से बात कर रहे हैं, उनको मनाने की कोशिश। और राहुल गांधी बार बार ये मुद्दा उठा रहे हैं कि एक प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में पेपर लीक पर बयान दे। हालांकि प्रधानमंत्री ने आज एनडीए की बैठक में इसे महापाप बताया पेपर लीक को, लेकिन दूसरी बात जो कांग्रेस पार्टी लगातार उठा रही है, विपक्ष के नेता लगातार उठा रहे हैं, वो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग वो कर रहे हैं। क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा? ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सात लोक कल्याण मार्ग से। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह पहुंचे हुए हैं, पर्सनल मिनिस्टर फॉर पर्सनल भी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, कई उनके पास प्रभार है, प्रधानमंत्री कार्यालय का भी प्रभार है और पहुंचे हुए हैं वो इस समय नेता विपक्ष राहुल गांधी से बात करने के लिए, उनको मनाने के लिए, उनका पक्ष सुनने के लिए। और कोशिश सरकार की यही है कि ये जो चर्चा है वो संसद में हो। हालांकि कांग्रेस के कई नेता, चाहे आपने अभी कुछ देर पहले जयराम रमेश को सुना हो या उससे पहले केंद्रीय पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर, ये कह चुके हैं कांग्रेस पार्टी के सांसद कि जब सरकार संसद में नहीं बोलने देगी विपक्ष को तो सड़कों पर विपक्ष बोलेगा, और यही इस समय हो भी रहा है। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है। मौसमी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह राहुल गांधी को मनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम ये तस्वीरें जो देख रहे हैं राहुल गांधी का फ्लैश प्रोटेस्ट, ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ राहुल गांधी की लगातार बातचीत हो रही है यहां पर, क्योंकि इतने जैमर्स लगे हुए हैं सात लोक कल्याण मार्ग के पास कि सिग्नल वहां आने में कुछ समस्या हो भी रही है। बार बार ये आवाज आप सुन रहे हैं, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, ये धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद के दोनों सदनों में बयान की मांग विपक्ष इस समय कर रहा है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह का प्रयास कि वो नेता विपक्ष कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता विपक्ष राहुल गांधी और जो वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के वहां मौजूद है, इसमें दो मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के डीके शिवकुमार और वीडी सतीशन, केरलम के मुख्यमंत्री और कर्नाटक के मुख्यमंत्री दोनों ही इस समय वहां मौजूद हैं, उनको वहां से सम्मान पूर्वक वहां से ले जाया जाए। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी हमारे साथ है। अरविंद, कुछ कार्यकर्ताओं को तो हटाया गया है लेकिन नेताओं की संख्या, और अब खबर आ रही है कि कार्यकर्ताओं की संख्या भी बढ़ रही है। अरविंद,
9: बिल्कुल, देखिए कार्यकर्ता चूंकि यहाँ पर आना भी बहुत आसान नहीं है इस वजह से, लेकिन फिर भी इक्का दुक्का कार्यकर्ता धीरे धीरे करके आ रहे हैं, लेकिन जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो जरूर यहाँ पर मौजूद है, चाहे दिल्ली के हो, केंद्र स्तर के नेता हो, वो यहाँ पर मौजूद है। राहुल गांधी अंदर जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यहीं से हम आपको दिखाते हैं, जितेंद्र सिंह इस वक्त बातचीत कर रहे हैं राहुल गांधी से ठीक उस जगह पर, सामने की तरफ जो है वो प्रधानमंत्री आवास है और उसके ठीक बाहर जितेंद्र सिंह बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जाहिर सी बात है, वो समझा रहे होंगे कि देखिए बेहद संवेदनशील इलाका है नई दिल्ली के, हालात आप जानते ही हैं, और प्रधानमंत्री आवास के ठीक जो बाहर का इलाका है और आपके साथ साथ और भी यहां पर भीड़ जमा है, तो जाहिर सी बात है उनको मनाने की कोशिश या बहुत मुमकिन है सरकार की तरफ से कोई मैसेज होगा, वो मैसेज उन तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही होगी, ताकि सम्मानजनक तरीके से जो तमाम कांग्रेस की लीडरशिप है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको यहां से ले जाया जाए। इन सब के बीच धीरे धीरे करके जो सिक्योरिटी हमने जब आया था, जिस वक्त हम आए थे सामने की तरफ पुलिसकर्मी दिख रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर धीरे धीरे करके जो पुलिसकर्मी है उनकी तादाद धीरे धीरे करके बढ़ रही है। ये जो बस अगर सामने की तरफ देखेंगे, जरा सत्या बस दिखाइएगा, एक दो तीन, तो दो छोटी और एक बड़ी बस यहाँ एहतियात के तौर पर खड़ी की गई है कि अगर कोई कार्यकर्ता आता है उसको तुरंत हिरासत में लिया जाए, और जैसा कि पहले भी लिया गया कन्हैया कुमार समेत कई नेताओं को हिरासत में लिया गया। लेकिन अभी जो सबसे बड़ी बातचीत प्रधानमंत्री आवास के घर के ठीक बाहर हो रही है वो हो रही है राहुल गांधी और जो सरकार के नुमाइंदे के तौर पर आए हैं जितेंद्र सिंह, उनके बीच, और सामने ये वो जरा सत्य दिखाइएगा, सामने की तरफ वो बातचीत फिलहाल चल रही है, समझाने बुझाने की कोशिश भी हो रही है। राहुल गांधी के आसपास भी सिक्योरिटी है और सुरक्षा घेरा भी दिल्ली पुलिस ने बना दिया है, ताकि जो कांग्रेस के बड़े लीडरशिप है उनके आसपास कोई और अवांछित व्यक्ति न पहुंच जाए, क्योंकि सभी की सुरक्षा यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट इम्पोर्टेंट है और जिस तरह से नई दिल्ली में हालात कल बने थे, जिस तरह से पत्थरबाजी हुई थी, उन सबको देखते हुए ये कोशिश है कि जो कोई वांछित जिसे यहाँ पर नहीं आना चाहिए सीधे शब्दों में कहें तो वो यहाँ पर ना आ पाए। कांग्रेस की लीडरशिप जरूर है, बड़े नेता है, उनको समझाने बुझाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है उन सबके बीच। जरा ये घेरा सत्य आप दिखाइए जरा कि किस तरीके से धीरे धीरे करके पुलिस की संख्या यहाँ पर बढ़ाई गई। जो डीसीपी नई दिल्ली के हैं, ज्वाइंट कमिश्नर, वो सब धीरे धीरे यहाँ पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। तो और दूसरी तरफ आरएएफ की एक टुकड़ी है वो यहाँ पर मौजूद है और कोशिश यही है जितेंद्र सिंह जो आए हैं बातचीत के जरिए राहुल गांधी तो और जो कांग्रेस के तमाम लीडर्स है उनको समझाया जाए और उसके बाद फिर उनको यहाँ से हटाया जाए। तो फिलहाल यही कवायद यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर चल
3: रही है। मेरे साथ मौसमी सिंह भी हमारे साथ जुड़ रही है और ये तस्वीरें इस समय हम देख रहे हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, लाइव तस्वीरें इस समय ये आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी बिल्कुल बीचों बीच खड़े हैं, केसी वेणुगोपाल उनके साथ खड़े हैं, कांग्रेस के कई और नेता, केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन वहां पर खड़े हैं, डीके शिवकुमार वहां पर हैं, और प्रयास उनका यही कि अकाउंटेबिलिटी। जयराम रमेश ने अब से थोड़ी देर पहले कहा कि चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के दोनों सदनों में बयान दे और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। ये बात राहुल गांधी समझाने की कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह को। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी हमारे साथ है। मौसमी, कल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बात की सीजेपी के प्रतिनिधि मंडल से, आज डॉक्टर जितेंद्र सिंह बात कर रहे हैं राहुल गांधी से, लेकिन विपक्ष बहुत बहुत आक्रामक और सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर।
0: बिल्कुल, देखिए यहाँ पे बहुत बड़ी रणनीति के तौर पे अगर आप कहिए कि कांग्रेस किस तरीके से खड़ा होना चाहती थी प्रदर्शनकारियों के साथ जो उनके साथ घटा, तो एक बड़ा प्रोटेस्ट और एक बड़ा सिग्नेचर असाइनमेंट यहाँ पे कांग्रेस कंप्लीट करते हुए नजर आ रही है, एक बड़ा कदम उठाते हुए, जहाँ पे आप देखिए कि पीछे केंद्रीय मंत्री राहुल गांधी और खड़गे साहब के साथ बातचीत कर रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं। यह तस्वीर आपको हम टॉप एंगल से दिखा रहे हैं, एक रिंग साइड व्यू, कि ये तस्वीर कहीं और नहीं प्रधानमंत्री आवास पर घट रही है, जहां सुरक्षा के पहरे के पीछे पूरी सियासत की जो बिसात बिछी है उसमें राहुल गांधी से केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह समझाते हुए कि आप कृपया यहां से उठ जाइए। अब आपको बता दें कि राहुल गांधी ना सिर्फ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, राहुल गांधी ने आज कह दिया है कि बच्चों की पिटाई हुई है, दिल्ली पुलिस के अमित शाह के सानिध्य है, इसलिए गृह मंत्री अमित शाह को रिजाइन करना चाहिए। अब राहुल गांधी जिस तरीके से राहुल गांधी के तेवर रहते हैं, तीखे तेवर रहते हैं, बेहद आक्रामक रहते हैं, कई बार उसकी आलोचना उनको का सामना करना पड़ता है संसद में भी कि उनकी भाषा जो है वो बहुत तीखी।
3: मौसमी रही हमारे साथ, पीयूष मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज तक की सबसे बड़ी टीम इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, आपको 360 डिग्री पर्सपेक्टिव हर एंगल से हम बता रहे हैं। पीयूष, सरकार की तरफ से कोशिश ये कि विपक्ष से, छात्रों से, सीजेपी से सबसे संपर्क साधा जाए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह का इस समय क्या प्रयास? पीयूष,
12: जी बिल्कुल, डॉक्टर जितेंद्र सिंह न सिर्फ केंद्र में मंत्री हैं गौरव, बल्कि वो इसी के साथ साथ एमओएस पीएमओ भी है, यानी वो प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री भी हैं और इसीलिए वो यहाँ पर पहुंचे। मैं एक बार तस्वीर दिखाऊं आपको, पहले ये जरूरी है समझना कि जहाँ पर मौजूद है वो कितना सेंसिटिव इलाका है। ये जो गेट आपको दिख रहे हैं सामने, दो गेट, एक एंट्री गेट है, एक एग्जिट गेट है। जब भी प्रधानमंत्री संसद भवन या कहीं और कार्यक्रम में किसी और जगह पर जाते हैं, जब भी वो लोक कल्याण मार्ग के अपने घर से आवास से निकलते हैं तो इन्हीं गेट से निकलते हैं और यहीं से वो अंदर जाते हैं। अब हुआ क्या है कि भारी संख्या में न सिर्फ कांग्रेस के सांसद बल्कि जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के वो भी यहाँ पर पहुंच गए और आप देख सकते हैं जमावड़ा कैसे पूरा इस इलाके को चौक कर पूरी तरह से ब्लॉक कर चुका है। दिल्ली पुलिस के अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, भारी संख्या में दिल्ली पुलिस के अधिकारी और 3 से 4 लेयर अधिकारियों को लाइन से चेन बनाकर यहाँ पर खड़ा कर दिया गया। देखिए मैं गिन पा रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, 5 और अंदर जहां पर जितेंद्र सिंह मौजूद है वहां तक जो लेयर पहुंच गई, छह लेयर में इस वक्त जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी है वो खड़े, और जो बाहर का जो लेयर है, जो शुरू की तीन लेयर से आउटर रिंग में, वहां पर जो अधिकारी खड़े हैं उनके हाथ में लाठियां भी है, क्योंकि कभी भी स्थिति अनियंत्रित हो सकती है और कानून व्यवस्था को संभालने के लिए जो है वो दिल्ली पुलिस के अधिकारी के जवानों को यहाँ पर तैनात किया गया है। जो सूत्र बता रहे हैं कि आज मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्मदिन है, वहां पर राहुल गांधी के साथ कई कांग्रेस के सांसद पहुंचे थे और कई नेता पहुंचे थे, वहां पर दरअसल ये फैसला लिया गया कि जन्मदिन तो ठीक है, अब जो राहुल गांधी अपनी बात छात्रों को लेकर कर रहे हैं उसको उठाने की जरूरत है। लेकिन ये भी बेहद जरूरी है समझना गौरव कि ये बहुत सेंसिटिव इलाका है, ये वो इलाका है जहां पर प्रधानमंत्री का आवास है, ये वो इलाका है जहां पर कई बड़े बड़े देशों की एम्बेसीज हैं, यहां पर दूतावास है, अमेरिका का जो एम्बेसी वो यहां से महज 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर होगा, इसी के अलावा चाइना, जापान, यूके, कई बड़े बड़े देशों की एम्बेसी है, और बहुत सेंसिटिव और हाईली सिक्योर्ड एरिया है ये, और यहां पर तो परमिशन किसी भी तरह से दिल्ली पुलिस ने नहीं दी, लेकिन फिर भी राहुल गांधी के साथ साथ कई कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे, और आप तस्वीर देखिए कैसे इस पूरे इलाके को घेर लिया गया है। जो प्रधानमंत्री आवास का जो मेन एंट्री गेट है वहां पर राहुल गांधी के साथ साथ कई कांग्रेस के नेता पहुंच गए हैं, बिना परमिशन के यहां पर आए हैं, सरकार से बात करने की कोई कोशिश नहीं की गई, क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण समझना कि संसद का सत्र चल रहा है, संसद के सत्र में अगर विपक्ष को अपनी बात रखनी है तो अपनी बात रख भी सकता है, लेकिन लगातार हंगामे की वजह से लोकसभा और राज्यसभा दोनों संसद के सत्र जो है वो स्थगित हो चुके हैं। सुबह से ही विपक्ष सरकार से इस पर जवाब मांग रहा था, हालांकि सरकार ने जो प्रदर्शनकारी उनसे बात करने का दरवाजा भी खोला, जेपी नड्डा ने सीजेपी के कहे जो स्पोक्स पर्सन से उनसे बात की, कल उनका मेमोरेंडम लिया और ये कहा कि आप अपना धरना प्रदर्शन खत्म करें, सरकार ने सभी दरवाजे खोले, लेकिन राहुल गांधी ने सरकार से बात करने की बजाय यहाँ पर आना बेहतर समझा, और यहाँ इस वक्त जहाँ मौजूद है वहां पर भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी पहुंच चुके हैं। ये पूरा इलाका एक बार लोकेंद्र पांडे पूरा 360 डिग्री अपना कैमरा घुमा के आपको तस्वीरें दिखाएंगे, देखिए पूरा इलाका पूरी तरह से बंद हो चुका है, ये हाईली सेंसिटिव सिक्योर्ड एरिया है
3: बिल्कुल, और ये तस्वीरें देखिए लगातार कोशिश हो रही है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, राहुल गांधी से बात कर रहे हैं, केसी वेणुगोपाल से वो लगातार कुछ बात करने की कोशिश कर रहे हैं, संभवतः इसी इलाके का कितना संवेदनशील है ये इलाका, और यहां पर जो प्रदर्शन एकाएक हो रहा है, बार बार सरकार ये कह रही है कि बातचीत संसद में होनी चाहिए, नियमों के अनुसार संसद में हर मुद्दा उठाया जा सकता है, विपक्ष का ये कहना है कि सबसे पहले यही मुद्दा उठाने की आवश्यकता है, पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस पार्टी के सांसद तिरुवनंतपुरम से डॉक्टर शशि थरूर, उन्होंने कहा कि अगर सरकार संसद में नहीं बोलने देगी तो सड़कों पर ही ये बातचीत की आवाज की उसकी गूंज सुनाई देगी, छात्रों की गूंज करके कांग्रेस पार्टी का एक अलग कार्यक्रम वैसे भी चल रहा है, और सुरक्षा की दृष्टि से एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती इस समय दिल्ली पुलिस के लिए भी और एसपीजी के लिए भी, और इसीलिए संभवतः अरविंद दिल्ली पुलिस ने यहां पर कई परतों में सुरक्षा को तैनात किया गया है, लेकिन कांग्रेस की रणनीति ये देखिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्मदिन महान बनाने के लिए कांग्रेस के बड़े नेता जुड़े और एकाएक राजा जी मार्ग से लोक कल्याण मार्ग पहुंच गए।
9: बिल्कुल, और देखिए आपने कांग्रेस की रणनीति की बात की तो हमने राहुल गौतम जो अंदर की तरफ थे उनको अभी बुलाया यहाँ पर ये जानने के लिए कि आखिर बातचीत हो क्या रही है, आप तो अंदर थे, आपको बुलाया हमने, क्या बातचीत हो रही है, क्या समझाने की कोशिश रही, क्योंकि राहुल गांधी भी जेट प्लस प्रोटेक्टिव है और इस वजह से यहाँ पर सिक्योरिटी, क्या बातचीत चल रही है?
13: देखिए बहुत अप्रत्याशित है कि दो दो नेता विपक्ष यानी राज्यसभा और लोकसभा दोनों प्रधानमंत्री के आवास के बाहर बैठे हैं, और जो कांग्रेस पार्टी है वो लगातार आश्वासन की मांग कर रही है, वो ये चाहती है कि दो दिनों से वो ये लगातार मांग कर रहे थे कि आप नीट के मुद्दे पर जो कल घटा उस पर हमारी चर्चा आप कराइए, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करिए, आप छात्रों में जो गुस्सा है उसको शांत करने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं वो संसद को बताइए, तमाम लोगों को बताइए, उसी के लिए अभी जो डॉक्टर साहब पहुंचे हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, वो लगातार यही चर्चा हो रही है कि आप हमको क्या प्रॉमिस करके जाएंगे ताकि हम यहाँ से बाहर निकले और लोगों को फिर प्रॉमिस बताएं।
9: जी बोल रहे हैं क्या कि आप यहाँ से हट जाइए, संवेदनशील इलाका, ये भी तो बातचीत हो ही
13: बिल्कुल बिल्कुल इतनी देर से जो पूरा प्रशासनिक अमला है वो राहुल गांधी को और तमाम नेताओं को यही समझा रहा है कि ये बहुत हाई सिक्योरिटी एरिया है, प्रधानमंत्री थ्रेट परसेप्शन है।
9: राहुल राहुल तो ये हम तस्वीरें भी साथ साथ दिखाइए,
14: वहां से शुरू करिए आरएएफ
9: की। इस स्ट्रीट में हम आपको दिखाते हैं कि जिस तरह के राहुल ने बताया कि कितना हाई सिक्योरिटी इलाका है ये, और इस वजह से यहां से दो दो किलोमीटर दूर जो रोड है जहां से आप यहां की तरफ आते हैं उन सबको ब्लॉक कर दिया गया, उनको बंद कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि इस तरह की आशंका थी कि कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पहुंच सकते हैं। राहुल, कांग्रेस के इक्का दुक्का कार्यकर्ता भी यहां हमने देखे, कन्हैया कुमार को भी हिरासत में लिया गया, कौन कौन से लीडर अभी अंदर बैठे, बाहर की तरफ भी हमने देखा जयराम रमेश वगैरह दिखाई दे रहे। तो ये जरा सामने की तरफ अगर आप देखेंगे तो कुछ जरा दिखाइए, कुछ एकाक दो कार्यकर्ता है, वो महिला कार्यकर्ता वो भी यहां पर पहुंचे, और इसी बात को लेकर तो दिल्ली पुलिस के हाथ पांव फूले। इस वजह से डीसीपी नई दिल्ली सचिन शर्मा जो इनके जुरिडिक्शन नई दिल्ली का जुरिडिक्शन उनके पास आता है वो यहां पर पहुंच गए। इसी वजह से हाथ पांव फूले हैं क्योंकि अब प्रधानमंत्री आवास के बाहर ये अगर कोई धरना हो जिसकी आप जो कल्पना भी नहीं कोई कर सकता। राहुल,
13: और अप्रत्याशित विजुअल्स हैं, ये तस्वीरें हैं कि दो दो नेता विपक्ष राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी खुद, केसी वेणुगोपाल, तमाम सांसदों का यहाँ पर जमघट लगा हुआ है। और आप देखिए ये तमाम लोग 10 राजाजी मार्ग से पैदल चलकर आए हैं और उसके बाद ये तमाम रोड्स बंद किए गए हैं और कोशिश है कि यहाँ पर अब और कम से कम, लेकिन कार्यकर्ता मैं चाहूंगा दिखाएं,
9: दिखाइए,
13: कार्यकर्ता यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं, कोशिश है पुलिस की यहाँ पर भीड़ ना लगे। संदीप दीक्षित को मैं देख पा रहा हूँ, शीला दीक्षित जी के बेटे हैं और पूर्व सांसद हैं, वो तमाम लोगों को लेकर आ रहे हैं
9: आगे की तरफ। देखिए हम अगर आपको लेकर चलते हैं और ये देखिए, ये बिल्कुल दिल्ली पुलिस नहीं चाहेगी और सिक्योरिटी एजेंसी नहीं चाहेगी कि कम से कम इस इलाके से इस तरह की तस्वीरें दिखाई दे, लेकिन लगता है कि जो कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, जो कांग्रेस की रणनीति रही है, वही रणनीति के पहले जो कांग्रेस के बड़े नेता है वो धरने पर बैठे हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके तमाम जो कांग्रेस के लीडर है वो यहाँ पर आए। और देखिए दो दिन में मानसून सत्र चल रहा है लेकिन घमासान सड़क पर हो रहा है। 20 मार्च को कल आपने देखा किस तरीके से घमासान मचा हुआ था। अब जंतर मंतर से जो फोकस

0: लेकिन कुछ लीडर धीरे धीरे, और जो लीडर आ रहा है जाहिर सी बात है अपने साथ 8-10 कार्यकर्ता तो लेकर आ ही रहा है। यहाँ से कांग्रेस दफ्तर भी बेहद पास है,
1: बहुत पास है। देखिए यहीं से ही आप अकबर रोड तक जा सकते हैं और अकबर रोड पे ही कांग्रेस पार्टी का दफ्तर है। पूरा ट्रैफिक बंद है।
2: तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी दिल्ली का, अति संवेदनशील इलाका, सबसे संवेदनशील इलाका देश की राजधानी का, 7 लोक कल्याण मार्ग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निवास और उसके सामने नेता विपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के बड़े नेताओं का यह विरोध प्रदर्शन चल रहा है। मौसमी सिंह ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मौसमी, ग्राउंड जीरो पर इस समय लोगों को, कांग्रेस के नेताओं को वहां से हटाने के लिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह क्या कह रहे हैं उनको वहां पर?
3: देखिए आइए पहले, सबसे पहले आपको 360 डिग्री व्यू दिखा देते हैं कि ये जो गोल चक्कर है रास्ते, बड़े वीवीआईपी रोड है, तीन मूर्ति मार्ग, राजा जी मार्ग, अकबर रोड, ये पूरा गोल चक्कर बिल्कुल जाम हो गया है। दूर दूर तक यहाँ पे आवाजाही रोक दी गई है। ये प्रधानमंत्री आवास का गोल चक्कर है और यहीं से प्रधानमंत्री संसद के लिए प्रस्थान करते हैं, आते हैं वापस। तो यहाँ पे आप देखिए पैरामिलिट्री फोर्स के साथ साथ दिल्ली पुलिस का पहरा है और लगातार कांग्रेस नेताओं की संख्या यहाँ पे गौरव बढ़ती चली जा रही है। अलका लांबा हमारे साथ है, उनसे पूछते हैं। अलका जी, यहाँ पे डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी राहुल गांधी से बात कर रहे हैं, आप लोग यहाँ से जाएंगे अभी अभी कि नहीं, कि यहीं रुके रहेंगे?
4: हम जिस कारण को लेकर आए हैं वो मान लिया गया जाएगा तो हम चले जाएंगे। राहुल गांधी जी यहाँ पर नहीं, राहुल गांधी जी यहाँ पर आने से पहले आपने भी देखा, आप भी जरूर गई, अस्पताल में बच्चे घायल पड़े हुए हैं, हमारा बच्चे, हमारे बच्चे हैं, लहू लुहान है, दर्द में, जख्मों में करा रहे हैं। ये इतनी संवेदनहीन सरकार हो चुकी है, बच्चों का दर्द नहीं दिख रहा। 22 बच्चों ने आत्महत्या की, उनके माँ बाप जिंदा यहीं पर न्याय मांग रहे हैं, मिलने का समय मांग रहे हैं, प्रधानमंत्री जी आप उनसे नहीं मिलते हैं। राहुल गांधी जी वहां गए और बोला सदन में मैं आवाज उठाऊंगा, सदन तो स्थगित कर दिया, स्पीकर से भी बात की कि प्रधानमंत्री जी घर से नहीं निकल रहे, तो आज लोकतंत्र प्रधानमंत्री जी के घर की दहलीज पर आकर बैठ गया है, निकल लो बाहर। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को नाक का सवाल मत बनाइए, 22 बच्चों ने आत्महत्या कर लिए, लहू लुहान बच्चे पड़े, अब तो
3: रास्ता होगा कि मतलब यहाँ पे जिस तरीके से आप लोग खड़े हैं, पूरा रास्ता बंद है, हाई सिक्योरिटी जोन है, अगर आप डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी आ गए हैं इस्तीफे पर ही मानेंगे कि आप लोग कल संसद में बात करेंगे?
4: संसद में बात तो करें, आज दूसरा दिन है ना, आज कोई मौसमी बात हो रही है संसद में, हम तो चाहते हैं वही बात हो, और खाली बात नहीं हो, नतीजे में निकलिए। आप जब कह देंगे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को आज नहीं आने देंगे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, और अब तानाशाही से सत्ता पुलिस के दम पर भविष्य में बच्चों को ब्रुटालिटी से कुचलेंगे और अस्पताल तक मलहम लगाने पूछने उनका दर्द नहीं जाएंगे।
3: जेपी नड्डा गए थे,
4: कब गए थे?
3: आज गए थे, राहुल गांधी के पहले गए थे।
4: राहुल, तो प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं जा रहे? नड्डा जी को कल, स्वास्थ्य मंत्री है ना नड्डा जी, बात कर रहे थे कल, आज आपके दूसरे मंत्री बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी कितनी चलती है मंत्रालय में, सरकार में, क्या वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नड्डा जी और ये जो आए हैं आपने बताया वो ले लेंगे?
3: ये तो मानती है तो आप यही बैठे रहेंगे रात भर?
4: नहीं नहीं, ये तो प्रधानमंत्री जी को तय करना है कि कब तक लोकतंत्र उनकी दहलीज पे बैठा रहे, ये प्रधानमंत्री जी को तय करना है, आप तय कर लीजिए।
3: ये प्रधानमंत्री भी कह रहे थे कि पूरे मसले पे आप लोग सियासत कर रहे हैं, विपक्ष राजनीति कर रहा है इस मसले पर, जनता को ये बात बतानी पड़ेगी, आज उनने सुबह बोला तमाम एनडीए की बैठक में।
4: राजनीतिक लोग हैं, संसद में राजनीति के तौर पर चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, बच्चे आत्महत्याएं कर रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है, उस पर हम आवाज उठाए, तो राजनीति है, तो इसी राजनीति करने के लिए हम पैदा हुए हैं। अगर लोकतंत्र कराह है, दर्द में है, बच्चे को मारा जा रहा है, ब्रुटालिटी, आत्महत्याएं हो रही हैं, किसानों को कुचला जाएगा, तो लोकतंत्र कहता है चुप मत रहो, मुर्दे मत बनो, जान है तो आवाज उठाओ, आज वो आवाज यहां तक उठ रही है।
3: देखिए अलका लांबा भी यहाँ पे पहुंच गई है, पीछे आपको दिखा रहे हैं
2: ठीक, और इस खबर पर हम लगातार बने रहेंगे। आप देख रहे हैं 6 अलग अलग तस्वीरें राजधानी दिल्ली के सबसे संवेदनशील इलाकों में से, एक साथ लोक कल्याण मार्ग पर इस समय धरना प्रदर्शन जारी है। ये खबर इसके बाद भी आगे दंगल मेरे सहयोगी साहिल जोशी के साथ, देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
5: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।
7: नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी, दंगल में आपका स्वागत है। आज दिल्ली में जबरदस्त हलचल हो रही है। आज बात दिल्ली के

0: सियासी दंगल की ही करेंगे। जो मुद्दा सड़क से संसद तक गया है वो अब संसद से लेकर लौट कर सड़क पर आ गया है। पेपर लीक पर चल रहे आंदोलन में अब राहुल गांधी ने भी सड़क पर आंदोलन का रास्ता पकड़ लिया है। राहुल गांधी जंतर मंतर पर चल रहे थे, सीजेपी के मंच पर नहीं गए, बल्कि सात लोक कल्याण मार्ग। यह एक ऐसा पता है कि जो सभी को पता है, क्योंकि यहां पर प्रधानमंत्री का निवास स्थान है। वहां से चंद मीटर दूर अपने आंदोलन का एक नया मंच उन्होंने सजा लिया है। सड़क पर कांग्रेस के नेताओं के साथ राहुल गांधी ने धरना शुरू कर दिया है। तो पहले पुलिस ने लोगों को हटाने की कोशिश की, लेकिन फिर पीएमओ के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह खुद राहुल गांधी से मुलाकात करने वहां पर धरना स्थल पर पहुंचे हैं। हालांकि बातचीत के बावजूद कांग्रेस का धरना खत्म नहीं हो रहा है। एक मोर्चा जंतर मंतर पर चल रहा है, जहां बाकी विपक्षी पार्टियों के नेता वहां पर पहुंच रहे हैं। शरद पवार से लेकर अरविंद केजरीवाल तक और उद्धव ठाकरे तक नेता जंतर मंतर पर जा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने अपना एक नया मंच खोल चुका है। बाकी राज्यों के नेता जंतर मंतर पर नजर आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी से लेकर आम आदमी पार्टी तक, उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसदों के बाद अब शरद पवार जंतर मंतर पर सीजेपी के आंदोलन को समर्थन देने पहुंचे हैं। पेपर लीक का मुद्दा अब विपक्ष का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। मानसून सत्र के दूसरे ही दिन बाकी मुद्दे उठ रहे थे, लेकिन उधर शंभू बॉर्डर पर किसान बैठ गए हैं कि अमेरिका से ट्रेड डील ऐसी क्यों हो रही है, तो सरकार का क्या अगला कदम हो सकता है, संसद का गतिरोध अब कैसे दूर हो सकता है, और क्या सरकार विपक्ष और विद्यार्थियों की मांग पर विचार कर सकती है। तमाम बड़े सवाल है, चर्चा करेंगे, धरना स्थल पर भी चलेंगे। पहले दिन भर की हलचल वाली एक रिपोर्ट पहले देख लेते हैं।
1: सियासी मानसून की फुहार तीन जगहों पर दिखती है। सड़क पर कांग्रेस के धरने से जंतर मंतर पर सीजेपी के धरने तक, संसद में स्थगन के छींटे हैं तो सियासत में मुद्दों की बौछार। दो दो जगह धरना दिखा, एक कांग्रेस का, दूसरा सीजेपी का। कॉकरोच जनता पार्टी वाले अपनी मांगों पर ही धरना दे रहे हैं। कांग्रेस वाले कल के लाठीचार्ज के विरोध में सरकार से माफीनामे से लेकर राजीनामा तक मांग रहे हैं। यही मांग सीजेपी की है, यही मांग विपक्ष की है, यही मांग अब राहुल और कांग्रेस की भी, लेकिन मांगे और भी हैं। एक तरफ हरियाणा बॉर्डर पर किसान अमेरिका से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का विरोध करने पहुंचे, तो दूसरी ओर लाल लाल कपड़ों में कांग्रेस की नारी शक्ति आरक्षण का वंदन मांग रही थी। मंगल मिलन, एक तरफ पीएम मोदी एनडीए के घटक दलों के संसदीय दल के साथ मंगल मिलन करते, दूसरी ओर अस्पताल में नेताओं की कल के प्रदर्शन में घायल लोगों से मुलाकात चल रही थी। इन मुलाकातों में क्या निकला नेता खुद बताते हैं।
2: नीट के एग्जाम के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब पेपर लीक का खबर आए तुरंत सरकार ने कार्रवाई किया और 13 लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया है, और आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया।
3: कल मांग की गई थी प्रदर्शनकारियों की ओर से, क्या उस पे सरकार?
2: वो तो वो अलग विषय है, यहाँ संसदीय जो दल का मीटिंग है उसमें तो प्राइम मिनिस्टर का संदेश ही था।
1: सीजेपी वाले जंतर मंतर पर ही बैठे हैं, कहते हैं कि सरकार ने कल 5 घंटे का टाइम पास किया, मांगों पर कुछ हुआ नहीं। ये जरूर था कि कल का ज्ञापन लेने वाले मंत्री जेपी नड्डा घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे, तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी घायलों से मिलते हैं। बाकी आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल सफाई देते हैं कि वो आंदोलन में भले नहीं पहुंचे, उनके बच्चे आंदोलन में थे और पुलिस की बर्बरता झेली है। उधर बीजेपी कहती है कि पेपर लीक राष्ट्रीय समस्या है, सबको एकजुट होकर निपटना है, सरकार सख्ती से काम कर रही है। बाकी देश के युवा पेपर लीक के बाद हुई नीट परीक्षा के बाद जश्न मना रहे हैं, बीजेपी इस वीडियो को पोस्ट करती है। कहां तो मानसून सत्र में उत्पादकता बढ़ाने की हसरतें, कहां 2 दिन में शोक संदेश, शपथ ग्रहण, पेपर टेबल करने से आगे विधायक कार्यों की बोहनी तक नहीं हो पाई। अंदर से बाहर तक शोर, सियासत, बयानबाजी और विरोध। दोनों सदनों में शोर ही शोर। दूसरे दिन भी लोकसभा की कार्यवाही 3 बार के स्थगन के साथ करीब 20 मिनट का शोर हुआ। उधर राज्यसभा में 15 मिनट की कार्यवाही में एक बयान की 3 लाइन सुनाई पड़ी।
4: कल एक बहुत दुर्दैवी घटना हो गई और वो दुर्दैवी घटना में हमारे जो स्टूडेंट्स पेपर लीक और नीट एग्जामिनेशन के बारे में जो आवाज उठा रहे हैं उनके ऊपर लाठी चार्ज किए, टियर गैस दिए, उनको हॉस्पिटल में।
1: विपक्ष आवाज उठाता है, राहुल गांधी स्पीकर से मिलकर आ चुके हैं, चर्चा की मांग कर रहे हैं।
5: स्पीकर के पास गए हम एंड हमने कहा कि देखिए हम स्टूडेंट इशू पे डिस्कस करना चाहते हैं और स्पीकर ने हमें कहा कि डिस्कशन के लिए उन्हें सरकार से पूछना है। मतलब आप समझिए, स्पीकर इज टेलिंग अस दैट टू डिबेट इन पार्लियामेंट ही हैज टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट।
1: सरकार कह रही है कि हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है, लेकिन ये चर्चा कैसे कब शुरू होगी ये तय नहीं हो पा रहा, क्योंकि अब इन मुद्दों में राजनीति का रस काफी बाकी है। आज तक ब्यूरो।
0: तो इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है कि राहुल के धरने से अलग विपक्षी दलों के नेता जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर पहले सुप्रिया सुले और शरद पवार जंतर मंतर पर पहुंचे हैं। वहां पर शरद पवार और सुप्रिया सुले ने अभिजीत दिपके कांग्रेस जनता पार्टी के नेता उनसे बात की। केजरीवाल भी जंतर मंतर पर मौजूद है और वहीं कांग्रेस जनता पार्टी का धरना चल रहा है। उधर प्रधानमंत्री आवास वाली सड़क पर कांग्रेस का धरना जोरदार चल रहा है। हमारे साथ दोनों धरना स्थल से संवाददाता मौजूद है, पहले उनके पास चलेंगे। हमारे साथ में पीयूष मौजूद है और उसके साथ साथ अरविंद ओझा भी इस वक्त मौजूद है। थोड़ी देर पहले हमने देखा कि कांग्रेस का धरना 7LKM मार्ग पर जहां पर चल रहा था, लोक कल्याण मार्ग पर, वहां पर कुछ नेताओं को हिरासत में लिया गया था और जितेंद्र सिंह जो प्रधानमंत्री पीएमओ के मंत्री है उनसे भी राहुल गांधी ने बातचीत की है। अरविंद ओझा इस वक्त हमारे साथ पीएम आवास के करीब से वहां पर मौजूद है। अरविंद, क्या राहुल गांधी और उनके साथ में जो सांसद है वो वहां से हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि जितेंद्र सिंह उनसे मिलकर गए थोड़ी देर पहले?
6: बिल्कुल, अभी हटने को तैयार नहीं हो। जितेंद्र सिंह कुछ देर पहले ही यहां से गए हैं। बहुत मुमकिन है कि सरकार की तरफ से कोई मैसेज हो वो राहुल गांधी तक पहुंचाया जाए, बातचीत की जाए, और बहुत मुमकिन है कि यहां से हटने को कहा जाए, क्योंकि देखिए बेहद संवेदनशील इलाका है, यहां पर प्रधानमंत्री आवास है और यहां पर राहुल गांधी आए हैं, उनके साथ कई बड़े नेता आए हैं और उनके साथ साथ अब धीरे धीरे कई कार्यकर्ता भी आने शुरू हो गए हैं। तो कोशिश यही है कि यहां पर जो बड़े, अगर संदीप दीक्षित भी आपको दिखाई देंगे धीरे धीरे करके, जो तमाम नेता वो यहां पर आ रहे हैं, लेकिन अभी जो ताजा स्थिति है, जितेंद्र सिंह यहां से गए हैं, मान मलवल करने की कोशिश की गई है, लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, मल्लिका अर्जुन खड़गे, वो तमाम लीडर यहां पर आए हुए हैं। कुछ जो कार्यकर्ता थे यहां पर आए थे उनको हिरासत में लिया गया, कन्हैया कुमार समेत चन्नी जो पंजाब के बड़े लीडर हैं उनको यहां से हिरासत में लिया गया, लेकिन तस्वीर यहां पर है। पुलिस की संख्या आज, संदीप दीक्षित जी आज तक पर आप लाइव है सर, अभी क्या रणनीति है कांग्रेस की? सर
7: देखिए क्या हुआ था, ये मुद्दा करीबन 2-1 महीने से राहुल जी भी उठा रहे हैं, वो उसको एक अपने तरीके से उठा रहे थे, उसका विश्लेषण कर रहे थे, पूरी शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे थे और बहुत बेहतर और गहरे तरीके से बारीकियों में उन्होंने उसके नुकसान को सामने किया। यूथ और यंग लोग एक अपने तरीके से सड़क पर उतरे, अपने अपने विषय के कारण सड़क पर उतरे और हम लोगों का ये
0: समझना, उनको पूछिए युवा कि जंतर मंतर पर बाकी विपक्षी दलों के नेता जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर एक अपना अलग फ्रंट क्यों खोल दिया है,
7: कि जैसे भी जरा पूछिए इस मूवमेंट में आती आप सब और सरकार कहने लगती है तो राजनीतिक है, ये तो कांग्रेस स्पॉन्सर्ड है। मेरी बात सुन लीजिए, मैं अपनी बात,
6: वेरी सॉरी, मैं आपसे क्षमा मांगते हुए एक सवाल, चूंकि स्टूडियो से आए और बहुत इम्पोर्टेंट है, साहिल जोशी हैं, वो आपसे पूछ रहे हैं कि जब विपक्ष के सारे नेता शरद पवार अब वो जंतर मंतर पर हैं तो अलग राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के बाहर आकर धरने पर क्यों बैठे, क्या दो फ्रंट खोला जा रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है?
7: आप उसको दो फ्रंट मानते हैं, दो फ्रंट माने आप उसको मल्टी प्रॉन्ग अटैक मान रहे हैं, मल्टी प्रॉन्ग अटैक माने, जब किसी विषय के खिलाफ कोई, मैं सेना का शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहता, सेना बहुत महान होती है, हमारे में वो बात नहीं, पर सेना जाती है तो क्या एक फ्रंट पे लड़ती है? अलग अलग फ्रंट्स पे आप लड़ते हैं, कोई कहीं आंदोलित होता है, कोई कहीं बात करता है। जैसे अब आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने पूरे प्रोटेस्ट को सिमट दिया जंतर मंतर पे। जयपुर में प्रदर्शन हुए, हैदराबाद में प्रदर्शन हुए, एनएसयूआई ने कई शहरों में प्रदर्शन किए, उन प्रदर्शनों को तो आपने प्रदर्शन नहीं माना। तो एक जगह जमावट करके प्रदर्शन प्रदर्शन नहीं होता।
6: आप ये कह रहे हैं कि ये विपक्ष की रणनीति है?
7: मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम है, मैं कोई शीर्ष नेतृत्व नहीं हूँ, ना मैं जानता हूँ कि किसकी क्या रणनीति है। लेकिन मेरा ये कहना है, विपक्ष का काम होता है जो उसको मौका मिले, जहां उसको मौका मिले, ऐसे मुद्दे पर जहां देश की जनता आंदोलित है उसके साथ खड़े होना, अपने अपने तरीके से खड़े होना।
6: मेरी जो समझ है, मैं अपनी समझ के,
7: हम लोग की एकता उस मुद्दे पर है, ठीक है। तौर तरीके जमीन पर उतरना, कैसे काम करना, वो अलग अलग भी हो सकता है।
6: सरकार का ये भी आरोप था कि जो
8: तौर तरीके अलग है, एकता मुद्दे पर है। सुशांत बेहरा इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है जंतर मंतर से, जरा उनसे भी पूछ लेते हैं कि जंतर मंतर पर भी अलग अलग नेताओं का जमावड़ा वहां पर लगा हुआ है। सुशांत मेहरा डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन मौसमी सिंह इस वक्त हमारे साथ है। जो सवाल पूछा गया था यहां पर मौसमी, क्योंकि अचानक कांग्रेस पार्टी के तरफ से यह आंदोलन शुरू हुआ, राहुल गांधी के साथ तमाम कांग्रेस के सांसद सात लोक कल्याण मार्ग पर वहां पर पहुंच गए। दूसरी तरफ शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, सुप्रिया सुले और बाकी विपक्षी नेता वहां पर जंतर मंतर पर नजर आए। ये क्या स्ट्रैटेजी है? क्या विपक्ष की सोची समझी स्ट्रैटेजी है, कांग्रेस अपने रास्ते पर चल रही है? क्योंकि सुबह इंडिया अलायंस की एक बैठक भी बुलाई गई थी।
9: बिल्कुल साहिल, देखिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी राह इख्तियार कर रही है और उसको लगता है कि इससे ज्यादा दबाव सरकार पे बनेगा। मामला रणनीति का है, क्योंकि सुप्रिया सुले साथ में सुबह विपक्षी दल की बैठक में शामिल हुई थी, तमाम नेता साथ में राहुल गांधी के साथ स्पीकर से मिलने गए थे। लेकिन किस तरीके से अपना विरोध दर्ज करना है, किस तरीके से सरकार पर दबाव बनाना है, यहाँ इंडिया ब्लॉक की छतरी के तले छोड़ के यहाँ पे ज्यादा जोर इस बात पर दिया जा रहा है कि सब लोग अपनी अपनी तरीके से, चाहे वो डिंपल यादव हो जो जंतर मंतर या आरएमएल पर नजर आई, अपनी अपनी तरीके से विरोध दर्ज करें। आइए नासिर हुसैन साहब से पूछते हैं लाइव एक में। नासिर साहब, ये बोल रहे हैं जयराम रमेश बोल रहे हैं रात भर प्रोटेस्ट होगा, क्या डॉक्टर जितेंद्र सिंह आए थे, क्या पता चला?
10: कोई निष्कर्ष नहीं निकला है, कोई समाधान उन्होंने नहीं किया है, कोई हमारी बात उन्होंने मानी नहीं है, कोई डिमांड मानने की बात नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ रिक्वेस्ट करने के लिए आए थे कि हम उनसे विड्रॉ करें। जब प्रधानमंत्री पार्लियामेंट नहीं पहुंच रहे तो पार्लियामेंटेरियंस उनके घर पहुंच गए।
9: नहीं, पर ये बताइए कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो क्या क्या चाह रहे थे कि आप लोग यहाँ से हट जाएं?
10: वो तो रिक्वेस्ट कर रहे थे हम हटे हैं, हम कह रहे थे हमारे डिमांड्स पूरे करो, हम हट जाएंगे।
9: डिमांड क्या है, मतलब क्या इस्तीफे पे ही मांगेंगे या कुछ बीच का रास्ता है?
10: केंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें, होम मिनिस्टर स्टेटमेंट दें, उसके ऊपर चर्चा हो, और जो ये लड़के जो स्टूडेंट्स जो डिमांड्स रखे हैं उनकी सुनवाई हो, और उस सुनवाई होने के बाद में
8: ठीक है
10: उनके डिमांड्स
8: पूरे। तीन डिमांड
9: साहब बता
8: पार्टी की तरफ से यहाँ पर रखी गई है। पहला
10: जो लाठी चार्ज,
8: धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, गृह मंत्री अमित शाह सदन के भीतर अपना स्टेटमेंट दे, और उसके साथ साथ स्टूडेंट्स को लेकर भी कुछ डिमांड वहां पर रखने की कोशिश हो रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। सुशांत बेहरा जंतर मंतर से वहां पर मौजूद है। सुशांत, एक तरफ कांग्रेस पार्टी का मोर्चा जहां पर मौसमी दिख रही है, और वहां पर जंतर मंतर पर तमाम विपक्षी दल इकट्ठा हो गए, क्या यही सिलसिला वहां पर चलता रहेगा? वहां पर क्या हो रहा है, कांग्रेस के आंदोलन को कैसे देखा जा रहा है?
11: देखिए साहिल, जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास के पास अगर आप देखेंगे तो जबरदस्त भीड़ नजर आ रही है, तो वहीं जंतर मंतर पर भी जबरदस्त तरीके से
8: चलिए सुशांत बेहरा, शोर काफी हो रहा है वहां पर, लेकिन तस्वीरें हम दिखा सकते हैं, और मौसमी हमारे साथ जुड़ी हुई है। मौसमी, जितेंद्र सिंह को वहां पर भेजा गया था, क्या सरकार उम्मीद लगा, क्योंकि सुबह कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी कहा गया कि उनकी मुलाकात हुई स्पीकर के साथ में, उसके बाद राहुल गांधी बाहर आकर कहते हैं कि सरकार से बात करेंगे और उसके बाद स्पीकर बताएंगे, उनका अधिकृत बयान पार्लियामेंट के भीतर दिया गया, और उसके बाद सीधे वो सात लोक कल्याण मार्ग वहां पर पहुंच गए। क्या कांग्रेस पार्टी से अलग चर्चा करनी होगी अब सरकार को, और कांग्रेस जनता पार्टी के जो प्रतिनिधिमंडल गया था उनसे अलग चर्चा करनी होगी?
12: लगातार
9: देखिए सरकार के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन गया है, क्योंकि अगर उनको पता होता साहिल कभी नहीं, सरकार दिल्ली पुलिस कभी नहीं राहुल गांधी को यहाँ पे बैठने देती, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह सरकार के शांति दूत के तौर पे आए थे। वो सरकार जो अभी तक इतने दिन लगा दिए उस सरकार ने सीजेपी से बात करने में, वो सरकार कभी ऐसा नहीं होता कि एक केंद्रीय मंत्री यूं सड़क पर आए और विपक्ष से बात करे, विपक्ष जो करे तो करे। तो सरकार पर दबाव है और वो इसलिए है कि नोडल पॉइंट, टाइमिंग और नोडल पॉइंट, मॉनसून सत्र चल रहा है और प्रधानमंत्री का जो एंट्री गेट है उस पे राहुल गांधी बैठ गए हैं। जितेंद्र सिंह तमाम सवाल लेके आए थे, अनुरोध लेके आए थे, लेकिन उनको सवाल के जवाब में सवाल ही मिला। तीन शर्तें कांग्रेस ने रख दी, राहुल गांधी ने उनके सामने तीन शर्तें रख दी जिसका आपने जिक्र अभी किया। अब ये जयराम रमेश हमें कह के गए रात भर, तो क्या रात भर कांग्रेस यहाँ डेरा डालेगी, ये बड़ा सवाल है। राहुल गांधी को हमने भारत जोड़ो यात्रा में 22-25 किलोमीटर पर डे 3-4 हजार किलोमीटर चलते देखा है, तो उनके पास स्टैमिना तो है, पर क्या उसका औचित्य, लक्ष्य क्या है ऐसे धरने का।
8: लेकिन मौसमी आप कांग्रेस पार्टी कवर करती है, मुझे जरा एक बात समझनी है और दर्शकों को भी समझानी है। जंतर मंतर पर हम देख रहे हैं, जंतर मंतर पर विपक्षी दल के नेता एक के बाद एक वहां पर पहुंच जाते हैं, फिर वो समाजवादी पार्टी की तरफ से डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव वहां पर पहुंच जाते हैं, शरद पवार, सुप्रिया सुले वहां पर पहुंच जाते हैं, अरविंद केजरीवाल तमाम अपने सांसदों के साथ और नेताओं के साथ वहां पर पहुंच जाते हैं, उद्धव ठाकरे कल सुबह वहां पर आने वाले हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं कि विपक्षी दल अभिजीत दिपके या आंदोलन के साथ में, यहां पर कांग्रेस पार्टी अपना एक अलग मोर्चा खोले हुए हैं। इसका क्या मतलब निकाला जाए, क्योंकि एक तरफ तो सरकार 360 के नारे पर सबको एक साथ लाने की कोशिश कर रही थी अपने पास, और दूसरी तरफ विपक्ष अब एक बार फिर मुद्दा एक लेकिन मोर्चा अलग अलग, ये क्या है?
9: बिल्कुल साहिल, वाजिब सवाल है और महाराष्ट्र की राजनीति आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, समझते हैं। एक तरफ वाकई में डीलिमिटेशन की गाज कहीं ना कहीं तलवार सपा और कांग्रेस पर लटक रही थी, वहीं दूसरी तरफ एक तरीके से ये इस मुद्दे ने जिस तरह से गरमाया है उसने विपक्ष को एक नई ऊर्जा दे दी है, एक नई एकजुटता के मायने दे दिए है। अब ये स्ट्रैटेजी भी हो सकती है साहिल, देखिए दो धड़ों में विपक्ष किस तरह से अलग अलग प्रोटेस्ट कर है, ये एक स्ट्रैटेजी के तौर पे भी हो सकता है कि आप जब जंतर मंतर पे विपक्षी नेताओं पर फोकस कर रहे हैं कि अच्छा कौन गया कौन नहीं गया, शरद पवार अपने आप में एक उनका व्यक्तित्व है, उनकी गंभीरता है, अगर वो पहुंच जाते हैं और तब जब पता चलता है कि ग्रे जोन में एनसीपी शरद पवार चल रही है, तो यह उसके मायने बदल जाते हैं। और कि ये जो है तानाशाह सरकार है, राहुल गांधी ये कहते आए, कई विपक्षी नेताओं के मन में इसको लेके सवाल खड़े हो रहेंगे, लेकिन अब इस प्रोटेस्ट ने और जो लाठी चार्ज हुआ वो सवाल को थोड़ा धीमा कर दिया, मंद कर दिया, और दूसरी तरफ ये बिना तैयारी के ऐसे पहुंच जाना, बिना योजना के दिल्ली पुलिस को अंदाजा नहीं लगना, क्योंकि अगर मैसेज सर्कुलेट होता तो खबर
8: लगता है दिल्ली पुलिस को कल के प्रोटेस्ट के बारे में भी अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में दिल्ली की सड़कों पर लोग, स्टूडेंट्स मोर्चा निकालेंगे, इस तरीके से प्रदर्शन करने के लिए लौट पड़ेंगे। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, गृह मंत्री का सदन में बयान, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, सदन में चर्चा, नौजवानों के मुद्दे पर बात होगी, ये भी यहां पर कहा गया है। दिल्ली में लाठीचार्ज पर जांच की मांग, धरने पर बैठे कांग्रेस नेताओं ने पांच मांगे रखी है, उसमें पहली मांग शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है, दूसरी मांग गृह मंत्री का सदन में बयान होना चाहिए, जिस जो पेपर लीक की घटनाएं हुई है उस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए, तीसरी मांग और नौजवानों के मुद्दे पर बात होनी चाहिए, ये तीसरी मांग उसमें रखी गई है। दिल्ली में लाठीचार्ज पर जांच हो, ये भी मांग विपक्ष के तरफ से और कांग्रेस पार्टी के तरफ से खास करके रखी गई, और धरने पर जो नेता बैठे हुए हैं उनकी तरफ से ये मांग। फिलहाल जितेंद्र सिंह जो मिलने गए थे प्रधानमंत्री दफ्तर के जो राज्य मंत्री है वो जो मिलने गए थे मंत्री, उनको ये पांच मांगे बताई गई है। गुरुप्रकाश पासवान, देखिए जब सत्र शुरू हो रहा था उससे पहले हम चर्चा कर रहे थे 360 बीजेपी कैसे जुटाएगी, कैसे कैसे लोग तोड़ेंगे, कैसे कहां से लोग आएंगे, क्या एनसीपी एसपी आपके साथ जाएगी, क्या करेगी डीएमके, क्या करेगी। अब मामला ही पूरा बदल गया है, पूरा विपक्ष एक ही मुद्दे पर एक साथ आता हुआ नजर आ रहा है, एक नया मोर्चा खुल गया यहां पर।
12: नहीं नहीं देखिए साहिल जी, पहला तो आपने जो कहा तोड़ना जोड़ना ऐसा तो कुछ है नहीं, सब लोग स्वेच्छा से आए हैं अपने अपने अपने दलों से, तानाशाही से परेशान होकर के, निरंकुशता से परेशान होकर के भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। तो 360 या 400 ये अपने अपने गणित है, लेकिन मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, शुरुआत के दिनों से डे जीरो से हम लोगों का ये स्पष्ट रूप से मानना है साहिल भाई कि बातचीत होनी चाहिए, लोकतंत्र में संवेदनशीलता सकारात्मकता होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए। इस प्रकार से अराजकता हो रही है भाई, दिल्ली पुलिस का जो जवान जिसके ऊपर आपने हमला किया है वो आम आदमी नहीं है क्या, वो आपकी पीडीए की परिभाषा में नहीं आता है क्या। देखिए कुल मिलाकर के साहिल जी बात इतनी सी है, एसआईआर पे फेल, ईवीएम में फेल, चुनाव में फेल, तो सीजेपी का एक आंदोलन मिला है, इसका राजनीतिक लाभ उठा लिया जाए। मैं दावे के साथ कहता हूं, चुनौती के साथ कहता हूं, और फिर आप कहेंगे कि वॉट अबाउटरी कर रहा हूं, 2014 के पहले पेपर लीक की आप सूची निकालिए और 2014 के बाद की पेपर लीक की सूची निकालिए। पेपर लीक एक समस्या है, स्वीकार है इस बात से, पेपर लीक पे चर्चा होनी चाहिए, स्वीकार है,
8: सूची निकाली है मैंने,
12: भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, स्वीकार
8: निकाली है मैंने,
12: लेकिन अलग पॉलिटिक्स हो रही है, अलग पॉलिटिक्स हो रही है। 10 सेकंड चाहता हूं, बिल्कुल मैंने भी निकाली है साहिल भाई, आप भी निकालिए, हम भी निकालोगे, पता है देश की जनता को पता है, एक राष्ट्रीय समस्या
8: सूची है मेरे पास,
12: लेकिन जानबूझ करके देखिए राहुल गांधी जी वहां क्यों पहुंचे हैं अभी आपके, नहीं सूची मेरे पास भी है, सूची मेरे पास भी है सर 2014 के पहले का, और बिहार की भी सूची है मेरे पास जब ये लोग सत्ता में थे, लेकिन कुल मिलाकर के बात इतनी सी है, राहुल गांधी जी अचानक से इतने सक्रिय क्यों हो गए हैं, 20 दिन से यूरोप में थे तब देश की चिंता नहीं थी, उनको लगा देखो सपाई फुटेज खा रहा है, आम आदमी पार्टी फुटेज खा रहा है, अरविंद केजरीवाल फुटेज खा रहा है, भीम आर्मी फुटेज खा रहा है, हम लोग कहां गायब हो गए हैं, तो व्याकुलता में गए हैं राहुल गांधी जी, व्याकुल हो गए हैं और प्रधानमंत्री आवास के बाहर बैठ करके ऐसा कर रहे हैं। लोकतंत्र में हम चर्चा के समर्थक हैं,
8: बाबा साहब
12: अम्बेडकर के संविधान के अनुसार आप आइए, लोकतंत्र में जो संसद में लोग बैठे हो 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, सदन में कानून बनेगा, सड़क पे इस प्रकार से यू कैन नॉट होल्ड द पार्लियामेंट रैंसम, सदन हमारा सॉवरेंटी
8: संप्रभुता, आपको याद होगा
12: साहिल जी, आप जानते हैं इस बात को,
8: आपको याद होगा
12: क्या, सड़क में थोड़ी तय होगा,
8: सड़क पर कार्रवाई, सड़क पर आंदोलन होने के बाद ही इस देश में कई कानून पारित हुए हैं, फिर राइट टू इंफॉर्मेशन का कानून हो या लोकपाल का विधेयक का कानून हो, वो भी सड़क पर आंदोलन के बाद ही सदन पर कहीं ना कहीं प्रेशर डालने की कोशिश हुई है, सांसद इतने आसानी से नहीं मानते। हमारे साथ में सुरेंद्र राजपूत भी जुड़े हुए हैं, विनोद अग्निहोत्री भी है वरिष्ठ पत्रकार, और उसके साथ साथ स्वाति चतुर्वेदी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। लेकिन सुरेंद्र राजपूत, एक मुद्दा जो गुरुप्रकाश पासवान यहां पर उठा रहे हैं कि अब तक लग रहा था कि विपक्ष अलग अलग मुद्दे पर अब मुद्दा ढूंढने की कोशिश कर रहा था, कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं था कि जिस पर सारा विपक्ष एक साथ आकर बैठे, एक मुद्दा मिल गया विपक्ष को, यह बात तो सही है, और यह मुद्दा सरकार ने दे दिया, पेपर लीक हो गया और उसके बाद से विपक्ष अलग अलग मुद्दे पर इस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरती हुई नजर आ रही है, सवाल उठाती हुई नजर आ रही है, लेकिन यह दो दो आंदोलन क्यों हो रहे हैं, जंतर बंतर पर आंदोलन चल रहा था, अलग से आपने एक मोर्चा क्यों खोला हुआ है, यह भी सवाल यहां पर उठाया जा रहा है।
13: साहिल भाई, आप तो खुद में किसी एक परिवार, ऐसे परिवार से हैं जिस परिवार ने एक्टिविज्म किया है, अभी तो खाली दो मोर्चे खुले हैं, आने वाले समय में हो सकता है 600 मोर्चे खुल जाए, क्योंकि ये मोर्चे हम नहीं खोल रहे, ये मोर्चे तो छात्र खोल रहे हैं। आप हमें बताइए कि हमें फुटेज क्यों दे, जो गुरु भाई कह रहे थे कि हमें फुटेज खाने, भाई आप विपक्ष को फुटेज क्यों दे रहे हैं, जिस दिन छात्र आपकी, जिस दिन नीट की परीक्षा लीक हुई थी, छात्रों का भविष्य बर्बाद हुआ था, उसी दिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लेते तो हम लोगों को फुटेज क्यों मिलती, मान लीजिए हम राजनीति कर रहे हैं। जिस दिन एनटीए की परीक्षा, जैसे अभी 2014 से 2014 के बाद की बात कर रहे हैं, 2014 से पहले एनटीए था क्या, वो परीक्षाएं लीक हो रही थी, इसीलिए तो एनटीए बनाया था ना 2014 के बाद, उस अगर उस जो आपने जिसके लिए बनाया था एनटीए, अगर वही अपने पर्पज में सॉल्व नहीं कर रहा है तो ऐसे एनटीए को चूल्हे भाड़ में फेंकिए, नई व्यवस्था लेकर के आइए, हमें फुटेज मत दीजिए गुरु प्रकाश जी, फुटेज आप खाइए, क्योंकि फुटेज खाने का काम मोदी जी का है, सेशल से लेकर के और इंडोनेशिया तक, खाइए आप फुटेज, हमेशा खाते आए, हमेशा चैनलों की उसमें आप लगातार 75% आप है, 25% में पूरा विपक्ष है, मान लीजिए आप फुटेज खाना चाहते हैं, आप खाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कृपा करके भारत की जनता को तो बख्शिए, आप फुटेज ले लीजिए, राहुल गांधी को मत बैठने दीजिए धरने पर, आज अभी धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा दिला दीजिए और अभी क्या नाम प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी संसद में बयान दे दे कि ऐसी कोई नहीं होगी, फुटेज प्रधानमंत्री जी को मिल जाएगी। मतलब किस तरीके की ये थेथरई की बातें कर रहे हैं, मेरे को ये शब्द कहते गुरुजी के गुरु भाई के लिए अच्छा नहीं लगता, लेकिन कर रहे हैं। अब पुरानी चीजों पर आ जाते हैं हम, आप बता दीजिए हमें तीन चार चीजें, साहिल भाई आप बताइए, आप तो आंदोलन के प्रोडक्ट हैं, बताइए ना कि किसी आंदोलन में क्या बगैर वर्दी की पुलिस लाठी डंडा भांजती है, या बगैर क्या नाम लाठी डंडा भांजने वाले जो वर्दी में नहीं होते वो आतंकी कहलाते हैं। दिल्ली में कल जिस तरीके से बगैर पुलिस के लोगों ने, चाहे वो संघ के लोग रहे होंगे, भाजपा के लोग रहे हो या पुलिस के लोग रहे होंगे, मुझे नहीं पता, आतंकवादियों की तरीके से काम किया है, निहत्थे छात्रों पर ऐसे ऐसे मार रहे हैं, 11, 12 साल के लड़के, 12वीं पढ़ने वाला बच्चा घेर के मार रहे हैं उसको, और वो कह रहा आओ मुझे मारो। आप क्या आपने बना दिया है, और उसके बाद आप कहते हैं कि साहब इसका कनेक्शन विदेश से है। अरे भाई आप विदेश के कनेक्शन
8: को बात कर रहे हैं, यहाँ पर
13: लीक के कनेक्शन को ढूंढिए,
8: और वहां पर राहुल गांधी अभी ट्वीट कर रहे हैं, और उन्होंने ट्वीट पे किया हुआ है, धरने पर बैठे हैं राहुल गांधी, और वहीं से उन्होंने दरअसल ये अपील की है सोशल मीडिया के जरिए, और इस अपील में धरने में शामिल होने की अपील की है। उनका कहना है कि 7 लोक कल्याण मार्ग पर जो कांग्रेस पार्टी धरना दे रही है उस पे देशवासी शामिल हो जाए। अब मैं एक बार फिर अपने ओरिजिनल सवाल पर लौटता हूं। देखिए ये सब चर्चाएं होती रहेंगी, ये तो मैं समझता हूं कि विपक्ष अपना काम करेगा। अगर लाठीचार्ज होता है दिल्ली के सड़कों पर, इतना बड़ा धरना प्रदर्शन होता है, लोग सड़क पर उतरते हैं, उस पर पुलिस लाठीचार्ज करती है, जो भी है उस पर विपक्ष सवाल उठाएगा। लेकिन एक बार फिर मेरा वही सवाल है, जंतर मंतर पर एक देश की जनता जुड़ी हुई है, आपके सारे जो सहयोगी पार्टियां हैं वहां पर जाकर उनका उनको मदद करने की कोशिश कर रही है, उनके मंच पर जा रही है, यहां ये मंच कांग्रेस पार्टी का है
13: जी,
8: क्या
13: जी
8: ये कांग्रेस पार्टी का मंच है? आप कांग्रेस पार्टी के मंच पर एक अलग मोर्चा खोलने की कोशिश कर रहे हैं।
13: मैं
8: सवाल ये है यहां पर,
13: मैं दोनों बातें आपको बता रहा हूं। हाँ बता देते हैं ना, एक बड़ा पुराना गाना था साहिल भाई, आप तो बंबई से भी है, कहते ना कि तेरे दर पे सनम चले आए और तू ना आया तो हम चले आए। तो हम प्रधानमंत्री जी के दर पे गए हैं, तेरे दर पे सनम चले आए, और उसी धरने के प्रदर्शन के सपोर्ट में गए हैं, उन्हीं छात्रों के सपोर्ट में गए हैं जो छात्र आज की डेट में परेशान हैं। वो छात्र चाहे जंतर मंतर पर बैठे हैं, लखनऊ में बैठे हैं, मुंबई में शिवाजी पार्क पर बैठे हैं जैसे कल शिवसेना के लोगों के साथ बैठे हुए थे, या लखनऊ में बैठे या कहीं पर भी बैठे, सबके समर्थन में है हम। श्री राहुल गांधी
8: तो अलग अलग नहीं
13: समर्थन में है, सारे छात्रों की मांगों के समर्थन में है, बिल्कुल अलग नहीं। हम विपक्ष के लोग
8: अलग नहीं है, गुरुप्रकाश पासवान
13: की समस्याओं के साथ
8: जो में आपको लग रहा था वैसे वो कह रहे कि अलग अलग नहीं है, हम साथ में ही हैं।
13: नहीं
14: नहीं देखिए
8: कहीं हाँ। भी अलग नहीं है
14: नहीं मैंने ध्यानपूर्वक हाँ नहीं नहीं देखिए मैंने ध्यानपूर्वक सुना, सुरेंद्र जी वरिष्ठ व्यक्ति हैं भाई और बातों में इनकी गंभीरता होती है, लेकिन देखिए दुखद क्या है, दुर्भाग्यपूर्ण क्या है, मैं पुनः बोलना चाहता हूं, पंजाब में छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है और दलित छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, वहां इनके आंसू नहीं निकलते हैं। पश्चिम बंगाल में 2 महीने पहले तक तृणमूल कांग्रेस की सरकार थी, वहां अराजकता थी, वहां इनकी आंखों में आंसू नहीं निकलते हैं। हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है, जो बेचारे वरिष्ठ नागरिक है उनको पेंशन नहीं मिल रहा है, स्वास्थ्य के लिए खर्चा पानी नहीं मिल रहा है, वहां इनके आंसू नहीं निकलते, देश सवाल पूछता है। देखिए साहिल जी पूरी गंभीरता के साथ कहना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ, अरे सत्ता में तो हम अभी आए हैं, हमारा तो इतिहास है, हमारा डीएनए आंदोलन का है, मैं पटना से बिहार से लाइव हूं, यहां से ही जयप्रकाश नारायण जी ने कांग्रेस की निरंकुश सरकार के खिलाफ नारा दिया था कि सिंहासन खाली करो की जनता आती है। अरे हम लोग तो आंदोलन से निकले लोग हैं, आंदोलन में
8: विद्यार्थियों का आंदोलन
14: था, हुए लोग हैं, हमें अब बताना चाहते हैं, वो भी स्टूडेंट आंदोलन था, बिल्कुल, और वो भी स्टूडेंट आंदोलन था, लेकिन इस प्रकार से राजनीति नहीं। 20 दिन आप यूरोप में रहिएगा, यूरोप में रहिएगा साहिल जी, और यूरोप से आने, यूरोप में आपके बीच में नहीं बोल रहा था सर, क्षमा चाहता हूं, धन्यवाद, आप 20 दिन से यूरोप में हैं, आपको भारत की गर्मी आप सह नहीं पाते हैं और यूरोप से आकर के यहां पे मौके की तलाश करते हैं, भाई अरविंद जी को ना मिल जाए, सपा की डिंपल यादव को ना मिल जाए, अरे चंद्रशेखर रावड़ को ना मिल जाए, आप अपने हाउस क्वार्टर में लेकर के आइए। पंजाब में जिस प्रकार से आपके दलित समाज के नेता चरणजीत सिंह चन्नी अपमानित हो रहे हैं, हरियाणा में शैलजा अपमानित हो रही हैं, और बात संविधान की कर रहे हैं,
8: सदन में चर्चा होती तो ये सड़क पर आंदोलन नहीं होता।
14: पंजाब के मुद्दे
8: भी, नया मुद्दा यहां पर,
14: सबके मुद्दों को देखिए आप,
8: ठीक है
14: सदन में,
8: ठीक है स्वाति चतुर्वेदी, अगर सदन के भीतर चर्चा होती है,
14: सदन में
13: सिर्फ 5 सेकंड
8: सुरेंद्र राजपूत, 5 सेकंड जी, 5 सेकंड
13: चलिए बटल दे दीजिए प्लीज, जी मैं तीन चार चीजें, पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता पता नहीं कहां कहां से कौन कौन सी बातें करके विषयांतर हम नहीं होने देंगे गुरु भाई, और ना हम फालतू की चीजों का जवाब देंगे, नंबर एक। नंबर दो, जंतर मंतर पर हम आपको नई चीज बता देते हैं जो अभी किसी को नहीं पता है। जंतर मंतर पर पूरा सेवा दल बीवी श्रीनिवास के नेतृत्व में वहां पर लोगों की सेवा कर रहा है, खाना दे रहा है, पानी दे रहा है। आप जाएं तो जाकर के चेक कर लें। हमें उम्मीद थी कि भाजपा वाले भी अपनी सेवा करेंगे, आरएसएस वाले अपनी सेवा करेंगे जैसे वो अन्ना आंदोलन के समय में कर रहे थे, लेकिन नहीं की। सेवा दल जनता जंतर मंतर पर है, राहुल गांधी लोक कल्याण मार्ग पर।
8: विपक्षी दलों का तांता लगा है जंतर मंतर पर, उसमें ममता बनर्जी का नाम भी जोड़ना पड़ेगा क्योंकि ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कोलकाता में कि वो भी जंतर मंतर के आंदोलन पर जा सकती है। सीजेपी के आंदोलन में ममता बनर्जी जा सकती है, क्या बोला है उन्होंने जरा सुन लेते हैं।
15: दरकार होले कॉकरोचर प्रोग्रामे आमी निजेओ जाबो, कारण आमादेर समर्थन प्रथम थेकेई छिल, आछे एवं थाकबे।
8: तो ममता बनर्जी भी अभी वहां पर जाएगी, कल उद्धव ठाकरे भी वहां पर पहुंचने वाले हैं, शरद पवार आज ही जाकर आए हैं और उसके साथ साथ बाकी विपक्षी दल के नेता भी जंतर मंतर पर जा रहे हैं। और अभी सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी वहां पर, बाकी व्यवस्था का वहां पर उनका प्रयास वहां पर चल रहा है। अभी उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी है वहां पर, कहने की कोशिश है उनकी, सेवा दल के लोग, कांग्रेस सेवा दल के लोग। स्वाति चतुर्वेदी, जो मेरा ओरिजिनल सवाल था, ऑपरेशन 360 चल रहा था ये कह रहा था, गुरु प्रकाश पासवान कह रहे हैं कि खुद से लोग गए, चलिए वो चर्चा में आज नहीं जाएंगे हम। लेकिन अब मुद्दा पूरा अलग हो गया है, लगता है कि विपक्षी दलों को अब डिलिमिटेशन की कोई फिक्र नहीं है, अब जो होगा वो सड़क पर होगा, यानी सदन के भीतर जो होगा वो होगा लेकिन सड़क पर ही अब आंदोलन करना होगा, एक बार फिर वो साथ में नजर आ रहे हैं।
16: क्यों करना पड़ रहा है साहिल, मैं दो तीन पॉइंट रखना चाहती हूँ। देखिए, जो बर्गर बच्चे एक तरह से कहा जाए कर रहे थे, उन्होंने फोर्स किया, एक सुनहरी मौका दे दिया कांग्रेस पार्टी को और पूरे विपक्ष को। हम लोग कल तक बात कर रहे थे कि शरद पवार क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे, आज वही शरद पवार हम लोग देख रहे हैं जंतर मंतर पे है। और अगर राहुल गांधी को लोक कल्याण मार्ग से हटाया नहीं गया, उनका धरना चलने दिया गया और चलता रहा, तो हम ये देखेंगे शरद पवार वहां भी पहुंच जाएंगे, ममता बनर्जी भी वहां पहुंचेंगे, उद्धव ठाकरे भी वहां पहुंचेंगे। एक तरह से ये सुनहरी मौका है विपक्ष का, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत अहम मुद्दा है, और 25 बच्चे बन चुके हैं, 7 महीने से ये चल रहा है, और अहंकार देखिए सरकार का कि वो बच्चों को पिटवा रही है। और मतलब ये तो हमने सबने देखा है, मतलब। और गुरु प्रकाश पासवान जी जो कह रहे थे, मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहती हूँ, राहुल गांधी राजनीति नहीं करेंगे तो राहुल गांधी करेंगे क्या भाई? वो कांग्रेस के नेता है, विपक्ष के नेता है, तो हम लोग क्या अब आपत्ति करेंगे कि राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं? राहुल गांधी का काम राजनीति करना है, ये देश की डेमोक्रेसी है, इसमें राजनीति के अलावा राजनेता क्या करेंगे?
8: नहीं, लेकिन मौका किसने दिया? क्योंकि उनका यह भी कहना है कि अगर अभिजीत दिपके या उनके सहयोगी वहां पर आंदोलन शुरू नहीं कर रहे होते तो आज तो राहुल गांधी कुछ और ही कर रहे होते। एक विपक्षी पार्टियों को मौका दिया ना वहां पर, सोनम वांगचुक या फिर अभिजीत दिपके, इन लोगों ने जो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, ऐसा मानकर चले हम, जैसे अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल थे एक जमाने।
16: ठीक है, मैम, इसीलिए मैंने कहा कि वो बेचारे बर्गर बच्चे हैं, अभी आंदोलन असली प्रोफेशनल पॉलिटिशियंस करेंगे, उनको समझ में आ गया है। मतलब सब लोग भुनाते हैं, हर नेता भुनाता है, हर मुद्दा भुनाता है, लेकिन भूल चूक और गलती तो हुई सरकार से। सरकार का अहंकार इतना क्यों है कि अगर एक मंत्री, हम लोग जिम्मेदारी की बात क्यों नहीं करते भाई? हम विपक्ष से जिम्मेदारी मांग रहे हैं या सरकार से मांग रहे हैं? ये जिम्मेदारी सरकार की थी।
8: गुरु प्रकाश पासवान इसका जवाब देंगे, लेकिन इससे पहले विनोद अग्निहोत्री जी, एक क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, सालों से आप देख रहे हैं सदन की कार्रवाई भी देख रहे हैं, और जिस तरीके से आंदोलन सड़क पर होते आए, ये पहली बार नहीं है कि दिल्ली की सड़क पर इस तरीके से आंदोलन हो रहा है। लेकिन एक बात बड़ी दिलचस्प लगी इस बार, 12 साल में पहली बार मैं देख रहा हूं कि कोई मंत्री सड़क पर आकर विपक्ष से बात कर रहा है जब आंदोलन चल रहा है, नंबर एक। नंबर दो, कल जब यह आंदोलन हो रहा था, 20 तारीख के आंदोलन की पहले से घोषणा की गई थी, क्या आपको लगता है कि एक तरीके से सरकार को अचंभित कर दिया जिस तरीके से भारी संख्या में छात्र वहां पर सड़क पर उतर आए? और यह कई बार सरकार के साथ होता है, अन्ना हजारे का आंदोलन रामलीला मैदान पर जब पहली बार शुरू हुआ था, किसी ने आंका नहीं था कि इतना बड़ा आंदोलन हो जाएगा वो, क्या इस बार भी यही चीज आपको देखने को मिल रही है?
17: दरअसल साहिल भाई, होता क्या है कि राजनीतिक पार्टियां जब सत्ता में होती है तो वो अपने कार्यकर्ताओं से ज्यादा अफसरों की सुनती है, अधिकारियों की सुनती है। वही मनमोहन सिंह की सरकार के समय अन्ना आंदोलन के दौरान हुआ था और वही इस सरकार में भी हो रहा है। अभी गुरु भाई कह रहे थे जयप्रकाश आंदोलन की याद दिला रहे थे, तो भाई जयप्रकाश आंदोलन में भी तो इंदिरा गांधी का इस्तीफा मांगा जा रहा था, अब्दुल गफूर का इस्तीफा मांगा जा रहा था और उसमें भी लोग सड़क पर थे और उसमें भी लाठियां चली थी जेपी तक, तब तो विरोध किया गया था ना। तो जब उस आंदोलन से निकले हुए लोग सत्ता में हैं तो उनको तो ज्यादा जनरस होना चाहिए, ज्यादा उदार होना चाहिए आंदोलनों के प्रति, उनको तो तुरंत रीच आउट करना चाहिए जनता के, छात्रों को। तो छात्रों को अगर जो काम नड्डा जी ने कल किया, नड्डा जी से मिलने दो लोग गए, उनको बुलाया गया, यही काम अगर पहले हो जाता, अगर सोनम वांगचुक 18 दिन सेंटर में बैठे थे तो शायद कल वाले प्रदर्शन की रौनक नहीं आती। लेकिन अंडर एस्टिमेट किया गया, अनदेखा किया गया, अनसुना किया गया और नतीजा ये हुआ कि कल का जो प्रदर्शन हुआ उसमें जिस बड़ी संख्या में लोग आए, और ये लोग साईं भाई मैंने भी पता किया अपने रिपोर्टर से और तमाम लोगों से, ये कहना गलत है कि कोई अकेले कांग्रेस जनता पार्टी के लोग थे, ये टोटल अपने पहल पर आए हुए लोग थे, नौजवान थे, बच्चे थे, जो तमाम मुफस्सिल शहरों से, छोटे शहरों से, कस्बों से, गांवों से निकल करके आए हैं। तो इसका मतलब सरकार को ये समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं छात्रों में, नौजवानों में एक असंतोष है और शायद यही वजह है यहाँ जितेंद्र सिंह जी जब राहुल गांधी वहां बैठे हैं लोग कल्याण मार्ग पे जाकर के, जहां कोई पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, संभव नहीं होता है, वहां जब पहुंच गए हैं तो जितेंद्र सिंह जी उनसे मिलने गए। देखिए किसान घेरे बैठे रहे 20 महीने तक दिल्ली को, मंत्री तो छोड़िए कोई संतरी भी नहीं किया उनसे मिलने, बाद में प्रधानमंत्री जी ने अपनी तरफ से फिर उन मामलों को वापस लिया, हाँ उनसे वार्ता के दौर हुए मंत्रियों से, मंत्रियों के साथ, लेकिन 23 दौर की वार्ताएं हुई और सफल विफल हो गई। बाद में प्रधानमंत्री जी ने माना कि उनको लगा कि जो है कि ज्यादा बड़ा हो रहा है मामला, तो उन्होंने वो कानून वापस लिए। तो ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे ये कहना है कि राहुल गांधी क्यों बैठे, आपका सवाल बड़ा मौजूद है कि राहुल गांधी अचानक क्यों बैठ गए, जंतर मंतर क्यों नहीं बैठना चाहिए। दरअसल ये धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का और नीट का मुद्दा सबसे पहले राहुल गांधी ने उठाया था और राहुल गांधी के निर्देश पर यूथ कांग्रेस के और एसवाई के कार्यकर्ताओं ने देश के तमाम शहरों में प्रदर्शन करने शुरू कर दिए थे। और जब कांग्रेस जनता पार्टी आ गई, उसने इस मुद्दे को ले लिया, तो निश्चित रूप से कांग्रेस के अंदर ये चिंतन था कि जो है कहीं उनका मुद्दा
18: सेंटर ऑफ अट्रैक्शन सोनम वांगचुक बन गए। अभिजीत दीप के जो महाराष्ट्र के संभाजीनगर से आते हैं, उनकी चर्चा सोशल मीडिया पर होने लग गई, तो जाहिर सी बात है कि विपक्षी पार्टियों के नेताओं को लगा होगा कि भाई हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए उसमें। लेकिन गुरुप्रकाश पासवान, आपको मौका दे रहे हैं, आप दोनों के सवालों का जवाब दीजिए। अगर सरकार पहले चर्चा करती तो हो सकता है कि आज ये नौबत नहीं आती जो कल दिल्ली में देखा गया, या आज जितेंद्र सिंह जो वहां पर जाकर राहुल गांधी से बातचीत कर रहे हैं।
14: नहीं देखिए साहिल जी, राहुल गांधी जी अपने भाषणों में एक शब्द का उपयोग करते हैं, एक लाइन का उपयोग करते हैं कि भाई देश इंस्टीट्यूशन से चलता है, तो मैं उनकी लाइन ही बोरो कर रहा हूं, मैं उनका लाइन उधार भी ले रहा हूं। तो ये इंस्टीट्यूशंस कहां है? ये इंस्टीट्यूशन जंतर मंतर है क्या? आप डेमोक्रेसी में क्या प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं? कल को भविष्य में किसी की भी सरकार हो, कोई भी 10 व्यक्ति, 25 व्यक्ति, 100 व्यक्ति जंतर मंतर में आकर के अपनी बात इस प्रकार के मनवाए, या फिर 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला जो हमारा सदन है, जो हमारा संसद है, उसमें चर्चा होनी चाहिए। आप सड़क पे ये स्ट्रीट जस्टिस तो नहीं कर सकते हैं ना। आपने भी कल के वीडियोज देखे हैं साहिल जी, भारत माता है तो पिता कौन है? नेपाल बना देंगे, बांग्लादेश बना देंगे। नेपाल में क्या वो माजरा हुआ था आपको याद नहीं है क्या? और इस आप प्रोटेस्ट करिए, प्रोटेस्ट का सम्मान है, हम प्रोटेस्ट से निकले लोग हैं, हम आंदोलन से निकले लोग हैं। डिसेंट इज द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र है तो विरोध होगा, लोकतंत्र है तो आपको अपनी बात कहने का मौका मिलेगा, लेकिन इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। हिंसा, पत्थर, भारत माता है, पिता कौन है, नेपाल बना देंगे, बांग्लादेश बना देंगे, आई एम सॉरी, लोकतंत्र का सम्मान है, डिसेंट का सम्मान है, लेकिन इस प्रकार से आपको बातें नहीं करनी चाहिए। और पुनः मैं बोलना चाहता हूं, सरकार संवेदनशील थी, सरकार संवेदनशील है और सरकार समाधान केंद्रित अप्रोच चाहती है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड बात हो। इस्तीफा दो, अरे भाई इतने सारे आप, और इस्तीफा की जहां तक बात होती है, मुझे याद आता है साहिल जी कि एनडीए 1 की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, रेलवे का एक हादसा हुआ था, नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दिया था। तो इस्तीफा देना या सत्ता में बने रहना यहां मुद्दा है ही नहीं, मुद्दा है कि भाई ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, एक राष्ट्रीय समस्या है, एक राष्ट्रीय क्राइसिस है, आइए हम आप मिलकर के बात करें। सदन में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होती है, ऑल पार्टी मीटिंग का एक प्रावधान बना हुआ है, आप उसको भी बॉयकॉट कर देते हैं। कुल मिलाकर के बात इतनी सी है, सरकार समाधान चाहती है लेकिन विपक्ष व्यवधान चाहता है, विपक्ष समाधान
18: कैसे होगा, समाधान
14: चाहता है, सिर्फ और सिर्फ चुनाव को
18: कैसे होगा समाधान? देखिए पांच मांगे जो नजर आ रही है
14: और कुछ नहीं, समाधान बातचीत करने
18: नहीं, से होगा। पांच मांगे जो नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी की, पांच मांगे कांग्रेस जनता पार्टी की, तीन मांगे, ये तीनों अगर ये इसे मिला दिया जाए तो उसमें तीन मांगे तो एक जैसी ही नजर आती है, और उसमें एक मांग तो पूरी तरीके से कॉमन है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले हम देख रहे हैं कि जितेंद्र सिंह अमित शाह से मिलने भी गए हुए हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे उसको लेकर। रोहित सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित सिंह, हमने कल चर्चा की थी, शनिवार को हमने चर्चा की थी इसी बात को लेकर, आपको भी अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में छात्र उतर जाएंगे, लेकिन अब देखा आपने कितना बड़ा मोर्चा वहां पर निकला है, कितना बड़ा आंदोलन प्रदर्शन वहां पर हुआ है। आज सरकार को बात करनी पड़ रही है विपक्ष से, आप कैसे देखें, आज कैसे देखेंगे इस पूरे आंदोलन को?
19: देखिए
18: चार FIR वगैरह तो हो चुके हैं, वो सब तो होता रहेगा। हाँ
19: देखिए साहिल जी, लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देश की सरकार ने आज विपक्ष का सम्मान करते हुए विपक्ष के नेताओं से सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों को संवाद स्थापित करने के लिए भेजा है, बात हो रही है। मेरा मानना है कि विशुद्ध छात्रों की आड़ में कोई राजनीतिक घटनाक्रम को अंजाम देने का षड्यंत्र विपक्ष न करे। छात्रों की आड़ में अपने गलत पॉलिटिकल एजेंडे को सेटल्ड करने के लिए ऑपोजिशन अगर प्रयास करेगा तो देश की जनता क्षमा नहीं करेगी। विद्यार्थियों के नेतृत्व को बहकाने का प्रयास ऑपोजिशन न करे। राहुल गांधी जी ने लास्ट कौन सा आंदोलन किया है ये देश को याद नहीं है। ममता बनर्जी जी ने लास्ट आंदोलन सिंगूर में किया था, उसके बाद कौन सा मूवमेंट किया ये देश को याद नहीं है। तेजस्वी यादव ने लास्ट कौन सा मूवमेंट फैलाया ये देश को याद नहीं है। आज जब देश के छात्र किसी इशू को लेकर देश की सरकार के साथ संवाद कर रहे हैं, प्रतिरोध कर रहे हैं, तो विपक्ष के जो सम्मानित राजनेता हैं, जिनके पांव के नीचे की राजनीतिक जमीन खत्म हो चुकी है, उनका जमीर मर चुका है। अभी तक राहुल गांधी कहां थे? सोनम वांगचुक जी पिछले 20 दिनों से अधिक समय से दिल्ली में अनशन पर बैठे हैं, राहुल गांधी विदेश घूम रहे थे, अखिलेश जी का पता नहीं था, तेजस्वी यादव यूरोप में थे, और अब जब देखा कि स्टूडेंट्स का मूवमेंट संवाद की ओर बढ़ रहा है तो राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, अखिलेश यादव, संपूर्ण ऑपोजिशन के राजनेता जिनका पॉलिटिकल स्टंट फेल हो चुका है, वो स्टूडेंट मूवमेंट में कूद गए सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी को सेकने के लिए।
18: आपको नहीं लगता रोहित सिंह
19: इसको विटनेस नहीं कर रही है?
18: नहीं, जरा सीधी तस्वीरें हम दिखा देते हैं। जितेंद्र सिंह दोबारा पहुंचे, थोड़ी देर पहले अमित शाह गृहमंत्री से उन्होंने मुलाकात की, और उसके बाद दोबारा सात लोक कल्याण मार्ग जहां पर यह प्रदर्शन चल रहा है वहां पर पहुंचे, और अभी राहुल गांधी से बातचीत भी करेंगे वहां पर, दोबारा वहां पर पहुंचे हुए, दोबारा चर्चा वहां पर होगी। लेकिन रोहित सिंह, एक सवाल यहां पर बनता है कि क्या आपको नहीं लगता कि एक तरीके से सरकार के रवैये ने भी मौका दे दिया? अगर सरकार उन 18 दिनों में सोनम वांगचुक से बातचीत करती तो हो सकता है कि विपक्ष को यह मौका ही नहीं मिल पाता। आज विपक्ष के पास आपने परोस कर एक तरीके से यह मुद्दा दे दिया।
19: देखिए मेरा स्पष्ट मानना है कि विपक्ष के राजनेता एक षड्यंत्रकारी राजनीति को हवा देने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें वह असफल हो जाएंगे। और रही बात सत्ता पक्ष के द्वारा सोनम वांगचुक जी से, नौजवानों से, छात्रों से संवाद स्थापित करने के संदर्भ में, मेरा मानना है सरकार ने हर संभव प्रयास किया है, और अगर कोई एडामेंट है
18: किसी चीज को
19: लेकर, जी
18: सरकार चतुर्वेदी जवाब देंगे, कुछ बताना चाह रही है आपको।
19: देखिए सरकार के कल वरिष्ठ मंत्री जेपी नड्डा जी ने विद्यार्थी के नेताओं से बात की, आज नड्डा जी अस्पताल में जाकर
18: 20 दिन बाद
19: विद्यार्थियों से मिले हैं, आज जितेंद्र सिंह जी बात कर रहे हैं, सरकार
18: के बाद
19: सरकार सोनम वांगचुक जी के स्वास्थ्य के प्रति भी संवेदनशील है और देश के विद्यार्थियों के विषयों के प्रति भी संवेदनशील है। विपक्ष का एक
18: स्वाति चतुर्वेदी जवाब दे रही है आपको, स्वाति चतुर्वेदी कुछ कहना चाह रही है रोहित सिंह जी।
16: सुनाइए, आपको मेरी आवाज आ रही है साहिल? साहिल आपको मेरी आवाज आ रही है?
18: आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, बोलिए।
16: हाँ मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इनकी बातें सुन के मुझे, रोहित सिंह जी की बातें सुन के मुझे अचंभा हो रहा है। सरकार कोशिश कर रही है, सरकार ने कोशिश की, मतलब कितने, इनको पता है कि 25 बच्चे मर चुके हैं, कब से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हो रही है, कैसे बनी कॉकरोच जनता पार्टी, मतलब ये क्या, हम लोग एक ही इंडिया में रह रहे हैं, और ये सरकार आज तक, एक मैंने इनको इंटरप्ट नहीं किया, मुझे बोलने दे साहिल, इनसे मुझे बोलने दे,
19: कॉकरोच नहीं हो सकता है
16: साहिल, साहिल देखिए गलत बात है,
18: माफ करिए मेरा समय खत्म हो रहा है,
19: देश का नौजवान
16: मुझे मुझे खत्म करने दे साहिल।
18: आज की स्थिति में जो स्थिति इस वक्त नजर आ रही है रोहित सिंह या पूरे पैनल को मुझे कहना है, क्योंकि लगातार स्थिति बदल रही है। दिल्ली की सड़कों पर दो जगह पर इस वक्त आंदोलन चल रहे हैं, एक जंतर बंतर पर और दूसरा सात लोक कल्याण मार्ग पर। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और कांग्रेस के तमाम नेता सात लोक कल्याण मार्ग पर नजर आ रहे हैं। जितेंद्र सिंह प्रधानमंत्री दफ्तर के जो मंत्री है वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। थोड़ी देर पहले उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की थी, ये दूसरी बार जितेंद्र सिंह वहां पर पहुंचे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि रात भर वहां पर आंदोलन चलेगा, ये गांठ नहीं छूटेगी जब तक, उनका कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे। अब सरकार कांग्रेस पार्टी के इस आंदोलन के सामने क्या प्रस्ताव लाती है, और उसके साथ साथ एक नई खबर, राहुल गांधी के धरने पर आम आदमी पार्टी ने अब सवाल उठाए हुए हैं। अब विपक्ष के भीतर एक अलग राजनीति यहां पर नजर आ रही है। थोड़ी देर पहले हम इसी बात को लेकर बातचीत कर रहे थे। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी इसमें अपनी राजनीति तलाशने की कोशिश कर रही है। तो राहुल गांधी के धरने पर आम आदमी पार्टी का ने भी सवाल उठाया हुआ है। अतिशी जो दिल्ली की मुख्यमंत्री रही है आम आदमी पार्टी के नेता, उनका यह कहना है कि सीजेपी के धरने को कमजोर करने की कोशिश, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद कह रहे हैं। और उसके साथ साथ अतिशी कह रहे हैं कि क्या जुगलबंदी लगा के रखी है, तो एक तरीके से कांग्रेस पार्टी का जुगलबंदी में रखी है। लगातार दिल्ली में कई सारी घटनाएं हो रही है, उस पर हम नजर बनाए रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे, ब्रेक के बाद भी इसी आंदोलन पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: वी आर ओवर जिमी।
2: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा, आप अपना देख लो।

0: in association with Hind, Bade Aaram Se. Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
1: Punjab National Bank, Bharose Ka Prateek.
0: विमल बोलो जुबां केसरी।
2: जहां जुर्म वहीं कहानी, जहां कहानी वहीं साजिश, जहां साजिश वहां क्राइम। जुर्म चाहे कितना ही उलझा हो, उसकी परतें हम सुलझाते हैं। देखिए क्राइम तक यूट्यूब पर और बचिए हर क्राइम से।
3: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।
4: स्पीकर पे, स्पीकर के पास गए हम एंड हमने कहा कि देखिए हम स्टूडेंट इशू पे डिस्कस करना चाहते हैं और स्पीकर ने हमें कहा कि डिस्कशन के लिए उन्हें सरकार से पूछना है। मतलब आप समझिए, स्पीकर इज टेलिंग अस दैट टू डिबेट इन पार्लियामेंट ही हैज टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। ही इज ओपनली टेलिंग अस दैट। ठीक है, देखिए इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है और ये जो किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, दिस इज कंप्लीटली अन इंडियन। मोदी जी हैज नॉट इवन अपोलोजाइज्ड फॉर व्हाट हैज हैपेंड यस्टरडे। नाउ ये जो युवा हैं, ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में, टेस्टिंग सिस्टम के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरा देश जानता है कि एजुकेशन सिस्टम, टेस्टिंग सिस्टम इज ब्रोकन, इट हैज सीज्ड टू एग्जिस्ट।
5: देखिए हम राहुल जी लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं काफी समय से, ये कोई और कोई नया मुद्दा नहीं है, लेकिन इशू ये है कि ये बार बार बार बार हो रहा है और इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। मुझे याद है जब मैं यूपी में काम कर रही थी तो जो पेपर लीक हो रहे थे वो एक दो जो एकदम जो नीचे वाले अधिकारी हैं उनको आपने अरेस्ट कर लिया या दो दिनों के लिए रख लिया थाने में, उसके बाद बात वहीं पे रुक जाती है। किसी पर कार्रवाई नहीं हुई है, किसी पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। अब ये मुद्दा इतना ज्वलंत इसलिए है क्योंकि देश के युवा हैं ये और ये समझ रहे हैं कि हमारे फ्यूचर, हमारे भविष्य के लिए क्या है। हमारे माँ बाप लोन लेकर मुश्किल से हमें पढ़ाते हैं, हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारे लिए इतना मुश्किल है। आप कोचिंग सेंटर्स को देखिए, मैंने बहुत सारे देखे और कोचिंग सेंटर्स में जाइए और कोई भी माँ बाप जानता है, मतलब किसी भी लेवल का, किसी भी सोसाइटी में आप जानते होंगे आपके बच्चे जब पढ़ते हैं तो कितना टेंशन होता है, कितना जब एग्जाम होता है कितना टेंशन होता है। एज इट इज इतनी मुश्किल परिस्थिति है, ऊपर से आपने जॉब्स क्रिएट नहीं किए हैं।
6: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
0: इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
8: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।
9: हेक्सा ऑर्गेनिक, रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।
10: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd. to the bank, and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge, and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
11: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
12: We hope you're loving TuneIn, but are you ready to love it even more? Upgrade to TuneIn Premium for the ultimate listening experience. Remove ads from top news stations.
13: The climate disaster-related death rate. Tornadoes, hurricanes.
12: Enjoy nonstop music with absolutely no commercials. And hit the field for live sports play-by-play from the biggest leagues.
14: Williams keeps it. First down. Touchdown.
12: Ready to upgrade your listening? Sign up for TuneIn Premium now.
15: We are over, Jimmy.
16: Hey, life mein scratches to aayenge. Gaadi ke scratches ko to Cosmo PP ab samal lega. आप अपना देख लो।

0: सियासी मानसून की फुहार तीन जगहों पर दिखती है। सड़क पर कांग्रेस के धरने से जंतर मंतर पर सीजेपी के धरने तक, संसद में स्थगन के छींटे हैं तो सियासत में मुद्दों की बौछार। दो दो जगह धरना दिखा, एक कांग्रेस का, दूसरा सीजेपी का। कॉकरोच जनता पार्टी वाले अपनी मांगों पर ही धरना दे रहे हैं। कांग्रेस वाले कल के लाठीचार्ज के विरोध में सरकार से माफीनामे से लेकर राजीनामा तक मांग रहे हैं। यही मांग सीजेपी की है, यही मांग विपक्ष की है, यही मांग अब राहुल और कांग्रेस की भी, लेकिन मांगे और भी हैं। एक तरफ हरियाणा बॉर्डर पर किसान अमेरिका से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का विरोध करने पहुंचे, तो दूसरी ओर लाल लाल कपड़ों में कांग्रेस की नारी शक्ति आरक्षण का वंदन मांग रही थी। मंगल मिलन, एक तरफ पीएम मोदी एनडीए के घटक दलों के संसदीय दल के साथ मंगल मिलन करते, दूसरी ओर अस्पताल में नेताओं की कल के प्रदर्शन में घायल लोगों से मुलाकात चल रही थी। इन मुलाकातों में क्या निकला नेता खुद बताते हैं। सीजेपी वाले जंतर मंतर पर ही बैठे हैं, कहते हैं कि सरकार ने कल 5 घंटे का टाइम पास किया, मांगों पर कुछ हुआ नहीं। ये जरूर था कि कल का ज्ञापन लेने वाले मंत्री जेपी नड्डा घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे, तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी घायलों से मिलते हैं। बाकी आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल सफाई देते हैं कि वो आंदोलन में भले नहीं पहुंचे, उनके बच्चे आंदोलन में थे और पुलिस की बर्बरता झेली है। उधर बीजेपी कहती है कि पेपर लीक राष्ट्रीय समस्या है, सबको एकजुट होकर निपटना है, सरकार सख्ती से काम कर रही है। बाकी देश के युवा पेपर लीक के बाद हुई नीट परीक्षा के बाद जश्न मना रहे हैं, बीजेपी इस वीडियो को पोस्ट करती है। कहां तो मानसून सत्र में उत्पादकता बढ़ाने की हसरतें, कहां दो दिन में शोक संदेश, शपथ ग्रहण, पेपर टेबल करने से आगे विधायक कार्यों की बोहनी तक नहीं हो पाई। अंदर से बाहर तक शोर, सियासत, बयानबाजी और विरोध, दोनों सदनों में शोर ही शोर। दूसरे दिन भी लोकसभा की कार्यवाही 3 बार के स्थगन के साथ करीब 20 मिनट का शोर हुआ। उधर राज्यसभा में 15 मिनट की कार्यवाही में एक बयान की 3 लाइन सुनाई पड़ी।
1: कल एक बहुत दुर्दैवी घटना हो गई और वो दुर्दैवी घटना में हमारे जो स्टूडेंट्स पेपर लीक और नीट एग्जामिनेशन के बारे में जो आवाज उठा रहे हैं उनके ऊपर लाठी चार्ज किए, टियर गैस किए, उनको मारे, हॉस्पिटल में।
0: विपक्ष आवाज उठाता है, राहुल गांधी स्पीकर से मिलकर आ चुके हैं, चर्चा की मांग कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है, लेकिन ये चर्चा कैसे कब शुरू होगी ये तय नहीं हो पा रहा, क्योंकि अब इन मुद्दों में राजनीति का रस काफी बाकी है। आज तक ब्यूरो।
2: सांसद रवि किशन हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर आज आप

0: भी मंगल मेल में मौजूद थे, क्या सबसे मंगल बात आपको लगी आज के?
1: मंगल बात है कि आज यंगस्टर्स के जो भविष्य हैं, भारत के भविष्य, उनके बारे में जो उन्होंने बात की, नीट पेपर में आने वाले में कभी अपराध ना हो, जो 13 अपराधी पकड़े गए उनको कितनी कड़ी सजा और कितने जल्द मिले, उस पर बात हुई। आज बहुत फॉर्म थे, हाइड्रोजन ट्रेन जो विश्व का सबसे पहली ट्रेन, सबसे बड़ी ट्रेन है, उस पर स्पेस में जो 28 साल के बच्चे काम कर रहे हैं, जो अब हमारे माउंटेनियर्स जो जाके वहां ऊपर जो भी हायर पोस्ट पे जो भी गंदगी होती है उसको ट्रेस करके डिस्ट्रॉय करने वाला एक बहुत बड़ा आविष्कार हुआ है, उस पर बात हुई।
0: आज
1: फोकस पॉइंट वाज ओनली यंग।
0: प्रधानमंत्री का सीधा संवाद यूथ से रहा, आपको क्या लग रहा है इससे? आप जो युवा पीढ़ी है, आपको लग रहा है कि वो बात सुनेगी और जो बात कही प्रधानमंत्री?
1: ऑफकोर्स ये प्राइम मिनिस्टर वेरी सेंसिटिव अबाउट यंगस्टर्स, हमारे देश के यंगस्टर्स के लिए बहुत सेंसिटिव।
0: नीट को लेकर आपको लग रहा है कि जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं जो बात है वो उसको लेकर?
1: देखिए कानूनी चीजें हो गई हैं, उस पर अब टिप्पणी नहीं, कल संवाद सरकार ने की, और डेफिनेटली प्रधानमंत्री जी भाई अपने देश के बच्चों के भविष्य के लिए सेंसिटिव क्यों नहीं रहेंगे?
0: तो बात बताते हुए बीजेपी सांसद रवि किशन, उनका ये कहना है कि नीट को लेकर सरकार काफी संवेदनशील है और उसको लेकर आगे कड़े कदम उठाने की भी सोच रही है। दिल संतोष मिश्रा आज तक के लिए।

0: राहुल प्रियंका की मौजूदगी में प्रधानमंत्री आवास के सामने कांग्रेस का धरना। नेता विपक्ष बोले, जवाबदेही से बच नहीं सकते प्रधानमंत्री। लोगों से विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की अपील। धरने की जगह पहुंचकर सरकार की तरफ से जितेंद्र सिंह ने की राहुल गांधी से मुलाकात। वापस लौटकर अमित शाह से कर रहे हैं मुलाकात, साथ में गृह सचिव भी मौजूद। कांग्रेस के धरने पर आम आदमी पार्टी ने उठाए सवाल, कहा ये सीजेपी के प्रदर्शन को कमजोर करने की है साजिश। आतिशी ने किया कटाक्ष, क्या जुगलबंदी है। संसद में हंगामे के बीच प्रधानमंत्री ने एनडीए मीटिंग में दिया कड़ा संदेश, कहा नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ किसी कीमत पर नहीं होगा बर्दाश्त। पेपर लीक पर किया कड़ा एक्शन। और मध्य प्रदेश विधानसभा से पारित हुआ यूसीसी बिल, सीएम मोहन यादव ने बताया ऐतिहासिक। उत्तराखंड गुजरात असम के बाद बना चौथा राज्य।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।
2: स्पीकर ने हमें कहा कि डिस्कशन के लिए उन्हें सरकार से पूछना है। लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, दिस इज कम्प्लीटली अन इंडियन।
3: सरकार खुद उचका रही है कि देश में अनार्की हो, फिर उसको दबाया जाए।
4: कभी हिटलर ने अपने पॉलिटिकल लोगों के साथ इस तरह का एक गैंग बनाया था, कभी हिटलर ने बनाया था, और आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देखते हैं।
5: प्रधानमंत्री जी ने अपील भी किया है, पेपर लीक जैसे पाप काम किया है उन लोगों को घोर सख्त सजा मिले।

0: आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस की लीडरशिप प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठ गई है। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे क्योंकि बीते दिन सीजेपी का प्रोटेस्ट और उसके आसपास अगर जंतर मंतर के आसपास एपिसेंटर था तो सरकार के खिलाफ विरोध का एपिसेंटर प्रधानमंत्री आवास बनाने की कोशिश शुरू हो चुकी है। इस बीच आपको बता दें पूरा कांग्रेस का लीडरशिप वहां मौजूद है। राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट में लिखा है, मैं हर उस देशभक्त भारतीय से अपील करता हूं जो मानता है कि हमारे छात्रों को न्याय मिलना चाहिए, प्रधानमंत्री आवास के सामने शामिल होने हमारे धरने में वो आ जाएं। इस धरने में कांग्रेस सांसदों और संगठन के बड़े नेताओं के अलावा रेवंत रेड्डी को छोड़कर पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं। राहुल गांधी के इस प्रदर्शन के बीच केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह धरने पर बैठे नेताओं के बीच आए, राहुल गांधी से बातचीत की। बाद में जितेंद्र सिंह गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंच गए। सवाल है कि क्या कल के सीजेपी के प्रदर्शन से बने माहौल से कांग्रेस समेत विपक्ष को एक मौका मिला है। लेकिन इसी के साथ साथ आज अगर विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा है और सरकार को इस पर जवाबदेह बना रहा है तो देखिए आम आदमी पार्टी की तरफ से हमला हुआ है। हम आपको वो भी दिखाएंगे। लेकिन वैसे आज आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए की मीटिंग में पेपर लीक को घोर पाप कहा और ये संदेश देने की कोशिश की है कि युवाओं के साथ सरकार खड़ी है। ऐसे में सवाल है कि क्या पीएम आवास तक विरोध कर विपक्ष सरकार पर दबाव बनाने में कामयाब हो सकेगा। प्रधानमंत्री के द्वार तक तकरार, यही है हल्ला बोल का विषय। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें ये रिपोर्ट। नीट पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग और सीजेपी के प्रदर्शन से बने माहौल पर कांग्रेस ने अब सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की रणनीति बना ली है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर से प्रधानमंत्री आवास के लिए खड़गे और राहुल गांधी समेत कांग्रेस के बड़े चेहरों ने मार्च निकाला और पीएम आवास के बाहर धरने पर बैठ गए। नौबत ये आई कि राहुल से बात करने पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह वहां पहुंचे। यानी विपक्ष अब सरकार पर अब तक के सबसे बड़े राजनीतिक दबाव की रणनीति बनाता दिख रहा है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी जैसे नेताओं का ये प्रदर्शन बता रहा है कि अब ये टकराव यहीं खत्म नहीं होने वाला।
1: एमपी की अगर ये बात है तो बच्चों का क्या बनेगा? ये पुलिस वालों को शर्म आनी चाहिए कि इनके भी बच्चे वहाँ टेस्ट दे रहे हैं।
2: बीजेपी का आतंकवाद है ये बीजेपी का आतंकवाद है, गुंडागर्दी का राज है।
0: इस धरना प्रदर्शन से पहले राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष का प्रतिनिधिमंडल स्पीकर ओम बिरला से भी मिला था। इंडिया अलायंस पेपर लीक समेत तमाम मुद्दों पर संसद में बहस की मांग कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक पेपर लीक और सीजेपी के प्रोटेस्ट में पुलिस एक्शन जैसे मुद्दों पर चर्चा की मांग माने जाने तक विपक्ष संसद में हंगामा जारी रखेगा।
3: स्पीकर ने हमें कहा कि डिस्कशन के लिए उन्हें सरकार से पूछना है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, दिस इज कम्प्लीटली अन इंडियन।
4: और जो कल छात्रों के साथ, युवाओं के साथ हुआ है, कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि आजादी के बाद इस तरह का व्यवहार किसी सरकार ने किया हो। और यहां तक सुनने को आया और सोशल मीडिया पे जो वीडियोस आए हैं कि कभी हिटलर ने अपने पॉलिटिकल लोगों के साथ इस तरह का एक गैंग बनाया था, लगता है इस तरह के लोग थे जो प्राइवेट ड्रेस में थे और लाठी लेकर के लोगों को मार रहे थे, कभी हिटलर ने बनाया था और आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देखे।
0: विपक्ष की रणनीति साफ है कि संसद और सड़क दोनों जगहों पर युवाओं के नाम पर सरकार को घेरो। सरकार हालात को समझ रही है। आज सुबह संसद भवन में एनडीए की बैठक हुई थी। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक को घोर पाप कहा था, साथ ही पेपर लीक पर राज्यों को भी मुस्तैदी दिखाने की नसीहत दी थी।
5: प्रधानमंत्री जी ने ये अपील भी किया है कि उनका जो सजा है उसको सख्ती से सख्ती सजा कैसे दिया जाए, उसमें सारा टॉप क्लास के वकील लोग भी साथ दें ताकि जो पेपर लीक जैसे पाप काम किया है उन लोगों को घोर सख्त सजा मिले और आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया।
0: सरकार ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि प्रधानमंत्री मोदी युवाओं को लेकर बेहद संवेदनशील हैं और पेपर लीक के दोषियों पर कार्रवाई को लेकर सरकार गंभीर है। लेकिन कल सीजेपी के प्रदर्शन में पुलिस लाठी चार्ज और आंसू गैस छोड़े जाने से विपक्ष को मौका मिल गया है। विपक्ष का आरोप है कि पुलिस ने सीजेपी के प्रदर्शनकारियों पर ज्यादती की है। राहुल गांधी घायल प्रदर्शनकारियों से मिलने आरएमएल अस्पताल भी गए। विपक्ष का आरोप है कि सरकार अराजकता फैला रही है। इस बीच कल सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल से मिलने वाले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा भी घायल प्रदर्शनकारियों से मिलने गए। पुलिस के मुताबिक सीजेपी के कल के प्रदर्शन में 60 प्रदर्शनकारी और 118 सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं। पुलिस ने हिंसा को लेकर 5 FIR दर्ज की है।
6: जिस तरह से कल प्रोटेस्ट चल रहा था उसमें से कुछ इस तरह के कुछ पत्थर वगैरह आए तो उसमें चोट लग गई। बैरिकेड में के आसपास उनको रोक रखा था और उसमें से कुछ क्राउड में कुछ लोगों ने पत्थरबाजी करना शुरू कर दिया तो उस वजह से फिर मुझे चोट लगी।
7: हाँ, ये थोड़ा सा माइनर सा फ्रैक्चर है और थोड़ा सा स्वेलिंग हो गया, मसल टियर हुआ है क्योंकि इसमें पत्थर लगे थे, क्योंकि वो सर पे मार रहे थे, मुंह पे मार रहे थे तो हाथों पे रोकना पड़ा तो उस वजह से इससे हो गया। और काफी सारे लोगों से स्कफल हो रहा था, जो प्रोटेस्टर थे वो काफी ज्यादा नंबर में थे तो उनसे स्कफल होने में, उनको पुश करने में, उनको रोकने में जो परेशानियां हुई उसके दौरान ये चोट लग गई।
0: सीजेपी के प्रदर्शन पर पुलिस अपनी कार्रवाई भले कर रही हो लेकिन सीजेपी ने जंतर मंतर पर दोबारा धरना शुरू कर दिया है, जहां बड़े नेताओं का पहुंचना शुरू हो गया है। उधर जब सारी सियासत सड़क पर हो रही है तो आज लगातार दूसरे दिन संसद के मॉनसून सत्र में कामकाज नहीं हो सका आज तक। ब्यूरो तो बड़ी खबर यह है कि देखिए पहले जितेंद्र सिंह राहुल गांधी से मुलाकात करते हैं, उसके बाद इस वक्त वो गृहमंत्री अमित शाह के साथ बातचीत कर रहे हैं, उसमें क्या निकलता है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि आम आदमी पार्टी सीधा हमला कर रही है। इससे पहले कि आपका परिचय खास मेहमानों से कराएं, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि आतिशी ने यह कहा है कि जुगलबंदी चल रही है। उनका इशारा कांग्रेस और बीजेपी की तरफ है। वही कांग्रेस के धरने पर अब मोदी जी ने राहुल को धरने पर बिठाया है, ऐसा संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद ने एक्स पर पोस्ट किया है। सीजेपी के धरने को कमजोर करने की कोशिश करा दिया है कांग्रेस पार्टी के प्रोटेस्ट को। आइए आपका परिचय खास मेहमानों से करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, अभय दुबे प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, धीरेन्द्र कुमार एलजेपी की तरफ से हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें आइए आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। मौसमी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई है, इसी के साथ साथ हिमांशु मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कुछ देर में अरविंद ओझा भी जुड़ेंगे। मौसमी इस वक्त क्या स्थिति है और राहुल गांधी अगर अन्य लोगों को भी कह रहे हैं कि वो कांग्रेस पार्टी के इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हो, इधर आप देख ही रही हैं आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है, वहां पर आप मौजूद हैं, किस तरह से समझाएंगे हमारे दर्शकों को?
8: बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जो अप्रत्याशित तस्वीरें देखने को मिल रही हैं अंजना, क्योंकि ये हाई सिक्योरिटी जोन है और मैंने ये कहा कि 2014 से ये पहली बार हो रहा है कि इस तरह विपक्ष के नेता यहाँ प्रधानमंत्री आवास के मेन एंट्रेंस गेट पे बैठे हुए हैं। नेता विपक्ष लोकसभा राज्यसभा सब डेरा डाल के बैठ गए हैं, 2 घंटे हो गए हैं। पीछे आप देखें तो पुलिस की गाड़ियों का काफिला है, सत्या जरा ऊपर करके दिखाइए और आपको प्रधानमंत्री आवास की वो लाल बत्ती दिख जाएगी जो बैरिकेड है, वहां पे एक छोटा सा पोर्च है जहां पे तमाम काली वर्दी में सुरक्षा कर्मी है, हाई सिक्योरिटी जोन में जहां परिंदा भी नहीं पर मार सकता, वहां पे बतौर स्ट्रैटेजी के एक फ्लैश प्रोटेस्ट करते हुए कांग्रेस खड़गे साहब के आवास से आ जाती है। तमाम जो 120 सांसद है उनको भी हवा नहीं थी कि उनको ये करना है, उनको कहा गया कि 3 बजे आप खड़गे साहब के घर पर पहुंचे। लोगों को लगा शायद खड़गे साहब जन्मदिन नहीं मना रहे लेकिन एक जमघट होगी, लेकिन वो जमघट नहीं हुई। सीधे मार्च करते हुए यहाँ पे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और खड़गे साहब पहुंच जाते हैं तो अपने आप में पुलिस की नींद उड़ी हुई है। आप कह सकते हैं पूरा जो घेरा है आप देख लीजिए बिल्कुल चक्का जाम है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह हमारे ही सामने यहाँ पे आए, आधे घंटे उन्होंने वार्तालाप की लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात, राहुल गांधी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेके और गृह मंत्री अमित शाह के स्टेटमेंट को लेके जो लाठीचार्ज कल हुआ है उसके लेके जो है बिल्कुल अड़ गए हैं और उससे कम में बात उनको नहीं लगता कि बनने वाली है। और कांग्रेस यहाँ पे अब देर रात तक और आगे लंबी तैयारी के साथ जमीन पर संसद से सड़क तक उतर आई।
0: बिल्कुल, और देखिए एक तरफ संसद भी चल रही है और सड़क पर भी ये बवाल हो रहा है। आपके साथ अगर अरविंद है तो उनको भी शामिल कर लीजिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की स्ट्रैटेजी पर आपने जानकारी दी। पुलिस की तो इस वक्त सांसें फूल रही होंगी, एक तरफ सीजेपी का प्रोटेस्ट है और दूसरी तरफ ये। अरविंद, अरविंद को साथ में, पुलिस के की स्ट्रैटेजी पर भाई उनकी तो सांसें फूल रही होंगी इस वक्त।
8: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अरविंद को मैं बेटन थमाती हूँ, क्योंकि लगातार दिल्ली पुलिस पे अपनी नजरें रखे हुए। अरविंद बताइए क्या स्ट्रैटेजी है और कितनी नींद खराब हो रही है पुलिस की, कितनी बड़ी बात हो गई?
9: देखिए बिल्कुल चुनौती वाली बात है, और बात ये भी है क्या लगता है किसी रणनीति के तहत राहुल गांधी यहाँ पर बैठे हुए। तस्वीर जरा आपको जो सत्य है वो, हाँ बिल्कुल सत्य दिखाएंगे, क्या ये रणनीति सत्य, आप तस्वीर जरा दिखाइए और पूरा पैन करके दिखाइए। देखिए ये वो जगह है प्रधानमंत्री आवास है और इसके पास अमूमन इस तरह भीड़ दिखाई नहीं देती। जैसे ही कोई अगर व्हीकल यहां से गुजरता है तो एसपीजी के लोग रोक कर उससे चेकिंग करते हैं। तो रणनीति के तहत यहां पर राहुल गांधी बैठे हुए हैं और कल पूरे दिन दिल्ली पुलिस की नींद उड़ी हुई थी। जिस तरह से संसद भवन के जब करीब जाने की कोशिश की गई थी, क्योंकि बीएनएस की धारा 163 लगी हुई है, मनाही है वहां पर प्रोटेस्ट की, वहां पर जब वहां से पथराव हुआ ऐसा पुलिस का कहना है, उसके बाद फिर जो यूथ है उनको खदेड़ा गया और उसके बाद आज दिन भर शांति रही। पुलिस ने वहां पर सिक्योरिटी लगाई विजय चौक के आसपास और उसके बाद कुछ घंटों के बाद एक रणनीति के तहत जो हमें जानकारी मिली अंजना, पैदल राहुल गांधी चल करके आए हैं और इस जगह पर बैठे हैं। और जरा ये तस्वीर बहुत अहमियत रखती है, देखने
0: साथ जाइए आप दोनों, साथ चले जाइए आगे की तरफ।
9: ये सामने की तरफ आप अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कार्यकर्ता मीडिया कर्मी मौसमी जरा आप यहाँ आएंगी तो ये दिखाइए अमूमन क्या इस तरह की देखिए आप देखती
8: थी। नहीं अमूमन इस तरह की तस्वीर देखने को नहीं मिलती। और देखिए ये कोई सांसद नहीं है, 120 सांसद
9: पूरा दिखाइए,
8: 120 सांसद तो आई है अंजना। अब लगातार राहुल गांधी ने जो अपील कर दी है वो बेहद खतरनाक है। राहुल गांधी ने लोगों को कह दिया है कि जनता जो है यहाँ पे उनके साथ जुड़े, मुमताज यहाँ पे है, उनसे पूछते हैं क्या ये बहुत बड़ा मतलब एक लंबा प्लान आप लोग बना रहे हैं और क्या ये सुरक्षा के लिए चिंता की बात नहीं होगी। राहुल गांधी ने आह्वान कर दिया लोगों को यहाँ पे इकट्ठा होने,
10: अनप्रेसिडेंटेड मूव बिल्कुल है। लेकिन अगर आपने सिक्योरिटी सुरक्षा की बात करी तो मुझे लगता नहीं कि राहुल गांधी जी या खड़गे जी कोई हिंसा करने वाले हैं, ना ही हम कांग्रेस के कार्यकर्ता। जितनी ज्यादा यहाँ पे कार्यकर्ता और नेता नहीं उससे ज्यादा तो सिक्योरिटी मौजूद है, तो क्या सरकार इतना डरती है?
9: मैं ये बोल रहा हूँ, हम वो जो मुमताज जी ये जो सिक्योरिटी वाली आपने बात की, हमारा ये कंसर्न था ना कि प्रधानमंत्री आवास है, आप राहुल गांधी खुद जेड प्लस उनको सिक्योरिटी मिली हुई है, उनकी भी सिक्योरिटी देखनी है और साथ ही साथ इस तरह का क्राउड, जरा तस्वीर आप दिखा कर, इस तरह का क्राउड यहाँ पर होगा।
10: क्राउड क्या है ये? हाँ, क्राउड जनता के चुने हुए सांसद ही ज्यादातर हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता ही हैं। कोई सारे रोड जो है कॉर्डन ऑफ किए हैं। मैं पिछले 2 घंटे से वो जहाँ पे राहुल जी खड़े वहाँ घुसने की कोशिश कर रही हूँ, पहले मिन्नतें करी पुलिस वालों से लेकिन एक को भी घुसने अंदर दे नहीं रहे, तो सिक्योरिटी तो
0: हमारे बिल्कुल। अरविंद, अरविंद और मौसमी आ रही हूँ, महिमांशु आपके पास भी आ रही हूँ। अरविंद एक बार जरा सा और आगे चलिए क्योंकि आप लोग जो ये कह रहे हैं ना, एक सेकंड अरविंद, हाँ हाँ बोलिए मौसमी, मौसमी और अरविंद, मौसमी अब मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा आगे जाके आप दिखाइए सांसद कहाँ पर है। एक सेकंड पीएम आवास के रोड के इस पार खड़े हैं क्या लोग? रोड के इस पार हैं या उसी तरफ मौजूदगी है?
8: आइए अब देखिए, देखिए अंजना यहाँ हम लोग जहाँ पे खड़े हैं ये गोल चक्कर है। आप देखिए तीन मूर्ति मार्ग, राजा जी मार्ग, अकबर रोड, ये रास्ता सारे वीवीआईपी रोड्स में जाता है। ये पूरा इलाका वो इलाका है जिसको लटियंस दिल्ली कहते हैं, सांसदों का इलाका है। तमाम यहाँ पे लोग आपको खड़े दिख रहे हैं वो सांसद है। अब उधर आपको हमने बताया कि ये देखिए जहाँ तालियां बजते आप देख रहे हैं, वहां जाते हैं तो तुरंत, आजकल की नई तकनीक है अरविंद उसके बारे में समझाएंगे, कि जिस ग्रुप की तरफ जाओ तो एक ग्रुप की तरफ जाओ तो जामर चालू हो जाता है।
9: क्यों लगा हुआ हमें आपको बताया, आपने एक्सप्लेन किया, बहुत करीब जाने पर हो सकता है कि ये जो लाइव व्यू हमारा काम करना बंद कर देगा, वो आपको आपको दिक्कत आई वो इसलिए क्योंकि जामर है और खुद राहुल गांधी सत्य, आप वो तस्वीर मैं चाहता हूँ दिखाने के लिए, और खासतौर से वो जो जो ऊपर की तरफ एसपीजी के जवान बैठे हैं फोकस करके अगर दिखाना चाहेंगे, क्यों हम इस वक्त संवेदनशील इलाके में खड़े और अमूमन यहाँ रिपोर्टर्स भी खड़े नहीं हो पाते हैं आम दिनों की उपेक्षा, वो प्रधानमंत्री आवास का वो गेट है, वहां एसपीजी के जवान आपको दिखाई देंगे। और गेट के ठीक आगे राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका वाड्रा और तमाम जो लीडर है वो बैठे हुए हैं। और आगे की तरफ हम देखेंगे, जो मौसमी आपने सवाल पूछा था कि क्यों घेरा बनाया गया है, तो एसपीजी की सिक्योरिटी राहुल गांधी को मिली हुई है। आसपास कोई ना जा सके, उनकी सिक्योरिटी भी देखना इस वजह से। और साथ ही साथ गेट के उस पार प्रधानमंत्री आवास है, इस वजह से जो जैमर है वो यहाँ लगा हुआ है। और अब जो दिल्ली पुलिस का घेरा है, आरएएफ के जवानों का घेरा है, वो राहुल गांधी जहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके इर्द गिर्द है।
8: जी बिल्कुल, देखिए सीआईएसएफ का पहरा राहुल गांधी को मिला हुआ है। और यहाँ पे आप देखिए, बड़ा दिलचस्प है अंजना, नीले हेलमेट आपको दिखाई देंगे, काले हेलमेट दिखाई देंगे, खाकी वाले हेलमेट भी दिखाई देंगे। जो नीले हेलमेट है वो रैपिड एक्शन फोर्स है। सत्या, अगर आप बहुत भीतर जाएंगे तो शायद नेटवर्क ना है, पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं अंजना आगे जाने की। और सत्या, जरा मोनोपोड को और हाई कीजिए आप, तो यहाँ पे भी क्लोजअप से आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए आरएएफ, यहाँ पे इनके लेबल पे लिखा हुआ है रैपिड एक्शन फोर्स। ये जो नीली वर्दी में है, ये रैपिड एक्शन फोर्स है। उधर दिल्ली पुलिस की पूरी फोर्स है। और यहाँ पे आगे आप देखिए कि नेताओं ने हरे हेलमेट में भी दिल्ली पुलिस की फोर्स है, तो बिल्कुल एंटी रायड गेयर में हैं ये लोग। तमाम पुलिसकर्मी, इनके हाथ में बेटन भी है कई के हाथ में। और एक तरीके से धीरे धीरे मुझे लगता है अंजना कि सुरक्षा का पहरा यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। अगर राहुल गांधी टस से मस नहीं होते, जो उन्होंने कॉल दिया है, पुलिस उनको डिटेन भी कर सकती है। आप देखिए, एक दो तीन नीली बसें यहाँ पे, सत्या दिखाइए, एक दो तीन नीली बसें यहाँ पे आपको नजर आ जाएंगी। कम से कम 120 सांसदों को ले जाने के लिए इनको और बसें चाहिए। पीछे भी बसों की पूरी लाइन लगती चली जा रही है, ये पहले नहीं थी, तो हो सकता है डिटेंशन का भी प्लान हो। और अरविंद से पूछते हैं, यहाँ पे आला अधिकारी आ रहे हैं।
9: संजय जी, क्या अभी क्या रणनीति है?
11: अभी इस बारे में बातचीत चल रही है, बताएंगे।
9: बातचीत चल रही है ना?
11: जी
9: राहुल गांधी,
12: ये तो पूछिए कि क्या कुछ पता था पहले से।
9: देखिए, ये जो ये संजय थे, नहीं पता तो कुछ भी नहीं था। देखिए, ये सरप्राइज प्रोटेस्ट है,
12: अचानक हुआ है ये।
9: किसी को कुछ नहीं पता था। और जो मुझे जानकारी है, जो मुझे जानकारी अंजना, यहाँ से कुछ दूरी पर ही ये बिल्कुल अचानक हुआ है। और यहाँ से कुछ दूरी पर मल्लिकार्जुन खड़गे का घर है, और वहाँ से कहानी बिल्कुल मौसमी। ये जो चौंकाने वाला राहुल गांधी का, आप इसे कह लीजिए क्योंकि कई नेता और जो आरोप बीजेपी भी लगा रही थी कि जो यूथ का प्रोटेस्ट हो, उसकी आड़ में राजनीति हो रही है। तमाम नेता, कोई जंतर मंतर जा रहा था, कोई कहीं जा रहा था, लेकिन सबको चकमा देते हुए राहुल गांधी यहाँ पहुंच गए। सिक्सर मारा है सियासत का है
8: जी। मैं देखिए, राहुल गांधी की सिक्सर मारा है कि नहीं, ये तो समय ही बताएगा। और मामला बहुत संवेदनशील है अरविंद, लेकिन
12: एक सेकंड आपको टोक रही हूँ मौसमी, मैं लौट रही हूँ मौसमी, एक सेकंड। एक खबर इस वक्त अपने दर्शकों को बता दें, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जिन्होंने मुलाकात की मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से, उन्होंने एक पोस्ट लिखा है कुछ समय पहले यह ज्ञात हुआ कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके साथ अन्य वरिष्ठ नेता जैसे कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी इत्यादि अकस्मात ही अकबर रोड के समीप एक स्थान पर अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। सरकार ने इस वरिष्ठ दल की गरिमा के दृष्टिगत मुझे स्वयं भेजा और मेरे साथ गए थे केंद्रीय गृह सचिव श्री गोविंद मोहन। श्री राहुल गांधी ने अनुरोध किया गया उनसे कि वो धरना समाप्त करें, क्योंकि यह स्थल धरने का स्थल नहीं है। यहां पर धरना करने से जनसाधारण को काफी मुश्किलें आएंगी, असुविधा होगी। श्री राहुल गांधी जी ने यह मांग रखी कि यदि सरकार संसद में नीट और उसके संबंधित आंदोलन के साथ जुड़े सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए मान जाती है तो वो अपना धरना तुरंत समाप्त कर देंगे। कुछ ही क्षणों में सरकार के शीर्ष नेतृत्व की अनुमति लेने के बाद श्री राहुल गांधी को यह आश्वासन दिया गया कि उनकी मांग को मान लिया गया है तथा सरकार नीट और उससे संबंधित आंदोलन के साथ जुड़े सभी विषयों में संसद के चर्चा करने को तैयार है। इस बारे में उन्होंने पोस्ट करके जानकारी दी है। जल्दी से एक रिएक्शन और आप दोनों से लेते हैं, जिसके बाद हम जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद है उनसे बात कीजिए। बघेल साहब, बात कीजिए।
8: बिल्कुल यार, मौसमी कर लेने दो, हम कर लेंगे।
12: लाइव हो मौसमी,
8: लाइव जी अंजना। देखिए, हम आपको बता रहे थे कि किस तरह से तमाम नेता यहाँ पे उनके आने का सिलसिला जारी है। और भूपेश बघेल यहाँ पे हैं, जो पहुंच गए हैं। भूपेश जी, राहुल गांधी ने आह्वान कर दिया कि देश की जनता भी यहाँ पे आए, तो क्या चाह रही है कांग्रेस?
13: सीधी बात है, चाह रही है कि जो युवा हैं, छात्र हैं, बेरोजगार हैं, उनकी बात सुनी जाए। पेपर लीक हो रहा है बंद होना चाहिए, जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। और राहुल जी ने आह्वान किया, हम सब आ रहे थे, एक घंटे मुझे लगा यहाँ पे आने पे, सारे बैरिकेडिंग लगा कर रखे हैं, कोई नहीं आ पा रहा है।
8: भूपेश जी, आप तो मुख्यमंत्री रहे हैं, मतलब पीएम आवास है सामने और यहाँ पे तो हाई सिक्योरिटी जोन है, क्या आपको लगता है कि यहाँ पे बैठना सही है?
13: क्या ये पहली बार हो रहा है? पहले भी ऐसा होता रहा है?
8: 2014 से तो पहली बार राहुल गांधी ऐसे बैठे हैं।
13: हाँ, तो ऐसा है कि 2014 के बाद ही ये जो नॉन बायोलॉजिकल है ना, वो अपने आप को भगवान मान लिए और उसके कारण से सारी तकलीफें हुई है। आम जनता से कभी बात नहीं करते, पत्रकारों से कभी बात नहीं करते, पत्रकार वार्ता नहीं करते, विदेश में भी उसी प्रकार के हालात हैं। आप देश में तो इस प्रकार से गुंडागर्दी कर रहे हैं,
8: तो
13: विदेशों में
8: पीएम है कि टारगेट एजुकेशन मिनिस्टर है, टारगेट क्या है?
13: टारगेट यहाँ के जो छात्र,
8: राजनीति है टारगेट?
13: राजनीति टारगेट नहीं है, छात्रों की बात है। राहुल गांधी जी कोटा गए तो उन्होंने कहा ये राजनीतिक मंच नहीं है, राजनीतिक बात नहीं करूंगा, ये छात्रों का हक की बात है।
12: ठीक
13: और
12: है।
13: प्रधानमंत्री जी, जब ये नॉन पॉलिटिकल हो रहा है तो आप उनसे बात क्यों नहीं किए? एक एक महीने से आंदोलन कर रहे हैं, कोई बात नहीं कर रहे हैं।
8: तो यहाँ पे आपने अंजना सुना, हम लोग बता ही रहे थे आपको कि किस तरह से तमाम नेता यहाँ पे आने आना शुरू कर दिए हैं।
12: बिल्कुल मौसमी कुछ देर में, बिल्कुल मौसमी अगर कुछ देर में और आगे आप बढ़ सकें, दिखा सकें क्या स्थिति है, क्योंकि गाड़ियों का जो पूरा एक लाइन है वो दिख रहा है और हम आपने बताया कि किस तरह से परिस्थिति वहां पर ऐसी है कि काफी तादाद में बाकी लोग भी अब पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी ने ट्विटर पर आह्वान कर ही दिया है, क्या स्थिति बन रही है वहां से आप लाइव बताते रहिएगा। लेकिन हिमांशु भी हमारे साथ है, हिमांशु जल्दी से एक छोटा सा कमेंट जल्दी से।
14: देखिए बिल्कुल, गृह मंत्री अमित शाह के साथ जो है जितेंद्र सिंह और गोविंद मोहन जो होम सेक्रेटरी हैं, उन दोनों की जो है मुलाकात खत्म हुई है। दोनों ने ब्रीफ किया, राहुल गांधी क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि लीड पर चर्चा हो जाए, सरकार जब उसके लिए तैयार हो गई। जितेंद्र सिंह ने अपने आला मंत्रियों से बात की सरकार के अंदर, तो सरकार तैयार थी कि लीड पर चर्चा हो जाए, लेकिन राहुल गांधी जो है इस बात को लेकर अड़ गए कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए और इसी चीज को लेकर जितेंद्र सिंह जो है वो तैयार नहीं हुए और उन्होंने आके पूरा मामले को जो है गृह मंत्री अमित शाह को ब्रीफ किया, उनके साथ गोविंद मोहन थे। अब क्योंकि सरकार की ये स्ट्रेटेजी रहेगी कि किस तरीके से जो है राहुल गांधी को वहां से हटाया जाए, क्योंकि दो चीजें हैं जरा जिस
12: तरह से हिमांशु थोड़ा सा एक सेकंड हिमांशु जल्दी हिमांशु
14: जिस गेट पर राहुल गांधी बैठे हैं वो गेट सिर्फ प्रधानमंत्री अपने आने और जाने के लिए इस्तेमाल होता है, वहां से कोई दूसरा वीआईपी नहीं आ सकता, मंत्री हो या कोई मुलाकाती हो, वो रेसकोर्स वाले रोड से आता है। हाँ। वो इस गेट से नहीं आता, ये सिर्फ प्रधानमंत्री के आने और जाने का गेट है और जहां वो बैठे हैं इससे रुकावटें हैं और ये हाई सेंसिटिव मामला है, इसीलिए जो है वहां पर एसपीजी और सीआरपीएफ वहां पर पहुंच गई और पैरामिलिट्री फोर्सेस।
12: बिल्कुल मौसमी जल्दी से वहां पर अपडेट, फिर मैं मेहमानों के पास जाऊंगी।
8: जी बिल्कुल, देखिए अंजना अभी आप जो तस्वीर देख रही हैं, सत्या से हम कहेंगे कि सत्या जरा हाइट को बढ़ा के सत्या आप दिखाइए, हम लोग थोड़ा सा आगे आए हैं, यहाँ पे थोड़ी बैंडविड्थ आ रही है, अब यहाँ से आपको भीतर की तस्वीर शायद नजर आएगी कि राहुल गांधी किस तरीके से, थोड़ा जूम नहीं जा सकते हम लोग, थोड़ा जूम जाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए आपके पीछे फाटक आपको नजर आ रहा है प्रधानमंत्री आवास का और राहुल गांधी बिल्कुल ठीक बीच में बैठे हुए हैं, उनके साथ प्रियंका गांधी भी बैठी हुई हैं। अब सत्या बिल्कुल आगे गए हैं और यहाँ से आप देखिए ये तस्वीर नजर आ रही है जहाँ पे तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो नीचे जमीन पर बैठे हैं, राहुल गांधी यहाँ पे खड़े हुए हैं, केसी वेणुगोपाल खड़े नजर आएंगे और यहाँ नारेबाजी लगातार हो रही है, लगातार जो घेरा है वो बढ़ता जा रहा है, दिल्ली पुलिस का भी घेरा इसके इर्द गिर्द है, प्रधानमंत्री के गेट के पहले आप देखिए कि खाकी काफी खड़ी हुई है,
12: लेकिन
8: पवन खेरा
12: दो सवाल है, दो सवाल है मौसमी, मौसमी दो सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बिल्कुल ये दिलचस्प है कि जो अन्य पार्टी के भी नेता हैं वो सब मिलकर राहुल गांधी के साथ एक पूरा अलायंस की तरह यहां पर आया है, लेकिन देखिए जो पोस्ट है डॉक्टर जितेंद्र सिंह का उसमें वो ये कहते हैं कि श्री राहुल गांधी जैसे वरिष्ठ नेता एवं नेता प्रतिपक्ष का अपनी बात को मुकर जाना दुर्भाग्यपूर्ण है, लोकतंत्र की हर मर्यादा के विपरीत है। आपने पीएम सिक्योरिटी को भी लेकर एक सवाल पूछा, क्योंकि देखिए जो भी सत्ताधारी पार्टी रहती है और भूपेश बघेल इसके लिए सही व्यक्ति भी थे, वो मुख्यमंत्री मंत्री रह चुके हैं, सीएम सिक्योरिटी हो, पीएम सिक्योरिटी हो, वो उसकी एक मर्यादा होती है। इन सब के बीच इस पर एक एक बड़ा प्रश्न चिन्ह तो खड़ा हो रहा है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह लिख रहे हैं कि उन्होंने पहले कहा था कि नीट पर अगर हम चर्चा के लिए तैयार हो जाते हैं तो वो वापस जाएंगे, लेकिन अब वो नहीं मान रहे हैं, मुकर रहे हैं। मौसमी
15: नीचे करो ना, फोन पे क्या करना।
8: बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी अब इस बात पे अड़ गए कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, और इसको लेके मुझे लगता है कि कांग्रेस ने ये योजना बनाई थी, क्योंकि देखिए आप तमाम योगेंद्र यादव भी यहाँ पे नजर आ रहे हैं, सुप्रिया सूले भी आ रही है, क्या अखिलेश यादव भी आएंगे यहाँ पे, डिंपल यादव भी नजर आएंगी, क्या विपक्ष के नेताओं में आपस में ये सहमति थी कि आप आगे चलिए और हम लोग बाद में धीरे धीरे आते हैं, पहले डेरा जमाइए। ये एक बड़ा आप कह लीजिए विपक्ष का धरना यहाँ पे नजर आ रहा है, और जाहिर तौर पे पीएम सिक्योरिटी को लेके तमाम सवाल जरूर खड़े होते हैं। दिल्ली पुलिस के लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा मुश्किल खड़ी होने वाली है, क्योंकि राहुल गांधी या तो डिटेन करे जाएं, यहाँ पे प्रियंका गांधी आप देख रहे हैं कि स्लोगन करते हुए नजर आ रही है, केसी वेणुगोपाल है, तमाम सांसद वहां पे मौजूद है, तो ऐसे में लग नहीं रहा कि कांग्रेस यहां से जल्द जाने वाली है। और जिस तरीके से एनसीपी शरद पवार की सुप्रिया सूले यहां पे मौजूद हो गई हैं, तो ये बात कि विपक्ष के नेता जंतर मंतर पे आधे उधर हैं आधे इधर हैं, इसको लेके कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अब रीच आउट कर रही है बाकी नेताओं को कि यहीं पे आप मौजूद, यहीं पे आप आ जाइए, जो इंडिया ब्लॉक के नेता हैं जिनसे सुबह बात हुई। अच्छा, अब मुझे लगता है कि सुबह जो एक घंटे बातचीत चली है खड़गे के ऑफिस में, ये सारी योजना उस वक्त बनाई गई थी टॉप लीडरशिप आपस में सहमति करके, और यहाँ पे जो तस्वीर है सत्य आपको दिखा रहे हैं, तमाम महिला सांसद, तमाम सांसद यहाँ पे मौजूद है। बाई तरफ अगर आप सत्या दिखाइए कि किस तरीके से पुलिस का मजमा जो है, हाइट से दिखाइए, तमाम जो बसें आप बिल्कुल आगे चौखट तक आ गई हैं, और तमाम पुलिस की बसों को तैनात किया गया। दाईं तरफ जरा दिखाइए पीएम के गेट की तरफ, वहां पे देखिए लाल बत्ती है और वो बैरिकेड है, उसके पीछे एसपीजी के तमाम सुरक्षा कर्मी है। एक तरीके से ये पूरा एक डेरा डाल के कांग्रेस और राहुल गांधी यहाँ पे बैठे हुए नजर आ रहे हैं। अंजना, अपने आप में देखना होगा कि आखिर क्या एक बार दोबारा शांति दूत बन के डॉक्टर जितेंद्र सिंह आते हैं, मान मुनव्वर होता है, या उनको उठाया जाता है राहुल गांधी को, या रात भर यही डेरा डालता है विपक्ष।
12: बिल्कुल मौसमी, आप बने रहिए, और जैसे ही कुछ खबर वहां पर होती है ऐसी तो आप इशारा कीजिएगा, हम फौरन आपका रुख करेंगे। गौरव भाटिया जी दिखा दीजिए जल्दी से, अभय दुबे जी भी हमारे साथ हैं। गौरव भाटिया जी, आप ही के साथ शुरुआत कर रही हूं, उसके बाद अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी। अब सवाल यह है कि देखिए ये हाई सिक्योरिटी जोन है पीएम आवास के पास तक, अब ये विरोध प्रदर्शन पहुंच चुका है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह कह रहे हैं कि राहुल गांधी अपनी बात से मुकर गए हैं, जो उन्होंने पहले कहा था कि चर्चा से संसद में वो मान जाएंगे, अब वो इस्तीफे की मांग करें, जो भी उनका है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह कह रहे हैं कि वो मुकर गए हैं, लेकिन स्थिति बहुत नाजुक इस वक्त हो गई है, क्या सोच रही है आपकी सरकार?
16: देखिए अंजना जी, पूरा देश देख रहा है कैसे जो दिए बुझ चुके हैं उनपे तेल डाला जा रहा है अराजकता का, और किस तरह से अराजक प्रदर्शन टूलकिट गैंग द्वारा किया जा रहा है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहता हूं, संसद का सत्र चल रहा है, हमने देखा चाहे कल हो चाहे आज हो, लोकतंत्र के मंदिर से बड़ा पटल तो कोई चर्चा के लिए है नहीं। पूरे भारत की जो आबादी है सब देख रहे हैं कि संसद चलने नहीं दे रहे, वहां चर्चा होने नहीं दे रहे, क्वेश्चन आर नहीं हो रहा, मतलब सवाल भी नहीं पूछेंगे, हम वेल में आएंगे, नारे लगाएंगे, चिल्लाएंगे, ये क्या लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका है? पहला सवाल। दूसरा सवाल जो आपने कहा, मैं समझता हूं, देखिए प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य आया, हर युवा को लगा उनका पिता तुल्य एक नेता है जो उनकी सेवा करता है, वो कह रहे हैं कि हम छात्रों के भविष्य से किसी को खिलवाड़ नहीं होने देंगे। 18 अरेस्ट हुई, पेपर दोबारा जो है सबने लिखा और सही दिशा में कदम उठाए गए। जेपी नड्डा जी जो प्रदर्शनकारी हैं उसके एक डेलीगेशन से मिले, जो चोटिल हुए हैं उनसे अस्पताल मिलने गए और जितेंद्र सिंह जी आज देखिए बड़प्पन उनका राहुल गांधी से बात कर रहे हैं। लेकिन मैं पूछूंगा संविधान में ये हक किसने दिया है कि आप प्रदर्शन की आड़ में हिंसा करें। पुलिस वालों पे पत्थरबाजी हुई, क्या राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक बार भी कहा कि वर्दी पर अगर पत्थर चलाओगे और खून बहेगा तो ये उचित नहीं है, ये गलत है, हिंसा का रास्ता नहीं होना चाहिए? नहीं कहा। क्यों? यही टूलकिट है और यही टूलकिट गैंग के सरगना है। दूसरी बात, नारे किस तरह के लग रहे हैं अंजना जी, मुझे शर्म आती है। इस देश का विपक्ष इस तरह के नारों का समर्थन करता है। मैं जनता के लिए कुछ नारे बताना चाहूंगा। संसद को बर्बाद कर देंगे, जिस संसद के सदस्य उसको बर्बाद कर देंगे,
12: ठीक है,
16: प्रधानमंत्री को पीटेंगे।
12: एक बार फिर से जरा स्थिति इस वक्त जो प्रदर्शन के मैं लौट रही हूँ। देखिए ये सब कुछ अलग बात है, लेकिन आज जो स्थिति है मौसमी, इस वक्त क्या हो रहा है वहां पर मौसमी?
17: यहाँ सारा धरना पे बैठ गए सारे
12: मौसमी, लाइव है आप?
17: लोग तो कितने हैं, 100।
12: मौसमी लाइव है? अरविंद, मौसमी आवाज आ रही है? ये तस्वीरें हम आपको, दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, भारी तादाद में वहां पर सुरक्षा की तैनाती। देखिए प्रधानमंत्री आवास करीब, पीएम हाई सिक्योरिटी जोन जिसे कहा जाता है, वहीं दूसरी तरफ अब आप देख रहे हैं बसों में कई लोगों को वहां से जाते हुए दिख रहे हैं। क्या हो रहा है जैसे ही हमारी साथ हमारी रिपोर्टर जुड़ती हैं, अरविंद या मौसमी जुड़ते हैं, हम सीधे उनका रुख करेंगे। और आज सवाल यह है कि मौसमी आवाज आ रही है? मौसमी मौसमी आवाज आ रही है?
17: आ रही आवाज आपकी आ रही है?
12: आज अब आज आज बड़ा सवाल ये है कि ये देखिए हाई सिक्योरिटी जोन है
17: जी जी,
12: और ऐसे में पीएम आवास है, क्या स्थिति है इस वक्त यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन है उसका? यही कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी तो प्रदर्शनकारियों को याद दिलाती थी कि जंतर मंतर में जाइए, रामलीला मैदान में जाइए, क्योंकि प्रदर्शन के लिए जगह तय की गई है। लेकिन पीएम आवास तक पहुंचना और इस वक्त स्थिति क्या है?
17: अंजना देखिए अभी स्थिति यह है कि एक बस में कार्यकर्ताओं को भर के ले जाया जा रहा है। सत्या आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे लोगों को डिटेन किया जा रहा है, सिर्फ कार्यकर्ता नहीं, यहाँ रंजीत रंजन नजर आ रही हैं। रंजीत रंजन इधर रुक जाइए, इधर आइए, तो यहाँ पे देखिए रंजीत रंजन, रंजीत रंजीत रंजीत क्या तमाम नेताओं को बैठाया जा रहा है, रंजीत रंजन को भी अभी अंदर जो है बस के बैठाया जा रहा है। और यहाँ पे जितने भी कार्यकर्ता आ गए थे, जो भीड़ में आ गए थे, तो आइए रंजीत रंजीत रंजीत
18: अचानक से कुछ गलत लोगों को बुला के स्पेशली महिलाओं के ऊपर पूरे ऊपर आ गए हम लोग के। मैं वहाँ कह रही हूँ कि गलत लोग हैं, जबरदस्ती जो महिला एमपी है उनको दबा रहे हैं, गलत प्रयोग किया है। मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, गलत प्रयोग किया, हम लोग को दबाया है,
17: उठा के
18: नहीं, पूरा दबा दिया गया था जबरदस्ती, और अचानक से बहुत गलत लोग आए थे, ये उनकी साजिश है उठाने के लिए, बहुत गलत किया।
17: यहाँ पे देखिए कि कार्यकर्ताओं और सांसदों को भी अंजना यहाँ पे बैठाया जा रहा है बसों में, और एक आगे बस है उसमें भर दिया गया। अभी खबर ये भी आ रही है, हालांकि जैसे हम तस्वीर देखेंगे आपको बताएंगे, कि अखिलेश यादव यहाँ पे पहुंच गए हैं। पीछे आप देखिए कि काफी अफरा तफरी यहाँ पे मची हुई है। जाहिर तौर पे ये तस्वीर हमने पहले भी देखी है कि कांग्रेस ने धरना किया है तो उनको डिटेन किया गया है, लेकिन प्रधानमंत्री आवास के बाहर ये तस्वीर अपने आप में काफी अप्रत्याशित है। और धीरे धीरे करके जो सांसद है उनको भी बसों में बैठाया जा रहा है। आइए जानने की कोशिश करते हैं, क्या अखिलेश यादव आए हैं? अखिलेश यादव, और आइए देखते हैं। सर वास्तविक साहब, अगर सर क्या जबरन बैठाया जा रहा है?
19: देखिए पूरी तानाशाही है, नरेंद्र मोदी सरकार की तानाशाही कल पूरे हिंदुस्तान में देखी, जब छात्रों के ऊपर जुल्म किया गया, लाठी चार्ज किया गया, अश्रु गैस छोड़ा गया, और आज यहां पर राहुल गांधी और खड़गे जी के समेत तमाम कांग्रेस के सांसद और कार्यकर्ता जब अपना विरोध यहां दर्शाने इकट्ठा हुए, तो जुल्म आपने देख ही लिया है कि किस तरह से जबरदस्ती लोगों को उठाया जा रहा है, और इस तरह की अराजकता मैं नहीं समझता हूं कि आगे बर्दाश्त हो पाएगी।
17: क्या ये राहुल गांधी ने जो आह्वान कर दिया, जनता को बुला दिया, क्या उसकी वजह से ये हो रहा है?
19: देखिए पूरे मुल्क ने अब नरेंद्र मोदी का क्या चेहरा है ये अच्छी तरह से देख लिया है। कोने कोने में विरोध हो रहा है, लोगों की आवाज दबाने की कोशिश मोदी सरकार लाख करे, लेकिन इसके आगे मैं नहीं समझता हूं कि भारत के छात्रों की, भारत के नौजवानों की, भारत के आम व्यक्तियों की आवाज दबाने में ये किसी तरह से कामयाब होगे।
12: मौसमी, अगर जरा वहां की तस्वीरें आप दिखा सके, थोड़ा सा बता सके कि क्या हो रहा है जी, जो जो स्थिति है उस पर जरा अगर आप रहे मौसमी, और अगर अरविंद भी आसपास है तो उनको भी बुला लीजिए, क्योंकि पुलिस क्या कर रही है।
17: वहाँ की क्या तस्वीर है देखिए, यहाँ लोगों को जो कार्यकर्ता हैं उनको कुछ उस तरीके से बसों में भरा जा रहा है, दो बसें भर दी गई हैं, ऑलरेडी लोगों को हिरासत में लिया गया है। जाहिर तौर पे पुलिस को लगता है कि यहाँ पे कोई आंदोलन प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए एक बहुत चिंता का विषय है, और यही वजह है कि ये तस्वीर आप यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास लोक कल्याण मार्ग के सामने घटते हुए देख रही हैं, जहाँ पे पुलिस ने अब लोगों को यहाँ पे हिरासत में लेना शुरू कर दिया है।
12: बिल्कुल, और आज ये स्थिति दिख रही है, वहां पर काफी अफरा तफरी मचती हुई दिख रही है मौसमी। दूसरी तरफ से कुछ तस्वीरें ऐसी आ रही हैं जिसमें राहुल गांधी को भी ऐसा लग रहा है कि वो एक तरफ जा रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें आ रही हैं इस वक्त, अगर आप वहां से बता सके आप तक कोई जानकारी पहुंची हो, क्योंकि वो पूरा जो एक एक हुजूम वहां पर है वो एक साथ भीड़ आगे बढ़ती हुई दिख रही है उनके साथ। मौसमी,
17: जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये
12: और जिसकी आप बात कर रही थी, एक बार और थोड़ा सा जूम इन, ऐसा लग रहा है कि लाल टोपी में अखिलेश यादव भी पहुंच गए हैं वहां, कंफर्म करिए मौसमी।
17: जरा दिखाइएगा, हाँ एक सेकंड सत्या, जरा दिखाइएगा सत्या, इधर नहीं जरा पीछे दिखाइए, क्योंकि अखिलेश यादव भी यहाँ पे आने की खबर आई थी। सत्या जरा लाल टोपी में आप देखिए कि अखिलेश यादव आपको नजर आ रहे हैं, जरा देखिए आप, मैं जरा आगे बढ़ के देखती हूँ, आप वहीं रहिएगा, मैं आगे बढ़ के देखती हूँ। तो अंजना मैं आगे बढ़ के देख रही हूँ, हमारे कैमरामैन जूम इन करेंगे और हम आपको कंफर्म करते हैं कि क्या अखिलेश यादव यहाँ पे मौजूद है या नहीं। अखिलेश यादव आए, कहाँ है?
20: सात लोक कल्याण मार्ग है।
17: बिल्कुल अखिलेश यादव अंजना आए हुए हैं, और अब पुलिस अखिलेश यादव जिस घेरे में है उस घेरे को सर्कल किए हुए है।
12: बिल्कुल ऐसा लग रहा है मौसमी कि अखिलेश यादव, जी जी बताइए बताइए, वहाँ पर वो
17: मुखिया जो है,
12: जी जी
17: बताइए, यहाँ पे आपको तस्वीर में नजर आ रही है।
12: बोले बोले बोले बोले,
17: तो हमने देखा कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव अभी कुछ मिनटों पहले ही यहाँ पे पहुंचे हैं। जो तस्वीर आप हमारे कैमरा पर्सन सत्या आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, सत्या पीछे दिखाइए, अखिलेश यादव मौजूद है।
12: बिल्कुल, तो बड़ी खबर ये है कि कांग्रेस पार्टी के अलावा अन्य पार्टियों के नेता भी पहुंच गए हैं, अखिलेश यादव भी वहां पर पहुंच गए हैं। बिल्कुल अखिलेश यादव भी पहुंच गए हैं, हमारी सहयोगी मौसमी वहां से कंफर्म कर रही हैं कि अखिलेश यादव भी वहां पहुंच गए हैं। मौसमी बताइए,
17: देखिए आप यहाँ पे, मुझे नहीं लगता कि पुलिस अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी को रहने देगी। सत्या आप दिखाइए वहाँ पे किस तरह से तमाम सांसदों को आप बिठाया जा रहा है, उसके बाद कहीं ना कहीं योगेंद्र यादव और इन नेताओं को भी यहाँ से ले जाया गया है, और ये वो वक्त है जब पूरा जो यहाँ पे धरना चल रहा था उसको खत्म करने के पूरी रणनीति के तौर पे पुलिस ने एक कॉर्डन बनाया। ये देखिए आप, जहाँ पे बीच में घेरा था, जहाँ पे डेरा डाला था राहुल गांधी ने, उसके इर्द गिर्द एक ऐसा रास्ता बनाया गया है जो सीधे रास्ता बस की ओर लीड करता है। सत्या, अगर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो यही सब आप दिखाएं। और देखिए बस के ऊपर भी कुछ नेता कार्यकर्ता चढ़ गए हैं। अब हम बिल्कुल पास में इस घेरे के, और कहीं ना कहीं आप देखिए पुलिस हमको कह रही है कि आप पीछे हो जाइए, आपको लग सकती है, क्योंकि यहाँ काफी धक्का मुक्की हो रही है। तो एक तरीके से अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे और कार्यकर्ताओं को, राहुल गांधी को यहाँ पे, ये तस्वीर आप देख रही हैं अंजना, सफेद टी शर्ट में राहुल गांधी यहाँ पे उनको ट्रेन में, बस में भरा जा रहा है। राहुल गांधी रेजिस्ट कर रहे हैं और ये राहुल गांधी की तस्वीर आज तक के,
12: उनका कैमरा भी दिखा दीजिए, उनका कैमरा भी दिखा दीजिए, कैमरा दिखाइए अपना,
17: नेता विपक्ष लोकसभा, उनको वहाँ पे पूरा जूम इन करिए। सत्या, मैडम हमको उधर जाने दीजिए सर। सत्या, उधर जूम इन करिए आप, वो तस्वीर जो राहुल गांधी काफी जो है स्ट्रगल कर रहे हैं कि उनको हटाया जाए, उनको छोड़ा जाए। राहुल गांधी को पुलिस कम से कम 12 पुलिस कर्मी उठाते हैं और बस में भर रहे हैं। आपको उम्मीद करते हैं कि तस्वीर में नजर आ रहा है राहुल गांधी सफेद टी शर्ट पहने, आप देखिए जैसे ही उनको ऊपर ले जाया जाएगा वो तस्वीर,
1: उससे बहुत ज्यादा असुविधा हो रही है जनसाधारण को। तो इन नेताओं की वरिष्ठता को देखते हुए सरकार की ओर से ये फैसला हुआ कि मैं स्वयं और मेरे संग केंद्रीय गृह सचिव मौके पर जाकर के इन वरिष्ठ नेताओं से मिले, और हम ये सोच करके गए थे हम बड़ी विनम्रता से अपनी बात रखेंगे, तर्क रखेंगे कि सरकार से अगर चर्चा कर ली जाए बैठ करके तो ज्यादा बेहतर है। बहरहाल वहां पहुंचने पर हमें श्री राहुल गांधी जी ने ये आग्रह किया कि यदि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार हो जाती है नीट और उसके साथ संबंधित शिक्षा संबंधित विषयों को लेकर के, तो वो तुरंत अपना धरना समाप्त कर देंगे। मैंने ये बात उनसे एक मरतबा नहीं, 2-3 बार पूछी। उसके उपरांत मेरे हमरा केंद्रीय गृह सचिव थे, उन्होंने भी पूछा कि विल यू इमीडिएटली एंड दिस धरना इफ यू गेट एश्योरेंस, बोले हाँ। फिर हमने थोड़ी सी मुशक्कत की, एक्सरसाइज की, सरकार के शीर्ष नेतृत्व से चर्चा हुई और हमें ये कहा गया कि आप सरकार की ओर से उनको आश्वासन दीजिए कि सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, सरकार तैयार है संसद में चर्चा करने के लिए नीट को लेकर के भी, उसके साथ संबंधित विषयों को लेकर के भी, जो आंदोलन है उसको लेकर के भी। हमने जब ये बात वहीं पर राहुल गांधी जी के आगे दोबारा रखी तो बोले कि साहब मुझे तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी चाहिए। तो हमने कहा साहब अभी कुछ ही क्षण पहले आपसे बार बार जब पूछा गया कि आपका क्या मुतालबा है तो आपने ये कहा था कि अगर मुझे ये आश्वासन दिया जाए कि संसद में कांग्रेस पार्टी को भारत सरकार चर्चा करने देगी या करने के लिए तैयार है तो मैं तुरंत ये धरना समाप्त कर दूंगा। लेकिन अब आप अपनी बात से हट रहे हैं। तो बोले साहब ये तो मेरी मर्जी है, मेरी मांगें बदल चुकी हैं। हमने कहा साहब दिस इज नॉट फेयर, यू आर चेंजिंग द गोल पोस्ट। बोले दिस इज माय विश। तो फिर हमने उनको विनम्रता से समझाने का प्रयास किया कि आप जैसे वरिष्ठ नेता को, जो नेता प्रतिपक्ष भी हैं, LOP भी हैं, ये शोभा नहीं देता कि कुछ ही क्षणों में आप अपनी बात से मुकर जाए जब सरकार ये कह रही है कि संसद में चर्चा के लिए तैयार है, ना केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। तो बोले साहब नहीं, हम तो यहीं बैठेंगे, आप हमें उठा लीजिए। बोले साहब मैं तो आपसे चर्चा करने आया था बड़ी विनम्रता से, आपको उठाने का तो हमारा इरादा नहीं था, मैं तो सिर्फ आपसे ये अनुरोध करने आया था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप शायद आप उस मूड में ही नहीं है कि आप कुछ वाया मीडिया या रास्ता निकाला जा सके। तो बोले आप जो मर्जी इसका निष्कर्ष निकालिए, मैं तो वही करूंगा जो मेरी मर्जी है। फिर गृह सचिव जी ने भी एक बात रखी कि साहब अगर आपको बैठना ही है धरने पर तो कम से कम इस जगह ना बैठिए, इससे बहुत असुविधा हो रही है जनसंधारण को, तो बोले ये भी मेरी मर्जी है। तो मुझे बड़े बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि LOP का इस प्रकार का व्यवहार रहे कि वो अपने पक्ष को इतनी जल्दी बदलते हैं। और इसका अर्थ ये हुआ कि वो कन्फ्लिक्ट के मूड में है, वो चाहते ही नहीं कि सरकार के साथ सहयोग करके जनहित के विषयों पर चर्चा की जाए या जनहित के विषयों को आगे बढ़ाया जाए। वो ये मन बना करके आए हैं कि कन्फ्रंटेशन हो, कन्फ्लिक्ट हो, मुझे कोई मुद्दा मिले। लेकिन हम जानते हैं इस देश का आम इंसान, आम नागरिक इतनी समझ रखता है कि उस प्रकार की पॉलिटिकिंग में या इस तरह की राजनीतिक नौटंकी के झांसे में नहीं आने वाला। और जहां तक सरकार का ताल्लुक है, आपको स्मरण होगा आज प्रातः ही प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों के लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, की भी जा रही है, बहुत सारे लोग हिरासत में भी लिए गए हैं। ये एक ऐसा विषय है जिससे लगभग देश का हर प्रदेश मुतासिर हुआ है, प्रभावित हुआ है, और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, ना ही बर्दाश्त करेंगे। उसके बावजूद भी यदि विपक्ष और नेता प्रतिपक्ष सहयोग करने को तैयार नहीं है तो मुझे विश्वास है देश की जनता देख रही है, जिम्मेवारी उनकी रहेगी। एक्चुअली व्हाट हैपेंड वाज,
12: तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह वही बात बताते हुए जो उन्होंने पहले पोस्ट में लिखा था, उन्होंने ये जानकारी दी है। उनका ये कहना है कि उन्होंने अपनी बात पलट दी। पहले उन्होंने कहा था कि अगर नीट पर संसद में, नीट पेपर लीक पर संसद में चर्चा के लिए सरकार तैयार हो जाती है तो वो मान जाएंगे, हट जाएंगे। लेकिन बाद में उन्होंने कहा अपनी मर्जी को कोट करते हुए कि भाई हम यहीं पे रहेंगे और हम चाहते हैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। इस बीच आपको दिख रहा है अखिलेश यादव कुछ देर पहले वहां पहुंचे थे, धर्मेंद्र यादव भी आपको दिखा, तो समाजवादी पार्टी के नेता भी वहां पर पहुंच गए हैं। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा गांधी, जो तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो वहां पर जमे हुए हैं। इस बीच खबर ये भी आई है कि राहुल गांधी वहां से हटाए जा रहे हैं। इस बीच आपको ये भी बता दें अपनी बात से मुकर गए, ये बड़ा आरोप जितेंद्र सिंह लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब वो बार बार ये कह रहे हैं कि हम यहां से नहीं हटेंगे जब तक आप मानते नहीं हैं और इस्तीफा नहीं धर्मेंद्र प्रधान का होता है, शिक्षा मंत्री का। जनहित के विषय पर राहुल गांधी चर्चा नहीं चाहते, ये आरोप लगाते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह। एक बार फिर से दोनों तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, और ये तस्वीरें ये देखिए, जब राहुल गांधी को हटाया जा रहा था, क्योंकि राहुल गांधी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो जमीन पर लेट गए हैं, फिर हटाया जा रहा है। कुछ कांग्रेस के नेता वो लेट गए हैं, कुछ कांग्रेस के नेता उनको पकड़े हुए हैं, दूसरी तरफ से पुलिस उनको उठाकर ले जाने की कोशिश कर रही है। इस वीडियो में इतना ही समझ में आ रहा है। हमारे सहयोगी तमाम जुड़े हुए हैं वहां से, जिनके पास हम चलेंगे। मौसमी हमारी सहयोगी है, अरविंद ओझा हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद है। जैसे ही कोई हमारे साथ कनेक्ट होता है मुझे बताइएगा ताकि हम लोग सीधा वहां चले। तो ये तस्वीरें उस वक्त की है जब राहुल गांधी को कुछ कांग्रेस के नेता जो है वो पकड़े हुए हैं और पुलिस उनको उठाकर वहां से ले जाने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव को भी हिरासत में लिया गया है, सबको वहां से हटाया गया है, ऐसी जानकारी आ रही है। तो एक बार सिलसिलेवार ढंग से आपको बताते हैं पूरी जो खबर है, क्योंकि लगभग 5 बजे के आसपास ऐसा प्रतीत हुआ कि अचानक कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में, वहां मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी थे, पहुंचती है सीधा प्रधानमंत्री आवास के बाहर। हाई सिक्योरिटी जोन है वहां पर। इसके बाद से ये देखिए उनको वहां से निकालकर ले जाया जा रहा है बस में, पुलिस उनको उठाकर ले जा रही है। और ये तस्वीरें हैं जब प्रदर्शनकारियों के बीच से पुलिस उठाकर ले जाती है और राहुल गांधी को इस बस में डाला गया है। राहुल गांधी आपको वहां पर दिखाई दे रहे हैं।

0: जाकर दीदी दीदी बोल रहे हैं।
1: हाँ। अच्छा अरविंद ओझा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद एक बार आप बताइए पुलिस के एंगल से क्या कर रहे हैं, अगर अगर बस में ले जा रहे हैं कहाँ ले जा रहे हैं?
2: देखिए बेहद संवेदनशील इलाका है अंजना, इससे हम सभी वाकिफ हैं और काफी देर तक बैठे रहे कांग्रेस के लीडर, ये काफी हैरानी की बात है। लेकिन अब पुलिस ने रणनीति बनाई जब सब्र का बांध टूटा, क्योंकि शाम भी हो चली है, जिसके बाद फिर एक एक करके तमाम नेताओं को हिरासत में लिया गया। पहले खुद डॉक्टर जितेंद्र सिंह सरकार की तरफ से आए थे, उन्होंने बातचीत की, लेकिन राहुल गांधी समेत तमाम कांग्रेस के लीडर नहीं माने। बात एक दो लीडर्स की नहीं थी, धीरे धीरे करके इस इलाके में कार्यकर्ताओं की भीड़ आने लगी, आम लोग भी आने लगे और इसकी भनक से जब दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारियों को लगी, उसके बाद ये फैसला किया गया कि सभी को हिरासत में लिया गया। जब कांग्रेस के लीडर को हिरासत में लिया जा रहा था, उसके कुछ देर पहले अखिलेश यादव पहुंचे थे, उनको भी बस में बैठाया गया। सभी को बस में बैठाकर अब यहां से दिल्ली पुलिस की टीम ले गई है। बहुत मुमकिन है कि किसी पुलिस स्टेशन पर ले जाकर इनको छोड़ दिया जाए प्रिवेंटिव दिल्ली पुलिस एक्ट के तहत। लेकिन एक चीज जो समझ में आई है कि जो कल 20 मार्च को युवाओं ने ऐलान किया था, कांग्रेस पार्टी कॉकरोच पार्टी ने ऐलान किया था, उसमें अब हर कोई अपना नंबर बना लेना चाहता है। इस वजह से कुछ नेता वो जंतर मंतर की तरफ पहुंचे तो कांग्रेस ने कहीं ना कहीं एक स्मार्ट मूव करते हुए राहुल गांधी वो प्रधानमंत्री के घर के आवास के बाहर पहुंच गए। तो हर कोई इसमें अपने नंबर बना लेना चाहता है। प्रोटेस्ट युवाओं का था और कल सबने देखा कि किस तरीके से नई दिल्ली इलाके में पुलिस भी संयम बरत रही थी, लेकिन जब संसद मार्ग की तरफ युवा जाने लगे तब उनको रोका गया और आज दिन भर शांति थी। लेकिन जो दिल्ली का जो माहौल, सियासी माहौल, वो गरमाया राहुल गांधी ने जब प्रधानमंत्री के घर के आवास के बाहर आकर बैठ गए, जो सबसे संवेदनशील इलाका। एक तो मानसून सत्र चल रहा है, उधर प्रधानमंत्री के घर के आवास के आसपास सुरक्षा बेहद कड़ी रहती है, लेकिन राहुल गांधी जब आके बैठे, उसके बाद जब एक के बाद एक नेता आके बैठने लगे, पहले राहुल गांधी को समझाने की पुलिस ने कोशिश की, सरकार की तरफ से डॉक्टर जितेंद्र आए, उनको समझाया गया कि देखिए बेहद संवेदनशील इलाका है, आप यहां से हट जाए, लेकिन जब वो नहीं माने और एक के बाद एक छुटभैया कार्यकर्ता भी जब वहां पर पहुंचने लगे, उसके बाद फिर पुलिस ने फैसला लिया कि सभी को हिरासत में लेना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे और भी पार्टियों के नेता आने लगे, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव आने लगे, इसके बाद सभी को हिरासत में लिया गया है और अब पुलिस उनको लेकर जा रही है। बहुत मुमकिन है किसी पुलिस स्टेशन में लेकर जाए, कुछ देर बाद उनको वहां से छोड़ दिया जाए। अंजना
1: बिल्कुल, अब मौसमी आप जहां पर खड़ी है वहां से अपडेट दीजिए। वो बता रहे हैं कि ऐसा मुमकिन है कि किसी थाने में कहीं पर ले जाया जाए, जहां पर कुछ देर डिटेन करने के बाद उनको छोड़ दिया जाए। क्या सभी को हटा लिया गया है जो बड़े नेता हैं? मौसमी
3: कांग्रेस उनको यहां पकड़े हुए हैं, राहुल गांधी
1: अरविंद देखिए लगभग शाम के अब अगर 7 बज गए हैं और ये हाई सिक्योरिटी जोन जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, लेकिन आज अगर आप पूरा देखिए तो एक सियासी रूप से अगर आप देखिए, आम आदमी पार्टी कहने लगी कि भाई हाईजैक कर रहे हैं, सीजेपी के प्रोटेस्ट को से लाइमलाइट छीनने के लिए ये सब कर रहे हैं, जुगलबंदी चल रही है कांग्रेस और बीजेपी की। लेकिन आज तो कई पार्टियों के, अगर अखिलेश यादव भी वहां पर पहुंचे तो विपक्ष की तरफ से कई नेता वहां पर पहुंचे आज इसमें।
2: देखिए अंजना, मैं इसको सीधे स्पष्ट तौर पर कहूं कि अगर ये पूरा मामला था और युवा आवाज उठा रहे थे तो पहले कोई सियासी पार्टी जंतर मंतर पर क्यों नहीं बैठी, लेकिन जब कॉकरोच जनता पार्टी बैठी, कुछ युवा आए और बड़ी संख्या में जब कल युवा आए, तब इन सियासी पार्टियों को समझ में आया कि अब यहाँ पर नंबर बनाने का वक्त है और जो यहाँ पर लोग बात भी कर रहे हैं। उसके बाद कुछ नेता वो जंतर मंतर पर पहुंचे, आम आदमी पार्टी पहले से सपोर्ट कर रही थी कांग्रेस जनता पार्टी को, उसके बाद शरद पवार दोपहर में पहुंचे, लेकिन तमाम विपक्ष के जो नेता हैं उनको गच्चा देते हुए राहुल गांधी ऐसी जगह पर पहुंचे जहां पर मीडिया का फोकस हुआ, जहां पर लाइमलाइट मिली और घंटों तक कवरेज हुई।
4: शिक्षा प्रणाली को लेकर, परीक्षा प्रणाली को लेकर,

0: दिल्ली पुलिस द्वारा जो छात्रों पर अत्याचार किया गया था कल उस पर चर्चा हो और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया जाए।
1: गृह मंत्री को लेकर भी आप लोग बात कुछ कर रहे हैं? गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग भी नेता विपक्ष लोकसभा ने करी थी कल की जो ब्रुटैलिटी हुई उसको लेकर।
0: हाँ बिल्कुल, कल जो अत्याचार हमें देखने को मिला है, ब्रुटैलिटी हुई थी, उस पर भी हम चर्चा मांगेंगे। पर मुझे नहीं दिखता कि अगर सरकार की यह मानसिकता रही कि पार्लियामेंट सेशन तो बिल्कुल
2: बाहर जाने दो प्लीज।
3: ये पेपर रिकॉर्ड कर देते हैं
4: आपके नेताओं को डिटेन, आपके नेताओं को डिटेन कर रहे हैं, चलिए यादव को भी अब डिटेन किया जा रहा है। धक्का क्यों दे रहे हो, धक्का क्यों दे रहे हो भाई, धक्का क्या दे रहे हो, काम करो ना अपना।
5: तो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आप सुन रहे थे जयराम रमेश ये कहते हुए कि किस तरह से सरकार को घेरते हुए, वहीं दूसरी तरफ पप्पू यादव को आप सुन रहे थे। दो तस्वीरें आपके सामने है, अगर आप देख पा रहे हो तो राहुल गांधी को जब बस में ले जा रही है पुलिस, और वहीं दूसरी तरफ जब वो जमीन पर लेट गए थे कांग्रेस के कुछ नेता उनकी तरफ, और दूसरी तरफ से पुलिस उनको उठाकर वहां से ले जा रही थी। अरविंद हमारे साथ बने हुए लगातार। अरविंद, क्या अब वहां से जहां पर आप लोग मौजूद हैं, क्योंकि सिग्नल्स इतने खराब है, लाइव नहीं हो पा रहा है हमारे रिपोर्टर्स का, इसलिए फोन लाइन पर वो बारी बारी से जुड़ रहे हैं। अरविंद, क्या स्थिति है इस वक्त?
6: राहुल गांधी को जबरदस्त, राहुल गांधी के मुंह से खून निकल रहा है, राहुल घर उनके घर के बाहर बैठे थे प्रधानमंत्री आवास के, और आप देखिए
5: तो लगातार कवरेज आप उस विरोध प्रदर्शन का देख रहे हैं जो इस वक्त भी प्रधानमंत्री आवास के बाहर से है। ये तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दो तस्वीरें फिलहाल टेलीविजन स्क्रीन पर मेरे साथ आप देख रहे हैं, जिसमें राहुल गांधी को वहां से बस पर ले जाया गया है, वहीं दूसरी तरफ जब वो जमीन पर लेट गए थे कांग्रेस के कुछ नेता एक तरफ उनको वहां पर रोक रहे थे, वहीं दूसरी तरफ से पुलिस लगातार उनको उठाकर ले जा रही थी। पुलिस उनको उठाकर ले गई है और आखिरकार बस में न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि कांग्रेस पार्टी के जो अन्य नेता हैं, जिसमें प्रियंका गांधी भी मौजूद थी, उनको भी वहां से हटाया गया है, बस में ले जाया गया है। वहीं तीसरी तरफ अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेता वहां पर पहुंचे थे और उनको भी आइए आपको सीधे लिए चलते हैं मौसमी के पास। मौसमी, ये वीडियोस हम दिखा रहे हैं, अब आप जाकर आपका लाइव शुरू हुआ है, बताइए क्या हो रहा है इस वक्त, क्या सबको हटा दिया गया है?
7: जी अंजना, देखिए वहां से सबको हटा दिया गया है, हम लोग फॉलो कर रहे हैं प्रियंका गांधी की बस को। प्रियंका गांधी की बस अब जो है एयरफोर्स भवन की तरफ बढ़ रही है। अगर आपको मैं तस्वीर दिखाऊं मोड़ के, ये देखिए, ये जो है उनकी वीआईपी गाड़ी है, और उधर पीछे आप देखें तो ये जो बस है, भैया थोड़ा सा इस तरफ बाई तरफ ले लीजिए, भैया जी बाई तरफ ले लीजिए, आप थोड़ा आगे ले लीजिए, नेताजी की गाड़ी में हम बैठे हुए हैं, आपको ये जो बस आपको दिख रही है, ये प्रियंका गांधी इस बस में बैठी हुई है, ये एयरपोर्ट भवन की तरफ है, हो सकता है पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने ले जाएं इनको, यहाँ पे आप देखिए पूरी तरह से उन्हीं के पीछे चलिए करना, जाम में फंस जाएंगे, यहाँ दाईं तरफ चलिए, ये देखिए प्रियंका गांधी की ये बस है, और इसी में प्रियंका गांधी को हमने देखा अंजना, काफी देर से मशक्कत होती रही, प्रियंका गांधी भीतर जाने को तैयार नहीं थी, हालांकि वो तस्वीर आप देखी होगी कि पहली बस में अखिलेश यादव को भरते हैं, दूसरी बस में राहुल गांधी को भरते हैं, और जो तीसरी बस है जो आप देख रही हैं सामने, हम जिनको जिस बस को इसी तरफ पीछे चलेगा भैया, तीसरी बस जिसको हम फॉलो कर रहे हैं वो उस बस में प्रियंका गांधी है। जैसे बस के नजदीक जाएंगे हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तीनों बसों को अलग अलग दिशाओं में ले जाया गया है। अखिलेश जी की बस जो है वो अकबर रोड पे बढ़ गई, राजा जी मार्ग पे राहुल गांधी की बस, और ये अकबर रोड के उलट इस तरफ प्रियंका गांधी की बस को बढ़ाया गया है। बहुत जल्दी ये पूरा काम हुआ, जब तक हम आपके साथ लाइव पर थे उसी बीच में ये पूरी घटना घट जाती है, और एक तरीके से पूरे इलाके को अब खाली करा दिया गया है, पहले कार्यकर्ताओं को।
5: ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब राहुल गांधी को वहां से ले जाया जा रहा है,
6: राहुल गांधी के मुंह से खून निकल रहा है, राहुल गांधी के मुंह से खून निकल रहा है, राहुल गांधी की नाक से खून निकल रहा
5: है। क्या कुछ चोट लगने की भी बात है क्या मौसमी, क्योंकि लाइव में कोई ऐसा बोलता हुआ सुनाई दे रहा है, राहुल गांधी को चोट भी लगी है क्या?
7: देखिए अंजना, इसकी पुष्टि होगी, पर मैं जो उनके साथ बैठा हुआ था धरने में, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के पैर में चोट आई है, और अब देखिए जब उठाया जाएगा, राहुल गांधी नीचे लेट गए थे तो तमाम सुरक्षा कर्मी जो है वो राहुल गांधी को उठाने में लगे 8-10 लोग काफी फिट माने जाते हैं नेताओं में, भारतीय इंडियन पॉलिटिशियंस में। और ये देखिए प्रियंका गांधी की ये बात है, यहाँ पे प्रियंका गांधी की बात करें कि भैया
2: भी कर लो यार,
8: ठीक है। ये कह रहे हैं आप लोग मांग क्या कर रहे हैं, आप लोग की मांग क्या है?
5: माइक है तुम्हारे, मौसमी हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई है। मौसमी, ऐसा माना जा रहा है कि बस से फिर उनको किसी दूसरे थाने में या कहीं पर दूसरी जगह ले जाया जा रहा है, क्या समझ में आ रहा है आपको?
7: इनको बोल
8: रहे
7: भाई हम जब
8: तक मंजूर है
9: शुरू से कह रहे
5: हैं। मौसमी आवाज आ रही है
7: जी अंजना, करने की
5: हाँ
7: जी,
5: आप बस के पास पहुंच गए ऐसा लगता है, बताइए।
7: हाँ जी जी, हम बस के पास पहुँच,
5: किधर जा रही है?
7: प्रियंका गांधी इसी बस में है, आज हम कोशिश करेंगे बात करने की। और यहाँ देखिए आप प्रियंका है मैडम,
8: आप लोग मांगे बदल रहे हैं, पहले आप लोग कुछ और करते हैं।
7: भैया एक सेकंड, हमको जान रहे हो
8: बस चल रही है,
5: ठीक है। हमारी सहयोगी कोशिश कर रही है, जैसे ही वो वहां पहुंचती है तो फिर हम लोग लाइव चले जाएंगे, वो बात करने की कोशिश कर रही है हमारी सहयोगी मौसमी इस वक्त। लेकिन कुछ देर पहले की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, और अगर अरविंद जो कि मौके पर मौजूद है वो जुड़ जाते हैं तो इशारा कीजिएगा, क्योंकि बात कीजिए मौसमी, बात कीजिए।
6: राहुल गांधी को राहुल गांधी के मुंह से खून निकल रहा है, राहुल गांधी के मुंह से
5: राहुल गांधी को वहां से हटाया गया है। राहुल गांधी जमीन पर लेट गए थे और उसके बाद से सभी को बस से वहां से ले जाया गया है। तो अब एक पूरी सियासी लड़ाई जिसे आप कह सकते हैं, इस मुद्दे पर विपक्ष आज हमलावर रहा, विरोध प्रदर्शन के लिए लोग सीधा वहां पर पहुंच गए। और आप समझ रहे हैं बहुत सिग्नल्स इस वक्त कमजोर हैं, इसलिए दोनों ही जगहों से हमारे सहयोगी हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे, वो जैसे जुड़ेंगे हम फिर से रुक करेंगे। सिलसिलेवार ढंग से आपको बताते हैं, बीते दिन सीजेपी का कॉकरोच जनता पार्टी का बड़ा विरोध प्रदर्शन जिसकी तस्वीरें आपने देखी। अब आज सुबह से क्या होता है, कॉकरोच जनता पार्टी अपना विरोध प्रदर्शन कर रही है, दूसरी तरफ संसद चलती है, संसद में विपक्ष ये आरोप लगाता है कि सरकार नहीं बोलने दे रही है। वहीं ओम बिरला कहते हैं कि इस बात पर चर्चा के लिए हम सरकार से बात करेंगे। नीट पेपर लीक के मुद्दे पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह का दावा है कि उन्होंने ये कहा कि हमने राहुल गांधी से कहा कि भाई हम इसके लिए तैयार हैं, और जब उन्होंने ये कहा कि हम नीट पर चर्चा के लिए, नीट पेपर लीक पर संसद में चर्चा के लिए तैयार हैं, ऐसे में फिर फौरन राहुल गांधी ने कहा कि नहीं हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यह आरोप लगाया है कि उन्होंने अपनी बात पलट दी, वो बात से मुकर गए और वो धरने पर बैठे रहे। उसके बाद से दिल्ली पुलिस वहां पर, वरिष्ठ नेता जो है कांग्रेस पार्टी के हो, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के, प्रियंका वाड्रा जितने भी नेता थे सबको वहां से बस से ले जा रही है। अरविंद हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ वहां से जुड़ गए। अरविंद, क्या ज्यादातर लोगों को अब वहां से हटा दिया गया है, क्या स्थिति है इस वक्त?
10: देखिए, सभी जो कांग्रेस के लीडर हैं उन सभी को वहां से हिरासत में लेकर बस में डालकर ले जाया गया है। फिलहाल वहां पर एक दो कार्यकर्ता होंगे, लेकिन जो शुरुआत की बात करें तो शुरुआत में सभी कार्यकर्ताओं को लिया गया, लेकिन जो टॉप लीडरशिप थी, जो बड़े नेता थे, उन सभी को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस अभी ये बता नहीं रही है उनको कहां लेकर जाया जा रहा है, लेकिन जो दिल्ली पुलिस के एक सीनियर अधिकारी से हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि पहले हम उनको किसी पुलिस स्टेशन में लेकर जाएंगे और उसके बाद एक खाना पूर्ति के बाद उनको बाद में जो होता ही है अमूमन उनको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल उनको पुलिस हिरासत में ही लेकर पुलिस जा रही है। अब ये देखना होगा कि कहां लेकर जा रही है। अमूमन नई दिल्ली के किसी पुलिस स्टेशन में रखती है पुलिस, कई बार किंग्सवे कैंप नॉर्थ दिल्ली वहां पर लेकर जाती है। ये क्लियरिटी अभी दिल्ली पुलिस की तरफ से हमें नहीं आई। हमने एक दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी से बात की है, उनका कहना है कि चूंकि अभी पीएम आवास पर ये धरने पर बैठे हुए थे और सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील इलाका है यहाँ पर, और न सिर्फ कांग्रेस के बड़े लीडर बल्कि छोटे मोटे कार्यकर्ता और आम लोग भी आने लगे थे ऐसे में, और चूंकि हाई सिक्योरिटी जोन था इसलिए सभी जो बड़े लीडर थे उनको हिरासत में लिया गया है और उनको पुलिस लेकर जा रही है। बहुत मुमकिन है कि किसी नई दिल्ली इलाके के किसी पुलिस स्टेशन में रखे, उसके बाद फिर आगे की रणनीति होगी। अमूमन होता ही है कि उनको छोड़ा जाता है प्रिवेंटिव डिटेन करके, लेकिन फिलहाल सभी लीडर पुलिस की हिरासत में ही है अंजना।
5: बिल्कुल, और वहीं दूसरी तरफ अगर बड़ी तस्वीर को देखने की कोशिश करें, सीजेपी का प्रोटेस्ट इस वक्त क्या स्थिति में है अरविंद? दिल्ली पुलिस के लिए जैसा हमने शुरू में ही कहा था कि भाई अब ये हाई सिक्योरिटी जोन तक मामला पहुंच चुका है, और जितने मतलब ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी की बात नहीं थी, अखिलेश यादव से लेकर सुप्रिया सुले तमाम पार्टियों के नेता वहां पर पहुंचे, वहीं दूसरी तरफ सीजेपी का भी प्रोटेस्ट है अरविंद।
10: अब बिल्कुल देखिए, कांग्रेस जनता पार्टी का प्रोटेस्ट था और कल जो मंच है वो मंच से खुद ही नेता वहां के चले गए थे, जंतर मंतर के पास केरला हाउस है वहां पर बैठे थे, फिर उसके बाद रात में उन्होंने मंच पर वो फिर से दोबारा आ गए। पुलिस उनको कुछ नहीं करी है क्योंकि पुलिस का पहले से स्टैंड है कि जंतर मंतर पर कोई शांतिपूर्वक अगर प्रोटेस्ट करना चाहता है तो वो बिल्कुल प्रोटेस्ट कर सकता है, और कल भी 20 मार्च को इसकी इजाजत पुलिस ने दी थी, लेकिन जब जो भीड़ थी वो थोड़ी उग्र हुई ऐसा पुलिस का कहना है, भी
5: अरविंद अगर आप ज्यादा मूव ना करें, एक जगह पर स्थिर होकर बोलें क्योंकि आपकी भी आवाज कट रही है, फोन भी कट रहा है बीच बीच में।
10: जी बिल्कुल, देखिए अंजना जैसा मैंने बताया आपको कि आज शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट रहा, 200-300 के लगभग जो प्रोटेस्टर थे वो वहां पर जमा थे, पुलिस आसपास थी, उसके बाद जो राजनीतिक नेताओं का सिलसिला है राजनेताओं का वो धीरे धीरे वहां पर बढ़ने लगा और सब फोकस वहीं था, लेकिन अचानक से फोकस शिफ्ट हुआ प्रधानमंत्री के के पास, जब राहुल गांधी वो पैदल चलकर मल्लिकार्जुन खड़गे के घर के बाहर से पैदल चलकर वहां पर बैठ गए, उसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा उसके अलावा तमाम जो कांग्रेस के बड़े लीडर हैं वो पहुंचे और तकरीबन कई घंटों तक वहां बैठे रहे, और उसके बाद फिर जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है वो वहां पर पहुंचे, उन्होंने समझाने की कोशिश की लेकिन राहुल गांधी नहीं माने, उसके बाद फिर पुलिस ने फैसला लिया और जब राहुल गांधी को हिरासत में लिया जाना था उसके कुछ मिनटों पहले ही अखिलेश यादव वहां पहुंच गए समाजवादी पार्टी के, और ये तमाम वो सियासी पार्टियां हैं जो खुलकर कांग्रेस जनता पार्टी को बैक भी कर रही थी और उसके बाद फिर अखिलेश यादव पहुंचे, लेकिन उसके बाद फिर पुलिस ने सबको प्रिवेंटिव टेंशन में लिया और बस में लेकर वो फिलहाल पुलिस गई है। अगर जो आपने सीजेपी की प्रोटेस्ट की बात करें तो आज पीसफुली रहा पूरा नई दिल्ली का इलाका, लेकिन राहुल
5: बने रहिए अरविंद बने रहिए, अब वीडियो वो भी आ रहा है करीब से जिसमें आप अखिलेश यादव को देख रहे हैं। अखिलेश यादव जब इस विरोध प्रदर्शन में पहुंचे, हुजूम आपको दिख रहा है, दो लोग अखिलेश यादव और दूसरी तरफ उनके भाई धर्मेंद्र यादव भी, मुझे लगता है धर्मेंद्र यादव ही हैं, वो दोनों वहां पर पहुंचे हुए हैं, दोनों राहुल गांधी से वो मिलते हैं और वहां पर उनकी कोशिश होती है कि वो भी इस विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बने। हालांकि धीरे करके एक एक करके इन सबको वहां से हटा लिया गया है, पुलिस ने सबको बसों में डालकर वहां से हटा दिया है। ये पीएम सिक्योरिटी पीएम के घर की वजह से हाई सिक्योरिटी जोन है जिसकी वजह से हटाया गया है। और आइए जल्दी से आपको अरविंद बने रहिएगा, हम लौट रहे हैं, लेकिन उससे पहले आइए आपको सुना देते हैं अपने दर्शकों को जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं इस पर आ रही है।
9: देखिए जिम्मेदारी ये बनती है कि प्रधानमंत्री मांग को तो माने, आखिर का छात्रों की मांग क्यों नहीं मान रहे हैं?
11: ये तानाशाही सरकार है और पूरा विपक्ष पूरी एकता और मजबूती के साथ हर स्तर पर लड़ेंगे छात्रों नौजवानों की इस लड़ाई को। आदरणीय अखिलेश यादव जी को, राहुल जी से लेके तमाम बड़े नेताओं को जो डिटेन किया है, प्रियंका जी, सुप्रिया जी और साथ हम लोग एक भी समाजवादी साथी अब चुप नहीं बैठेगा और इस सरकार से हम लोग लड़ाई संसद से लेके सड़क तक
12: के सारे सिक्योरिटी को हटा दिया गया,
11: हर स्तर पे लड़ेंगे।
12: टोटल कमांडो हटा दिया गया और उसके बाद राहुल गांधी के कमांडो को हटाया गया, उसके बाद अखिलेश जी, राहुल गांधी जी को पुलिस ने बर्बरता की और इवन कुहने से मेरे आंखों के सामने अखिलेश जी और राहुल जी को पीटा गया।
13: आपके सामने है हमारी लीडर्स को, हमारे राहुल जी को, प्रियंका जी को कैसे उन्हें मैन हैंडल किया जा रहा है, देखा आपने। ये माहौल है इस देश में, ये लोकतंत्र है, आपको दिखता है लोकतंत्र?
14: पार्लियामेंट में भी उठाएंगे,
13: अरे यहाँ से फिर आएंगे हम बैठेंगे, क्या बात कर रहे हैं आप।
5: पवन खेड़ा को आप देख रहे थे और पूरा विपक्ष जिसमें अखिलेश यादव से लेकर धर्मेंद्र यादव, पप्पू यादव, उसके बाद पवन खेड़ा, सब सरकार पर हमलावर है इस वक्त। वीडियो है अब जो एक एक करके आ रहा है, क्योंकि एक में आपको प्रियंका वाड्रा गांधी भी देखिए बस में जब उन्हें ले जाया गया तब का ये वीडियो है, उससे पहले अखिलेश यादव जब वहां पर पहुंचे थे राहुल गांधी के पास तब का वीडियो है। अब इन तमाम लोगों को अरविंद एक बार फिर से, जो तमाम हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अगर सिलसिलेवार ढंग से हम उसको देखें, बीते दिन कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट होता है, उसमें आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुत सक्रिय दिखती है। कांग्रेस पार्टी आज सक्रिय होती है और वो सीधा पीएम आवास के पास तक पहुंच जाती है जहां पर ये विरोध प्रदर्शन वो करते हैं और उसके बाद से वहां से नेताओं को हटाया गया है। अरविंद
10: बिल्कुल, और देखिए अगर बात की जाए सीजेपी के प्रोटेस्ट की तो वहां पर मंच पर आम आदमी पार्टी के लीडर वो दिखाई दिए थे, बाकी लोग सोशल मीडिया पर समर्थन दे रहे थे। उसके बाद कल जिस तरह से हंगामा हुआ, जो तस्वीरें सबके सामने आई उसमें दिखा कि कुछ यूथ भी आए साथ ही साथ कुछ सियासी पार्टियों के लोग भी आए थे, ऐसा पुलिस का दावा है। उसके बाद जिस तरह की भीड़ आई थी उसके बाद फिर आज जब सीजेपी का प्रोटेस्ट मंच लगा उसके बाद कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लीडर वो जंतर मंतर पहुंचे, जिसमें शरद पवार वो पहुंचे हुए थे। और ऑप्टिक्स की यहां अगर बात की जाती है तो उसके बाद हर कोई ये दिखाना चाहता, हर सियासी पार्टी ये दिखाना चाहती है कि हम युवा के साथ हैं, और उसमें फिर राहुल गांधी कैसे पीछे रहते, क्योंकि काफी वक्त तक कांग्रेस इसमें मतलब सोशल मीडिया की बात करें तो जरूर एक्टिव थी लेकिन ग्राउंड पर एक्टिव नहीं थी, और अचानक से वो फोकस किया राहुल गांधी ने। हर कोई इसमें अपने, अगर मैं बहुत सियासी तौर पर बात करूं तो नंबर बना लेना चाहता है, कौन युवा चाहता है, राजनीति हर नेता को करनी है, तो उसी के तहत राहुल गांधी वो प्रधानमंत्री आवास के पास बैठते हैं और जाहिर सी बात है अगर वहां पर बैठते हैं हाई सिक्योरिटी जोन है तो फोकस वहां पर होगा ही होगा, मीडिया का और तमाम जवाड़ा वहां लग गया। और वहां से उन्होंने फिर अपने कार्यकर्ताओं को कॉल भी कर दिया, उनको ये भी मालूम था कि बहुत देर तक वो वहां पर बैठ नहीं सकते क्योंकि हाई सिक्योरिटी जोन है। सरकार ने फिर भी एहतियात बरता, बातचीत करने की कोशिश की कि सम्मानजनक तरीके से उनको समझाया जाए क्योंकि वो भी लोकसभा में विपक्ष के नेता, उनको समझाया जाए कि हाई सिक्योरिटी जोन है, कोई अनहोनी हो सकती है, इसलिए उनको समझाने की कोशिश की गई और उनको बताया गया कि आपने यहाँ पर प्रोटेस्ट कर लिया है, अपनी बात रख ली, आप यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन जब राहुल गांधी नहीं हटे उसके बाद धीरे धीरे करके और कार्यकर्ता वहां पर जमा होने लगे, आम लोग जमा होने लगे, उसके बाद फिर पुलिस वहां पर पहुंची, संख्या बढ़ाई गई।
5: अरविंद बने रहिए, मैं फौरन लौट रही हूँ आपके पास। ये तस्वीरें आई हैं, ये तस्वीरें जिसमें आप देख रहे हैं राहुल गांधी, ऐसा लग रहा है कि उनको जब बस में बिठा दिया गया है तब के अंदर की तस्वीरें हैं वो, राहुल गांधी बस में, अखिलेश यादव, इन सभी लोगों को वहां पे बस में ले जाया गया है। मौसमी, लेकिन उससे पहले आइए आपको सुना देते हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो पहले गए थे राहुल गांधी से खुद बात करने के लिए, बातचीत की तस्वीरें भी सामने आई, उन्होंने कहा कि उनके साथ गृह सचिव गोविंद मोहन भी गए थे, क्या बता रहे हैं वो, उनका क्या आरोप है इस विरोध प्रदर्शन को लेकर, सुनिए।
15: हमें ये कहा गया कि आप सरकार की ओर से उनको आश्वासन दीजिए कि सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, सरकार तैयार है संसद में चर्चा करने के लिए, नीट को लेकर के भी, उसके साथ संबंधित विषयों को लेकर के भी, जो आंदोलन है उसको लेकर के भी। हमने जब ये बात वहीं पर राहुल गांधी जी के आगे दोबारा रखी तो बोले कि साहब मुझे तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी चाहिए। तो हमने कहा साहब अभी कुछ ही क्षण पहले आपसे बार बार जब पूछा गया कि आपका क्या मुतालबा है, तो आपने ये कहा था कि अगर मुझे ये आश्वासन दिया जाए कि संसद में कांग्रेस पार्टी को भारत सरकार चर्चा करने देगी या करने के लिए तैयार है, तो मैं तुरंत ये धरना समाप्त कर दूंगा। लेकिन अब आप अपनी बात से हट रहे हैं, तो बोले साहब ये तो मेरी मर्जी है, मेरी मांगें बदल चुकी हैं। हमने कहा सर दिस इज नॉट फेयर, यू आर चेंजिंग द गोल पोस्ट। बोले दिस इज माई विश। तो बोले साहब नहीं, हम तो यहीं बैठेंगे, आप हमें उठा लीजिए। बोले साहब हम तो, मैं तो आपसे चर्चा करने आया था बड़े विनम्रता से, आपको उठाने का तो हमारा इरादा नहीं था, मैं तो सिर्फ आपसे यह अनुरोध करने आया था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप शायद आप उस मूड में ही नहीं है कि आप कुछ वाया मीडिया या रास्ता निकाला जा सके। तो बोले आप जो मर्जी इसका निष्कर्ष निकालिए, मैं तो वही करूंगा जो मेरी मर्जी है।
5: तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह को आप सुन रहे थे, उन्होंने कुछ देर पहले ये बात कही है और उनका कहना था कि अपनी मर्जी की बात की राहुल गांधी ने। अब कुल मिलाकर अगर आप देखिए, मौसमी हमारे साथ जुड़ गई है। मौसमी कहाँ ले जाया जा रहा है, कहाँ पहुंचे आप लोग?
7: जी देखिए, हम लोग जो है पीछा करते हुए अभी पहुंचे हैं, यहाँ पे गोल डाकखाना क्रॉस किया है।
5: अच्छा।
7: और ऐसा बताया जा रहा है कि अभी उनका काफिला, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये आगे अभी इनकी बस, हम लोग पीछे ट्रैक कर रहे हैं, इसी के आगे उनकी बस है, प्रियंका गांधी इस बस में है जिसको हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। और ये छत्रसाल स्टेडियम कहा जा रहा है कि शायद ले जाया जाए, हालांकि अभी जैसे ही बस रुकती है हम लोग एक बार फिर से कोशिश करेंगे बात करने की प्रियंका गांधी से। लेकिन आप देखिए कि जिस तरीके से प्रियंका गांधी और पूरे इलाके को खाली कराया गया, राहुल गांधी को ले जाया गया, देखना होगा कि क्या एक ही जगह पे लेके जाती है दिल्ली पुलिस। ये देखिए आप, यहाँ पे लगातार तमाम कार्यकर्ता भी इस बस में मौजूद है जो जा रहे हैं, और ये पूरा उनके पीछे जो सिक्योरिटी है, गाड़ियां हैं, वो भी इस काफिले में जा रही हैं। और अभी हम लोग शायद पास आ गए हैं छत्रसाल स्टेडियम के, ये इलाका है करोल बाग की तरफ हम लोग थोड़ा से बढ़े हैं। यहाँ पे करोल बाग के इलाके से अब ये मंदिर मार्ग, आप देखिए ये मंदिर मार्ग थाना है, और ये वो बस है जहाँ पे हम लोग अब कोशिश करते हैं कि जी मैं कोशिश करती हूँ कि एक बार फिर से अटेम्प्ट करेंगे। तब तक जो राहुल गांधी का जिक्र कर रही है प्रियंका, जब राहुल गांधी को उठाया गया तो तमाम लोग ये बता रहे थे कि जब राहुल गांधी को उठाया गया तो उनको चोट लगी है पैर में, ऐसा उनके सपोर्टर्स बता रहे हैं। और ये प्रियंका गांधी की जो बस है वो यहाँ पे नजर आ रही है। प्रियंका गांधी आप खुद मैम क्या आपको कहाँ ले जा रहे हैं, किस तरह से जिस तरह से आप लोग को हटाया गया है, क्या कहना चाहेंगे आप?
14: शायद तो है सरकार, कायरों की सरकार नरेंद्र मोदी की युवाओं का भविष्य है, इन्होंने हिम्मत है तो आगे आए बात करें, सुझाए इनकी समस्या, इन पर कमेंट
7: कराए, बंद करो के नारे लगा रही है और कह रही है कि कायरता है। जिस तरीके से यहाँ पर गलत
14: जब जब वो भी डरता है,
7: आज मैं आपको हम दिखा रहे हैं जहाँ पे प्रियंका गांधी ये जा रही है पुलिस, लेकिन साफ तौर पे उनका सरकार डरी हुई है, डरपोक की सरकार है, और खुद नारे लगाते हुए प्रियंका गांधी यहाँ पे पुलिस के डिटेंशन में।
5: बिल्कुल बिल्कुल मौसमी, और ये एक बार फिर से तस्वीरें हम आपको पहले की दिखा रहे हैं, जब राहुल गांधी को मतलब बस पे ले जाया गया था, अखिलेश यादव जब वहां पर पहुंचे थे, और सिलसिलेवार ढंग से अगर आप पूरा देखिए तो कांग्रेस पार्टी वहां पर पहले पहुंचती है, विरोध प्रदर्शन की शुरुआत करती है, ऐसा इलाका जहां पर प्रधानमंत्री आवास को लेकर सुरक्षा वहां पर बहुत बड़ा कंसर्न, बड़ी चिंता रहती है। ऐसे में उसके बाद एक एक करके बाकी जो गठबंधन के नेता हैं वो पहुंचते हैं, सुप्रिया सुले वहां पर पहुंचती हैं, वहां पर अखिलेश यादव पहुंचते हैं, विपक्ष ये दावा करता है कि हम एकजुट हैं, पप्पू यादव वहां पर पहुंचते हैं, और फिर ये सारे नेता जो हैं वहां पर विरोध प्रदर्शन करते हैं। उसके बाद पुलिस फिर ये मन बनाती है, वो एक एक करके सबको उठाना शुरू करती है। क्या अरविंद हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त है क्या? ठीक है, जैसे ही होते हैं एक बार फिर से मौसमी का रुख करेंगे। मौसमी, क्या किसी जगह पर आप लोग उतर चुकी हैं या फिर आप रेड लाइट पर उतरकर आपने बात की?
7: जी अंजना, मैंने ये मंदिर मार्ग की रेड लाइट पे उतर के बात की थी। जाहिर तौर पे जिस तरह से जामर्स लगे हैं पूरे इलाके में, जाम है, तो किसी तरह से उनको फॉलो करके हम लोग ने ट्रैक किया कि कहाँ है। बताया जा रहा है कि शायद छत्रसाल स्टेडियम सारे नेताओं को ले जाएंगे। अभी जो पुलिस बस है, जो बस है तमाम कार्यकर्ताओं के साथ, वो आगे बढ़ी है। लेकिन जिस तरीके का जो रवैया प्रियंका गांधी का दिखा, तो जाहिर तौर पे तैयारी थी कि वहीं पर धरना प्रदर्शन करने की। और जिस तरह से डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी बताया कि पहले कहा था कि चर्चा करने के लिए तैयार थे, फिर उससे मुकर गए, तो जाहिर तौर पे सरकार और विपक्ष के बीच या सरकार और कांग्रेस के बीच इसको लेके कोई तालमेल बन नहीं पाया। राहुल गांधी ने दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान की बात पे अड़े रहे, फिर अखिलेश यादव आ जाते हैं, सुप्रिया सुले आ जाती हैं, और फिर यहाँ पे तुरंत जब ये पता चला कि राहुल गांधी ने बाकी लोगों को भी बुला लिया है, तब वो ट्रिगर पॉइंट था पुलिस का। तो उसके बाद डिटेंशन की तैयारी हुई। आपको याद हो कि मैंने संकेत दिए थे कि बसों की तादाद बढ़ती चली जा रही है, और लगता ऐसा है कि रात में रुकने की तैयारी के मूड में नहीं है दिल्ली पुलिस, और डिटेन करेगी तमाम नेताओं को। और वही हमने देखी तस्वीर यहाँ पे, कुल मिलाके कांग्रेस की तरफ से पुरजोर तरीके से कोशिश हुई है सरकार पर दबाव बनाने की, लेकिन क्या इसको सस्टेन कर पाती है कांग्रेस, क्या वाकई में लोगों छात्रों के साथ खड़ी हो पाती है एक एक लंबे समय तक, ये बड़ा सवाल है। और क्या जिस तरीके से सिस्टम को लेके तमाम छात्र सवाल कर रहे हैं, वो क्या कांग्रेस उसमें किस तरीके से इस मुद्दे को उठाती है आगे, ये लगातार एक बड़ी चुनौती होगी कांग्रेस पार्टी के लिए।
5: बिल्कुल, और ये एक बड़ा चैलेंज तो है ही, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी आज इसको करी, आम आदमी पार्टी ने ये आरोप लगा दिया ना आज मौसमी शाम में, उन्होंने कहा कि बीजेपी के साथ जुगलबंदी है, सीजेपी के प्रोटेस्ट से बिल्कुल ध्यान हटाने के लिए कांग्रेस पार्टी आज पहुंच गई विरोध प्रदर्शन के लिए। क्या इस पर कोई कांग्रेस की तरफ से रिएक्ट कर रहा है?
7: देखिए, मुझे लगता है कि लव हेट की जो रिलेशनशिप है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में, कहीं ना कहीं वो नजर आती है। पहले एक बार साथ लड़ लिए, उससे पहले राहुल गांधी उनकी तारीफ कर दी है, और अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी का मजाक उड़ा दिए, तो अभी तो बेसिकली लड़ाई चल रही है, बिल्कुल ठनी हुई है। पंजाब में भी लड़ाई है और उत्तर प्रदेश में भी उनको नो एंट्री दिखाने की कोशिश है, तो जाहिर तौर पर यही एक्सपेक्टेड था। अभी लाइन ऑफ अटैक क्लियर है, दोनों आपस में एक दूसरे को अटैक कर रहे हैं, और यही वजह है कि आपने देखा कि किस तरह से बड़ी जल्दी ही आतिशी का रिएक्शन आया कि यहाँ पे बी टीम की तरह कांग्रेस काम कर रही है, क्योंकि राहुल गांधी खुद ही आरोप दिल्ली चुनाव में लगा चुके हैं कि अरविंद केजरीवाल मोदी की बी टीम है, तो शायद ये रार वहीं से ठनी हुई है।
5: बिल्कुल, और ये आपस में उनका अलग रहा, लेकिन अगर आप देखिए तो कांग्रेस जनता पार्टी जब उसने बीते दिन प्रोटेस्ट शुरू किया था मौसमी, कल आम आदमी पार्टी का काफी समर्थन उनके नेता मंच पर दिख रहे थे, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी ने कल शाम होते होते दोपहर होते होते अपने आप को अलग किया था? उनके कोई नेता गए थे क्या वहां मंच पर?
7: देखिए, मुझे लगता है कि ज्यादा समर्थन सोशल मीडिया पे आया। बड़ी बात यह थी कि राहुल गांधी ने खुद इसमें कहा कि ये मोदी सरकार की नाकामी है और मोदी प्रधानमंत्री मोदी जो है युवा विरोधी है। तो ये पहली बार था 10-20 दिन में जब राहुल गांधी ने ये इस प्रदर्शन पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। हालांकि सीजेपी के बारे में उन्होंने कहीं कुछ नहीं बोला, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस भी दूध का जला छाछ फूक फूक के पीती है, और पहले ऐसा हो चुका है अन्ना आंदोलन में, तमाम मंत्रियों ने रेड कार्पेट रोल आउट किया था अन्ना हजारे को, और राम बाबा रामदेव को एयरपोर्ट से लेने गए थे, उनका अनशन तोड़वाया था। तो कांग्रेस को लगता है धोखा दोबारा ना हो जाए, और इसी को लेके उसको शक है कि ये वाकई में एक जो कॉकरोच जनता पार्टी है, रैंडम क्रिएशन है कि इसके पीछे किसी का हाथ है। और यही वजह है कि छात्रों के साथ खड़ा रहना चाहते हैं राहुल गांधी, लेकिन सीजेपी का मेंशन नहीं करना चाहते हैं।
5: और वहीं दूसरी तरफ आज जब नई ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी जमीन पर उतरी है, तो उनको लग रहा है कि नीट पेपर लीक का जो मामला है उसको वो आगे लीड करते हुए दिखाई दे रहे, क्योंकि वो सीधा मतलब हाई सिक्योरिटी जोन पीएम आवास के पास तक पहुंच गए, और विपक्ष के अन्य नेता भी शामिल हुए। राहुल गांधी ने जब पोस्ट किया, या फिर ये प्री प्लान था क्या, इंडिया अलायंस के नेताओं ने मिलकर तय किया था, या आपको लगता है उस आह्वान के बाद अखिलेश यादव या सुप्रिया सुले सब पहुंचे?
7: मुझे लगता है कि रीच आउट होगा, क्योंकि सुप्रिया सुले वहां पे जंतर मंतर पर पहुंची थी, कल डिंपल यादव पहुंची थी। तो अगर पहले से पता होता तो शायद पहले से सपा के कार्यकर्ता भी मौजूद होते, लेकिन ये मुझे लगता है प्री प्लान नहीं था। कांग्रेस के बाद ने रीच आउट किया है, बाद ने संपर्क साधा है, चाहे वो अखिलेश यादव हो, पीछे से देखा आज चाहे वो अखिलेश यादव हो या फिर सुप्रिया सुले हो। और उसके बाद जैसे ही जमावड़ा बढ़ता गया और राहुल गांधी ने लोगों को भी बुला लिया, तो पुलिस के लिए जो है पुलिस के भी पसीने छूट गए थे अंजना, क्योंकि एक तो उनको पता नहीं चला कि प्रधानमंत्री आवास पे एक मुख्य विपक्षी पार्टी इतना बड़ा प्रदर्शन करने वाली है कि 120 सांसद आ जाएंगे। तो ये बहुत चिंता का सबब पुलिस के लिए बन गया था कि कब तक डेरा डालेंगे। और उसके बाद यही वजह है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह का आना ये कोई आम बात नहीं है, कि अगर वो जंतर मंतर पर बैठते तो कभी ना आते डॉक्टर जितेंद्र सिंह। कितनी बारी प्रदर्शन हुआ है अकबर रोड पर, प्रियंका गांधी जमीन पर बैठी रही और उनको उठा उठा के डिटेन किया गया है। विपक्ष का काम है धरना करना, तो केंद्र सरकार के मंत्री का आना ये था कि जो टाइमिंग थी और लोकेशन थी वो बहुत भारी पड़ी। और जिस तरीके से राहुल गांधी ने मौके का फायदा उठाते हुए या यूं कहिए सियासी रूप से इसको भुलाते हुए जनता को भी आह्वान कर दिया, वो और परेशानी डबल परेशानी हो गई। और यही वजह है कि आज जिस तरीके से भले ही तस्वीर टीवी चैनलों पर चल रही है, प्रियंका गांधी नारेबाजी कर रहे हैं, वो सही है, लेकिन अगर जनता का हुजूम प्रधानमंत्री आवास पर बढ़ता चला जाता तो वो बहुत ज्यादा मुश्किल सरकार के लिए खड़ा कर सकता था। इसीलिए सरकार ने इसमें जल्दी से जो है जो भी कदम उठाने थे वो उठाए, और सुरक्षा के मद्देनजर इन सभी नेताओं को हटाया गया है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि अगर अखिलेश राहुल साथ में होते हैं छत्रसाल स्टेडियम में, क्या वापस जाएंगे या वहीं धरने पर बैठेंगे? नोइंग राहुल गांधी वापस धरने पर बैठ जाएंगे, कल संसद का दिन हंगामेदार होना तय है। वैसे
5: बिल्कुल मोर्चा कई तरफ खुल रहा है, और उनमें से एक सरकार के लिए बड़ी मुश्किल ये है कि विपक्ष संसद से लेकर सड़क पर उनको घेर रहा है, और इधर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट भी चल रहा है। अब बड़ी तस्वीर को अगर एक बार फिर से मौसमी देखें, तो क्या आपको लगता है कि आखिरकार अब कहीं पर तो उनको ले जाया जा रहा है, कल नए सिरे से संसद में अब विपक्ष घेरने की कोशिश करेगा, या कल फिर, क्योंकि अब ये थमता हुआ तो दिख नहीं रहा इतनी आसानी से?
7: बिल्कुल ये अब थमने वाला नहीं है अंजना, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने, देखिए हमने ना सड़क से भागते हुए पीछे बस को पकड़ा, प्रियंका गांधी से सवाल पूछा, और वो उस वक्त भी नारे लगा रही थी, लाल बत्ती पर थी, काफी देर तक आप देखे कि वो बाहर बस से अंदर घुसने को तैयार नहीं थी। तो ये सियासी रूप से लड़ाई है जिसको लड़ना है, ये तय हो गया है। कांग्रेस जान रही है कि ये मामला जो है सरकार पर दबाव बना सकता है। तो राम मंदिर, चंदा चोरी को लेके और इसको लेके दोनों मुद्दों को लेके घेरना था, और एथेनॉल के मुद्दे पर भी घेरना था, लेकिन अब नीट का मसला, छात्रों की पिटाई का मसला अब आगे प्रायोरिटी लेते हुए नजर आ रहा है। कम से कम कल हम देखेंगे पूरे मसले पर हंगामा आएगा। फोकस ये नहीं होगा कि नेताओं को डिटेन कर लिया, फोकस तो विपक्ष का ये होगा कि छात्रों की मांग हम लोग उठा रहे हैं, आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं कर रहे हैं, अगर हम उसके लिए विरोध कर रहे हैं तो संसद में भी विरोध करेंगे। और इंटरेस्टिंग इसमें यह है कि आप देखिए अखिलेश और राहुल की जुगलबंदी भी यहाँ पे नजर आ रही है कि अखिलेश जो है राहुल के बुलाने पर प्रधानमंत्री आवास पहुंच जाते हैं, तो कहीं ना कहीं चुनावी आगाज जो है वो भी हो रहा है इस तरीके से कांग्रेस और सपा के बीच में।
5: और ये वीडियो भी रिलीज किया गया है मौसमी, जिसमें राहुल गांधी को भी बस में ले जाया जा रहा है, पुलिस की मौजूदगी है बस में और उनको भी ले जाया जा रहा है। तो ये वीडियो मुझे लगता है कुछ देर पहले ये रिलीज किया गया है, जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि राहुल गांधी भी बस में ले जाए जा रहे हैं, इससे पहले का ये वीडियो है। वहीं दूसरी तरफ मौसमी, आप बता रही थी कि प्रियंका गांधी आप क्या इस वक्त भी गाड़ी में है, आगे बढ़ रही है, कहां तक बसेस को ले जाया जा रहा है, या अब आप रुक गई है और कुछ देर में पता चलेगा कि बस कहां पर ले जाकर सबको उतारा जा रहा है?
7: जी, जो इनपुट बता रहे थे कार्यकर्ता, क्योंकि उनके साथ बहुत सारे कार्यकर्ता उसी बस में भरे हैं, कि पुलिस आपस में बात कर रही थी कि छत्रसाल
16: डेमोक्रेसी इन इंडिया इज हैपनिंग राइट नाउ, डेमोक्रेसी इन इंडिया इज हैपनिंग राइट नाउ, डेमोक्रेसी इन इंडिया इज हैपनिंग राइट नाउ, Democracy in India is happening right now. Democracy in India is happening right now. Democracy in India is happening right now.
5: तो लोकतंत्र को लेकर अपनी बात कहते हुए राहुल गांधी आपको दिखाई दे रहे हैं, जब उस वक्त जब वो जमीन पर थे और वहां पर सारे माइक्स उनकी बात पहुंचा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने उसके बाद उनको बस में बिठा दिया, बस में उनको ले जाया गया है। मौसमी, छत्रसाल स्टेडियम आप बता रही थी, ऐसा लग रहा है कि वहां ले जाया जाएगा सबको?
7: जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता रही थी, सॉरी मैं बोलती रही कि नहीं, मैं आपको ये बता रही थी कि छत्रसाल स्टेडियम इनको
5: मॉडल टाउन ले जाया गया है, मॉडल टाउन पुलिस थाने ले जाया गया है। मौसमी, ऐसी खबर आ रही है राहुल गांधी को मॉडल टाउन पुलिस थाने ले जाया गया है।
7: तो ये संभव है अंजना कि ये संभव है कि अलग अलग लोकेशन में रखा जाए? मॉडल टाउन तो शहर के उस पार है, यानी कि कार्यकर्ता भी ज्यादा ना वहां पे कूच कर सके। पिछली बार हमने देखा था कि जब डिटेन किया गया था तो पूरे थाने में कांग्रेस के कार्यकर्ता भर गए थे, तो शायद कोशिश ये थी कि दूर ले जाया जाए ताकि ज्यादा हंगामा खड़ा ना हो, इसीलिए मॉडल टाउन राहुल गांधी को ले जाया गया है। अब तो मैं बस का रास्ता भी भूल गई कि किस तरफ बस है। प्रियंका गांधी मुझे रास्ते में ही, मैं जब इंटरव्यू कर रही थी तो जिस गाड़ी से मैंने थोड़ी लिफ्ट ली थी वो गाड़ी भी निकल गई और हम वेट कर रहे हैं हमारी टीम के आने का, जैसी आती है तो हम लोग फिर से ट्रैक करने की कोशिश करेंगे तो अपने सूत्रों के सहारे। लेकिन
5: वहां से बस में ले जाया जा रहा था तो प्रियंका वाड्रा गांधी से बात की हमारी सहयोगी मौसमी ने, क्या कहा उन्होंने सुनिए।
17: सरकार नरेंद्र मोदी जी आपने से बात करें,
5: मौसमी हमने सुनाया अपने दर्शकों को, आपने जो प्रियंका वाड्रा गांधी से बातचीत की थी, सरकार को विपक्ष आज के दिन बहुत आक्रामक रूप से घेरता हुआ दिखाई दे रहा है।
7: बिल्कुल, देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं सरकार भी दबाव में है। अंजना, जो तस्वीरें कल रोल आउट की हैं वो बहुत सारी तस्वीरें सरकार को विचलित कर सकती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे युवा बच्चे अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं और खासतौर से जब शाम में इंटरनेट रिस्टोर हुआ है उसके बाद तमाम वीडियो सोशल मीडिया में जो है भर गए थे जो, और हम लोग खुद भी जब कर्तव्य पथ पे थे और रेल भवन में थे तो प्रदर्शनकारी बिल्कुल चौखट पर आ गए थे संसद के, तो अपने आप में वो एक सरकार के लिए बेचैनी का विषय हो सकता है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि विपक्ष सियासी रूप से इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। हमें अपनी बात जनता और छात्रों तक पहुंचानी चाहिए, लेकिन शाम तक होते होते इस कदर एक बार फिर से विपक्ष ने वार किया है, और ये पहली बार है। मैंने ये भूपेश बघेल से भी सवाल किया था, ये पहली बार है अंजना की राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास में इस तरह से उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। पहले कई मार्चेस हुए हैं, 3 मूर्ति तक मार्च हुआ है और लगातार मार्च संसद से विजय चौक तक हुआ है, आगे तक करने की कोशिश की गई है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस ने योजना ऐसी बनाई कि किसी को कानो कान खबर नहीं लगी, और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी खड़गे साहब के साथ उनके जन्मदिन पर बैठ जाते हैं प्रधानमंत्री के एंट्री पर। मतलब ये सोचिए कि ये सुरक्षा एजेंसियों के लिए कितना बड़ा परेशानी का सबब बन गया।
5: बिल्कुल।
7: और उसके बाद लोग कार्यकर्ता बढ़ते गए तो अपने आप में भी मामला तोल पकड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि इसको लेकर कल संसद चलने वाली है और इसको लेकर बहुत हंगामा बरपने वाला।
5: बिल्कुल, और वो हंगामा साफ दिखाई भी दे रहा है, यानी नीट पेपर लीक का मुद्दा संसद से सड़क तक पसरता हुआ दिखाई दे रहा है और बड़ा चैलेंज है कम से कम कानून व्यवस्था के। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आपको जरा तस्वीरें हम दिखाना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप देखिएगा राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, अखिलेश यादव, डिंपल यादव सब वहां पर पहुंचे। अच्छा, जब राहुल गांधी वहां पर लेट गए, विरोध प्रदर्शन करने लगे, पुलिस वाले उनको उठाने की कोशिश कर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखिए अखिलेश यादव वहां पहुंचते हैं, धर्मेंद्र यादव वहां पहुंचते हैं, सब सरकार को घेरते हैं, और उनका ये कहना है कि लोकतंत्र जो है वो इस देश में खतरे में है, और उसके बाद वो प्रोटेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर दिल्ली पुलिस ये समझती है कि अब ये नेता यहां पर विरोध प्रदर्शन में बैठ जाएंगे, चूंकि सुरक्षा के नजरिए से अगर आप देखिए तो ये बहुत ही संवेदनशील इलाका है। फिर पुलिस बसें वहां पर तैयार करती है, और फिर कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, एक एक करके उनको बस में भरा जाता है और वहां से ले जाया जाता है। कुछ देर पहले मिली जानकारी के मुताबिक ऐसा बताया गया कि शायद मॉडल टाउन के थाने में ले जाया गया है राहुल गांधी को। हालांकि छत्रसाल स्टेडियम की भी बात हो रही थी, तो कहां पर इन नेताओं को ले जाया गया है कुछ ही देर में जैसे जानकारी आएगी हम आपको बताएंगे। मौसमी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। मौसमी बता रही थी कि किस तरह से बसों में सभी नेताओं को ले जाया गया है। राहुल गांधी, आपको बस के अंदर की तस्वीर भी दिख रही है, जब वो सड़क पर थे उनको बस में पुलिस ले जा रही थी तब की भी तस्वीर है। वहीं अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव सब वहां पर पहुंचे तब की भी तस्वीर है। अच्छा, अगर आप देखिए तो विपक्षी जो गठबंधन है वो आज कई दिनों के बाद कम से कम कुछ पार्टियों के नेता तो एक साथ दिखे हैं, जिसमें आपको समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव, जिसमें आपको एनसीपी शरद पवार गुट की तरफ से सुप्रिया सुले, और कांग्रेस पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता सरकार को घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं। चूंकि ये हाई सिक्योरिटी जोन है, पीएम का आवास है, पुलिस ने वहां से हटाया है लोगों को। आइए आपको एक बार सुना देते हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जानकारी दी कि पहले राहुल गांधी इस बात पर अड़े थे कि नीट पेपर लीक पर चर्चा हो संसद में, जब उनकी ये बात मान ली गई तब उन्होंने ये कहा कि नहीं, हमें इस्तीफा चाहिए शिक्षा मंत्री का। इस बीच एक खबर और आ रही है, कांग्रेस ने गलत परंपरा की शुरुआत की है।

0: रही थी वहां से पुलिस सबको हटाती है एक एक करके, और आज बीजेपी इस बात पर घेर रही है कि विपक्ष प्रधानमंत्री आवास के इतना करीब पहुंच जाना, क्योंकि जाहिर तौर पर चाहे इससे पहले यूपीए की सरकार हो अब एनडीए की सरकार हो, ये माना जाता है कि जंतर मंतर, रामलीला मैदान, ऐसी जगहें को निश्चित किया गया है। और जो बड़ा सा अन्ना आंदोलन भी हुआ जिसने इस देश में बहुत बड़ा परिवर्तन किया, वो अन्ना आंदोलन भी जंतर मंतर रामलीला मैदान पर हुआ था। अब ये प्रदर्शन का यहां पर पहुंचना, हिमांशु हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, सरकार इस वक्त क्या सोच रही है, आपके सूत्र क्या बता रहे हैं?
1: देखिए बिल्कुल, सरकार को लगता है जिस तरीके से कांग्रेस ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर ये प्रदर्शन किया है, ये ठीक नहीं है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और साथ ही साथ जो है ये एक लोकतंत्र के अंदर जो है परिपक्व लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, इस तरीके से देखने को नहीं मिलता। और इस चीज को भी देखना चाहिए कि इससे पहले भारत के पड़ोसी राज्यों में जब इस तरीके की चीजें हुई हैं और अराजक तरीके से जो किया गया है उसके बाद क्या हुआ है, तो टारगेट करके नेताओं के घर के जाना इसको गलत है, क्योंकि ये सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ इशू है और प्रधानमंत्री का घर जो है वो सिक्योरिटी से कंसर्न है। और यहां अगर इस तरीके से होगा तो पूरे देश में जो है वो किस तरीके से हो सकता है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और इसीलिए टारगेट करके प्रधानमंत्री के घर के बाहर बैठना धरने पे, ये सही परंपरा नहीं है। ये कांग्रेस ने एक तरीके से सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं किया और उसमें कहीं ना कहीं लोकतंत्र के अंदर इस तरीके से देखने को कभी नहीं मिला है जिस तरीके से कांग्रेस ने किया है। और ये टारगेट करके नेताओं के घर पर बैठना धरने पे, ये सही दिशा में कांग्रेस नहीं दिखती है। इस चीज को सरकार मानकर चलती है। और जिस तरीके से आपने पिछले कुछ समय में देखा हो श्रीलंका में, नेपाल में, बांग्लादेश में हुआ है, नेताओं के घर को टारगेट किया गया, क्या ये उसी सोच की तरह आगे बढ़ रहा है?
0: बिल्कुल हिमांशु, दो तीन फैक्ट्स हैं। अगर आप कांग्रेस जनता पार्टी के भी प्रोटेस्ट को देखिए, बीते दिन में हमने टकराव की जबरदस्त परिस्थितियां देखी है, तरह तरह के वीडियोस दोनों तरफ से डाले जा रहे हैं और एक बहुत बड़ा बवाल हुआ है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो ये प्रोटेस्ट जंतर मंतर से संसद तक मार्च का था, संसद के बहुत करीब वो प्रोटेस्ट पहुंच गया था। आज ये प्रोटेस्ट मतलब जिसको हाईएस्ट सिक्योरिटी जोन का, ये पीएम आवास के पास तक पहुंच गया है। तो अगर आप सुरक्षा की नजर, जी हिमांशु
1: देखिए अंजना, इसमें कोई दो राय नहीं है। कल जो प्रोटेस्ट हुआ वो छात्रों के द्वारा था, आज ये राजनीतिक तौर पर जो है प्रोटेस्ट किया गया। कांग्रेस के जो एलओपी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, उनके तमाम सांसद जो है प्रधानमंत्री के उस गेट के बाहर पहुंच गए जहां से प्रधानमंत्री का आना और जाना रहता है, यानी कि वो गेट सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए यूज किया जाता है। उस गेट के बाहर पहुंचना और टारगेट करके ये कहना कि लोग आए यहां पर हमारे साथ, तो कहीं ना कहीं आप जो है लोकतंत्र में ये नहीं कर रहे, ये प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ आप खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं और लोकतंत्र में इस तरीके की चीजें जो है वो अच्छी नहीं रहती हैं। और जो भी कुछ मैंने पहले भी जिक्र किया कि भारत के पड़ोसी राज्यों में जो पिछले डेढ़ से दो सालों में देखने को मिला है वो बताता है कि किस तरीके से जो है वहां पर लोग जो है एक पॉलिटिकल नेताओं को जो है टारगेट करने की कोशिश करते हैं, जिसमें आज कांग्रेस ने प्रधानमंत्री आवास के पर टारगेट करने की कोशिश की और खुद राहुल गांधी ने यह आह्वान किया ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो यहां पहुंचे। ये बात सही है कि पुलिस ने उन्हें डिटेन कर लिया है, अब डिटेन तो कर लिया है, लेकिन इस तरीके से करना ये ठीक नहीं है। जब सरकार की तरफ से दो रिप्रेजेंटेटिव, एक मंत्री और एक गृह सचिव पहुंचे उनसे बात करने के लिए कि आप आइए, आपकी जो भी मांग है उसको सुना जाएगा, आप संसद में चर्चा चाहते हैं, ठीक है, लेकिन जब उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा हो तब सरकार की तरफ से कहा गया ये ठीक नहीं है, बार बार अपनी
0: बिल्कुल हिमांशु। और देखिए चैलेंज और चुनौती तो बड़ी बनी हुई है। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, इस खबर पर लगातार आज तक की कवरेज जारी है, आप देखते रहिए आज तक।

0: This is the sound of Lucy staying on top of her spending. You see, even though she's buying a new pair of jeans, she knows that it fits within her monthly budget. Because Wells Fargo will send an alert if her balance drops below her set amount. Yep, nothing gets past Lucy. Or Wells Fargo, for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
1: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
2: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry. TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
4: आगे आगे
5: अरे उधर
4: उधर किधर
5: करेक्ट करेक्ट
6: मिल गया
7: आपके पास दो ऑप्शंस हैं या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए E3 प्रोडक्ट्स ये रिश्ता लंबा चलेगा
8: देख इतना बड़ा आदमी मुझे इन्वेस्टमेंट टिप्स दे रहा है
9: अच्छा सिर्फ तुझे ही दे रहा है
8: ओ अर्ज किया है दूर से लगा कि एक जाना पहचाना चेहरा हंसकर सच कह रहा था पास जाकर देखा तो झूठे वीडियो के जाल में मैं फंस रहा था सेबी और एनएससी का कहना है किसी भी वीडियो में पलके और लिप सिंक पर ध्यान दें सिर्फ ऑथराइज्ड सोर्सेज पे ही विश्वास करें वाह
10: सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर
11: एनएससी द्वारा निवेशकों के हित में जारी
12: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत कैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: पापा।
6: सॉरी यार ये गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
7: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
6: छक्का?
7: सब कैशलेस हो गया
6: है।
8: टाटा AIG है तो भरोसा है।
9: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
10: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
11: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
12: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
13: वी आर ओवर जिमी।
14: हे लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो PPF संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
15: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स। और अब लाइन लाइना डेट्स, इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
16: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स

0: इन एसोसिएशन विद हिंट, बड़े आराम से
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: We are over, Jimmy.
6: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा, आप अपना देख लो।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: मुझे पैरालिसिस हुआ था क्योंकि मैं थोड़ा प्यार में पागल हो गई थी किसी के एंड मैं बहुत ज़्यादा मतलब इन्वेस्टेड थी उस इंसान के अंदर. तो फिर वापस से मुझे एक बार और स्ट्रोक आया था जनवरी में बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप ओनली. आई स्टार्टेड टेकिंग स्टेरॉइड्स. इसमें स्टेरॉइड्स होते हैं. माय वेट वाज 52 एंड विद इन 7 days माय वेट गोज 85. सो इट्स अ ट्रिजामिनल न्यूरोलॉजिया. मुझे डॉक्टर ने ही बताया.
2: हाँ,
1: ये सलमान खान को भी बीमारी है. वो भी मुझे डॉक्टर ने ही बताया कि उनको भी है. सडन अटैक्स आते हैं यहाँ पे. मतलब ऐसा लगता है कि कुछ करंट लग गया है. दिस इज अ सुसाइडल डिजीज.
3: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर. मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर. ये है खबरें सात तक. देखते रहिए आज तक.
4: हिमाचल से उत्तराखंड तक कुदरत का कहर. लाहौल स्पीति में बादल फटने से तबाही. मलबा घुसने खेतों की फसल तबाह. जम्मू कश्मीर के बाद अब हिमाचल में भी बादल फट रहे हैं. लाहौल स्पीति में खराब मौसम के बीच कुदरत का कहर देखने को मिला. ये तस्वीर लाहौल स्पीति के खांगसर और शुगु गांव की है जहां बादल फटने के बाद भारी तादाद में पानी और मलबा नीचे आ गया. कुछ ही देर में मलबे ने खेतों और की रास्तों को अपनी चपेट में ले लिया. बाढ़ के साथ आए पत्थर और मलबा ने खासकर किसानों को काफी नुकसान पहुंचाया. कई एकड़ की फसल तबाह हो गई. हिमाचल ही नहीं उत्तराखंड में भी भारी बारिश से पहाड़ों से पत्थर गिरने के कई मामले बढ़े. ये तस्वीर देहरादून मसूरी हाईवे की है जहां लैंडस्लाइड होने से रास्ते को बंद करना पड़ा. पत्थर गिरने से हाईवे का एक हिस्सा टूट गया और गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई. उत्तराखंड में खराब मौसम को देखते हुए चारधाम यात्रा भी रोक दी गई. वहीं बारिश की वजह से केदारनाथ यात्रा भी प्रभावित हो रही है. केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर भी लैंडस्लाइड हो रहा है. यात्रियों की सुरक्षा को देखते फिलहाल अग्रिम आदेशों तक केदारनाथ यात्रा को रोका गया है और यात्रियों से सुरक्षित स्थानों पर रुकने की अपील की गई है. मनाली से मनमिंदर अरोड़ा और देहरादून से अंकित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो.

0: करीब 3.5 घंटे हाई वोल्टेज हंगामे के बाद पुलिस ने राहुल गांधी को धरने से उठाया। प्रियंका समेत कई बड़े नेताओं को भी बस में ले गए। अखिलेश यादव भी जबरन हटाए गए। मोदी सरकार पर राहुल और प्रियंका का हमला, लोकतंत्र के लिए बताया खतरनाक। जितेंद्र सिंह का आरोप, मैंने जाकर की मुलाकात, राहुल ने बदली अपनी बात, कहा मैं जहां चाहूं बैठूं, मेरी मर्जी। राहुल के धरने को आम आदमी पार्टी ने बताया बीजेपी से मिली भगत, कहा यह सीजेपी के प्रदर्शन को कमजोर करने की है साजिश। आतिशी ने किया कटाक्ष, क्या जुगलबंदी है। संसद हंगामे के बीच पीएम ने एनडीए मीटिंग में दिया कड़ा संदेश, कहा नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ किसी कीमत पर नहीं होगा बर्दाश्त। पेपर लीक पर लिया कड़ा एक्शन। मध्य प्रदेश विधानसभा से पारित हुआ यूसीसी बिल, सीएम मोहन यादव ने बताया ऐतिहासिक पल, उत्तराखंड गुजरात असम के बाद बना चौथा राज्य।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: Hexa Organic, Radiant Skin and Nourished Hair, Pure Ayurvedic Beauty.

रात के 8 बज रहे हैं, वक्त है बड़ी खबरों से आपको खबरदार करने का। पेपर लीक, सीजेपी का प्रदर्शन, प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज जैसे तमाम मुद्दों पर देश की राजधानी में बहुत हलचल है। जहाज की 3 तस्वीरें सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री आवास के पास धरना देते राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और फिर धरने में उनका साथ देने पहुंचे अखिलेश यादव को हिरासत में ले लिया गया है, जिन्हें हिरासत में लेकर अलग अलग थाने में पुलिस ले गई है। जानकारी आई है कि राहुल गांधी को मॉडल टाउन पुलिस थाने ले जाया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि करीब 3 घंटे तक धरने आज पीएम आवास के पास राहुल गांधी का चला है, जिसके बाद पुलिस राहुल, प्रियंका समेत दूसरे कांग्रेस के नेताओं और अखिलेश यादव को हिरासत में ले चुकी है। कांग्रेस ने पहले रात तक धरना देने की तैयारी की थी। अब खबर यह भी है कि दिल्ली पुलिस मुख्यालय की सुरक्षा बढ़ाई गई है, हर गेट पर पुलिस की भारी तैनाती की गई है। इसके बाद तस्वीरें देखिए, जो धरना दोपहर 4:15 बजे पीएम आवास के पास शुरू हुआ, उसमें 3 घंटे बाद पुलिस राहुल गांधी को हिरासत में लेने पहुंची। उसके बाद राहुल गांधी पर सीने के पास हाथ लॉक करके जमीन पर लेट गए। इसके बाद क्या हुआ, तस्वीरें देखिए, बयान सुनिए।

0: जब हिरासत में लिया जा रहा था उस समय की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये प्रदर्शन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की तरफ से शुरू किया गया, किसी को इसकी कानोकान भनक नहीं थी। प्रधानमंत्री आवास के पास अचानक बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता, एनएसयूआई के कार्यकर्ता सब पहुंच गए और धरने पर बैठ गए। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों मौजूद रहे, लेकिन किस तरीके से वहां से जब हटाया गया उसकी ये तस्वीरें।
1: डेमोक्रेसी इन इंडिया इज हैपनिंग राइट नाउ। डेमोक्रेसी इन इंडिया इज हैपनिंग राइट नाउ।
2: गुंडई और राजनीति, गुंडागर्दी की उसका अंत यहाँ नहीं है। ये एक नई क्रांति की शुरुआत है राहुल गांधी के नेतृत्व में। वो हमें जेल में बंद कर सकते हैं, लाठियां मार सकते हैं, दुर्व्यवहार कर सकते हैं, पर मोदी जी को जवाब देना पड़ेगा। इन हिंदुस्तान के लाखों बेटा बेटियों को जिन्होंने पेपर लीक से अपना भाग्य खोया है, अपने कुल का चिराग खोया है, ये क्रांति अब बड़ी ज्वाला बनकर धधकेगी। राहुल गांधी के नेतृत्व में ये रुकने वाली नहीं।
3: आज फिर से दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्री के इशारे पर, प्रधानमंत्री के इशारे पर बहुत ही कायरतापूर्वक तरीके से हमारे नेता राहुल गांधी को घसीट कर हिरासत में लिया। हमारी नेता प्रियंका गांधी को बदतमीजी कर और घसीट कर बस में जबरदस्ती ठूसा और बदतमीजी से ले जा रहे हैं। बता भी नहीं रहे कि हमारे नेताओं को कहां ले जा रहे हैं। हम सब को गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है, हमारे कपड़े फाड़ दिए, हम पर एक तरह से बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की। हमारी मांग बहुत स्पष्ट है, छात्रों के ऊपर लाठियां नहीं चलने देंगे, छात्रों के ऊपर केस नहीं चलने देंगे, धर्मेंद्र प्रधान को अपनी कुर्सी पर नहीं रहने देंगे, गृह मंत्री को माफी मांगनी है और इस्तीफा देना पड़ेगा, प्रधानमंत्री को माफी मांगनी है छात्रों से, उनके माता पिताओं से, और इस्तीफा देना पड़ेगा।
0: और ये उस समय जब अखिलेश यादव वहां पर पहुंचे थे, राहुल गांधी अखिलेश यादव दोनों को ले जाने की कोशिश में पुलिस को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। हालांकि अब उस जगह से सबको हटा लिया गया है, लेकिन हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, सरकार कितना चिंतित है अव्वल इन प्रोटेस्ट को लेकर, दूसरा एक जो ये बैठक पहले जितेंद्र सिंह की हुई जब वो राहुल गांधी से मुलाकात करते हैं, और अब जब गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी बैठक हो रही है, इसके बारे में बताएं।
4: देखिए, बिल्कुल, जितेंद्र सिंह की जो मुलाकात हुई, पहले वो राहुल गांधी से मिले और उन्होंने पूछा कि आपकी मांग क्या है। राहुल गांधी ने साफ साफ एक चीज कही कि वो एनसी नीट एग्जाम पर जो है वो चर्चा चाहते हैं सदन में। जितेंद्र सिंह ने जो वरिष्ठ मंत्री हैं उनसे बातचीत की और ये कहा कि हम सदन के अंदर चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके बाद राहुल गांधी ने ये कहा कि हम चर्चा के साथ साथ जो है वो केंद्रीय मंत्री, शिक्षा मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफा चाहते हैं। तब जितेंद्र सिंह ने कहा ये ठीक नहीं, आप अपनी बार बार जो है वो मांग नहीं बदल सकते हैं। और यही कारण है कि अगर आप देखें तो उसके बाद जितेंद्र सिंह और जो गृह सचिव है गोविंद मोहन, वो वहां से गृह मंत्री अमित शाह के पास गए और फिर उसके बाद जो है एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जितेंद्र सिंह ने पूरा विवरण बताया उनकी किस तरीके से जो है वो राहुल गांधी के साथ बातचीत हुई। और अब जो है जो हमको खबर है उसके अनुसार एक ही चीज है कि जिस तरीके से राहुल गांधी जिस गेट पर बैठे प्रधानमंत्री आवास के, वो गेट जो है प्रधानमंत्री के लिए ही जो है रिजर्व्ड है, जहां से प्रधानमंत्री ही आते जाते हैं, जहां भी उनको जाना है उस गेट से किसी दूसरे व्यक्ति की एंट्री एग्जिट नहीं है, ना ही किसी केंद्रीय मंत्री की। वहां अगर राहुल गांधी बैठ गए तो ये सुरक्षा के साथ एक तरीके से प्रधानमंत्री की खिलवाड़ है और एक गलत परंपरा की शुरुआत जो है वो उन्होंने की है। साथ ही साथ परिपक्व लोकतंत्र में इस तरीके से पहले कभी नहीं देखा गया कि नेता प्रतिपक्ष जो है प्रधानमंत्री के आवास पर जो है वो धरने पर बैठे हो। इससे पहले अगर आपने देखा,
0: हिमांशु चर्चा करेंगे, लेकिन इस समय बड़ी खबर ये आ रही है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव को छत्रसाल स्टेडियम ले जाया गया है। जब भी बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी होते हैं तो आमतौर पर यहीं पर एक होल्डिंग एरिया बनाया जाता है और छत्रसाल स्टेडियम में इस वक्त राहुल गांधी और अखिलेश यादव को ले जाया गया है। अब से कुछ देर पहले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को हमने ये सवाल उठाते हुए सुना कि कहां ले गया है हमारे नेता को, ये बताया नहीं गया है, लेकिन अब जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार राहुल गांधी को छत्रसाल स्टेडियम ले जाया गया है। मौसमी सिंह और जानकारी के साथ हमारे साथ इस समय जुड़ रही हैं। मौसमी, जिस तरीके से ये प्रोटेस्ट हुआ है, अचानक ये प्रोटेस्ट हुआ है, कांग्रेस पार्टी ने 3 घंटे तक, मतलब आमतौर पर हम इसे एक शब्द से डिफाइन कर सकते हैं कि एक फ्लैश प्रोटेस्ट रहा है जिसकी भनक किसी को नहीं लगी है, और वहां पर बहुत मजबूती से राहुल गांधी ने, कांग्रेस के बाकी नेताओं ने, और बाद में अखिलेश यादव वहां पर पहुंच के इस मुद्दे को उठा रहे हैं। अब छत्रसाल स्टेडियम में उनको ले जाए जाने की बात हो रही है। मौसमी,
5: बिल्कुल श्वेता, हमने सबसे पहले ये बताया था, क्योंकि जो कार्यकर्ता उस बस में बैठे थे वो बाकी लोगों को बता रहे थे कि हमें छत्रसाल स्टेडियम ले जाया जा रहा है, और प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव और राहुल गांधी, जब इन सबको ले जाया गया तो किसी को नहीं पता था। अमूमन ये होता है कि पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में ले जाया जाता है, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में ले जाया जाता है, या मंदिर मार्ग थाने में ले जाया जाता है, जो आसपास के तुगलक रोड थाने में। लेकिन शायद पुलिस ने यह देखा होगा कि सुरक्षा के मद्देनजर और ज्यादा हंगामा ना खड़ा हो, इसलिए मॉडल टाउन जो यहां से काफी दूर है वहां पे ले जाया गया है पुलिस थाने में, और माफ कीजिएगा, छत्रसाल स्टेडियम, और तीनों को अलग अलग बसों में ले जाया गया। जब बसें निकली भी तो श्वेता एक तरीके से अलग अलग दिशा में बसें निकली, ये नहीं कि एक साथ ही एक कैवलकेड निकला हो। तो अपने आप में पुलिस भी अब जो है एक तरीके से कोई भी कोताही नहीं बरतने की मूड में नजर आ रही है, क्योंकि ये बवाल आगे भी बढ़ सकता है। लगातार सोशल मीडिया पे कांग्रेस जो है पोस्ट डाल रही है, और हो सकता है कि छत्रसाल स्टेडियम में कार्यकर्ताओं का जमावड़ा बढ़ाया जाए। जिस तरीके से हमने भी प्रियंका गांधी से रास्ते में बात की थी, तो प्रियंका गांधी कह रही थी कि ये तानाशाही है, हम लोग को वहां से उठाया गया, हम लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि कांग्रेस किसी भी तरीके से इस पूरे मसले पर बैकफुट पे आने के मूड में है।
0: मौसमी, जब कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये प्रदर्शन किया गया, और बहुत गुपचुप तरीके से किया गया, किसी को कानो कान खबर नहीं थी, मल्लिकार्जुन खड़गे के जन्मदिन का भी एक बहाना था, लेकिन अचानक जब इस तरह का प्रदर्शन हुआ तो सब, सरकार, पुलिस, सब बैकफुट पर आए। अब उनका प्लान बताया जा रहा है कि रात तक धरने पर बैठने का था, लेकिन वो हो नहीं सका है। क्या कांग्रेस पार्टी इस दबाव को छोड़ेगी, इस प्रेशर को छोड़ेगी, या आने वाले दिनों में वो इस अपने एक्सेलरेटर पर अपना पैर बनाए रखेंगे?
5: देखिए श्वेता, कांग्रेस के लिए दो चीजें काम कर रही हैं। एक तो है टाइमिंग, मसला बहुत संवेदनशील है और छात्रों से जुड़ा है, छात्रों के अभिभावकों से जुड़ा हुआ है, एक जनता का मसला है और शिक्षा का मसला है। तो जैसे कि किसान आंदोलन में भी हमने देखा कि सरकार ने किसान कानूनों को वापस लिया, उसी तरीके से मुझे लगता है कि ये मसला एक ऐसा मसला है कि कांग्रेस को लग रहा है कि ये एक ऐसा मौका है कि वो लोगों के साथ खड़ी नजर आ सकती है। अक्सर कांग्रेस पर ये तोहमत लगती है कि कांग्रेस सड़क पर नजर नहीं आती है, प्रेस वार्ताएं होती हैं और सारा खाना पूर्ति होकर निपट जाता है मामला। कई बारी ज्वलंत मुद्दों पर ये सवाल खड़े होते हैं कि कांग्रेस कहाँ है, लेकिन इस बारी टाइमिंग और सही फॉर्म में राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। आपने वो तस्वीर देखी होगी कि जमीन पर वो लेट गए। अब वो तस्वीर जो है, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, कांग्रेस जो है जिस तरीके से कह रही है कि लगातार उसकी फॉलोइंग बढ़ रही है, तो वो कि वो रेजिस्ट कर रहे थे उस वक्त भी कि डेमोक्रेसी और जो वो बोल रहे थे, तो अपने आप पे कांग्रेस इसको भुनाएगी और ज्यादा आक्रामक मुझे लगता है अब कांग्रेस इस मसले पे होगी।
0: हालांकि इसमें आंगल एक आम आदमी पार्टी का आता है, और मैं आपसे उस पर सवाल पूछना चाहूंगी, और हिमांशु से भी, कि जो सरकार इस बात के लिए जाना जाती है कि वो किसी के दबाव में फैसले नहीं लेना चाहते हैं, हालांकि किसान आंदोलन एक एक एग्जाम्पल के तौर पर सामने है, लेकिन हिमांशु वो आपसे जाने उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि मौसमी, जब प्रियंका वाड्रा को ले जाया जा रहा था वहां से बस से, उन्होंने उनसे सवाल पूछा, क्या जवाब दिया है प्रियंका गांधी ने, देखिए।
6: पीएम नरेंद्र मोदी के घर के ठीक बाहर से अब सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता और सांसदों को हटाया जा रहा है। प्रियंका गांधी को भी डिटेन कर लिया गया है और ठीक मेरे पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं कैसे एक बस जो है वो लाई जा रही है और प्रियंका गांधी इस बस के एंट्री गेट पर लटकी हुई है, वो अंदर नहीं जा रही है, उनको डिटेन किया गया है। भारी मात्रा में जो पुलिस बल है वो उनके साथ जा रहा है। प्रियंका गांधी के साथ साथ कांग्रेस के कई कार्यकर्ता हैं, वो भी आगे बढ़ रहे हैं और प्रियंका गांधी बस का जो एंट्री गेट है उसके ठीक बाहर यहां पर लटकी हुई नजर आ रही है। सीधी तस्वीर है इस वक्त तीन मूर्ति मार्ग के पास जो प्रधानमंत्री का कार्यालय का एंट्री गेट है वहां से जहां पर प्रियंका गांधी को डिटेन कर लिया गया और इस बस में लेकर जाया जा रहा है। भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात है और सीधा मैसेज प्रियंका गांधी देने की कोशिश कर रही है कि वो पीछे नहीं हटने वाली। एक तरफ जहां प्रियंका गांधी को लेकर जाया जा रहा है वहीं दूसरी ओर जो कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता है वो रास्ते में जो है वो लेट जाती हैं ताकि बस को रोका जा सके। प्रियंका गांधी कैसे बाहर लटकी हुई है गेट पर और दिल्ली पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि इनको बस के अंदर लेकर जाया जाए, इनके अंदर धकेल दिया जाए, लेकिन अब यहाँ से ये बस आगे बढ़ती हुई जा रही है। इससे पहले जितेंद्र सिंह पहुंचे थे राहुल गांधी से मिलने के लिए, जब धरना स्थल पर वो बैठे थे, क्या कहा था जितेंद्र सिंह ने वो हम आपको सुनाते
7: हैं। हमें ये कहा गया कि आप सरकार की ओर से उनको आश्वासन दीजिए कि सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, सरकार तैयार है संसद में चर्चा करने के लिए, नीट को लेकर के भी, उसके साथ संबंधित विषयों को लेकर के भी, जो आंदोलन है उसको लेकर के भी। हमने जब ये बात वहीं पर राहुल गांधी जी के आगे दोबारा रखी तो बोले कि साहब मुझे तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी चाहिए। तो हमने कहा साहब अभी कुछ ही क्षण पहले आपसे बार बार जब पूछा गया कि आपका क्या मुतालबा है तो आपने ये कहा था कि अगर मुझे ये आश्वासन दिया जाए कि संसद में कांग्रेस पार्टी को भारत सरकार चर्चा करने देगी या करने के लिए तैयार है तो मैं तुरंत ये धरना समाप्त कर दूंगा। लेकिन अब आप अपनी बात से हट रहे हैं। तो बोले साहब ये तो मेरी मर्जी है, मेरी मांगें बदल चुकी हैं। हमने कहा सर दिस इज नॉट फेयर, यू आर चेंजिंग द गोल पोस्ट। बोले दिस इज माई विश। तो बोले साहब नहीं, हम तो यहीं बैठेंगे, आप हमें उठा लीजिए। बोले साहब मैं तो आपसे चर्चा करने आया था बड़ी विनम्रता से, आपको उठाने का तो हमारा इरादा नहीं था, मैं तो सिर्फ आपसे ये अनुरोध करने आया था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप शायद आप उस मूड में ही नहीं है कि आप कुछ वाया मीडिया या रास्ता निकाला जा सके। तो बोले आप जो मर्जी इसका निष्कर्ष निकालिए, मैं तो वही करूंगा जो मेरी मर्जी है।
0: अब हिमांशु, आमतौर पर यह भी नहीं देखा जाता है कि इतनी जल्दी एक मंत्री पहुंच जाए इस तरह के धरना स्थल पर, जितनी जल्दी वो धरना शुरू हुआ उतनी जल्दी जितेंद्र सिंह पहुंचे, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए दबाव सोनम वांगचुक की तरफ से है, कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से है, अब कांग्रेस पार्टी भी अगर इस दबाव को लेकर, संसद में तो चर्चा चल रही है लेकिन अगर इस बात को लेकर विरोध चल रहा है, लेकिन बाहर भी अगर राहुल गांधी इस चीज को बोलते हैं बार बार, तो क्या सरकार के पास ये विकल्प है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो या ना हो, सरकार क्या दबाव में काम करेगी?
4: देखिए श्वेता, जिस तरीके से आपने पहले भी कहा था कि सरकार जो है वो किसी भी दबाव में कोई फैसला नहीं लेती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार, आपको पिछले 12 सालों में कोई ऐसा इस्तीफा नहीं हुआ जो दबाव में हुआ हो, एक ही इस्तीफा हुआ है और वो है एमजे अकबर का, जब उन पे मीटू पे चार्ज लगे, उसके लिए किसी ने उनका इस्तीफा नहीं मांगा था, उनका इस्तीफा स्वतंत्रता सरकार को लगा कि जब इस तरीके का कोई मामला सामने आता है तो उनका इस्तीफा हो गया। आप देखिए कि किस तरीके से सरकार जो है इस चीज को मानती है। सरकार का ये मानना है कि नीट पेपर लीक हुआ ठीक है, हम इस अकाउंटेबल हैं, हमने री नीट पेपर करा दिया, उसके रिजल्ट्स आ चुके हैं, बच्चे जिनको एडमिशन लेना है, जो अपनी तैयारी और फर्दर एजुकेशन की कर रहे हैं, वो तैयारियों में लग गए हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगल मिलन जो एनडीए की पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग थी उसमें साफ साफ कह दिया, हाँ हम अकाउंटेबल हैं और ये एक जो है घोर पाप हुआ है, जिन लोगों ने किया है उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको सजा दी जा रही है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये राज्य या केंद्र का मामला नहीं है, इस पर जो है एक ऐसा सिस्टम, फुल प्रूफ सिस्टम हो, जब कभी भी भविष्य में इस तरीके की घटना ना हो पेपर लीक की। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा, हम सबको सकारात्मक तौर पर काम करना चाहिए और संसद में बैठकर चर्चा करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा अंदर की देखिए, बच्चों के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ मत कीजिए, बच्चों को राजनीति में घसीटिए मत। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चीज और कही और वो ये है कि आप बच्चों को को भड़काने का काम कर रहे हैं, छात्रों को भड़काने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं कि नीट का जो पेपर लीक का मामला है या अन्य पेपर लीक के मामले हैं, ये गंभीर इशू है, इसको लेकर फुल प्रूफ सिस्टम एक बनना चाहिए जिससे भविष्य में कभी ऐसी स्थिति ना हो। जो लोग इसको कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो रही है, कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया है, बाकी जो एक पूरा नेक्सस है उसको ध्वस्त करने के लिए सरकार काम भी कर रही है। अब सवाल ये है कि विपक्ष चाहता है चर्चा हो जाए, सरकार की तरफ से आज जब जितेंद्र सिंह ने ये आश्वासन दे दिया कि चर्चा होगी सदन में, हम आपकी बात को मानते हैं, लेकिन सदन में चर्चा हो इसके लिए एक फोरम है जो है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, वहां चर्चा होती है किस विषय को कब लिया जाएगा, किस विषय पे चर्चा होगी या किस बिल पर कितना समय एलोकेट किया जाएगा, आवंटन किया जाएगा, तो वो जब तक नहीं होता है तब तक नहीं होता है। ये स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन का अधिकार है कि वो देखे अगर कोई स्पेशल मेंशन है, कोई अर्जेंटमेंट नोटिस है या सस्पेंशन ऑफ क्वेश्चन आर है उसमें हाँ। अगर चर्चा है वो स्पीकर के विवेकाधिकार पर, लेकिन सरकार ने फिर भी इस चीज को इंश्योर किया कि हम नीट पे चर्चा के लिए तैयार है। अगर इस्तीफे की बात है तो शायद ये सरकार जो है अभी किसी भी इस तरीके के कोई डिसीजन में नहीं दिखती है कि धर्मेंद्र प्रधान का जो है वो इस्तीफा हो।
0: चलिए आप और मौसमी बने रहिए हमारे साथ। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्मदिन है, उन्हीं के आवास पर दोपहर में कांग्रेस नेताओं के साथ जन्मदिन मनाने राहुल गांधी पहुंचे। कुछ देर में और कांग्रेस नेता बुलाए गए और फिर उनके घर से निकलकर कैसे प्रदर्शन और धरना पीएम आवास के पास आकर राहुल गांधी करने लगे, इसकी दिन भर की हलचल देखिए।
8: पूरा देश जानता है कि एजुकेशन सिस्टम, टेस्टिंग सिस्टम इज ब्रोकन।
9: जब पेपर लीक का खबर आए तुरंत सरकार ने कार्रवाई किया।
10: आंदोलनकारियों को क्यों हटाते हो, सम्मान के साथ खुद ही छोड़ दे अपने कुछ।
9: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया।
11: ये सदन है किसका, ये उन्हीं युवाओं का है ना जिसको आप रोक रहे हैं बाहर, जिन पर आप लाठीचार्ज कर रहे हैं।
12: अच्छी तरह से डिस्कस करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ ऐसे प्रोटेस्ट करने से तो कुछ काम नहीं होगा।
13: एजुकेशन मिनिस्टर इसके जिम्मेदार है तो उनको इस्तीफा देना चाहिए।
14: सदन को जानबूझ के विपक्ष बाधित कर रहा है, ये देश की जनता की गाढ़ी कमाई का अपव्यय।
15: अगर यही बात चार दिन पहले हो जाती तो शायद जो दाग कल दिल्ली को लगा वो नहीं लगता।
16: प्राइम मिनिस्टर वेरी सेंसिटिव अबाउट यंगस्टर्स।
17: कल जो कुछ भी हुआ है वो कंसिस्टेंट बिहेवियर है सरकार का।
18: संसद में लगातार दूसरे दिन हंगामा होता है, कुल 15 मिनट सदन नहीं चल पाता। संसद के बाहर संसद परिसर में नारेबाजी होती है। संसद परिसर में धरना भी चलने लगता है। वहीं जंतर मंतर पर सीजेपी के धरने में सोमवार के प्रदर्शन के बाद अरविंद केजरीवाल पहुंचते हैं।
19: दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह को ललकारने की हिम्मत दिया।
18: जंतर मंतर पर सीजेपी के धरने में समर्थन देने के लिए शरद पवार पहुंच जाते हैं। इससे पहले सोमवार को संसद से जंतर मंतर तक मार्च निकालते हुए डिंपल यादव समाजवादी पार्टी के सांसदों के साथ समर्थन देने पहुंची थी और फिर मंगलवार दोपहर अचानक प्रधानमंत्री के आवास के पास लोक कल्याण मार्ग पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, बाकी नेता और सांसद के साथ मिलकर धरना देने लगते हैं। इस तरह देश की राजनीति में अपना अपना जंतर मंतर सब ने चुन लिया, जहां संसद परिसर से लेकर जंतर मंतर तक और जंतर मंतर के बाहर पीएम आवास के पास तक कहीं पेपर लीक के मुद्दे पर छात्रों के हित में सियासी दल समर्थन कर रहे हैं तो कहीं धरना, कहीं एक के धरने में दूसरा दल शामिल है तो कहीं एक दूसरे के धरने से दूरी भी है। इन सब के बीच मंगलवार को दोपहर 3:30 बजे के करीब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, बाकी सांसदों और नेताओं के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर से बैठक करके अचानक मार्च करते हुए निकल पड़ते हैं और फिर कुछ ही देर में लोक कल्याण मार्ग पर यानी प्रधानमंत्री के आवास वाली सड़क पर पीएम आवास से कुछ दूरी पर ही राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत बाकी कांग्रेस के तमाम सांसद नेता धरने पर बैठ जाते हैं।
5: रणनीति के तौर पे पहले देखिए आप राहुल गांधी आरएमएल जाते हैं प्रियंका गांधी के साथ और उसके बाद यहाँ जहाँ हम लोग खड़े हैं आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 गिन लीजिए तो दर्जनों पुलिसकर्मी हैं। ये खाकी हमका समुंदर हमने कल भी देखा था लेकिन शायद किसी ने नहीं, दिल्ली पुलिस ने भी नहीं सोचा होगा ऐसे औचक कांग्रेस फ्लैश प्रोटेस्ट करेगी। और यहाँ पे पीछे ये कोई मामूली आवास नहीं है, ये देश के प्रधानमंत्री का आवास है, यहाँ पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता और यहाँ पे बैठ गए हैं तमाम कांग्रेस के सांसद और नेता, दोनों नेता विपक्ष यहाँ पे बैठे हुए हैं।
18: राहुल गांधी जब धरना देते हैं तो यहाँ पर देखा गया वो सांकेतिक रूप से हथकड़ी वाला प्रदर्शन दिखाते हैं, जहाँ राहुल गांधी समेत दूसरे कांग्रेस नेता हाथ में लॉक लगने वाला थ्रेड बांध लेते हैं। अब राजनीतिक सवाल ये आता है कि अचानक पीएम आवास के पास पहुंचकर राहुल गांधी धरना क्यों देते हैं, उनकी मांग क्या है?
20: हमारे नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में ने इस मांग की है, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में ये मांग की है, गृहमंत्री आए दोनों सदनों में बयान दे, उस पर चर्चा हो, जिस तरीके से हमारे लोकतंत्र और हमारे संविधान पर हत्या हो रही है, जो हमारे युवाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उनके भविष्य पर अंधेरा छाया हुआ है, उस पर एक बयान दे और हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग हम 45 दिन से कर रहे हैं।
18: आपके मन में ये सवाल आएगा कि नीट पेपर लीक को लेकर कांग्रेस तो पहले भी प्रदर्शन करती आई है, नीट पेपर लीक को लेकर जांच भी चल रही है, आरोपी भी पकड़े जा चुके हैं, दोबारा नीट की परीक्षा हो चुकी है, दोबारा हुई नीट परीक्षा का रिजल्ट आ चुका है, तो फिर अब क्यों कांग्रेस प्रदर्शन करने लगी, जबकि प्रधानमंत्री भी नीट पेपर लीक के मामले में पहले ही सख्त रहे हैं। मंगलवार को एनडीए की बैठक में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से जुड़े इस मुद्दे पर अपनी बात रखी है।
9: दोबारा इस तरह का पेपर लीक ना हो इसके लिए सख्ती से कदम जो उठाया गया है, जिन्होंने पेपर लीक धंधे में जो लिप्त है, जो लोग दोषी पाए गए हैं, जिसको अरेस्ट किया गया है उसको जेल में डाल करके, प्रधानमंत्री जी ने ये अपील भी किया है कि उनका जो सजा है उसको सख्ती से सख्ती सजा कैसे दिया जाए, उसमें सारा टॉप क्लास के वकील लोग भी साथ दें ताकि जो पेपर लीक जैसे पाप काम किया है उन लोगों को घोर सख्त सजा मिले और आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया।
18: लेकिन जब पीएम आवास के पास ही राहुल गांधी धरना देते, इन सब के बीच दोपहर 3:45 पर राहुल गांधी को धरने से हटने की अपील पुलिस अधिकारी करते नजर आते हैं। राहुल उनके सामने धरने से हटने से इनकार कर देते हैं। फिर कांग्रेस के नेताओं को पुलिस हिरासत में लेकर पीएम आवास के पास वाले धरने से हटाना शुरू कर देती है।
21: पुलिस का एक्शन शुरू हो गया है, इसी तरह की बसों में कांग्रेस के सांसदों को डिटेन करके ले जाया जा रहा है। राहुल गांधी सीधे यहां पहुंचे, साथ में प्रियंका गांधी वाड्रा थी, राजा वड़िंग, चरणजीत सिंह चन्नी जैसे नेता थे और अब एकदम से क्योंकि किस तरह से प्रोटेस्ट हुआ, प्लान नहीं था, फ्लैश प्रोटेस्ट था, तो पुलिस पहुंची वहां, रिएक्शन पुलिस का जो एक्शन है वो शुरू हो गया और अब बस के अंदर आप देखिए एक-एक करके सांसदों को डाला जा रहा है।
18: इसके बाद शाम 4 बजे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह खुद राहुल गांधी से बात करने पहुंच जाते हैं, पर कुछ ही देर बाद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को लौटना पड़ता है। वो कुछ बोलते नहीं। पता ये चलता है कि राहुल गांधी ने धरने से हटने से मना कर दिया है।
3: आज तक छात्रों को, युवाओं को न्याय नहीं मिल जाता। कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता, हम लोग यहाँ से नहीं हिलने वाले। दिन हो या रात, नरेंद्र मोदी को बाहर आना पड़ेगा। पूरी कांग्रेस पार्टी जो जहाँ है यहाँ आए और धरने पर बैठ जाए। नहीं हिलेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा।
18: इसके बाद राहुल गांधी शाम 5:18 पर एक पोस्ट सोशल मीडिया पर डालते हैं, जिसमें लिखते हैं कि छात्रों पर हमला हर भारतीय परिवार पर हमला है। राहुल गांधी लिखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को लगता है वो बिना जवाब दिए, बिना किसी नतीजे का सामना किए बच निकलेंगे, लेकिन नहीं कर पाएंगे। इसके बाद राहुल गांधी ने इस पोस्ट में अपील कर दी कि जो भी मानता है कि छात्रों को न्याय मिलना चाहिए, वो पीएम आवास के सामने धरने में शामिल हो।
0: तो जैसा कि हमने आपको बताया, राहुल गांधी को छत्रसाल स्टेडियम ले जाया गया है। हिरासत में लिए जाने के बाद कांग्रेस नेता जो कि प्रदर्शन पर बैठे थे, वहां से अब सबको छत्रसाल स्टेडियम ले जाने की बात है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों को छत्रसाल स्टेडियम लेकर पुलिस पहुंच गई है। प्रधानमंत्री आवास के निकट जो धरना दिया गया था, वहां से अब से कुछ देर पहले सभी नेताओं को, प्रदर्शनकारियों को हटाया गया है और राहुल गांधी को लेकर छत्रसाल स्टेडियम पुलिस पहुंच गई है। अरविंद ओझा हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। अरविंद, एक बहुत ही हाई वोल्टेज हंगामा चला है, अब पुलिस पहुंच गई है राहुल गांधी को लेकर?
1: बिल्कुल, जो मॉडल टाउन का छत्रसाल स्टेडियम है, वहां पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव को रखा गया है, जबकि प्रियंका गांधी को मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन रखा गया है। इसके पहले जो हाई वोल्टेज ड्रामा चला, उसकी वजह से दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की सांसें फूल गईं, क्योंकि जो राहुल गांधी ने धरना करने का जगह चुना था वो प्रधानमंत्री आवास था, जो हाई सिक्योरिटी जोन है। और जैसे ही गुपचुप तरीके से राहुल गांधी वहां पर पहुंचे और जब पुलिस के अधिकारियों को भनक लगी, तो एक के बाद एक आनन फानन में कई पुलिस अधिकारियों को बुलाया गया। उसके बाद नई दिल्ली इलाके में एक अधिकारी तैनात थे, हेमंत तिवारी, उनको जब यहाँ पर बुलाया गया, क्योंकि नई दिल्ली इलाके में धरना प्रदर्शन अगर होता है तो उस पे हिरासत में लेने के लिए जो एक्सपीरियंस अधिकारी है उनको बुलाया जाता है। और तब जाकर फिर घंटों बाद पहले मान मनोवल होती है राहुल गांधी से, जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है वो सरकार की तरफ से आते हैं, बातचीत करके जाते हैं, राहुल गांधी नहीं मानते। उसके बाद फिर दिल्ली पुलिस के तमाम सीनियर अधिकारी को बुलाया जाता है और 4-5 IPS अधिकारी जो नई दिल्ली इलाके से अच्छी तरह से वाकिफ है उनको बुलाया गया। और उसके बाद एक एक करके सभी को हिरासत में लिया गया है, बस में डालकर राहुल गांधी, अखिलेश यादव को नई दिल्ली इलाके से काफी दूर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट इलाके में छत्रसाल स्टेडियम है वहां पर रखा गया है। और बहुत मुमकिन है कि कुछ देर बाद दोनों को रिलीज कर दिया जाएगा। जो प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है वो दिल्ली पुलिस ने किया, जबकि प्रियंका गांधी और जो कुछ कांग्रेस के बड़े लीडर हैं उनको नई दिल्ली इलाके के मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन में रखा गया है। बहुत मुमकिन है कि कुछ देर बाद प्रियंका गांधी वाड्रा और समेत तमाम जो कांग्रेस के लीडर हैं उनको भी दिल्ली पुलिस रिलीज करे, लेकिन फिलहाल वो दिल्ली पुलिस की हिरासत में ही मौजूद है। कोशिश जरूर दिल्ली पुलिस ने की थी पहले बातचीत करने की कांग्रेस के लीडर से, उन्होंने बात करने से मना कर दिया। फिर डॉक्टर जितेंद्र सिंह वो आए, उन्होंने बातचीत की, वो नहीं माने। उसके बाद फिर फाइनली दिल्ली पुलिस को काफी एहतियात बरतते हुए, क्योंकि राहुल गांधी को जेट प्लस सिक्योरिटी भी मिली हुई है, लेकिन एहतियात बरतते हुए सभी को हिरासत में लिया गया और उसके बाद फिलहाल अलग अलग थानों में उनको रखा गया है। श्वेता,
0: ठीक है। इस बीच जब धरने में शामिल होने के लिए अखिलेश भी पहुंचे तो वो भी हिरासत में लिए गए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि पीएम मोदी को छात्रों की मांगों को मानना चाहिए, आखिरकार छात्रों की मांग क्यों नहीं मानी जा रही? क्या कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं।
2: देखिए, जिम्मेदारी ये बनती है कि प्रधानमंत्री मांगे, मांग को तो माने, छात्रों की मांग को तो माने, आखिरकार छात्रों की मांग क्यों नहीं मान रहे हैं?
0: मौसमी, अब आज का धरना, आज जिस तरीके से राहुल गांधी ने पूरी तरीके से आक्रामक होकर अचानक सरकार पर ये सवालों की बौछार प्रहार सब किया है, लेकिन उस सब के बीच एक सवाल आम आदमी पार्टी की तरफ से उछाल दिया गया और वो भी जंतर मंतर के क्षेत्र से ही, जहां पर प्रदर्शन कांग्रेस जनता पार्टी का चल रहा है और वो कह रहे हैं कि पूरी तरीके से यह उनको हाईजैक करने के लिए और बीजेपी के साथ हाथ में हाथ मिला के। क्या कांग्रेस पार्टी के नेता इस पर कुछ कह रहे हैं?
5: देखिए, कोशिश यह है कि आम आदमी पार्टी पे कांग्रेस के नेता कुछ ना ही कहें, मेरे ख्याल से उनकी यही कोशिश है, और वरना अभी तक पवन खेरा का कुछ बयान आ जाता। लेकिन खुले तौर पे आप देखिए कि कांग्रेस ने अब आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया है, चाहे वो दिल्ली के विधानसभा चुनाव हो, जब राहुल गांधी ने सीधा प्रहार अरविंद केजरीवाल पे किया था और उनको बीजेपी का एजेंट बुलाया था, या पंजाब में जो चल रहा है उसको लेके भगवंत मान पर निशाना साधना हो। तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में जो है अब कोई सहमति का रास्ता नहीं रह गया। इंडिया ब्लॉक से आम आदमी पार्टी वैसे ही अब बाहर हो गई है। तो कुल मिला के 36 का आंकड़ा कह लीजिए अब चल रहा है, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव में दोनों आमने सामने हैं पंजाब में, और यही वजह है कि इसमें कोई ताजुब नहीं हुआ कि आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस की सेंधमारी को इस तरीके से देख रही है कि जब एक प्रदर्शनकारी एक जगह जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे थे तो कांग्रेस को अपनी सियासी रोटी शायद सेकनी होगी, इसलिए प्रधानमंत्री आवास पर चले आए। लेकिन कहीं ना कहीं उस पर थोड़ी सी गली नहीं, क्योंकि अखिलेश यादव और सुप्रिया सूले भी राहुल गांधी के साथ खड़े नजर आए, तो कांग्रेस इसको अपनी बड़ी कामयाबी के तौर पे देखेगी कि छात्रों के साथ हम खड़े नजर आए, इसमें हमने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। और आज जो उनकी रणनीति थी, जो सिर्फ कोर ग्रुप को पता था, हमें ये सुगबुगाहट थी श्वेता दोपहर को कि एक मार्च निकाला जाना है, लेकिन फिर वो मार्च का ट्रैक बदल दिया गया और आरएमएल राहुल गांधी पहुंच गए, और उसके बाद सांसदों को भी नहीं बताया गया। जब 3 बजे सांसद पहुंचे तो उनसे बोला गया चलिए चलते हैं प्रधानमंत्री आवास, क्योंकि कई बार खबरें लीक हो जाती हैं और उसकी वजह से ये ज्यादा उनको लगता है कि पूरी मेहनत भी बेकार जाती है अगर प्रधानमंत्री आवास पर बैठ नहीं पाते। तो डिटेन किया जाना उनको लगता है वाजिब, मतलब डिटेन किया जाना दिल्ली पुलिस कर रही है तो ठीक है, लेकिन हमें जो कहना था, जो साबित करना था, वो हमने कर दिया कि हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़े रहेंगे। अब कल का दिन दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि मुझे लगता है कि काफी हंगामा बरपेगा।
0: बने रहिए मौसमी अरविंद हमारे साथ। पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन पर रोक है, इसीलिए जब राहुल गांधी प्रदर्शन के लिए पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इसकी वजह यह है कि लोक कल्याण मार्ग हाई सिक्योरिटी जोन है, यहां पीएम का आधिकारिक आवास है। सुरक्षा कारणों से इसके आसपास करीब 1 किलोमीटर क्षेत्र को नो प्रोटेस्ट जोन माना जाता है, इसीलिए यहां आमतौर पर धरना, जुलूस या भीड़ जुटाने की अनुमति नहीं दी जाती। इस एरिया में हर समय धारा 163 लागू रहती है, इसका उल्लंघन करने पर पुलिस हिरासत में ले सकती है। यहां प्रदर्शन की छूट लोकसभा में नेता विपक्ष को भी नहीं होती, नेता प्रतिपक्ष को विशेषाधिकार केवल संसद के भीतर मिलते हैं, संसद के बाहर उन पर भी वही सुरक्षा नियम और कानून लागू होते हैं जो अन्य नागरिकों पर लागू होते हैं। अब सरकार कह रही है कि जब छात्रों के हर मुद्दे पर संसद में वो चर्चा के लिए तैयार है तो फिर क्यों कांग्रेस मांग से मुकर रही है?
6: हिम्मत है तो बाहर
7: आए, बाहर आए, बाहर आए।
6: तानाशाही नहीं चलेगी,
7: नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
6: तानाशाही नहीं चलेगी,
7: नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
6: पंचमिलाजी नहीं चलेगी,
7: नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
6: पंचमिलाजी नहीं चलेगी,
7: नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
6: हिम्मत है तो बाहर आए,
7: बाहर आए, बाहर।
22: प्रधानमंत्री आवास के पास लोक कल्याण मार्ग पर दोपहर 4:15 शुरू हुए कांग्रेस के धरने में प्रियंका गांधी नारे लगवाती हैं। तो इस बीच इस सवाल का जवाब सब जानना चाहते हैं कि आखिर सरकार ने तुरंत जब केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को राहुल गांधी से बात करने भेजा तो राहुल क्यों नहीं माने, यहाँ पर आखिर क्या बात हुई? जवाब जो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दिया है उसे उनकी सोशल मीडिया पोस्ट से देखिए। जितेंद्र सिंह ने लिखा कि कुछ समय पहले पता चला कि कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल गांधी प्रियंका गांधी अचानक अकबर रोड के पास एक जगह पर धरने पर बैठ गए। जितेंद्र सिंह लिखते हैं कि सरकार ने उन्हें और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन को राहुल गांधी से बात करने के लिए भेजा। जितेंद्र सिंह ने राहुल गांधी से अनुरोध किया कि वो अपना धरना खत्म कर दें, क्योंकि ये जगह धरने की नहीं है, यहाँ पर धरना देने से आम लोगों को काफी मुश्किल होगी। राहुल गांधी ने ये मांग रखी थी कि अगर सरकार संसद में नीट और उससे संबंधित आंदोलन के साथ जुड़े सभी विषय पर चर्चा के लिए मान जाती है तो वो अपना धरना तुरंत खत्म कर देंगे। कुछ ही देरी में सरकार के शीर्ष नेतृत्व की अनुमति लेने के बाद राहुल गांधी को ये भरोसा जितेंद्र सिंह की तरफ से दिया गया कि उनकी मांग को मान लिया गया है और सरकार नीट और उससे संबंधित आंदोलन के साथ जुड़े सभी विषय पर संसद में चर्चा करने को तैयार है। जितेंद्र सिंह के मुताबिक राहुल गांधी को जब ये सूचना पहुंचाई गई तो उन्होंने कहा कि वो इतने पर नहीं मानेंगे, बल्कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का भी भरोसा चाहा। राहुल गांधी ने कहा कि अब उनकी दो मांगे हैं, संसद में चर्चा और केंद्रीय शिक्षा मंत्री यानी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के मुताबिक जब राहुल गांधी को याद दिलाया गया कि पहले उन्होंने केवल चर्चा की ही मांग की थी, तब राहुल गांधी ने कहा कि अब उनकी मांगें बदल गईं। जब राहुल गांधी को विनम्रता से ये बताने की कोशिश की गई कि उनके जैसे सीनियर लीडर को इतनी जल्दी अपनी बात से मुकर जाना शोभा नहीं देता, तो जितेंद्र सिंह लिखते हैं कि राहुल गांधी ने कहा कि ये उनकी मर्जी है। जब गृह सचिव ने राहुल गांधी को ये समझाने की कोशिश की कि ये जगह धरने के लिए अनुकूल नहीं, तो जितेंद्र सिंह के मुताबिक राहुल गांधी ने जवाब दिया कि ये भी उनकी मर्जी है, वो जहां बैठे। इसके बाद जितेंद्र सिंह ने लिखा है कि राहुल गांधी जैसे सीनियर नेता और नेता प्रतिपक्ष का अपनी बात से मुकर जाना दुर्भाग्यपूर्ण है और लोकतंत्र की हर मर्यादा के विपरीत है। जितेंद्र सिंह साफ कहते हैं कि सरकार नीट और उससे जुड़े आंदोलन के साथ सभी विषयों पर संसद में चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन इसके विपरीत कांग्रेस ने अब तक इस गंभीर विषय पर औपचारिक चर्चा करने का कोई नोटिस नहीं दिया। जितेंद्र सिंह लिखते हैं कि राहुल गांधी का व्यवहार लोकतंत्र के उसूलों से मेल नहीं खाता है।
4: सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, सरकार तैयार है संसद में चर्चा करने के लिए, नीट को लेकर के भी, उसके साथ संबंधित विषयों को लेकर के भी, जो आंदोलन है उसको लेकर के भी। हमने जब ये बात वहीं पर राहुल गांधी जी के आगे दोबारा रखी तो बोले कि साहब मुझे तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी चाहिए। तो हमने कहा साहब अभी कुछ ही क्षण पहले आपसे बार बार जब पूछा गया कि आपका क्या मुतालबा है तो आपने ये कहा था कि अगर मुझे ये आश्वासन दिया जाए कि संसद में कांग्रेस पार्टी को भारत सरकार चर्चा करने देगी या करने के लिए तैयार है तो मैं तुरंत ये धरना समाप्त कर दूंगा। लेकिन अब आप अपनी बात से हट रहे हैं। तो बोले साहब ये तो मेरी मर्जी है, मेरी मांगे बदल चुकी हैं।
8: अब ये मुद्दा इतना ज्वलंत इसलिए है क्योंकि देश के युवा हैं और ये समझ रहे हैं कि हमारे फ्यूचर, हमारे भविष्य के लिए क्या है। हमारे माँ बाप लोन लेकर मुश्किल से हमें पढ़ाते हैं, हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारे लिए इतना मुश्किल है, इसको हल्के में कोई नहीं ले सकता। ये एक बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है। आज युवा बहुत ही दुखी है। एक्चुअली ये जो आप नाराजगी देख रहे हैं, ये एक्चुअली दुख है कि हमारे फ्यूचर, हमारे भविष्य के बारे में कौन सोच रहा है। ये सदन है किसका? ये उन्हीं युवाओं का है ना जिसको आप रोक रहे हैं बाहर, जिन पर आप लाठीचार्ज कर रहे हैं, जिन पर आप आंसू गैस चला रहे हैं। ये तो मतलब ये सदन ही उनका है। हम सब यहाँ हैं, किसने हमें यहाँ रखा है? उन्होंने ही रखा तो उनकी बात तो सुन ले।
10: मोदी एंटी यूथ,
8: बिल्कुल एंटी यूथ है, देखिए एंटी यूथ है, एंटी गरीब है, एंटी किसान है, बच्चे हैं, सुन लीजिए इनकी बात, क्या होने जा रहा है। अगर इनकी बात शांति से सुन ले आप, मंत्री जी की जिम्मेदारी है, उनसे रिजाइन करवाइए, इस्तीफा दीजिए, जिम्मेदारी लीजिए और सबसे जरूरी तो ये है कि सिस्टम को दुरुस्त करिए।
23: आप इन विषयों पे जब भी डिस्कशन होता है आप मुंह की खाते हैं, लास्ट में आप जवाब सुन भी नहीं पाते हैं। मैं अभी भी बोलूंगा, ये नकारात्मक जो सोच है विपक्ष का उसको छोड़ना चाहिए। आपने कर लिया ना जो एक दो दिन है, लेकिन कल से सदन को चलने दिया जाए, सभी जो मुद्दे हैं उन पे बात करिए। कोई ऐसा विषय नहीं है जिस पे संसद में बहस न हो सके, लेकिन इन लोगों को एक आदत लग गई है कि संसद के विषय को सड़क पे ले जाएंगे।
0: अरविंद, धरना प्रदर्शन वो सब अपनी जगह है, राजनीति भी अपनी जगह है, लेकिन ये बताइए कि इस समय क्या पुलिस में ये विचार हो रहा है कि पहले सीजेपी का प्रदर्शन किस पैमाने पर होगा, उसको थोड़ा अंडर एस्टिमेट करके तैयारी उस हिसाब से नहीं हुई कि संसद तक जाने वाली सड़कों से पहले रोका जा सके, और दूसरा आज कांग्रेस पार्टी इस बात को सीक्रेट रखने में कामयाब हुई, ये बात सही है, लेकिन उसके बाद का रिएक्शन टाइम क्या ये चिंता का विषय है उनके लिए अभी?
1: बिल्कुल, कम से कम दो दिन आप कह सकते हैं कि दिल्ली पुलिस को पहले जो सीजेपी के प्रोटेस्टर थे उन्होंने चकमा दिया। हालांकि यहां ये भी बात साफ है कि दिल्ली पुलिस ने काफी संयम बरता था 20 मार्च को, क्योंकि जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं श्वेता, यहां से चंद कदमों की दूरी पर संसद भवन है और इस चौराहे पर ये जो पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन है यहां तक स्टूडेंट पहुंच गए थे और उसके बाद आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे तब पुलिस ने उनको रोका। लेकिन जिस तादाद में लोग आए, कुछ स्टूडेंट आए, और आरोप तो अब दिल्ली पुलिस ये भी लगा रही है कि कई उम्र के लोग थे, कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग थे, वो उस तादाद में आ गए, उसके बारे में दिल्ली पुलिस लगता है सटीक आकलन नहीं लगा पाई। और 20 तारीख के बाद 21 तारीख को जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के बाहर बैठ गए, दिल्ली पुलिस को कानों कान खबर नहीं आई, तो वहां भी कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की फजीहत जरूर हुई, सांस जरूर फूली। हालांकि जंतर मंतर से लेकर प्रधानमंत्री आवास तक पॉलिटिकल ऑप्टिक्स हर कोई बनाना चाहता था, हर कोई ये दिखाना चाहता था कि वो छात्रों के हित के बारे में सोच रहा है, वो छात्रों की बात कर रहा है हर पॉलिटिकल पार्टी। जंतर मंतर एक तरफ अगर शरद पवार पहुंचे तो दूसरी तरफ राहुल गांधी वो प्रधानमंत्री आवास पहुंच गए और कुछ घंटों तक जंतर मंतर से जो फोकस है वो शिफ्ट होकर प्रधानमंत्री आवास पर भी पहुंचा। दिल्ली पुलिस दो दिन तक उनकी सांसें दिल्ली पुलिस की 20 तारीख को और आज भी भूली रही। हालांकि दिल्ली पुलिस सुबह जब जागी, कल जिस तरह से तोड़फोड़ पथराव लाठी डंडे चले और दोनों तरफ से आरोप लगे, लेकिन आज राहत की बात सुबह के वक्त ली पुलिस ने कि चलिए शांति बनी हुई है, लेकिन दोपहर होते होते राहुल गांधी ने सरप्राइज कर दिया दिल्ली पुलिस को और दिल्ली सिक्योरिटी एजेंसी को और प्रधानमंत्री आवास के बाहर जाकर वो बैठ गए श्वेता।
0: और इसी सब के बीच सवाल ये उठ रहा है कि क्या धरने का मकसद राजनीति करना है, क्योंकि विपक्ष में ही तेरा धरना मेरा धरना की लड़ाई हो रही है। संजय सिंह ने ट्वीट करके लिखा, देश के करोड़ों युवाओं के लिए सोनम वांगचुक पिछले 23 दिनों से आमरण अनशन पर हैं, जंतर मंतर पर देश का युवा आंदोलन कर रहा है। 20 जुलाई को युवाओं को बर्बरता पूर्वक पीटा गया, कांग्रेस एक महीने से आंदोलन को गाली दे रही है, अब राहुल गांधी कह रहे हैं जंतर मंतर नहीं, हमारे धरने में शामिल हो। आखिर युवाओं के आंदोलन को क्यों कमजोर करना चाहती है कांग्रेस? जंतर मंतर के आंदोलन में शामिल होने की अपील क्यों नहीं करती है कांग्रेस? आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह के इस ट्वीट पर कांग्रेस के सांसद गुरजीत सिंह ने कड़ा जवाब दिया और आपको बीजेपी की बी टीम बताया, आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी वहीं से चुनाव लड़ती है जहां कांग्रेस सत्ता में वापस आ सकती है। गुरजीत सिंह ने कहा कि आप नेताओं के खिलाफ जांच कैसे धीमी हो गई। आतिशी ने कांग्रेस और बीजेपी में मिलीभगत का आरोप लगाया, कहा कि जिस दिल्ली पुलिस ने सीजेपी को संसद के 100 मीटर के दायरे में नहीं जाने दिया, उसने राहुल गांधी को पीएम आवास के पास कैसे जाने दिया, क्या ये सबूत काफी नहीं है? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने लखनऊ के गवर्नर हाउस के बाहर भी प्रदर्शन किया, इस दौरान पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई, उन्हें हिरासत में ले लिया गया। अब हम उस जगह की तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां पर राहुल गांधी को बाकी प्रदर्शनकारियों के साथ लाया गया है। दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में छत्रसाल स्टेडियम में राहुल गांधी को रखा जाएगा। और ये उसी जगह की तस्वीर है, हालांकि वहां पर कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता पहले से पहुंच गए हैं, वहां पर नारेबाजी भी हो रही है, लेकिन भारी सुरक्षा के साथ, क्योंकि राहुल गांधी को जो सुरक्षा मुहैया है उसमें उनकी सेफ्टी की संवेदनशीलता को देखते हुए आप सुरक्षा कर्मियों को उस हिसाब से भी वहां पर तैनात देख सकते हैं। इस बीच पंजाब से दिल्ली आ रहे किसानों को आज सरकार ने मना लिया। सरकार से समझौते के बाद किसानों का मार्च वापस पंजाब लौट गया। किसानों की दो मांगों को हरियाणा सरकार ने मान लिया, जिसमें से पहली गुरनाम सिंह चढ़ूनी की रिहाई और दूसरी शिवराज सिंह चौहान के साथ किसानों की बातचीत शामिल थी।
22: पंजाब का शंभू बॉर्डर, जहां मंगलवार सुबह किसान दिल्ली के लिए रवाना होने लगते हैं। इस तस्वीर को देखकर लोगों को किसान आंदोलन का दौर याद आने लगा, लेकिन कुछ ही घंटों में किसान और सरकार में बात बन जाती है, किसान वापस पंजाब लौट जाते हैं। अब सवाल ये है कि भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ प्रदर्शन करने दिल्ली आ रहे किसानों को सरकार ने कैसे मनाया, उनकी मांग क्या थी?
10: जो काफिला आपको दिखा दे, पहले शंभू बॉर्डर की तरफ था और अब ये जो किसान है काफी हद तक अपने बसों में, और एक लंबा इंतजार है क्योंकि आपको बता दें कि 6-7 बजे से ये सारे किसान बैठे हैं और बीच में काफी बारिश भी हुई और उसके बाद धूप है, उमस है, उसके बावजूद यहाँ पे डटे हुए हैं। तो उनका संकेत साफ है कि आप अपनी बात पूरी कीजिए, हम वापस जाते हैं, लेकिन हम मुलाकात करेंगे शिवराज चौहान।
22: शंभू बॉर्डर से देश बचाओ मोर्चा के तहत ये मार्च निकाला जा रहा था, जिसे दिल्ली के किसान घाट जाना था। इसे रोकने के लिए हरियाणा पुलिस ने पहले पूरा इंतजाम कर रखा था।
11: फ्री ट्रेड डील रद्द करो, फ्री ट्रेड डील रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो।

0: हरियाणा के कुंडली बॉर्डर पर पुलिस सुबह ही किसानों को रोकने के लिए 3 स्तर पर घेरा बनाकर तैयार थी। दिल्ली हरियाणा के इस बॉर्डर पर जैसे ही किसान पहुंचे, पुलिस ने उन्हें रोक लिया। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए मिट्टी से भरे ड्रम हाईवे पर रखे। इसके अलावा जेसीबी मशीन से बैरिकेडिंग करके सुबह से हाईवे पर दोनों तरफ से आवाजाही पूरी तरह रोक दी। यहीं पर पिछली बार किसान आंदोलन चला था, लेकिन इस बार ये नौबत नहीं आई और हरियाणा सरकार किसानों में जल्द ही सहमति बन गई।
1: हरियाणा के कृषि मंत्री ने कहा कि हमारा मांग पत्र भी लिया और कहा है कि आपने हमें कहा कि केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान से वार्ता कराई जाए, तो बोला मैं अवश्य करता हूं। उन्होंने आश्वासन भी दिया कि 8-10 दिन में मेरा दफ्तर आपको चिट्ठी देगा, उनसे वार्ता करवाएंगे, बातचीत आगे बढ़ेगी। वार्ता में क्या होगा ये बात की बात, एक तो ये एक सुनिए। दूसरी बात, हमने कहा सभी किसान लीडरों को, किसानों को रिहा किया, वो कहते तुरंत प्रभाव से हम सीएम से मीटिंग करके, ग्राम सिंह चडूनी से अधिकारी बोल रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस छोड़ेंगे, बीएम सिंह को छोड़ेंगे। तो ये दो मांगे थी, उन्होंने मान ली।
0: विरोध करने वाले किसानों का कहना है कि अमेरिका के साथ हो रही ट्रेड डील से उन्हें नुकसान होगा। इस समझौते के बाद अमेरिका से सस्ते सोयाबीन, सूखे मेवे, डेयरी उत्पाद और अनाज भारतीय बाजारों में भरे जाएंगे, जिससे छोटे किसानों, मजदूरों और छोटे व्यापारियों को भारी नुकसान होगा। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों और मजदूरों के मुद्दे पर ये साफ साफ बार बार कह चुके हैं कि किसानों और मजदूरों को झुकने नहीं दिया जाएगा। उनको नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी समझौते से प्रधानमंत्री इनकार करते रहे हैं। पिछले शुक्रवार को पंजाब के दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरे रंग की पटियाला पगड़ी पहनकर खुद को न सिर्फ पंजाब से जोड़ा, बल्कि हरे रंग से किसानों से करीबी का संदेश दिया।
2: पंजाबियों की वे हो, चढ़दी कला हो।
0: हालांकि तब भी किसान मजदूर मोर्चा ने उनका विरोध किया था, लेकिन किसानों की बात मानकर सरकार ने संदेश दिया है कि वो किसानों से सीधे संवाद के पक्ष में है।
3: तो किसान आज अपनी मांगों को हरियाणा बॉर्डर से लेकर लौट गए। कहा है कि उन्हें आश्वासन मिला है कि अगले 8-10 दिन के भीतर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ उनकी मुलाकात करवाई जाएगी और इसके साथ ही किसान नेताओं की रिहाई को लेकर भी फौरी आश्वासन उन्हें दे दिया गया है। लेकिन देखना होगा सरकार आगे चलकर कैसे किसानों को मना पाती है, यूएस ट्रेड डील को लेकर समझा पाती है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक, रहिए खबरदार।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
4: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस। हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि क्या देश की राजधानी दिल्ली को एक सोची समझी रणनीति के तहत सियासी अखाड़ा बना दिया गया। प्रधानमंत्री आवास के अति संवेदनशील और सुरक्षित इलाके के बाहर अचानक हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अस्पताल से सीधे मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पहुंचे और फिर वहां से अचानक पीएम आवास के उस गेट पर जाकर बैठ गए जो सिर्फ प्रधानमंत्री के काफिले के आने के लिए इस्तेमाल होता है। हम बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले सोनिया गांधी की कुछ तस्वीरें आ रही हैं, जिसे बताया जा रहा है कि मंदिर मार्ग थाने पहुंची हैं सोनिया गांधी। तो सोनिया गांधी का मंदिर मार्ग थाने पहुंचना, दरअसल आपको बता दें कि आज जब अति संवेदनशील हाई सिक्योरिटी जोन में प्रधानमंत्री आवास के बेहद करीब कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता धरना प्रदर्शन के लिए पहुंचे थे, उसके बाद बड़े से बड़े नेताओं को, जिसमें राहुल गांधी शामिल थे, जिसमें अखिलेश यादव भी पहुंचे थे, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से, इन सभी को बस में वहां से ले जाया गया अलग अलग जगहों पर, मॉडल टाउन इलाके के थाने में, छत्रसाल स्टेडियम में, और कुछ खबर आई कि मंदिर मार्ग थाने में, अलग अलग जगहों पर कार्यकर्ताओं को, नेताओं को ले जाया गया। ऐसे में सभी को इस बात का इंतजार है कि जिनको अभी थाने में रखा गया है उनको कब छोड़ा जाएगा। इसी बीच खबर आ रही है कि सोनिया गांधी मंदिर मार्ग थाने पहुंची हैं, उनके कुछ नारे वहां पर लगते हुए सुनाई दे रहे हैं। तो बड़ी खबर के साथ आज ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत कर रहे हैं। हम आपको सिलसिलेवार ढंग से आज बताने वाले हैं कि ये जो अति संवेदनशील इलाका है वहां पर आज जब ये सियासी विरोध प्रदर्शन पहुंचा कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, एक तरह से क्योंकि शुरुआत राहुल गांधी ने की थी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता वहां पर पहुंचे थे, फिर धीरे धीरे देखते देखते सभी नेता अलग अलग पार्टियों के पहुंचने लगे, जिसमें अखिलेश यादव भी शामिल थे, अखिलेश यादव वहां पर शामिल थे। तो ये तस्वीरें हैं जब आप मंदिर मार्ग थाने की देख रहे हैं, और ये थाने के जस्ट बाहर से आप देख रहे हैं तस्वीरें, वहां पर खबर आ रही

0: रही है कि सोनिया गांधी पहुंची है। तो खबर यह आ रही है कि सोनिया गांधी मंदिर मार्ग थाने पहुंची है और हमारे सहयोगी भी आपको फ्रेम में दिखाई दे रहे थे। जैसे ही और तस्वीरें आती हैं, जैसे ही अपडेट आता है, हम फौरन वहां का रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं, राहुल गांधी का धरना सरकारी सूत्रों के हिसाब से बहुत खतरनाक और गलत परंपरा है, ऐसा कहा गया है। राहुल गांधी के इस धरने को खत्म कराने के लिए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह पहुंचे। जब सरकार संसद में नीट पर चर्चा के लिए, नीट पेपर लीक पर चर्चा के लिए तैयार हुई, तो मांग बदलकर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर पहुंच गया विपक्ष। ये बात डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कही। उन्होंने कहा कि भाई आपने अपनी बात से आप पलट गए हैं, अपनी बात से मुकर रहे राहुल गांधी। ये सीधा आरोप लगाया डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। उन्होंने कहा कि पहले कहा गया कि संसद में चर्चा पर तैयार हो जाएंगे, बाद में कहा गया नहीं हमें इस्तीफा चाहिए, और इसके बाद बड़ा हंगामा शुरू हुआ और राहुल गांधी समेत तमाम नेताओं को हिरासत में लिया गया। अब अलग अलग जगहों पर इनको ले जाया गया है, वहां से अपडेट्स आ रही हैं। एक तरफ जंतर मंतर पर सोनिया गांधी की तस्वीरें अब दिखने लगी हैं। देखिए, एक तरफ ये सोनिया गांधी आपको मंदिर मार्ग थाने में फिलहाल दिखाई दे रही हैं, जहां वो इस पहर में पहुंची हैं रात के 9 बजे, क्योंकि अलग अलग जगहों पर कांग्रेस के तमाम नेताओं को, जिनको वहां से हिरासत में लिया गया बस पर, उनको इन जगहों पर ले जाया गया है। और उन्हीं में से एक मंदिर मार्ग थाने पर अपनी पर्सनल सिक्योरिटी के साथ सोनिया गांधी पहुंची हुई है। तो वहां से क्या अपडेट आता है, वो क्या मांग लेकर थाने में पहुंची है, क्या अपने कार्यकर्ताओं को नेताओं से मिलने के लिए पहुंची है, उनको वहां से छुड़ाने के लिए वो पहुंची है, इन सब पर हम चर्चा करेंगे और जानकारी आपको देते रहेंगे। लेकिन आज दिन भर क्या हुआ, सीजेपी के साथ अरविंद केजरीवाल, शरद पवार और उद्धव ठाकरे के सांसद खड़े दिखाई दिए थे अब तक, क्योंकि आपने देखा बीते दिन जो प्रोटेस्ट था। दूसरी तरफ राहुल गांधी अपना अलग मंच सजा रहे थे। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के इस धरने को बीजेपी के साथ मैच फिक्सिंग करार दे दिया है, यानी मुद्दा एक, लेकिन विपक्ष में फूट और क्रेडिट लेने की होड़ अब साफ दिख रही है। आज आपको विस्तार से बताएंगे कि ये प्रदर्शनकारियों के हक की लड़ाई थी या फिर सियासी माइलेज लेने की कोशिश। क्या आज सीजेपी के आंदोलन की पिच पर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन हुआ, और क्या धरना प्रदर्शन और मान मनोवल के बीच असली मुद्दे का हल निकलेगा। और हमारी चिंता सिर्फ इतनी है कि बच्चों से जुड़ी हुई जो असल कहानी है, बच्चों से जुड़ा हुआ जो असल मुद्दा है, वो कहीं सियासी लड़ाई में, इस शोर में वो ना पीछे रह जाए, क्योंकि सवाल और मुद्दा बच्चों का है, मेहनतकश बच्चों का जो एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हैं, पेपर लीक से जुड़ा मुद्दा है। देखिए, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कभी जो सभी कांग्रेस के नेता हैं, उनको हिरासत में लेकर मॉडल टाउन इलाके के छत्रसाल स्टेडियम में ले जाया गया है, और इस कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ता धरना भी दे रहे हैं। लेकिन पुलिस ने अभी ये नहीं बताया है कि वो कांग्रेस के इन नेताओं को कब हिरासत से रिहा करेगी, और शायद उनमें से एक वजह यही है कि आप देख रहे हैं कि सोनिया गांधी भी पहुंची है मंदिर मार्ग थाने। ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि क्या इन नेताओं को पुलिस गिरफ्तार भी कर सकती है, क्या अरेस्ट भी किया जा सकता है। इस सवाल के पीछे बड़ा कारण यह है कि क्या कांग्रेस के नेताओं ने प्रधानमंत्री आवास जैसे अति संवेदनशील हाई सिक्योरिटी जोन सुरक्षित क्षेत्र में जाने से पहले अनुमति ली थी विरोध प्रदर्शन के लिए, और इस आधार पर पुलिस लोकसभा अध्यक्ष की बिना इजाजत के राहुल गांधी और बाकी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। अगर ऐसी कोई घटना संसद भवन के अंदर या संसद परिसर में की जाती तो पुलिस के लिए कोई भी कार्रवाई करने से पहले लोकसभा अध्यक्ष की इजाजत लेना जरूरी होता। लेकिन इस मामले में पुलिस कांग्रेस नेताओं को हिरासत में भी रख सकती है और कुछ देर में उनको छोड़ा भी जा सकता है। इस धरने को खत्म कराने के बाद राहुल गांधी ने पुलिस की हिरासत में रहते हुए सोशल मीडिया पर यह लिखा है कि छात्रों के इंसाफ की ये लड़ाई अब रोके नहीं रुकेगी। हालांकि सरकार की तरफ से ऐसी खबरें आ रही हैं कि उसने कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर चिंता जताई है। सूत्रों के मुताबिक सरकार का ऐसा मानना है कि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन करके एक गलत और एक खतरनाक परंपरा की शुरुआत की है, और सरकार यह भी मान रही है कि आज कांग्रेस ने जो किया वो बांग्लादेश और नेपाल जैसे पड़ोसी देशों में होता था। हालांकि सरकार ने ऐसा औपचारिक रूप से नहीं कहा है, बल्कि सूत्रों के हवाले से ऐसी खबरें आगे की गई हैं कि सरकार कांग्रेस के इस धरने को सुरक्षा के लिहाज से चिंताजनक मान रही है। इसके पीछे एक कारण यह भी है कि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री आवास के जिस गेट के बाहर यह धरना दिया, उसी गेट से प्रधानमंत्री मोदी का काफिला गुजरता है, और आखिरी बार ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं गेट, ये जो है इस गेट पर जहां जी विरोध प्रदर्शन हुआ है, इस गेट पर आखिरी बार प्रदर्शन हुआ था दिसंबर 1999 में, जब विरोध प्रदर्शन हुआ था इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 हाईजैक होने पर। बंधकों को छुड़ाने के लिए उनके परिवारों ने तब प्रधानमंत्री आवास के इस गेट के बाहर यह प्रदर्शन किया था। यह साल 1999 का प्रदर्शन है और उसके बाद से आज तक इस गेट पर कभी प्रदर्शन नहीं हुआ। उस प्रदर्शन के बाद इस गेट की सुरक्षा हमेशा के लिए बढ़ा दी गई थी, लेकिन आज राहुल गांधी समेत कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इसी गेट पर पहुंचे। अब तस्वीरें आज की दिखा दीजिए, आप एक बार ये तस्वीरें देखिए। यहां हम आपको इस धरने की इनसाइड स्टोरी भी आज बताना चाहते हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में कांग्रेस का पहला ऐसा धरना है ये जिसकी भनक किसी को नहीं थी। तो आखिर कांग्रेस ने ये कैसे आयोजित किया? दोपहर 12:45 राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा दिल्ली के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उन्होंने घायल हुए जो प्रदर्शनकारी थे उनसे मुलाकात की। तब कोई ये नहीं जानता था कि कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठने वाले हैं। दावा है कि उस वक्त राहुल गांधी और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने इस रणनीति को पूरी तरह गोपनीय रखा, एक सीक्रेट रखा। अस्पताल से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा सीधे पहुंचे पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सरकारी आवास पर, जो प्रधानमंत्री आवास के बहुत नजदीक है। उस वक्त सबको यही जानकारी थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर एक बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें संसद में सरकार को घेरने के लिए एक रणनीति बन सकती है, और इसी बैठक के लिए कई शीर्ष नेता राहुल गांधी के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के सरकारी आवास पर पहुंचे। इससे पहले कि हम आगे की कहानी आपको सुनाएं, एक बार फिर से सोनिया गांधी की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मंदिर मार्ग थाने से अब वो निकलती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी के नेता इस वक्त भी अलग अलग थानों में रखे गए हैं हिरासत में, उनको अभी छोड़ा नहीं गया है, और इसी वजह से सोनिया गांधी वहां पर पहुंची है और उनका काफिला वहां से निकल रहा है। तो चलिए वापस आज की इनसाइड स्टोरी पर जाते हैं। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा गांधी आरएमएल पहुंचते हैं। आरएमएल में वो घायल लोग जो प्रदर्शनकारी हैं उनसे मिलते हैं। उसके बाद वो सीधा पहुंचते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के घर। दोपहर 12 के बाद से अब अलग अलग नेताओं की गाड़ियों के पहुंचने का सिलसिला जारी था, और बड़ी बात यह है कि आज मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्मदिन भी है, जिसके कारण ये सारी घटनाएं सामान्य लग रही थी कि भाई आज उनका बर्थडे है तो पार्टी के लोग, तमाम बड़े नेता सब पहुंच रहे हैं उनको बधाई देने। लेकिन हकीकत में कांग्रेस के सभी शीर्ष नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इकट्ठा होकर धरने की रणनीति बनाने वाले थे। इसके लिए सबसे पहले कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI को एक्टिवेट किया गया। छात्र नेताओं और कार्यकर्ताओं से यह कहा गया कि वो जल्द से जल्द धरना स्थल पर पहुंचना शुरू करें, और यहां इस बात का भी ध्यान रखा गया कि सारे नेता सारे कार्यकर्ता एक साथ ना पहुंचे, जिससे पुलिस उनके धरने को शुरू होने से पहले ही रोक ना दे। जब NSUI और कांग्रेस के कुछ नेता और कार्यकर्ता प्रधानमंत्री आवास के पास पहुंच गए, तब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा और उनके साथ साथ कुछ नेताओं ने पैदल मार्च करते हुए इस धरना स्थल पर पहुंचना शुरू किया। पुलिस उन्हें रोक नहीं पाई। ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे के सरकारी आवास से प्रधानमंत्री आवास के इस गेट की दूरी सिर्फ 300 मीटर है, और यहां पैदल पहुंचने में 7-10 मिनट ही लगते हैं। जब राहुल गांधी पार्टी के बाकी नेताओं के साथ पैदल मार्च करते हुए बाहर निकले, तब भी किसी ने नहीं सोचा था कि वो प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा हुआ। और इसमें भी बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के ज्यादातर नेता एक साथ इकट्ठा होकर सड़कों पर नहीं उतरे। कई नेता राहुल गांधी के धरने पर बैठने के बाद वहां अपनी गाड़ियों से पहुंचने लगे। और जानते हैं धरने के लिए कांग्रेस ने प्रधानमंत्री आवास के इसी गेट को क्यों चुना? ये जो रेसकोर्स रोड है, उस रोड की तरफ से जो नॉर्मल जिस तरफ से एंट्री है वो एंट्री नहीं है, ये दूसरा गेट है, वही गेट जिससे प्रधानमंत्री का काफिला निकलता है और जाता है। इस गेट का एक्सेस सिर्फ पीएम सिक्योरिटी के जो लोग हैं उनको है और पीएम के कैवलकेड को। तो इसी गेट को क्यों चुना गया? पहला कारण तो यही है कि इस गेट से मल्लिकार्जुन खड़गे का सरकारी आवास सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर है। लेकिन दूसरा कारण यह है कि इस गेट का एक्सेस सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के काफिले को दिया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी जब भी कहीं जाते हैं, वापस अपने सरकारी आवास में लौटते हैं, तो उनका काफिला इसी गेट से गुजरता है। और यही कारण है कि जब राहुल गांधी इस गेट के पास धरने पर बैठे तो गृह सचिव ने खुद राहुल गांधी से यह आग्रह किया कि वो इस जगह धरना ना दे, क्योंकि यह जगह धरने के लिए अनुकूल नहीं है। हालांकि राहुल गांधी इसके लिए तैयार नहीं हुए और उन्होंने ये कहा कि वो अपना धरना यहीं जारी रखेंगे और सरकार को उनकी मांगे माननी होंगी। फिर हुई गहमागहमी और इस गहमागहमी के बीच केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह खुद कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से बात करने आए और उनके साथ थे होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन। तो ये उस वक्त की तस्वीरें हैं। उनका दावा है कि राहुल गांधी ने खुद उनसे ये कहा, ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह का दावा है कि राहुल गांधी ने उनसे ये कहा कि अगर सरकार पेपर लीक के मुद्दे पर संसद में चर्चा कराने के लिए तैयार है तो वो अपना धरना खत्म कर देंगे। अब राहुल गांधी की इस मांग को सुनने के बाद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे कि भाई उनका ये मांग है कि आप यहां पर तैयार हो जाइए बातचीत के लिए और संसद में इस पर बहस के लिए, पेपर लीक का मुद्दा हो। और अमित शाह से चर्चा करने के बाद उन्होंने एक बार फिर राहुल गांधी से बात की। अब जितेंद्र सिंह का यह दावा है कि राहुल गांधी को ये उन्होंने बताया कि सरकार नीट पेपर लीक के मुद्दे पर संसद में चर्चा कराने के लिए तैयार है। लेकिन आरोप है कि जब सरकार ने राहुल गांधी की इस मांग को मान लिया तब भी वो अपना धरना खत्म करने के लिए तैयार नहीं हुए। ये दावा बाकायदा लिखित में एक्स पर और फिर एक वीडियो के जरिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। उन्होंने ये मांग भी रख दी है, ऐसा डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि राहुल गांधी ने अब यह मांग रख दी है कि शिक्षा मंत्री को अपना इस्तीफा देना होगा, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा, तभी यह धरना खत्म होगा। अब इसके बाद स्थिति और तनावपूर्ण हो गई और पुलिस वाले राहुल गांधी कांग्रेस के तमाम नेताओं से धरना खत्म करने की अपील करते हुए नजर आए। ये अधिकारी लगातार उनसे बातचीत कर रहे थे और ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि ये अनुकूल जगह नहीं है धरने के लिए, उनको वहां से हटना चाहिए। और जब कांग्रेस के नेताओं ने ऐसा नहीं किया तो उन्हें पुलिस ने हिरासत में लेकर वहां से हटा दिया। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि जब पुलिस कांग्रेस के नेताओं को प्रधानमंत्री आवास के गेट से हटा रही थी तब राहुल गांधी विरोध करते हुए नीचे लेट गए और उन्होंने अपने हाथों को जिप टाई यानी प्लास्टिक की केबल से बांधा हुआ था और इसी के कारण वहां काफी हंगामा हुआ। पुलिस ने राहुल गांधी समेत कांग्रेस के सभी नेताओं को हिरासत में ले लिया। क्या क्या वहां पर हुआ पहले ये वीडियो देखिए।
1: ये बहुत सेंसिटिव इलाका है, ये वो इलाका है जहाँ पर प्रधानमंत्री का आवास है, ये वो इलाका है जहाँ पर कई बड़े बड़े देशों के एम्बेसीज हैं, यहाँ पर दूतावास हैं। राहुल गांधी के साथ साथ कई कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं और आप तस्वीर देखिए कैसे इस पूरे इलाके को घेर लिया गया है। जो प्रधानमंत्री आवास का जो मेन एंट्री गेट है वहां पर राहुल गांधी के साथ साथ कई कांग्रेस के नेता पहुंच गए हैं और बिना परमिशन के यहां पर आए हैं। सरकार से बात करने की कोई कोशिश नहीं की गई।

0: बॉडी देते हैं, जब जब बॉडी देते हैं
1: पुलिस को आगे करते हैं।
2: सर पल तुम बीच में भाई आप इधर हो जाइए।
3: यहाँ पे जो तस्वीर 7 RCR यानी कि लोक कल्याण मार्ग में घट रही है, पीछे हमारे देखिए अखिलेश यादव और राहुल गांधी को कुछ इस तरीके से बस में भर के ले जाया जा रहा है। अखिलेश यादव हाथ देने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी डिटेन कर लिया गया है। मुकुल वासनिक वहाँ पे नजर आ रहे हैं और तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पे नारेबाजी लगाते हुए इस बस पे आगे जाते हुए आइए। कांग्रेस ने सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया है और ये कहा है कि सरकार ने राहुल गांधी के साथ अच्छा सलूक नहीं किया।
4: डेमोक्रेसी इन इंडिया इज हैपनिंग राइट नाउ। डेमोक्रेसी इन इंडिया इज हैपनिंग राइट नाउ।
0: जब जब वो भी डरता है पुलिस जो सच्चाई है वो सुने कि इस देश में युवाओं का भविष्य छोड़ दिया है इन्होंने। हिम्मत है तो आगे आए, बात करें, सुझाएं इनकी समस्या, इन पर कमेंट कराएं।
5: गलत प्रयोग किया हम लोग को, दबाया है, उठा के नहीं पूरा दबा दिया गया था जबरदस्ती और अचानक से बहुत गलत लोग आए थे, ये उनकी साजिश है उठाने के लिए, बहुत गलत किया।
6: दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्री के इशारे पर, प्रधानमंत्री के इशारे पर बहुत ही कायरता पूर्वक तरीके से हमारे नेता राहुल गांधी को घसीट कर हिरासत में लिया, हमारी नेता प्रियंका गांधी को बदतमीजी कर और घसीट कर बस में जबरदस्ती ठूसा।
3: तो कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं के आरोप आपने देखे। यहाँ ये भी देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी कांग्रेस के धरने को एक फिक्सिंग बता रही है। आज अब शाम को कांग्रेस का ही धरना शुरू हुआ और फिर ये तस्वीरें आनी शुरू हुई, खबर ने जोर पकड़ी। उस वक्त आम आदमी पार्टी के लगभग सभी नेताओं ने सोशल मीडिया पर यह लिखा कि बीजेपी और कांग्रेस की एक दूसरे से मिली भगत है और बीजेपी ने जंतर मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन को कमजोर करने के लिए राहुल गांधी को प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बिठाया है। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐसे आरोप लगे तो कांग्रेस ने भी उसे बीजेपी की बी टीम बताते हुए कह दिया कि बीजेपी के नेता आम आदमी पार्टी की तरफ से झूठे आरोप लगवा रहे। लेकिन इन सब में समझने वाली बात यह है कि जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का जो आंदोलन चल रहा है उसमें आम आदमी पार्टी के नेता तो दिखाई देते हैं, तस्वीरें दिखा दीजिए, लेकिन कांग्रेस के नेता अब तक उस विरोध प्रदर्शन में नहीं नजर आए। अरविंद केजरीवाल आपको दिख रहे हैं मंच पर, संजय सिंह दिख रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के जो अन्य नेता है वो आज आपको दिख रहे हैं। तो ये दो तस्वीरें, हालांकि अगर आप देखिए तो बीते दिन वहां पर शरद पवार और ऐसे तमाम जो विपक्ष के नेता हैं जिसमें डिंपल यादव को आपने देखा, वो लगातार विरोध प्रदर्शन में रहे, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी के नेता विरोध प्रदर्शन के लिए निकले। तो अलग अलग विरोध प्रदर्शन करती हैं ये पार्टियां, तो आम आदमी पार्टी के नेता उसका विरोध आज करते हैं और ये कहते हैं कि कांग्रेस कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन को कमजोर करना चाहती है, वो बीजेपी के साथ मिली भगत है उसकी। इससे ये सवाल भी उठते हैं कि क्या विपक्ष के में नीट के मुद्दे को लेकर आपस में ही फूट है क्रेडिट लेने की, और जब मुद्दा एक है तो धरने में ये अलग अलग वाली बात कैसे आ रही है और एक दूसरे पर हमले क्यों किए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने यह धरना तब दिया है जब शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसद आज ही जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन में शामिल होने पहुंचे। यानी एक ही मुद्दे को लेकर अलग अलग पार्टियां अलग अलग आंदोलन के साथ दिखना चाहती हैं, जिसे विपक्ष की राजनीति को लेकर आज चर्चा हो रही है।
7: सरकार बात नहीं करती, डरपोक।
8: चार FIR दर्ज की गई है, चार
7: FIR दर्ज करो, फिर भी बच्चे लड़ते रहेंगे और हम उनके साथ हैं।
9: अगर आपको किसी तरह की लीगल मदद की जरूरत है, आपके बच्चे नहीं मिल रहे, बच्चों पे झूठा केस कर दिया गया है, बच्चों को गिरफ्तार कर लिया गया है, हमने एक लीगल टीम बनाई है आम आदमी पार्टी ने, हमारी लीगल टीम आपकी मदद करेगी। किसी केस में अगर जरूरत पड़ी तो बड़े से बड़ा वकील भी देश का आपके बच्चों के लिए खड़ा करेंगे।
7: कभी हिटलर ने अपने पॉलिटिकल लोगों के साथ इस तरह का एक गैंग बनाया था? लगता है इस तरह के लोग थे जो प्राइवेट ड्रेस में थे और लाठी लेकर के लोगों को मार रहे थे। कभी हिटलर ने बनाया था और आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देख रहे हैं।
10: इतने हफ्तों से चल रहा है, आप बातचीत कल क्यों करते हैं? आप तो पहले से बातचीत करना चाहिए था उन स्टूडेंट से, और कंप्लीट मिसमैनेजमेंट है।
3: आज ये सारा राजनीतिक घमासान तब हुआ जब प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए के संसदीय दल की बैठक में नीट पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने पेपर लीक को घोर पाप बताया। उन्होंने कहा कि जब नीट का पेपर लीक हुआ तभी कार्रवाई की गई थी, 13 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया, छात्रों का भविष्य प्रभावित न हो इसलिए नीट की परीक्षा जल्द से जल्द कराई गई, बिना देरी के इस परीक्षा का रिजल्ट भी जारी किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भविष्य में पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं और सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि पेपर लीक के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि पेपर लीक केवल किसी एक राज्य या केंद्र सरकार का नहीं बल्कि पूरे देश का मुद्दा है। सुनिए,
11: प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, पूरा देश का, हर एक राज्य में जहां जहां पेपर लीक करने में जो लोग लिप्त है, जो लोग इस धंधे में इन्वॉल्व है, जिन्होंने काम इस तरह का घिनौना किया है, पाप काम किया है, उनको सजा देने के सब एकजुट होना चाहिए। ये कोई दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिलकर के करें, इसको प्रधानमंत्री जी ने बल दिया है।
3: अब इन तमाम घटनाओं के बीच दिल्ली पुलिस ने एक 2 मिनट 39 सेकंड का वीडियो जारी किया है जिसमें यह दिखाया गया है कि 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च में कैसे भीड़ ने उपद्रव किया और पुलिस के खिलाफ हिंसा हुई। देखिए,

अब दिल्ली पुलिस का दावा है कि 20 जुलाई को हुए उपद्रव में 60 प्रदर्शनकारी घायल हुए, लेकिन कांग्रेस जनता पार्टी का दावा है कि घायल हुए लोगों की संख्या 100 से ज्यादा है। इनमें भी एक लड़की आरएमएल हॉस्पिटल में गंभीर हालत में बताई जा रही है। कांग्रेस जनता पार्टी का दावा है कि ये लड़की 21 साल की है, दिल्ली के उत्तम नगर इलाके से इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने आई थी, लेकिन पुलिस की कार्रवाई में वो गंभीर रूप से घायल हुई और इसके बाद उसे वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखना पड़ा है। हालांकि आरएमएल हॉस्पिटल ने अब से कुछ देर पहले यह बताया है कि इस लड़की की हालत में कुछ सुधार आया है और अब भी इसे वेंटिलेटर सपोर्ट पर ही रखा गया है और लगातार उसकी निगरानी हो रही है। यहां बीबीसी की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि इस लड़की की को जो चोटें आई वो तब आई जब भीड़ उस पर गिर गई और ये बात इस लड़की के भाई ने भी कही है। यहां बड़ी बात यह है कि उस हिंसा और उपद्रव को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी और दिल्ली पुलिस के दावे बिल्कुल अलग है। ये भी बात एक सच्चाई है कि इधर घायल पुलिसकर्मियों की तस्वीर है तो उधर घायल प्रदर्शनकारियों की खबर है। कांग्रेस जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका का आरोप है कि दिल्ली पुलिस ने शांतिपूर्ण ढंग से मार्च निकाल रहे प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज किया। ये भी आरोप है कि पुलिस द्वारा कई प्रदर्शनकारियों को पीटा गया, तस्वीरें आपके सामने है, सड़क पर घसीटा गया। इस हमले में कई प्रदर्शनकारियों को गंभीर चोटें आई। कांग्रेस जनता पार्टी ये भी आरोप लगा रही है कि इस विरोध प्रदर्शन में सोनम वांगचुक की पत्नी के भी बाल खींचे गए, जबकि दिल्ली पुलिस इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है, बेबुनियाद और गलत बता रही है। कांग्रेस जनता पार्टी का यह भी आरोप है कि अगर पुलिस प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज नहीं करती, उनके साथ मारपीट नहीं होती, तो ये प्रदर्शन ऐसा कभी भी नहीं होता। यह भी आरोप है कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों को गुमराह किया। उन्होंने बातचीत के लिए 5 घंटे इंतजार कराया, लेकिन इनकी मांगे नहीं मानी गई। ये भी आरोप है कि जब दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया, तब उनमें कई पुलिसकर्मी सादी वर्दी में आए थे। ये सारे आरोप कांग्रेस जनता पार्टी के हैं, प्रदर्शनकारियों के हैं, जिनके बारे में हमने आपको अभी बताया है। अब आपको ये बताते हैं कि दिल्ली पुलिस क्या दावा कर रही है। पहला दावा यह है कि ना तो संसद मार्च की अनुमति मांगी गई थी, ना ही पुलिस की तरफ से अनुमति दी गई। दूसरा, पुलिस ने पूरे क्षेत्र में धारा 163 लगाई थी, जिसके तहत 5 या उससे ज्यादा लोगों के एक जगह इकट्ठा होने पर रोक थी। पुलिस का आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने इस कानून का पालन नहीं किया और जब उन्हें इसके बारे में बताया गया तो वो तब भी अपने मार्च को वापस लेने के लिए तैयार नहीं हुए। दिल्ली पुलिस ये भी आरोप लगा रही है कि पहले लाठीचार्ज नहीं हुआ था, बल्कि पहले उस पर पथराव हुआ, कई दुकानों पर हमले की कोशिश हुई, जिसके बाद उसने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कड़े कदम उठाए। पुलिस ने शब्दशः कहा कि जिस भीड़ ने उस पर हमला किया वो शायद किसी उद्देश्य से आई थी। हालांकि हम फिर से स्पष्ट करना चाहते हैं कि आरोप पुलिस के हैं, जिन्हें प्रदर्शनकारी पूरी तरह गलत बता रहे हैं। देखिए,

0: पुलिस का यह भी दावा है कि इस हिंसा और पथराव में कुल 118 पुलिसकर्मी घायल हुए। इनमें ज्वाइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, डीसीपी, एडिशनल डीसीपी और एसीपी स्तर के कई अधिकारी भी शामिल हैं। इनमें कुछ पुलिसकर्मियों को पथराव के दौरान चोटें आई, जबकि कुछ पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट और हिंसा की गई। ये आरोप दिल्ली पुलिस खुद लगा रही है। हमारे पास ऐसे 3 वीडियो हैं जिनमें भीड़ में शामिल कुछ लोग पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों पर हमला करते हुए नजर आते हैं। इसमें भी आईटीओ के पास पुलिस और भीड़ के बीच सबसे बड़ा टकराव होता है, जिसमें बेकाबू भीड़ पुलिस को पीछे धकेलने की कोशिश करती है और इसी दौरान कुछ लोग पुलिस वालों पर भी हमला करते हैं। लेकिन ये बात भी साफ साफ कही जानी चाहिए कि पुलिस वालों पर हमला हुआ है तो वैसे ही पुलिस वालों ने भी कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों पर जो आरोप है प्रदर्शनकारियों का उन पर लाठी डंडे चलाए। ये तस्वीरें जो है देखिए, अब तक इन आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है कि प्रदर्शनकारियों की भीड़ में शामिल जिन लोगों ने पुलिस पर हमला किया वो लोग कौन थे। पुलिस ने ही बहुत सारे मामले भी दर्ज किए हैं। बहुत सारे लोग इन्हें कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़ा हुआ बता रहे हैं, लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं कि पुलिस ने खुद इन आरोपों की पुष्टि नहीं की है। पुलिस ने एक वीडियो जरूर डाला है। पुलिस का कहना है कि वो इस बात की जांच करेगी कि हमला करने वाले लोग कौन थे, कहां से जुड़े थे, क्या मकसद था, कहां से आए थे। हिंसा करने वाले ये लोग प्रदर्शनकारी थे या नहीं थे ये भी अभी साफ होना है। इसके लिए आपको पुलिस की जांच का इंतजार करना चाहिए। पुलिस ने इस हिंसा को लेकर कुल 70 लोगों को हिरासत में लिया, लेकिन अब इन सभी लोगों को छोड़ दिया गया है। ये भी आरोप है कि इन लोगों ने कुल 15 से 20 सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ की। हमारे पास ऐसे कई वीडियोज हैं जिनमें मुंह पर कपड़ा बांधे ये लोग दिल्ली पुलिस की गाड़ी को सड़क पर पलटते हुए नजर आ रहे हैं, और इनमें भी कई लोग डंडों से पुलिस की गाड़ियों के शीशे तोड़ते हुए दिखाई दिए हैं। देखिए, यहां पर इस वीडियो को भी देखिए जो कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल का है। पुलिस का आरोप है कि कुछ उपद्रवियों ने यहां पहले एक गाड़ी को अपना निशाना बनाया और उसके बाद इस गाड़ी के ऊपर खड़े होकर हूटिंग की। वहां से गुजरने वाले लोगों को भी उन्होंने टारगेट किया। हालांकि ये लोग जंतर मंतर से ही आए थे या कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक थे, अभी पुष्टि नहीं है। हम बार बार आपसे ये कह रहे हैं कि ये लोग आखिर कौन थे, इसको लेकर एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। जब ये उपद्रव हुआ तब ये भीड़ कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल पर तोड़फोड़ कर रही थी, और इसीलिए ये बात बार बार बतानी जरूरी है कि ये वाकई प्रदर्शनकारी थे या फिर कुछ ऐसे लोग थे जो बाहर से आए थे। अभी इस बारे में पुलिस भी कुछ नहीं कह रही है। देखिए, दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार ने इस हिंसक प्रदर्शन में घायल हुए पुलिसकर्मियों से मुलाकात की और ये कहा कि वर्दी पर लगी हर चोट कर्तव्य के प्रति समर्पण की गवाही देता है। लेकिन जो सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है वो ये है कि आखिर इस प्रदर्शन में शामिल जिन लोगों ने पुलिस पर हमला किया उनके पास पत्थर आए कहां से। तो हमारे पास दो ऐसे वीडियो हैं जो इन सवालों का भी जवाब देते हैं। हालांकि आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कोई ट्रक है जिस पर कुछ पत्थर डाले हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये वीडियो भी दिखाई देता है फुटपाथ पर जो ईंट सुंदरता के लिए लगाई गई थी उन ईंटों को उखाड़ कर उनके बड़े बड़े टुकड़े जो है वो निकाले गए, ये देखिए, और दावा है कि इससे हमला किया गया। अब ये दूसरा वीडियो जिसमें दिखाई देता है कि कुछ लोग दीवार पर लगे सीमेंट पत्थरों को तोड़कर वहां से निकालते हैं और बाद में यही सीमेंट और ईंटों के टुकड़े पुलिस फेंके गए। और अब हम तस्वीरें आपको मंदिर मार्ग थाने की दिखा रहे हैं जहां पर आपको इस वक्त सोनिया गांधी दिखाई दे रही हैं, उनके साथ प्रियंका वाड्रा गांधी भी हैं और पार्टी के नेता। अब कुल मिलाकर इस थाने में कौन कौन से अन्य कांग्रेस पार्टी के नेता हिरासत में लिए गए हैं उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा कि आखिर सोनिया गांधी इसी थाने में क्यों पहुंची है। फिलहाल आपको बता दें ये बड़ी खबर इस वक्त की है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के कई नेता हिरासत में अभी भी हैं और इसीलिए दीपेंदर हुड्डा, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा गांधी, सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस पार्टी की तरफ से वहां पर आपको मंदिर मार्ग थाने में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं जहां पर अंदर की ये तस्वीर अब ऐसा प्रतीत होता है कि दिखाई जा रही है। तो सोनिया गांधी पहुंची है मंदिर मार्ग थाने। आपको बता दें अलग अलग जगहों पर मॉडल टाउन थाना, मंदिर मार्ग थाना, छत्रसाल स्टेडियम, कई जगहों पर कांग्रेस पार्टी के जिन नेताओं को हिरासत में लिया गया है, कांग्रेस ही क्यों, राहुल गांधी के साथ साथ अखिलेश यादव को भी हिरासत में लिया गया, बस में ले जाया गया है, जिनको थाने में रखा गया है उन सभी नेताओं के अभी छूटने का इंतजार है। और ऐसे में ये एक तरह से आप समझिए कि अलग अलग जगहों पर वो हैं तो उस पर पहुंचने के लिए कि आखिर वहां पर क्या हो रहा है और कब कांग्रेस के नेताओं को छोड़ा जाएगा, सोनिया गांधी पहुंची हुई हैं। तो प्रियंका वाड्रा गांधी वहीं पर थाने में थी और वो सोनिया गांधी के साथ बैठी हुई दिखाई दे रही हैं। अब कल सुबह 10 बजे जब कॉकरोच जनता पार्टी ये संसद मार्च निकाल रही थी तब इसमें अभिजीत दीपके, पार्टी प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रंका शामिल नहीं हुए थे। इसके पीछे कॉकरोच जनता पार्टी ये कारण बता रही है कि सरकार ने उनसे बातचीत करने का प्रस्ताव भेजा था जिसके कारण सौरभ दास, आशुतोष रंका इस मार्च में शामिल नहीं हो पाए। बहरहाल आप इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की प्रतिक्रिया आई है जिसमें नितिन नवीन का ये कहना है कि राहुल गांधी ने जो किया है वो गलत है, आज की जो घटना है उसको वो दुर्भाग्यपूर्ण कह रहे हैं, राहुल गांधी ने जो किया वो निंदनीय है। राहुल गांधी पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का हमला, सुनिए क्या कह रहे हैं।
1: आज जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कृत्य किया है वो पूरी तरह से अशोभनीय है, निंदनीय है। नेता प्रतिपक्ष जिस गरिमा का पद है उस पद को भी राहुल गांधी जी गंभीरता से नहीं लेते हैं, इस बात का आज पूरा उनके व्यवहार से दिखा। विरोध जब मर्यादा की हदों को पार कर जाती है तो अराजकता बन जाती है और हम शुरू से कहते रहे राहुल गांधी जी अराजकता के प्रतीक बनकर उभर रहे हैं और जिस प्रकार का अराजकता फैलाने का प्रयास राहुल गांधी उनकी टीम ने किया है वह स्पष्ट संकेत देता है कि यह विरोध की राजनीति नहीं, ये अराजकतावादी राजनीति चायक बनते जा रहे हैं।
0: तो आपने सुना नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए, तस्वीरें हम दिखा सकते हैं क्योंकि आज जब राहुल गांधी वहां पर पहुंचे तो वो अति संवेदनशील हाई सिक्योरिटी जोन में पहुंचे थे। प्रधानमंत्री आवास का वो गेट जो कि सिर्फ प्रधानमंत्री के कैवलकेड के लिए वहां पर रास्ता है, किसी और को वहां पर एक्सेस नहीं है। रेस कोर्स रोड दूसरा साइड है जिससे अक्सर वहां तो ट्रैफिक भी जाता है, वहां से आवाजाही होती है, लेकिन जिस गेट के बाहर ये प्रदर्शन हुआ है उस गेट पर सिर्फ प्रधानमंत्री के कैवलकेड को और पीएम सिक्योरिटी में जो लोग उनके साथ रहते हैं उनको एक्सेस रहता है। और ऐसे में इस अति संवेदनशील सुरक्षित इलाके में आज विपक्ष के इस आंदोलन और विरोध प्रदर्शन को लेकर बीजेपी की तरफ से आप ये आरोप देख रहे थे। देखिए, एक बार फिर से जो बीते दिन का विरोध प्रदर्शन है उस पर पहुंचते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे अलग अलग तरीके से आपने देखा कि कुछ नेता वहां पर दिखे कॉकरोच पार्टी के, कुछ नहीं दिखे। अभिजीत जो दीपके हैं उन्होंने अपने प्रदर्शनकारियों से माफी भी मांगी, ये कहा कि सरकार ने उनका काफी समय बर्बाद किया और रणनीति के तहत उन्हें उलझाए रखा। देखिए, हुआ ये कि दोनों ही सौरभ दास और रंका दोनों पहुंचे हुए थे बात करने के लिए जेपी नड्डा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से। अब ऐसे में जब वो बच्चे, वो छात्र जो आंदोलन कर रहे थे सड़क पर, वो तो सड़क पर रहे लेकिन ये नेता उतनी देर नदारद रहे, तो आज जमकर इन सभी को घेरा जा रहा था कि भाई आप लोग कहां थे जब इस तरह से पुलिस लाठियां बरसा रही थी, तो नेता कहां थे। तो उसी पर ये लोग सफाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि एक रणनीति के तहत सरकार ने उनको फंसा कर रखा। उन्होंने कहा कि अब वो ऐसा नहीं होने देंगे, सरकार को उनसे बात करनी है तो सरकार को अब खुद जंतर मंतर पर आना होगा। सुनिए,
2: ऑर्डर किसने दिए थे? क्या पीएम और अमित शाह के ऑर्डर के बिना लाठीचार्ज कराया दिल्ली पुलिस ने? ये पीएम के ऑर्डर पर हुआ है या अमित शाह के ऑर्डर पर हुआ है? पीएम को बोला ये फालतू भाषण ना दे, अगर आपको सही में छात्रों की चिंता है तो आए जंतर मंतर पर मिले इन छात्रों से जिनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ है। इस घोर पाप का घोर पापी कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। जब उसका इस्तीफा हम लोग मांग रहे थे तो नरेंद्र मोदी ने लाठियां बरसाई, टीयर गैस बरसाया स्टूडेंट्स पर, तो ये भाषण से नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री को धर्मेंद्र प्रधान को हटाना पड़ेगा।
0: कॉकरोच जनता पार्टी ने आज विजेता दहिया को पार्टी के प्रवक्ता पद से हटा दिया है। कारण यह बताया गया है कि जब पार्टी के समर्थक पुलिस की कार्रवाई के बावजूद संसद तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे तब विजेता दहिया को कुछ लोगों ने मेट्रो में जाते हुए देखा। उनसे ये पूछा कि जब प्रदर्शनकारी लाठी खा रहे हैं तब पार्टी प्रवक्ता होते हुए वो मेट्रो में क्या कर रहे हैं? देखिए,
3: आप मुझे बताइए सिंपल, आप क्यों नहीं गए? मैं जंतर मंतर पे भी आज क्यों नहीं गया? आप यहाँ क्यों घूम रहे हैं मुझे ये तो बताइए। वहां सब लाठी खा रहे हैं और आप यहाँ घूम रहे हो, है? ये कौन सा सपोर्ट कर रहे हो? ये कौन सा सपोर्ट कर रहे हो आप, है? बाबा को गाली दे रहे हो, है? किस लिए? क्या आप यहाँ कर रहे हो? आप मुझे कितना बताइए। नहीं नहीं नहीं, मैं भी नहीं, आप गाली दे रहे हो और आप यहाँ क्या कर रहे हो आप? अच्छा,
4: सर फोड़ा गया, हड्डी तोड़ी गई, करंट लगाया गया और जो कुछ सरकार कर सकती थी सरकार ने दमन करने की कोशिश की है। लड़कियों के कपड़े फाड़े हैं, क्या ये लोकतंत्र में उम्मीद कर सकता है किसी सरकार से? और जब शांतिपूर्ण आंदोलन और प्रदर्शन चल रहा उस समय, इसलिए हमारी मांग है कि सरकार जो छात्र हैं, युवा हैं, उनकी मांगों को मान लें। सदन में यही मुद्दा उठाएंगे।
0: तो अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे। अखिलेश यादव बस में इस वक्त मौजूद दिखाई दे रहे हैं, मुझे लगता है कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं क्योंकि इन सबको ले जाया गया है। और उनका ये कहना था कि छात्रों की जो भी मांगे हैं उसको सरकार माने और वो इस मुद्दे को कल फिर से संसद में उठाने वाले हैं। आज पंजाब हरियाणा के किसानों ने भी केंद्र सरकार के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित कृषि व्यापार समझौते के विरोध में किसान संगठनों ने दिल्ली के किसान घाट पर महापंचायत आयोजित करने का ऐलान किया था, लेकिन दिल्ली मार्च कर रहे किसानों का आंदोलन फिलहाल टल गया है। तो ये उसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पटियाला के शंभू बॉर्डर पर डटे हजारों किसान और प्रशासन के बीच बातचीत के बाद सहमति बन गई। टकराव से बचते हुए किसान नेता सरवन सिंह पंढेर और हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा के बीच बातचीत हुई और दो मुख्य मांगों पर सहमति बनी। पहली, गुरनाम सिंह चडूनी समेत हिरासत में लिए गए नेताओं की रिहाई की जाए और दूसरी, 8 से 10 दिनों के भीतर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से उनकी मुलाकात कराई जाएगी। अब अगली खबर का रुख करते हैं। बात करेंगे अगली खबर की जिसने दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है और इतनी सारी खबरें देश के अंदर की हैं, लेकिन बावजूद इसके इस खबर की अहमियत को समझते हुए आपको बताना जरूरी है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के लिए अमेरिकी और ईरान, जो अमेरिका है और ईरान है, वो एक दूसरे पर इस वक्त टूट पड़े हैं। खबर है कि दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग में से एक बाबा अल बंदेब की नाकेबंदी की जा रही है। यमन के हूती आतंकियों ने सऊदी अरब की नाकेबंदी का ऐलान किया है और इस ऐलान का मतलब है कि वो बाबल मंदेब को बंद करेंगे। ये काम वैसे ही होगा जैसे ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के साथ किया था। ये तेल के मद्देनजर अगर आप देखिए, सारा व्यापार के मद्देनजर, तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रूट है, इसका बंद होना यानी एक बार फिर से हम सबके जीवन पर असर पड़ सकता है। बाबा अल मंदेब स्ट्रेट वैसे ही है जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ईरान और ओमान के बीच है जो आप देख रहे हैं, और उससे करीब 2500 किलोमीटर दूर बाबा अल मंदेब स्ट्रेट है जो यमन और जिबूती के बीच है। अगर आप मैप पर देख रहे हैं तो बाबा अल मंदेब करीब 30 से 32 किलोमीटर चौड़ा स्ट्रेट है जो अदन की खाड़ी और लाल सागर को जोड़ता है। इसका बंद होना, बाबा अल मंदेब एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है जो एशिया और यूरोप को जोड़ता है, और खास तौर पर इसकी अहमियत बढ़ी है जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद है। यूरोप जाने वाले जहाज हिंद महासागर से अदन की खाड़ी, फिर बाबा अल मंदेब से गुजरते हुए लाल सागर में पहुंचते हैं, फिर यहां से स्यूएज नहर से होते हुए भूमध्य सागर में पहुंचते हैं और यूरोप के देशों की ओर चले जाते हैं। यमन के हूती आतंकियों ने सऊदी अरब की नाकेबंदी करने के लिए बाबा अल मंदेब को बंद करने का ऐलान किया है। हूती आतंकियों ने यह ऐलान ईरान पर अमेरिकी हमलों और यमन के बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर पिछले दिनों हुए हमलों की वजह से किया है। कुछ दिन पहले सऊदी अरब के अभा से यमन के हवाई अड्डों पर बमबारी की गई और इसीलिए अब हूती आतंकियों ने सऊदी अरब से जुड़े जहाजों की नाकेबंदी शुरू कर दी है। दुनिया के कुल व्यापार का जानते हैं करीब 12% बाबल मंदेब से होता है, यानी करीब 97 लाख करोड़ रुपए का व्यापार यहीं से होता है। यही नहीं, दुनिया के 12% कच्चे तेल का व्यापार और 8% एलएनजी व्यापार भी इसी रास्ते से होता है। ईरान युद्ध के बाद से समुद्री मार्ग से हर दिन करीब 71 लाख बैरल कच्चे तेल की सप्लाई हो रही है। भाई एक स्ट्रेट बंद है, यहां से सब हो रहा था, यह भी बंद हो जाएगा, और अगर ये होता है तो कच्चे तेल की सप्लाई पर जबरदस्त असर पड़ेगा, उससे उसके दाम तेजी से बढ़ने का डर फिर सामने आ गया है। इस नाकेबंदी का सऊदी अरब पर बड़ा असर होगा। इसको आप इस तरह से समझिए कि बाबा अल मंदेब के बंद होने से इस मार्ग से जाने वाले व्यापारिक जहाजों को अफ्रीकी महाद्वीप में से घूम कर जाना होगा। जहाजों को हिंद महासागर से अफ्रीकी महाद्वीप पार करते हुए फिर महासागर से होते हुए जाना होगा और फिर वहां से यूरोप और अन्य देशों में। अब इसीलिए कीमतें फिर से बढ़ने का आसार लग रहा है। सऊदी अरब के लिए तो ये और भी मुश्किल स्थिति होगी क्योंकि सऊदी अरब तक जाने वाले जहाजों को अटलांटिक महासागर से फिर भूमध्य सागर जाना होगा जहां से वो स्यूएज नहर से होते हुए लाल सागर में पहुंचेंगे, तब जाकर वो सऊदी अरब जा पाएंगे। मतलब ये है कि बाबा अल मंदेब के बाद के बंद होने से समुद्री व्यापार खर्चीला भी हो जाएगा, ज्यादा समय भी लगेगा, यानी कीमतें बढ़नी तय है। बाबा अल मंदेब के बाद बंद होने से सऊदी अरब का समुद्री व्यापार लगभग पूरी तरह के ब्लॉक होने की स्थिति में आ जाएगा क्योंकि उसके एक छोर पर लाल सागर है और दूसरे छोर पर फारस की खाड़ी है। दोनों ही छोर पर जगह जंग की वजह से नाकेबंदी है। इस साल अप्रैल से लेकर अब तक सऊदी अरब ने यानबू बंदरगाह से 45 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल की सप्लाई की है जिसमें उसका 70% कच्चा तेल बाबा अल मंदेब से एशियाई देशों को सप्लाई किया गया है। ईरान युद्ध की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद है, सऊदी अरब को पहले ही बहुत नुकसान हो रहा है, इसी वजह से उसने अपना एक वैकल्पिक मार्ग अपनाया था जो लाल सागर की तरफ था। इस बीच आपको बताते हैं एक बार फिर से आज की बड़ी खबर पर लौट रहे हैं क्योंकि बड़ी खबर आ रही है कि छत्रसाल स्टेडियम से राहुल गांधी को इस वक्त छोड़ दिया गया है। हम कुछ ही देर में आपको सुनाएंगे प्रियंका गांधी ने भी क्या कहा है, लेकिन राहुल गांधी छत्रसाल स्टेडियम से छोड़े गए हैं, हिरासत से रिहा किए गए हैं और जो आज डिटेन किया गया था इन सभी को उनमें वो निकल गए।
5: हाँ हेलो, आओ फ्रेम फ्रेम
0: भी निकल गई हैं और हिरासत से दोनों ही रिहा हो गए हैं। कुछ देर पहले उनकी तस्वीर आई थी, सोनिया गांधी उनसे मिलने पहुंची थी और वो साथ बैठे हुए थे और अब प्रियंका वाड्रा गांधी को भी छोड़ दिया गया है। हम आपको सुना देते हैं प्रियंका वाड्रा गांधी ने छूटने के बाद क्या कहा है। अब आइए आपको लिए चलते हैं, राहुल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल, प्रियंका वाड्रा गांधी, राहुल गांधी हिरासत से रिहा किए गए हैं।
6: देखिए, मैं मौजूद हूं मंदिर मार्ग थाने के बाहर और मैं ये कंफर्म कर सकता हूं कि प्रियंका गांधी वाड्रा को यहां से डिटेंशन से छोड़ दिया गया है।
0: थोड़ा कैमरा को बता दे कि उधर की तस्वीरें दिखा दे राहुल, राहुल थोड़ा सा तस्वीरें दिखा दे।
6: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहूंगा। देखिए, ये दीपेंद्र हुड्डा है और ये यहाँ से निकलकर जा रहे हैं। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो खासे आक्रोशित भी हैं और एनर्जाइज भी हैं, क्योंकि जिस प्रकार से सोनिया गांधी बहुत दिनों के बाद हमको देखने को मिली, वो यहाँ पर पहुंची थी, तो उसके बाद यहाँ प्रियंका गांधी ने बाहर आकर मीडिया से बातचीत की। उनका साफ तौर पर ये कहना कि सरकार को इंगेज करना चाहिए था छात्रों को और कल जो घटा वो इजिली अवॉइडेबल था और हमारे पास कोई और चारा नहीं बचा था, क्योंकि हम लगातार सरकार से ये मांग कर रहे थे कि आप इस पर चर्चा कराइए और जब सरकार नहीं मानी तब मजबूरन हम लोग प्रधानमंत्री के आवास के बाहर हमें धरना देने पे मजबूर होना पड़ा। और आप देखिए, सुबह से ही जो कुछ घटा है वो पूरी तरीके से अप्रत्याशित है। दो दो नेता विपक्ष, दो दो मुख्यमंत्री, 100 सांसद धरने पर बैठ जाएं प्रधानमंत्री के घर के बाहर, उनके बाद वो डिटेन कर लिया जाए और यहाँ पर प्रियंका गांधी को डिटेन किया गया था, राहुल गांधी को छत्रसाल जो स्टेडियम है वहां पर डिटेन किया गया था, मॉडल टाउन, इसके अलावा जो बाकी के सांसद हैं उनको किंग्सवे कैंप में डिटेन किया गया था। और आप देखिए, अभी यहाँ पुलिस का भारी जमावड़ा यहाँ पर अभी मौजूद भी है और लगा यहाँ पर बहुत ज्यादा कियोस था, धक्का मुक्की थी, क्योंकि जाहिर है जो जैसे ये खबर फैली कि सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी यहाँ मौजूद है, पूरे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं आसपास के इलाकों से वो यहाँ पहुंचे, नारेबाजी शुरू हुई, धरने पर बैठे कांग्रेस के कार्यकर्ता इस डिटेन के खिलाफ। उनका साफ तौर पर यह कहना था कि सरकार को चाहिए कि वो डायलॉग ओपन करे विपक्ष के साथ, बच्चों के साथ। और तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आज कांग्रेस ने ये साफ संदेश दिया है कि वो छात्रों के साथ मजबूती से खड़ी है और
7: वो एक जेन्युइन इशू को लेके वो जो उनके साथ हो रहा है वो उसका दुख लेकर, गुस्सा लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम सारे, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी आवाज हम ऊंची करें और उनकी आवाज हम बुलंद करें और उनके सपोर्ट में हम खड़े हैं, क्योंकि उनके साथ जो कल हुआ वो एकदम गलत है। ये एक लोकतंत्र है, इट्स अ डेमोक्रेसी। In a democracy, right to protest, it's a fundamental right. Nobody has the right to protest. क्यों नहीं? जहाँ पे जरूरत होगी वहाँ हम आवाज उठाएंगे।
8: राहुल गांधी का डिटेंशन जो बयान दे रहे हैं, वो डिमांड उनका पहले कुछ और चाहिए था, फिर उन्होंने बोले कि रेजिग्नेशन चाहिए धर्मेंद्र प्रधान का। तो उनका डिमांड जो है वो बदला था प्रोटेस्ट के दौरान, जब पीएम हाउस के बाहर वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि उनका डिमांड पहले कुछ और था, फिर डिमांड चेंज हो गया।
7: हमारे डिमांड बहुत स्पष्ट है और हम शुरू से ही डिमांड कर रहे हैं, जो एजुकेशन सिस्टम एकदम ब्रोकन है उसको हमें दुरुस्त करना है, उस सिस्टम को ठीक करना है। उसके लिए आप डिस्कशन करो, आप धर्मेंद्र प्रधान, आपको या तो मेरी बात सुनिए, धर्मेंद्र प्रधान जी को रिजाइन करना है, एक डिस्कशन होना चाहिए पार्लियामेंट, और जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी सुनवाई होनी चाहिए।
0: तो पुलिस की हिरासत से निकलने के एन पहले प्रियंका वाड्रा गांधी ने ये तमाम बातें वहां पर कही हैं। इस खबर पर हमारी कवरेज लगातार जारी है, हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
11: दिस इज द साउंड ऑफ लूसी स्टेइंग ऑन टॉप ऑफ हर स्पेंडिंग। यू सी, इवन दो शी इज बाइंग अ न्यू पेयर ऑफ जींस, she knows that it fits within her monthly budget. Because Wells Fargo will send an alert if her balance drops below her set amount. Yep, nothing gets past Lucy. Or Wells Fargo, for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
12: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
13: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
14: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts, Just favorite your teams and start listening.
10: Sokudo.
15: क्रिकेट में हर खिलाड़ी का अलग रोल होता है। कोई विकेट कीपर, कोई फील्डर, कोई बॉलर, तो कोई बैट्समैन होता है। और जब सब एक साथ मिलकर खेलते हैं तब बनती है कंप्लीट टीम। जैसे पीएनबी वन ऐप, जिसमें फंड ट्रांसफर्स हो या अकाउंट ओपनिंग, लोन हो या एफडी, सब कुछ है जो बनाता है इसे कंप्लीट बैंकिंग ऐप।
16: पीएनबी वन ऐप, बैंकिंग का कैप्टन।
17: आगे आगे,
18: अरे उधर
17: उधर,
18: करेक्ट करेक्ट,
19: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
20: वी आर ओवर जिमी।
21: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।

0: समेत सभी नेताओं को पुलिस ने किया रिहा। पीएम के घर के सामने 3.5 घंटे तक चला प्रदर्शन। हाई वोल्टेज हंगामे के बाद पुलिस ने जबरन हटाया। नई दिल्ली के मंदिर मार्ग थाने में कांग्रेस नेताओं ने से जाकर मिली सोनिया गांधी। रिहाई के बाद बोली प्रियंका, बच्चों की बात क्यों नहीं सुन रही है सरकार। मोदी सरकार पर राहुल प्रियंका का बड़ा हमला, लोकतंत्र के लिए बताया खतरनाक, जितेंद्र सिंह का आरोप। नेता विपक्ष ने बदली अपनी बात, नितिन नवीन बोले उनका व्यवहार निंदनीय। राहुल के धरने को आपने बताया बीजेपी से मिली भगत, कहा ये सीजेपी के प्रदर्शन को कमजोर करने की साजिश, आतिशी ने किया कटाक्ष, क्या जुगलबंदी है। और संसद हंगामे के बीच पीएम ने एनडीए मीटिंग में दिया कड़ा संदेश, बोले नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ किसी कीमत पर नहीं होगा बर्दाश्त, पेपर लीक पर लिया कड़ा एक्शन।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं, आज तक आप देख रहे हैं दस्तक। और आज दस्तक में हम कांग्रेस और विपक्ष का हाई वोल्टेज ड्रामा हंगामा आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। वो बड़ी खबर हम आपको बता दें, विपक्ष के सभी नेता हिरासत से छोड़ दिए गए हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और जितने भी विपक्ष के नेता वहां पर इस प्रदर्शन में शामिल थे, जिन्हें हिरासत में लिया गया था, उन सभी को अब से कुछ देर पहले छोड़ दिया गया है। और प्रधानमंत्री के घर के बाहर इन सभी ने धरना देना शुरू कर दिया था, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया था। हिरासत में लेने के बाद इन सभी को अलग अलग जगह रखा गया था, लेकिन बस अब से कुछ ही देर पहले आप कह सकते हैं कि इन सभी लोगों को, जिनमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी शामिल हैं, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, इन लोगों को छत्रसाल स्टेडियम में रखा गया था। राहुल गांधी और अखिलेश यादव दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में, वहां पर इन्हें हिरासत में लिया रखा गया था। इसी तरह प्रियंका गांधी को संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में हिरासत में रखा गया था, वो वहां से सभी को अब से कुछ पहले छोड़ दिया गया है। सोनिया गांधी उनसे मिलने पहुंची थी, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब इन लोगों को हिरासत में लिया गया था। सीजेपी
1: महंगाई बढ़ रही है तो इसका मतलब निवेश नहीं आ रहा है। आप दुनिया में किस देश से तुलना करना चाहते हैं? आप प्रति व्यक्ति आय क्या समझते हो? किसान अभी और परेशान होगा क्योंकि खाद नहीं है उसके पास और डीएपी नहीं है, जो सरकार किसान को खाद न दे पाए। और फिर यहाँ तो किसान अपनी खेती बटाई पे देता है।

0: आप सोचिए, जो किसान बटाई पे ले लेगा खेती, उसको खाद और डीएपी कौन देगा? अच्छा, खाद और डीएपी कौन देगा? तो जो खाद नहीं दे पा रहे हैं, डीएपी नहीं दे पा रहे हैं, तो जो बोरी में चोरी कर रहे हैं।
1: मौसमी सिंह हमारी संवाददाता इस पूरे प्रदर्शन को कवर कर रही है, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मौसमी, रिहा किए जाने के बाद इन नेताओं का अगला कदम क्या होगा? क्या ये प्रदर्शन अब खत्म या कुछ और जानकारी मिल पाई है आपको?
2: देखिए सईद, ये बात तो तय है कि कांग्रेस इस पूरे मसले को संसद में जोरदार तरीके से उठाएगी। हालांकि आप देखिए कि जिस तरह से अखिलेश यादव, सुप्रिया सुले भी जुड़े, तो पूरा विपक्ष इस मसले को जोरदार तरीके से उठाने वाला है। और कल इस पर जो है लगातार सरकार, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच रार देखने को मिलेगी। जिस तरीके से आपने देखा कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि राहुल गांधी अपनी बात से पलट गए। राहुल गांधी पहले राजी थे कि कल चर्चा हो जाएगी तो सब ठीक है, लेकिन फिर कहने लगे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। तो इस पर भी कांग्रेस का क्या स्टैंड है, हमें ये भी स्पष्ट पता चलेगा कल। और कांग्रेस एक बड़ा प्रदर्शन करने का की योजना बना रही है।
1: इस समय तो सब समाप्त, ये बताइए आज अभी की स्थिति मौसमी, क्या इस समय हिरासत से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव सबको छोड़ा गया है, तो ये गए, अब कोई सड़क पर नहीं है, कोई कार्यकर्ता नहीं है, कोई कुछ नहीं है, अभी की स्थिति क्या है?
2: बिल्कुल, देखिए सईद, इनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया था। और ये अमूमन ये प्रोटोकॉल होता है या ये एसओपी होता है कि आप कुछ घंटे में डिटेंशन पे रख के छोड़ देते हैं। तो सभी नेताओं को छोड़ा जा चुका है। इंटरेस्टिंग था कि किस तरीके से सियासी रूप से आप देखेंगे कि सोनिया गांधी भी मंदरमार थाने में पहुंच जाती है, जहां पे प्रियंका गांधी को रखा जाता है।
1: मौसमी, हम दोबारा आपसे बात करते हैं, लेकिन आज इस धरने में प्रियंका गांधी भी शामिल थी, उन्हें भी हिरासत में लिया गया। सोनिया गांधी उनसे मिलने पहुंची, क्या कहा सुनिए।
3: स्टूडेंट्स के साथ जो हमारे बच्चे, हमारे युवा हैं, हमारे देश के भविष्य हैं, उनकी बात सुनने में क्या हर्ज थी? वो एक जेन्युइन इशू को लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो जो उनके साथ हो रहा है, वो उसका दुख लेकर, गुस्सा लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम सारे, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी आवाज हम ऊंची करें और उनकी आवाज हम बुलंद करें और उनके सपोर्ट में हम खड़े हैं, क्योंकि उनके साथ जो कल हुआ वो एकदम गलत हुआ। ये एक लोकतंत्र है, इट्स अ डेमोक्रेसी। इन अ डेमोक्रेसी राइट टू प्रोटेस्ट इट्स अ फंडामेंटल राइट, नोबडी हैज द राइट टू प्रोटेस्ट।
0: एक बात तो देश की जनता को समझ में आ गई है कि जो सरकार नीट की परीक्षा, जो सरकार नीट की परीक्षा को भी नहीं करा सकती है, और उसी सरकार की फोर्स का नाकाम होना कि इतनी बड़ी संख्या में युवा छात्र नौजवान आए, उनके साथ जो व्यवहार हुआ है, उनके सरों पे लाठी मारी है, उनके हाथ पैरों में चोट आई है, कईयों की हड्डियां टूटी हैं, कई लोग एडमिट हुए हैं, जो हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, लड़कियां हैं, उनके कपड़े फाड़ दिए, और जितना पुलिस अन्याय कर सकती थी की थी।
1: नीट पर संसद में चर्चा की मांग भी राहुल गांधी की तरफ से उठाई जा रही थी, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी थी, और इसीलिए प्रदर्शन भी हो रहा था। मौसमी सिंह हमारे साथ लगातार हैं। मौसमी, कल संसद में तो हंगामा होगा, लेकिन क्या सड़क पर उतरने का कांग्रेस, समाजवादी या अन्य विपक्षी दलों का कोई प्लान तो नहीं है?
2: देखिए सवाल यही है कि क्या कोई आइस ब्रेकिंग बीच में होती है, बीच का रास्ता निकलता है, क्योंकि एक तरफ मॉनसून सत्र चल रहा है, एक तरफ जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी बैठे हैं, दूसरी तरफ विपक्ष ने भी वही मांगे दोहरा दी हैं, और राहुल गांधी ने कह दिया है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम में हम नहीं मानेंगे। और ऐसे में सरकार क्या करती है, ये बड़ा सवाल है। सरकार ने बोला कि राहुल गांधी अपनी बात से मुकर गए और वो कह रहे थे कि हमको यहां से उठा लो। तो इस पूरे मसले को लेके अब विपक्ष जो है चर्चा की मांग कर रहा है सईद, की संसद में चर्चा होनी चाहिए पूरे मसले पर, और मुझे लगता है कि कल भी इस पर स्थगन प्रस्ताव दिया जाएगा।
1: बहुत धन्यवाद मौसमी सिंह, हमारी संवाददाता जानकारी दे रही थी। तो संसद का मॉनसून सत्र शुरू होगा तो दिल्ली में इतना बड़ा राजनीतिक भूचाल आ जाएगा, ये आपने हमने किसी ने भी नहीं सोचा होगा। मॉनसून सत्र के पहले दिन कॉकरोच जनता पार्टी के जंतर मंतर से संचित चलो मार्च पर हंगामा, पुलिस से भिड़ंत, और अगले दिन प्रधानमंत्री घर के पास कांग्रेस का हाई वोल्टेज हंगामा और धरना प्रदर्शन। पुलिस का राहुल गांधी को धरने से उठाना, प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं और अखिलेश यादव समेत विपक्ष के दिग्गजों को हिरासत में ले लेना। दिल्ली से लेकर पूरे देश में इसी पर पूरे दिन भर आज चर्चा होती रही। नीट पेपर लीक पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग से शुरू हुआ यह विरोध प्रदर्शन कैसे प्रधानमंत्री आवास यानी कि सात लोक कल्याण मार्ग तक पहुंच गया, दिन भर की हर एक खबर एक हलचल, आइए हम आपको दिखाते हैं।
4: पेपर लीक की लड़ाई पीएम आवास पर धरने तक आई। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर विपक्ष अड़ा, सड़क पर एक तूफान खड़ा। कांग्रेस का हाई वोल्टेज हंगामा, पुलिस ने धरना प्रदर्शन से हटाया। गांधी, प्रियंका और अखिलेश यादव समेत कई नेता हिरासत में। प्रधानमंत्री आवास के पास विपक्ष का हंगामा, पूरी रणनीति क्या है? दिल्ली की सत्ता के सबसे ताकतवर केंद्र यानी सात लोक कल्याण मार्ग यानी प्रधानमंत्री आवास के बहाने पर जब देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी अपने दिग्गजों की पूरी फौज के साथ सड़क पर उतरती है तो ऐसा हंगामा मचता है कि दिल्ली से लेकर पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत कांग्रेस और विपक्ष के कई बड़े नेताओं को न सिर्फ धरने से उठाया बल्कि इन सबको हिरासत में भी ले लिया और उन्हें बस में भर कर थाने ले गयी।
2: यहाँ पे जो तस्वीर 7RCR यानी कि लोक कल्याण मार्ग में घट रही है, पीछे हमारे देखिए अखिलेश यादव और राहुल गांधी को कुछ इस तरीके से बस में भर के ले जाया जा रहा है। अखिलेश यादव हाथ देने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी डिटेन कर लिया गया है। मुकुल वासनिक वहाँ पे नजर आ रहे हैं और तमाम जो नेता है वो यहाँ पे नारेबाजी लगाते हुए इस बस पे आगे जाते हुए आइए।
4: आपको बता दें कि जब राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं को प्रधानमंत्री आवास के पास धरने से उठाने के लिए पुलिस ने घेरा बनाया और राहुल गांधी को हटाने की कोशिश की तो वो जमीन पर लेट जाते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे राहुल गांधी सड़क पर लेटे हुए हैं और पुलिस के साथ उनकी काफी देर तक जोर आजमाइश चलती रहती है। आखिर में पुलिस धरने पर बैठे नेताओं को उठाकर ले जाती है।
5: डेमोक्रेसी इन इंडिया इज हैपनिंग राइट नाउ। डेमोक्रेसी इन इंडिया इज हैपनिंग राइट नाउ।
6: कायर हैं, डरते हैं,
7: बात कर रही है, बात कर रही है।
6: हम नहीं डरते इनसे, ये हमसे डरो यार।
7: अरे बात कर रही है वो यार।
4: आपको बता दें कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव को दिल्ली पुलिस हिरासत में लेकर अलग अलग थानों में जाती है। इस बीच दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर की सुरक्षा भी बढ़ा दी जाती है, हर गेट पर पुलिस की भारी तैनाती कर दी जाती है।
8: गुंडई और राजनीति गुंडागर्दी की उसका अंत यहाँ नहीं है, ये एक नई क्रांति की शुरुआत है राहुल गांधी के नेतृत्व में। ये क्रांति अब बड़ी ज्वाला बनकर धधकेगी।
9: आज फिर से दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्री के इशारे पर, प्रधानमंत्री के इशारे पर बहुत ही कायरता पूर्वक तरीके से हमारे नेता राहुल गांधी को घसीटकर हिरासत में लिया, हमारी नेता प्रियंका गांधी को बदतमीजी कर और घसीटकर बस में जबरदस्ती ठूसा।
4: हिरासत में लेने के बाद राहुल गांधी का पहला एक्स पोस्ट आता है जिसमें वो लिखते हैं कि मोदी जी हर जोर आजमा लो, सारी ताकत लगा लो, छात्रों के इंसाफ की ये लड़ाई अब रोके ना रुकेगी। पीएम आवास के पास दोपहर करीब 3:30 बजे से शुरू हुआ धरना प्रदर्शन शाम 6 बजे तक एक बड़े सियासी हंगामे में तब्दील हो जाता है। अब उसकी पूरी टाइमलाइन आपको दिखाते हैं। दोपहर करीब 3:30 बजे पीएम आवास के पास कांग्रेस का धरना। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, बाकी सांसदों नेताओं के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर से बैठक करके अचानक मार्च करते हुए निकल पड़ते हैं और 7 लोक कल्याण मार्ग पर यानी प्रधानमंत्री के आवास वाली सड़क पर पीएम आवास से कुछ दूरी पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत बाकी कांग्रेस के दिग्गज नेता धरने पर बैठ जाते हैं। राहुल गांधी जब धरना देते हैं तो वहां पर देखा गया कि वो सांकेतिक रूप से हथकड़ी वाला प्रदर्शन करते हैं, जहां राहुल गांधी समेत दूसरे कांग्रेस नेता हाथ में लॉक लगाने वाला थ्रेड बांध लेते हैं। अब राजनीतिक सवाल ये आता है कि अचानक पीएम आवास के पास पहुंचकर राहुल गांधी धरना क्यों देते हैं, उनकी मांग क्या है?
10: हमारे नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में ने इस मांग की है, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में ये मांग की है। गृहमंत्री आए, दोनों सदनों में बयान दे, उस पर चर्चा हो। जिस तरीके से हमारे लोकतंत्र और हमारे संविधान पर हत्या हो रही है, जो हमारे युवाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उनके भविष्य पर अंधेरा छाया हुआ है, उस पर एक बयान दे। और हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग हम 20 करीब 45 दिन से कर।
4: लेकिन जब पीएम आवास के पास ही राहुल गांधी धरना देने लगते हैं तो इन सब के बीच दोपहर 3:45 पर राहुल गांधी को धरने से हटाने की अपील। अचानक दिल्ली पुलिस वहां पहुंचती है और राहुल गांधी से धरने से हटने के लिए कहा जाता है, लेकिन वो इनकार कर देते हैं। सरकार की तरफ से जितेंद्र सिंह भी राहुल गांधी से बातचीत करने के लिए पहुंचते हैं और फिर कांग्रेस के नेताओं को पुलिस हिरासत में लेकर पीएम आवास के पास वाले धरने से हटाना शुरू कर देती है। शाम 4 बजे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह राहुल गांधी से बात करने पहुंचते हैं। जी हां, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह खुद राहुल गांधी से बात करने पहुंच जाते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को लौटना पड़ता है। वो कुछ बोलते नहीं हैं। पता ये चलता है कि राहुल गांधी ने धरने से हटने से मना कर दिया है।
9: छात्रों को, युवाओं को न्याय नहीं मिल जाता, कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता, हम लोग यहाँ से नहीं हिलने वाले। दिन हो या रात, नरेंद्र मोदी को बाहर आना पड़ेगा। पूरी कांग्रेस पार्टी जो जहाँ है, यहाँ आए और धरने पर बैठ जाए। नहीं हिलेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा।
4: शाम 5:18 राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। राहुल गांधी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं और लिखते हैं कि छात्रों पर हमला हर भारतीय परिवार पर हमला है। प्रधानमंत्री मोदी को लगता है कि वो बिना जवाब दिए, बिना किसी नतीजे का सामना किए बच निकलेंगे, नहीं कर पाएंगे, इस बार तो बिल्कुल नहीं। इसके बाद राहुल गांधी ने इस पोस्ट में अपील कर दी कि जो भी मानता है कि छात्रों को न्याय मिलना चाहिए, वो पीएम आवास के सामने धरने में शामिल हो। कांग्रेस के इस धरने में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल हो जाते हैं। उनके साथ विपक्ष के कई और नेता भी इस धरना प्रदर्शन में जुड़ते हैं। आज तक ब्यूरो।
1: बड़ी बात यह है कि पीएम आवास के पास से धरना प्रदर्शन हटवाने के लिए और बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और गृह सचिव गोविंद मोहन राहुल गांधी से मिलने जाते हैं, फिर भी बात नहीं बनती। जितेंद्र सिंह ने बताया कि राहुल गांधी की मांग थी कि नीट पर संसद में चर्चा हो। राहुल गांधी की यह मांग मान ली गई थी, लेकिन राहुल गांधी अपनी बात से मुकर गए। उसके बाद राहुल गांधी बोले कि अब उनकी दो मांगे हैं, पहली नीट पर संसद में चर्चा हो और दूसरी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। सरकार कह रही है कि जब छात्रों के हर मुद्दे पर संसद में हम चर्चा के लिए तैयार हैं तो फिर कांग्रेस मुकर क्यों रही है?
11: प्रधानमंत्री आवास के पास लोक कल्याण मार्ग पर दोपहर 4:15 बजे शुरू हुए कांग्रेस के धरने में प्रियंका गांधी नारे लगवाती हैं। तो इस बीच इस सवाल का जवाब सब जानना चाहते हैं कि आखिर सरकार ने तुरंत जब केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को राहुल गांधी से बात करने भेजा तो राहुल क्यों नहीं माने? यहां पर आखिर क्या बात हुई? जवाब जो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दिया है उसे उनकी सोशल मीडिया पोस्ट से देखिए। जितेंद्र सिंह ने लिखा कि कुछ समय पहले पता चला कि कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल गांधी प्रियंका गांधी अचानक अकबर रोड के पास एक जगह पर धरने पर बैठ गए। जितेंद्र सिंह लिखते हैं कि सरकार ने उन्हें और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन को राहुल गांधी से बात करने के लिए भेजा। जितेंद्र सिंह ने राहुल गांधी से अनुरोध किया कि वो अपना धरना खत्म कर दें क्योंकि ये जगह धरने की नहीं है, यहाँ पर धरना देने से आम लोगों को काफी मुश्किल होगी। राहुल गांधी ने ये मांग रखी थी कि अगर सरकार संसद में नीट और उससे संबंधित आंदोलन के साथ जुड़े सभी विषय पर चर्चा के लिए मान जाती है तो वो अपना धरना तुरंत खत्म कर देंगे। कुछ ही देरी में सरकार के शीर्ष नेतृत्व की अनुमति लेने के बाद राहुल गांधी को ये भरोसा जितेंद्र सिंह की तरफ से दिया गया कि उनकी मांग को मान लिया गया है और सरकार नीट और उससे संबंधित आंदोलन के साथ जुड़े सभी विषय पर संसद में चर्चा करने को तैयार है। जितेंद्र सिंह के मुताबिक राहुल गांधी को जब ये सूचना पहुंचाई गई तो उन्होंने कहा कि वो इतने पर नहीं मानेंगे बल्कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का भी भरोसा चाहा। राहुल गांधी ने कहा कि अब उनकी दो मांगे हैं, संसद में चर्चा और केंद्रीय शिक्षा मंत्री यानी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के मुताबिक जब राहुल गांधी को याद दिलाया गया कि पहले उन्होंने केवल चर्चा की ही मांग की थी तब राहुल गांधी ने कहा कि अब उनकी मांगें बदल गईं। जब राहुल गांधी को विनम्रता से ये बताने की कोशिश की गई कि उनके जैसे सीनियर लीडर को इतनी जल्दी अपनी बात से मुकर जाना शोभा नहीं देता तो जितेंद्र सिंह लिखते हैं कि राहुल गांधी ने कहा कि ये उनकी मर्जी है। जब गृह सचिव ने राहुल गांधी को ये समझाने की कोशिश की कि ये जगह धरने के लिए अनुकूल नहीं तो जितेंद्र सिंह के मुताबिक राहुल गांधी ने जवाब दिया कि ये भी उनकी मर्जी है, वो जहां बैठे। इसके बाद जितेंद्र सिंह ने लिखा है कि राहुल गांधी जैसे सीनियर नेता और नेता प्रतिपक्ष का अपनी बात से मुकर जाना दुर्भाग्यपूर्ण है और लोकतंत्र की हर मर्यादा के विपरीत है। जितेंद्र सिंह साफ कहते हैं कि सरकार नीट और उससे जुड़े आंदोलन के साथ सभी विषयों पर संसद में चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन इसके विपरीत कांग्रेस ने अब तक इस गंभीर विषय पर औपचारिक चर्चा करने का कोई नोटिस नहीं दिया। जितेंद्र सिंह लिखते हैं कि राहुल गांधी का व्यवहार लोकतंत्र के उसूलों से मेल नहीं खाता है।
12: सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, सरकार तैयार है संसद में चर्चा करने के लिए, नीट को लेकर के भी, उसके साथ संबंधित विषयों को लेकर के भी, जो आंदोलन है उसको लेकर के भी। हमने जब ये बात वहीं पर राहुल गांधी जी के आगे दोबारा रखी तो बोले कि साहब मुझे तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी चाहिए। तो हमने कहा साहब अभी कुछ ही क्षण पहले आपसे बार बार जब पूछा गया कि आपका क्या मुतालबा है तो आपने ये कहा था कि अगर मुझे ये आश्वासन दिया जाए कि संसद में कांग्रेस पार्टी को भारत सरकार चर्चा करने देगी या करने के लिए तैयार है तो मैं तुरंत ये धरना समाप्त कर दूंगा। लेकिन अब आप अपनी बात से हट रहे हैं। तो बोले साहब ये तो मेरी मर्जी है, मेरी मांगे बदल चुकी हैं।
13: अब ये मुद्दा इतना ज्वलंत इसलिए है क्योंकि देश के युवा हैं ये और ये समझ रहे हैं कि हमारे फ्यूचर हमारे भविष्य के लिए क्या है। हमारे माँ बाप लोन लेकर मुश्किल से हमें पढ़ाते हैं, हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारे लिए इतना मुश्किल है, इसको हल्के में कोई नहीं ले सकता। ये एक बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है। आज युवा बहुत ही दुखी है एक्चुअली। ये जो आप नाराजगी देख रहे हैं ये एक्चुअली दुख है कि हमारे फ्यूचर हमारे भविष्य के बारे में कौन सोच रहा है। ये सदन है किसका? ये उन्हीं युवाओं का है ना जिसको आप रोक रहे हैं बाहर, जिन पर आप लाठी चार्ज कर रहे हैं, जिन पर आप आंसू गैस चला रहे हैं। ये तो मतलब ये सदन ही उनका है। हम सब यहाँ है, किसने हमें यहाँ रखा है? उन्होंने ये रखा है तो उनकी बात तो सुन ले। उनकी बात
14: तो प्राइम मिनिस्टर मोदी एंटी यूथ है,
13: बिल्कुल एंटी यूथ है। देखिए एंटी यूथ है, एंटी गरीब है, एंटी किसान है, बच्चे हैं, सुन लीजिए इनकी बात क्या होने जा रहा है। अगर इनकी बात शांति से सुन ले आप, मंत्री जी की जिम्मेदारी है, उनसे रिजाइन करवाइए, इस्तीफा दीजिए, जिम्मेदारी लीजिए और सबसे जरूरी यह है कि सिस्टम को दुरुस्त करिए।
15: आप इन विषयों पे जब भी डिस्कशन होता है आप मुंह की खाते हैं, लास्ट में आप जवाब सुन भी नहीं पाते हैं। मैं अभी भी बोलूंगा, ये नकारात्मक जो सोच है विपक्ष का उसको छोड़ना चाहिए। आपने कर लिया ना जो एक दो दिन है, लेकिन कल से सदन को चलने दिया जाए, सभी जो मुद्दे हैं उन पे बात करिए। कोई ऐसा विषय नहीं है जिस पे संसद में बहस न हो सके, लेकिन इन लोगों को एक आदत लग गई है कि संसद के विषय को सड़क पे ले जाएंगे।
11: सरकार ने 3 घंटे के धरने में राहुल गांधी से 2 बार बातचीत की लेकिन वो नहीं माने, तो पुलिस ने उन्हें धरना प्रदर्शन से उठाना शुरू कर दिया। कांग्रेस नेताओं और पुलिस के बीच आधे घंटे तक धक्का मुक्की होती रही। आखिर में 12 से ज्यादा पुलिसकर्मी उन्हें उठा कर ले गए।
1: और आइए अब हम आपको सुनवाते हैं बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने इस पूरे मुद्दे पर क्या कहा।
16: आज जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कृत्य किया है वो पूरी तरह से अशोभनीय है, निंदनीय है। नेता प्रतिपक्ष जिस गरिमा का पद है उस पद को भी राहुल गांधी जी गंभीरता से नहीं लेते हैं, इस बात का आज पूरा उनके व्यवहार से दिखा। विरोध जब मर्यादा की हदों को पार कर जाती है तो अराजकता बन जाती है, और हम शुरू से कहते रहे हैं राहुल गांधी जी अराजकता के प्रतीक बनकर उभर रहे हैं, और जिस प्रकार का अराजकता फैलाने का प्रयास राहुल गांधी उनकी टीम ने किया है वह स्पष्ट संकेत देता है कि यह विरोध की राजनीति नहीं, यह अराजकतावादी राजनीति चायक बनते जा रहे हैं।
1: दस्तक में एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं, लौट कर आएंगे तो दस्तक के अगले हिस्से में आपको बताएंगे ट्रंप का नया निशाना, ईरान का एटमी ठिकाना। आप देखते रहिए दस्तक।
17: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक।
18: दिस इज द साउंड ऑफ लूसी स्टेइंग ऑन टॉप ऑफ हर स्पेंडिंग। You see, even though she's buying a new pair of jeans, she knows that it fits within her monthly budget. Because Wells Fargo will send an alert if her balance drops below her set amount. Yep, nothing gets past Lucy. Or Wells Fargo, for that matter. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
19: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
20: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay on top of the Major League Baseball season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
21: To right field, and it will leave.
20: From the first pitch of the season to the stretch run,
21: and that's the ball game.
20: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
17: Savari.
22: Where the software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer, to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
23: We are over, Jimmy.
24: Hey, life mein scratches to aayenge. Gaadi ke scratches ko to Cosmo PPF samal lega. Aap apna dekh lo.
25: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
26: सोच बदलो और बैंक भी।
27: आगे आगे
28: अरे उधर
27: उधर करेक्ट करेक्ट
25: मिल गया।
29: आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
30: अरे वाह, तू भी ये ट्रेडिंग ऐप यूज करती है?
31: हाँ, क्योंकि इसमें गारंटीड रिटर्न्स है ना।
30: गारंटीड रिटर्न्स? तेरी ट्रेडिंग ऐप ऑथेंटिक तो है ना?
31: अर्ज किया है
30: पहले, गारंटीड और हाई रिटर्न्स का भरोसा ये दिलाते हैं, फिर फेक ऐप डाउनलोड करा के अपने झांसे में फंसाते हैं।
32: वाँ वाँ वाँ वाँ।
30: सेबी और NSE का कहना है सेबी इन्वेस्टर साइट पर वेरिफाइड एप्स की लिस्ट से ही ऐप डाउनलोड करें।
33: सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर।
34: NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो।
3: सॉरी यार गलती हो गई है ये चोट खर्चा वर्चा।
4: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा
3: छक्का
4: सब कैशलेस हो गया है।
5: टाटा AIG है तो भरोसा है।
6: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जाओ।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: Honey, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं.
2: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा. रुंगटा स्टील टीएमटी से बना.
3: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं. रुंगटा स्टील टीएमटी बार एकदम सॉलिड.

0: in association with
1: Sera Sanitary Wear. It's your moment of Sera. E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: आज तक लगातार हर युवा की लटकी नौकरी की लड़ाई लड़ता है, परीक्षा देकर भी ज्वाइनिंग के लिए भटक रहे हैं। 8 साल से इनकी नौकरी लटकी हुई, हजारों छात्र रिजल्ट रिवाइज करने से परेशान हैं, 6,500 नर्सिंग कर्मियों को एक झटके में हटा दिया गया।
3: पचास हजार युवा थे तो उनकी मांग आपने उठाई सर, आज तक चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे।
4: इस मांग को आगे बढ़ाया उठाया, हम तो उनका सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं।
2: आम आदमी के हक की नौकरी के लिए आज तक की खबरदार करती मुहिम।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: पीछे 6 फुट वाली रखी, पीछे दुणाली, आगे हैट पे लिखा था गुजर। बात करा दे दीदी तेवर से, मेरी निकले जान हुआ के तेवर से।
1: वाह, ये अलग लेवल पे है भाई।
2: वाहन का क्या है? जब तक इस देश में एथनॉल है।
3: पानी हल्का गर्म है, मिर्ची अपने मुंह पे डाल लिया, हल्दी वो पानी उन्हें गिरा के रो रहा हो कि एक लाइक दे दो, हम उसको स्वाइप कर मिले तो लात मारो कि क्या पागलपन कर रहा है भाई।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
0: हेक्सा ऑर्गेनिक रेडियंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर, प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।

0: राहुल प्रियंका समेत सभी नेताओं को पुलिस ने रिहा किया। पीएम के घर के सामने से चले 3.5 घंटे के हाई वोल्टेज हंगामे के बाद पुलिस ने हटाया। नई दिल्ली के मंदिर मार्ग थाने में कांग्रेस नेताओं से जाकर मिली सोनिया गांधी। रिहाई के बाद बोली प्रियंका, बच्चों की बात क्यों नहीं सुन रही है सरकार। मोदी सरकार पर राहुल और प्रियंका का बड़ा हमला, लोकतंत्र के लिए बताया खतरनाक, जितेंद्र सिंह का आरोप। राहुल ने बदली अपनी बात, नितिन नवीन बोले राहुल का व्यवहार निंदनीय। राहुल के धरने को आपने बताया बीजेपी से मिली भगत, कहा यह सीजेपी के प्रदर्शन को कमजोर करने की साजिश। आतिशी ने किया कटाक्ष, क्या जुगलबंदी है। और संसद हंगामे के बीच पीएम ने एनडीए की मीटिंग में दिया कड़ा संदेश, बोले नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर नहीं होगा बर्दाश्त, पेपर लीक पर लिया है कड़ा एक्शन।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से। हेक्सा ऑर्गेनिक रेडिएंट स्किन एंड नरिश्ड हेयर प्योर आयुर्वेदिक ब्यूटी।
0: आप देख रहे हैं दस्तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी, स्वागत एक बार फिर से आपका ब्रेक के बाद। और अब खबर इसराइल की उस खुफिया रिपोर्ट की जिसने ईरान और अमेरिका के बीच विध्वंसक युद्ध की घंटी फिर से बजा दी। अमेरिकी मीडिया में छपी एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इसराइल ने ईरान के एक परमाणु ठिकाने को लेकर अमेरिका के साथ खुफिया रिपोर्ट साझा की है, और रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान का परमाणु प्रोग्राम जारी है। रिपोर्ट में यह आशंका भी व्यक्त की गई कि ईरान अपने पिकेक्स एटमी सेंटर पर परमाणु हथियार बना रहा है। ये वही पिकेक्स परमाणु सेंटर है जो अंडरग्राउंड है, और ऐसा माना जा रहा है कि इसराइल के खुफिया रिपोर्ट के आधार पर ट्रंप किसी भी समय इस एटमी सेंटर पर बंकर बस्टर बॉम्ब गिरा सकते हैं, हमला कर सकते हैं, और अगर ट्रंप ने ऐसा किया तो ईरान भी पलटवार के लिए पूरी तरह से तैयार है।

0: اسرائیلی خفیه رپورٹ میں سنسنی خیز دعویٰ، ایران پک ایک سائٹ پر بنا رہا ہے ایٹم بم، ایران کے ایک پرمانو اڈے پر ٹرمپ کا حملہ، اب ٹرمپ کے نشانے پر ایران کا سیکرٹ ٹھکانہ، ایران امریکہ کی لڑائی پر مارو تکائی، ایران کی دھمکی، حملہ ہوا تو مچے گی تباہی، ٹرمپ کا نیا نشانہ ایران کا پرمانو ٹھکانہ، ایران کا آروپ ہے کہ امریکی سینا نے ان کے نئے بن رہے ٹورکوویڈ ایٹمی سینٹر پر میسائل سے حملہ کیا ہے، یہ حملہ صرف ایران امریکہ کے بیچ ہوئے شانتی سمجھوتے کا اُلنگھن نہیں ہے بلکہ انتراشٹریہ قانونوں کا بھی اُلنگھن ہے، ایران نے انتراشٹریہ پرمانو ارجا ایجنسی سے امریکہ کے خلاف کاروائی کی مانگ کی ہے، وہیں دوسری طرف امریکی راشٹرپتی کی تیاری ایران کے پک ایکس پرمانو سینٹر پر حملے کی ہے، وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسرائیل نے امریکہ کو پک ایکس پرمانو سینٹر سے جڑی خفیہ ڈیٹیل شیئر کی ہے، خفیہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بیتے سال ایران نے سینٹریفیوج کو پک ایکس ایٹمی سینٹر میں شفٹ کیا تھا، وال اسٹریٹ جرنل نے اسرائیلی اور امریکی ادھیکاریوں کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ اسرائیلی خفیہ ایجنسیوں نے آکلن کیا ہے کہ ایران نے پچھلے سال ہزاروں یورینیم سمبردھن سینٹریفیوج کو پک ایکس ایٹمی سینٹر کے اندر گہری سرنگوں میں ٹرانسفر کیا تھا، رپورٹ میں سمبھاونا جتائی گئی ہے کہ پک ایکس ایٹمی سینٹر میں ایران پرمانو ہتھیار بنانے کی کوشش کر رہا ہے، امریکی میڈیا کو دیے انٹرویو کے دوران ٹرمپ نے کھلم کھلا دھمکی دی تھی کہ ایران کے پک ایکس ایٹمی سینٹر پر وہ حملہ کرنے والے ہیں، اگر امریکہ نے حملہ کیا تو ایران نے بھی مڈل ایسٹ میں تباہی مچانے کی تیاری کر رکھی ہے۔
1: Thank you. Great speech, Mr. President. Go get Pickaxe Mountain and don't keep the speaker waiting. I appreciate your time, sir.
2: Okay, and we will do that. We're going to take out Pickaxe Mountain. Tell the Iranians to be ready.
1: I will.
2: Let them
1: just
2: know
1: did.
2: We're coming, okay? There's not you a damn did. Thing they can do about it. All right. Thank you, sir.
0: ٹرمپ کا دعویٰ یہی ہے کہ ایران کا پک ایکس ماؤنٹین نیوکلیئر کمپلیکس امریکہ کے ٹارگٹ پر ہے، کسی بھی وقت نیوکلیئر کمپلیکس پر حملہ ہو سکتا ہے، ٹرمپ کے نشانے پر یہ پریسر کیوں ہے اسے سمجھیے، پک ایکس ماؤنٹین نیوکلیئر کمپلیکس ایران کے نتانج نیوکلیئر فیسلٹی کے پاس پہاڑ کے نیچے موجود ہے، یعنی پوری پرمانو سائٹ انڈر گراؤنڈ ہے، خبروں کے مطابق یہ سائٹ 100 میٹر موٹی چٹانوں کے نیچے ہے جہاں پر ایڈوانس سینٹریفیوج بنائے جاتے ہیں، حالانکہ امریکہ کو شک ہے کہ اسی سائٹ کا استعمال ایران اپنا یورینیم انریچ کرنے کے لیے کر رہا ہے، سمبھو ہے کہ یہی پر ایران پرمانو ہتھیار بنانے کی کوشش میں جٹا ہو، لیکن ٹرمپ کی مصیبت یہ ہے کہ پک ایکس ماؤنٹین نیوکلیئر کمپلیکس کو امریکہ اپنے سب سے طاقتور جی پی یو 57 بنکر بسٹر بم سے بھی پوری طرح تباہ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ سائٹ پہاڑ کی موٹی چٹانوں کے نیچے موجود ہے، مطلب یہی ہے کہ ٹرمپ کے دماغ میں اس وقت ہرمز کے ساتھ ساتھ ایران کے پاور پلانٹ، ایران کے پل اور ایران کے پرمانو سینٹر کی تصویریں گھوم رہی ہیں۔
3: Well, a deal that wasn't going to be good for us is the line, ultimately, because, you know, I'm playing it out and we're going to see, and that's what I do. I negotiate, they're very good negotiators, they're crafty. But in the end, we have all the cards because we've defeated them militarily. Look, they have no navy. Every ship, they have 159 ships. Every one of them are at the bottom of the sea. If we didn't hit them with the B-2 bombers 9 months ago, they would have a nuclear weapon right now.
0: ٹرمپ کی دھمکی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کچھ دن پہلے ہی ٹرمپ نے ایران کے پول اور پاور پلانٹ پر حملے کی دھمکی دی تھی، بڑی بات یہ ہے کہ ٹرمپ نے اپنی دھمکی کو سچ کر دکھایا، امریکی سینا نے ایران کے کئی پول، واٹر پلانٹ اور پاور پلانٹ کے ساتھ کئی اہم ٹھکانوں پر حملے کیے ہیں،
3: we're going to hit them very hard the night after, and then next week it gets really bad for them because next week comes the power plants, next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants, we're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate.
0: अमेरिकी मीडिया ने इसराइल के हवाले से दावा किया है कि ईरान पर्दे के पीछे अपना परमाणु प्रोग्राम चला रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक बीते साल जून में 12 दिनों तक चले इसराइल ईरान युद्ध के बाद ईरान ने यूरेनियम सेंट्रीफ्यूज को बेहद सुरक्षित पिकैक्स एटमी सेंटर पर ट्रांसफर कर दिया था। इस युद्ध के दौरान अमेरिका और इसराइल ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया था। रिपोर्ट की टाइमिंग तनाव बढ़ाने वाली है क्योंकि इसराइल और अमेरिका ने बार बार यही दावा किया है कि ईरान के खिलाफ युद्ध का असल मकसद उसके परमाणु प्रोग्राम को तबाह करना है।
4: אנחנו רואים פחות עין בעין. אני אחראי לאינטרסים הביטחוניים של ישראל, אני עומד עליהם.
0: वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा है कि ट्रंप पिकैक्स माउंटेन पर हमला करने का आदेश किसी भी वक्त दे सकते हैं। अमेरिका के इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी ने 2022 की एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया था कि पिकैक्स माउंटेन के नीचे मौजूद एटमी सेंटर में यूरेनियम एनरिचमेंट के साथ साथ दूसरी परमाणु संबंधी गतिविधियां भी चल रही हैं। अमेरिकी थिंक टैंक मानते हैं कि ताजा सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि जून 2025 के संघर्ष के बाद एटमी सेंटर में निर्माण का काम फिर से शुरू किया गया था। बड़ी बात यह है कि पिकैक्स बोर्डो की तुलना में ज्यादा गहराई में है और इसके बारे में कम जानकारी है। भले ही अमेरिका के पास अंडरग्राउंड ठिकानों को तबाह करने वाले बंकर बस्टर बम मौजूद हैं, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पिकैक्स माउंटेन की गहराई अमेरिका के पास मौजूद बंकर बस्टर बमों की क्षमता से ज्यादा हो सकती है क्योंकि परमाणु सेंटर को ग्रेनाइट चट्टानों के नीचे बनाया गया है। ईरान ने भी अमेरिकी हमले की आशंका को देखते हुए अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है। मतलब ईरान भी अमेरिकी हमले के बदले में पलटवार की पूरी तैयारी कर चुका है। अमेरिकी सेना द्वारा ईरानी क्षेत्र में किसी भी प्रकार की घुसपैठ को ईरान की सेना तुरंत विफल कर देगी। ईरान की जमीनी सेना विशेष रूप से उसकी वायु रक्षा इकाइयां उच्चतम स्तर की तत्परता पर हैं और किसी भी शत्रुतापूर्ण कार्रवाई या घुसपैठ को पहले ही क्षण से बेअसर कर देंगी। ईरान ने भी ट्रंप को अपने बारूदी मंसूबों की झलक दिखा दी है। ईरानी सेना ने बहरीन में अमेज़न डेटा सेंटर पर हमला किया है। यह हमला संकेत है कि मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी कंपनियों को ईरान निशाना बनाएगा। मतलब यही है कि ईरान का पलटवार विनाशकारी होगा। बड़ी बात यह है कि ईरान ने तो अमेरिका के एटमी हमले से निपटने की तैयारी भी कर रखी है।
5: They did everything. And they could not make any achievements. So they used fighter jets, they used missiles, they used actually ground operation, and they tried to steal the enriched uranium from Iran. In all of them, they failed.
6: Yes.
5: So if they wanted to make any achievements, they would have done it during those 40 days. And they don't have any other options. There remains only one option, which is the nuclear bomb. That even if it is used, it would not stop Iranian people.
0: भले ही बीते 10 दिनों से ईरान पर अमेरिकी सेना की बम वर्षा जारी हो, लेकिन ईरान भी लगातार पलटवार कर रहा है। IRGC का दावा है कि उसने कुवैत में अमेरिकी ड्रोन हैंगर और सैन्य ठिकानों पर हमला किया। दावे के मुताबिक अली अल सलेम एयरबेस पर स्थित MQ-9 ड्रोन हैंगर और अमेरिकी रडार कम्युनिकेशन और सैटेलाइट फैसिलिटी को मिसाइल से निशाना बनाया गया है। यही नहीं, ट्रंप की धमकी के बावजूद ईरान ने हुर्मुज में 2 तेल टैंकरों पर फिर हमले किए हैं। अब देखना यही है कि ईरान के पिकैक्स एटमी सेंटर पर ट्रंप ने हमला किया तो ईरान की जवाबी कार्रवाई कितनी विध्वंसक होगी। आज तक ब्यूरो।
7: और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे पाकिस्तान में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का गेम ओवर होने जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर आसिम मुनीर को चुनौतियां मिल रही हैं, चाहे वो बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनवा हो या फिर POK। आसिम मुनीर ने वर्दी वाला आतंक फैलाया तो पाकिस्तान की सरकार और आर्मी चीफ आसिम मुनीर के विरुद्ध गृह युद्ध हर दिन तेज हो रहा है। और आज यानी कि 21 जुलाई को POK का अल्टीमेटम भी पूरा हो गया। जी हां, POK और पाकिस्तान सरकार के बीच कोई समझौता नहीं हुआ क्योंकि POK वालों ने जो मांगे रखी उस पर कोई बात नहीं बन पाई। अब 21 जुलाई की डेडलाइन पूरी होने पर POK में मुनीर के खिलाफ महा आंदोलन होगा। दिखाएं आपको अब की बार POK में क्या है तैयारी।
0: POK का अल्टीमेटम पूरा, अब मुनीर का खेल खत्म होगा। POK में चली गोलियों और हत्याओं का मुनीर से हिसाब होगा।
8: खून रंग लाएगा।
0: यूके में राबला कोर्ट की ईदगाह से महा आंदोलन की तैयारी तेज। जेएसी का मुजफ्फराबाद लॉन्ग मार्च, हिल जाएगा इस्लामाबाद।
6: ये सारे लोग दहशतगर्द नहीं है, ये इस धरती के वारिस हैं।
0: पाकिस्तान के कब्जे से मुक्त होगा पीओके, ये ऐलाने बगावत है।
8: हम लेके रहेंगे, फिर मौला देंगे।
0: पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में रावला कोट की ईदगाह के अंदर 1.5 लाख से ज्यादा प्रदर्शनकारी फिर से जमा हो चुके हैं, जबकि बेहिसाब बारिश हो रही है। फिर भी पीओके वालों का जज्बा डगमगा नहीं रहा है।
9: तेरे खून से, तेरे खून से।
0: और इस दफा तैयारी बड़ी है, क्योंकि अब मुनीर के खिलाफ महा आंदोलन शुरू होने जा रहा है। पीओके में अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन की अगुवाई कर रही जम्मू कश्मीर जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी यानी जेएसी ने ऐलान कर दिया है, जितनी तादाद में हो सके इस महा आंदोलन का हिस्सा बने।
10: दर्जनों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हमारे स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 73 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, शहादतें दी हैं, लेकिन रावला कोर्ट का ईदगाह ग्राउंड आज भी भरा हुआ है। बारिश होती रही लेकिन लोग घरों में नहीं बैठे, रोड्स के ऊपर मार्च हुआ, नारे लगे। एक बात साफ नजर आ रही है कि ये अब सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं है, ये एक अवामी तहरीक अब बन चुकी है।
0: आपको बता दें कि पाकिस्तान सरकार और आसिम मुनीर को पीओके की तरफ से 21 जुलाई का अल्टीमेटम दिया गया था कि अगर पाकिस्तान ने उनकी मांगे नहीं मानी तो फिर ऐसा विद्रोह होगा कि पाकिस्तान की हुकूमत हिल जाएगी। और जेएसी की माने तो अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है और न ही उनकी मांगे मानी गई हैं। ऐसे में जेएसी ने सोशल मीडिया पर एक्स पोस्ट में कहा है कि 45 दिनों से जारी उत्पीड़न और क्रूरता, बड़े पैमाने पर हत्याओं और हुक्मरानों के जरिए बुनियादी मानवाधिकारों के उल्लंघन के बावजूद हम कश्मीर के लोगों की दृढ़ता को सलाम करते हैं। हुक्मरान उन लोगों के हत्यारे हैं जिन्हें अपने अधिकारों की मांग करने के बदले मार दिया गया। दर्जनों लोगों की हत्या की गई लेकिन हुक्मरानों के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। हम अपने शहीदों के खून से कोई समझौता किए बिना संघर्ष जारी रखेंगे। जेएसी के वरिष्ठ नेता उमर नजीर कश्मीरी ने मीरपुर, मुजफ्फराबाद और पुंछ डिवीजन के लोगों से अपील की कि वो 23 जुलाई को प्रदर्शन और धरने के लिए बड़ी संख्या में बाहर निकलें। कश्मीरी ने इसे आंदोलन के लिए एक अहम दिन बताते हुए कहा कि 23 जुलाई को एक महत्वपूर्ण घोषणा की जाएगी, जबकि पीओके में जेएसी के एक और नेता एलानिया कह चुके हैं कि पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है।
6: डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ये एक मुतनाजा इलाका है, लेकिन ये मुतनाजा नहीं है, ये मकबूजा इलाका है, ये मकबूजा इलाका, इस पर कब्जा है। इस तहरीक में शहीद भी हो जाए तो हमें यकीन है हमारी औलादें इस अलम को बुलंद रखेंगी, इस झंडे को बुलंद रखेंगी, हमारी माएं बहने बेटियां इस अलम को बुलंद रखेंगी। और फतह से पहले हम सारे मारे जाए, फतह से पहले ये जंग खत्म नहीं होगी। ये जंग खत्म अब ये हुकूमत की जंग खत्म।
0: आपको बता दें कि पीओके में मुनीर की बर्बरता के बाद जेएसी ने अल्टीमेटम दिया था कि अगर 21 जुलाई तक उनकी शर्तें नहीं मानी गईं, तो फिर आग पार की लड़ाई होगी। पीओके की तरफ से जो मांगे रखी गई हैं, उनमें स्थानीय विधानसभा में 12 आरक्षित सीटों की व्यवस्था खत्म करना, स्थानीय लोगों को अधिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व, गिरफ्तार नेताओं और कार्यकर्ताओं की रिहाई, बेहतर शासन, बिजली और अन्य आर्थिक मुद्दों पर सुधार। पीओके में आंदोलन को लीड करने वाले 600 से ज्यादा नेताओं की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। पाकिस्तान के अंदर से ही खबरें आ रही हैं कि इस आंदोलन में 70 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं।
10: जब बच्चे भी डरना बंद कर दें तो फिर मिलिट्री ऑक्यूपेशन जो है वो ज्यादा देर नहीं चल सकती। मजीद भी वीडियोस हैं, देख लीजिए आप। देखिए पिछले एक महीने से गोलियां चलाई जा रही हैं, गिरफ्तारियां की जा रही हैं, खाना पीना राशन बच्चों का बंद कर दिया गया है, इंटरनेट 35 दिन हो चुके हैं शट डाउन है,
11: पैरामिलिट्री ट्रुप्स, पंजाब रेंजर, फ्रंटियर कंस्टेबलरी, एक पूरा डिविजन स्ट्रेंथ वहां पे मजीद लगा दिया गया है। हजारों की तादाद में रेंजर्स वहां पे भेजे हुए, पंजाब रेंजर्स हजारों की तादाद के अंदर एफसी वहां पे भेजी गई है। लेकिन हर रोज ये जो क्राउड है ये बढ़ता चला जा रहा है और आज अगली नस्ल, अगली जनरेशन भी खुलेआम सामने आ गई है। ये इस्लामाबाद के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस डेवलपमेंट है।
0: हालात ये हैं कि पाकिस्तान सरकार किसी भी तरह से पीओके वालों को शांत करने में लगी हुई है, लेकिन वो अपने हक के लिए अड़े हुए हैं और अपनी आजादी मांग रहे हैं। फैसल मुमताज राठौर, जिनको पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का वजीर आजम घोषित किया हुआ है, वो पीओके के हवेली में अपना काफिला लेकर पहुंचते हैं इस दावे के साथ कि वो सब कुछ शांत करा देंगे। लेकिन पीओके में उनके खिलाफ चोर चोर के नारे लगते हैं।
10: अब तो बलूचिस्तान में भी इनकी बदमाशी नहीं चल रही है, तो किस तरह चल पाएगी कश्मीर के अंदर। लेकिन फिर भी बाज तो इन्होंने नहीं आना, क्योंकि भाई इनके लिए तो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, इनकी तो हुक्मरानी खतरे के अंदर है, गुंडा राज खतरे के अंदर है, ये कैसे आपको छोड़ेंगे। लेकिन इससे पहले आपको बताएं कि इन्होंने जो आगे अपना इस वक्त बचा जमूरा बिठाया हुआ है, वो बचा जमूरा उसका एक और तस्वीर का रुख है। वो बचा जमूरा जो वजीर आजम अपने आप को एजेके का कहता है, फैसल मुमताज राठौर, वो हवेली डिस्ट्रिक्ट गया था जनाब दौरे के ऊपर। सरकार
7: डिस्ट्रिक्ट में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभरात्रि।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
13: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
14: दिस इज द साउंड ऑफ लूसी स्टेइंग ऑन टॉप ऑफ हर स्पेंडिंग। यू सी, इवन दो शी इज बाइंग अ न्यू पेयर ऑफ जींस, शी नोज दैट इट फिट्स विद इन हर मंथली बजट, बिकॉज वेल्स फार्गो विल सेंड एन अलर्ट इफ हर बैलेंस ड्रॉप्स बिलो हर सेट अमाउंट। यप, नथिंग गेट्स पास लूसी और वेल्स फार्गो फॉर दैट मैटर। However you make money work, Wells Fargo can work with that.
15: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
16: Tune in's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
17: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. Tune In has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
18: Where the software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer, to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
19: We are over, Jimmy.
20: Hey, life mein scratches to aayenge. Gaadi ke scratches ko to Cosmo PPF samal lega. Aap apna dekh lo.
21: AU करेंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
22: AU
23: सोच बदलो और बैंक भी।

0: पहाड़ों पर मानसूनी आफत का सिलसिला जारी। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक बारिश का रेड अलर्ट। बादल फटने के बाद राजौरी और करगिल में हालात नाजुक। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर इस वक्त मानसून का कहर झेल रहा है। पूंछम के बफलियाज इलाके में कुदरत का रौद्र रूप दिखा। लगातार हो रही बारिश के बाद बादल फटा और फ्लैश फ्लड की चपेट में कई इलाके आ गए। ये तस्वीर पूंछ की है, जहां एक सुरंग पर पूरा का पूरा पहाड़ गिर गया, जिसकी चपेट में वहां काम कर रही मशीनें भी आ गई। वहीं भारी बारिश के बाद शहर के बीच बह रहा पानी भी लोगों को डरा रहा है। अब किश्तवाड़ से आई डरावनी तस्वीर देखिए। यहां राइटल पावर प्रोजेक्ट साइट पर अचानक से फ्लैश फ्लड से तबाही मच गई। क्षतिग्रस्त हुआ पावर प्रोजेक्ट नदी के किनारे था। वहीं डोडा में रागी नाला के पास लैंडस्लाइड की वजह से ऊपर से एक बस के ऊपर पत्थर गिरे, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई। राजौरी के नौशहरा की वाई ये तस्वीर देखिए, जहां भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर की मदद से नदी के बीच टापू में फंसे को निकाला गया। श्रीनगर से अशरफ वाणी के साथ आज तक ब्यूरो।
1: देश की बेटी ने लहराया तिरंगा। देश की आन बान शान बनी पीवी सिंधु। जापान ओपन जीतने वाली पहली भारतीय बनी पीवी सिंधु। जी हां, कमाल हो गया, धमाल हो गया। जापान ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीयों को गर्व करने का मौका मिला है। 31 साल की सिंधु ने रविवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में जापान की अकाने यामागुची को 21-17 से हराया। ये मैच 50 मिनट तक चला। सिंधु 4 साल बाद यामागुची को किसी फुल मैच में हरा सकी हैं। उन्हें पिछली जीत थाईलैंड ओपन में 2022 में मिली थी। पिछले साल मलेशिया ओपन में यामागुची रिटायर्ड हर्ट हो गई थी। सिंधु ने 2 साल बाद कोई खिताब जीता है। उन्होंने 2024 में सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीता था। वो 2022 में सिंगापुर ओपन सुपर 500 में चैंपियन बनी थी। ये सिंधु के करियर का पहला सुपर 750 खिताब है। 2019 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के बाद ये उनका सबसे बड़ा इंटरनेशनल खिताब है। आज तक ब्यूरो।

तिनके की तरह बहती गाड़ियां, ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के कारगिल की है। बादल फटने से यहां पानी का ऐसा उफान आया कि पेड़ और गाड़ियां तिनके की तरह बहती नजर आई। राजौरी के नौशेरा की तस्वीर भी देखिए, भारी बारिश से यहां मानवर नदी उफान पर है। गब्बड़ क्षेत्र में नदी के बीचों बीच एक व्यक्ति का शव दिखाई देने की सूचना मिली तो प्रशासन ने बड़े स्तर पर राहत बचाव अभियान शुरू किया। दो दिन तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन में कल दोपहर सेना के हेलीकॉप्टर की मदद से शव को बाहर निकाल लिया गया। पुंछ जिले के बफलियाज इलाके में कुदरत का रौद्र रूप देखिए। लगातार हो रही बारिश के बाद बादल फटा और फ्लैश फ्लड की चपेट में कई इलाके आ गए। ये स्कूल भी पानी की मार से बुरी तरह बर्बाद हो गया। ये तस्वीर पुंछ की है, जहां एक सुरंग पर पूरा का पूरा पहाड़ गिर गया, जिसकी चपेट में वहां काम कर रही मशीनें आ गईं। भारी बारिश के बाद शहर के बीचों बीच बह रहा पानी भी लोगों को डरा रहा है। पुंछ जिले में बारिश ने भारी बर्बादी मचाई है। भूस्खलन से सूरनकोट के मुर्रा इलाके में एक घर मलबे में दब गया, जिसमें 7 लोग जिंदा दब गए। अब किश्तवाड़ से आई डरावनी तस्वीर भी देखिए। रैटल पावर प्रोजेक्ट साइट पर अचानक से फ्लैश फ्लड से तबाही मच गई। पावर प्रोजेक्ट नदी के किनारे था, जो क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं डोडा में रागी नाला के पास लैंडस्लाइड की वजह से एक बस के ऊपर पत्थर गिरे, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई।

0: फरीद के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर आज तक।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब से कुछ ही क्षणों में वारदात लेकर हमारे साथी शम्स होंगे आपके साथ। आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कम।
1: राहुल प्रियंका समेत सभी नेताओं को पुलिस ने किया रिहा। प्रधानमंत्री आवास के सामने 3.5 घंटे चला प्रदर्शन। हाई वोल्टेज हंगामे के बाद पुलिस ने जबरदस्ती हटाया। नई दिल्ली के मंदिर मार्ग थाने में कांग्रेस नेताओं से जाकर मिली सोनिया गांधी। रिहाई के बाद बोली प्रियंका, बच्चों की बात क्यों नहीं सुन रही है सरकार। मोदी सरकार पर राहुल गांधी और प्रियंका का बड़ा हमला, लोकतंत्र के लिए बताया खतरनाक। जितेंद्र सिंह का आरोप, नेता विपक्ष ने बदली अपनी बात। नितिन नवीन बोले, उनका व्यवहार निंदनीय। राहुल गांधी के धरने को आम आदमी पार्टी ने बताया बीजेपी से मिली भगत। कहा ये सीजेपी के प्रदर्शन को कमजोर करने की है साजिश। अतिशी ने किया कटाक्ष, क्या जुगलबंदी है। और संसद हंगामे के बीच प्रधानमंत्री ने एनडीए मीटिंग में दिया कड़ा संदेश। कहा नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर नहीं होगा बर्दाश्त। पेपर लीक पर लिया कड़ा एक्शन।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सबसे पहले आपको बता दें, जबरदस्त सियासी हंगामे के बीच बड़ी और अहम खबर, धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से कहा गया है कि जिस तरीके से इस प्रदर्शन को हाईजैक करने की कोशिश की गई है, जिस तरीके से कांग्रेस के तमाम नेता छात्रों के साथ आने का जो नाटक कर रहे हैं वो पूरी तरह से राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है छात्रों का, तो कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि छात्रों के इस आंदोलन का, छात्रों का इस्तेमाल कर रही है कांग्रेस। तो आज जिस तरीके से जबरदस्त हंगामा, प्रदर्शन, गहमा गहमी पूरे दिन देखी गई, पीएम आवास के बाहर जिस तरीके से धरना दिया गया और जिस तरीके से तमाम कांग्रेस के बड़े नेता, चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, इन्हें हिरासत में लिया गया, उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से कहा गया कि राहुल गांधी का जो मकसद था वो टकराव था, कांग्रेस का जो धरना प्रदर्शन और तमाम नेताओं का बाहर आना दिखाता है कि किस तरीके से छात्रों का वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, राजनीति में इस्तेमाल कर रहे हैं। समाधान देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, एक बार फिर से धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से कहा गया है। हालांकि इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी कड़ा संदेश दे दिया गया था, साथ ही धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि कांग्रेस के धरने में साफ साफ झलकता है कि किस तरीके से छात्रों का वो इस्तेमाल कर रही है अपनी राजनीति साधने के लिए। आगे बढ़ेंगे और अब आप देखिए हमारी खास पेशकश वारदात शम्स ताहिर खान के साथ।
1: नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। क्या किसी कत्ल के मामले में टेक्नोलॉजी को आरोपी बनाकर उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है? सवाल अजीब है, लेकिन बेंगलुरु में एक ऐसी वारदात हुई जिसके बाद पुलिस ये सोचने पर मजबूर हो गई। एक बेटी ने अपने लिव इन पार्टनर के साथ मिलकर अपने माँ बाप और छोटी बहन का कत्ल कर दिया। बाद में जांच में पता चला कि कत्ल करने से लेकर सबूत मिटाने तक दोनों ने AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तमाम आइडिया के बारे में पूछा था। ये बेंगलुरु के KRपुरम में मौजूद साई ग्री होम अपार्टमेंट है। इस वक्त इस अपार्टमेंट के बाहर पुलिस वाले मौजूद हैं। यहाँ पुलिस क्यों आई है या इस अपार्टमेंट के एक फ्लैट के अंदर क्या हुआ है, उसे जानने से पहले इसी बेंगलुरु के दूसरे घर में चलते हैं। तस्वीर रात की है, तारीख 22 जून और CCTV कैमरे की घड़ी जो वक्त दिखा या बता रही है उसके हिसाब से रात के 9:02 हुए हैं। अब आपको दो अलग अलग कैमरों के दो फ्रेम में दो लोगों को दिखाता हूँ। पहले फ्रेम में बाईं तरफ इस घर का दरवाजा खुलता है और अंदर से एक लड़का और लड़की बाहर निकलते हैं और चल पड़ते हैं। दूसरे फ्रेम में वही लड़का और लड़की तेज कदमों से सामने की तरफ जाते दिखाई पड़ते हैं। अब दोनों फ्रेम को मिलाकर इन दोनों को एक साथ देखिए, क्या कोई इनकी चाल या इनके यूं चलने के अंदाज से ये पता लगा सकता है कि बस थोड़ी ही देर पहले इन दोनों ने एक साथ 3 कत्ल किए। जी हाँ, 3 कत्ल, और कत्ल भी किसका? इस फ्रेम में ये जो लड़की पीछे पीछे चल रही है, इस लड़की के अपने ही माँ बाप और छोटी बहन का। एक बेटी ने लिव इन में रह रहे अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने माँ बाप और बहन पर अपने हाथों से चाकू के 50 से ज्यादा वार किए। इनमें से सिर्फ 26 वार तो इस लड़की ने अकेले अपनी माँ पर किए थे, क्योंकि उसे सबसे ज्यादा नफरत अपनी माँ से ही थी। ये देश का पहला ऐसा मर्डर केस बनते बनते रह गया जिसमें दो इंसानों के साथ साथ एक टेक्नोलॉजी को भी बेंगलुरु पुलिस इस ट्रिपल मर्डर का सह आरोपी यानी को अक्यूज्ड बनाने जा रही थी। जानते हैं इंसानों की बनाई वो मशीन या टेक्नोलॉजी कौन सी है? वही जिसे लेकर इस वक्त पूरी दुनिया में बातें हो रही है, AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आप सोचेंगे कि कत्ल तो इन दोनों ने किया, फिर AI कैसे कातिल हो सकता है? तो हकीकत ये है कि बेशक कत्ल इन दोनों ने किए, लेकिन कत्ल की पूरी तैयारी और हर प्लानिंग के साथ साथ इन 3 कत्ल का राजदार इन दोनों के अलावा अगर कोई था तो सिर्फ और सिर्फ यही AI। अब पहले थोड़ी सी कहानी समझ लेते हैं। सीसीटीवी कैमरे में कैद इस लड़की का नाम श्वेता है। 24 साल की श्वेता के साथ आगे आगे चल रहे इस लड़के का नाम केनेथ। 25 साल का केनेथ और श्वेता दोनों पिछले काफी वक्त से बेंगलुरु के किसी साई ग्रीन होम अपार्टमेंट में रह रहे हैं। दोनों ही अच्छे परिवार से हैं। श्वेता के पिता सोमा सुंदर एक मल्टीनेशनल आईटी कंपनी में नौकरी करते हैं, जबकि केनेथ के पिता एयरक्राफ्ट बनाने वाली एक पीएसयू में नौकरी करते हैं। खुद श्वेता बेंगलुरु के एक आईटी कंपनी में काम करती थी, जबकि केनेथ भी टेक कंपनी से जुड़ा हुआ था। बीच में श्वेता की नौकरी चली गई, तब उसने अपनी माँ मुथु लक्ष्मी से 50 लाख रुपए उधार लिए थे। ये पैसे उसने अपने लिव इन पार्टनर केनेथ पर खर्च कर दिए। अब श्वेता को लगा कि उसकी माँ पैसे वापस मांगेगी, पर पैसे उसके पास थे नहीं और वो उसे लौटाना भी नहीं चाहती थी। बस इसी 50 लाख रुपए के लिए एक बेटी ने अपने लिव इन पार्टनर के साथ मिलकर अपने पूरे परिवार को ही मार डालने का फैसला किया। परिवार में माँ मुथु लक्ष्मी के अलावा श्वेता के पिता सोमा सुंदर और छोटी बहन सुप्रिया थी। माँ बाप और बहन को मारने का फैसला श्वेता और केनेथ ने 6 महीने पहले किया था। इसके बाद पिछले 6 महीने से दोनों इस बात की प्लानिंग कर रहे थे कि एक साथ 3-3 कत्ल कैसे किया जाए। अब चूंकि दोनों टेक्नोलॉजी के माहिर थे, लिहाजा फुल प्रूफ ट्रिपल मर्डर के लिए उन्होंने टेक्नोलॉजी की ही मदद लेने का फैसला किया और इसी के बाद इनकी साजिश में एआई की एंट्री होती है। एआई इसलिए कि वो राजदार बन सकता था जो इंसानों की तरह धोखा नहीं देता, वो राज फाश करता ना अपना मुंह खोलता। और बस यहीं से एआई से 3 कत्ल के तरीके और फिर पुलिस से कैसे बचा जाए उसके जवाब पूछने शुरू कर दिए। जानते हैं श्वेता और केनेथ ने एआई से कौन कौन से सवाल पूछे थे, तो सुनिए। 3 लोगों का मर्डर एक साथ कैसे किया जाए, वो कौन सा केमिकल है जो खून के धब्बों को मिटा देता है, कत्ल के बाद लाश की पैकिंग कैसे की जाती है, लाश को घर के बाहर कैसे ले जाया जाता है, घर के अंदर कोई हमला करे तो उसका सामना कैसे किया जाए, क्या क्लाउड किचन के लिए बनाई गई भट्टी में लाशों को जलाकर सबूत मिटाए जा सकते हैं। पूरे 6 महीने तक एआई टूल की मदद से श्वेता और केनेथ कत्ल के तरीके सीखते रहे। फिर एआई के बताए जवाब के हिसाब से केनेथ ने इसी अपार्टमेंट के अपने घर में एक क्लाउड किचन तैयार किया। एआई की मदद से ही उसने खुद से लोहे की भट्टी तैयार की। दरअसल केनेथ खुद अपना क्लाउड किचन शुरू करने की सोच रहा था। जब सारी तैयारी मुकम्मल हो गई, तब कत्ल की बारी आई। 22 जून को श्वेता ने सबसे पहले अपनी माँ को बहाने से साई ग्रीन होम के इसी अपार्टमेंट में मिलने के लिए बुलाया। इस अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर G03 में श्वेता और केनेथ साथ रहते थे। इसी फ्लैट में माँ के दाखिल होते ही केनेथ और श्वेता ने अचानक चाकुओं से माँ पर हमला बोल दिया। श्वेता की माँ पर दोनों ने चाकू के कुल 26 वार किए थे। माँ की मौत के थोड़ी देर बाद अब श्वेता के पिता और छोटी बहन को इसी फ्लैट में बुलाया जाता है। इसके बाद अब उन दोनों पर भी उसी तरह चाकू से अनगिनत वार किए जाते हैं। चाकू के वार के बाद श्वेता और केनेथ को लगता है कि 3 मर चुके हैं। इसी के बाद घर में 3 लाशें छोड़कर फ्लैट को बंद कर अब श्वेता और केनेथ श्वेता की माँ के घर पहुँचते हैं। वहां से जो भी कैश या जेवर मिलते हैं उन्हें समेट कर दोनों एक बैग में सारा सामान डाल पुडुचेरी के लिए निकल जाते हैं।
2: वो लड़का भी इधर रहता था?
3: हाँ, वो भाड़े में रहता है, लड़का और एक लड़की रहता था भाड़े में।
2: हाँ।
3: और उनको मेरा माँ बाप बहन को गांव से बुलाया, बोला ऐसा ही हम लोग को तो।
2: हाँ। क्या काम?
3: वो काम तो क्या करता है वो हमको बताया नहीं है वो। फिर मेरा माँ बाप को आया तो हमको अंदर जाने तो बोला। फिर हम लोग फिर इधर लोग आया था, वो लड़के आ गए, फिर उसको ले गया मेरा बाप ये बोल के घर पे ले गया। घर पे ले गया तो उसके बाद फिर रिटर्न आया उसका बाप घर पे, अब ब्याग व्याग के सामान रख के रिटर्न आया। फिर शाम को गए, शाम को तो फिर 8:30 में ऐसे ही हो गया।
2: नहीं, लड़की का माँ बाप और बहन इधर कब आया?
3: शाम को 8 बजे से 7:30 बजे क्या बोलते हैं 7:30
2: आपको कितना बजे को पता चला?
3: मेरे को तो 8 9 बजे पता चला।
4: कितने साल से रहते है उधर?
2: कौन? वो वाला, वो
4: दोनों
3: लड़के, डेढ़ महीना हुआ है,
2: डेढ़ महीना
3: हुआ है।
2: उसका बाप और माँ बहन कल शाम आया,
3: परसों आया, कल शाम को किधर घूम के फिर इधर आया, इधर आया तो ऐसा
5: रूम में
2: वो किधर, कौन सा रूम में रहता है वो?
3: 03 में रहता है।
2: 03
4: कितना
2: ग्राउंड फ्लोर में।
1: बाइक पर ये तस्वीर उसी वक्त की है, केनेथ और श्वेता बाइक पर बैठे और श्वेता के हाथों में एक बैग है। लेकिन उधर श्वेता और केनेथ के घर में होता यह है कि श्वेता के पिता चाकू के अनगिनत वार के बावजूद जिंदा बच जाते हैं। किसी तरह रेंगते हुए वो घर के बाहर सीढ़ियों तक पहुंचते हैं। तब तक कुछ पड़ोसियों की नजर पड़ती है, फिर वो पुलिस को खबर देते हैं। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो श्वेता के पिता सोमा सुंदर जिंदा थे। वो सोमा सुंदर ही थे जिन्होंने पुलिस को पहली बार बताया कि उनकी पत्नी मुतु लक्ष्मी और बेटी सुप्रिया फ्लैट के अंदर है और उन तीनों पर उनकी अपनी ही बेटी श्वेता और उसके दोस्त केनेथ ने हमला किया। बाद में पुलिस तीनों को फौरन अस्पताल ले गई। मुतु लक्ष्मी और सुप्रिया पहले ही दम तोड़ चुके थे। अस्पताल पहुंचने के बाद सोमा सुंदर की भी मौत हो गई।
6: केआर पुलिस स्टेशन व्याप्तियल्लि निन्ने संजे ओंदु मर्डर रिपोर्ट आगिदे। आ मर्डरली फस्ट इनफार्मेशन प्रकार, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರು ಮೂರು ಜನ, ತಂದೆ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗಳು, ಆ ಮೂರು ಜನಕ್ಕೆ ಅವಳದೇ ಇದು ಎಲ್ಡರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅವರಿಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರೇಮ್ ಪ್ರೇಮಿ ಈಗ ನಾನು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಮೂರು ಮರ್ಡರ್ ಇದು ಬಡ ಒಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ 6 ಜಾಸ್ತಿ ತಂಡ ನಾವು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಇಬ್ಬರು ಕಥಿತ ಯಾರು ಆರೋಪಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆ ಆ್ಯಂಗಲಿಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಇಬ್ಬರು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಂತ, ಯಾಕೆಂದರೆ ತಂದೆಯವರು ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕೆಲವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೂ ಇದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ನಿಷ್ಪಕ್ಷ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ನಾವು ಇಂಥವ್ರು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ CCTV ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಡದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಅದು ಯಾವುದೋ ಪರ್ಸನಲ್ ರೀಸನ್ ಕೋಸ್ಕರ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆರೋಪಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಫರ್ದರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಾವು ನಿಮಗೆ
1: ಹೇಳಿ. ಮೌತ್ ಸೆ ಪಹಲೆ ಸೋಮಾ ಸುಂದರ್ ಗವಾಹಿ ದೇ ಚುಕೆ ಥೇ, ಲಿಹಾಜಾ ಪುಲಿಸ್ ಫೌರನ್ ಶ್ವೇತಾ ಔರ್ ಕೆನೆಥ್ ಕಿ ತಲಾಶ್ ಮೇ ಜುಟ್ ಗಯಿ. कत्ल के बाद श्वेता और केनेथ कुछ वक्त तक तो बेंगलुरु के बाहरी इलाकों में मोटरसाइकिल पर ही घूमते रहे, फिर दोनों अलग अलग बस पकड़कर पुडुचेरी पहुंच गए। बाद में पुलिस ने सबसे पहले पुडुचेरी से श्वेता को गिरफ्तार किया, उसके बाद केनेथ को पुडुचेरी में ही एक बार से पकड़ा गया, फिर दोनों को बेंगलुरु लाया गया। पूछताछ में श्वेता ने पुलिस को बताया कि मेरी माँ ने पूरी जिंदगी मुझे कंट्रोल किया, उसने कभी मुझे आजादी से कुछ करने नहीं दिया, मेरी माँ ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, इसीलिए मैंने उसे मार डाला। श्वेता ने यह भी कहा कि उसने अकेले ही अपने माँ बाप और बहन को मारा, केनेथ ने सिर्फ उसकी मदद की थी। दोनों से इसी पूछताछ के बाद कत्ल की सारी कहानी सामने आई और उसी कहानी में AI की कहानी भी थी। दोनों के बयान के बाद जब पुलिस ने उनके लैपटॉप को खंगाला तो सर्च इंजन में केनेथ और श्वेता की 3 कत्ल को लेकर पूछे गए सारे सवाल और उनके जवाब भी मिल गए। अब चूंकि कत्ल के तरीके को लेकर जवाब AI दे रहा था तो बेंगलुरु पुलिस ने यह तय किया कि इस ट्रिपल मर्डर में श्वेता और केनेथ के साथ साथ उस AI टूल को भी आरोपी बनाया जाए। हालांकि अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन बेंगलुरु पुलिस ने उस कंपनी से AI के बारे में और जानकारी जरूर मांगी है। सगाई राज, बेंगलुरु आज तक। बेंगलुरु के करीब ही एक डॉक्टर पत्नी ने पिछले हफ्ते अपने डॉक्टर पति का कत्ल किया था, साथ ही अपने बच्चे की जान लेने की कोशिश की थी। अब पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ है कि कत्ल से एक दिन पहले भी डॉक्टर पत्नी ने अपने पति को चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी दी थी। ये वही डॉक्टर पत्नी है जिसने अपने पति को मारने के बाद उसकी लाश के करीब बिस्तर पर बैठकर अपने मोबाइल में उलझी हुई थी। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से करीब 425 किलोमीटर दूर धारवाड़ में मौजूद यरंका अपार्टमेंट है। बाहर से तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अब जैसे ही मैं आपको इस अपार्टमेंट की छठी मंजिल पर इस फ्लैट में ले जाऊंगा, आप खुद अपनी पलकें झपकना भूल जाएंगे। बस इतना कह सकता हूं कि इस अपार्टमेंट में दाखिल होने के बाद जो मंजर आप देखेंगे, ऐसा मंजर इससे पहले कम से कम लाइव तो कभी देखा ही नहीं होगा। ये इस अपार्टमेंट का एक कमरा है। कमरे में एक शख्स औंधे मुंह फर्श पर पड़ा है। आसपास चारों तरफ खून ही खून है, शायद बिस्तर पर भी खून के निशान है। अब यहाँ से थोड़ा आगे बढ़े तो फिर जगह जगह खून नजर आता है। बेशक ये तस्वीर डरावनी है, लेकिन अब हम जब दूसरे कमरे में चलेंगे तो वहां की तस्वीर देखकर पता नहीं आप पर क्या बीतेगी। ये इसी अपार्टमेंट का दूसरा कमरा है। एक महिला बेड पर लेटी हुई है, हाथ में मोबाइल फोन है और वो मोबाइल में उलझी हुई है। इस महिला का जिधर पैर है, ठीक उसी तरफ इस बेड के नीचे एक छोटा बच्चा फर्श पर पड़ा है। यहाँ इसके इर्द गिर्द भी खून के निशान है। पहले कमरे में जो शख्स औंधे मुंह जमीन पर लहूलुहान पड़ा है, वो इस महिला का पति है। और जिस कमरे में बेड पर ये लेटी बेफिक्र अपने मोबाइल में खोई हुई है, ठीक उसी बेड के बराबर फर्श पर पड़ा खून से लथपथ ये बच्चा इसी महिला का अपना बेटा है। यानी इस एक घर में इस वक्त तीन लोग हैं, पति, पत्नी और बेटा। पति और बेटा जिंदा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन महिला जिस अंदाज में लेटी मोबाइल में खोई हुई है, उससे साफ है कि वो ठीक ठाक है। पर सवाल ये है कि सामने जमीन पर बेटा पड़ा है, सामने के कमरे में पति, फिर ये बेड पर इतनी बेफिक्र क्यों लेटी है? जिसका बेटा और पति खून से लथपथ घर में पड़े हो, वो मोबाइल से क्यों खेल रही है? तो आगे की कहानी तब शुरू करेंगे जब इस कमरे में पुलिस आ जाएगी। और लीजिए, पुलिस आ गई। पुलिस क्या, खुद शहर के पुलिस कमिश्नर यहाँ आ चुके हैं। कमरे का मंजर देख खुद पुलिस भी हैरान है। दो लोगों को फर्श पर बेसुध लहूलुहान पड़ा देख खुद पुलिस कमिश्नर को लगा कि ये डबल मर्डर का मामला है, यानी दोहरे हत्याकांड का। लेकिन तभी जब पुलिस वाले बच्चे के करीब गए तो उन्हें एहसास हुआ कि बच्चे की सांसें अब भी जिंदा है। हैरान पुलिस वाले फौरन बच्चे को गोद में उठाते हैं और अस्पताल की तरफ भागने की कोशिश करते हैं। हद से ज्यादा खून बह चुका था और हर लम्हा कीमती था। पर कमबख्त ऐन वक्त पर छठी मंजिल का लिफ्ट भी साथ नहीं दे रहा था। खैर, किसी तरह लिफ्ट आई और पुलिस वाले बच्चे को लेकर अस्पताल भागे।
5: Initially, we also had information that it's a case of double murder. So it was about 6:30, 6:45. I had gone to one of the hospitals for the checkup of my children. So in the process, I got to know about this incident, and my ACP inspector were also there. They had come to meet me on some issue, and quickly we rushed to the spot. By then, a few doctors had visited the spot, and some of the neighbors and some family members also had visited the spot. But they thought it appropriate not to touch the body, not to see the boy, not to see the person who was Kiran. And I felt very sorry about the incident, and I tried properly seeing the face of the kid, and also tried to know where the injuries have taken place. So there I realized that he was breathing, and I tried observing at his abdominal portion. I could clearly sense that he is breathing, and quickly was taken out of the spot and shifted to hospital. So very unfortunate that a lot of people had been there, but no one from the police department, because I was among the first few people from the police department who went there.
1: कमरा अब भी वही है, बस दो चीजें अब बदली हुई हैं। पहली, महिला अब उठकर बेड पर बैठ चुकी है। दूसरी, अब फर्श पर बच्चा नहीं है, क्योंकि वो अस्पताल जा चुका है। जाहिर है सामने किसी के हाथ में मोबाइल है और वो वीडियो बना रहा है, और वो महिला बेफिक्र अंदाज में अब भी बस देखे जा रही है। लगभग बेटे के साथ साथ दूसरे कमरे में मौजूद महिला के पति को भी पुलिस उसी वक्त अस्पताल ले जा चुकी थी। थोड़ी देर में अस्पताल से खबर आई, पति मर चुका है पर बेटा अब खतरे से बाहर है। अब चूंकि घर में सिर्फ तीन लोग थे, दो अस्पताल जा चुके और तीसरी ये महिला बिल्कुल ठीक ठाक, लिहाजा पुलिस को भी ज्यादा सोचना नहीं पड़ा कि मामला है क्या। सीसीटीवी कैमरे तब तक तस्वीरें दिखा चुके थे कि इस फ्लैट में चौथा कोई आया ही नहीं और फ्लैट से बाहर कोई गया ही नहीं। तो क्या इस महिला ने ही अपने पति और बेटे को मारा, यानी क्या इस महिला ने पति का कत्ल किया और बेटे के कत्ल की कोशिश?
5: एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर किरण इज अक्यूज्ड, इज फाउंड डेड इन हिज रेसिडेंस एंड फैमिली मेंबर्स ऑफ किरण हैव अक्यूज्ड दैट हिज वाइफ Priyanka has committed murder. Also, the son of Kiran and Priyanka, who happens to be of about 8 years, was also stabbed on his chest portion.
1: इन्हीं सवालों के साथ पुलिस महिला से पूछताछ शुरू करती है, लेकिन वो शायद खुद ही पूरी तरह होश में नहीं थी, बहकी बहकी बातें करने लगी। पुलिस को कुछ समझ नहीं आया। मौके की नजाकत को देखते हुए पुलिस ने तय किया कि उसे पूछताछ के लिए थाना ले जाने की बजाय पहले अस्पताल ले जाते हैं, फिर महिला को भी अस्पताल ले जाया गया।
5: And we are yet to ascertain as to how the sequence of events have gone through.
7: What is the mental status?
5: That probably the concerned competent doctors can give. While I tried to inquire with her, she was not in good frame of mind. She did not respond to our questions properly. That is why she was taken to hospital.
1: डॉक्टर ने जांच की तो पता चला कि इंसुलिन का ओवरडोज लेकर शायद वो भी मरने की तैयारी कर रही थी।
5: And Priyanka was taken to custody, Dr. Priyanka, and upon examination and as she was showing some medical signs of unhealthiness and she was not in her good senses. She was taken to local hospital and we got to know that she has injected herself with insulin at a very high dose to commit suicide. And she is now shifted to King's Hospital. Once she is fit for discharge and able to cooperate with our investigation, we will take her to our custody and follow up the due procedure.
1: घर के अंदर पति और बेटे को लहूलुहान छोड़ बेड पर मोबाइल में उलझी ये जो महिला है, इसका नाम है डॉक्टर प्रियंका, एक बेहद पढ़ी लिखी और पेशे से आई स्पेशलिस्ट। घर के अंदर दूसरे कमरे में लहूलुहान औंधे मुंह जो शख्स पड़ा है, उसका नाम है डॉक्टर किरण। डॉक्टर किरण भी डॉक्टर है, ये एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट है, यानी इनका काम हर ऑपरेशन से पहले मरीज को बेहोश करना होता है। डॉक्टर किरण और डॉक्टर प्रियंका पति पत्नी है और दोनों की ही ये दूसरी शादी थी, 9 साल पहले हुई थी। इन दोनों का बेटा निहित है जो घायल फर्श पर पड़ा था। 15 जुलाई की सुबह डॉक्टर किरण अस्पताल नहीं पहुंचे तो उनके साथियों ने उन्हें फोन किया। जब उन्होंने फोन नहीं उठाया तो डॉक्टर प्रियंका को फोन किया। डॉक्टर प्रियंका ने कभी कहा कि वो सो रहे तो कभी झूठ बोला कि वो घर से बाहर है। कुछ रिश्तेदारों के भी फोन आए, प्रियंका ने उनसे भी झूठ बोला, पर डॉक्टर किरण वक्त के बहुत पाबंद थे। अस्पताल में उनके साथियों को लगा कि कुछ गड़बड़ है। इसी के बाद एक साथी उनके घर पहुंचा, दरवाजा खुला था। पहले कमरे में ही फर्श पर पड़े डॉक्टर किरण को देखते ही उसकी चीखें निकल गईं। वो बाहर आकर शोर मचाने लगता है, तभी पड़ोसी आते हैं और तब ये तस्वीर सामने आती है। दूसरे कमरे में फर्श पर पड़ा लहूलुहान बेटा और बेड पर लेटी मोबाइल में उलझी माँ। अब चूंकि डॉक्टर किरण मर चुके हैं, बेटा फिलहाल बयान देने की हालत में नहीं और खुद डॉक्टर प्रियंका अस्पताल में है, तो इसे कत्ल और दूसरे कत्ल की कोशिश के पीछे की पूरी वजह पूरी तरह से अभी भी सामने नहीं आ पाई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि पति और पत्नी के बीच काफी वक्त से रिश्ते अच्छे नहीं थे और दोनों में अक्सर झगड़े हुआ करते थे।
5: Family members say that there has been a lot of family issues between the husband and wife, and in the past also she has threatened him of killing him, and that time she has beaten him it assaulted. So all these things have happened that the family members say now. And when she is out of the hospital, we would be in a position to connect the dots and find out why this whole incident.
1: शुरुआती एग्जामिन के बाद डॉक्टरों ने बताया है कि डॉक्टर प्रियंका की हालत फिलहाल ठीक है और उन्हें कोई मानसिक बीमारी भी नहीं। एक बार अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद धारवाड़ पुलिस डॉक्टर प्रियंका से ये जानना चाहती है कि झगड़े की वजह से उसने अपने पति का कत्ल किया। ये बात तो समझ में आती है, लेकिन अपने बेटे की जान लेने की कोशिश क्यों की? सगाय राज, धारवाड़, हुबली, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देख
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

राहुल प्रियंका समेत सभी नेताओं को पुलिस ने किया रिहा। प्रधानमंत्री आवास के सामने 3.5 घंटे चला प्रदर्शन। हाई वोल्टेज हंगामे के बाद पुलिस ने जबरदस्ती हटाया। नई दिल्ली के मंदिर मार्ग थाने में कांग्रेस नेताओं से जाकर मिली सोनिया गांधी। रिहाई के बाद बोली प्रियंका, बच्चों की बात क्यों नहीं सुन रही है सरकार। मोदी सरकार पर राहुल प्रियंका का बड़ा हमला, लोकतंत्र के लिए बताया खतरनाक। जितेंद्र सिंह का आरोप, नेता विपक्ष ने बदली अपनी बात। धर्मेंद्र प्रधान बोले, राहुल गांधी का मकसद टकराव करना। नितिन नवीन ने भी की निंदा। राहुल के धरने को आम आदमी पार्टी ने बताया बीजेपी से मिली भगत। कहा, यह सीजेपी के प्रदर्शन को कमजोर करने की साजिश है। आतिशी ने किया कटाक्ष, क्या जुगलबंदी है। और संसद हंगामे के बीच प्रधानमंत्री ने एनडीए मीटिंग में दिया कड़ा संदेश। कहा, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। पेपर लीक पर लिया कड़ा एक्शन।

0: दिल्ली में एसीजेवी प्रदर्शन पर सीएम फडणवीस का हमला, बोले आंदोलन में कुछ लोग अपना एजेंडा आगे बढ़ाने और शांति पैदा करने के लिए हुए हैं शामिल। बहुजन वंचित अघाड़ी अध्यक्ष प्रकाश अम्बेडकर का महाराष्ट्र बंद का ऐलान, दिल्ली में छात्रों का कथित लाठीचार्ज के विरोध में 23 जुलाई को बंद का आह्वान किया गया। झाला में ऐसे आरक्षण उपवर्गीकरण के विरोध में विशाल मोर्चा, आनंद राज अम्बेडकर ने सरकार पर साधा निशाना। रिपब्लिकन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद राज अम्बेडकर की फडणवीस सरकार को चेतावनी, बोले ऐसे आरक्षण उपवर्गीकरण जबरदस्ती लागू करने की कोशिश की तो चुकानी पड़ेगी कीमत। पालघर में ग्रीनफील्ड हाईवे के विरोध में ग्रामीणों का गुस्सा फूटा, पेड़ों की कटाई का विरोध कर रहे ग्रामीणों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की, 15 प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मल्टी स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने की तैयारियां, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल स्टेडियम बनाने के लिए एमओयू, स्टेडियम में 35,000 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। महाराष्ट्र में 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, भंडारा गोंदिया समेत चंद्रपुर और गढ़चिरौली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, मौसम विभाग की हाई टाइड की भी चेतावनी। नवसारी जिले में लगातार हो रही बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त है, शहर के कई निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति। महाराष्ट्र के बीड में एनसीपी शरद पवार गुट के नेता कार्यालय में लगाई गई थी आग, सीसीटीवी फुटेज सामने आई, जांच में जुटी हुई है पुलिस। महाराष्ट्र के अकोला में अलंकार मार्केट में भीषण आग लगी, इलेक्ट्रॉनिक की 3 दुकानें जलकर खाक हुई, लाखों का नुकसान। पुणे के लोहगढ़ किले के ऐतिहासिक जलकुंड में पर्यटकों की लापरवाही, तैराकी का वीडियो वायरल होते ही बजरंग दल ने इसे रोका। अहमदाबाद में करीब 40 करोड़ के अवैध पटाखे जब्त किए गए, 2 गोदाम सील किए गए, 2 की गिरफ्तारी। वडोदरा में 5वीं मंजिल से कूदकर महिला ने जान देने की कोशिश की, लोगों की सूझबूझ से बची उसकी जान। सूरत में ग्राहक को परोसी गई मंचूरियन का प्लेट में चूहा मिलने के बाद जबरदस्त हंगामा हुआ, वीडियो वायरल हुआ, घटना को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश है। अगले महीने होने वाले FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप के लिए 20 मेंबर्स को भारतीय टीम की घोषणा की गई, बेल्जियम और नीदरलैंड्स में होंगे मुकाबले। अनुभवी ड्रैग फ्लिकर हरमनप्रीत सिंह होंगे कप्तान, डिफेंडर अमनदीप लकड़ा, मिडफील्डर राजकुमार पाल, रविचंद्र सिंह और मोइंगरान थिम और फॉरवर्ड सेल्वम कार्थी को टीम से बाहर किया गया। भारतीय टीम 15 अगस्त को वेल्स के खिलाफ शुरू करेगी अभियान, 19 अगस्त को चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से मुकाबला। 23 जुलाई से शुरू होगी भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज, आयरलैंड और इंग्लैंड से T20 सीरीज हारने के बाद अहम है यह सीरीज। बीसीसीआई ने घरेलू टूर्नामेंट और भारत में खेले जाने वाले इंटरनेशनल मैचों के टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स के लिए जारी कर दिया है टेंडर, अगस्त में खत्म हो रहा है मौजूदा स्पॉन्सर का करार। ओ माय गॉड 2 के डायरेक्टर अमित राय की अगली फिल्म है ओ माय डॉग, ट्रेलर सामने आया, 31 जुलाई को रिलीज होगी। थलापति विजय की जन नायकन की रिलीज में चंद दिन बाकी रहे, नया प्रोमो रिलीज किया गया। नेटफ्लिक्स पर जल्दी रिलीज होगी ऑपरेशन सफेद सागर की शौर्य गाथा की जुड़ी कहानी, 7 अगस्त 2026 को OTT प्लेटफॉर्म पर लॉन्च की जाएगी वेब सीरीज। 17 साल के बाद बड़े पर्दे पर लौट रहे हैं फुनसुक वांगडू, 4 सितंबर को थिएटर्स में री रिलीज होगी आमिर खान की 3 इडियट्स। एक्टर मिथुन चक्रवर्ती की बेटी दिशानी चक्रवर्ती की सगाई हुई, अपने मंगेतर माइल्स के साथ सगाई की तस्वीरों को शेयर किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। मुंबई मेट्रो में आपका स्वागत है। मॉनसून सत्र के पहले दिन कॉकरोच जनता पार्टी के जंतर मंतर से संसद चलो मार्च पर जबरदस्त हंगामा देखा गया, पुलिस के साथ भिड़ंत, और अगले दिन प्रधानमंत्री आवास के पास कांग्रेस का हाई वोल्टेज ड्रामा और धरना प्रदर्शन। पुलिस का राहुल गांधी को धरने से जबरदस्ती उठाना, प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के कई बड़े नेताओं और साथ ही अखिलेश यादव समेत विपक्ष के कई दिग्गजों को हिरासत में लेना, दिल्ली से लेकर पूरे देश में इसी पर चर्चाएं जारी हैं। नीट पेपर लीक पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग से शुरू हुआ ये विरोध प्रदर्शन कैसे प्रधानमंत्री आवास यानी कि 7 लोक कल्याण मार्ग तक पहुंच गया, आइए आपको दिखाते हैं आज दिन भर क्या क्या हुआ। सबसे पहले उसकी झलक देखिए।
1: हम नहीं डरते इनसे, ये हमसे डरो यार। डेमोक्रेसी इन इंडिया इज हैपनिंग राइट नाउ।
2: आप लोगों को समझाने की कोशिश जितेंद्र,
3: देखिए जिम्मेदारी ये बनती है कि प्रधानमंत्री मांगे, मांग को तो माने, चाहे मांग को तो माने, अभी तक अपनी मांग क्यों नहीं मांग रहे।
4: एलओपी का इस प्रकार का व्यवहार रहे कि वो अपने पक्ष को इतनी जल्दी बदलते हैं।
5: डरपोक है सरकार, बात नहीं करती, डरपोक।
6: हम शुरू से कहते रहे राहुल गांधी जी अराजकता के प्रतीक बनकर उभरे।
7: अचानक बिना किसी परमिशन के कानून को ताक में रख के जिस प्रकार से एक बड़ी संख्या के साथ एक सिट इन प्रोटेस्ट किया, यह उचित नहीं।
0: तो जबरदस्त हंगामा आपने देखा। और आपको बता दें कि नीट पेपर लीक मामले पर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ जहां छात्र सड़कों पर अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इस मुद्दे पर अब महाराष्ट्र में भी सियासत गर्मा गई है। सीएम फडणवीस ने कहा है कि छात्रों की आड़ में कुछ लोग अपना एजेंडा चला रहे हैं। तो जूनियर ठाकरे ने कहा है कि जंतर मंतर पर मार्च करने वाले बच्चों को आतंकवादी कहना दिखाता है कि इनकी सोच कितनी गिर चुकी है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि अगर आंदोलन में असामाजिक तत्व घुस रहे हैं तो यह खुफिया एजेंसियों और सरकार की बुरी तरह से नाकामी है।
8: नीट पेपर लीक विवाद में महाराष्ट्र में महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। सीएम फडणवीस ने पेपर लीक प्रोटेस्ट पर विपक्ष को घेरते हुए कह दिया कि छात्रों की आड़ में कुछ लोग अपना सियासी एजेंडा चलाने के लिए आंदोलन में घुस गए हैं।
9: दादा भाऊ काय बोलले हे मला माहिती नाही। माझं मत असं आहे की मी पुन्हा सांगतो, आंदोलन करणारे काही लोक हे चांगल्या भावनेने करणारे असू शकतात, मला त्यांच्याबद्दल म्हणायचं नाही, पण हे तेवढंच खरं आहे की त्याच्यामध्ये काही लोक आपला अजेंडा घेऊन शिरलेले आहेत, हे मात्र स्पष्ट दिसतंय। त्यातल्या अनेक लोकांना नीट काय हे देखील माहिती नाही, परीक्षा कधी झाली हे देखील माहिती नाही, ते आपापला अजेंडा त्या ठिकाणी सांगून राहिलेले आहेत। याचा अर्थ काय? याचा अर्थ असा आहे की सगळे काही एका दिशेने चालणारे एका विचाराकरता तिथे आलेले नाही आहेत। हौशे नवशे गौशे देखील आपापला अजेंडा पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करतायत, आणि काही राजकीय पक्ष ज्यांना त्या त्या राज्यांमध्ये रिजेक्ट केलेलं आहे, असे पक्ष यातून आपल्याला पुन्हा काहीतरी मिळवता येईल का असाही प्रयत्न करतात।
8: किसान नेता और महायुति के MLC सदाभाऊ खोत ने भी इंडिया गठबंधन पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष इस आंदोलन की आड़ में देश में डर और आतंक जैसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। खोत ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को पूरी तरह से बेबुनियाद बताया और कहा कि सरकार किसी के दबाव में झुकने वाली नहीं है।
10: इंडिया आघाड़ी के सहयोगी पक्ष पूरे देश में सरकार के विरोध में आतंकवाद जैसे विचार वो फैला रही है। अभी नीट के बारे में आंदोलन चल रहा है, क्या मोदी सरकार हटाने के लिए आंदोलन चल रहा है? अभी मेरे समझ में नहीं आ रहा कि आंदोलन किस मुद्दे से चल रहा है। यानी मुझे लग रहा है कि यह आंदोलन दिशाहीन हो गया है, यह आंदोलन मुद्दे पर नहीं चल रहा है, यह आंदोलन इंडिया सरकार के खिलाफ चल रहा है। परीक्षा भी हो गई है, तो बाद में आंदोलन का क्या ये मजाक रखा है? वो धर्मेंद्र प्रधान जी का कोई संबंध नहीं है सीधा, लेकिन उनको ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं उसके बाद मोदी सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, ये मुझे लगता है कि यह आंदोलन गलत रास्ते से जा रहा है।
8: सीएम फडणवीस और सदाभाऊ खोत के बयान के बाद विपक्ष हमलावर है। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार बोले, आंदोलन कर रहे छात्रों को आतंकवादी कहना बेहद शर्मनाक है।
11: सदाभाऊ, इस राज्य के अंदर में किसानों का हो या कोई भी आंदोलन में अग्रेसर रहने वाले आंदोलनकर्ताओं को जो बच्चों ने आंदोलन किया है जंतर मंतर पे या संसद पे मोर्चा निकाला है, उनको दहशतवादी कहना, आतंकवादी कहना, मैं बोलता हूँ इनकी सोच बिगड़ गई है। ये सत्ता में इतने बह चुके हैं कि इनको नैतिकता नीतिमत्ता की कोई ध्यान ही नहीं है। ये उन्होंने धर्मेंद्र प्रसाद का राजीनामा मांगना चाहिए नैतिकता के आधार पर, वो नहीं करते हुए केवल वो आंदोलन करते बच्चों को, लाखों बच्चों को आप वो आतंकवादी कहना, दहशतवादी कहना, इसका मतलब यह है तुम अभी सत्ता में मशगूल होकर सत्ताधारियों के फौज में दाखिल होकर वही फायदा उठाने के लिए तुम अभी ज्यादा लोगों के नजर में फेमस है। अभी तुम लोगों के प्रश्नों को लेकर, किसानों को, बच्चों को, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं रहा, यही अभी दिखता है।
8: वहीं शिवसेना यूबीटी और एआईएम ने भी सरकार की नियत और इंटेलिजेंस पर सवाल खड़े कर दिए
12: कि भाजपा को तकलीफ है कि कोई भी एजुकेशन के बारे में बात करे, भाजपा को तकलीफ है कि इस भारत के बारे में कोई बात करे, भाजपा को तकलीफ है कि कोई भी शिक्षा व्यवस्था पे बात करे, और यही तो बात है, और इसीलिए तो वो एंटी सोशल एलिमेंट कहते हैं। अगर उनको सच में लगता है कि कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, चाइना है, पाकिस्तान है, एंटी नेशनल है, सोरोस है, तो पिछले 12 साल से प्रधानमंत्री आप ही के हैं, भाजपा के हैं, गृहमंत्री आप ही के, भाजपा के हैं, आप खुद मुख्यमंत्री हो और भाजपा के गृहमंत्री भी हो, तो आपने क्या काम किया कि आप सब फेलियर हो, ये भी जवाब दे सीएम साहब।
13: नीट का पेपर लीक हो गया, 22 लाख स्टूडेंट के करियर के साथ खिलवाड़ हो गया, जिसमें तकरीबन 20 स्टूडेंट ने आत्महत्या कर ली। टीईटी का पेपर लीक हो गया, सीबीएसई के अंदर इतना ये आ गया, तो स्टूडेंट चाहते थे कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो, सरकार के कान तक बात जाए। तो उन्होंने एक आंदोलन किया जो संवैधानिक तौर से अधिकार है, डेमोक्रेसी के अंदर हम रहते हैं, नॉन वायलेंट था, पीसफुल था, सरकार को उनसे डायलॉग स्टार्ट करना चाहिए।
0: तो जबरदस्त हंगामा लगातार जारी है, और आपको बता दें कि दोनों ही तरफ से लगातार बयान भी जारी किए जा रहे हैं। राहुल गांधी की तरफ से भी छात्रों के इस आंदोलन पर एक बयान जारी किया गया है, छात्रों के इस मुद्दे को देश के सामने लाने की कोशिश की है, ये राहुल गांधी ने कहा है। और क्या कहा है नेता विपक्ष ने, सुनिए।
14: दूसरा कि स्टूडेंट्स को जिन्होंने मारा है, जिन्होंने ह्यूमिलिएट किया है, उन पर एक्शन लिया जाए, और जो भी स्टूडेंट्स पर केसेस हैं उनको हटाया जाए। फाइनली पूरी ऑपोजिशन चाहती है कि ये जो इशू है, देश का सबसे बड़ा इशू है, इस पे कल लोकसभा में, राज्यसभा में डिबेट हो और हम अपनी बात रख सकें। मेरा मोदी जी से एक सजेशन है, एज एलओपी, कल जो हुआ, जो आपकी सरकार ने, आपके होम मिनिस्टर ने किया, उसके लिए आप देश के स्टूडेंट से माफी मांगिए, और जल्दी से जल्दी एग्जामिनेशन सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम्स पर रिफॉर्म शुरू कीजिए। आप सब ने हमारा समर्थन किया, सारे लोग जो स्टूडेंट्स की इशू के लिए लड़ रहे हैं, एक साथ लड़ रहे हैं, मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ। दिस मॉर्निंग आई वेंट एंड मेट द स्पीकर ऑफ द लोकसभा।
0: आपने नेता विपक्ष के नाते उन्होंने तमाम बातें कही, उन्होंने कहा भारत की शिक्षा व्यवस्था कमजोर हो रही है, जिस पर काम करने की जरूरत है। धर्मेंद्र प्रधान का राहुल गांधी ने इस्तीफा मांगा है सीधे सीधे, उन्होंने कहा कि माफी मांगनी चाहिए सरकार को जिस तरीके से छात्रों के साथ व्यवहार किया गया है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बहुत जरूरी है कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसमें सुधार होना चाहिए, परीक्षा सिस्टम सुधरना चाहिए। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं कि क्या कहा गया है राहुल गांधी की तरफ से।
14: और जो स्टूडेंट्स की इशू है, जो देश के लिए सबसे जरूरी इशू है, और जो उनके खिलाफ किया गया है, वो हम देखते चलो। दीजला धर्मेंद्र प्रधान, दूसरा की एब्सोल्युटली नथिंग रॉन्ग विद आस्किंग दीज क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स की मांगे हैं, पहला धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह का रेजिग्नेशन, दूसरा कि स्टूडेंट्स को जिन्होंने मारा है, जिन्होंने ह्यूमिलिएट किया है, उन पर एक्शन लिया जाए और जो भी स्टूडेंट्स पर केसेस हैं उनको हटाया जाए। फाइनली पूरी ऑपोजिशन चाहती है कि ये जो इशू है, देश का सबसे बड़ा इशू है, इस पे कल लोकसभा में राज्यसभा में डिबेट हो और हम अपनी बात रख सकें। मेरा मोदी जी से एक सजेशन है, एज एलओपी कल जो हुआ, जो आपकी सरकार ने, आपके होम मिनिस्टर ने किया, उसके लिए आप देश के स्टूडेंट से माफी मांगिए और जल्दी से जल्दी एग्जामिनेशन सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम्स पर रिफॉर्म शुरू कीजिए। आप सब ने हमारा समर्थन किया, सारे लोग जो स्टूडेंट्स की इशू के लिए लड़ रहे हैं, एक साथ लड़ रहे हैं, मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। दिस मॉर्निंग आई वेंट एंड मेट दिस।
0: तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल गौतम जुड़ गए। राहुल, तमाम बातें राहुल गांधी की तरफ से कह दी गई और एक बार फिर से उन्होंने कहा है कि इस्तीफा जरूरी है, साथ ही साथ छात्रों से केसेस हटाए जाएं और माफी मांगी जाए जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया गया।
15: लेकिन इस्तीफा जो है वो लगातार मांग रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान का, जो कि एजुकेशन मिनिस्टर है, लेकिन अब जो है बात वो आगे बढ़ चुकी है। वो कह रहे हैं कि अमित शाह को भी इस्तीफा देना चाहिए। जिस प्रकार से पुलिस का एक्शन हुआ कल जंतर मंतर और उसके आसपास के इलाकों में छात्रों के ऊपर, उसके लिए अमित शाह को भी इस्तीफा देना चाहिए। इसके अलावा वो प्रधानमंत्री से माफी भी की अपील कर रहे हैं या मांग कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि उनको छात्रों से माफी मांगनी चाहिए जिस प्रकार से उनके ऊपर कथित तौर से पुलिस की बर्बरता हुई। तो कुल मिलाकर आप ये देखिए, और उन्होंने ये भी कहा कि हम लगातार इस मांग को उठाएंगे। कल भी जब लोकसभा और राज्यसभा कन्वीन होगी तब भी जो विपक्ष है वो इस मामले को उठाएगा। तो कुल मिलाकर कांग्रेस कतई इस मूड में नहीं है कि सरकार को कोई भी स्पेस दिया जाए। वो लगातार सरकार पर दबाव बढ़ा रहे हैं। कल
0: राहुल वैसे भी लगातार जिस तरीके से कहा जा रहा था कि बात मान ली गई थी कि इस पर हम काम करेंगे, फिर उन्होंने इस्तीफे की मांग की और जैसा कि अभी बयान सुना और आपने भी जिक्र किया कि यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ राहुल गांधी की मांग है कि अमित शाह को भी इस्तीफा देना चाहिए और इस सरकार को, प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए।
15: देखिए, ये दबाव की राजनीति है। कांग्रेस को लगता है कि सरकार बैकफुट पर है और उनसे कुछ गलतियां हुई हैं इस पूरी सिचुएशन को हैंडल करने के बाबत। तो ऐसे में अब आपने जैसा खुद भी कहा और जैसा राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि ना सिर्फ इस्तीफा आप हो एजुकेशन मिनिस्टर का, बल्कि गृह मंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए जिस प्रकार से कल स्थिति बनी और छात्रों की पिटाई हुई कथित तौर पर। तो कुल मिलाकर देखिए, कांग्रेस को लगता है कि सरकार बैकफुट पर है और उसको जितना धकेला जाए उतना उनको लगता है कि उसका उनको फायदा होगा। इसीलिए लगातार पॉलिटिकल मैसेजिंग चल रही है पार्टी की तरफ से कि देखिए, हम छात्रों के साथ खड़े हैं, हम लोकसभा में ही मुद्दे को उठाना चाहते थे, हमको अलाउ नहीं किया गया, उसके बाद हम पे कोई चारा नहीं था, हम प्रधानमंत्री के घर चले गए, उसके बाद हमें डिटेन कर लिया गया। तो कुल मिलाकर जो ऑप्टिक्स हैं आप देखिए समझिए, वो तमाम ये चीजें दर्शाती हैं कि कांग्रेस को ये लगता है कि सरकार बैकफुट पर है और उसको और धकेला जाए तो उनको शायद फायदा मिलेगा। और ये भी मैसेजिंग वो लगातार कर रहे हैं कि हम छात्रों के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। ये बिरले ही होता है कि सोनिया गांधी आपको दिखे तमाम चीजों के अंदर राजनीतिक जो चीजें हैं, लेकिन आज सोनिया गांधी भी पहुंची, प्रियंका गांधी को जब रिटेन किया गया था राहुल गांधी भी मौजूद थे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी, अखिलेश यादव भी पहुंचे, सुप्रिया सुले भी पहुंची। तो एक विपक्ष की एक साझा रणनीति है कि सरकार को इस पूरे मामले पर घेरा जाए। सरकार को उनको लगता है कि सरकार ने बहुत सारी गलतियां करी हैं इस पूरे मामले पर। तो कुल मिलाकर आप ये मान के चलिए कि ये जो तापमान बढ़ाने की कोशिश है विपक्ष की तरफ से, ये आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा।
0: तो क्या इसके बाद अभी पक्ष की तरफ से, मतलब सरकार की तरफ से कोई अभी तक प्रतिक्रिया आई है? क्योंकि तमाम बातें राहुल गांधी की तरफ से कह दी गई और काफी कड़ा संदेश एक बार फिर से देने की कोशिश हुई, यानी आगे यानी कल से मुश्किलें कम नहीं होने जा रही है सरकार की।
15: देखिए, बिल्कुल कतई मुश्किल जो है सरकार की कम नहीं होने वाली है। कांग्रेस का ये साफ कहना है कि यहाँ अपने जो स्टैंड है उससे पीछे नहीं हटेंगे। आपको ध्यान होगा आज डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि एमओएस है पीएमओ में, वो भी गए थे, उनसे भी जो बातचीत है वो पूरी तरीके से फेल रही। तो कुल मिलाकर सरकार जो जो जो विपक्ष है वो इस पर हमलावर है और उनका ये साफ तौर पर कहना है कि सरकार जो बातें कर रही है कि हमने नीट एग्जाम को दोबारा से वो कराया, कंडक्ट कराया, दोबारा से उसको एग्जाम को लिया गया, हमने बहुत सारी चीजें करी हैं ताकि छात्रों को राहत मिले, उन तमाम चीजों को विपक्ष आप कह सकते हैं कि रिजेक्ट कर रहा है। उन्होंने कहा कि अभी भी बहुत सारी चीजों की गुंजाइश है जो सरकार नहीं कर रही है, और जो कल स्थिति बनी उसको डिफ्यूज करने के लिए भी उन्होंने कुछ नहीं किया। तो आप देखिएगा आने वाले दिनों में भी संसद से लेकर सड़क तक जो ये लड़ाई विपक्ष लड़ रहा है वो जारी रहेगी।
0: आप बने रहे हैं हमारे साथ राहुल गौतम। एक बार फिर से राहुल गांधी का ये बयान सुना देते हैं जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ अमित शाह का भी इस्तीफा होना चाहिए और प्रधानमंत्री को इस पूरे मामले पर सरकार को माफी मांगनी चाहिए। एक बार फिर से सुनिए नेता विपक्ष को।
14: स्टूडेंट्स की मांगे हैं, पहला धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह का रेजिग्नेशन, दूसरा की स्टूडेंट्स को जिन्होंने मारा है, जिन्होंने ह्यूमिलिएट किया है, उन पर एक्शन लिया जाए और जो भी स्टूडेंट्स पर केसेस हैं उनको हटाया जाए। फाइनली पूरी ऑपोजिशन चाहती है कि ये जो इशू है, देश का सबसे बड़ा इशू है, इस पे कल लोकसभा में राज्यसभा में डिबेट हो और हम अपनी बात रख सकें। मेरा मोदी जी से एक सजेशन है, एज एलओपी कल जो हुआ, जो आपकी सरकार ने, आपके होम मिनिस्टर ने किया, उसके लिए आप देश के स्टूडेंट से माफी मांगिए और जल्दी से जल्दी एग्जामिनेशन सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम्स पर रिफॉर्म शुरू कीजिए। आप सब ने हमारा समर्थन किया, सारे लोग जो स्टूडेंट्स की इशू के लिए लड़ रहे हैं, एक साथ लड़ रहे हैं, मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं।
0: राहुल, फिर से सवाल वही कि कल से मुश्किलें क्या और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि महाराष्ट्र से भी तमाम बड़े नाम, चाहे वो शरद पवार हो, सुप्रिया सुले हो, उद्धव ठाकरे हो, पहुंच चुके हैं। अखिलेश यादव यहां पहले से ही, और जिस तरीके से विपक्ष एकजुट हुआ है, जिस तरीके से सबने मिलकर मोर्चा खोला है, कहीं ना कहीं कल का दिन भी आसान नहीं होगा और अभी इस मुद्दे को लेकर जबरदस्त हंगामा हमें देखने को मिलेगा।
15: ये धुनी बन गए हैं जिसमें तमाम विपक्षी जो पार्टियां हैं वो एक हो गई है। आप देखिए अभिषेक बैनर्जी ने भी ट्वीट किया, सुप्रिया सुले भी गई इस प्रदर्शन के दौरान, राहुल गांधी वहां पर बैठे थे, धरने पर बैठे थे, शरद पवार जंतर मंतर गए। तो कुल मिलाकर ये एक तरीके से रैलिंग पॉइंट बन गया है, एक धुरी बन गया है जिसमें तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो एक साथ आ रही हैं। तो कतई आप ये कह सकती हैं बिल्कुल पुख्ता तौर पर कि कल भी आसान

0: तस्वीरें शेयर कर रही है जिसमें राहुल गांधी के कपड़े गंदे हैं, उनको घसीटा जा रहा है, उनके पैर में एक जूता नहीं है, उनके नाक के पास से खून निकल रहा है। तो जाहिर है आपको ये सब बताता है कि कांग्रेस फिलहाल इस मुद्दे को छोड़ने वाली नहीं है, वो सरकार को पूरी तरीके सरकार के ऊपर हमलावर है। और ना सिर्फ राहुल गांधी हमलावर है क्योंकि वो नेता विपक्ष है, तो जो पूरा समूचा विपक्ष है वो भी उनके पीछे खड़ा हुआ दिख रहा है।
1: बिल्कुल राहुल, और अभी भी जो स्टेटमेंट जारी किया गया इसमें सिर्फ एक ही सॉक्स पहना हुआ है राहुल गांधी ने, जिस तरीके से उन्होंने पूरा का पूरा बयान दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। जैसा कि राहुल बता रहे थे और बयान कर रहे थे कि किस तरीके से आज उन्हें डिटेन किया गया था, नाक से खून बहता हुआ नजर आया, जिस तरीके से तमाम बयान उनकी तरफ से दिए गए, विपक्ष पूरी तरह से एकजुट नजर आ रहा है। राहुल गांधी की तरफ से जो बयान जारी किया गया जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, अमित शाह का इस्तीफा होना चाहिए, सरकार की तरफ से माफी मांगनी चाहिए, जो आरोप और धाराएं लगाई गई हैं छात्रों पर वो वापस ली जानी चाहिए और छात्रों की मांग पूरी होनी चाहिए और हम छात्रों के साथ हैं, हम एकजुट हैं। और इसी के साथ हम यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: दिस इज द साउंड ऑफ क्लेयर कुकिंग डिनर एट होम एंड दैट्स द साउंड ऑफ अ फ्रॉड अलर्ट फ्रॉम वेल्स फार्गो फ्लैगिंग अ चार्ज फॉर अ प्राइसी रेस्टोरेंट इन पेरिस। कंसीडरिंग क्लेयर इजंट इन पेरिस राइट नाउ, दैट सीम्ड ऑड टू द बैंक एंड टू क्लेयर। टू टैप्स लेटर क्लेयर सेज नोप टू द चार्ज एंड वेल्स फार्गो इज ऑन द केस। However you make money work, Wells Fargo can work with that.
4: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
2: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.

राहुल गांधी ने जारी किया वीडियो संदेश, केंद्र पर साधा निशाना। बोले भारत की शिक्षा व्यवस्था हो रही है कमजोर। धर्मेंद्र प्रधान का मांगा इस्तीफा। प्रियंका समेत सभी कांग्रेस के नेता हिरासत से छोड़े गए। नई दिल्ली के मंदिर मार्ग थाने में कांग्रेस के नेताओं से जाकर मिली सोनिया गांधी। रिहाई के बाद बोली प्रियंका, बच्चों की बात क्यों नहीं सुनी जा रही। मोदी सरकार पर राहुल और प्रियंका का बड़ा हमला, लोकतंत्र के लिए बताया खतरनाक जितेंद्र सिंह का आरोप। नेता विपक्ष ने बदली अपनी बात, धर्मेंद्र

बोले, राहुल गांधी का मकसद टकराव करना, नितिन नवीन ने भी निंदा की। राहुल के धरने के बाद आम आदमी पार्टी ने इसे बताया बीजेपी से मिलीभगत, कहा ये सीजेपी के प्रदर्शन को कमजोर करने की साजिश है। आतिशी ने किया कटाक्ष, क्या जुगलबंदी है। और संसद हंगामे के बीच प्रधानमंत्री ने एनडीए मीटिंग में दिया कड़ा संदेश, कहा नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर नहीं होगा बर्दाश्त, पेपर लीक पर लिया कड़ा एक्शन।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आ रही है, वो हम आपको बता दें। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सोनम वांगचुक से मुलाकात की है और सूत्रों के मुताबिक जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोनम वांगचुक से मुलाकात की है। सोनम वांगचुक फिलहाल गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं। सफदरजंग से उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था। उनकी पत्नी लगातार यही मांग कर रही थी और आपको बता दें कि हालत अभी उनकी स्थिर है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब से कुछ ही देर पहले मुलाकात हुई है, बहुत ही महत्वपूर्ण इस मुलाकात को माना जा रहा है। आज पूरे दिन चले सियासी हंगामे के बाद ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा जुड़ गए। हिमांशु, और क्या जानकारी है, कितनी देर पहले मुलाकात हुई है और क्या साफ हो पाया है कि क्या बातचीत हुई?
1: देखिए, बिल्कुल आज, क्योंकि इससे पहले भी जेपी नड्डा जो है सुबह प्रोटेस्टर से मिलने गए थे आरएमएल हॉस्पिटल और फिर लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल। इससे पहले कल उन्होंने सीजेपी के दोनों प्रतिनिधियों से मुलाकात की थी, सौरभ दास से भी और जो है आशुतोष से भी। और आज जो है सोनम वांगचुक से जो है वो उनका स्वास्थ्य की जानकारी लेने गए, क्योंकि हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद सफदरजंग से उन्हें जो है वो मेदांता हॉस्पिटल भेज दिया गया। इसके साथ साथ अगर अभी
0: हिमांशु से हम फिर से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि बहुत ही महत्वपूर्ण इस मुलाकात को माना जा रहा है। सोनम वांगचुक से अभी कुछ ही देर पहले बात की है स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने, और आपको बता दें कि जेपी नड्डा के साथ साथ केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी सोनम वांगचुक से मिलने के लिए पहुंचे थे मेदांता, क्योंकि गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं सोनम वांगचुक। सफदरजंग अस्पताल से उन्हें उनकी पत्नी चाहती थी कि मेदांता शिफ्ट किया जाए, तो उन्हें मेदांता में भर्ती कराया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण इस मुलाकात को माना जा रहा है। जिस तरह पूरे दिन आज सियासी हंगामा और सियासत देखने को मिली है, विपक्ष पूरी तरह से एकजुट है। से कुछ ही देर पहले राहुल गांधी की तरफ से भी बयान जारी किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमित शाह और इस पूरे मामले में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, सरकार तमाम जो छात्र हैं उनकी बातों को सुने, सिस्टम को सुधारने पर जोर दिया उन्होंने। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में सरकार को माफी मांगनी चाहिए, तमाम जो केस लगाए गए स्टूडेंट्स के ऊपर वो वापस लिए जाने चाहिए। विपक्ष एकजुट है। महाराष्ट्र से भी तमाम जो नेता हैं वो पहुंच चुके हैं दिल्ली, और उन्होंने भी जंतर मंतर पर जाकर तमाम आंदोलनकारियों से मुलाकात की थी। हिमांशु एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, आपकी बात हम सुन नहीं पाए थे, कितनी देर पहले ये मुलाकात हुई है और क्या साफ हो पाया है कि क्या बातचीत हुई?
1: देखिए, आपसे कुछ देर पहले जो है देश के जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह, दोनों लोग पहुंचे थे सोनम वांगचुक से मुलाकात करने। उन्हें हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद जो है वो सफदरजंग हॉस्पिटल से एडमिट कराया गया मेदांता हॉस्पिटल में, और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली है। और जहां तक अभी हम लोगों को सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली है कि दोनों ही मंत्रियों ने, जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह, दोनों ने ही उनसे अपील की है कि अब हंगर स्ट्राइक जो है वो समाप्त किया जाए और सरकार जो है उनका जो मेमोरेंडम था, दोनों प्रतिनिधि जो आए थे प्रोटेस्टर्स के, उनके जो मेमोरेंडम है, ज्ञापन है, उसको सरकार की तरफ से जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है। आपको भी अब जो है शांति के साथ जो है वो अपना प्रोटेस्ट समाप्त करना चाहिए और हंगर स्ट्राइक को खत्म करना चाहिए, अनशन को।
0: तो क्या इस पर बात बनी, ये कुछ साफ हो पाया है, क्या तस्वीर साफ हुई है? क्योंकि कल जिस तरीके से हंगामे के आसार हैं, जिस तरीके से राहुल गांधी की तरफ से बयान दिया गया, जिस तरीके से विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है इस पूरे बड़े मुद्दे पर, सरकार के लिए ज्यादा चुनौतियां खड़ी हुई नजर आती हैं।
1: देखिए, क्योंकि एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये जो प्रोटेस्ट था ये सीजेपी का था, सोनम वांगचुक इसका जो है प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और अब अगर आप देखेंगे तो इसमें राजनीतिक दल भी जो है वो प्रोटेस्ट करने पहुंचे। राहुल गांधी खुद प्रधानमंत्री के घर पर पहुंच गए थे, जिस दरवाजे से प्रधानमंत्री का आना जाना रहता है उसी दरवाजे पे जो है प्रधानमंत्री पहुंचे। अखिलेश यादव पहुंच गए, सुप्रिया सुले पहुंच गई। तो एक तरीके से राजनीतिक तौर से भी जो है वो इस जो भी प्रोटेस्ट चल रहा है, स्ट्राइक चल रही है, उस पर राजनीति भी होने लगी। और इस बात को सुबह खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में भी कहा था। दूसरी तरफ जो है सरकार की ये कोशिश है कि ये जो प्रोटेस्ट है इसको समाप्त कराया जाए। कल भी जेपी नड्डा ने दोनों ही प्रतिनिधियों से ये बातचीत में कहा था कि शांतिपूर्वक तरीके से जो है आप लोगों को प्रोटेस्ट खत्म करना चाहिए और प्रशासन के साथ मिलकर शांति को बनाए रखना चाहिए, लेकिन प्रोटेस्ट अभी भी जारी है। और सोनम वांगचुक, क्योंकि उन्होंने कल कह दिया था कि वो खुद अभी हंगर स्ट्राइक पे हैं, उनका अनशन अभी भी जारी है, तो उसके बाद आज जेपी नड्डा पहुंचे क्योंकि हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था उन्हें सफदरजंग से जो है।
0: बिल्कुल हिमांशु, बहुत ही महत्वपूर्ण इस मुलाकात को माना जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। इस खबर से जुड़ी तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे, आगे बढ़ेंगे और अब आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें नॉन स्टॉप 100 में।

दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी प्रदर्शनों में घंटों चला हाई वोल्टेज हंगामा, पुलिस ने राहुल गांधी को धरने से जबरदस्ती उठाया। जंतर मंतर पर सीजेपी प्रदर्शन में प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव समेत कई बड़े नेता पहुंचे, दिल्ली पुलिस ने जगह खाली कराकर सभी को बस में लिया। मोदी सरकार पर राहुल और प्रियंका का बड़ा हमला, लोकतंत्र के लिए बताया खतरनाक। राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा, मोदी जी सारी ताकत लगा लो लेकिन छात्रों के इंसाफ की ये लड़ाई अब रोके नहीं रुकेगी। मंत्री जितेंद्र सिंह का राहुल गांधी पर आरोप, कहा मैंने खुद जाकर किया मुलाकात लेकिन अब राहुल गांधी ने बदल दी है अपनी बात। जितेंद्र सिंह बोले, सरकार नीट पर चर्चाओं को तैयार है लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की नई मांग की गई थी। जितेंद्र सिंह का राहुल गांधी पर भी आरोप, बोले बार बार राहुल बदल रहे हैं अपना बयान, कहते हैं कि मैं जहां चाहूं बैठूं मेरी मर्जी। अखिलेश यादव का मोदी सरकार पर सवाल, कहा छात्रों की मांगे क्यों नहीं मानी जा रही, प्रधानमंत्री मोदी सुने उनकी बात को। बीजेपी के विरोध प्रदर्शन में जंतर मंतर पर पहुंचे एनसीपी प्रमुख शरद पवार, सीजेपी प्रमुख अभिजीत दीपके और प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की। जंतर मंतर पर चले धरने में एनसीपी शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले पहुंची, सरकार से युवाओं की बात सुनने का आह्वान किया। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत भी जंतर मंतर पर पहुंचे, उद्धव ठाकरे आज दिल्ली आकर करेंगे छात्रों के प्रोटेस्ट का समर्थन। प्रियंका गांधी से मिलने मंदिर मार्ग थाने पहुंची सोनिया गांधी, प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की। जंतर मंतर पहुंची महुआ मोहित्रा ने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पर साधा निशाना, कहा मोदी और शाह उन लोगों से निपटना नहीं जानते जो उनसे डरते नहीं है, ऐसे लोग इस सरकार के लिए आउट ऑफ सिलेबस। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पहुंचे, साथी में मिथिश सिंह, सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह भी मौजूद थे। राहुल के धरने को लेकर आम आदमी पार्टी ने बताया बीजेपी से मिलीभगत, कहा यह सीजेपी के प्रदर्शन को कमजोर करने की साजिश है। आतिशी ने कटाक्ष किया, कहा यह जुगलबंदी है। दिल्ली पुलिस ने शाम 10 बजे के करीब सभी कांग्रेस के नेताओं को रिहा किया, राहुल गांधी और अखिलेश यादव छात्र छत्रसाल स्टेडियम में छोड़े गए। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि की अपील पर दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, सोनम वांगचुक के बेहतर इलाज के लिए मेदांता अस्पताल शिफ्ट करने के निर्देश। सोनम वांगचुक को शाम 6:40 पर सफदरजंग अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया, अस्पताल ने कहा डिस्चार्ज के समय उनके वाइटल पैरामीटर स्थिर थे। राजनांदगांव में छात्रों का प्रदर्शन, जंतर मंतर आंदोलन के समर्थन में सड़कों पर उतर आए युवा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की गई। पंजाब के मानसा में किसानों का युवा प्रदर्शन, युवाओं पर कथित लाठीचार्ज के विरोध में केंद्र सरकार पर फूंका पुतला। मध्य प्रदेश विधानसभा में भारी हंगामे के बीच पास हुआ यूसीसी बिल, सीएम मोहन यादव ने बताया स्वर्णिम अध्याय। मध्य प्रदेश विधानसभा में यूसीसी बिल पास होने के बाद उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने जताई खुशी का, सीएम मोहन के नेतृत्व में ऐतिहासिक कदम, बड़े गर्व की बात है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा बोले, मुस्लिम तुष्टीकरण के चक्कर में कांग्रेस हिंदुस्तान विरोधी हो गई है, बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाया संविधान में एक विवाह एक विधान का प्रावधान। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का राज्य सरकार पर आरोप, बोले चोरी छुपे लाया गया है बिल, सरकार के जबरदस्ती किया लागू। एमपी के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी यूसीसी का विरोध करते हुए बोले, ये राज्य सरकार के अधिकार के क्षेत्र का विषय है, असली मुद्दों से ध्यान भटका रही है बीजेपी सरकार। कोलकाता में आयोजित शहीद दिवस रैली के दौरान ममता बनर्जी ने बागी नेताओं और केंद्र सरकार पर बोला तीखा हमला, का असली तृणमूल कांग्रेस हम है, देश बचाओ बंगाल बचाओ। ममता बनर्जी का बीजेपी पर हमला, बोली बंगाल की लड़ाई में हम पीछे नहीं हटेंगे, विपक्षी दलों से एकजुट होने की अपील। ममता का सीजेपी प्रोटेस्ट को समर्थन, बोली अगर जरूरत हुई तो मैं खुद भी कांग्रेस जनता पार्टी के आंदोलन में आऊंगी, साथी का बागियों की टीएमसी में नहीं होगी री एंट्री। शहीद दिवस कार्यक्रम में टीएमसी के एक नेता कीर्ति आजाद और सागरिका घोष ने बीजेपी को घेरा, कहा बीजेपी सिर्फ धोखाधड़ी से जीती, ममता बनर्जी से बड़ा कोई नेता नहीं। ममता पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य का पलटवार, बोले कुछ महीने पहले ममता केंद्र सरकार को हटाने की बात कर रही थी लेकिन खुद उनकी सरकार बदल चुकी है, इसीलिए सीजेपी का साथ देने की बात कह रही है। दिल्ली में सीजेपी प्रदर्शन पर सीएम फडणवीस का हमला, बोले आंदोलन में कुछ लोग अपना एजेंडा आगे बढ़ाने और शांति पैदा करने के लिए शामिल हुए हैं। बहुजन वंचित अघाड़ी अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर का महाराष्ट्र बंद का ऐलान, दिल्ली में छात्रों पर कथित लाठीचार्ज के विरोध में 23 जुलाई को बंद का आह्वान। जालना में ऐसी आरक्षण उपवर्गीकरण के विरोध में विशाल मोर्चा, आनंदराज अंबेडकर ने सरकार पर निशाना साधा। रिपब्लिकन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंदराज अंबेडकर की फडणवीस सरकार को चेतावनी, बोले ऐसी आरक्षण उपवर्गीकरण जबरदस्ती लागू की कीमत चुकानी पड़ेगी। पालघर में ग्रीनफील्ड हाईवे के विरोध में ग्रामीणों का गुस्सा फूटा, पेड़ों की कटाई का विरोध कर रहे ग्रामीणों और पुलिस के बीच धक्कामुक्की हुई, 15 प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मल्टी स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने की तैयारी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल स्टेडियम बनाने के लिए एमओयू, स्टेडियम में 35,000 लोगों को बैठने की क्षमता होगी।
हरिद्वार में सावन की तैयारियां तेज हुई। कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम धामी ने समीक्षा बैठक की। 30 जुलाई से शुरू होगी पवित्र कांवड़ यात्रा। सहारनपुर में कांवड़ियों के डीजे में बजने वाले गानों को लेकर पुलिस की उस पर नजर रहेगी। डीजे संचालकों के साथ बैठक किया पुलिस ने। 12 फीट से ऊंचे डीजे पर रोक। इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट में फिर से टल गई है सुनवाई। फिर परिवार बोला न्याय व्यवस्था पर कमजोर पड़ रहा है भरोसा। मणिपुर में 40 उग्रवादियों ने हथियार डालकर समाज की मुख्यधारा में लौटने की बात कही। बड़ी मात्रा में हथियार समेत विस्फोटक और गोला बारूद सौंपे। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश के बाद मौसम सुहाना हुआ। लोगों को मिली है उमस से राहत। दिल्ली एनसीआर के लिए मौसम विभाग ने 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया। मध्यम से भारी बारिश का पूर्वानुमान। दिल्ली के बदरपुर मेट्रो स्टेशन के नीचे बारिश की वजह से जलभराव हुआ। लोगों को काफी परेशानी हुई। बाढ़ प्रभावित असम में भारतीय वायुसेना ने संभाला मोर्चा। बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित शिवसागर जिले में हवाई बचाव और राहत अभियान के लिए हेलीकॉप्टर तैनात। देहरादून के विकास नगर में गोना नदी के सैलाब में बह गया स्कूटी सवार। युवकों ने जान जोखिम में डालकर बचाई जान। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और बादल फटने से तबाही। फ्लैश फ्लड में 17 लोगों की मौत हुई। कई इलाकों में रेड अलर्ट जारी। पठानकोट में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में उफान। सड़कों पर जलभराव की वजह से यातायात बाधित और खेत जलमग्न। राजौरी में सेना ने तेज बहाव वाले नाले में फंसे 13 लोगों को सुरक्षित बचाए। 61 राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों ने रस्सी के सहारे महिलाओं बुजुर्गों और बच्चों की जान बचाई। चमा में लगातार बारिश से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। कई हिस्सों में भूस्खलन यातायात प्रभावित। सड़कें बहाल करने में जुटा हुआ है प्रशासन और संबंधित विभागों की टीमें। जेसीबी और अन्य मशीनों की सहायता से हटाया जा रहा है मलबा। सहरसा में कोसी नदी का कहर। पानी से घिरे स्कूल में बच्चे और टीचर गर्दन तक भरे हुए पानी में तैरकर पहुंचने के लिए मजबूर हैं। गोंडा के घाघरा नदी में खतरे के निशान के पास से सब कुछ। तटवर्ती इलाकों में भर गया पानी। प्रशासन अलर्ट पर। महाराष्ट्र के 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। भंडारा गोंदिया समेत चंद्रपुर और गढ़चिरौली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने हाई टाइड की बात भी कही। लगातार हो रही नवसारी में बारिश की वजह से चारों तरफ पानी ही पानी। शहर के निचले इलाकों में पूरी तरह से जलभराव की स्थिति। खराब मौसम के चलते वैष्णो देवी यात्रा को स्थगित किया गया। श्राइन बोर्ड की भक्तों से धैर्य बनाए रखने की अपील। फंसे श्रद्धालुओं के लिए मुफ्त लंगर सेवा। महाराष्ट्र के बीड़ में एनसीपी शरद पवार गुट के नेता कार्यालय में लगाई गई थी। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। जांच जारी। महाराष्ट्र के अकोला के अलंकार मार्केट में भीषण आग लगी। इलेक्ट्रॉनिक की 3 दुकानें जलकर खाक। लाखों का नुकसान। पश्चिमी दिल्ली के फतेहनगर इलाके में एक मकान में पार्किंग में लगी थी भीषण आग। कई गाड़ियां जलकर खाक हुई। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दिल्ली के लोधी कॉलोनी में एक बार फिर से 3री मंजिल से आग लगी। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत की खबर। गुरुग्राम में सोसाइटी में बड़ा हादसा हुआ। प्रैक्टिस के दौरान लड़के के सिर पर गिरा था बास्केटबॉल पोल। खौफनाक वीडियो सामने आया। नोएडा में एम्बुलेंस की आड़ में चल रही थी गांजा तस्करी। पुलिस ने 64 किलो गांजा और अंतर्राज्यीय तस्कर को दबोचा। सहारनपुर में पूर्व सांसद हाजी फजलुर रहमान के मीट प्लांट में अमोनिया गैस का रिसाव हुआ। 14 महिला कर्मचारी बेहोश हुई। हरिद्वार में खनन रोकने पर गई टीम पर माफियाओं का हमला। नकाबपोश बदमाशों ने बरसाए लाठी डंडे और सरकारी गाड़ियों के शीशे भी तोड़े। यूपी के बलरामपुर में एटीएस की बड़ी कार्रवाई। आईएसआई नेटवर्क से जुड़े युवक को गिरफ्तार किया गया। करनाल एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। 5 गैंगस्टर गिरफ्तार। 5 विदेशी पिस्टल और 14 कारतूस बरामद। सिंह दिलजीत दोसांझ के मैनेजर पर घर पर फायरिंग। सोनीपत में 12 लाख रुपए की लूट का खुलासा। यूपी पुलिस का बर्खास्त हेड कांस्टेबल निकला मास्टरमाइंड। 3 की गिरफ्तारी। एमपी के सतना में मंदिर परिसर में युवक पर लाठी डंडों से हमला। पुरानी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया। हालत गंभीर। बुलंदशहर में अंबेडकर में टिप्पणी के आरोपों पर पकड़ा गया युवक। थाने में ले जाते समय भीड़ ने पुलिस की गिरफ्त में पीटा। मुजफ्फरनगर में मामूली से विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट और पथराव हुआ। 3 घायल। पुलिस ने मोर्चा संभाला। बिजनौर में खेत में लगे हुए खटके से फंसा हुआ तेंदुआ पाया गया। इलाके में दहशत मची। घंटों के बाद वन विभाग ने इसे रेस्क्यू किया। कोलकाता के वीआईपी रोड पर 2 गुटों में भयंकर झड़प हुई। बीजेपी कार्यकर्ताओं में शहीदी दिवस में शामिल हो जाने पर और कांग्रेस और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में पिटाई के आरोप। पुणे के लोहगढ़ किले में ऐतिहासिक जलकुंड में पर्यटकों का लापरवाही भरा वीडियो सामने आया। तैराकी का वीडियो वायरल होने के बाद बजरंग दल ने रोका। अहमदाबाद में करीब 40 करोड़ रुपए के अवैध पटाखे जब्त किए गए। 2 गोदाम सील 2 की गिरफ्तारी। वडोदरा में 5वीं मंजिल से कूदकर महिला ने जान देने की कोशिश की। लोगों की सूझबूझ से उसकी जान बचाई जा सके। सूरत में ग्राहक को परोसी गई मंचूरियन की प्लेट में चूहा मिलने के बाद वीडियो वायरल हुआ। घटना को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश। अगले महीने होने वाले एफआईएच मेंस हॉकी वर्ल्ड कप के लिए 20 मेंबर्स को भारतीय टीम की घोषणा। बेल्जियम और नीदरलैंड्स में होंगे मुकाबले। अनुभवी ड्रैग फ्लिकर हरमनप्रीत सिंह होंगे
कप्तान, डिफेंडर अमनदीप लकड़ा और मिडफील्डर राजकुमार पाल, रवि चंद्र सिंह साथी और फॉरवर्ड सेल्वम कार्थी होंगे टीम से बाहर। भारतीय टीम 15 अगस्त को वेल्स के खिलाफ शुरू करेगी अभियान, 19 अगस्त को चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से मुकाबला। 23 जुलाई से फिर शुरू होगी भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज। आयरलैंड और इंग्लैंड से T20 सीरीज हारने के बाद अहम है ये सीरीज। बीसीसीआई ने घरेलू टूर्नामेंट और भारत में खेले जाने वाले इंटरनेशनल मैचों के टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स के लिए जारी किया है टेंडर। अगस्त में खत्म हो रहा है मौजूदा स्पॉन्सर्स का करार। OMG2 के डायरेक्टर अमित राय की अगली फिल्म ओ माई डॉग का ट्रेलर सामने आया है। 31 जुलाई 2026 को रिलीज होगी फिल्म। थलापति विजय की जन नायकन में रिलीज के चंद दिन बाकी हैं, नया प्रोमो रिलीज किया गया। नेटफ्लिक्स पर जल्दी रिलीज होगी ऑपरेशन सफेद सागर की शौर्य गाथा से जुड़ी हुई कहानी। 7 अगस्त 2026 को OTT प्लेटफॉर्म पर लॉन्च की जाएगी वेब सीरीज। 17 साल के बाद पर्दे पर लौट रहे हैं फुनसुक वांगड़ू। 7 सितंबर को थिएटर्स में री रिलीज होगी आमिर खान की 3 इडियट्स। एक्टर मिथुन चक्रवर्ती की बेटी दिशानी चक्रवर्ती की सगाई हुई है, अपने मंगेतर माइल्स के साथ सगाई की तस्वीरों को शेयर किया। संसद में सरकार ने E20 पेट्रोल से इंजन खराब होने या गाड़ी बंद पड़ने की कोई बड़ी शिकायत नहीं आने का किया है दावा। 23 करोड़ गाड़ियों के बिना किसी परेशानी के चलने का दावा किया गया। 2026-27 की पहली तिमाही में भारत का कच्चा तेल आयात बिल 77% से बढ़कर 4.6 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। इंपोर्ट में गिरावट के बावजूद पिछले साल के मुकाबले 2 लाख करोड़ रुपए चुका है। सरकारी बैंकों ने पिछले करीब 12 साल में 7.73 लाख करोड़ रुपए में डूबे कर्ज को बही खातों से हटा दिया है। कुल बकाया रकम का 40% वसूलने में बैंकों को मिली कामयाबी। सरकार ने संसद में साफ कर दिया है कि रिटेल और घरेलू निवेशकों के लिए इक्विटी पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स अभी नहीं हटाया जाएगा। विदेशी और घरेलू निवेशकों पर टैक्स की एक समान दर। RBI के नाम पर फर्जी लेटर भेजकर लोगों से रिफंडेबल टैक्स के नाम पर 7,500 रुपए मांग रहे हैं स्कैमर्स। RBI ने ऐसे लेटर पर भरोसा करने और पैसे ट्रांसफर न करने की दी है चेतावनी। ईरान ने कुवैत में अमेरिका के 3 सबसे बड़े सैन्य अड्डों पर बड़े हमले का दावा किया। कुवैत के आरिफ जान कैंप ब्यूरिंग और साथ ही अहमद अल जाबेर बेस पर मौजूद अमेरिकी बेस पर हमला। ईरानी सेना ने पड़ोसी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर किया बड़ा हमला। जॉर्डन, बहरीन समेत कुछ और देशों में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। यमन के हूतियों से शिपिंग कंपनियों को चेतावनी दी गई। कहा सऊदी बंदरगाहों पर माल लूट या अनलूट करने से बचे हूती संगठनों का दावा। सऊदी बंदरगाहों से आने जाने वाले जहाजों को किसी भी जगह बनाया जा सकता है निशाना। गाजा में इसराइल का भीषण हवाई हमला, एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हुई। इसराइली सेना का बयान, हमास के एक सदस्य को निशाना बनाकर किया गया था हमला। दक्षिणी लेबनान के जाबतार शहर से इजरायली सेना की वापसी के बाद लेबनान सेना हुई तैनात। अमेरिकी समर्थित शांति योजना के तहत लेबनानी सेना दक्षिणी लेबनान के कुछ इलाकों में जब्त करेगी हिजबुल्लाह के हथियार। रूस के अजोब सागर और केट स्ट्रेट के बंदरगाहों में लंगर डालने वाले जहाजों को लेकर जारी है चेतावनी। रूसी सेना का बड़ा दावा, यूक्रेन के खार्किव क्षेत्र के इलाके पर जबरदस्त कब्जा। यूक्रेन का आरोप है कि रूस ने जापोरोजिया पर किया भीषण हमला, 3 की मौत हुई 13 घायल। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री एंडी बर्मन का नया बयान, कहा हमारी सरकार का मकसद लोगों पर बढ़ती महंगाई का बोझ कम करना होगा। अफगानिस्तान के उत्तर पूर्वी हिस्से में अचानक से आई बाढ़ 20 लोगों की मौत की वजह बनी। तालिबान प्रशासन के मुताबिक 100 लोग अभी भी लापता हैं।

0: नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि क्या देश की राजधानी दिल्ली को एक सोची समझी रणनीति के तहत सियासी अखाड़ा बना दिया गया। प्रधानमंत्री आवास के अति संवेदनशील और सुरक्षित इलाके के बाहर अचानक हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अस्पताल से सीधे मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पहुंचे और फिर वहां से अचानक पीएम आवास के उस गेट पर जाकर बैठ गए जो सिर्फ प्रधानमंत्री के काफिले के आने के लिए इस्तेमाल होता है। राहुल गांधी के इस धरने को खत्म कराने के लिए केंद्र मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह पहुंचे। जब सरकार संसद में नीट पर चर्चा के लिए, नीट पेपर लीक पर चर्चा के लिए तैयार हुई तो मांग बदलकर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर पहुंच गया विपक्ष। ये बात डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कही। उन्होंने कहा कि भाई आपने अपनी बात से आप पलट गए हैं, अपनी बात से मुकर रहे राहुल गांधी। ये सीधा आरोप लगाया डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। उन्होंने कहा कि पहले कहा गया कि संसद में चर्चा पर तैयार हो जाएंगे, बाद में कहा गया नहीं हमें इस्तीफा चाहिए और इसके बाद बड़ा हंगामा शुरू हुआ। आज आपको विस्तार से बताएंगे कि ये प्रदर्शनकारियों के हक की लड़ाई थी या फिर सियासी माइलेज लेने की कोशिश। क्या आज सीजेपी के आंदोलन की पिच पर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन हुआ और क्या धरना प्रदर्शन और मान मनोवल के बीच असली मुद्दे का हल निकलेगा? और हमारी चिंता सिर्फ इतनी है कि बच्चों से जुड़ी हुई जो असल कहानी है, बच्चों से जुड़ा हुआ जो असल मुद्दा है, वो कहीं सियासी लड़ाई में, इस शोर में वो ना पीछे रह जाए, क्योंकि सवाल और मुद्दा बच्चों का है, मेहनतकश बच्चों का जो एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हैं, पेपर लीक से जुड़ा मुद्दा है। देखिए, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कभी जो सभी कांग्रेस के नेता हैं उनको हिरासत में लेकर मॉडल टाउन इलाके के छत्रसाल स्टेडियम में ले जाया गया है और इस कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ता धरना भी दे रहे हैं, लेकिन पुलिस ने भी ये नहीं बताया है कि वो कांग्रेस के इन नेताओं को कब हिरासत से रिहा करेगी। और शायद उनमें से एक वजह यही है कि आप देख रहे हैं कि सोनिया गांधी भी पहुंची है मंदिर मार्ग थाने। ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि क्या इन नेताओं को पुलिस गिरफ्तार भी कर सकती है, क्या अरेस्ट भी किया जा सकता है। इस सवाल के पीछे बड़ा कारण यह है कि क्या कांग्रेस के नेताओं ने प्रधानमंत्री आवास जैसे अति संवेदनशील हाई सिक्योरिटी जोन सुरक्षित क्षेत्र में जाने से पहले अनुमति ली थी विरोध प्रदर्शन के लिए, और इस आधार पर पुलिस लोकसभा अध्यक्ष की बिना इजाजत के राहुल गांधी और बाकी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है? अगर ऐसी कोई घटना संसद भवन के अंदर या संसद परिसर में की जाती तो पुलिस के लिए कोई भी कार्रवाई करने से पहले लोकसभा अध्यक्ष की इजाजत लेना जरूरी होता। लेकिन इस मामले में पुलिस कांग्रेस नेताओं को हिरासत में भी रख सकती है और कुछ देर में उनको छोड़ा भी जा सकता है। इस धरने को खत्म कराने के बाद राहुल गांधी ने पुलिस की हिरासत में रहते हुए सोशल मीडिया पर यह लिखा है कि छात्रों के इंसाफ की ये लड़ाई अब रोके नहीं रुकेगी। हालांकि सरकार की तरफ से ऐसी खबरें आ रही हैं कि उसने कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर चिंता जताई है। सूत्रों के मुताबिक सरकार का ऐसा मानना है कि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन करके एक गलत और एक खतरनाक परंपरा की शुरुआत की है और सरकार ये भी मान रही है कि आज कांग्रेस ने जो किया वो बांग्लादेश और नेपाल जैसे पड़ोसी देशों में होता था। हालांकि सरकार ने ऐसा औपचारिक रूप से नहीं कहा है, बल्कि सूत्रों के हवाले से ऐसी खबरें आगे की गई हैं कि सरकार कांग्रेस के इस धरने को सुरक्षा के लिहाज से चिंताजनक मान रही है। इसके पीछे एक कारण यह भी है कि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री आवास के जिस गेट के बाहर यह धरना दिया उसी गेट से प्रधानमंत्री मोदी का काफिला गुजरता है और आखिरी बार ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं गेट, ये जो है इस गेट पर जहां आज ये विरोध प्रदर्शन हुआ है, इस गेट पर आखिरी बार प्रदर्शन हुआ था दिसंबर 1999 में जब विरोध प्रदर्शन हुआ था इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 हाईजैक होने पर। बंधकों को छुड़ाने के लिए उनके परिवारों ने तब प्रधानमंत्री आवास के इस गेट के बाहर यह प्रदर्शन किया था। यह साल 1999 का प्रदर्शन है और उसके बाद से आज तक इस गेट पर कभी प्रदर्शन नहीं हुआ। उस प्रदर्शन के बाद इस गेट की सुरक्षा हमेशा के लिए बढ़ा दी गई थी, लेकिन आज राहुल गांधी समेत कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इसी गेट पर पहुंचे। अब तस्वीरें आज की दिखा दीजिए, आप एक बार ये तस्वीरें देखिए।
1: हेलो
0: यहां हम आपको इस धरने की इनसाइड स्टोरी भी आज बताना चाहते हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में कांग्रेस का पहला ऐसा धरना है ये जिसकी भनक किसी को नहीं थी। तो आखिर कांग्रेस ने ये कैसे आयोजित किया? दोपहर 12:45 राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा दिल्ली के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उन्होंने घायल हुए जो प्रदर्शनकारी थे उनसे मुलाकात की। तब कोई ये नहीं जानता था कि कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठने वाले हैं। दावा है कि उस वक्त राहुल गांधी और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने इस रणनीति को पूरी तरह गोपनीय रखा, एक सीक्रेट रखा। अस्पताल से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा सीधे पहुंचे पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सरकारी आवास पर, जो प्रधानमंत्री आवास के बहुत नजदीक है। उस वक्त सबको यही जानकारी थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर एक बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें संसद में सरकार को घेरने के लिए एक रणनीति बन सकती है, और इसी बैठक के लिए कई शीर्ष नेता राहुल गांधी के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के सरकारी आवास पर पहुंचे। इससे पहले कि हम आगे की कहानी आपको सुनाएं, एक बार फिर से सोनिया गांधी की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मंदिर मार्ग थाने से अब वो निकलती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी के नेता इस वक्त भी अलग अलग थानों में रखे गए हैं हिरासत में, उनको अभी छोड़ा नहीं गया है, और इसी वजह से सोनिया गांधी वहां पर पहुंची है और उनका काफिला वहां से निकल रहा है। तो चलिए वापस आज की इनसाइड स्टोरी पर जाते हैं। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा गांधी आरएमएल पहुंचते हैं। आरएमएल में वो घायल लोग जो प्रदर्शनकारी हैं उनसे मिलते हैं। उसके बाद वो सीधा पहुंचते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के घर। दोपहर 12 बजे के बाद से वहां अलग अलग नेताओं की गाड़ियों के पहुंचने का सिलसिला जारी था, और बड़ी बात यह है कि आज मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्मदिन भी है, जिसके कारण ये सारी घटनाएं सामान्य लग रही थी कि भाई आज उनका बर्थडे है तो पार्टी के लोग, तमाम बड़े नेता सब पहुंच रहे हैं उनको बधाई देने। लेकिन हकीकत में कांग्रेस के सभी शीर्ष नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इकट्ठा होकर धरने की रणनीति बनाने वाले थे। इसके लिए सबसे पहले कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI को एक्टिवेट किया गया। छात्र नेताओं और कार्यकर्ताओं से यह कहा गया कि वो जल्द से जल्द धरना स्थल पर पहुंचना शुरू करें, और यहां इस बात का भी ध्यान रखा गया कि सारे नेता सारे कार्यकर्ता एक साथ ना पहुंचे, जिससे पुलिस उनके धरने को शुरू होने से पहले ही रोक ना दे। जब NSUI और कांग्रेस के कुछ नेता और कार्यकर्ता प्रधानमंत्री आवास के पास पहुंच गए, तब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा और उनके साथ साथ कुछ नेताओं ने पैदल मार्च करते हुए इस धरना स्थल पर पहुंचना शुरू किया। पुलिस उन्हें रोक नहीं पाई। ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे के सरकारी आवास से प्रधानमंत्री आवास के इस गेट की दूरी सिर्फ 300 मीटर है, और यहां पैदल पहुंचने में 7-10 मिनट ही लगते हैं। जब राहुल गांधी पार्टी के बाकी नेताओं के साथ पैदल मार्च करते हुए बाहर निकले, तब भी किसी ने नहीं सोचा था कि वो प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा हुआ। और इसमें भी बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के ज्यादातर नेता एक साथ इकट्ठा होकर सड़कों पर नहीं उतरे। कई नेता राहुल गांधी के धरने पर बैठने के बाद वहां अपनी गाड़ियों से पहुंचने लगे। और जानते हैं धरने के लिए कांग्रेस ने प्रधानमंत्री आवास के इसी गेट को क्यों चुना? ये जो रेसकोर्स रोड है, उस रोड की तरफ से जो नॉर्मल जिस तरफ से एंट्री है वो एंट्री नहीं है, ये दूसरा गेट है, वही गेट जिसे प्रधानमंत्री का काफिला निकलता है और जाता है। इस गेट का एक्सेस सिर्फ PM सिक्योरिटी के जो लोग हैं उनको है, और PM के कैवलकेड को। तो इसी गेट को क्यों चुना गया? पहला कारण तो यही है कि इस गेट से मल्लिकार्जुन खड़गे का सरकारी आवास सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर है। लेकिन दूसरा कारण यह है कि इस गेट का एक्सेस सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के काफिले को दिया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी जब भी कहीं जाते हैं, वापस अपने सरकारी आवास में लौटते हैं, तो उनका काफिला इसी गेट से गुजरता है। और यही कारण है कि जब राहुल गांधी इस गेट के पास धरने पर बैठे, तो गृह सचिव ने खुद राहुल गांधी से यह आग्रह किया कि वो इस जगह धरना ना दे, क्योंकि यह जगह धरने के लिए अनुकूल नहीं है। हालांकि राहुल गांधी इसके लिए तैयार नहीं हुए, और उन्होंने ये कहा कि वो अपना धरना यहीं जारी रखेंगे और सरकार को उनकी मांगे माननी होंगी। फिर हुई गहमागहमी, और इस गहमागहमी के बीच केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह खुद कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से बात करने आए, और उनके साथ थे होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन। तो ये उस वक्त की तस्वीरें हैं। उनका दावा है कि राहुल गांधी ने खुद उनसे ये कहा, ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह का दावा है कि राहुल गांधी ने उनसे ये कहा कि अगर सरकार पेपर लीक के मुद्दे पर संसद में चर्चा कराने के लिए तैयार है तो वो अपना धरना खत्म कर देंगे। अब राहुल गांधी की इस मांग को सुनने के बाद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे कि भाई उनकी उनका ये मांग है कि आप यहां पर तैयार हो जाइए बातचीत के लिए और संसद में इस पर बहस के लिए, पेपर लीक का मुद्दा हो। और अमित शाह से चर्चा करने के बाद उन्होंने एक बार फिर राहुल गांधी से बात की। अब जितेंद्र सिंह का यह दावा है कि राहुल गांधी को ये उन्होंने बताया कि सरकार नीट पेपर लीक के मुद्दे पर संसद में चर्चा कराने के लिए तैयार है, लेकिन आरोप है कि जब सरकार ने राहुल गांधी की इस मांग को मान लिया तब भी वो अपना धरना खत्म करने के लिए तैयार नहीं हुए। ये दावा बाकायदा लिखित में एक्स पर और फिर एक वीडियो के जरिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। उन्होंने ये मांग भी रख दी है, ऐसा डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि राहुल गांधी ने अब ये मांग रख दी है कि शिक्षा मंत्री को अपना इस्तीफा देना होगा, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा, तभी यह धरना खत्म होगा। अब इसके बाद स्थिति और तनावपूर्ण हो गई और पुलिस वाले राहुल गांधी कांग्रेस के तमाम नेताओं से धरना खत्म करने की अपील करते हुए नजर आए। ये अधिकारी लगातार उनसे बातचीत कर रहे थे और ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि ये अनुकूल जगह नहीं है धरने के लिए, उनको वहां से हटना चाहिए। और जब कांग्रेस के नेताओं ने ऐसा नहीं किया तो उन्हें पुलिस ने हिरासत में लेकर वहां से हटा दिया। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि जब पुलिस कांग्रेस के नेताओं को प्रधानमंत्री आवास के गेट से हटा रही थी तब राहुल गांधी विरोध करते हुए नीचे लेट गए और उन्होंने अपने हाथों को जिप टाई यानी प्लास्टिक की केबल से बांधा हुआ था और इसी के कारण वहां काफी हंगामा हुआ। पुलिस ने राहुल गांधी समेत कांग्रेस के सभी नेताओं को हिरासत में ले लिया। क्या क्या वहां पर हुआ पहले ये वीडियो देखिए।
1: ये बहुत सेंसिटिव इलाका है, ये वो इलाका है जहाँ पर प्रधानमंत्री का आवास है, ये वो इलाका है जहाँ पर कई बड़े बड़े देशों के एम्बेसीज हैं, यहाँ पर दूतावास हैं। राहुल गांधी के साथ साथ कई कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं और आप तस्वीर देखिए कैसे इस पूरे इलाके को घेर लिया गया है। जो प्रधानमंत्री आवास का जो मेन एंट्री गेट है वहां पर राहुल गांधी के साथ साथ कई कांग्रेस के नेता पहुंच गए हैं, बिना परमिशन के यहां पर आए हैं, सरकार से बात करने की कोई कोशिश नहीं की गई।
2: आप इधर हो जाइए।
3: यहाँ पे जो तस्वीर 7RCR यानी कि लोक कल्याण मार्ग में घट रही है, पीछे हमारे देखिए अखिलेश यादव और राहुल गांधी को कुछ इस तरीके से बस में भर के ले जाया जा रहा है। अखिलेश यादव हाथ देने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी डिटेन कर लिया गया है। मुकुल वासनिक वहां पे नजर आ रहे हैं और तमाम जो नेता हैं वो यहां पे नारेबाजी लगाते हुए इस बस पे आगे जाते हुए आइए।
0: कांग्रेस ने सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया है और ये कहा है कि सरकार ने राहुल गांधी के साथ अच्छा सलूक नहीं किया।
4: डेमोक्रेसी इन इंडिया इज हैपनिंग राइट नाउ। समझाने की कोशिश।
5: डेमोक्रेसी इन इंडिया इज हैपनिंग राइट नाउ।
6: जब जब कोई भी डरता है पुलिस जो सच्चाई है वो सुने। ये देश में युवाओं का भविष्य सोच दिया है इन्होंने। हिम्मत है तो आगे आए, बात करें, सुझाए इनकी समस्या, इन पर कमेंट कराएं।
3: नारे लगा रही हैं और कह रही हैं कि कायरता है,
7: गलत प्रयोग किया हम लोग को, दबाया है, उठा के नहीं पूरा दबा दिया गया था जबरदस्ती, और अचानक से बहुत गलत लोग आए थे, ये उनकी साजिश है उठाने के लिए, बहुत गलत किया।
8: दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्री के इशारे पर, प्रधानमंत्री के इशारे पर बहुत ही कायरता पूर्वक तरीके से हमारे नेता राहुल गांधी को घसीट कर हिरासत में लिया, हमारी नेता प्रियंका गांधी को बदतमीजी कर और घसीट कर बस में जबरदस्ती ठूसा।
0: तो कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं के आरोप आपने देखे। यहाँ ये भी देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी कांग्रेस के धरने को एक फिक्सिंग बता रही है। आज जब शाम को कांग्रेस का ये धरना शुरू हुआ और फिर ये तस्वीरें आनी शुरू हुई, खबर ने जोर पकड़ी, उस वक्त आम आदमी पार्टी के लगभग सभी नेताओं ने सोशल मीडिया पर यह लिखा कि बीजेपी और कांग्रेस की एक दूसरे से मिली भगत है और बीजेपी ने जंतर मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन को कमजोर करने के लिए राहुल गांधी को प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बिठाया है। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐसे आरोप लगे तो कांग्रेस ने भी उसे बीजेपी की बी टीम बताते हुए कह दिया कि बीजेपी के नेता आम आदमी पार्टी की तरफ से झूठे आरोप लगवा रहे। लेकिन इन सब में समझने वाली बात यह है कि जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का जो आंदोलन चल रहा है उसमें आम आदमी पार्टी के नेता तो दिखाई देते हैं, तस्वीरें दिखा दीजिए, लेकिन कांग्रेस के नेता अब तक उस विरोध प्रदर्शन में नहीं नजर आए। अरविंद केजरीवाल आपको दिख रहे हैं मंच पर, संजय सिंह दिख रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के जो अन्य नेता हैं वो आज आपको दिख रहे हैं। तो ये दो तस्वीरें, हालांकि अगर आप देखिए तो बीते दिन वहां पर शरद पवार और ऐसे तमाम जो विपक्ष के नेता हैं, जिसमें डिंपल यादव को आपने देखा, वो लगातार विरोध प्रदर्शन में रहे, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी के नेता विरोध प्रदर्शन के लिए निकले। तो अलग अलग विरोध प्रदर्शन करती हैं ये पार्टियां, तो आम आदमी पार्टी के नेता उसका विरोध आज करते हैं और ये कहते हैं कि कांग्रेस कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन को कमजोर करना चाहती है, वो बीजेपी के साथ मिली भगत है उसकी। इससे ये सवाल भी उठते हैं कि क्या विपक्ष के में नीट के मुद्दे को लेकर आपस में ही फूट है क्रेडिट लेने की, और जब मुद्दा एक है तो धरने में ये अलग अलग वाली बात कैसे आ रही है और एक दूसरे पर हमले क्यों किए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने यह धरना तब दिया है जब शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसद आज ही जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन में शामिल होने पहुंचे। यानी एक ही मुद्दे को लेकर अलग अलग पार्टियां अलग अलग आंदोलन के साथ दिखना चाहती हैं, जिसे विपक्ष की राजनीति को लेकर आज चर्चा हो रही है।
9: सरकार बात नहीं करती, डरपोक।
10: चार एफआईआर
9: दर्ज करो, फिर भी बच्चे लड़ते रहेंगे और हम उनके साथ हैं।
10: कभी हिटलर ने अपने पॉलिटिकल लोगों के साथ इस तरह का एक गैंग बनाया था? लगता है इस तरह के लोग थे जो प्राइवेट ड्रेस में थे और लाठी लेकर के लोगों को मार रहे थे। कभी हिटलर ने बनाया था और आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देखते हैं।
11: इतने हफ्तों से चल रहा है, आप बातचीत कल क्यों करते हैं? आप तो पहले से बातचीत करना चाहिए था उन स्टूडेंट से, और कंप्लीट मिसमैनेजमेंट है।
0: आज ये सारा राजनीतिक घमासान तब हुआ जब प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए के संसदीय दल की बैठक में नीट पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने पेपर लीक को घोर पाप बताया। उन्होंने कहा कि जब नीट का पेपर लीक हुआ तभी कार्रवाई की गई थी, 13 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया, छात्रों का भविष्य प्रभावित ना हो इसलिए नीट की परीक्षा जल्द से जल्द कराई गई, बिना देरी के इस परीक्षा का रिजल्ट भी जारी किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भविष्य में पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं और सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि पेपर लीक के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि पेपर लीक केवल किसी एक राज्य या केंद्र सरकार का नहीं बल्कि पूरे देश का मुद्दा है। सुनिए,
4: प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, पूरा देश का। हर एक राज्य में जहां जहां पेपर लीक करने में जो लोग लिप्त हैं, जो लोग इस धंधे में इन्वॉल्व है, जिन्होंने काम इस तरह का घिनौना किया है, पाप काम किया है, उनको सजा देने के सब एकजुट होना चाहिए। ये कोई दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है। और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को, और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें, इसको प्रधानमंत्री जी ने बल दिया है।
0: अब इन तमाम घटनाओं के बीच दिल्ली पुलिस ने एक 2 मिनट 39 सेकंड का वीडियो जारी किया है, जिसमें यह दिखाया गया है कि 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च में कैसे भीड़ ने उपद्रव किया और पुलिस के खिलाफ हिंसा हुई। देखिए,

0: अब दिल्ली पुलिस का दावा है कि 20 जुलाई को हुए उपद्रव में 60 प्रदर्शनकारी घायल हुए, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी का दावा है कि घायल हुए लोगों की संख्या 100 से ज्यादा है। इनमें भी एक लड़की आरएमएल हॉस्पिटल में गंभीर हालत में बताई जा रही है। कॉकरोच जनता पार्टी का दावा है कि यह लड़की 21 साल की है, दिल्ली के उत्तम नगर इलाके से इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने आई थी, लेकिन पुलिस की कार्रवाई में वो गंभीर रूप से घायल हुई और इसके बाद उसे वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखना पड़ा है। हालांकि आरएमएल हॉस्पिटल ने अब से कुछ देर पहले यह बताया है कि इस लड़की की हालत में कुछ सुधार आया है और अब भी इसे वेंटिलेटर सपोर्ट पर ही रखा गया है और लगातार उसकी निगरानी हो रही है। यहां बीबीसी की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि इस लड़की की को जो चोटें आई वो तब आई जब भीड़ उस पर गिर गई और ये बात इस लड़की के भाई ने भी कही है। यहां बड़ी बात यह है कि उस हिंसा और उपद्रव को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी और दिल्ली पुलिस के दावे बिल्कुल अलग है। ये भी बात एक सच्चाई है कि इधर घायल पुलिसकर्मियों की तस्वीर है तो उधर घायल प्रदर्शनकारियों की खबर है। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका का आरोप है कि दिल्ली पुलिस ने शांतिपूर्ण ढंग से मार्च निकाल रहे प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज किया। यह भी आरोप है कि पुलिस द्वारा कई प्रदर्शनकारियों को पीटा गया, तस्वीरें आपके सामने है, सड़क पर घसीटा गया। इस हमले में कई प्रदर्शनकारियों को गंभीर चोटें आई। कॉकरोच जनता पार्टी ये भी आरोप लगा रही है कि इस विरोध प्रदर्शन में सोनम वांगचुक की पत्नी के भी बाल खींचे गए, जबकि दिल्ली पुलिस इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है, बेबुनियाद और गलत बता रही है। कॉकरोच जनता पार्टी का ये भी आरोप है कि अगर पुलिस प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज नहीं करती, उनके साथ मारपीट नहीं होती, तो ये प्रदर्शन ऐसा कभी भी नहीं होता। ये भी आरोप है कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों को गुमराह किया। उन्होंने बातचीत के लिए 5 घंटे इंतजार कराया, लेकिन इनकी मांगे नहीं मानी गई। ये भी आरोप है कि जब दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया, तब उनमें कई पुलिसकर्मी सादी वर्दी में आए थे। ये सारे आरोप कॉकरोच जनता पार्टी के हैं, प्रदर्शनकारियों के हैं, जिनके बारे में हमने आपको अभी बताया है। अब आपको ये बताते हैं कि दिल्ली पुलिस क्या दावा कर रही है। पहला दावा यह है कि ना तो संसद मार्च की अनुमति मांगी गई थी, ना ही पुलिस की तरफ से अनुमति दी गई। दूसरा, पुलिस ने पूरे क्षेत्र में धारा 163 लगाई थी, जिसके तहत 5 या उससे ज्यादा लोगों के एक जगह इकट्ठा होने पर रोक थी। पुलिस का आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने इस कानून का पालन नहीं किया और जब उन्हें इसके बारे में बताया गया तो वो तब भी अपने मार्च को वापस लेने के लिए तैयार नहीं हुए। दिल्ली पुलिस ये भी आरोप लगा रही है कि पहले लाठीचार्ज नहीं हुआ था, बल्कि पहले उस पर पथराव हुआ, कई दुकानों पर हमले की कोशिश हुई, जिसके बाद उसने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कड़े कदम उठाए। पुलिस ने शब्दशः कहा कि जिस भीड़ ने उस पर हमला किया वो शायद किसी उद्देश्य से आई थी। हालांकि हम फिर से स्पष्ट करना चाहते हैं कि आरोप पुलिस के हैं, जिन्हें प्रदर्शनकारी पूरी तरह गलत बता रहे हैं। देखिए,
1: we'll be right back.

0: का ये भी दावा है कि इस हिंसा और पथराव में कुल 118 पुलिसकर्मी घायल हुए। इनमें ज्वाइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, डीसीपी, एडिशनल डीसीपी और एसीपी स्तर के कई अधिकारी भी शामिल हैं। इनमें कुछ पुलिसकर्मियों को पथराव के दौरान चोटें आई, जबकि कुछ पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट और हिंसा की गई। ये आरोप दिल्ली पुलिस खुद लगा रही है। हमारे पास ऐसे 3 वीडियो हैं जिनमें भीड़ में शामिल कुछ लोग पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों पर हमला करते हुए नजर आते हैं। इसमें भी आईटीओ के पास पुलिस और भीड़ के बीच सबसे बड़ा टकराव होता है, जिसमें बेकाबू भीड़ पुलिस को पीछे धकेलने की कोशिश करती है और इसी दौरान कुछ लोग पुलिस वालों पर भी हमला करते हैं। लेकिन ये बात भी साफ साफ कही जानी चाहिए कि पुलिस वालों पर हमला हुआ है तो वैसे ही पुलिस वालों ने भी कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों पर, जो आरोप है प्रदर्शनकारियों का, उन पर लाठी डंडे चलाए। ये तस्वीरें जो है देखिए, अब तक इन आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है कि प्रदर्शनकारियों की भीड़ में शामिल जिन लोगों ने पुलिस पर हमला किया वो लोग कौन थे। पुलिस ने ही बहुत सारे मामले भी दर्ज किए हैं, बहुत सारे लोग इन्हें कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़ा हुआ बता रहे हैं, लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं कि पुलिस ने खुद इन आरोपों की पुष्टि नहीं की है। पुलिस ने एक वीडियो जरूर डाला है। पुलिस का कहना है कि वो इस बात की जांच करेगी कि हमला करने वाले लोग कौन थे, कहां से जुड़े थे, क्या मकसद था, कहां से आए थे। हिंसा करने वाले ये लोग प्रदर्शनकारी थे या नहीं थे ये भी अभी साफ होना है। इसके लिए आपको पुलिस की जांच का इंतजार करना चाहिए। पुलिस ने इस हिंसा को लेकर कुल 70 लोगों को हिरासत में लिया, लेकिन अब इन सभी लोगों को छोड़ दिया गया है। ये भी आरोप है कि इन लोगों ने कुल 15 से 20 सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ की। हमारे पास ऐसे कई वीडियोज हैं जिनमें मुंह पर कपड़ा बांधे ये लोग दिल्ली पुलिस की गाड़ी को सड़क पर पलटते हुए नजर आ रहे हैं, और इनमें भी कई लोग डंडों से पुलिस की गाड़ियों के शीशे तोड़ते हुए दिखाई दिए हैं। देखिए, यहां पर इस वीडियो को भी देखिए जो कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल का है। पुलिस का आरोप है कि कुछ उपद्रवियों ने यहां पहले एक गाड़ी को अपना निशाना बनाया और उसके बाद इस गाड़ी के ऊपर खड़े होकर हूटिंग की। वहां से गुजरने वाले लोगों को भी उन्होंने टारगेट किया। हालांकि ये लोग जंतर मंतर से ही आए थे या कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक थे, अभी पुष्टि नहीं है। हम बार बार आपसे ये कह रहे हैं कि ये लोग आखिर कौन थे, इसको लेकर एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। जब ये उपद्रव हुआ तब ये भीड़ कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल पर तोड़फोड़ कर रही थी, और इसीलिए ये बात बार बार बतानी जरूरी है कि ये वाकई प्रदर्शनकारी थे या फिर कुछ ऐसे लोग थे जो बाहर से आए थे। अभी इस बारे में पुलिस भी कुछ नहीं कह रही है। देखिए,
1: Yeah!
0: दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार ने इस हिंसक प्रदर्शन में घायल हुए पुलिसकर्मियों से मुलाकात की और ये कहा कि वर्दी पर लगी हर चोट कर्तव्य के प्रति समर्पण की गवाही देता है। लेकिन जो सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है वो ये है कि आखिर इस प्रदर्शन में शामिल जिन लोगों ने पुलिस पर हमला किया उनके पास पत्थर आए कहां से। तो हमारे पास दो ऐसे वीडियो हैं जो इन सवालों का भी जवाब देते हैं। हालांकि आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कोई ट्रक है जिस पर कुछ पत्थर डाले हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये वीडियो भी दिखाई देता है फुटपाथ पर जो ईंट सुंदरता के लिए लगाई गई थी उन ईंटों को उखाड़ कर उनके बड़े बड़े टुकड़े जो है वो निकाले गए, ये देखिए। और दावा है कि इससे हमला किया गया। अब कल सुबह 10 बजे जब कॉकरोच जनता पार्टी ये संसद मार्च निकाल रही थी तब इसमें अभिजीत दीपके पार्टी प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रंका शामिल नहीं हुए थे। इसके पीछे कॉकरोच जनता पार्टी ये कारण बता रही है कि सरकार ने उनसे बातचीत करने का प्रस्ताव भेजा था जिसके कारण सौरभ दास आशुतोष रंका इस मार्च में शामिल नहीं हो पाए। आज जब राहुल गांधी वहां पर पहुंचे तो वो अति संवेदनशील हाई सिक्योरिटी जोन में पहुंचे थे। प्रधानमंत्री आवास का वो गेट जो कि सिर्फ प्रधानमंत्री के कैवलकेड के लिए वहां पर रास्ता है, किसी और को वहां पर एक्सेस नहीं है। रेसकोर्स रोड दूसरा साइड है जिससे अक्सर वहां तो ट्रैफिक भी जाता है, वहां से आवाजाही होती है, लेकिन जिस गेट के बाहर ये प्रदर्शन हुआ है उस गेट पर सिर्फ प्रधानमंत्री के कैवलकेड को और पीएम सिक्योरिटी में जो लोग उनके साथ रहते हैं उनको एक्सेस रहता है। और ऐसे में इस अति संवेदनशील सुरक्षित इलाके में आज विपक्ष के इस आंदोलन और विरोध प्रदर्शन को लेकर बीजेपी की तरफ से आप ये आरोप देख रहे थे। देखिए एक बार फिर से जो बीते दिन का विरोध प्रदर्शन है उस पर पहुंचते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे अलग अलग तरीके से आपने देखा कि कुछ नेता वहां पर दिखे कॉकरोच पार्टी के, कुछ नहीं दिखे। अभिजीत जो दीपके हैं उन्होंने अपने प्रदर्शनकारियों से माफी भी मांगी, ये कहा कि सरकार ने उनका काफी समय बर्बाद किया और रणनीति के तहत उन्हें उलझाए रखा। देखिए हुआ ये कि दोनों ही सौरभ दास और रंका दोनों पहुंचे हुए थे बात करने के लिए जेपी नड्डा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से। अब ऐसे में जब वो बच्चे वो छात्र जो आंदोलन कर रहे थे सड़क पर वो तो सड़क पर रहे लेकिन ये नेता उतनी देर नदारत रहे, तो आज जमकर इन सभी को घेरा जा रहा था कि भाई आप लोग कहां थे जब इस तरह से पुलिस लाठियां बरसा रही थी, तो नेता कहां थे। तो उसी पर ये लोग सफाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि एक रणनीति के तहत सरकार ने उनको फंसा कर रखा। उन्होंने कहा कि अब वो ऐसा नहीं होने देंगे, सरकार को उनसे बात करनी है तो सरकार को अब खुद जंतर मंतर पर आना होगा। सुनिए,
1: ऑर्डर किसने दिए थे? क्या पीएम और अमित शाह के ऑर्डर के बिना लाठीचार्ज करा है दिल्ली पुलिस ने? ये पीएम के ऑर्डर पर हुआ है या अमित शाह के ऑर्डर पर हुआ है? पीएम को बोला ये फालतू भाषण ना दे, अगर आपको सही में छात्रों की चिंता है तो आए जंतर मंतर पर मिलिए इन छात्रों से जिनके ऊपर

0: गैस बरसाया स्टूडेंट्स पर, तो ये भाषण से नहीं चलेगा, प्रधानमंत्री को हटाना पड़ेगा।
1: कॉकरोच जनता पार्टी ने आज विजेता दहिया को पार्टी के प्रवक्ता पद से हटा दिया है। कारण यह बताया गया है कि जब पार्टी के समर्थक पुलिस की कार्रवाई के बावजूद संसद तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, तब विजेता दहिया को कुछ लोगों ने मेट्रो में जाते हुए देखा। उनसे ये पूछा कि जब प्रदर्शनकारी लाठी खा रहे हैं, तब पार्टी प्रवक्ता होते हुए वो मेट्रो में क्या कर रहे हैं? देखिए,
2: आप मुझे बताइए सिंपल, आप क्यों नहीं गए? मैं जंतर मंतर भी आज क्यों नहीं गया? आप यहाँ क्यों घूम रहे हो मुझे ये तो बताइए? वहां सब लाठी खा रहे हैं और आप यहाँ घूम रहे हो? ये कौन सा सपोर्ट कर रहे हो? ये कौन सा सपोर्ट कर रहे हो आप? हैं, बाबा को गाली दे रहे हो? हैं,
3: मैं तो घर जा रहा था।
2: इसलिए क्या आप यहाँ कर रहे हो? मुझे कितना बताइए। नहीं नहीं नहीं, मैं भी नहीं, आप गाली दे रहे हो और आप यहाँ क्या कर रहे हो आप? अच्छा अच्छा,
4: फोड़ा गया, हड्डी तोड़ी गई, करंट लगाया गया और जो कुछ सरकार कर सकती थी सरकार ने दमन करने की कोशिश की है। लड़कियों के कपड़े फाड़े हैं, क्या ये लोकतंत्र में उम्मीद कर सकता है किसी सरकार से? और जब शांतिपूर्ण आंदोलन और प्रदर्शन चल रहा उस समय, इसलिए हमारी मांग है कि सरकार जो छात्र हैं, युवा हैं, उनकी मांगों को मान लें। सदन में यही मुद्दा उठाएंगे।
1: तो अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे। अखिलेश यादव बस में इस वक्त मौजूद दिखाई दे रहे हैं, मुझे लगता है कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं, क्योंकि इन सब को ले जाया गया है। और उनका ये कहना था कि छात्रों की जो भी मांगे हैं उसको सरकार माने और वो इस मुद्दे को कल फिर से संसद में उठाने वाले हैं। आज पंजाब हरियाणा के किसानों ने भी केंद्र सरकार के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित कृषि व्यापार समझौते के विरोध में किसान संगठनों ने दिल्ली के किसान घाट पर महापंचायत आयोजित करने का ऐलान किया था, लेकिन दिल्ली मार्च कर रहे किसानों का आंदोलन फिलहाल टल गया है। तो ये उसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पटियाला के शंभू बॉर्डर पर डटे हजारों किसान और प्रशासन के बीच बातचीत के बाद सहमति बन गई। टकराव से बचते हुए किसान नेता सरवन सिंह पंढेर और हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा के बीच बातचीत हुई और दो मुख्य मांगों पर सहमति बनी। पहली, गुरनाम सिंह चढ़ूनी समेत हिरासत में लिए गए नेताओं की रिहाई की जाए, और दूसरी, 8 से 10 दिनों के भीतर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से उनकी मुलाकात कराई जाएगी। अब अगली खबर का रुख करते हैं। बात करेंगे अगली खबर की, जिसने दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। और इतनी सारी खबरें देश के अंदर की हैं, लेकिन बावजूद इसके इस खबर की अहमियत को समझते हुए आपको बताना जरूरी है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के लिए अमेरिकी और ईरान, जो अमेरिका है और ईरान है, वो एक दूसरे पर इस वक्त टूट पड़े हैं। खबर है कि दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग में से एक बाबा अल बंदेब की नाकेबंदी की जा रही है। यमन के हूती आतंकियों ने सऊदी अरब की नाकेबंदी का ऐलान किया है और इस ऐलान का मतलब है कि वो बाबल मंदेब को बंद करेंगे। ये काम वैसे ही होगा जैसे ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के साथ किया था। ये तेल के मद्देनजर अगर आप देखिए, सारा व्यापार के मद्देनजर, तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रूट है। इसका बंद होना यानी एक बार फिर से हम सबके जीवन पर असर पड़ सकता है। बाबा अल मंदेब स्ट्रेट वैसे ही है जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ईरान और ओमान के बीच है, जो आप देख रहे हैं, और उससे करीब 2,500 किलोमीटर दूर बाबल मंदेब स्ट्रेट है, जो यमन और जिबूती के बीच है। अगर आप मैप पर देख रहे हैं तो बाबल मंदेब करीब 30 से 32 किलोमीटर चौड़ा स्ट्रेट है, जो अदन की खाड़ी और लाल सागर को जोड़ता है। इसका बंद होना, बाबल मंदेब एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है जो एशिया और यूरोप को जोड़ता है, और खास तौर पर इसकी अहमियत बढ़ी है जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद है। यूरोप जाने वाले जहाज हिंद महासागर से अदन की खाड़ी, फिर बाबल मंदेब से गुजरते हुए लाल सागर में पहुंचते हैं, फिर यहां से स्यूएज नहर से होते हुए भूमध्य सागर में पहुंचते हैं और यूरोप के देशों की ओर चले जाते हैं। यमन के हूती आतंकियों ने सऊदी अरब की नाकेबंदी करने के लिए बाबल मंदेब को बंद करने का ऐलान किया है। हूती आतंकियों ने यह ऐलान ईरान पर अमेरिकी हमलों और यमन के बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर पिछले दिनों हुए हमलों की वजह से किया है। कुछ दिन पहले सऊदी अरब के अभा से यमन के हवाई अड्डों पर बमबारी की गई और इसीलिए अब हूती आतंकियों ने सऊदी अरब से जुड़े जहाजों की नाकेबंदी शुरू कर दी है। दुनिया के कुल व्यापार का जानते हैं करीब 12% बाबल मंदेब से होता है, यानी करीब 97 लाख करोड़ रुपए का व्यापार यहीं से होता है। यही नहीं, दुनिया के 12% कच्चे तेल का

व्यापार और 8% एलएनजी व्यापार भी इसी रास्ते से होता है। ईरान युद्ध के बाद से समुद्री मार्ग से हर दिन करीब 71 लाख बैरल कच्चे तेल की सप्लाई हो रही है। वही एक स्ट्रेट बंद है, यहां से सब हो रहा था, यह भी बंद हो जाएगा। और अगर ये होता है तो कच्चे तेल की सप्लाई पर जबरदस्त असर पड़ेगा, उससे उसके दाम तेजी से बढ़ने का डर फिर सामने आ गया है। इस नाकेबंदी का सऊदी अरब पर बड़ा असर होगा। इसको आप इस तरह से समझिए कि बाबर मंदेप के बंद होने से इस मार्ग से जाने वाले व्यापारिक जहाजों को अफ्रीकी महाद्वीप में से घूम कर जाना होगा। जहाजों को हिंद महासागर से अफ्रीकी महाद्वीप पार करते हुए फिर महासागर से होते हुए जाना होगा और फिर वहां से यूरोप और अन्य देशों में। अब इसीलिए कीमतें फिर से बढ़ने का आसार लग रहा है। सऊदी अरब के लिए तो ये और भी मुश्किल स्थिति होगी, क्योंकि सऊदी अरब तक जाने वाले जहाजों को अटलांटिक महासागर से फिर भूमध्य सागर जाना होगा, जहां से वो स्वेज नहर से होते हुए लाल सागर में पहुंचेंगे, तब जाकर वो सऊदी अरब जा पाएंगे। मतलब ये है कि बाबर मंदेप के बाद के बंद होने से समुद्री व्यापार खर्चीला भी हो जाएगा, ज्यादा समय भी लगेगा, यानी कीमतें बढ़नी तय है। बाबर मंदेप के बाद बंद होने से सऊदी अरब का समुद्री व्यापार लगभग पूरी तरह के ब्लॉक होने की स्थिति में आ जाएगा, क्योंकि उसके एक छोर पर लाल सागर है और दूसरे छोर पर फारस की खाड़ी है। दोनों ही छोर पर जगह जंग की वजह से नाकेबंदी है। इस साल अप्रैल से लेकर अब तक सऊदी अरब ने यानबू बंदरगाह से 45 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल की सप्लाई की है, जिसमें उसका 70% कच्चा तेल बाबर मंदेप से एशियाई देशों को सप्लाई किया गया है। ईरान युद्ध की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद है, सऊदी अरब को पहले ही बहुत नुकसान हो रहा है, इसी वजह से उसने अपना एक वैकल्पिक मार्ग अपनाया था जो लाल सागर की तरफ था। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट पे इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। और इंसान ने चांद पर पानी ढूंढ लिया, काश थोड़ा पानी आंखों में भी बचा लेता। नमस्कार।

0: सेक्टर्स।
1: संसद का मानसून सत्र शुरू होगा तो दिल्ली में इतना बड़ा सियासी भूचाल आ जाएगा, ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा। मानसून सत्र के पहले दिन कॉकरोच जनता पार्टी के जंतर मंतर से संसद चलो मार्च पर हंगामा, पुलिस से भिड़ंत, और अगले दिन प्रधानमंत्री आवास के पास कांग्रेस और विपक्ष का हाई वोल्टेज हंगामा और साथ ही साथ धरना प्रदर्शन भी। पुलिस ने पहले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी नेताओं को हिरासत में लिया, बाद में सबको छोड़ दिया गया। नीट पेपर लीक पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग से शुरू हुआ ये विरोध प्रदर्शन कैसे प्रधानमंत्री आवास यानी कि सात लोक कल्याण मार्ग तक पहुंच गया, आइए आपको दिखाते हैं।
2: नीट पेपर लीक की लड़ाई पीएम आवास पर धरने तक आई। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर विपक्ष अड़ा, सड़क पर एक तूफान खड़ा। कांग्रेस का हाई वोल्टेज हंगामा, पुलिस ने धरना प्रदर्शन से हटाया। राहुल गांधी, प्रियंका और अखिलेश यादव समेत कई नेता हिरासत में। प्रधानमंत्री आवास के पास विपक्ष का हंगामा, पूरी रणनीति क्या है? दिल्ली की सत्ता के सबसे ताकतवर केंद्र यानी सात लोक कल्याण मार्ग यानी प्रधानमंत्री आवास के बुहाने पर जब देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी अपने दिग्गजों की पूरी फौज के साथ सड़क पर उतरती है तो ऐसा हंगामा मचता है कि दिल्ली से लेकर पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत कांग्रेस और विपक्ष के कई बड़े नेताओं को न सिर्फ धरने से उठाया बल्कि इन सबको हिरासत में भी ले लिया और उन्हें बस में भर कर थाने ले गई।
3: यहाँ पे जो तस्वीर 7RCR यानी कि लोक कल्याण मार्ग में घट रही है, पीछे हमारे देखिए अखिलेश यादव और राहुल गांधी को कुछ इस तरीके से बस में भर के ले जाया जा रहा है। अखिलेश यादव हाथ देने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी डिटेन कर लिया गया है। मुकुल वासनिक वहाँ पे नजर आ रहे हैं और तमाम जो नेता है वो यहाँ पे नारेबाजी लगाते हुए इस बस पे आगे जाते हुए आइए।
2: आपको बता दें कि जब राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं को प्रधानमंत्री आवास के पास धरने से उठाने के लिए पुलिस ने घेरा बनाया और राहुल गांधी को हटाने की कोशिश की तो वो जमीन पर लेट जाते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे राहुल गांधी सड़क पर लेटे हुए हैं और पुलिस के साथ उनकी काफी देर तक जोर आजमाइश चलती रहती है। आखिर में पुलिस धरने पर बैठे नेताओं को उठाकर ले जाती है।
4: डेमोक्रेसी इन इंडिया इज हैपनिंग राइट नाउ। डेमोक्रेसी इन इंडिया इज हैपनिंग राइट नाउ।
5: कायर हैं, डरते हैं,
6: बात कर रही है, बात कर रही
5: है। हम नहीं डरते इनसे, ये हमसे
6: डरते हैं।
2: आपको बता दें कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव को दिल्ली पुलिस हिरासत में लेकर अलग अलग थानों में जाती है। इस बीच दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर की सुरक्षा भी बढ़ा दी जाती है, हर गेट पर पुलिस की भारी तैनाती कर दी जाती है।
7: गुंडई और राजनीति गुंडागर्दी की, उसका अंत यहाँ नहीं है। ये एक नई क्रांति की शुरुआत है राहुल गांधी के नेतृत्व में। ये क्रांति अब बड़ी ज्वाला बनकर धधकेगी।
8: आज फिर से दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्री के इशारे पर, प्रधानमंत्री के इशारे पर बहुत ही कायरता पूर्वक तरीके से हमारे नेता राहुल गांधी को घसीटकर हिरासत में लिया, हमारी नेता प्रियंका गांधी को बदतमीजी कर और घसीटकर बस में जबरदस्ती ठूसा।
2: हिरासत में लेने के बाद राहुल गांधी का पहला एक्स पोस्ट आता है जिसमें वो लिखते हैं कि मोदी जी हर जोर आजमा लो, सारी ताकत लगा लो, छात्रों के इंसाफ की ये लड़ाई अब रोके ना रुकेगी। पीएम आवास के पास दोपहर करीब 3:30 बजे से शुरू हुआ धरना प्रदर्शन शाम 6 बजे तक एक बड़े सियासी हंगामे में तब्दील हो जाता है। अब उसकी पूरी टाइमलाइन आपको दिखाते हैं। दोपहर करीब 3:30 बजे पीएम आवास के पास कांग्रेस का धरना, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, बाकी सांसदों नेताओं के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर से बैठक करके अचानक मार्च करते हुए निकल पड़ते हैं और सात लोक कल्याण मार्ग पर यानी प्रधानमंत्री के आवास वाली सड़क पर पीएम आवास से कुछ दूरी पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत बाकी कांग्रेस के दिग्गज नेता धरने पर बैठ जाते हैं। राहुल गांधी जब धरना देते हैं तो वहां पर देखा गया कि वो सांकेतिक रूप से हथकड़ी वाला प्रदर्शन करते हैं, जहां राहुल गांधी समेत दूसरे कांग्रेस नेता हाथ में लॉक लगाने वाला थ्रेड बांध लेते हैं। अब राजनीतिक सवाल ये आता है कि अचानक पीएम आवास के पास पहुंचकर राहुल गांधी धरना क्यों देते हैं, उनकी मांग क्या है?
0: हमारे नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में ने इस मांग की है, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में ये मांग की है, गृह मंत्री आए, दोनों सदनों में बयान दे, उस पर चर्चा हो, जिस तरीके से हमारे लोकतंत्र और हमारे संविधान पर हत्या हो रही है, जो हमारे युवाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उनके भविष्य पर अंधेरा छाया हुआ है, उस पर एक बयान दे। और हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग हम 20 करीब 45 दिन से कर।
2: लेकिन जब पीएम आवास के पास ही राहुल गांधी धरना देने लगते हैं तो इन सब के बीच दोपहर 3:45 पर राहुल गांधी को धरने से हटाने की अपील। अचानक दिल्ली पुलिस वहां पहुंचती है और राहुल गांधी से धरने से हटने के लिए कहा जाता है, लेकिन वो इनकार कर देते हैं। सरकार की तरफ से जितेंद्र सिंह भी राहुल गांधी से बातचीत करने के लिए पहुंचते हैं और फिर कांग्रेस के नेताओं को पुलिस हिरासत में लेकर पीएम आवास के पास वाले धरने से हटाना शुरू कर देती है। शाम 4 बजे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह राहुल गांधी से बात करने पहुंचते हैं। जी हां, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह खुद राहुल गांधी से बात करने पहुंच जाते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को लौटना पड़ता है। वो कुछ बोलते नहीं हैं। पता ये चलता है कि राहुल गांधी ने धरने से हटने से मना कर दिया है।
8: छात्रों को, युवाओं को न्याय नहीं मिल जाता, कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता, हम लोग यहाँ से नहीं हिलने वाले। दिन हो या रात, नरेंद्र मोदी के बाहर आना पड़ेगा। पूरी कांग्रेस पार्टी जो जहाँ है यहाँ आए और धरने पर बैठ जाए, नहीं हिलेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा।
2: शाम 5:18 राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। राहुल गांधी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं और लिखते हैं कि छात्रों पर हमला हर भारतीय परिवार पर हमला है। प्रधानमंत्री मोदी को लगता है कि वो बिना जवाब दिए, बिना किसी नतीजे का सामना किए बच निकलेंगे, नहीं कर पाएंगे, इस बार तो बिल्कुल नहीं। इसके बाद राहुल गांधी ने इस पोस्ट में अपील कर दी कि जो भी मानता है कि छात्रों को न्याय मिलना चाहिए, वो पीएम आवास के सामने धरने में शामिल हो। कांग्रेस के इस धरने में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल हो जाते हैं। उनके साथ विपक्ष के कई और नेता भी इस धरना प्रदर्शन में जुड़ते हैं। आज तक ब्यूरो।
1: हंगामा लगातार जारी है और आपको बता दें कि दोनों ही तरफ से लगातार बयान भी जारी किए जा रहे हैं। राहुल गांधी की तरफ से भी छात्रों के इस आंदोलन पर एक बयान जारी किया गया है। छात्रों के इस मुद्दे को देश के सामने लाने की कोशिश की है, ये राहुल गांधी ने कहा है। और क्या कहा है नेता विपक्ष ने, सुनिए।
9: दूसरा कि स्टूडेंट्स को जिन्होंने मारा है, जिन्होंने ह्यूमिलिएट किया है, उन पर एक्शन लिया जाए और जो भी स्टूडेंट्स पर केसेस हैं उनको हटाया जाए। फाइनली पूरी ऑपोजिशन चाहती है कि ये जो इशू है, देश का सबसे बड़ा इशू है, इस पे कल लोकसभा में, राज्यसभा में डिबेट हो और हम अपनी बात रख सकें। मेरा मोदी जी से एक सजेशन है, एज एलओपी, कल जो हुआ, जो आपकी सरकार ने, आपके होम मिनिस्टर ने किया, उसके लिए आप देश के स्टूडेंट से माफी मांगिए और जल्दी से जल्दी एग्जामिनेशन सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम्स पर रिफॉर्म शुरू कीजिए। आप सब ने हमारा समर्थन किया, सारे लोग जो स्टूडेंट्स की इशू के लिए लड़ रहे हैं, एक साथ लड़ रहे हैं, मैं आप सबका
7: दिल से धन्यवाद करता हूँ।
10: दिस मॉर्निंग आई वेंट एंड मेट द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड आई सेड टू हिम दैट इट
1: वाज सर, आपने नेता विपक्ष के नाते उन्होंने तमाम बातें कही। उन्होंने कहा भारत की शिक्षा व्यवस्था कमजोर हो रही है, जिस पर काम करने की जरूरत है। धर्मेंद्र प्रधान का राहुल गांधी ने इस्तीफा मांगा है सीधे सीधे। उन्होंने कहा कि माफी मांगनी चाहिए सरकार को जिस तरीके से छात्रों के साथ व्यवहार किया गया है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बहुत जरूरी है कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसमें सुधार होना चाहिए, परीक्षा सिस्टम सुधरना चाहिए। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं कि क्या कहा गया है राहुल गांधी की तरफ से।
9: और जो स्टूडेंट्स की इशू है, जो देश के लिए सबसे जरूरी इशू है, और जो उनके खिलाफ किया गया है, वो हम चलो दीजला धर्मेंद्र प्रधान। दूसरा की absolutely nothing wrong with asking these questions. Students की मांगे हैं, पहला धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह का रेजिग्नेशन, दूसरा की स्टूडेंट्स को जिन्होंने मारा है, जिन्होंने ह्यूमिलिएट किया है, उन पर एक्शन लिया जाए, और जो भी स्टूडेंट्स पर केसेस हैं उनको हटाया जाए। फाइनली पूरी ऑपोजिशन चाहती है कि ये जो इशू है, देश का सबसे बड़ा इशू है, इस पे कल लोकसभा में राज्यसभा में डिबेट हो और हम अपनी बात रख सकें। मेरा मोदी जी से एक सजेशन है, एज एलओपी, कल जो हुआ, जो आपकी सरकार ने, आपके होम मिनिस्टर ने किया, उसके लिए आप देश के स्टूडेंट से माफी मांगिए, और जल्दी से जल्दी एग्जामिनेशन सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम्स पर रिफॉर्म शुरू कीजिए। आप सब ने हमारा समर्थन किया, सारे लोग जो स्टूडेंट्स की इशू के लिए लड़ रहे हैं, एक साथ लड़ रहे हैं, मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं।
1: तो जबरदस्त संसद के बाहर हंगामा और गहमागहमी पूरे दिन चली, और आपको बता दें कि उसके बाद कांग्रेस के बड़े लीडर्स को, विपक्ष के बड़े लीडर्स को कहना चाहिए कि हिरासत में ले लिया गया था, उसके बाद उनकी रिहाई की गई। रिहाई के बाद प्रियंका गांधी ने क्या कहा, सुनिए।
11: जो हमारे बच्चे हैं, हमारे युवा हैं, हमारे देश के भविष्य हैं, उनकी बात सुनने में क्या हर्ज थी? वो एक जेन्युइन इशू को लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो जो उनके साथ हो रहा है, वो उसका दुख लेकर, गुस्सा लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम सारे, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी आवाज हम ऊंची करें और उनकी आवाज हम बुलंद करें, और उनके सपोर्ट में हम खड़े हैं, क्योंकि उनके साथ जो कल हुआ वो एकदम गलत हुआ। ये एक लोकतंत्र है, इट्स अ डेमोक्रेसी। इन अ डेमोक्रेसी राइट टू प्रोटेस्ट इट्स अ फंडामेंटल राइट, नोबडी हैज द राइट टू प्रोटेस्ट।
1: और अब बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री आवास के पास से धरना प्रदर्शन हटवाने के लिए और बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और गृह सचिव गोविंद मोहन राहुल गांधी से मिलने जाते हैं, और फिर बात नहीं बनती। जितेंद्र सिंह ने बताया कि राहुल गांधी की मांग थी कि नीट पर संसद में चर्चा हो, राहुल गांधी की यह मांग मान ली गई थी, लेकिन राहुल अपनी बात से मुकर गए। और उसके बाद राहुल गांधी बोले कि अब उनकी दो मांगे हैं, पहली नीट पर संसद में चर्चा होनी चाहिए, दूसरा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। सरकार कह रही है कि जब छात्रों के हर मुद्दे पर संसद में वो चर्चा के लिए तैयार हैं, तो फिर कांग्रेस मुकर क्यों रही है?
12: प्रधानमंत्री आवास के पास लोक कल्याण मार्ग पर दोपहर 4:15 शुरू हुए कांग्रेस के धरने में प्रियंका गांधी नारे लगवाती हैं। तो इस बीच इस सवाल का जवाब सब जानना चाहते हैं कि आखिर सरकार ने तुरंत जब केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को राहुल गांधी से बात करने भेजा, तो राहुल क्यों नहीं माने? यहाँ पर आखिर क्या बात हुई? जवाब जो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दिया है, उसे उनकी सोशल मीडिया पोस्ट से देखिए। जितेंद्र सिंह ने लिखा कि कुछ समय पहले पता चला कि कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अचानक अकबर रोड के पास एक जगह पर धरने पर बैठ गए। जितेंद्र सिंह लिखते हैं कि सरकार ने उन्हें और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन को राहुल गांधी से बात करने के लिए भेजा। जितेंद्र सिंह ने राहुल गांधी से अनुरोध किया कि वो अपना धरना खत्म कर दें, क्योंकि ये जगह धरने की नहीं है, यहाँ पर धरना देने से आम लोगों को काफी मुश्किल होगी। राहुल गांधी ने ये मांग रखी थी कि अगर सरकार संसद में नीट और उससे संबंधित आंदोलन के साथ जुड़े सभी विषय पर चर्चा के लिए मान जाती है, तो वो अपना धरना तुरंत खत्म कर देंगे। कुछ ही देरी में सरकार के शीर्ष नेतृत्व की अनुमति लेने के बाद राहुल गांधी को ये भरोसा जितेंद्र सिंह की तरफ से दिया गया कि उनकी मांग को मान लिया गया है और सरकार नीट और उससे संबंधित आंदोलन के साथ जुड़े सभी विषय पर संसद में चर्चा करने को तैयार है। जितेंद्र सिंह के मुताबिक राहुल गांधी को जब ये सूचना पहुंचाई गई, तो उन्होंने कहा कि वो इतने पर नहीं मानेंगे बल्कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का भी भरोसा चाहा। राहुल गांधी ने कहा कि अब उनकी दो मांगे हैं, संसद में चर्चा और केंद्रीय शिक्षा मंत्री यानी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के मुताबिक जब राहुल गांधी को याद दिलाया गया कि पहले उन्होंने केवल चर्चा की ही मांग की थी, तब राहुल गांधी ने कहा कि अब उनकी मांगें बदल गईं। जब राहुल गांधी को विनम्रता से ये बताने की कोशिश की गई कि उनके जैसे सीनियर लीडर को इतनी जल्दी अपनी बात से मुकर जाना शोभा नहीं देता, तो जितेंद्र सिंह लिखते हैं कि राहुल गांधी ने कहा कि ये उनकी मर्जी है। जब गृह सचिव ने राहुल गांधी को ये समझाने की कोशिश की कि ये जगह धरने के लिए अनुकूल नहीं, तो जितेंद्र सिंह के मुताबिक राहुल गांधी ने जवाब दिया कि ये भी उनकी मर्जी है, वो जहां बैठे। इसके बाद जितेंद्र सिंह ने लिखा है कि राहुल गांधी जैसे सीनियर नेता और नेता प्रतिपक्ष का अपनी बात से मुकर जाना दुर्भाग्यपूर्ण है और लोकतंत्र की हर मर्यादा के विपरीत है। जितेंद्र सिंह साफ कहते हैं कि सरकार नीट और उससे जुड़े आंदोलन के साथ सभी विषयों पर संसद में चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन इसके विपरीत कांग्रेस ने अब तक इस गंभीर विषय पर औपचारिक चर्चा करने का कोई नोटिस नहीं दिया। जितेंद्र सिंह लिखते हैं कि राहुल गांधी का व्यवहार लोकतंत्र के उसूलों से मेल नहीं खाता है।
13: सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, सरकार तैयार है संसद में चर्चा करने के लिए, नीट को लेकर के भी, उसके साथ संबंधित विषयों को लेकर के भी, जो आंदोलन है उसको लेकर के भी। हमने जब ये बात वहीं पर राहुल गांधी जी के आगे दोबारा रखी तो बोले कि साहब मुझे तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी चाहिए। तो हमने कहा साहब अभी कुछ ही क्षण पहले आपसे बार बार जब पूछा गया कि आपका क्या मुतालबा है, तो आपने ये कहा था कि अगर मुझे ये आश्वासन दिया जाए कि संसद में कांग्रेस पार्टी को भारत सरकार चर्चा करने देगी या करने के लिए तैयार है, तो मैं तुरंत ये धरना समाप्त कर दूंगा। लेकिन अब आप अपनी बात से हट रहे हैं। तो बोले साहब ये तो मेरी मर्जी है, मेरी मांगे बदल चुकी हैं।
14: अब ये मुद्दा इतना ज्वलंत इसलिए है क्योंकि देश के युवा हैं और ये समझ रहे हैं कि हमारे फ्यूचर, हमारे भविष्य के लिए क्या है। हमारे माँ बाप लोन लेकर मुश्किल से हमें पढ़ाते हैं, हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारे लिए इतना मुश्किल है, इसको हल्के में कोई नहीं ले सकता। ये एक बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है। आज युवा बहुत ही दुखी है। एक्चुअली ये जो आप नाराजगी देख रहे हैं, ये एक्चुअली दुख है कि हमारे फ्यूचर, हमारे भविष्य के बारे में कौन सोच रहा है। ये सदन है किसका? ये उन्हीं युवाओं का है ना जिसको आप रोक रहे हैं बाहर, जिन पर आप लाठी चार्ज कर रहे हैं, जिन पर आप आंसू गैस चला रहे हैं। ये तो मतलब ये सदन ही उनका है। हम सब यहाँ है, किसने हमें यहाँ रखा है? उन्होंने ही रखा। तो उनकी बात तो सुन ले, उनकी बात तो सुन ले।
15: प्राइम मिनिस्टर मोदी एंटी यूथ
14: है। बिल्कुल एंटी यूथ है,
15: देखिए
14: एंटी यूथ है, एंटी गरीब है, एंटी किसान है, बच्चे हैं। सुन लीजिए इनकी बात, क्या होने जा रहा है अगर इनकी बात शांति से सुन लें। आप मंत्री जी की जिम्मेदारी है, उनसे रिजाइन करवाइए, इस्तीफा दीजिए, जिम्मेदारी लीजिए और सबसे जरूरी तो ये है कि सिस्टम को दुरुस्त करिए।
16: आप इन विषयों पे जब भी डिस्कशन होता है आप मुंह की खाते हैं, लास्ट में आप जवाब सुन भी नहीं पाते हैं। मैं अभी भी बोलूंगा, ये नकारात्मक जो सोच है विपक्ष का उसको छोड़ना चाहिए। आपने कर लिया ना जो एक दो दिन है, लेकिन कल से सदन को चलने दिया जाए। सभी जो मुद्दे हैं उन पे बात करिए। कोई ऐसा विषय नहीं है जिस पे संसद में बहस न हो सके, लेकिन इन लोगों को एक आदत लग गई है कि संसद के विषय को सड़क पे ले जाएंगे।
12: सरकार ने 3 घंटे के धरने में राहुल गांधी से 2 बार बातचीत की, लेकिन वो नहीं माने, तो पुलिस ने उन्हें धरना प्रदर्शन से उठाना शुरू कर दिया। कांग्रेस नेताओं और पुलिस के बीच आधे घंटे तक धक्का मुक्की होती रही। आखिर में 12 से ज्यादा पुलिसकर्मी उन्हें उठा कर ले गए।
1: 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज के खिलाफ चेंबूर में गुस्सा फूटा। छात्रों ने लाठीचार्ज के विरोध में प्रोटेस्ट किया। पेपर लीक केस में प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा कि सरकार इस आंदोलन को जितना दबाने की कोशिश करेगी उतना ही आंदोलन उग्र होगा।
17: Yeah. नीट पेपर लीक केस के बाद पूरे देश में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र के कई शहरों में भी छात्रों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। चेंबूर में भी छात्रों ने 20 जुलाई को जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज के विरोध में प्रोटेस्ट किया, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया।
18: दिल्ली में जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हुआ और उस पर लाठीचार्ज और आंसू गैस फेयर डाले गए, उसके विरोध में अब मुंबई के चेंबूर इलाके में प्रोटेस्ट हो रहा है। और आप देख लीजिए, काफी सारे प्रोटेस्टर्स यहां पे आए थे, लेकिन जितने प्रोटेस्टर्स हैं उससे ज्यादा तादाद में यहां पुलिस के अधिकारी हैं। यहां पे आप देख लीजिए, पुलिसकर्मी इतने ज्यादा हैं, और बताया यही जा रहा है कि जितने प्रोटेस्टर्स थे उनको भी नोटिसेस दी गई। आप लोगों को भी नोटिसेस मिले?
19: हम लोग को भी नोटिसेस मिले।
18: क्या कितने लोगों को दिया गया है, कितने लोगों की कोई उन लोगों को कहां कोई रेस्ट्रिक्ट किया गया उनका मूवमेंट?
19: नहीं, 20-25 से ज्यादा लोगों को नोटिस दिया गया है और 100 से ज्यादा लोगों को फोन कॉल्स आया है कि कल अगर आप प्रोटेस्ट में इन्वॉल्वमेंट हुए तो आपको केसेस हो सकता है। okay. इसकी वजह और काफी सारे गली के बाहर, घर के बाहर पुलिस जिनको बाहर आने नहीं दे रहे।
18: आप लोग को भी कहीं मोर्चा आप लोग निकालना चाह रहे थे, आप लोग को भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया?
19: हम लोग अभी चेंबूर नाके पे प्रोटेस्ट निकालने चाहते थे, बट हम लोग के एरिया के स्टार्टिंग पॉइंट पे पुलिस, मतलब जितने ज्यादा आंदोलन करते थे उससे 3 गुना ज्यादा तो पुलिस है यहाँ पे, और वो लोग बोल रहे कि यहाँ से आप बाहर निकल नहीं सकते। बट हम लोग तो मतलब किसी भी तरह का तीव्र आंदोलन, मतलब कोई तोड़फोड़ करने वाले नहीं थे, हम लोग शांति से आंदोलन करने वाले थे। बट जो चेंबूर के जो सीनियर्स है और बाकी भी सीनियर्स लोग है, वो लोग हम लोग को आगे जाने नहीं दे रहे।
18: तो पुलिस अधिकारियों ने आप लोगों के मूवमेंट को पूरा रेस्ट्रिक्ट कर दिया, लेकिन आप ये विरोध प्रदर्शन किस लिए कर रहे हैं?
19: जनरली विरोध प्रदर्शन इसलिए है कि कल तक हमारा रात में 8 बजे तक कोई ऐसा प्लानिंग नहीं था कि निदर्शन करना है, कोई आंदोलन करना है। बट जो हिसाब से कल हम लोग ने जो दिल्ली जंतर मंतर में जो आंदोलन देखा, जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ, काफी गलत है।
17: मुंबई पुलिस ने लोगों को प्रदर्शन न करने के लिए कई नोटिस भी दिए हैं। पुलिस ने कहा है कि प्रदर्शनकारी सिर्फ एक झुग्गी बस्ती के अंदर ही प्रदर्शन कर सकते हैं।
20: छोटे छोटे बच्चों जब आंदोलन करते हैं तो ये सरकार उनको मारती है, भगाती है, लाठी अलग करती है, तो ये देश में लोकशाही है कि नहीं? और बच्चे क्या मांग रहे हैं? जिसने जो भविष्य करने का जो का एग्जाम है वो पेपर लीक किया, और पेपर मतलब ऐसा ये कितने साल से चल रहा है, तो हमारा कुछ भविष्य है कि नहीं?
18: आप लोग भी प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे, कितने कार्यकर्ताओं को यहाँ पे, कितने लोगों को यहाँ पे रोका गया है?
20: हमारे सब कार्यकर्ताओं को रोका गया है, नोटिस दिया है, वो बोला है कि आंदोलन करने का नहीं। हम बोले कि लोकशाही मार्ग से हम आंदोलन कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, जमाबंदी आदेश लागू किया है तो आप आंदोलन नहीं कर सकते, ऐसा हम लोग को बोला है। फिर भी हम लोग उधर जाने की कोशिश करेंगे।
17: पेपर लीक केस में प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा कि सरकार इस आंदोलन को जितना दबाने की कोशिश करेगी, आंदोलन उतना ही उग्र होगा।
21: हाँ, नाराजगी तो है, जो हुआ है वो जो हमारे जो शिक्षण जो मंत्री है उन्होंने तो राजीनामा देना चाहिए, और जो लाठीचार्ज हुआ है उसके वजह से हमारी नाराजगी है। जो आप स्टूडेंट लोगों को मार रहे हो वो गलत है, वो क्रिमिनल नहीं है, वो स्टूडेंट्स है, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनको उनका हक है प्रोटेस्ट करने का, इसके लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उन्हें मारना नहीं चाहिए, ये गलत है।
18: लेकिन आप लोग भी तो यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और पुलिस वालों ने किस तरह से आप लोग?
21: हमारा कल से चालू है कि प्रोटेस्ट करना है, 2 दिन से हमारे लोग बाहर निकल रहे हैं। रात को पुलिस को किसी ने तो बता दिया है, तो पुलिस सबसे कांटेक्ट कर रही है, सबको नोटिस दे रही है, आप निकल नहीं सकते। कहीं तो लोकशाही को दबाने का एक ये चल रहा है, लोकशाही को दबाने का एक इरादा है उनका, वो दिख रहा है।
18: जैसा यही बात ये कह रहे हैं, दरअसल अगर आप देखें तो इस पूरे इलाके में अब छावनी में तब्दील हो चुके हैं। तकरीबन हर जगह आप देखिए, कॉलोनी से जो सिद्धार्थ कॉलोनी है उससे निकलने का यही रास्ता है, और इस रास्ते पे आप देख लीजिए पुलिस कर्मी इतने ज्यादा भारी तादाद में, और वहीं घर घर जाके नोटिसेस भी दिए गए थे, लोगों को कहा गया था कि वो निकले नहीं। इसके अलावा अगर आप देखें मुंबई में, क्योंकि जहां जहां प्रोटेस्ट हुए हैं वहां पे FIRs रजिस्टर हुई हैं, जिस तरीके से शिवाजी पार्क में भी मुंबई के दादर इलाके में जो वहां प्रोटेस्ट हुआ था उसको लेकर भी तीन FIR हुए हैं। इसके अलावा मेरीन ड्राइव पर तो तमाम जहां जहां प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहां पर FIR जरूर रजिस्टर कर रही है पुलिस, और यही वजह है कि एक के बाद एक धीरे धीरे छोटे छोटे इलाकों में ही सही लेकिन प्रोटेस्ट की आवाजें जरूर उठ रही हैं। कैमरामैन किरण सपकाल के साथ विद्या, मुंबई आज तक।
1: और इसी के साथ हम यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

राहुल गांधी ने जारी किया वीडियो संदेश, केंद्र पर साधा निशाना, बोले भारत की शिक्षा व्यवस्था हो रही है कमजोर, धर्मेंद्र प्रधान का मांगा इस्तीफा, प्रियंका समेत सभी कांग्रेस के नेता हिरासत से छोड़े गए। नई दिल्ली के मंदिर मार्ग थाने में कांग्रेस के नेताओं से जाकर मिली सोनिया गांधी, रिहाई के बाद बोली प्रियंका, बच्चों की बात क्यों नहीं सुनी जा रही। मोदी सरकार पर राहुल और प्रियंका का बड़ा हमला, लोकतंत्र के लिए बताया खतरनाक, जितेंद्र सिंह का आरोप, नेता विपक्ष ने बदली अपनी बात, धर्मेंद्र प्रधान बोले राहुल गांधी का मकसद टकराव करना, नितिन नवीन ने भी निंदा की। राहुल के धरने के बाद आम आदमी पार्टी ने इसे बताया बीजेपी से मिलीभगत, कहा यह सीजेपी के प्रदर्शन को कमजोर करने की साजिश है, आतिशी ने किया कटाक्ष, क्या जुगलबंदी है। और संसद हंगामे के बीच प्रधानमंत्री ने एनडीए मीटिंग में दिया कड़ा संदेश, कहा नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर नहीं होगा बर्दाश्त, पेपर लीक पर लिया कड़ा एक्शन।

0: संसद का मानसून सत्र शुरू होगा तो दिल्ली में इतना बड़ा सियासी भूचाल आ जाएगा, ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा। मानसून सत्र के पहले दिन कांग्रेस जनता पार्टी के जंतर मंतर से संसद चलो मार्च पर हंगामा, पुलिस से भिड़ंत और अगले दिन प्रधानमंत्री आवास के पास कांग्रेस और विपक्ष का हाई वोल्टेज हंगामा और साथ ही साथ धरना प्रदर्शन भी। पुलिस ने पहले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी नेताओं को हिरासत में लिया, बाद में सबको छोड़ दिया गया। नीट पेपर लीक पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग से शुरू हुआ ये विरोध प्रदर्शन कैसे प्रधानमंत्री आवास यानी कि सात लोक कल्याण मार्ग तक पहुंच गया, आइए आपको दिखाते हैं।
1: नीट पेपर लीक की लड़ाई पीएम आवास पर धरने तक आई। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर विपक्ष अड़ा, सड़क पर एक तूफान खड़ा। कांग्रेस का हाई वोल्टेज हंगामा, पुलिस ने धरना प्रदर्शन से हटाया। राहुल गांधी, प्रियंका और अखिलेश यादव समेत कई नेता हिरासत में। प्रधानमंत्री आवास के पास विपक्ष का हंगामा, पूरी रणनीति क्या है? दिल्ली की सत्ता के सबसे ताकतवर केंद्र यानी सात लोक कल्याण मार्ग यानी प्रधानमंत्री आवास के बुहाने पर जब देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी अपने दिग्गजों की पूरी फौज के साथ सड़क पर उतरती है तो ऐसा हंगामा मचता है कि दिल्ली से लेकर पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत कांग्रेस और विपक्ष के कई बड़े नेताओं को न सिर्फ धरने से उठाया बल्कि इन सबको हिरासत में भी ले लिया और उन्हें बस में भर कर थाने ले गई।
2: यहाँ पे जो तस्वीर 7RCR यानी कि लोक कल्याण मार्ग में घट रही है, पीछे हमारे देखिए अखिलेश यादव और राहुल गांधी को कुछ इस तरीके से बस में भर के ले जाया जा रहा है। अखिलेश यादव हाथ देने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी डिटेन कर लिया गया है। मुकुल वासनिक वहाँ पे नजर आ रहे हैं और तमाम जो नेता है वो यहाँ पे नारेबाजी लगाते हुए इस बस पे आगे जाते हुए आइए।
1: आपको बता दें कि जब राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं को प्रधानमंत्री आवास के पास धरने से उठाने के लिए पुलिस ने घेरा बनाया और राहुल गांधी को हटाने की कोशिश की तो वो जमीन पर लेट जाते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे राहुल गांधी सड़क पर लेटे हुए हैं और पुलिस के साथ उनकी काफी देर तक जोर आजमाइश चलती रहती है। आखिर में पुलिस धरने पर बैठे नेताओं को उठाकर ले जाती है।
3: डेमोक्रेसी इन इंडिया इज हैपनिंग राइट नाउ। डेमोक्रेसी इन इंडिया इज हैपनिंग राइट नाउ।
4: हम नहीं डरते इनसे, ये हमसे
1: आपको बता दें कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव को दिल्ली पुलिस हिरासत में लेकर अलग अलग थानों में जाती है। इस बीच दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर की सुरक्षा भी बढ़ा दी जाती है, हर गेट पर पुलिस की भारी तैनाती कर दी जाती है।
5: गुंडई और राजनीति गुंडागर्दी की उसका अंत यहाँ नहीं है, ये एक नई क्रांति की शुरुआत है राहुल गांधी के नेतृत्व में। ये क्रांति अब बड़ी ज्वाला बनकर धधकेगी।
6: आज फिर से दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्री के इशारे पर, प्रधानमंत्री के इशारे पर बहुत ही कायरता पूर्वक तरीके से हमारे नेता राहुल गांधी को घसीटकर हिरासत में लिया, हमारी नेता प्रियंका गांधी को बदतमीजी कर और घसीटकर बस में जबरदस्ती ठूसा।
1: हिरासत में लेने के बाद राहुल गांधी का पहला एक्स पोस्ट आता है जिसमें वो लिखते हैं कि मोदी जी हर जोर आजमा लो, सारी ताकत लगा लो, छात्रों के इंसाफ की ये लड़ाई अब रोके ना रुकेगी। पीएम आवास के पास दोपहर करीब 3:30 बजे से शुरू हुआ धरना प्रदर्शन शाम 6 बजे तक एक बड़े सियासी हंगामे में तब्दील हो जाता है। अब उसकी पूरी टाइमलाइन आपको दिखाते हैं। दोपहर करीब 3:30 बजे पीएम आवास के पास कांग्रेस का धरना, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी बाकी सांसदों नेताओं के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर से बैठक करके अचानक मार्च करते हुए निकल पड़ते हैं और सात लोक कल्याण मार्ग पर यानी प्रधानमंत्री के आवास वाली सड़क पर पीएम आवास से कुछ दूरी पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत बाकी कांग्रेस के दिग्गज नेता धरने पर बैठ जाते हैं। राहुल गांधी जब धरना देते हैं तो वहां पर देखा गया कि वो सांकेतिक रूप से हथकड़ी वाला प्रदर्शन करते हैं, जहां राहुल गांधी समेत दूसरे कांग्रेस नेता हाथ में लॉक लगाने वाला थ्रेड बांध लेते हैं। अब राजनीतिक सवाल ये आता है कि अचानक पीएम आवास के पास पहुंचकर राहुल गांधी धरना क्यों देते हैं, उनकी मांग क्या है?
7: हमारे नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में ने इस मांग की है, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में ये मांग की है। गृहमंत्री आए, दोनों सदनों में बयान दे, उस पर चर्चा हो। जिस तरीके से हमारे लोकतंत्र और हमारे संविधान पर हत्या हो रही है, जो हमारे युवाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उनके भविष्य पर अंधेरा छाया हुआ है, उस पर एक बयान दे। और हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग हम 20 करीब 45 दिन से कर।
1: लेकिन जब पीएम आवास के पास ही राहुल गांधी धरना देने लगते हैं, तो इन सब के बीच दोपहर 3:45 पर राहुल गांधी को धरने से हटाने की अपील। अचानक दिल्ली पुलिस वहां पहुंचती है और राहुल गांधी से धरने से हटने के लिए कहा जाता है, लेकिन वो इनकार कर देते हैं। सरकार की तरफ से जितेंद्र सिंह भी राहुल गांधी से बातचीत करने के लिए पहुंचते हैं और फिर कांग्रेस के नेताओं को पुलिस हिरासत में लेकर पीएम आवास के पास वाले धरने से हटाना शुरू कर देती है। शाम 4 बजे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह राहुल गांधी से बात करने पहुंचते हैं। जी हां, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह खुद राहुल गांधी से बात करने पहुंच जाते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को लौटना पड़ता है। वो कुछ बोलते नहीं है। पता ये चलता है कि राहुल गांधी ने धरने से हटने से मना कर दिया है।
8: छात्रों को, युवाओं को न्याय नहीं मिल जाता, कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता, हम लोग यहाँ से नहीं हिलने वाले। दिन हो या रात, नरेंद्र मोदी के बाहर आना पड़ेगा। पूरी कांग्रेस पार्टी जो जहाँ है, यहाँ आए और धरने पर बैठ जाए। नहीं हिलेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा।
1: शाम 5:18 राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। राहुल गांधी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं और लिखते हैं कि छात्रों पर हमला हर भारतीय परिवार पर हमला है। प्रधानमंत्री मोदी को लगता है कि वो बिना जवाब दिए, बिना किसी नतीजे का सामना किए बच निकलेंगे, नहीं कर पाएंगे, इस बार तो बिल्कुल नहीं। इसके बाद राहुल गांधी ने इस पोस्ट में अपील कर दी कि जो भी मानता है कि छात्रों को न्याय मिलना चाहिए, वो पीएम आवास के सामने धरने में शामिल हो। कांग्रेस के इस धरने में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल हो जाते हैं। उनके साथ विपक्ष के कई और नेता भी इस धरना प्रदर्शन में जुड़ते हैं। आज तक ब्यूरो।
0: हंगामा लगातार जारी है और आपको बता दें कि दोनों ही तरफ से लगातार बयान भी जारी किए जा रहे हैं। राहुल गांधी की तरफ से भी छात्रों के इस आंदोलन पर एक बयान जारी किया गया है। छात्रों के इस मुद्दे को देश के सामने लाने की कोशिश की है, ये राहुल गांधी ने कहा है। और क्या कहा है नेता विपक्ष ने, सुनिए।
9: दूसरा कि स्टूडेंट्स को जिन्होंने मारा है, जिन्होंने ह्यूमिलिएट किया है, उन पर एक्शन लिया जाए और जो भी स्टूडेंट्स पर केसेस हैं उनको हटाया जाए। फाइनली पूरी ऑपोजिशन चाहती है कि ये जो इशू है, देश का सबसे बड़ा इशू है, इस पे कल लोकसभा में, राज्यसभा में डिबेट हो और हम अपनी बात रख सकें। मेरा मोदी जी से एक सजेशन है, एज एलओपी, कल जो हुआ, जो आपकी सरकार ने, आपके होम मिनिस्टर ने किया, उसके लिए आप देश के स्टूडेंट से माफी मांगिए और जल्दी से जल्दी एग्जामिनेशन सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम्स पर रिफॉर्म शुरू कीजिए। आप सब ने हमारा समर्थन किया, सारे लोग जो स्टूडेंट्स की इशू के लिए लड़ रहे हैं, एक साथ लड़ रहे हैं, मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ।
10: This morning I went and met the speaker of the Lok Sabha. And I said to him that
0: तो आपने नेता विपक्ष के नाते उन्होंने तमाम बातें कही. उन्होंने कहा भारत की शिक्षा व्यवस्था कमजोर हो रही है, जिस पर काम करने की जरूरत है. धर्मेंद्र प्रधान का राहुल गांधी ने इस्तीफा मांगा है सीधे सीधे. उन्होंने कहा कि माफी मांगनी चाहिए सरकार को जिस तरीके से छात्रों के साथ व्यवहार किया गया है. और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बहुत जरूरी है कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसमें सुधार होना चाहिए, परीक्षा सिस्टम सुधरना चाहिए. एक बार फिर से आपको सुनाते हैं कि क्या कहा गया है राहुल गांधी की तरफ से.
10: और जो स्टूडेंट्स की इशू है, जो देश के लिए सबसे जरूरी इशू है और जो उनके खिलाफ किया गया है वो हम देखते चलो. दीजला धर्मेंद्र प्रधान दूसरा की एब्सोल्युटली नथिंग रॉन्ग विद आस्किंग दीज क्वेश्चंस. स्टूडेंट्स की मांगे हैं, पहला धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह का रेजिग्नेशन, दूसरा की स्टूडेंट्स को जिन्होंने मारा है, जिन्होंने ह्यूमिलिएट किया है उन पर एक्शन लिया जाए और जो भी स्टूडेंट्स पर केसेस हैं उनको हटाया जाए. फाइनली पूरी ऑपोजिशन चाहती है कि ये जो इशू है, देश का सबसे बड़ा इशू है, इस पे कल लोकसभा में राज्यसभा में डिबेट हो और हम अपनी बात रख सकें. मेरा मोदी जी से एक सजेशन है, एज एलओपी कल जो हुआ, जो आपकी सरकार ने, आपके होम मिनिस्टर ने किया, उसके लिए आप देश के स्टूडेंट से माफी मांगिए और जल्दी से जल्दी एग्जामिनेशन सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम्स पर रिफॉर्म शुरू कीजिए. आप सब ने हमारा समर्थन किया, सारे लोग जो स्टूडेंट्स की इशू के लिए लड़ रहे हैं, एक साथ लड़ रहे हैं, मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं.
0: तो जबरदस्त संसद के बाहर हंगामा और गहमा गहमी पूरे दिन चली. और आपको बता दें कि उसके बाद कांग्रेस के बड़े लीडर्स को, विपक्ष के बड़े लीडर्स को कहना चाहिए कि हिरासत में ले लिया गया था, उसके बाद उनकी रिहाई की गई. रिहाई के बाद प्रियंका गांधी ने क्या कहा सुनिए.
11: जो हमारे बच्चे, हमारे युवा हैं, हमारे देश के भविष्य हैं, उनकी बात सुनने में क्या हर्ज थी. वो एक जेन्युइन इशू को लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं. वो जो उनके साथ हो रहा है वो उसका दुख लेकर, गुस्सा लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं. तो जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम सारे, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी आवाज हम ऊंची करें और उनकी आवाज हम बुलंद करें और उनके सपोर्ट में हम खड़े हैं, क्योंकि उनके साथ जो कल हुआ वो एकदम गलत हुआ. ये एक लोकतंत्र है, इट्स अ डेमोक्रेसी. इन अ डेमोक्रेसी राइट टू प्रोटेस्ट इट्स अ फंडामेंटल राइट. नोबडी हैज द राइट टू प्रोटेस्ट.
0: और अब बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री आवास के पास से धरना प्रदर्शन हटवाने के लिए और बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और गृह सचिव गोविंद मोहन राहुल गांधी से मिलने जाते हैं और फिर बात नहीं बनती. जितेंद्र सिंह ने बताया कि राहुल गांधी की मांग थी कि नीट पर संसद में चर्चा हो. राहुल गांधी की यह मांग मान ली गई थी, लेकिन राहुल अपनी बात से मुकर गए. और उसके बाद राहुल गांधी बोले कि अब उनकी दो मांगे हैं, पहली नीट पर संसद में चर्चा होनी चाहिए, दूसरा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए. सरकार कह रही है कि जब छात्रों के हर मुद्दे पर संसद में वो चर्चा के लिए तैयार हैं तो फिर कांग्रेस मुकर क्यों रही है.
12: प्रधानमंत्री आवास के पास लोक कल्याण मार्ग पर दोपहर 4:15 शुरू हुए कांग्रेस के धरने में प्रियंका गांधी नारे लगवाती हैं. तो इस बीच इस सवाल का जवाब सब जानना चाहते हैं कि आखिर सरकार ने तुरंत जब केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को राहुल गांधी से बात करने भेजा तो राहुल क्यों नहीं माने. यहाँ पर आखिर क्या बात हुई. जवाब जो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दिया है उसे उनकी सोशल मीडिया पोस्ट से देखिए. जितेंद्र सिंह ने लिखा कि कुछ समय पहले पता चला कि कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अचानक अकबर रोड के पास एक जगह पर धरने पर बैठ गए. जितेंद्र सिंह लिखते हैं कि सरकार ने उन्हें और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन को राहुल गांधी से बात करने के लिए भेजा. जितेंद्र सिंह ने राहुल गांधी से अनुरोध किया कि वो अपना धरना खत्म कर दें क्योंकि ये जगह धरने की नहीं है, यहाँ पर धरना देने से आम लोगों को काफी मुश्किल होगी. राहुल गांधी ने ये मांग रखी थी कि अगर सरकार संसद में नीट और उससे संबंधित आंदोलन के साथ जुड़े सभी विषय पर चर्चा के लिए मान जाती है तो वो अपना धरना तुरंत खत्म कर देंगे. कुछ ही देरी में सरकार के शीर्ष नेतृत्व की अनुमति लेने के बाद राहुल गांधी को ये भरोसा जितेंद्र सिंह की तरफ से दिया गया कि उनकी मांग को मान लिया गया है और सरकार नीट और उससे संबंधित आंदोलन के साथ जुड़े सभी विषय पर संसद में चर्चा करने को तैयार है। जितेंद्र सिंह के मुताबिक राहुल गांधी को जब ये सूचना पहुंचाई गई, तो उन्होंने कहा कि वो इतने पर नहीं मानेंगे बल्कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का भी भरोसा चाहा। राहुल गांधी ने कहा कि अब उनकी दो मांगे हैं, संसद में चर्चा और केंद्रीय शिक्षा मंत्री यानी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के मुताबिक जब राहुल गांधी को याद दिलाया गया कि पहले उन्होंने केवल चर्चा की ही मांग की थी, तब राहुल गांधी ने कहा कि अब उनकी मांगें बदल गईं। जब राहुल गांधी को विनम्रता से ये बताने की कोशिश की गई कि उनके जैसे सीनियर लीडर को इतनी जल्दी अपनी बात से मुकर जाना शोभा नहीं देता, तो जितेंद्र सिंह लिखते हैं कि राहुल गांधी ने कहा कि ये उनकी मर्जी है। जब गृह सचिव ने राहुल गांधी को ये समझाने की कोशिश की कि ये जगह धरने के लिए अनुकूल नहीं, तो जितेंद्र सिंह के मुताबिक राहुल गांधी ने जवाब दिया कि ये भी उनकी मर्जी है, वो जहां बैठे। इसके बाद जितेंद्र सिंह ने लिखा है कि राहुल गांधी जैसे सीनियर नेता और नेता प्रतिपक्ष का अपनी बात से मुकर जाना दुर्भाग्यपूर्ण है और लोकतंत्र की हर मर्यादा के विपरीत है। जितेंद्र सिंह साफ कहते हैं कि सरकार नीट और उससे जुड़े आंदोलन के साथ सभी विषयों पर संसद में चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन इसके विपरीत कांग्रेस ने अब तक इस गंभीर विषय पर औपचारिक चर्चा करने का कोई नोटिस नहीं दिया। जितेंद्र सिंह लिखते हैं कि राहुल गांधी का व्यवहार लोकतंत्र के उसूलों से मेल नहीं खाता है।
13: सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, सरकार तैयार है संसद में चर्चा करने के लिए, नीट को लेकर के भी, उसके साथ संबंधित विषयों को लेकर के भी, जो आंदोलन है उसको लेकर के भी। हमने जब ये बात वहीं पर राहुल गांधी जी के आगे दोबारा रखी तो बोले कि साहब मुझे तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी चाहिए। तो हमने कहा साहब अभी कुछ ही क्षण पहले आपसे बार बार जब पूछा गया कि आपका क्या मुतालबा है, तो आपने ये कहा था कि अगर मुझे ये आश्वासन दिया जाए कि संसद में कांग्रेस पार्टी को भारत सरकार चर्चा करने देगी या करने के लिए तैयार है, तो मैं तुरंत ये धरना समाप्त कर दूंगा। लेकिन अब आप अपनी बात से हट रहे हैं। तो बोले साहब ये तो मेरी मर्जी है, मेरी मांगे बदल चुकी हैं।
14: अब ये मुद्दा इतना ज्वलंत इसलिए है क्योंकि देश के युवा हैं और ये समझ रहे हैं कि हमारे फ्यूचर, हमारे भविष्य के लिए क्या है। हमारे माँ बाप लोन लेकर मुश्किल से हमें पढ़ाते हैं, हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारे लिए इतना मुश्किल है, इसको हल्के में कोई नहीं ले सकता। ये एक बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है। आज युवा बहुत ही दुखी है। एक्चुअली ये जो आप नाराजगी देख रहे हैं, एक्चुअली दुख है कि हमारे फ्यूचर, हमारे भविष्य के बारे में कौन सोच रहा है। ये सदन है किसका? ये उन्हीं युवाओं का है ना जिसको आप रोक रहे हैं बाहर, जिन पर आप लाठी चार्ज कर रहे हैं, जिन पर आप आंसू गैस चला रहे हैं। ये तो मतलब ये सदन ही उनका है। हम सब यहाँ हैं, किसने हमें यहाँ रखा है? उन्होंने ये रखा तो उनकी बात तो सुन ले।
15: मोदी एंटी यूथ,
14: बिल्कुल एंटी यूथ है। देखिए एंटी यूथ है, एंटी गरीब है, एंटी किसान है, बच्चे हैं, सुन लीजिए इनकी बात, क्या होने जा रहा है। अगर इनकी बात शांति से सुन लें, आप मंत्री जी की जिम्मेदारी है, उनसे रिजाइन करवाइए, इस्तीफा दीजिए, जिम्मेदारी लीजिए, और सबसे जरूरी यह है कि सिस्टम को दुरुस्त करिए।
16: आप इन विषयों पे जब भी डिस्कशन होता है आप मुंह की खाते हैं, लास्ट में आप जवाब सुन भी नहीं पाते हैं। मैं अभी भी बोलूंगा, ये नकारात्मक जो सोच है विपक्ष का उसको छोड़ना चाहिए। आपने कर लिया ना जो एक दो दिन है, लेकिन कल से सदन को चलने दिया जाए, सभी जो मुद्दे हैं उन पे बात करिए। कोई ऐसा विषय नहीं है जिस पे संसद में बहस न हो सके, लेकिन इन लोगों को एक आदत लग गई है कि संसद के विषय को सड़क पे ले जाएंगे।
12: सरकार ने 3 घंटे के धरने में राहुल गांधी से 2 बार बातचीत की, लेकिन वो नहीं माने, तो पुलिस ने उन्हें धरना प्रदर्शन से उठाना शुरू कर दिया। कांग्रेस नेताओं और पुलिस के बीच आधे घंटे तक धक्का मुक्की होती रही। आखिर में 12 से ज्यादा पुलिसकर्मी उन्हें उठा कर ले गए।
0: 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज के खिलाफ चेंबूर में गुस्सा फूटा। छात्रों ने लाठीचार्ज के विरोध में प्रोटेस्ट किया। पेपर लीक केस में प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा कि सरकार इस आंदोलन को जितना दबाने की कोशिश करेगी उतना ही आंदोलन उग्र होगा।
17: Yeah.
15: पेपर लीक केस के बाद पूरे देश में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र के कई शहरों में भी छात्रों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। चेंबूर में भी छात्रों ने 20 जुलाई को जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज के विरोध में प्रोटेस्ट किया, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया।
17: दिल्ली में जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हुआ और उस पर लाठीचार्ज और आंसू गैस फेयर डाले गए, उसके विरोध में अब मुंबई के चेंबूर इलाके में प्रोटेस्ट हो रहा है। और आप देख लीजिए, काफी सारे प्रोटेस्टर्स यहां पे आए थे, लेकिन जितने प्रोटेस्टर्स हैं उससे ज्यादा तादाद में यहां पुलिस के अधिकारी हैं। यहां पे आप देख लीजिए, पुलिसकर्मी इतने ज्यादा हैं, और बताया यही जा रहा है कि जितने प्रोटेस्टर्स थे उनको भी नोटिसेस दी गई। आप लोगों को भी नोटिसेस मिले?
18: हम लोग को भी नोटिसेस मिले।
17: क्या कितने लोगों को दिया गया है, कितने लोगों की कोई उन लोगों को हाँ कोई रेस्ट्रिक्ट किया गया उनका मूवमेंट?
18: नहीं, 20-25 से ज्यादा लोगों को नोटिस दिया गया है और 100 से ज्यादा लोगों को फोन कॉल्स आया है कि कल अगर आप प्रोटेस्ट में इन्वॉल्वमेंट हुए तो आपको केसेस हो सकता है। okay. इसकी वजह और काफी सारे गली के बाहर, घर के बाहर पुलिस जिनको बाहर आने नहीं दे रहे।
17: आप लोग को भी कहीं मोर्चा आप लोग निकालना चाह रहे थे, आप लोग को भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया?
18: हम लोग अभी चेंबूर नाके पे प्रोटेस्ट निकालने चाहते थे, बट हम लोग के एरिया के स्टार्टिंग पॉइंट पे पुलिस, मतलब जितने ज्यादा आंदोलन करते थे उससे 3 गुना ज्यादा तो पुलिस है यहाँ पे, और वो लोग बोल रहे कि यहाँ से आप बाहर निकल नहीं सकते। बट हम लोग तो मतलब किसी भी तरह का तीव्र आंदोलन, मतलब कोई तोड़फोड़ करने वाले नहीं थे, हम लोग शांति से आंदोलन करने वाले थे। बट जो चेंबूर के जो सीनियर्स है और बाकी भी सीनियर्स लोग है, वो लोग हम लोग को आगे जाने नहीं दे रहे।
17: तो पुलिस अधिकारियों ने आप लोगों के मूवमेंट को पूरा रेस्ट्रिक्ट कर दिया, लेकिन अब ये विरोध प्रदर्शन किस लिए कर रहे हैं?
18: जनरली विरोध प्रदर्शन इसलिए है कि कल तक हमारा रात में 8 बजे तक कोई ऐसा प्लानिंग नहीं था कि निदर्शन करना है, कोई आंदोलन करना है। बट जो हिसाब से कल हम लोग ने जो दिल्ली जंतर मंतर में जो आंदोलन देखा, जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ, काफी गलत है।
15: मुंबई पुलिस ने लोगों को प्रदर्शन न करने के लिए कई नोटिस भी दिए हैं। पुलिस ने कहा है कि प्रदर्शनकारी सिर्फ एक झुग्गी बस्ती के अंदर ही प्रदर्शन कर सकते हैं।
19: छोटे छोटे बच्चों जब आंदोलन करते हैं तो ये सरकार उनको मारती है, भगाती है, लाठी अलग करती है, तो ये देश में लोकशाही है कि नहीं? और बच्चे क्या मांग रहे हैं? जिसने जो भवितव्य जो भविष्य करने का जो एग्जाम है वो पेपर लीक किया, और पेपर मतलब ऐसा ये कितने साल से चल रहा है, तो हमारा भाई कुछ भवितव्य है कि नहीं?
17: आप लोग भी प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे, कितने कार्यकर्ताओं को यहाँ पे, कितने लोगों को यहाँ पे रोका गया है?
19: हमारे सब कार्यकर्ताओं को रोका गया है, नोटिस दिया है, वो बोला कि आंदोलन करने का नहीं। हम बोले कि लोकशाही मार्ग से हम आंदोलन कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, जमाबंदी आदेश लागू किया है तो आप आंदोलन नहीं कर सकते, ऐसा हम लोग को बोला है। फिर भी हम लोग उधर जाने की कोशिश करेंगे।
15: पेपर लीक केस में प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा कि सरकार इस आंदोलन को जितना दबाने की कोशिश करेगी, आंदोलन उतना ही उग्र होगा।
20: हाँ, नाराजगी तो है, जो हुआ है वो जो हमारे जो शिक्षण जो मंत्री है उन्होंने तो राजीनामा देना चाहिए, और जो लाठीचार्ज हुआ है उसके वजह से हमारी नाराजगी है। जो आप स्टूडेंट लोगों को मार रहे हो वो गलत है, वो क्रिमिनल नहीं है, वो स्टूडेंट्स है, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनको उनका हक है प्रोटेस्ट करने का, इसके लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उन्हें मारना नहीं चाहिए, ये गलत है।
17: लेकिन आप लोग भी तो यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और पुलिस वालों ने किस तरह से आप लोग?
20: हमारा कल से चालू है कि प्रोटेस्ट करना है, 2 दिन से हमारे लोग बाहर निकल रहे हैं, रात को पुलिस को किसी ने तो बता दिया है, तो पुलिस सबसे कांटेक्ट कर रही है, सबको नोटिस दे रही है, आप निकल नहीं सकते। कहीं तो लोकशाही को दबाने का एक ये चल रहा है, लोकशाही को दबाने का एक इरादा है उनका, वो दिख रहा है।
17: जैसा यही बात ये कह रहे हैं, दरअसल अगर आप देखें तो इस पूरे इलाके में अब छावनी में तब्दील हो चुकी है। तकरीबन हर जगह आप देखिए, कॉलोनी से जो सिद्धार्थ कॉलोनी है उससे निकलने का यही रास्ता है, और इस रास्ते पे आप देख लीजिए पुलिस कर्मी इतने ज्यादा भारी तादाद में, और वहीं घर घर जाके नोटिसेस भी दिए गए थे, लोगों को कहा गया था कि वो निकले नहीं। इसके अलावा अगर आप देखें मुंबई में, क्योंकि जहां जहां प्रोटेस्ट हुए हैं वहां पे FIRs रजिस्टर हुई हैं, जिस तरीके से शिवाजी पार्क में भी मुंबई के दादर इलाके में जो वहां प्रोटेस्ट हुआ था उसको लेकर भी तीन FIR हुए हैं। इसके अलावा मरीन ड्राइव पर तो तमाम जहां जहां प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहां पर FIR जरूर रजिस्टर कर रही है पुलिस, और यही वजह है कि एक के बाद एक धीरे धीरे छोटे छोटे इलाकों में ही सही लेकिन प्रोटेस्ट की आवाजें जरूर उठ रही हैं। कैमरामैन किरण सपकाल के साथ विद्या, मुंबई आज तक।
0: और इसी के साथ हम यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

राहुल गांधी ने जारी किया वीडियो संदेश, केंद्र पर साधा निशाना, बोले भारत की शिक्षा व्यवस्था हो रही है कमजोर। धर्मेंद्र प्रधान का मांगा इस्तीफा, प्रियंका समेत सभी कांग्रेस के नेता हिरासत से छोड़े गए। नई दिल्ली के मंदिर मार्ग थाने में कांग्रेस के नेताओं से जाकर मिली सोनिया गांधी, रिहाई के बाद बोली प्रियंका, बच्चों की बात क्यों नहीं सुनी जा रही। मोदी सरकार पर राहुल और प्रियंका का बड़ा हमला, लोकतंत्र के लिए बताया खतरनाक, जितेंद्र सिंह का आरोप, नेता विपक्ष ने बदली अपनी बात, धर्मेंद्र प्रधान बोले राहुल गांधी का मकसद टकराव करना, नितिन नवीन ने भी निंदा की। राहुल के धरने के बाद आम आदमी पार्टी ने इसे बताया बीजेपी से मिलीभगत, कहा यह सीजेपी के प्रदर्शन को कमजोर करने की साजिश है। आतिशी ने किया कटाक्ष, क्या जुगलबंदी है। और संसद हंगामे के बीच प्रधानमंत्री ने एनडीए मीटिंग में दिया कड़ा संदेश, कहा नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर नहीं होगा बर्दाश्त, पेपर लीक पर लिया कड़ा एक्शन।

0: संसद का मॉनसून सत्र शुरू होगा तो दिल्ली में इतना बड़ा सियासी भूचाल आ जाएगा, ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा। मॉनसून सत्र के पहले दिन कांग्रेस जनता पार्टी के जंतर मंतर से संसद चलो मार्च पर हंगामा, पुलिस से भिड़ंत, और अगले दिन प्रधानमंत्री आवास के पास कांग्रेस और विपक्ष का हाई वोल्टेज हंगामा और साथ ही साथ धरना प्रदर्शन भी। पुलिस ने पहले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी नेताओं को हिरासत में लिया, बाद में सबको छोड़ दिया गया। नीट पेपर लीक पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग से शुरू हुआ ये विरोध प्रदर्शन कैसे प्रधानमंत्री आवास यानी कि सात लोक कल्याण मार्ग तक पहुंच गया, आइए आपको दिखाते हैं।
1: नीट पेपर लीक की लड़ाई पीएम आवास पर धरने तक आई। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर विपक्ष अड़ा, सड़क पर एक तूफान खड़ा। कांग्रेस का हाई वोल्टेज हंगामा पुलिस ने धरना प्रदर्शन से हटाया। राहुल गांधी, प्रियंका और अखिलेश यादव समेत कई नेता हिरासत में। प्रधानमंत्री आवास के पास विपक्ष का हंगामा, पूरी रणनीति क्या है? दिल्ली की सत्ता के सबसे ताकतवर केंद्र यानी सात लोक कल्याण मार्ग यानी प्रधानमंत्री आवास के बहाने पर जब देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी अपने दिग्गजों की पूरी फौज के साथ सड़क पर उतरती है तो ऐसा हंगामा मचता है कि दिल्ली से लेकर पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत कांग्रेस और विपक्ष के कई बड़े नेताओं को न सिर्फ धरने से उठाया बल्कि इन सबको हिरासत में भी ले लिया और उन्हें बस में भर कर थाने ले गई।
2: यहाँ पे जो तस्वीर 7RCR यानी कि लोक कल्याण मार्ग में घट रही है, पीछे हमारे देखिए अखिलेश यादव और राहुल गांधी को कुछ इस तरीके से बस में भर के ले जाया जा रहा है। अखिलेश यादव हाथ देने की कोशिश कर

0: उनको भी डिटेन कर लिया गया है। मुकुल वासनिक वहाँ पे नजर आ रहे हैं और तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पे नारेबाजी लगाते हुए इस बस पे आगे जाते हुए आइए।
1: आपको बता दें कि जब राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं को प्रधानमंत्री आवास के पास धरने से उठाने के लिए पुलिस ने घेरा बनाया और राहुल गांधी को हटाने की कोशिश की तो वो जमीन पर लेट जाते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे राहुल गांधी सड़क पर लेटे हुए हैं और पुलिस के साथ उनकी काफी देर तक जोर आजमाइश चलती रहती है। आखिर में पुलिस धरने पर बैठे नेताओं को उठाकर ले जाती है।
2: डेमोक्रेसी इन इंडिया इज हैपनिंग राइट नाउ। डेमोक्रेसी इन इंडिया इज हैपनिंग राइट नाउ।
3: कायर हैं, डरते हैं,
4: बात कर रही है, बात कर रही है।
3: हम नहीं डरते इनसे, ये हमसे डरो यार।
4: अरे बात कर रही है वो यार।
1: आपको बता दें कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव को दिल्ली पुलिस हिरासत में लेकर अलग अलग थानों में जाती है। इस बीच दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर की सुरक्षा भी बढ़ा दी जाती है। हर गेट पर पुलिस की भारी तैनाती कर दी जाती है।
5: गुंडई और राजनीति गुंडागर्दी की उसका अंत यहाँ नहीं है। ये एक नई क्रांति की शुरुआत है राहुल गांधी के नेतृत्व में। ये क्रांति अब बड़ी ज्वाला बनकर धधकेगी।
6: आज फिर से दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्री के इशारे पर, प्रधानमंत्री के इशारे पर बहुत ही कायरता पूर्वक तरीके से हमारे नेता राहुल गांधी को घसीटकर हिरासत में लिया। हमारी नेता प्रियंका गांधी को बदतमीजी कर और घसीटकर बस में जबरदस्ती ठूसा।
1: हिरासत में लेने के बाद राहुल गांधी का पहला एक्स पोस्ट आता है जिसमें वो लिखते हैं कि मोदी जी हर जोर आजमा लो, सारी ताकत लगा लो, छात्रों के इंसाफ की ये लड़ाई अब रोके ना रुकेगी। पीएम आवास के पास दोपहर करीब 3:30 बजे से शुरू हुआ धरना प्रदर्शन शाम 6 बजे तक एक बड़े सियासी हंगामे में तब्दील हो जाता है। अब उसकी पूरी टाइमलाइन आपको दिखाते हैं। दोपहर करीब 3:30 बजे पीएम आवास के पास कांग्रेस का धरना। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, बाकी सांसदों, नेताओं के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर से बैठक करके अचानक मार्च करते हुए निकल पड़ते हैं और साथ लोक कल्याण मार्ग पर यानी प्रधानमंत्री के आवास वाली सड़क पर पीएम आवास से कुछ दूरी पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत बाकी कांग्रेस के दिग्गज नेता धरने पर बैठ जाते हैं। राहुल गांधी जब धरना देते हैं तो वहां पर देखा गया कि वो सांकेतिक रूप से हथकड़ी वाला प्रदर्शन करते हैं जहां राहुल गांधी समेत दूसरे कांग्रेस नेता हाथ में लॉक लगाने वाला थ्रेड बांध लेते हैं। अब राजनीतिक सवाल ये आता है कि अचानक पीएम आवास के पास पहुंचकर राहुल गांधी धरना क्यों देते हैं, उनकी मांग क्या है?
7: हमारे नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में ने इस मांग की है, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में ये मांग की है। गृह मंत्री आए, दोनों सदनों में बयान दे, उस पर चर्चा हो। जिस तरीके से हमारे लोकतंत्र और हमारे संविधान पर हत्या हो रही है, जो हमारे युवाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उनके भविष्य पर अंधेरा छाया हुआ है, उस पर एक बयान दे। और हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग हम 20 करीब 45 दिन से कर।
1: लेकिन जब पीएम आवास के पास ही राहुल गांधी धरना देने लगते हैं तो इन सब के बीच दोपहर 3:45 पर राहुल गांधी को धरने से हटाने की अपील। अचानक दिल्ली पुलिस वहां पहुंचती है और राहुल गांधी से धरने से हटने के लिए कहा जाता है लेकिन वो इनकार कर देते हैं। सरकार की तरफ से जितेंद्र सिंह भी राहुल गांधी से बातचीत करने के लिए पहुंचते हैं और फिर कांग्रेस के नेताओं को पुलिस हिरासत में लेकर पीएम आवास के पास वाले धरने से हटाना शुरू कर देती है। शाम 4 बजे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह राहुल गांधी से बात करने पहुंचते हैं। जी हां, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह खुद राहुल गांधी से बात करने पहुंच जाते हैं लेकिन कुछ ही देर बाद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को लौटना पड़ता है। वो कुछ बोलते नहीं हैं। पता ये चलता है कि राहुल गांधी ने धरने से हटने से मना कर दिया है।
6: जब तक छात्रों को, युवाओं को न्याय नहीं मिल जाता, कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता, हम लोग यहाँ से नहीं हिलने वाले। दिन हो या रात, नरेंद्र मोदी को बाहर आना पड़ेगा। पूरी कांग्रेस पार्टी जो जहाँ है यहाँ आए और धरने पर बैठ जाए, नहीं हिलेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा।
1: शाम 5:18 राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, राहुल गांधी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं और लिखते हैं कि छात्रों पर हमला हर भारतीय परिवार पर हमला है। प्रधानमंत्री मोदी को लगता है कि वो बिना जवाब दिए, बिना किसी नतीजे का सामना किए बच निकलेंगे, नहीं कर पाएंगे। इस बात तो बिल्कुल नहीं। इसके बाद राहुल गांधी ने इस पोस्ट में अपील कर दी कि जो भी मानता है कि छात्रों को न्याय मिलना चाहिए वो पीएम आवास के सामने धरने में शामिल हो। कांग्रेस के इस धरने में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल हो जाते हैं। उनके साथ विपक्ष के कई और नेता भी इस धरना प्रदर्शन में जुड़ते हैं। आज तक ब्यूरो।
8: हंगामा लगातार जारी है और आपको बता दें कि दोनों ही तरफ से लगातार बयान भी जारी किए जा रहे हैं। राहुल गांधी की तरफ से भी छात्रों के इस आंदोलन पर एक बयान जारी किया गया है। छात्रों के इस मुद्दे को देश के सामने लाने की कोशिश की है, ये राहुल गांधी ने कहा है। और क्या कहा है नेता विपक्ष ने, सुनिए।
9: दूसरा कि स्टूडेंट्स को जिन्होंने मारा है, जिन्होंने ह्यूमिलिएट किया है, उन पर एक्शन लिया जाए और जो भी स्टूडेंट्स पर केसेस हैं उनको हटाया जाए। फाइनली पूरी ऑपोजिशन चाहती है कि ये जो इशू है, देश का सबसे बड़ा इशू है, इस पे कल लोकसभा में राज्यसभा में डिबेट हो और हम अपनी बात रख सकें। मेरा मोदी जी से एक सजेशन है, एज एलओपी कल जो हुआ, जो आपकी सरकार ने, आपके होम मिनिस्टर ने किया, उसके लिए आप देश के स्टूडेंट से माफी मांगिए और जल्दी से जल्दी एग्जामिनेशन सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम्स पर रिफॉर्म शुरू कीजिए। आप सब ने हमारा समर्थन किया, सारे लोग जो स्टूडेंट्स की इशू के लिए लड़ रहे हैं, एक साथ लड़ रहे हैं, मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ। This morning I went and met the speaker of the Lok Sabha and I said to him that it
8: was... आपने नेता विपक्ष के नाते उन्होंने तमाम बातें कही। उन्होंने कहा भारत की शिक्षा व्यवस्था कमजोर हो रही है, जिस पर काम करने की जरूरत है। धर्मेंद्र प्रधान का राहुल गांधी ने इस्तीफा मांगा है सीधे सीधे। उन्होंने कहा कि माफी मांगनी चाहिए सरकार को जिस तरीके से छात्रों के साथ व्यवहार किया गया है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बहुत जरूरी है कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसमें सुधार होना चाहिए, परीक्षा सिस्टम सुधरना चाहिए। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं कि क्या कहा गया है राहुल गांधी की तरफ से।
9: और जो स्टूडेंट्स की इशू है, जो देश के लिए सबसे जरूरी इशू है और जो उनके खिलाफ किया गया है, वो हम चलो डीजल धर्मेंद्र प्रधान। दूसरा की Absolutely nothing wrong with asking these questions. Students की मांगे हैं, पहला धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह का रेजिग्नेशन, दूसरा की स्टूडेंट्स को जिन्होंने मारा है, जिन्होंने ह्यूमिलिएट किया है, उन पर एक्शन लिया जाए और जो भी स्टूडेंट्स पर केसेस हैं उनको हटाया जाए। फाइनली पूरी ऑपोजिशन चाहती है कि ये जो इशू है, देश का सबसे बड़ा इशू है, इस पे कल लोकसभा में राज्यसभा में डिबेट हो और हम अपनी बात रख सकें। मेरा मोदी जी से एक सजेशन है, एज एलओपी कल जो हुआ, जो आपकी सरकार ने, आपके होम मिनिस्टर ने किया, उसके लिए आप देश के स्टूडेंट से माफी मांगिए और जल्दी से जल्दी एग्जामिनेशन सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम्स पर रिफॉर्म शुरू कीजिए। आप सब ने हमारा समर्थन किया, सारे लोग जो स्टूडेंट्स की इशू के लिए लड़ रहे हैं, एक साथ लड़ रहे हैं, मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं।
8: तो जबरदस्त संसद के बाहर हंगामा और गहमा गहमी पूरे दिन चली, और आपको बता दें कि उसके बाद कांग्रेस के बड़े लीडर्स को, विपक्ष के बड़े लीडर्स को कहना चाहिए कि हिरासत में ले लिया गया था, उसके बाद उनकी रिहाई की गई। रिहाई के बाद प्रियंका गांधी ने क्या कहा, सुनिए।
10: जो हमारे बच्चे, हमारे युवा हैं, हमारे देश के भविष्य हैं, उनकी बात सुनने में क्या हर्ज थी? वो एक जेन्युइन इशू को लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो जो उनके साथ हो रहा है वो उसका दुख लेकर, गुस्सा लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम सारे, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी आवाज हम ऊंची करें और उनकी आवाज हम बुलंद करें और उनके सपोर्ट में हम खड़े हैं, क्योंकि उनके साथ जो कल हुआ वो एकदम गलत हुआ। ये एक लोकतंत्र है, इट्स अ डेमोक्रेसी। इन अ डेमोक्रेसी राइट टू प्रोटेस्ट इट्स अ फंडामेंटल राइट। नोबडी हैज द राइट टू प्रोटेस्ट।
8: और अब बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री आवास के पास से धरना प्रदर्शन हटवाने के लिए और बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और गृह सचिव गोविंद मोहन राहुल गांधी से मिलने जाते हैं और फिर बात नहीं बनती। जितेंद्र सिंह ने बताया कि राहुल गांधी की मांग थी कि नीट पर संसद में चर्चा हो। राहुल गांधी की यह मांग मान ली गई थी, लेकिन राहुल अपनी बात से मुकर गए और उसके बाद राहुल गांधी बोले कि अब उनकी दो मांगे हैं, पहली नीट पर संसद में चर्चा होनी चाहिए, दूसरा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। सरकार कह रही है कि जब छात्रों के हर मुद्दे पर संसद में वो चर्चा के लिए तैयार हैं तो फिर कांग्रेस मुकर क्यों रही है?
11: प्रधानमंत्री आवास के पास लोक कल्याण मार्ग पर दोपहर 4:15 शुरू हुए कांग्रेस के धरने में प्रियंका गांधी नारे लगवाती हैं। तो इस बीच इस सवाल का जवाब सब जानना चाहते हैं कि आखिर सरकार ने तुरंत जब केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को राहुल गांधी से बात करने भेजा तो राहुल क्यों नहीं माने? यहाँ पर आखिर क्या बात हुई? जवाब जो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दिया है उसे उनकी सोशल मीडिया पोस्ट से देखिए। जितेंद्र सिंह ने लिखा कि कुछ समय पहले पता चला कि कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अचानक अकबर रोड के पास एक जगह पर धरने पर बैठ गए। जितेंद्र सिंह लिखते हैं कि सरकार ने उन्हें और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन को राहुल गांधी से बात करने के लिए भेजा। जितेंद्र सिंह ने राहुल गांधी से अनुरोध किया कि वो अपना धरना खत्म कर दें क्योंकि ये जगह धरने की नहीं है, यहाँ पर धरना देने से आम लोगों को काफी मुश्किल होगी। राहुल गांधी ने ये मांग रखी थी कि अगर सरकार संसद में नीट और उससे संबंधित आंदोलन के साथ जुड़े सभी विषय पर चर्चा के लिए मान जाती है तो वो अपना धरना तुरंत खत्म कर देंगे। कुछ ही देरी में सरकार के शीर्ष नेतृत्व की अनुमति लेने के बाद राहुल गांधी को ये भरोसा जितेंद्र सिंह की तरफ से दिया गया कि उनकी मांग को मान लिया गया है और सरकार नीट और उससे संबंधित आंदोलन के साथ जुड़े सभी विषय पर संसद में चर्चा करने को तैयार है। जितेंद्र सिंह के मुताबिक राहुल गांधी को जब ये सूचना पहुंचाई गई तो उन्होंने कहा कि वो इतने पर नहीं मानेंगे बल्कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का भी भरोसा चाहा। राहुल गांधी ने कहा कि अब उनकी दो मांगे हैं, संसद में चर्चा और केंद्रीय शिक्षा मंत्री यानी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के मुताबिक जब राहुल गांधी को याद दिलाया गया कि पहले उन्होंने केवल चर्चा की ही मांग की थी तब राहुल गांधी ने कहा कि अब उनकी मांगें बदल गईं। जब राहुल गांधी को विनम्रता से ये बताने की कोशिश की गई कि उनके जैसे सीनियर लीडर को इतनी जल्दी अपनी बात से मुकर जाना शोभा नहीं देता तो जितेंद्र सिंह लिखते हैं कि राहुल गांधी ने कहा कि ये उनकी मर्जी है। जब गृह सचिव ने राहुल गांधी को ये समझाने की कोशिश की कि ये जगह धरने के लिए अनुकूल नहीं तो जितेंद्र सिंह के मुताबिक राहुल गांधी ने जवाब दिया कि ये भी उनकी मर्जी है, वो जहां बैठे। इसके बाद जितेंद्र सिंह ने लिखा है कि राहुल गांधी जैसे सीनियर नेता और नेता प्रतिपक्ष का अपनी बात से मुकर जाना दुर्भाग्यपूर्ण है और लोकतंत्र की हर मर्यादा के विपरीत है। जितेंद्र सिंह साफ कहते हैं कि सरकार नीट और उससे जुड़े आंदोलन के साथ सभी विषयों पर संसद में चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन इसके विपरीत कांग्रेस ने अब तक इस गंभीर विषय पर औपचारिक चर्चा करने का कोई नोटिस नहीं दिया। जितेंद्र सिंह लिखते हैं कि राहुल गांधी का व्यवहार लोकतंत्र के उसूलों से मेल नहीं खाता है।
12: सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, सरकार तैयार है संसद में चर्चा करने के लिए नीट को लेकर के भी, उसके साथ संबंधित विषयों को लेकर के भी, जो आंदोलन है उसको लेकर के भी। हमने जब ये बात वहीं पर राहुल गांधी जी के आगे दोबारा रखी तो बोले कि साहब मुझे तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी चाहिए। तो हमने कहा साहब अभी कुछ ही क्षण पहले आपसे बार बार जब पूछा गया कि आपका क्या मुतालबा है तो आपने ये कहा था कि अगर मुझे ये आश्वासन दिया जाए कि संसद में कांग्रेस पार्टी को भारत सरकार चर्चा करने देगी या करने के लिए तैयार है तो मैं तुरंत ये धरना समाप्त कर दूंगा। लेकिन अब आप अपनी बात से हट रहे हैं। तो बोले साहब ये तो मेरी मर्जी है, मेरी मांगे बदल चुकी हैं।
13: अब ये मुद्दा इतना ज्वलंत इसलिए है क्योंकि देश के युवा हैं और ये समझ रहे हैं कि हमारे फ्यूचर, हमारे भविष्य के लिए क्या है। हमारे माँ बाप लोन लेकर मुश्किल से हमें पढ़ाते हैं, हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारे लिए इतना मुश्किल है, इसको हल्के में कोई नहीं ले सकता। ये एक बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है, आज युवा बहुत ही दुखी है। एक्चुअली ये जो आप नाराजगी देख रहे हैं, ये एक्चुअली दुख है कि हमारे फ्यूचर, हमारे भविष्य के बारे में कौन सोच रहा है। ये सदन है किसका? ये उन्हीं युवाओं का है ना जिसको आप रोक रहे हैं बाहर, जिन पर आप लाठी चार्ज कर रहे हैं, जिन पर आप आंसू गैस चला रहे हैं। ये तो मतलब ये सदन ही उनका है, हम सब यहाँ हैं, किसने हमें यहाँ रखा है, उन्होंने ये रखा तो उनकी बात तो सुन ले, उनकी बात तो सुन ले।
14: प्राइम मिनिस्टर मोदी एंटी यूथ है,
13: बिल्कुल एंटी यूथ है,
14: बीजेपी
13: एंटी यूथ है, एंटी गरीब है, एंटी किसान है, बच्चे हैं, सुन लीजिए इनकी बात, क्या होने जा रहा है। अगर इनकी बात शांति से सुन लें आप, मंत्री जी की जिम्मेदारी है, उनसे रिजाइन करवाइए, इस्तीफा दीजिए, जिम्मेदारी लीजिए, और सबसे जरूरी तो ये है कि सिस्टम को दुरुस्त करिए।
15: आप इन विषयों पे जब भी डिस्कशन होता है आप मुंह की खाते हैं, लास्ट में आप जवाब सुन भी नहीं पाते हैं। मैं अभी भी बोलूंगा, ये नकारात्मक जो सोच है विपक्ष का उसको छोड़ना चाहिए। आपने कर लिया ना जो एक दो दिन है, लेकिन कल से सदन को चलने दिया जाए, सभी जो मुद्दे हैं उन पे बात करिए। कोई ऐसा विषय नहीं है जिस पे संसद में बहस न हो सके, लेकिन इन लोगों को एक आदत लग गई है कि संसद के विषय को सड़क पे ले जाएंगे।
16: सरकार ने 3 घंटे के धरने में राहुल गांधी से 2 बार बातचीत की, लेकिन वो नहीं माने तो पुलिस ने उन्हें धरना प्रदर्शन से उठाना शुरू कर दिया। कांग्रेस नेताओं और पुलिस के बीच आधे घंटे तक धक्का मुक्की होती रही, आखिर में 12 से ज्यादा पुलिसकर्मी उन्हें उठा कर ले गए।
8: 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज के खिलाफ चेंबूर में गुस्सा फूटा, छात्रों ने लाठीचार्ज के विरोध में प्रोटेस्ट किया। पेपर लीक केस में प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा कि सरकार इस आंदोलन को जितना दबाने की कोशिश करेगी उतना ही आंदोलन उग्र होगा।
17: पेपर लीक केस के बाद पूरे देश में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र के कई शहरों में भी छात्रों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। चेंबूर में भी छात्रों ने 20 जुलाई को जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज के विरोध में प्रोटेस्ट किया, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया।
18: दिल्ली में जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हुआ और उस पर लाठीचार्ज और आंसू गैस फेयर डाले गए, उसके विरोध में अब मुंबई के चेंबूर इलाके में प्रोटेस्ट हो रहा है। और आप देख लीजिए, काफी सारे प्रोटेस्टर्स यहां पे आए थे, लेकिन जितने प्रोटेस्टर्स हैं उससे ज्यादा तादाद में यहां पुलिस के अधिकारी हैं। यहां पे आप देख लीजिए, पुलिसकर्मी इतने ज्यादा हैं, और बताया यही जा रहा है कि जितने प्रोटेस्टर्स थे उनको भी नोटिसेस दी गई। आप लोगों को भी नोटिसेस मिले?
19: हम लोग को भी नोटिसेस मिले।
18: क्या कितने लोगों को दिया गया है, कितने लोगों की कोई उन लोगों को कहां कोई रेस्ट्रिक्ट किया गया उनका मूवमेंट?
19: नहीं, 20-25 से ज्यादा लोगों को नोटिस दिया गया है, और 100 से ज्यादा लोगों को फोन कॉल्स आया है कि कल अगर आप प्रोटेस्ट में इन्वॉल्वमेंट हुए तो आपको केसेस हो सकता है इसकी वजह। और काफी सारे गली के बाहर, घर के बाहर पुलिस जिनको बाहर आने नहीं दे रहे।
18: आप लोग को भी कहीं मोर्चा आप लोग निकालना चाह रहे थे, आप लोग को भी रेस्ट्रिक्शन दिया गया?
19: हम लोग अभी चेंबूर नाके पे प्रोटेस्ट निकालने चाहते थे, बट हम लोग के एरिया के स्टार्टिंग पॉइंट पे ही पुलिस, मतलब जितने ज्यादा आंदोलन करते थे उससे 3 गुना ज्यादा तो पुलिस है यहाँ पे, और वो लोग बोल रहे कि यहाँ से आप बाहर निकल नहीं सकते। बट हम लोग तो मतलब किसी भी तरह का तीव्र आंदोलन, मतलब कोई तोड़फोड़ करने वाले नहीं थे, हम लोग शांति से आंदोलन करने वाले थे। बट जो चेंबूर के जो सीनियर्स है और बाकी भी सीनियर्स लोग है, वो लोग हम लोग को आगे जाने नहीं दे रहे।
18: तो पुलिस अधिकारियों ने आप लोगों के मूवमेंट को पूरा रेस्ट्रिक्ट कर दिया, लेकिन आप ये विरोध प्रदर्शन किस लिए कर रहे हैं?
19: जनरली विरोध प्रदर्शन इसलिए है कि कल तक हमारा रात में 8 बजे तक कोई ऐसा प्लानिंग नहीं था कि निदर्शन करना है, कोई आंदोलन करना है। बट जो हिसाब से कल हम लोग ने जो दिल्ली जंतर मंतर में जो आंदोलन देखा, जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ, काफी गलत है।
17: मुंबई पुलिस ने लोगों को प्रदर्शन न करने के लिए कई नोटिस भी दिए हैं। पुलिस ने कहा है कि प्रदर्शनकारी सिर्फ एक झुग्गी बस्ती के अंदर ही प्रदर्शन कर सकते हैं।
20: छोटे छोटे बच्चों जब आंदोलन करते हैं तो ये सरकार उनको मारती है, भगाती है, लाठियां अलग करती है, तो ये देश में लोकशाही है कि नहीं? और बच्चे क्या मांग रहे हैं? जिसने जो भवितव्य जो भविष्य करने का जो एग्जाम है वो पेपर लीक किया, और पेपर मतलब ऐसा ये कितने साल से चल रहा है, तो हमारा कुछ भवितव्य है कि नहीं?
18: आप लोग भी प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे, कितने कार्यकर्ताओं को यहाँ पे, कितने लोगों को यहाँ पे रोका गया है?
20: हमारे सब कार्यकर्ता रोका गया है, नोटिस दिया है, वो बोला है कि आंदोलन करने का नहीं। हम बोले कि लोकशाही मार्ग से हम आंदोलन कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, जमाबंदी आदेश लागू किया है तो आप आंदोलन नहीं कर सकते, ऐसा हम लोग को बोला है। फिर भी हम लोग उधर जाने की कोशिश करेंगे।
17: पेपर लीक केस में प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा कि सरकार इस आंदोलन को जितना दबाने की कोशिश करेगी आंदोलन उतना ही उग्र होगा।
21: हाँ, नाराजगी तो है, जो हुआ है वो जो हमारे जो शिक्षण जो मंत्री है उन्होंने तो राजीनामा देना चाहिए, और जो लाठीचार्ज हुआ है उसके वजह से हमारी नाराजगी है। जो आप स्टूडेंट लोगों को मार रहे हो वो गलत है, वो क्रिमिनल नहीं है, वो स्टूडेंट्स है, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनको उनका हक है प्रोटेस्ट करने का, इसके लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उन्हें मारना नहीं चाहिए, ये गलत है।
18: लेकिन आप लोग भी तो यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और पुलिस वालों ने किस तरह से आप लोग?
21: हमारा कल से चालू है कि प्रोटेस्ट करना है, दो दिन से हमारे लोग बाहर निकल रहे हैं, रात को पुलिस को किसी ने तो बता दिया है, तो पुलिस सबसे कांटेक्ट कर रही है, सबको नोटिस दे रही है, आप निकल नहीं सकते। कहीं तो लोकशाही को दबाने का एक ये चल रहा है, लोकशाही को दबाने का एक इरादा है उनका, वो दिख रहा है।
18: जैसा यही बात ये कह रहे हैं, दरअसल अगर आप देखें तो इस पूरे इलाके में छावनी में तब्दील हो चुके हैं तकरीबन हर जगह। आप देखिए कॉलोनी से जो सिद्धार्थ कॉलोनी है उससे निकलने का यही रास्ता है, और इस रास्ते पे आप देख लीजिए पुलिस कर्मी इतने ज्यादा भारी तादाद में, और वहीं घर घर जाके नोटिसेस भी दिए गए थे, लोगों को कहा गया था कि वो निकले नहीं। इसके अलावा अगर आप देखें मुंबई में, क्योंकि जहां जहां प्रोटेस्ट हुए हैं वहां पे FIR रजिस्टर हुई है, जिस तरीके से शिवाजी पार्क में भी मुंबई के दादर इलाके में जो वहां प्रोटेस्ट हुआ था उसको लेकर भी 3 FIR हुए हैं, इसके अलावा मेरीन ड्राइव पर, तो तमाम जहां जहां प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहां पर FIR जरूर रजिस्टर कर रही है पुलिस, और यही वजह है कि एक के बाद एक धीरे धीरे छोटे छोटे इलाकों में ही सही लेकिन प्रोटेस्ट की आवाजें जरूर उठ रही हैं। कैमरामैन किरण सपकाल के साथ विद्या, मुंबई आज तक।
8: और अब बात करेंगे कुदरत के बादल बॉम्ब के बारे में, क्योंकि पहाड़ों से लेकर मैदानों तक आसमान से ऐसी आफत बरस रही है कि देश के कई इलाकों में त्राहिमाम मच गया है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक बारिश का ब्रेक फेल है, और जगह जगह कुदरत के बादल फट रहे हैं, तो वहीं मैदानी इलाकों में भी मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं।
17: सैलाब में जिंदगी और मौत की सीधी जंग, कहीं उफंती लहरों के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन, कहीं दहकते पहाड़ों पर जिंदगी की लड़ाई, कहीं सैलाब के बीच मौसम से सीधी टक्कर, कहीं कागज के तिनके की तरह बही गाड़ियां, पहाड़ों से लेकर मैदान तक तबाही ही तबाही। जगह जगह फट रहा है बादल बम, सैलाब अटैक जारी, मानसूनी संकट काल भारी। ये तस्वीरें राजौरी के थामंडी इलाके में हुए रेस्क्यू ऑपरेशन की हैं। भारतीय सेना की 61 राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों ने उफानती लहरों के बीच 13 स्थानीय निवासियों की जान बचाई। हुआ यूं कि भारी बारिश के चलते पहाड़ी नाले में अचानक बाढ़ आने से लोग फंस गए। आप देख सकते हैं कि नाले में पानी का बहाव कितना तेज है।
1: सेना के जवानों ने उफनते सैलाब के आर पार एक रस्सी बांधी और फंसे हुए हर नागरिक को एक एक करके सुरक्षित बाहर निकाला। रेस्क्यू किए गए लोगों में 6 महिलाएं, 5 बच्चे और 2 बुजुर्ग शामिल हैं। ये रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत खतरनाक हालात में चलाया गया। क्योंकि भारी बारिश के चलते नाले का बहाव लगातार बढ़ रहा था, ऐसे में रेस्क्यू टीम ने जान पर खेलकर लोगों को बचाया। मुश्किल की घड़ी में देवदूत बनकर खड़े हुए सेना के जवानों ने 13 जिंदगियों को बचा लिया। जिंदगी और मौत की सीधी जंग। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की हैं। रिकॉर्ड तोड़ बारिश का कहर ऐसा है कि पहाड़ दरक रहे हैं, सड़कें पत्थरों का टीला बन चुकी हैं, तो भूस्खलन के चलते यातायात ठप है। कुदरत की इसी क्रोध लीला का शिकार ये बस बन सकती थी। दरअसल अचानक पहाड़ी से पत्थर बरसने लगे, मौके पर मौजूद लोगों ने वक्त रहते बस को रुकवा दिया। आप देख सकते हैं कि मलबे में यही बस फंस गई थी जिसमें कई यात्री सवार थे। हुआ यूं कि भूस्खलन के बाद मलबा बस के सामने आ गया। बस में सवार यात्रियों की सांसें अटक गई थी। गनीमत रही कि बस पलटी नहीं और सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकल आए।
0: हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश कहर बरपा रही है। ऐसा ही मंजर हिमाचल के जिला चंबा में भी देखने को मिल रहा है। रेड अलर्ट के चलते कल रात से लगातार बारिश हो रही है। इससे जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं, रास्ते बंद पड़े हैं और कई जगह जो है सड़क पूरी तरह से बह गई है। चंबा जिला के पांगी में बादल फटने से कई मजदूरों को रेस्क्यू भी किया गया है। वहीं अगर बात करें चंबा जिला के भटियात क्षेत्र की, तो वहां पे नूरपुर को जोड़ने वाली, जिला कांगड़ा को जोड़ने वाली, चंबा से जिला कांगड़ा को जोड़ने वाली लाहड़ू नूरपुर सड़क जो है उसका लगभग 200 मीटर हिस्सा जो है वो पूरी तरह से चक्की नदी में समा गया है। बारिश का कहर जो है लगातार जारी है और अभी आने वाले दिनों में भी ऐसे ही बारिश का अनुमान बताया जा रहा है।
1: सैलाब से जिंदगी की जंग। ये तस्वीरें चंबा के कलाह नाले की हैं। तस्वीरों में कैद मंजर रोंगटे खड़े करने वाला है। आसपास सैलाब का कहर और एक चट्टान पर 3 मजदूर फंसे हुए हैं। अचानक नाले का जल स्तर बढ़ने की वजह से 3 मजदूरों को बचाने का मौका नहीं मिला। तीनों मजदूर बीच जलधारा में फंस गए। जबकि उनके कुछ दूसरे साथी दूसरे छोर पर मौजूद थे। सैलाब में फंसे लोगों के पास तैर कर बचने का रास्ता नहीं था क्योंकि पानी का बहाव उन्हें बेमौत मार सकता था। जबकि हर मिनट बढ़ता जल स्तर उनकी सांसें अटकाने के लिए काफी था। सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। आप देख सकते हैं मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने जलधारा में फंसे मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। एक बड़ी लकड़ी को एक चट्टान से दूसरी चट्टान के बीच रखा गया। उसके बाद तीनों मजदूरों को सुरक्षित बचा लिया गया। चश्मदीदों के मुताबिक बादल फटने के बाद नाले में अचानक बाढ़ आ गई थी। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बरसात के मौसम में नदी नालों और खड्डों के आसपास आवाजाही से बचें क्योंकि अचानक जल स्तर बढ़ने का खतरा बना रहता है।
8: और इसी के साथ हम यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

राहुल गांधी ने जारी किया वीडियो संदेश, केंद्र पर साधा निशाना, बोले भारत की शिक्षा व्यवस्था हो रही है कमजोर। धर्मेंद्र प्रधान का मांगा इस्तीफा, प्रियंका समेत सभी कांग्रेस के नेता हिरासत से छोड़े गए। नई दिल्ली के मंदिर मार्ग थाने में कांग्रेस के नेताओं से जाकर मिली सोनिया गांधी, रिहाई के बाद बोली प्रियंका, बच्चों की बात क्यों नहीं सुनी जा रही। मोदी सरकार पर राहुल और प्रियंका का बड़ा हमला, लोकतंत्र के लिए बताया खतरनाक, जितेंद्र सिंह का आरोप, नेता विपक्ष ने बदली अपनी बात, धर्मेंद्र प्रधान बोले राहुल गांधी का मकसद टकराव करना, नितिन नवीन ने भी निंदा की। राहुल के धरने के बाद आम आदमी पार्टी ने इसे बताया बीजेपी से मिलीभगत, कहा ये सीजेपी के प्रदर्शन को कमजोर करने की साजिश है। आतिशी ने किया कटाक्ष, क्या जुगलबंदी है। और संसद हंगामे के बीच प्रधानमंत्री ने एनडीए मीटिंग में दिया कड़ा संदेश, कहा नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर नहीं होगा बर्दाश्त, पेपर लीक पर लिया कड़ा एक्शन।

0: संसद का मानसून सत्र शुरू होगा तो दिल्ली में इतना बड़ा सियासी भूचाल आ जाएगा, ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा। मानसून सत्र के पहले दिन कांग्रेस जनता पार्टी के जंतर मंतर से संसद चलो मार्च पर हंगामा, पुलिस से भिड़ंत, और अगले दिन प्रधानमंत्री आवास के पास कांग्रेस और विपक्ष का हाई वोल्टेज हंगामा और साथ ही साथ धरना प्रदर्शन भी। पुलिस ने पहले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी नेताओं को हिरासत में लिया, बाद में सबको छोड़ दिया गया। नीट पेपर लीक पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग से शुरू हुआ ये विरोध प्रदर्शन कैसे प्रधानमंत्री आवास यानी कि सात लोक कल्याण मार्ग तक पहुंच गया, आइए आपको दिखाते हैं।
1: नीट पेपर लीक की लड़ाई पीएम आवास पर धरने तक आई। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर विपक्ष अड़ा, सड़क पर एक तूफान खड़ा। कांग्रेस का हाई वोल्टेज हंगामा पुलिस ने धरना प्रदर्शन से हटाया। राहुल गांधी, प्रियंका और अखिलेश यादव समेत कई नेता हिरासत में। प्रधानमंत्री आवास के पास विपक्ष का हंगामा, पूरी रणनीति क्या है? दिल्ली की सत्ता के सबसे ताकतवर केंद्र यानी सात लोक कल्याण मार्ग यानी प्रधानमंत्री आवास के बहाने पर जब देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी अपने दिग्गजों की पूरी फौज के साथ सड़क पर उतरती है तो ऐसा हंगामा मचता है कि दिल्ली से लेकर पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत कांग्रेस और विपक्ष के कई बड़े नेताओं को न सिर्फ धरने से उठाया बल्कि इन सबको हिरासत में भी ले लिया और उन्हें बस में भर कर थाने ले गई।
2: यहाँ पे जो तस्वीर 7RCR यानी कि लोक कल्याण मार्ग में घट रही है, पीछे हमारे देखिए अखिलेश यादव और राहुल गांधी को कुछ इस तरीके से बस में भर के ले जाया जा रहा है। अखिलेश यादव हाथ देने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी डिटेन कर लिया गया है। मुकुल वासनिक वहाँ पे नजर आ रहे हैं और तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पे नारेबाजी लगाते हुए इस बस पे आगे जाते हुए आइए।
1: आपको बता दें कि जब राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं को प्रधानमंत्री आवास के पास धरने से उठाने के लिए पुलिस ने घेरा बनाया और राहुल गांधी को हटाने की कोशिश की तो वो जमीन पर लेट जाते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे राहुल गांधी सड़क पर लेटे हुए हैं और पुलिस के साथ उनकी काफी देर तक जोर आजमाइश चलती रहती है। आखिर में पुलिस धरने पर बैठे नेताओं को उठाकर ले जाती है।
3: डेमोक्रेसी इन इंडिया इज हैपनिंग राइट नाउ। डेमोक्रेसी इन इंडिया इज हैपनिंग राइट नाउ।
4: कायर हैं, डरते हैं,
5: बात कर रही है, बात कर रही है।
4: हम नहीं डरते इनसे, ये हमसे
5: डरो यार, एक मिनट। अरे बात कर रही है वो यार।
1: आपको बता दें कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव को दिल्ली पुलिस हिरासत में लेकर अलग अलग थानों में जाती है। इस बीच दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर की सुरक्षा भी बढ़ा दी जाती है, हर गेट पर पुलिस की भारी तैनाती कर दी जाती है।
6: गुंडई और राजनीति गुंडागर्दी की उसका अंत यहाँ नहीं है, ये एक नई क्रांति की शुरुआत है राहुल गांधी के नेतृत्व में। ये क्रांति अब बड़ी ज्वाला बनकर धधकेगी।
7: आज फिर से दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्री के इशारे पर, प्रधानमंत्री के इशारे पर बहुत ही कायरता पूर्वक तरीके से हमारे नेता राहुल गांधी को घसीटकर हिरासत में लिया, हमारी नेता प्रियंका गांधी को बदतमीजी कर और घसीटकर बस में जबरदस्ती ठूसा।
1: हिरासत में लेने के बाद राहुल गांधी का पहला एक्स पोस्ट आता है जिसमें वो लिखते हैं कि मोदी जी हर जोर आजमा लो, सारी ताकत लगा लो, छात्रों के इंसाफ की ये लड़ाई अब रोके ना रुकेगी। पीएम आवास के पास दोपहर करीब 3:30 बजे से शुरू हुआ धरना प्रदर्शन शाम 6 बजे तक एक बड़े सियासी हंगामे में तब्दील हो जाता है। अब उसकी पूरी टाइमलाइन आपको दिखाते हैं। दोपहर करीब 3:30 बजे पीएम आवास के पास कांग्रेस का धरना, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी बाकी सांसदों नेताओं के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर से बैठक करके अचानक मार्च करते हुए निकल पड़ते हैं और सात लोक कल्याण मार्ग पर यानी प्रधानमंत्री के आवास वाली सड़क पर पीएम आवास से कुछ दूरी पर राहुल गांधी प्रियंका गांधी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत बाकी कांग्रेस के दिग्गज नेता धरने पर बैठ जाते हैं। राहुल गांधी जब धरना देते हैं तो वहां पर देखा गया कि वो सांकेतिक रूप से हथकड़ी वाला प्रदर्शन करते हैं जहां राहुल गांधी समेत दूसरे कांग्रेस नेता हाथ में लॉक लगाने वाला थ्रेड बांध लेते हैं। अब राजनीतिक सवाल ये आता है कि अचानक पीएम आवास के पास पहुंचकर राहुल गांधी धरना क्यों देते हैं, उनकी मांग क्या है?
8: हमारे नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में ने इस मांग की है, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में ये मांग की है। गृह मंत्री आए, दोनों सदनों में बयान दे, उस पर चर्चा हो। जिस तरीके से हमारे लोकतंत्र और हमारे संविधान पर हत्या हो रही है, जो हमारे युवाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उनके भविष्य पर अंधेरा छाया हुआ है, उस पर एक बयान दे। और हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग हम 20 करीब 45 दिन से कर।
1: लेकिन जब पीएम आवास के पास ही राहुल गांधी धरना देने लगते हैं तो इन सब के बीच दोपहर 3:45 पर राहुल गांधी को धरने से हटाने की अपील। अचानक दिल्ली पुलिस वहां पहुंचती है और राहुल गांधी से धरने से हटने के लिए कहा जाता है, लेकिन वो इनकार कर देते हैं। सरकार की तरफ से जितेंद्र सिंह भी राहुल गांधी से बातचीत करने के लिए पहुंचते हैं और फिर कांग्रेस के नेताओं को पुलिस हिरासत में लेकर पीएम आवास के पास वाले धरने से हटाना शुरू कर देती है। शाम 4 बजे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह राहुल गांधी से बात करने पहुंचते हैं। जी हां, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह खुद राहुल गांधी से बात करने पहुंच जाते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को लौटना पड़ता है। वो कुछ बोलते नहीं हैं। पता ये चलता है कि राहुल गांधी ने धरने से हटने से मना कर दिया है।
7: छात्रों को, युवाओं को न्याय नहीं मिल जाता, कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता, हम लोग यहाँ से नहीं हिलने वाले। दिन हो या रात, नरेंद्र मोदी को बाहर आना पड़ेगा। पूरी कांग्रेस पार्टी जो जहाँ है यहाँ आए और धरने पर बैठ जाए, नहीं हिलेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा।
1: शाम 5:18 राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। राहुल गांधी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं और लिखते हैं कि छात्रों पर हमला हर भारतीय परिवार पर हमला है। प्रधानमंत्री मोदी को लगता है कि वो बिना जवाब दिए, बिना किसी नतीजे का सामना किए बच निकलेंगे, नहीं कर पाएंगे, इस बात तो बिल्कुल नहीं। इसके बाद राहुल गांधी ने इस पोस्ट में अपील कर दी कि जो भी मानता है कि छात्रों को न्याय मिलना चाहिए, वो पीएम आवास के सामने धरने में शामिल हो। कांग्रेस के इस धरने में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल हो जाते हैं। उनके साथ विपक्ष के कई और नेता भी इस धरना प्रदर्शन में जुड़ते हैं। आज तक ब्यूरो।
0: हंगामा लगातार जारी है और आपको बता दें कि दोनों ही तरफ से लगातार बयान भी जारी किए जा रहे हैं। राहुल गांधी की तरफ से भी छात्रों के इस आंदोलन पर एक बयान जारी किया गया है। छात्रों के इस मुद्दे को देश के सामने लाने की कोशिश की है, ये राहुल गांधी ने कहा है। और क्या कहा नेता विपक्ष ने, सुनिए।
9: दूसरा कि स्टूडेंट्स को जिन्होंने मारा है, जिन्होंने ह्यूमिलिएट किया है, उन पर एक्शन लिया जाए और जो भी स्टूडेंट्स पर केसेस हैं उनको हटाया जाए। फाइनली पूरी ऑपोजिशन चाहती है कि ये जो इशू है, देश का सबसे बड़ा इशू है, इस पे कल लोकसभा में, राज्यसभा में डिबेट हो और हम अपनी बात रख सकें। मेरा मोदी जी से एक सजेशन है, एज एलओपी, कल जो हुआ, जो आपकी सरकार ने, आपके होम मिनिस्टर ने किया, उसके लिए आप देश के स्टूडेंट से माफी मांगिए और जल्दी से जल्दी एग्जामिनेशन सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम्स पर रिफॉर्म शुरू कीजिए। आप सब ने हमारा समर्थन किया, सारे लोग जो स्टूडेंट्स की इशू के लिए लड़ रहे हैं, एक साथ लड़ रहे हैं, मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं।
10: This morning I went and met the speaker of the Lok Sabha. And I said to him that it
0: was आपने नेता विपक्ष के नाते उन्होंने तमाम बातें कही. उन्होंने कहा भारत की शिक्षा व्यवस्था कमजोर हो रही है, जिस पर काम करने की जरूरत है. धर्मेंद्र प्रधान का राहुल गांधी ने इस्तीफा मांगा है सीधे सीधे. उन्होंने कहा कि माफी मांगनी चाहिए सरकार को जिस तरीके से छात्रों के साथ व्यवहार किया गया है. और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बहुत जरूरी है कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसमें सुधार होना चाहिए, परीक्षा सिस्टम सुधरना चाहिए. एक बार फिर से आपको सुनाते हैं कि क्या कहा गया है राहुल गांधी की तरफ से.
9: और जो स्टूडेंट्स की इशू है, जो देश के लिए सबसे जरूरी इशू है और जो उनके खिलाफ किया गया है वो हम देखते चलो. दीजला धर्मेंद्र प्रधान दूसरा की absolutely nothing wrong with asking these questions. स्टूडेंट्स की मांगे हैं, पहला धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह का रेजिग्नेशन, दूसरा की स्टूडेंट्स को जिन्होंने मारा है, जिन्होंने ह्यूमिलिएट किया है, उन पर एक्शन लिया जाए और जो भी स्टूडेंट्स पर केसेस हैं उनको हटाया जाए. फाइनली पूरी ऑपोजिशन चाहती है कि ये जो इशू है, देश का सबसे बड़ा इशू है, इस पे कल लोकसभा में राज्यसभा में डिबेट हो और हम अपनी बात रख सकें. मेरा मोदी जी से एक सजेशन है, एज एलओपी कल जो हुआ, जो आपकी सरकार ने, आपके होम मिनिस्टर ने किया, उसके लिए आप देश के स्टूडेंट से माफी मांगिए और जल्दी से जल्दी एग्जामिनेशन सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम्स पर रिफॉर्म शुरू कीजिए. आप सब ने हमारा समर्थन किया, सारे लोग जो स्टूडेंट्स की इशू के लिए लड़ रहे हैं, एक साथ लड़ रहे हैं, मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं.
0: तो जबरदस्त संसद के बाहर हंगामा और गहमा गहमी पूरे दिन चली. और आपको बता दें कि उसके बाद कांग्रेस के बड़े लीडर्स को, विपक्ष के बड़े लीडर्स को कहना चाहिए कि हिरासत में ले लिया गया था. उसके बाद उनकी रिहाई की गई. रिहाई के बाद प्रियंका गांधी ने क्या कहा सुनिए.
11: जो हमारे बच्चे, हमारे युवा हैं, हमारे देश के भविष्य हैं, उनकी बात सुनने में क्या हर्ज थी? वो एक जेन्युइन इशू को लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं. वो जो उनके साथ हो रहा है वो उसका दुख लेकर, गुस्सा लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं. तो जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम सारे, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी आवाज हम ऊंची करें और उनकी आवाज हम बुलंद करें और उनके सपोर्ट में हम खड़े हैं, क्योंकि उनके साथ जो कल हुआ वो एकदम गलत हुआ. ये एक लोकतंत्र है, इट्स अ डेमोक्रेसी. इन अ डेमोक्रेसी राइट टू प्रोटेस्ट इट्स अ फंडामेंटल राइट. नोबडी हैज द राइट टू प्रोटेस्ट.
0: और अब बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री आवास के पास से धरना प्रदर्शन हटवाने के लिए और बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और गृह सचिव गोविंद मोहन राहुल गांधी से मिलने जाते हैं और फिर बात नहीं बनती. जितेंद्र सिंह ने बताया कि राहुल गांधी की मांग थी कि नीट पर संसद में चर्चा हो. राहुल गांधी की यह मांग मान ली गई थी, लेकिन राहुल अपनी बात से मुकर गए. और उसके बाद राहुल गांधी बोले कि अब उनकी दो मांगे हैं, पहली नीट पर संसद में चर्चा होनी चाहिए, दूसरा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए. सरकार कह रही है कि जब छात्रों के हर मुद्दे पर संसद में वो चर्चा के लिए तैयार हैं तो फिर कांग्रेस मुकर क्यों रही है.
12: प्रधानमंत्री आवास के पास लोक कल्याण मार्ग पर दोपहर 4:15 शुरू हुए कांग्रेस के धरने में प्रियंका गांधी नारे लगवाती हैं. तो इस बीच इस सवाल का जवाब सब जानना चाहते हैं कि आखिर सरकार ने तुरंत जब केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को राहुल गांधी से बात करने भेजा तो राहुल क्यों नहीं माने. यहाँ पर आखिर क्या बात हुई. जवाब जो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दिया है उसे उनकी सोशल मीडिया पोस्ट से देखिए. जितेंद्र सिंह ने लिखा कि कुछ समय पहले पता चला कि कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अचानक अकबर रोड के पास एक जगह पर धरने पर बैठ गए. जितेंद्र सिंह लिखते हैं कि सरकार ने उन्हें और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन को राहुल गांधी से बात करने के लिए भेजा. जितेंद्र सिंह ने राहुल गांधी से अनुरोध किया कि वो अपना धरना खत्म कर दें क्योंकि ये जगह धरने की नहीं है, यहाँ पर धरना देने से आम लोगों को काफी मुश्किल होगी. राहुल गांधी ने ये मांग रखी थी कि अगर सरकार संसद में नीट और उससे संबंधित आंदोलन के साथ जुड़े सभी विषय पर चर्चा के लिए मान जाती है तो वो अपना धरना तुरंत खत्म कर देंगे. कुछ ही देरी में सरकार के शीर्ष नेतृत्व की अनुमति लेने के बाद राहुल गांधी को ये भरोसा जितेंद्र सिंह की तरफ से दिया गया कि उनकी मांग को मान लिया गया है और सरकार नीट और उससे संबंधित आंदोलन के साथ जुड़े सभी विषय पर संसद में चर्चा करने को तैयार है। जितेंद्र सिंह के मुताबिक राहुल गांधी को जब ये सूचना पहुंचाई गई, तो उन्होंने कहा कि वो इतने पर नहीं मानेंगे बल्कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का भी भरोसा चाहा। राहुल गांधी ने कहा कि अब उनकी दो मांगे हैं, संसद में चर्चा और केंद्रीय शिक्षा मंत्री यानी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के मुताबिक जब राहुल गांधी को याद दिलाया गया कि पहले उन्होंने केवल चर्चा की ही मांग की थी, तब राहुल गांधी ने कहा कि अब उनकी मांगें बदल गईं। जब राहुल गांधी को विनम्रता से ये बताने की कोशिश की गई कि उनके जैसे सीनियर लीडर को इतनी जल्दी अपनी बात से मुकर जाना शोभा नहीं देता, तो जितेंद्र सिंह लिखते हैं कि राहुल गांधी ने कहा कि ये उनकी मर्जी है। जब गृह सचिव ने राहुल गांधी को ये समझाने की कोशिश की कि ये जगह धरने के लिए अनुकूल नहीं, तो जितेंद्र सिंह के मुताबिक राहुल गांधी ने जवाब दिया कि ये भी उनकी मर्जी है, वो जहां बैठे। इसके बाद जितेंद्र सिंह ने लिखा है कि राहुल गांधी जैसे सीनियर नेता और नेता प्रतिपक्ष का अपनी बात से मुकर जाना दुर्भाग्यपूर्ण है और लोकतंत्र की हर मर्यादा के विपरीत है। जितेंद्र सिंह साफ कहते हैं कि सरकार नीट और उससे जुड़े आंदोलन के साथ सभी विषयों पर संसद में चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन इसके विपरीत कांग्रेस ने अब तक इस गंभीर विषय पर औपचारिक चर्चा करने का कोई नोटिस नहीं दिया। जितेंद्र सिंह लिखते हैं कि राहुल गांधी का व्यवहार लोकतंत्र के उसूलों से मेल नहीं खाता है।
13: सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, सरकार तैयार है संसद में चर्चा करने के लिए, नीट को लेकर के भी, उसके साथ संबंधित विषयों को लेकर के भी, जो आंदोलन है उसको लेकर के भी। हमने जब ये बात वहीं पर राहुल गांधी जी के आगे दोबारा रखी तो बोले कि साहब मुझे तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी चाहिए। तो हमने कहा साहब अभी कुछ ही क्षण पहले आपसे बार बार जब पूछा गया कि आपका क्या मुतालबा है, तो आपने ये कहा था कि अगर मुझे ये आश्वासन दिया जाए कि संसद में कांग्रेस पार्टी को भारत सरकार चर्चा करने देगी या करने के लिए तैयार है, तो मैं तुरंत ये धरना समाप्त कर दूंगा। लेकिन अब आप अपनी बात से हट रहे हैं। तो बोले साहब ये तो मेरी मर्जी है, मेरी मांगे बदल चुकी हैं।
14: अब ये मुद्दा इतना ज्वलंत इसलिए है क्योंकि देश के युवा हैं और ये समझ रहे हैं कि हमारे फ्यूचर, हमारे भविष्य के लिए क्या है। हमारे माँ बाप लोन लेकर मुश्किल से हमें पढ़ाते हैं, हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारे लिए इतना मुश्किल है, इसको हल्के में कोई नहीं ले सकता। ये एक बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है। आज युवा बहुत ही दुखी है। एक्चुअली ये जो आप नाराजगी देख रहे हैं, ये एक्चुअली दुख है कि हमारे फ्यूचर, हमारे भविष्य के बारे में कौन सोच रहा है। ये सदन है किसका? ये उन्हीं युवाओं का है ना जिसको आप रोक रहे हैं बाहर, जिन पर आप लाठीचार्ज कर रहे हैं, जिन पर आप आंसू गैस चला रहे हैं। ये तो मतलब ये सदन ही उनका है। हम सब यहाँ हैं, किसने हमें यहाँ रखा है? उन्होंने ही रखा है। तो उनकी बात तो सुन ले, उनकी बात तो सुन ले।
15: मोदी एंटी यूथ है,
14: बिल्कुल एंटी यूथ है। देखिए एंटी यूथ है, एंटी गरीब है, एंटी किसान है, बच्चे हैं, सुन लीजिए इनकी बात क्या होने जा रहा है। अगर इनकी बात शांति से सुन लें, आप मंत्री जी की जिम्मेदारी है, उनसे रिजाइन करवाइए, इस्तीफा दीजिए, जिम्मेदारी लीजिए और सबसे जरूरी तो यह है कि सिस्टम को दुरुस्त करिए।
16: आप इन विषयों पे जब भी डिस्कशन होता है आप मुंह की खाते हैं, लास्ट में आप जवाब सुन भी नहीं पाते हैं। मैं अभी भी बोलूंगा, ये नकारात्मक जो सोच है विपक्ष का उसको छोड़ना चाहिए। आपने कर लिया ना जो एक दो दिन है, लेकिन कल से सदन को चलने दिया जाए, सभी जो मुद्दे हैं उन पर बात करिए। कोई ऐसा विषय नहीं है जिस पे संसद में बहस न हो सके, लेकिन इन लोगों को एक आदत लग गई है कि संसद के विषय को सड़क पे ले जाएंगे।
17: सरकार ने 3 घंटे के धरने में राहुल गांधी से 2 बार बातचीत की, लेकिन वो नहीं माने तो पुलिस ने उन्हें धरना प्रदर्शन से उठाना शुरू कर दिया। कांग्रेस नेताओं और पुलिस के बीच आधे घंटे तक धक्का मुक्की होती रही। आखिर में 12 से ज्यादा पुलिसकर्मी उन्हें उठा कर ले गए।
0: 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज के खिलाफ चेंबूर में गुस्सा फूटा। छात्रों ने लाठीचार्ज के विरोध में प्रोटेस्ट किया। पेपर लीक केस में प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा कि सरकार इस आंदोलन को जितना दबाने की कोशिश करेगी उतना ही आंदोलन उग्र होगा।
18: Yeah! पर लीक केस के बाद पूरे देश में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र के कई शहरों में भी छात्रों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। चेंबूर में भी छात्रों ने 20 जुलाई को जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज के विरोध में प्रोटेस्ट किया, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया।
19: दिल्ली में जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हुआ और उस पर लाठीचार्ज और आंसू गैस फेयर डाले गए, उसके विरोध में अब मुंबई के चेंबूर इलाके में प्रोटेस्ट हो रहा है। और आप देख लीजिए, काफी सारे प्रोटेस्टर्स यहां पे आए थे, लेकिन जितने प्रोटेस्टर्स हैं उससे ज्यादा तादाद में यहां पुलिस के अधिकारी हैं। यहां पे आप देख लीजिए, पुलिसकर्मी इतने ज्यादा हैं। और बताया यही जा रहा है कि जितने प्रोटेस्टर्स थे उनको भी नोटिसेस दी गई। आप लोगों को भी नोटिसेस मिले?
20: हम लोग को भी नोटिसेस मिले।
19: क्या कितने लोगों को दिया गया है, कितने लोगों की कोई उन लोगों को कहां कोई रेस्ट्रिक्ट किया गया उनका मूवमेंट?
20: नहीं, 20-25 से ज्यादा लोगों को नोटिस दिया गया है और 100 से ज्यादा लोगों को फोन कॉल्स आया है कि कल अगर आप प्रोटेस्ट में इन्वॉल्वमेंट हुए तो आपको केसेस हो सकता है इसकी वजह। और काफी सारे गली के बाहर, घर के बाहर पुलिस जिनको बाहर आने नहीं दे रहे।
19: आप लोग को भी कहीं मोर्चा आप लोग निकालना चाह रहे थे, आप लोग को भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया?
20: हम लोग अभी चेंबूर नाका पे प्रोटेस्ट निकालने चाहते थे, बट हम लोग के एरिया के स्टार्टिंग पॉइंट पे ही पुलिस, मतलब जितने ज्यादा आंदोलन करते थे उससे 3 गुना ज्यादा तो पुलिस है यहाँ पे, और वो लोग बोल रहे कि यहाँ से आप बाहर निकल नहीं सकते। बट हम लोग तो मतलब किसी भी तरह का तीव्र आंदोलन, मतलब कोई तोड़फोड़ करने वाले नहीं थे, हम लोग शांति से आंदोलन करने वाले थे। बट जो चेंबूर के जो सीनियर्स है और बाकी भी सीनियर्स लोग है, वो लोग हम लोग को आगे जाने नहीं दे रहे।
19: तो पुलिस अधिकारियों ने आप लोग के मूवमेंट को पूरा रेस्ट्रिक्ट कर दिया, लेकिन आप ये विरोध प्रदर्शन किस लिए कर रहे हैं?
20: जनरली विरोध प्रदर्शन इसलिए कि कल तक हमारा रात में 8 बजे तक कोई ऐसा प्लानिंग नहीं था कि निदर्शन करना है, कोई आंदोलन करना है। बट जो हिसाब से कल हम लोग ने जो दिल्ली जंतर मंतर में जो आंदोलन देखा, जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ, काफी गलत है।
18: मुंबई पुलिस ने लोगों को प्रदर्शन न करने के लिए कई नोटिस भी दिए हैं। पुलिस ने कहा है कि प्रदर्शनकारी सिर्फ एक झुग्गी बस्ती के अंदर ही प्रदर्शन कर सकते हैं।
21: छोटे छोटे बच्चों जब आंदोलन करते हैं तो ये सरकार उनको मारती है, भगाती है, लाठी अलग करती है, तो ये देश में लोकशाही है कि नहीं? और बच्चे क्या मांग रहे हैं? जिसने जो भविष्य करने का जो टाइप एग्जाम है वो पेपर लीक किया, और पेपर मतलब ऐसा ये कितने साल से चल रहा है, तो हमारा कुछ भवितव्य है कि नहीं?
19: आप लोग भी प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे, कितने कार्यकर्ताओं को यहाँ पे, कितने लोगों को यहाँ पे रोका गया है?
21: हमारे सब कार्यकर्ताओं को रोका गया है, नोटिस दिया है, वो बोला है कि आंदोलन करने का नहीं। हम बोले कि लोकशाही मार्ग से हम आंदोलन कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, जमाबंदी आदेश लागू किया है तो आप आंदोलन नहीं कर सकते, ऐसा हम लोग को बोला है। फिर भी हम लोग उधर जाने की कोशिश करेंगे।
18: पेपर लीक केस में प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा कि सरकार इस आंदोलन को जितना दबाने की कोशिश करेगी आंदोलन उतना ही उग्र होगा।
22: हाँ, नाराजगी तो है, जो हुआ है वो जो हमारे जो शिक्षण जो मंत्री है उन्होंने तो राजीनामा देना चाहिए, और जो लाठीचार्ज हुआ है उसके वजह से हमारी नाराजगी है। जो आप स्टूडेंट लोगों को मार रहे हो वो गलत है, वो क्रिमिनल नहीं है, वो स्टूडेंट्स है, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनको उनका हक है प्रोटेस्ट करने का, इसके लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उन्हें मारना नहीं चाहिए, ये गलत है।
19: लेकिन आप लोग भी तो यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और पुलिस वालों ने किस तरह से आप लोग?
22: हमारा कल से चालू है कि प्रोटेस्ट करना है, 2 दिन से हमारे लोग बाहर निकल रहे हैं। रात को पुलिस को किसी ने तो बता दिया है, तो पुलिस सबसे कांटेक्ट कर रही है, सबको नोटिस दे रही है, आप निकल नहीं सकते। कहीं तो लोकशाही को दबाने का एक ये चल रहा है, लोकशाही को दबाने का एक इरादा है उनका, वो दिख रहा है।
19: जैसा यही बात ये कह रहे हैं, दरअसल अगर आप देखें तो इस

0: इस रास्ते पे आप देख लीजिए पुलिस कर्मी इतने ज्यादा भारी तादाद में, और वहीं घर घर जाके नोटिसेस भी दिए गए थे, लोगों को कहा गया था कि वो निकले नहीं। इसके अलावा अगर आप देखें मुंबई में, क्योंकि जहां जहां प्रोटेस्ट हुए हैं वहां पे FIRs रजिस्टर हुई हैं, जिस तरीके से शिवाजी पार्क में भी मुंबई के दादर इलाके में जो वहां प्रोटेस्ट हुआ था उसको लेकर भी 3 FIR हुए हैं। इसके अलावा मेरीन ड्राइव पर, तो तमाम जहां जहां प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहां पर FIR जरूर रजिस्टर कर रही है पुलिस। और यही वजह है कि एक के बाद एक धीरे धीरे छोटे छोटे इलाकों में ही सही, लेकिन प्रोटेस्ट की आवाजें जरूर उठ रही हैं। कैमरामैन किरण सपकाल के साथ विद्या, मुंबई आज तक।
1: और अब बात करेंगे कुदरत के बादल बॉम्ब के बारे में, क्योंकि पहाड़ों से लेकर मैदानों तक आसमान से ऐसी आफत बरस रही है कि देश के कई इलाकों में त्राहिमाम मच गया है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक बारिश का ब्रेक फेल है और जगह जगह कुदरत के बादल फट रहे हैं, तो वहीं मैदानी इलाकों में भी मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं।
2: सैलाब में जिंदगी और मौत की सीधी जंग, कहीं उफंती लहरों के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन, कहीं दहकते पहाड़ों पर जिंदगी की लड़ाई। कहीं सैलाब के बीच मौसम से सीधी टक्कर। कहीं कागज के तिनके की तरह बही गाड़ियां। पहाड़ों से लेकर मैदान तक तबाही ही तबाही। जगह जगह फट रहा है बादल बम। सैलाब अटैक जारी, मानसूनी संकट काल भारी। ये तस्वीरें राजौरी के थामंडी इलाके में हुए रेस्क्यू ऑपरेशन की हैं। भारतीय सेना की 61 राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों ने उफानती लहरों के बीच 13 स्थानीय निवासियों की जान बचाई। हुआ यूं कि भारी बारिश के चलते पहाड़ी नाले में अचानक बाढ़ आने से लोग फंस गए। आप देख सकते हैं कि नाले में पानी का बहाव कितना तेज है। सेना के जवानों ने उफनते सैलाब के आर पार एक रस्सी बांधी और फंसे हुए हर नागरिक को एक एक करके सुरक्षित बाहर निकाला। रेस्क्यू किए गए लोगों में 6 महिलाएं, 5 बच्चे और 2 बुजुर्ग शामिल हैं। ये रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत खतरनाक हालात में चलाया गया। क्योंकि भारी बारिश के चलते नाले का बहाव लगातार बढ़ रहा था, ऐसे में रेस्क्यू टीम ने जान पर खेलकर लोगों को बचाया। मुश्किल की घड़ी में देवदूत बनकर खड़े हुए सेना के जवानों ने 13 जिंदगियों को बचा लिया। जिंदगी और मौत की सीधी जंग। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की हैं। रिकॉर्ड तोड़ बारिश का कहर ऐसा है कि पहाड़ दरक रहे हैं, सड़कें पत्थरों का टीला बन चुकी हैं, तो भूस्खलन के चलते यातायात ठप है। कुदरत की इसी क्रोध लीला का शिकार ये बस बन सकती थी। दरअसल अचानक पहाड़ी से पत्थर बरसने लगे। मौके पर मौजूद लोगों ने वक्त रहते बस को रुकवा दिया। आप देख सकते हैं कि मलबे में यही बस फंस गई थी जिसमें कई यात्री सवार थे। हुआ यूं कि भूस्खलन के बाद मलबा बस के सामने आ गया। बस में सवार यात्रियों की सांसें अटक गई थी। गनीमत रही कि बस पलटी नहीं और सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकल आए।
3: हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश कहर बरपा रही है। ऐसा ही मंजर हिमाचल के जिला चंबा में भी देखने को मिल रहा है। रेड अलर्ट के चलते कल रात से लगातार बारिश हो रही है। इससे जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं, रास्ते बंद पड़े हैं और कई जगह जो है सड़क पूरी तरह से बह गई है। चंबा जिला के पांगी में बादल फटने से कई मजदूरों को

0: रेस्क्यू भी किया गया है। वहीं अगर बात करें चंबा जिला के भटियात क्षेत्र की, तो वहां पे नूरपुर को जोड़ने वाली, जिला कांगड़ा को जोड़ने वाली, चंबा से जिला कांगड़ा को जोड़ने वाली लाहड़ू नूरपुर सड़क जो है उसका लगभग 200 मीटर हिस्सा जो है वो पूरी तरह से चक्की नदी में समा गया है। बारिश का कहर जो है लगातार जारी है और अभी आने वाले दिनों में भी ऐसे ही बारिश का अनुमान बताया जा रहा है।
1: सैलाब से जिंदगी की जंग, ये तस्वीरें चंबा के कलाह नाले की हैं। तस्वीरों में कैद मंजर रोंगटे खड़े करने वाला है। आसपास सैलाब का कहर और एक चट्टान पर तीन मजदूर फंसे हुए हैं। अचानक नाले का जल स्तर बढ़ने की वजह से तीन मजदूरों को बचाने का मौका नहीं मिला। तीनों मजदूर बीच जलधारा में फंस गए। जबकि उनके कुछ दूसरे साथी दूसरे छोर पर मौजूद थे। सैलाब में फंसे लोगों के पास तैरकर बचने का रास्ता नहीं था, क्योंकि पानी का बहाव उन्हें बेमौत मार सकता था। जबकि हर मिनट बढ़ता जल स्तर उनकी सांसें अटकाने के लिए काफी था। सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। आप देख सकते हैं मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने जलधारा में फंसे मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। एक बड़ी लकड़ी को एक चट्टान से दूसरी चट्टान के बीच रखा गया। उसके बाद तीनों मजदूरों को सुरक्षित बचा लिया गया। चश्मदीदों के मुताबिक बादल फटने के बाद नाले में अचानक बाढ़ आ गई थी। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बरसात के मौसम में नदी नालों और खड्डों के आसपास आवाजाही से बचें, क्योंकि अचानक जल स्तर बढ़ने का खतरा बना रहता है।
2: और इसी के साथ हम यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

राहुल गांधी ने जारी किया वीडियो संदेश, केंद्र पर साधा निशाना, बोले भारत की शिक्षा व्यवस्था हो रही है कमजोर, धर्मेंद्र प्रधान का मांगा इस्तीफा, प्रियंका समेत सभी कांग्रेस के नेता हिरासत से छोड़े गए। नई दिल्ली के मंदिर मार्ग थाने में कांग्रेस के नेताओं से जाकर मिली सोनिया गांधी, रिहाई के बाद बोली प्रियंका, बच्चों की बात क्यों नहीं सुनी जा रही। मोदी सरकार पर राहुल और प्रियंका का बड़ा हमला, लोकतंत्र के लिए बताया खतरनाक, जितेंद्र सिंह का आरोप, नेता विपक्ष ने बदली अपनी बात, धर्मेंद्र प्रधान बोले राहुल गांधी का मकसद टकराव करना, नितिन नवीन ने भी निंदा की। राहुल के धरने के बाद आम आदमी पार्टी ने इसे बताया बीजेपी से मिलीभगत, कहा यह सीजेपी के प्रदर्शन को कमजोर करने की साजिश है, आतिशी ने किया कटाक्ष, क्या जुगलबंदी है। और संसद हंगामे के बीच प्रधानमंत्री ने एनडीए मीटिंग में दिया कड़ा संदेश, कहा नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर नहीं होगा बर्दाश्त, पेपर लीक पर लिया कड़ा एक्शन।

0: संसद का मानसून सत्र शुरू होगा तो दिल्ली में इतना बड़ा सियासी भूचाल आ जाएगा, ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा। मानसून सत्र के पहले दिन कांग्रेस जनता पार्टी के जंतर मंतर से संसद चलो मार्च पर हंगामा, पुलिस से भिड़ंत, और अगले दिन प्रधानमंत्री आवास के पास कांग्रेस और विपक्ष का हाई वोल्टेज हंगामा और साथ ही साथ धरना प्रदर्शन भी। पुलिस ने पहले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी नेताओं को हिरासत में लिया, बाद में सबको छोड़ दिया गया। नीट पेपर लीक पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग से शुरू हुआ यह विरोध प्रदर्शन कैसे प्रधानमंत्री आवास यानी कि 7 लोक कल्याण मार्ग तक पहुंच गया, आइए आपको दिखाते हैं।
1: नीट पेपर लीक की लड़ाई पीएम आवास पर धरने तक आई। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर विपक्ष अड़ा, सड़क पर एक तूफान खड़ा। कांग्रेस का हाई वोल्टेज हंगामा, पुलिस ने धरना प्रदर्शन से हटाया। राहुल गांधी, प्रियंका और अखिलेश यादव समेत कई नेता हिरासत में। प्रधानमंत्री आवास के पास विपक्ष का हंगामा, पूरी रणनीति क्या है? दिल्ली की सत्ता के सबसे ताकतवर केंद्र यानी 7 लोक कल्याण मार्ग यानी प्रधानमंत्री आवास के बहाने पर जब देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी अपने दिग्गजों की पूरी फौज के साथ सड़क पर उतरती है तो ऐसा हंगामा मचता है कि दिल्ली से लेकर पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत कांग्रेस और विपक्ष के कई बड़े नेताओं को न सिर्फ धरने से उठाया बल्कि इन सबको हिरासत में भी ले लिया और उन्हें बस में भर कर थाने ले गए।
2: यहाँ पे जो तस्वीर 7 RCR यानी कि लोक कल्याण मार्ग में घट रही है, पीछे हमारे देखिए अखिलेश यादव और राहुल गांधी को कुछ इस तरीके से बस में भर के ले जाया जा रहा है। अखिलेश यादव हाथ देने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी डिटेन कर लिया गया है। मुकुल वासनिक वहाँ पे नजर आ रहे हैं और तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पे नारेबाजी लगाते हुए इस बस पे आगे जाते हुए आइए।
1: आपको बता दें कि जब राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं को प्रधानमंत्री आवास के पास धरने से उठाने के लिए पुलिस ने घेरा बनाया और राहुल गांधी को हटाने की कोशिश की तो वो जमीन पर लेट जाते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे राहुल गांधी सड़क पर लेटे हुए हैं और पुलिस के साथ उनकी काफी देर तक जोर आजमाइश चलती रहती है। आखिर में पुलिस धरने पर बैठे नेताओं को उठाकर ले जाती है।
3: डेमोक्रेसी इन इंडिया इज हैपनिंग राइट नाउ। डेमोक्रेसी इन इंडिया इज हैपनिंग राइट नाउ।
4: कायर हैं, डरते हैं,
5: बात कर रही है, बात कर रही है।
4: हम नहीं डरते इनसे, ये हमसे
5: डरो यार। अरे बात कर रही है वो यार।
1: आपको बता दें कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव को दिल्ली पुलिस हिरासत में लेकर अलग अलग थानों में जाती है। इस बीच दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर की सुरक्षा भी बढ़ा दी जाती है, हर गेट पर पुलिस की भारी तैनाती कर दी जाती है।
6: गुंडई और राजनीति गुंडागर्दी की, उसका अंत यहाँ नहीं है। ये एक नई क्रांति की शुरुआत है राहुल गांधी के नेतृत्व में। ये क्रांति अब बड़ी ज्वाला बनकर धधकेगी।
7: आज फिर से दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्री के इशारे पर, प्रधानमंत्री के इशारे पर बहुत ही कायरता पूर्वक तरीके से हमारे नेता राहुल गांधी को घसीटकर हिरासत में लिया। हमारी नेता प्रियंका गांधी को बदतमीजी कर और घसीटकर बस में जबरदस्ती ठूसा।
1: हिरासत में लेने के बाद राहुल गांधी का पहला एक्स पोस्ट आता है जिसमें वो लिखते हैं कि मोदी जी हर जोर आजमा लो, सारी ताकत लगा लो, छात्रों के इंसाफ की ये लड़ाई अब रोके ना रुकेगी। पीएम आवास के पास दोपहर करीब 3:30 बजे से शुरू हुआ धरना प्रदर्शन शाम 6 बजे तक एक बड़े सियासी हंगामे में तब्दील हो जाता है। अब उसकी पूरी टाइमलाइन आपको दिखाते हैं। दोपहर करीब 3:30 बजे पीएम आवास के पास कांग्रेस का धरना, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी बाकी सांसदों नेताओं के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर से बैठक करके अचानक मार्च करते हुए निकल पड़ते हैं और सात लोक कल्याण मार्ग पर यानी प्रधानमंत्री के आवास वाली सड़क पर पीएम आवास से कुछ दूरी पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत बाकी कांग्रेस के दिग्गज नेता धरने पर बैठ जाते हैं। राहुल गांधी जब धरना देते हैं तो वहां पर देखा गया कि वो सांकेतिक रूप से हथकड़ी वाला प्रदर्शन करते हैं, जहां राहुल गांधी समेत दूसरे कांग्रेस नेता हाथ में लॉक लगाने वाला थ्रेड बांध लेते हैं। अब राजनीतिक सवाल ये आता है कि अचानक पीएम आवास के पास पहुंचकर राहुल गांधी धरना क्यों देते हैं, उनकी मांग क्या है?
8: हमारे नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में ने इस मांग की है, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में ये मांग की है, गृहमंत्री आए, दोनों सदनों में बयान दे, उस पर चर्चा हो, जिस तरीके से हमारे लोकतंत्र और हमारे संविधान पर हत्या हो रही है, जो हमारे युवाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उनके भविष्य पर अंधेरा छाया हुआ है, उस पर एक बयान दे, और हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग हम 20 करीब 45 दिन से कर।
1: लेकिन जब पीएम आवास के पास ही राहुल गांधी धरना देने लगते हैं, तो इन सब के बीच दोपहर 3:45 पर राहुल गांधी को धरने से हटाने की अपील। अचानक दिल्ली पुलिस वहां पहुंचती है और राहुल गांधी से धरने से हटने के लिए कहा जाता है, लेकिन वो इनकार कर देते हैं। सरकार की तरफ से जितेंद्र सिंह भी राहुल गांधी से बातचीत करने के लिए पहुंचते हैं और फिर कांग्रेस के नेताओं को पुलिस हिरासत में लेकर पीएम आवास के पास वाले धरने से हटाना शुरू कर देती है। शाम 4 बजे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह राहुल गांधी से बात करने पहुंचते हैं। जी हां, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह खुद राहुल गांधी से बात करने पहुंच जाते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को लौटना पड़ता है। वो कुछ बोलते नहीं हैं। पता ये चलता है कि राहुल गांधी ने धरने से हटने से मना कर दिया है।
9: छात्रों को, युवाओं को न्याय नहीं मिल जाता, कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता, हम लोग यहाँ से नहीं हिलने वाले। दिन हो या रात, नरेंद्र मोदी को बाहर आना पड़ेगा। पूरी कांग्रेस पार्टी जो जहाँ है, यहाँ आए और धरने पर बैठ जाए, नहीं हिलेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा।
1: शाम 5:18 राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। राहुल गांधी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं और लिखते हैं कि छात्रों पर हमला हर भारतीय परिवार पर हमला है। प्रधानमंत्री मोदी को लगता है कि वो बिना जवाब दिए, बिना किसी नतीजे का सामना किए बच निकलेंगे, नहीं कर पाएंगे, इस बात तो बिल्कुल नहीं। इसके बाद राहुल गांधी ने इस पोस्ट में अपील कर दी कि जो भी मानता है कि छात्रों को न्याय मिलना चाहिए, वो पीएम आवास के सामने धरने में शामिल हो। कांग्रेस के इस धरने में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल हो जाते हैं। उनके साथ विपक्ष के कई और नेता भी इस धरना प्रदर्शन में जुटते हैं। आज तक ब्यूरो।
0: हंगामा लगातार जारी है और आपको बता दें कि दोनों ही तरफ से लगातार बयान भी जारी किया जा रहा है। राहुल गांधी की तरफ से भी छात्रों के इस आंदोलन पर एक बयान जारी किया गया है। छात्रों के इस मुद्दे को देश के सामने लाने की कोशिश की है, ये राहुल गांधी ने कहा है। और क्या कहा है नेता विपक्ष ने, सुनिए।
10: दूसरा की स्टूडेंट्स को जिन्होंने मारा है, जिन्होंने ह्यूमिलिएट किया है, उन पर एक्शन लिया जाए और जो भी स्टूडेंट्स पर केसेस हैं उनको हटाया जाए। फाइनली पूरी ऑपोजिशन चाहती है कि ये जो इशू है, देश का सबसे बड़ा इशू है, इस पे कल लोकसभा में, राज्यसभा में डिबेट हो और हम अपनी बात रख सकें। मेरा मोदी जी से एक सजेशन है, एज एलओपी, कल जो हुआ, जो आपकी सरकार ने, आपके होम मिनिस्टर ने किया, उसके लिए आप देश के स्टूडेंट से माफी मांगिए और जल्दी से जल्दी एग्जामिनेशन सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम्स पर रिफॉर्म शुरू कीजिए। आप सब ने हमारा समर्थन किया, सारे लोग जो स्टूडेंट्स की इशू के लिए लड़ रहे हैं, एक साथ लड़ रहे हैं, मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ।
11: This morning I went and met the speaker of the Lok Sabha. And I said to him that
0: sir, आपने नेता विपक्ष के नाते उन्होंने तमाम बातें कही. उन्होंने कहा भारत की शिक्षा व्यवस्था कमजोर हो रही है, जिस पर काम करने की जरूरत है. धर्मेंद्र प्रधान का राहुल गांधी ने इस्तीफा मांगा है सीधे सीधे. उन्होंने कहा कि माफी मांगनी चाहिए सरकार को जिस तरीके से छात्रों के साथ व्यवहार किया गया है. और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बहुत जरूरी है कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसमें सुधार होना चाहिए, परीक्षा सिस्टम सुधरना चाहिए. एक बार फिर से आपको सुनाते हैं कि क्या कहा गया है राहुल गांधी की तरफ से.
10: और जो स्टूडेंट्स की इशू है, जो देश के लिए सबसे जरूरी इशू है और जो उनके खिलाफ किया गया है वो हम देखते चलो. डीजल धर्मेंद्र प्रधान दूसरा की absolutely nothing wrong with asking these questions. Students की मांगे हैं, पहला धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह का रेजिग्नेशन, दूसरा की स्टूडेंट्स को जिन्होंने मारा है, जिन्होंने ह्यूमिलिएट किया है उन पर एक्शन लिया जाए और जो भी स्टूडेंट्स पर केसेस हैं उनको हटाया जाए. फाइनली पूरी ऑपोजिशन चाहती है कि ये जो इशू है, देश का सबसे बड़ा इशू है, इस पे कल लोकसभा में राज्यसभा में डिबेट हो और हम अपनी बात रख सकें. मेरा मोदी जी से एक सजेशन है, एज एलओपी कल जो हुआ, जो आपकी सरकार ने, आपके होम मिनिस्टर ने किया, उसके लिए आप देश के स्टूडेंट से माफी मांगिए और जल्दी से जल्दी एग्जामिनेशन सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम्स पर रिफॉर्म शुरू कीजिए. आप सब ने हमारा समर्थन किया, सारे लोग जो स्टूडेंट्स की इशू के लिए लड़ रहे हैं, एक साथ लड़ रहे हैं, मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं.
0: तो जबरदस्त संसद के बाहर हंगामा और गहमागहमी पूरे दिन चली. और आपको बता दें कि उसके बाद कांग्रेस के बड़े लीडर्स को, विपक्ष के बड़े लीडर्स को कहना चाहिए कि हिरासत में ले लिया गया था. उसके बाद उनकी रिहाई की गई. रिहाई के बाद प्रियंका गांधी ने क्या कहा सुनिए.
12: जो हमारे बच्चे, हमारे युवा हैं, हमारे देश के भविष्य हैं, उनकी बात सुनने में क्या हर्ज थी. वो एक जेन्युइन इशू को लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं. वो जो उनके साथ हो रहा है वो उसका दुख लेकर, गुस्सा लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं. तो जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम सारे, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी आवाज हम ऊंची करें और उनकी आवाज हम बुलंद करें और उनके सपोर्ट में हम खड़े हैं, क्योंकि उनके साथ जो कल हुआ वो एकदम गलत हुआ. ये एक लोकतंत्र है, इट्स अ डेमोक्रेसी. इन अ डेमोक्रेसी राइट टू प्रोटेस्ट इट्स अ फंडामेंटल राइट. नोबडी हैज द राइट टू प्रोटेस्ट.
0: और अब बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री आवास के पास से धरना प्रदर्शन हटवाने के लिए और बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और गृह सचिव गोविंद मोहन राहुल गांधी से मिलने जाते हैं और फिर बात नहीं बनती. जितेंद्र सिंह ने बताया कि राहुल गांधी की मांग थी कि नीट पर संसद में चर्चा हो. राहुल गांधी की यह मांग मान ली गई थी, लेकिन राहुल अपनी बात से मुकर गए. और उसके बाद राहुल गांधी बोले कि अब उनकी दो मांगे हैं, पहली नीट पर संसद में चर्चा होनी चाहिए, दूसरा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए. सरकार कह रही है कि जब छात्रों के हर मुद्दे पर संसद में वो चर्चा के लिए तैयार हैं तो फिर कांग्रेस मुकर क्यों रही है.
13: प्रधानमंत्री आवास के पास लोक कल्याण मार्ग पर दोपहर 4:15 शुरू हुए कांग्रेस के धरने में प्रियंका गांधी नारे लगवाती हैं. तो इस बीच इस सवाल का जवाब सब जानना चाहते हैं कि आखिर सरकार ने तुरंत जब केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को राहुल गांधी से बात करने भेजा तो राहुल क्यों नहीं माने. यहाँ पर आखिर क्या बात हुई. जवाब जो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दिया है उसे उनकी सोशल मीडिया पोस्ट से देखिए. जितेंद्र सिंह ने लिखा कि कुछ समय पहले पता चला कि कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अचानक अकबर रोड के पास एक जगह पर धरने पर बैठ गए. जितेंद्र सिंह लिखते हैं कि सरकार ने उन्हें और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन को राहुल गांधी से बात करने के लिए भेजा. जितेंद्र सिंह ने राहुल गांधी से अनुरोध किया कि वो अपना धरना खत्म कर दें क्योंकि ये जगह धरने की नहीं है, यहाँ पर धरना देने से आम लोगों को काफी मुश्किल होगी. राहुल गांधी ने ये मांग रखी थी कि अगर सरकार संसद में नीट और उससे संबंधित आंदोलन के साथ जुड़े सभी विषय पर चर्चा के लिए मान जाती है तो वो अपना धरना तुरंत खत्म कर देंगे. कुछ ही देरी में सरकार के शीर्ष नेतृत्व की अनुमति लेने के बाद राहुल गांधी को ये भरोसा जितेंद्र सिंह की तरफ से दिया गया कि उनकी मांग को मान लिया गया है और सरकार नीट और उससे संबंधित आंदोलन के साथ जुड़े सभी विषय पर संसद में चर्चा करने को तैयार है। जितेंद्र सिंह के मुताबिक राहुल गांधी को जब ये सूचना पहुंचाई गई, तो उन्होंने कहा कि वो इतने पर नहीं मानेंगे बल्कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का भी भरोसा चाहा। राहुल गांधी ने कहा कि अब उनकी दो मांगे हैं, संसद में चर्चा और केंद्रीय शिक्षा मंत्री यानी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के मुताबिक जब राहुल गांधी को याद दिलाया गया कि पहले उन्होंने केवल चर्चा की ही मांग की थी, तब राहुल गांधी ने कहा कि अब उनकी मांगें बदल गईं। जब राहुल गांधी को विनम्रता से ये बताने की कोशिश की गई कि उनके जैसे सीनियर लीडर को इतनी जल्दी अपनी बात से मुकर जाना शोभा नहीं देता, तो जितेंद्र सिंह लिखते हैं कि राहुल गांधी ने कहा कि ये उनकी मर्जी है। जब गृह सचिव ने राहुल गांधी को ये समझाने की कोशिश की कि ये जगह धरने के लिए अनुकूल नहीं, तो जितेंद्र सिंह के मुताबिक राहुल गांधी ने जवाब दिया कि ये भी उनकी मर्जी है, वो जहां बैठे। इसके बाद जितेंद्र सिंह ने लिखा है कि राहुल गांधी जैसे सीनियर नेता और नेता प्रतिपक्ष का अपनी बात से मुकर जाना दुर्भाग्यपूर्ण है और लोकतंत्र की हर मर्यादा के विपरीत है। जितेंद्र सिंह साफ कहते हैं कि सरकार नीट और उससे जुड़े आंदोलन के साथ सभी विषयों पर संसद में चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन इसके विपरीत कांग्रेस ने अब तक इस गंभीर विषय पर औपचारिक चर्चा करने का कोई नोटिस नहीं दिया। जितेंद्र सिंह लिखते हैं कि राहुल गांधी का व्यवहार लोकतंत्र के उसूलों से मेल नहीं खाता है।
14: सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, सरकार तैयार है संसद में चर्चा करने के लिए, नीट को लेकर के भी, उसके साथ संबंधित विषयों को लेकर के भी, जो आंदोलन है उसको लेकर के भी। हमने जब ये बात वहीं पर राहुल गांधी जी के आगे दोबारा रखी तो बोले कि साहब मुझे तो।
0: और अब बात करेंगे कुदरत के बादल बॉम्ब के बारे में, क्योंकि पहाड़ों से लेकर मैदानों तक आसमान से ऐसी आफत बरस रही है कि देश के कई इलाकों में त्राहिमाम मच गया है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक बारिश का ब्रेक फेल है और जगह जगह कुदरत के बादल फट रहे हैं, तो वहीं मैदानी इलाकों में भी मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। और इसी के साथ हम यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

राहुल गांधी ने जारी किया वीडियो संदेश, केंद्र पर साधा निशाना, बोले भारत की शिक्षा व्यवस्था हो रही है कमजोर, धर्मेंद्र प्रधान का मांगा इस्तीफा, प्रियंका समेत सभी कांग्रेस के नेता हिरासत से छोड़े गए। नई दिल्ली के मंदिर मार्ग थाने में कांग्रेस के नेताओं से जाकर मिली सोनिया गांधी, रिहाई के बाद बोली प्रियंका, बच्चों की बात क्यों नहीं सुनी जा रही। मोदी सरकार पर राहुल और प्रियंका का बड़ा हमला, लोकतंत्र के लिए बताया खतरनाक, जितेंद्र सिंह का आरोप, नेता विपक्ष ने बदली अपनी बात, धर्मेंद्र प्रधान बोले राहुल गांधी का मकसद टकराव करना, नितिन नवीन ने भी निंदा की। राहुल के धरने के बाद आम आदमी पार्टी ने इसे बताया बीजेपी से मिलीभगत, कहा यह सीजेपी के प्रदर्शन को कमजोर करने की साजिश है, आतिशी ने किया कटाक्ष, क्या जुगलबंदी है। और संसद हंगामे के बीच प्रधानमंत्री ने एनडीए मीटिंग में दिया कड़ा संदेश, कहा नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर नहीं होगा बर्दाश्त, पेपर लीक पर लिया कड़ा एक्शन।

0: संसद का मानसून सत्र शुरू होगा तो दिल्ली में इतना बड़ा सियासी भूचाल आ जाएगा, ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा। मानसून सत्र के पहले दिन कांग्रेस जनता पार्टी के जंतर मंतर से संसद चलो मार्च पर हंगामा, पुलिस से भिड़ंत, और अगले दिन प्रधानमंत्री आवास के पास कांग्रेस और विपक्ष का हाई वोल्टेज हंगामा और साथ ही साथ धरना प्रदर्शन भी। पुलिस ने पहले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी नेताओं को हिरासत में लिया, बाद में सबको छोड़ दिया गया। नीट पेपर लीक पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग से शुरू हुआ ये विरोध प्रदर्शन। कैसे प्रधानमंत्री आवास यानी कि सात लोक कल्याण मार्ग तक पहुंच गया, आइए आपको दिखाते हैं।
1: नीट पेपर लीक की लड़ाई पीएम आवास पर धरने तक आई। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर विपक्ष अड़ा, सड़क पर एक तूफान खड़ा। कांग्रेस का हाई वोल्टेज हंगामा, पुलिस ने धरना प्रदर्शन से हटाया। राहुल गांधी, प्रियंका और अखिलेश यादव समेत कई नेता हिरासत में। प्रधानमंत्री आवास के पास विपक्ष का हंगामा, पूरी रणनीति क्या है? दिल्ली की सत्ता के सबसे ताकतवर केंद्र यानी सात लोक कल्याण मार्ग यानी प्रधानमंत्री आवास के बहाने पर जब देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी अपने दिग्गजों की पूरी फौज के साथ सड़क पर उतरती है तो ऐसा हंगामा मचता है कि दिल्ली से लेकर पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत कांग्रेस और विपक्ष के कई बड़े नेताओं को न सिर्फ धरने से उठाया बल्कि इन सबको हिरासत में भी ले लिया और उन्हें बस में भर कर थाने ले गए।
2: यहाँ पे जो तस्वीर 7RCR यानी कि लोक कल्याण मार्ग में घट रही है, पीछे हमारे देखिए अखिलेश यादव और राहुल गांधी को कुछ इस तरीके से बस में भर के ले जाया जा रहा है। अखिलेश यादव हाथ देने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी डिटेन कर लिया गया है। मुकुल वासनिक वहाँ पे नजर आ रहे हैं और तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पे नारेबाजी लगाते हुए इस बस पे आगे जाते हुए आइए।
1: आपको बता दें कि जब राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं को प्रधानमंत्री आवास के पास धरने से उठाने के लिए पुलिस ने घेरा बनाया और राहुल गांधी को हटाने की कोशिश की तो वो जमीन पर लेट जाते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे राहुल गांधी सड़क पर लेटे हुए हैं और पुलिस के साथ उनकी काफी देर तक जोर आजमाइश चलती रहती है। आखिर में पुलिस धरने पर बैठे नेताओं को उठाकर ले जाती है।
3: डेमोक्रेसी इन इंडिया इज हैपनिंग राइट नाउ। डेमोक्रेसी इन इंडिया इज हैपनिंग राइट नाउ।
4: कायर हैं, डरते हैं,
5: बात कर रही है, बात कर रही है।
4: हम नहीं डरते इनसे, ये हमसे
5: डरो यार। अरे बात कर रही है वो यार।
1: आपको बता दें कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव को दिल्ली पुलिस हिरासत में लेकर अलग अलग थानों में जाती है। इस बीच दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर की सुरक्षा भी बढ़ा दी जाती है, हर गेट पर पुलिस की भारी तैनाती कर दी जाती है।
6: गुंडई और राजनीति गुंडागर्दी की, उसका अंत यहाँ नहीं है। ये एक नई क्रांति की शुरुआत है राहुल गांधी के नेतृत्व में। ये क्रांति अब बड़ी ज्वाला बनकर धधकेगी।
7: आज फिर से दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्री के इशारे पर, प्रधानमंत्री के इशारे पर बहुत ही कायरता पूर्वक तरीके से हमारे नेता राहुल गांधी को घसीटकर हिरासत में लिया। हमारी नेता प्रियंका गांधी को बदतमीजी कर और घसीटकर बस में जबरदस्ती ठूसा।
1: हिरासत में लेने के बाद राहुल गांधी का पहला एक्स पोस्ट आता है जिसमें वो लिखते हैं कि मोदी जी हर जोर आजमा लो, सारी ताकत लगा लो, छात्रों के इंसाफ की ये लड़ाई अब रोके ना रुकेगी। पीएम आवास के पास दोपहर करीब 3:30 बजे से शुरू हुआ धरना प्रदर्शन शाम 6 बजे तक एक बड़े सियासी हंगामे में तब्दील हो जाता है। अब उसकी पूरी टाइमलाइन आपको दिखाते हैं। दोपहर करीब 3:30 बजे पीएम आवास के पास कांग्रेस का धरना, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, बाकी सांसदों नेताओं के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर से बैठक करके अचानक मार्च करते हुए निकल पड़ते हैं और सात लोक कल्याण मार्ग पर यानी प्रधानमंत्री के आवास वाली सड़क पर पीएम आवास से कुछ दूरी पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत बाकी कांग्रेस के दिग्गज नेता धरने पर बैठ जाते हैं। राहुल गांधी जब धरना देते हैं तो वहां पर देखा गया कि वो सांकेतिक रूप से हथकड़ी वाला प्रदर्शन करते हैं, जहां राहुल गांधी समेत दूसरे कांग्रेस नेता हाथ में लॉक लगाने वाला थ्रेड बांध लेते हैं। अब राजनीतिक सवाल ये आता है कि अचानक पीएम आवास के पास पहुंचकर राहुल गांधी धरना क्यों देते हैं, उनकी मांग क्या है?
8: हमारे नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में ने इस मांग की है, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में ये मांग की है, गृहमंत्री आए, दोनों सदनों में बयान दे, उस पर चर्चा हो, जिस तरीके से हमारे लोकतंत्र और हमारे संविधान पर हत्या हो रही है, जो हमारे युवाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उनके भविष्य पर अंधेरा छाया हुआ है, उस पर एक बयान दे। और हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग हम 20 करीब 45 दिन से कर।
1: लेकिन जब पीएम आवास के पास ही राहुल गांधी धरना देने लगते हैं, तो इन सब के बीच दोपहर 3:45 पर राहुल गांधी को धरने से हटाने की अपील। अचानक दिल्ली पुलिस वहां पहुंचती है और राहुल गांधी से धरने से हटने के लिए कहा जाता है, लेकिन वो इनकार कर देते हैं। सरकार की तरफ से जितेंद्र सिंह भी राहुल गांधी से बातचीत करने के लिए पहुंचते हैं और फिर कांग्रेस के नेताओं को पुलिस हिरासत में लेकर पीएम आवास के पास वाले धरने से हटाना शुरू कर देती है। शाम 4 बजे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह राहुल गांधी से बात करने पहुंचते हैं। जी हां, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह खुद राहुल गांधी से बात करने पहुंच जाते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को लौटना पड़ता है। वो कुछ बोलते नहीं हैं। पता ये चलता है कि राहुल गांधी ने धरने से हटने से मना कर दिया है।
9: छात्रों को, युवाओं को न्याय नहीं मिल जाता, कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता, हम लोग यहाँ से नहीं हिलने वाले। दिन हो या रात, नरेंद्र मोदी को बाहर आना पड़ेगा। पूरी कांग्रेस पार्टी जो जहाँ है, यहाँ आए और धरने पर बैठ जाए, नहीं हिलेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा।
1: शाम 5:18 राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। राहुल गांधी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं और लिखते हैं कि छात्रों पर हमला हर भारतीय परिवार पर हमला है। प्रधानमंत्री मोदी को लगता है कि वो बिना जवाब दिए, बिना किसी नतीजे का सामना किए बच निकलेंगे, नहीं कर पाएंगे, इस बात तो बिल्कुल नहीं। इसके बाद राहुल गांधी ने इस पोस्ट में अपील कर दी कि जो भी मानता है कि छात्रों को न्याय मिलना चाहिए, वो पीएम आवास के सामने धरने में शामिल हो। कांग्रेस के इस धरने में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल हो जाते हैं। उनके साथ विपक्ष के कई और नेता भी इस धरना प्रदर्शन में जुटते हैं। आज तक ब्यूरो।
0: हंगामा लगातार जारी है और आपको बता दें कि दोनों ही तरफ से लगातार बयान भी जारी किए जा रहे हैं। राहुल गांधी की तरफ से भी छात्रों के इस आंदोलन पर एक बयान जारी किया गया है। छात्रों के इस मुद्दे को देश के सामने लाने की कोशिश की है, ये राहुल गांधी ने कहा है। और क्या कहा है नेता विपक्ष ने, सुनिए।
10: दूसरा की स्टूडेंट्स को जिन्होंने मारा है, जिन्होंने ह्यूमिलिएट किया है, उन पर एक्शन लिया जाए और जो भी स्टूडेंट्स पर केसेस हैं उनको हटाया जाए। फाइनली पूरी ऑपोजिशन चाहती है कि ये जो इशू है, देश का सबसे बड़ा इशू है, इस पे कल लोकसभा में, राज्यसभा में डिबेट हो और हम अपनी बात रख सकें। मेरा मोदी जी से एक सजेशन है, एज LOP, कल जो हुआ, जो आपकी सरकार ने, आपके होम मिनिस्टर ने किया, उसके लिए आप देश के स्टूडेंट से माफी मांगिए और जल्दी से जल्दी एग्जामिनेशन सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम्स पर रिफॉर्म शुरू कीजिए। आप सब ने हमारा समर्थन किया, सारे लोग जो स्टूडेंट्स की इशू के लिए लड़ रहे हैं, एक साथ लड़ रहे हैं, मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ।
11: This morning I went and met the speaker of the Lok Sabha. And I said to him that
0: sir, आपने नेता विपक्ष के नाते उन्होंने तमाम बातें कही. उन्होंने कहा भारत की शिक्षा व्यवस्था कमजोर हो रही है, जिस पर काम करने की जरूरत है. धर्मेंद्र प्रधान का राहुल गांधी ने इस्तीफा मांगा है सीधे सीधे. उन्होंने कहा कि माफी मांगनी चाहिए सरकार को जिस तरीके से छात्रों के साथ व्यवहार किया गया है. और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बहुत जरूरी है कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसमें सुधार होना चाहिए, परीक्षा सिस्टम सुधरना चाहिए. एक बार फिर से आपको सुनाते हैं कि क्या कहा गया है राहुल गांधी की तरफ से.
10: और जो स्टूडेंट्स की इशू है, जो देश के लिए सबसे जरूरी इशू है और जो उनके खिलाफ किया गया है, वो हम देखते चलो. डीजल धर्मेंद्र प्रधान दूसरा की absolutely nothing wrong with asking these questions. Students की मांगे हैं, पहला धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह का रेजिग्नेशन, दूसरा की स्टूडेंट्स को जिन्होंने मारा है, जिन्होंने ह्यूमिलिएट किया है, उन पर एक्शन लिया जाए और जो भी स्टूडेंट्स पर केसेस हैं उनको हटाया जाए. फाइनली पूरी ऑपोजिशन चाहती है कि ये जो इशू है, देश का सबसे बड़ा इशू है, इस पे कल लोकसभा में राज्यसभा में डिबेट हो और हम अपनी बात रख सकें. मेरा मोदी जी से एक सजेशन है, एज एलओपी कल जो हुआ, जो आपकी सरकार ने, आपके होम मिनिस्टर ने किया, उसके लिए आप देश के स्टूडेंट से माफी मांगिए और जल्दी से जल्दी एग्जामिनेशन सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम्स पर रिफॉर्म शुरू कीजिए. आप सब ने हमारा समर्थन किया, सारे लोग जो स्टूडेंट्स की इशू के लिए लड़ रहे हैं, एक साथ लड़ रहे हैं, मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं.
0: तो जबरदस्त संसद के बाहर हंगामा और गहमागहमी पूरे दिन चली. और आपको बता दें कि उसके बाद कांग्रेस के बड़े लीडर्स को, विपक्ष के बड़े लीडर्स को कहना चाहिए कि हिरासत में ले लिया गया था, उसके बाद उनकी रिहाई की गई. रिहाई के बाद प्रियंका गांधी ने क्या कहा, सुनिए.
12: जो हमारे बच्चे, हमारे युवा हैं, हमारे देश के भविष्य हैं, उनकी बात सुनने में क्या हर्ज थी? वो एक जेन्युइन इशू को लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं. वो जो उनके साथ हो रहा है, वो उसका दुख लेकर, गुस्सा लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं. तो जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम सारे, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी आवाज़ हम ऊंची करें और उनकी आवाज़ हम बुलंद करें और उनके सपोर्ट में हम खड़े हैं, क्योंकि उनके साथ जो कल हुआ वो एकदम गलत हुआ. ये एक लोकतंत्र है, इट्स अ डेमोक्रेसी. इन अ डेमोक्रेसी राइट टू प्रोटेस्ट इट्स अ फंडामेंटल राइट. नोबडी हैज द राइट टू प्रोटेस्ट.
0: और अब बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री आवास के पास से धरना प्रदर्शन हटवाने के लिए और बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और गृह सचिव गोविंद मोहन राहुल गांधी से मिलने जाते हैं और फिर बात नहीं बनती. जितेंद्र सिंह ने बताया कि राहुल गांधी की मांग थी कि नीट पर संसद में चर्चा हो. राहुल गांधी की यह मांग मान ली गई थी, लेकिन राहुल अपनी बात से मुकर गए. और उसके बाद राहुल गांधी बोले कि अब उनकी दो मांगे हैं, पहली नीट पर संसद में चर्चा होनी चाहिए, दूसरा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए. सरकार कह रही है कि जब छात्रों के हर मुद्दे पर संसद में वो चर्चा के लिए तैयार हैं, तो फिर कांग्रेस मुकर क्यों रही है?
13: प्रधानमंत्री आवास के पास लोक कल्याण मार्ग पर दोपहर 4:15 शुरू हुए कांग्रेस के धरने में प्रियंका गांधी नारे लगवाती हैं. तो इस बीच इस सवाल का जवाब सब जानना चाहते हैं कि आखिर सरकार ने तुरंत जब केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को राहुल गांधी से बात करने भेजा तो राहुल क्यों नहीं माने? यहाँ पर आखिर क्या बात हुई? जवाब जो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दिया है, उसे उनकी सोशल मीडिया पोस्ट से देखिए. जितेंद्र सिंह ने लिखा कि कुछ समय पहले पता चला कि कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अचानक अकबर रोड के पास एक जगह पर धरने पर बैठ गए. जितेंद्र सिंह लिखते हैं कि सरकार ने उन्हें और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन को राहुल गांधी से बात करने के लिए भेजा. जितेंद्र सिंह ने राहुल गांधी से अनुरोध किया कि वो अपना धरना खत्म कर दें, क्योंकि ये जगह धरने की नहीं है. यहाँ पर धरना देने से आम लोगों को काफी मुश्किल होगी. राहुल गांधी ने ये मांग रखी थी कि अगर सरकार संसद में नीट और उससे संबंधित आंदोलन के साथ जुड़े सभी विषय पर चर्चा के लिए मान जाती है तो वो अपना धरना तुरंत खत्म कर देंगे. कुछ ही देरी में सरकार के शीर्ष नेतृत्व की अनुमति लेने के बाद राहुल गांधी को ये भरोसा जितेंद्र सिंह की तरफ से दिया गया कि उनकी मांग को मान लिया गया है और सरकार नीट और उससे संबंधित आंदोलन के साथ जुड़े सभी विषय पर संसद में चर्चा करने को तैयार है। जितेंद्र सिंह के मुताबिक राहुल गांधी को जब ये सूचना पहुंचाई गई, तो उन्होंने कहा कि वो इतने पर नहीं मानेंगे बल्कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का भी भरोसा चाहा। राहुल गांधी ने कहा कि अब उनकी दो मांगे हैं, संसद में चर्चा और केंद्रीय शिक्षा मंत्री यानी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के मुताबिक जब राहुल गांधी को याद दिलाया गया कि पहले उन्होंने केवल चर्चा की ही मांग की थी, तब राहुल गांधी ने कहा कि अब उनकी मांगें बदल गई। जब राहुल गांधी को विनम्रता से ये बताने की कोशिश की गई कि उनके जैसे सीनियर लीडर को इतनी जल्दी अपनी बात से मुकर जाना शोभा नहीं देता, तो जितेंद्र सिंह लिखते हैं कि राहुल गांधी ने कहा कि ये उनकी मर्जी है। जब गृह सचिव ने राहुल गांधी को ये समझाने की कोशिश की कि ये जगह धरने के लिए अनुकूल नहीं, तो जितेंद्र सिंह के मुताबिक राहुल गांधी ने जवाब दिया कि ये भी उनकी मर्जी है, वो जहां बैठे। इसके बाद जितेंद्र सिंह ने लिखा है कि राहुल गांधी जैसे सीनियर नेता और नेता प्रतिपक्ष का अपनी बात से मुकर जाना दुर्भाग्यपूर्ण है और लोकतंत्र की हर मर्यादा के विपरीत है। जितेंद्र सिंह साफ कहते हैं कि सरकार नीट और उससे जुड़े आंदोलन के साथ सभी विषयों पर संसद में चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन इसके विपरीत कांग्रेस ने अब तक इस गंभीर विषय पर औपचारिक चर्चा करने का कोई नोटिस नहीं दिया। जितेंद्र सिंह लिखते हैं कि राहुल गांधी का व्यवहार लोकतंत्र के उसूलों से मेल नहीं खाता है।
14: सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, सरकार तैयार है संसद में चर्चा करने के लिए, नीट को लेकर के भी, उसके साथ संबंधित विषयों को लेकर के भी, जो आंदोलन है उसको लेकर के भी। हमने जब ये बात वहीं पर राहुल गांधी जी के आगे दोबारा रखी तो बोले कि साहब मुझे तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी चाहिए। तो हमने कहा साहब अभी कुछ ही क्षण पहले आपसे बार बार जब पूछा गया कि आपका क्या मुतालबा है, तो आपने ये कहा था कि अगर मुझे ये आश्वासन दिया जाए कि संसद में कांग्रेस पार्टी को भारत सरकार चर्चा करने देगी या करने के लिए तैयार है, तो मैं तुरंत ये धरना समाप्त कर दूंगा। लेकिन अब आप अपनी बात से हट रहे हैं। तो बोले साहब ये तो मेरी मर्जी है, मेरी मांगे बदल चुकी हैं।
15: अब ये मुद्दा इतना ज्वलंत इसलिए है क्योंकि देश के युवा हैं और ये समझ रहे हैं कि हमारे फ्यूचर, हमारे भविष्य के लिए क्या है। हमारे माँ बाप लोन लेकर मुश्किल से हमें पढ़ाते हैं, हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारे लिए इतना मुश्किल है, इसको हल्के में कोई नहीं ले सकता। ये एक बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है। आज युवा बहुत ही दुखी है एक्चुअली। ये जो आप नाराजगी देख रहे हैं, ये एक्चुअली दुख है कि हमारे फ्यूचर, हमारे भविष्य के बारे में कौन सोच रहा है। ये सदन है किसका? ये उन्हीं युवाओं का है ना जिसको आप रोक रहे हैं बाहर, जिन पर आप लाठी चार्ज कर रहे हैं, जिन पर आप आंसू गैस चला रहे हैं। ये तो मतलब ये सदन ही उनका है। हम सब यहाँ हैं, किसने हमें यहाँ रखा है? उन्होंने ही रखा। तो उनकी बात तो सुन ले, उनकी बात तो सुन ले।
16: प्राइम मिनिस्टर मोदी एंटी यूथ
15: है, बिल्कुल एंटी यूथ है। देखिए एंटी यूथ है, एंटी गरीब है, एंटी किसान है, बच्चे हैं, सुन लीजिए इनकी बात क्या होने जा रहा है। अगर इनकी बात शांति से सुन लें, आप मंत्री जी की जिम्मेदारी है, उनसे रिजाइन करवाइए, इस्तीफा दीजिए, जिम्मेदारी लीजिए और सबसे जरूरी तो यह है कि सिस्टम को दुरुस्त करिए।
17: आप इन विषयों पे जब भी डिस्कशन होता है आप मुंह की खाते हैं, लास्ट में आप जवाब सुन भी नहीं पाते हैं। मैं अभी भी बोलूंगा, ये नकारात्मक जो सोच है विपक्ष का उसको छोड़ना चाहिए। आपने कर लिया ना जो एक दो दिन है, लेकिन कल से सदन को चलने दिया जाए, सभी जो मुद्दे हैं उन पे बात करिए। कोई ऐसा विषय नहीं है जिस पे संसद में बहस न हो सके, लेकिन इन लोगों को एक आदत लग गई है कि संसद के विषय को सड़क पे ले जाएंगे।
18: सरकार ने 3 घंटे के धरने में राहुल गांधी से 2 बार बातचीत की, लेकिन वो नहीं माने तो पुलिस ने उन्हें धरना प्रदर्शन से उठाना शुरू कर दिया। कांग्रेस नेताओं और पुलिस के बीच आधे घंटे तक धक्का मुक्की होती रही। आखिर में 12 से ज्यादा पुलिसकर्मी उन्हें उठा कर ले गए।
0: 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज के खिलाफ चेंबूर में गुस्सा फूटा। छात्रों ने लाठीचार्ज के विरोध में प्रोटेस्ट किया। पेपर लीक केस में प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा कि सरकार इस आंदोलन को जितना दबाने की कोशिश करेगी उतना ही आंदोलन उग्र होगा।
19: Yeah! पेपर लीक केस के बाद पूरे देश में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र के कई शहरों में भी छात्रों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। चेंबूर में भी छात्रों ने 20 जुलाई को जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज के विरोध में प्रोटेस्ट किया, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया।
20: दिल्ली में जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हुआ और उस पर लाठीचार्ज और आंसू गैस फेयर डाले गए, उसके विरोध में अब मुंबई के चेंबूर इलाके में प्रोटेस्ट हो रहा है। और आप देख लीजिए, काफी सारे प्रोटेस्टर्स यहां पे आए थे, लेकिन जितने प्रोटेस्टर्स हैं उससे ज्यादा तादाद में यहां पुलिस के अधिकारी हैं। यहां पे आप देख लीजिए, पुलिसकर्मी इतने ज्यादा हैं। और बताया यही जा रहा है कि जितने प्रोटेस्टर्स थे उनको भी नोटिसेस दी गई। आप लोगों को भी नोटिसेस मिले?
21: हम लोग को भी नोटिसेस मिले।
20: क्या कितने लोगों को दिया गया है, कितने लोगों की कोई उन लोगों को कहां कोई रेस्ट्रिक्ट किया गया उनका मूवमेंट?
21: नहीं, 20-25 से ज्यादा लोगों को नोटिस दिया गया है और 100 से ज्यादा लोगों को फोन कॉल्स आया है कि कल अगर आप प्रोटेस्ट में इन्वॉल्वमेंट हुए तो आपको केसेस हो सकता है इसकी वजह। और काफी सारे गली के बाहर, घर के बाहर पुलिस जिनको बाहर आने नहीं दे रहे।
20: आप लोग को भी कहीं मोर्चा आप लोग निकालना चाह रहे थे, आप लोग को भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया?
21: हम लोग अभी चेंबूर नाके पे प्रोटेस्ट निकालने चाहते थे, बट हम लोग के एरिया के स्टार्टिंग पॉइंट पे ही पुलिस, मतलब जितने ज्यादा आंदोलन करते थे उससे 3 गुना ज्यादा तो पुलिस है यहाँ पे, और वो लोग बोल रहे कि यहाँ से आप बाहर निकल नहीं सकते। बट हम लोग तो मतलब किसी भी तरह का तीव्र आंदोलन, मतलब कोई तोड़फोड़ करने वाले नहीं थे, हम लोग शांति से आंदोलन करने वाले थे। बट जो चेंबूर के जो सीनियर्स है और बाकी भी सीनियर्स लोग है, वो लोग हम लोग को आगे जाने नहीं दे रहे।
20: तो पुलिस अधिकारियों ने आप लोगों के मूवमेंट को पूरा रेस्ट्रिक्ट कर दिया, लेकिन आप ये विरोध प्रदर्शन किस लिए कर रहे हैं?
21: जनरली विरोध प्रदर्शन इसलिए है कि कल तक हमारा रात में 8 बजे तक कोई ऐसा प्लानिंग नहीं था कि निदर्शन करना है, कोई आंदोलन करना है। बट जो हिसाब से कल हम लोग ने जो दिल्ली जंतर मंतर में जो आंदोलन देखा, जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ, काफी गलत है।
19: मुंबई पुलिस ने लोगों को प्रदर्शन न करने के लिए कई नोटिस भी दिए हैं। पुलिस ने कहा है कि प्रदर्शनकारी सिर्फ एक झुग्गी बस्ती के अंदर ही प्रदर्शन कर सकते हैं।
22: छोटे छोटे बच्चों जब आंदोलन करते हैं तो ये सरकार उनको मारती है, भगाती है, लाठियां अलग करती है, तो ये देश में लोकशाही है कि नहीं? और बच्चे क्या मांग रहे हैं? जिसने जो भवितव्य जो भविष्य करने का जो का एग्जाम है वो पेपर लीक किया, और पेपर मतलब ऐसा ये कितने साल से चल रहा है, तो हमारा कुछ भवितव्य है कि नहीं?
20: आप लोग भी प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे, कितने कार्यकर्ताओं को यहाँ पे, कितने लोगों को यहाँ पे रोका गया है?
22: हमारे सब कार्यकर्ता रोका गया है, नोटिस दिया है, वो बोला है कि आंदोलन करने का नहीं। हम बोले कि लोकशाही मार्ग से हम आंदोलन कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, जमाबंदी आदेश लागू किया है तो आप आंदोलन नहीं कर सकते, ऐसा हम लोग को बोला है। फिर भी हम लोग उधर जाने की कोशिश करेंगे।
19: पेपर लीक केस में प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा कि सरकार इस आंदोलन को जितना दबाने की कोशिश करेगी आंदोलन उतना ही उग्र होगा।
23: हाँ, नाराजगी तो है, जो हुआ है वो जो हमारे जो शिक्षण जो मंत्री है उन्होंने तो राजीनामा देना चाहिए, और जो लाठीचार्ज हुआ है उसके वजह से हमारी नाराजगी है। जो आप स्टूडेंट लोगों को मार रहे हो वो गलत है, वो क्रिमिनल नहीं है, वो स्टूडेंट्स है, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनको उनका हक है प्रोटेस्ट करने का, इसके लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उन्हें मारना नहीं चाहिए, ये गलत है।
20: लेकिन आप लोग भी तो यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और पुलिस वालों ने किस तरह से आप लोग को?
23: हमारा कल से चालू है कि प्रोटेस्ट करना है, 2 दिन से हमारे लोग बाहर निकल रहे हैं, रात को पुलिस को किसी ने तो बता दिया है, तो पुलिस सबसे कांटेक्ट कर रही है, सबको नोटिस दे रही है, आप निकल नहीं सकते। कहीं तो लोकशाही को दबाने का एक ये चल रहा है, लोकशाही को दबाने का एक इरादा है उनका, वो दिख रहा है।
20: जैसा यही बात ये कह रहे हैं, दरअसल अगर आप देखें तो इस पूरे इलाके में छावनी में तब्दील हो चुकी है तकरीबन हर जगह। आप देखिए, कॉलोनी से जो सिद्धार्थ कॉलोनी है उससे निकलने का यही रास्ता है, और इस रास्ते पे आप देख लीजिए पुलिस कर्मी इतने ज्यादा भारी तादाद में, और वहीं घर घर जाके नोटिसेस भी दिए गए थे, लोगों को कहा गया था कि वो निकले नहीं। इसके अलावा अगर आप देखें मुंबई में, क्योंकि जहां जहां प्रोटेस्ट हुए हैं वहां पे FIRs रजिस्टर हुई हैं, जिस तरीके से शिवाजी पार्क में भी मुंबई के दादर इलाके में जो वहां प्रोटेस्ट हुआ था उसको लेकर भी तीन FIR हुए हैं। इसके अलावा मरीन ड्राइव पर तो तमाम जहां जहां प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहां पर FIR जरूर रजिस्टर कर रही है पुलिस, और यही वजह है कि एक के बाद एक धीरे धीरे छोटे छोटे इलाकों में ही सही लेकिन प्रोटेस्ट की आवाजें जरूर उठ रही हैं। कैमरामैन किरण सपकाल के साथ विद्या, मुंबई आज तक।
0: और अब बात करेंगे कुदरत के बादल बॉम्ब के बारे में, क्योंकि पहाड़ों से लेकर मैदानों तक आसमान से ऐसी आफत बरस रही है कि देश के कई इलाकों में त्राहिमाम मच गया है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक बारिश का ब्रेक फेल है और जगह जगह कुदरत के बादल फट रहे हैं, तो वहीं मैदानी इलाकों में भी मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं।
2: सैलाब में जिंदगी और मौत की सीधी जंग, कहीं उफंती लहरों के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन, कहीं दहकते पहाड़ों पर जिंदगी की लड़ाई। कहीं सैलाब के बीच मौसम से सीधी टक्कर, कहीं कागज के तिनके की तरह बही गाड़ियां, पहाड़ों से लेकर मैदान तक तबाही ही तबाही। जगह जगह फट रहा है बादल बम, सैलाब अटैक जारी, मानसूनी संकट काल भारी। ये तस्वीरें राजौरी के थामंडी इलाके में हुए रेस्क्यू ऑपरेशन की हैं। भारतीय सेना की 61 राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों ने उफानती लहरों के बीच 13 स्थानीय निवासियों की जान बचाई। हुआ यूं कि भारी बारिश के चलते पहाड़ी नाले में अचानक बाढ़ आने से लोग फंस गए। आप देख सकते हैं कि नाले में पानी का बहाव कितना तेज है। सेना के जवानों ने उफनते सैलाब के आर पार एक रस्सी बांधी और फंसे हुए हर नागरिक को एक एक करके सुरक्षित बाहर निकाला। रेस्क्यू किए गए लोगों में 6 महिलाएं, 5 बच्चे और 2 बुजुर्ग शामिल हैं। ये रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत खतरनाक हालात में चलाया गया। क्योंकि भारी बारिश के चलते नाले का बहाव लगातार बढ़ रहा था, ऐसे में रेस्क्यू टीम ने जान पर खेलकर लोगों को बचाया। मुश्किल की घड़ी में देवदूत बनकर खड़े हुए सेना के जवानों ने 13 जिंदगियों को बचा लिया। जिंदगी और मौत की सीधी जंग, ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की हैं। रिकॉर्ड तोड़ बारिश का कहर ऐसा है कि पहाड़ दरक रहे हैं, सड़कें पत्थरों का टीला बन चुकी हैं, तो भूस्खलन के चलते यातायात ठप है। कुदरत की इसी क्रोध लीला का शिकार ये बस बन सकती थी। दरअसल अचानक पहाड़ी से पत्थर बरसने लगे, मौके पर मौजूद लोगों ने वक्त रहते बस को रुकवा दिया। आप देख सकते हैं कि मलबे में यही बस फंस गई थी जिसमें कई यात्री सवार थे। हुआ यूं कि भूस्खलन के बाद मलबा बस के सामने आ गया, बस में सवार यात्रियों की सांसें अटक गई थी। गनीमत रही कि बस पलटी नहीं और सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकल आए।
3: हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश कहर बरपा रही है। ऐसा ही मंजर हिमाचल के जिला चंबा में भी देखने को मिल रहा है। रेड अलर्ट के चलते कल रात से लगातार बारिश हो रही है, इससे जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं, रास्ते बंद पड़े हैं और कई जगह जो है सड़क पूरी तरह से बह गई है। चंबा जिला के पांगी में बादल फटने से कई मजदूरों को रेस्क्यू भी किया गया है। वहीं अगर बात करें चंबा जिला के भटियात क्षेत्र की, तो वहां पे
4: नूरपुर को जोड़ने वाली, जिला कांगड़ा को जोड़ने वाली, चंबा को, चंबा से जिला कांगड़ा को जोड़ने वाली लाहड़ू नूरपुर सड़क जो है उसका लगभग 200 मीटर हिस्सा जो है वो पूरी तरह से चक्की नदी में समा गया है। बारिश का कहर जो है लगातार जारी है और अभी आने वाले दिनों में भी ऐसे ही बारिश का अनुमान बताया जा रहा है।
5: सैलाब से जिंदगी की जंग, ये तस्वीरें चंबा के कलाह नाले की हैं। तस्वीरों में कैद मंजर रोंगटे खड़े करने वाला है। आसपास सैलाब का कहर और एक चट्टान पर तीन मजदूर फंसे हुए हैं। अचानक नाले का जल स्तर बढ़ने की वजह से तीन मजदूरों को बचाने का मौका नहीं मिला। तीनों मजदूर बीच जलधारा में फंस गए। जबकि उनके कुछ दूसरे साथी दूसरे छोर पर मौजूद थे। सैलाब में फंसे लोगों के पास तैर कर बचने का रास्ता नहीं था क्योंकि पानी का बहाव उन्हें बेमौत मार सकता था। जबकि हर मिनट बढ़ता जल स्तर उनकी सांसें अटकाने के लिए काफी था। सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। आप देख सकते हैं मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने जलधारा में फंसे मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। एक बड़ी लकड़ी को एक चट्टान से दूसरी चट्टान के बीच रखा गया। उसके बाद तीनों मजदूरों को सुरक्षित बचा लिया गया। चश्मदीदों के मुताबिक बादल फटने के बाद नाले में अचानक बाढ़ आ गई थी। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बरसात के मौसम में नदी नालों और खड्डों के आसपास आवाजाही से बचें क्योंकि

राहुल गांधी ने जारी किया वीडियो संदेश, केंद्र पर साधा निशाना, बोले भारत की शिक्षा व्यवस्था हो रही है कमजोर, धर्मेंद्र प्रधान का मांगा इस्तीफा, प्रियंका समेत सभी कांग्रेस के नेता हिरासत से छोड़े गए। नई दिल्ली के मंदिर मार्ग थाने में कांग्रेस के नेताओं से जाकर मिली सोनिया गांधी, रिहाई के बाद बोली प्रियंका, बच्चों की बात क्यों नहीं सुनी जा रही। मोदी सरकार पर राहुल और प्रियंका का बड़ा हमला, लोकतंत्र के लिए बताया खतरनाक जितेंद्र सिंह का आरोप, नेता विपक्ष ने बदली अपनी बात, धर्मेंद्र प्रधान बोले राहुल गांधी का मकसद टकराव करना, नितिन नवीन ने भी निंदा की। राहुल के धरने के बाद आम आदमी पार्टी ने इसे बताया बीजेपी से मिलीभगत, कहा यह सीजेपी के प्रदर्शन को कमजोर करने की साजिश है, आतिशी ने किया कटाक्ष, क्या जुगलबंदी है। और संसद हंगामे के बीच प्रधानमंत्री ने एनडीए मीटिंग में दिया कड़ा संदेश, कहा नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर नहीं होगा बर्दाश्त, पेपर लीक पर लिया कड़ा एक्शन।

0: संसद का मानसून सत्र शुरू होगा तो दिल्ली में इतना बड़ा सियासी भूचाल आ जाएगा, ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा। मानसून सत्र के पहले दिन कांग्रेस जनता पार्टी के जंतर मंतर से संसद चलो मार्च पर हंगामा, पुलिस से भिड़ंत, और अगले दिन प्रधानमंत्री आवास के पास कांग्रेस और विपक्ष का हाई वोल्टेज हंगामा और साथ ही साथ धरना प्रदर्शन भी। पुलिस ने पहले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी नेताओं को हिरासत में लिया, बाद में सबको छोड़ दिया गया। नीट पेपर लीक पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग से शुरू हुआ ये विरोध प्रदर्शन कैसे प्रधानमंत्री आवास यानी कि सात लोक कल्याण मार्ग तक पहुंच गया, आइए आपको दिखाते हैं।
1: नीट पेपर लीक की लड़ाई पीएम आवास पर धरने तक आई। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर विपक्ष अड़ा, सड़क पर एक तूफान खड़ा। कांग्रेस का हाई वोल्टेज हंगामा पुलिस ने धरना प्रदर्शन से हटाया। राहुल गांधी, प्रियंका और अखिलेश यादव समेत कई नेता हिरासत में। प्रधानमंत्री आवास के पास विपक्ष का हंगामा, पूरी रणनीति क्या है? दिल्ली की सत्ता के सबसे ताकतवर केंद्र यानी सात लोक कल्याण मार्ग यानी प्रधानमंत्री आवास के बहाने पर जब देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी अपने दिग्गजों की पूरी फौज के साथ सड़क पर उतरती है तो ऐसा हंगामा मचता है कि दिल्ली से लेकर पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत कांग्रेस और विपक्ष के कई बड़े नेताओं को न सिर्फ धरने से उठाया बल्कि इन सबको हिरासत में भी ले लिया और उन्हें बस में भर कर थाने ले गई।
2: यहाँ पे जो तस्वीर 7 RCR यानी कि लोक

0: घट रही है। पीछे हमारे देखिए अखिलेश यादव और राहुल गांधी को कुछ इस तरीके से बस में भर के ले जाया जा रहा है। अखिलेश यादव हाथ देने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी डिटेन कर लिया गया है। मुकुल वासनिक वहां पे नजर आ रहे हैं और तमाम जो नेता है वो यहां पे नारेबाजी लगाते हुए इस बस पे आगे जाते हुए आइए।
1: आपको बता दें कि जब राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं को प्रधानमंत्री आवास के पास धरने से उठाने के लिए पुलिस ने घेरा बनाया और राहुल गांधी को हटाने की कोशिश की तो वो जमीन पर लेट जाते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे राहुल गांधी सड़क पर लेटे हुए हैं और पुलिस के साथ उनकी काफी देर तक जोर आजमाइश चलती रहती है। आखिर में पुलिस धरने पर बैठे नेताओं को उठाकर ले जाती है।
2: डेमोक्रेसी इन इंडिया इज हैपनिंग राइट नाउ। डेमोक्रेसी इन इंडिया इज हैपनिंग राइट नाउ।
3: कायर हैं, डरते हैं,
4: बात कर रही है, बात कर रही है।
3: हम नहीं डरते हमसे, ये हमसे
4: डरो यार। एक मिनट, अरे बात कर रही है वो यार।
1: आपको बता दें कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव को दिल्ली पुलिस हिरासत में लेकर अलग अलग थानों में जाती है। इस बीच दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर की सुरक्षा भी बढ़ा दी जाती है। हर गेट पर पुलिस की भारी तैनाती कर दी जाती है।
5: गुंडई और राजनीति गुंडागर्दी की उसका अंत यहाँ नहीं है। ये एक नई क्रांति की शुरुआत है राहुल गांधी के नेतृत्व में। ये क्रांति अब बड़ी ज्वाला बनकर धधकेगी।
6: आज फिर से दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्री के इशारे पर, प्रधानमंत्री के इशारे पर बहुत ही कायरता पूर्वक तरीके से हमारे नेता राहुल गांधी को घसीटकर हिरासत में लिया। हमारी नेता प्रियंका गांधी को बदतमीजी कर और घसीटकर बस में जबरदस्ती ठूसा।
1: हिरासत में लेने के बाद राहुल गांधी का पहला एक्स पोस्ट आता है जिसमें वो लिखते हैं कि मोदी जी हर जोर आजमा लो, सारी ताकत लगा लो, छात्रों के इंसाफ की ये लड़ाई अब रोके ना रुकेगी। पीएम आवास के पास दोपहर करीब 3:30 बजे से शुरू हुआ धरना प्रदर्शन शाम 6 बजे तक एक बड़े सियासी हंगामे में तब्दील हो जाता है। अब उसकी पूरी टाइमलाइन आपको दिखाते हैं। दोपहर करीब 3:30 बजे पीएम आवास के पास कांग्रेस का धरना। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, बाकी सांसदों, नेताओं के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर से बैठक करके अचानक मार्च करते हुए निकल पड़ते हैं और साथ लोक कल्याण मार्ग पर यानी प्रधानमंत्री के आवास वाली सड़क पर पीएम आवास से कुछ दूरी पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत बाकी कांग्रेस के दिग्गज नेता धरने पर बैठ जाते हैं। राहुल गांधी जब धरना देते हैं तो वहां पर देखा गया कि वो सांकेतिक रूप से हथकड़ी वाला प्रदर्शन करते हैं जहां राहुल गांधी समेत दूसरे कांग्रेस नेता हाथ में लॉक लगाने वाला थ्रेड बांध लेते हैं। अब राजनीतिक सवाल ये आता है कि अचानक पीएम आवास के पास पहुंचकर राहुल गांधी धरना क्यों देते हैं, उनकी मांग क्या है?
7: हमारे नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में ने इस मांग की है, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में ये मांग की है। गृह मंत्री आए, दोनों सदनों में बयान दे, उस पर चर्चा हो। जिस तरीके से हमारे लोकतंत्र और हमारे संविधान पर हत्या हो रही है, जो हमारे युवाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उनके भविष्य पर अंधेरा छाया हुआ है, उस पर एक बयान दे। और हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग हम 20 करीब 45 दिन से कर।
1: लेकिन जब पीएम आवास के पास ही राहुल गांधी धरना देने लगते हैं तो इन सब के बीच दोपहर 3:45 पर राहुल गांधी को धरने से हटाने की अपील। अचानक दिल्ली पुलिस वहां पहुंचती है और राहुल गांधी से धरने से हटने के लिए कहा जाता है लेकिन वो इनकार कर देते हैं। सरकार की तरफ से जितेंद्र सिंह भी राहुल गांधी से बातचीत करने के लिए पहुंचते हैं और फिर कांग्रेस के नेताओं को पुलिस हिरासत में लेकर पीएम आवास के पास वाले धरने से हटाना शुरू कर देती है। शाम 4 बजे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह राहुल गांधी से बात करने पहुंचते हैं। जी हां, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह खुद राहुल गांधी से बात करने पहुंच जाते हैं लेकिन कुछ ही देर बाद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को लौटना पड़ता है। वो कुछ बोलते नहीं हैं। पता ये चलता है कि राहुल गांधी ने धरने से हटने से मना कर दिया है।
8: छात्रों को, युवाओं को न्याय नहीं मिल जाता, कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता, हम लोग यहाँ से नहीं हिलने वाले। दिन हो या रात, नरेंद्र मोदी के बाहर आना पड़ेगा। पूरी कांग्रेस पार्टी जो जहाँ है यहाँ आए और धरने पर बैठ जाए, नहीं हिलेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा।
1: शाम 5:18 राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। राहुल गांधी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं और लिखते हैं कि छात्रों पर हमला हर भारतीय परिवार पर हमला है। प्रधानमंत्री मोदी को लगता है कि वो बिना जवाब दिए, बिना किसी नतीजे का सामना किए बच निकलेंगे, नहीं कर पाएंगे। इस बात तो बिल्कुल नहीं। इसके बाद राहुल गांधी ने इस पोस्ट में अपील कर दी कि जो भी मानता है कि छात्रों को न्याय मिलना चाहिए वो पीएम आवास के सामने धरने में शामिल हो। कांग्रेस के इस धरने में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल हो जाते हैं। उनके साथ विपक्ष के कई और नेता भी इस धरना प्रदर्शन में जुटते हैं। आज तक ब्यूरो।
9: हंगामा लगातार जारी है और आपको बता दें कि दोनों ही तरफ से लगातार बयान भी जारी किए जा रहे हैं। राहुल गांधी की तरफ से भी छात्रों के इस आंदोलन पर एक बयान जारी किया गया है। छात्रों के इस मुद्दे को देश के सामने लाने की कोशिश की है, ये राहुल गांधी ने कहा है। और क्या कहा है नेता विपक्ष ने, सुनिए।
10: दूसरा कि स्टूडेंट्स को जिन्होंने मारा है, जिन्होंने ह्यूमिलिएट किया है, उन पर एक्शन लिया जाए और जो भी स्टूडेंट्स पर केसेस हैं उनको हटाया जाए। फाइनली पूरी ऑपोजिशन चाहती है कि ये जो इशू है, देश का सबसे बड़ा इशू है, इस पे कल लोकसभा में राज्यसभा में डिबेट हो और हम अपनी बात रख सकें। मेरा मोदी जी से एक सजेशन है, एज एलओपी, कल जो हुआ, जो आपकी सरकार ने, आपके होम मिनिस्टर ने किया, उसके लिए आप देश के स्टूडेंट से माफी मांगिए और जल्दी से जल्दी एग्जामिनेशन सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम्स पर रिफॉर्म शुरू कीजिए। आप सब ने हमारा समर्थन किया, सारे लोग जो स्टूडेंट्स की इशू के लिए लड़ रहे हैं, एक साथ लड़ रहे हैं, मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ। This morning I went and met the speaker of the Lok Sabha and I said to him that it was...
9: सर, आपने नेता विपक्ष के नाते उन्होंने तमाम बातें कही। उन्होंने कहा भारत की शिक्षा व्यवस्था कमजोर हो रही है, जिस पर काम करने की जरूरत है। धर्मेंद्र प्रधान का राहुल गांधी ने इस्तीफा मांगा है सीधे सीधे। उन्होंने कहा कि माफी मांगनी चाहिए सरकार को जिस तरीके से छात्रों के साथ व्यवहार किया गया है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बहुत जरूरी है कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसमें सुधार होना चाहिए, परीक्षा सिस्टम सुधरना चाहिए। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं कि क्या कहा गया है राहुल गांधी की तरफ से।
10: और जो स्टूडेंट्स की इशू है, जो देश के लिए सबसे जरूरी इशू है और जो उनके खिलाफ किया गया है, वो हम चलो डीजल धर्मेंद्र प्रधान। दूसरा की Absolutely nothing wrong with asking these questions. Students की मांगे हैं, पहला धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह का रेजिग्नेशन, दूसरा की स्टूडेंट्स को जिन्होंने मारा है, जिन्होंने ह्यूमिलिएट किया है, उन पर एक्शन लिया जाए और जो भी स्टूडेंट्स पर केसेस हैं उनको हटाया जाए। फाइनली पूरी ऑपोजिशन चाहती है कि ये जो इशू है, देश का सबसे बड़ा इशू है, इस पे कल लोकसभा में राज्यसभा में डिबेट हो और हम अपनी बात रख सकें। मेरा मोदी जी से एक सजेशन है, एज एलओपी, कल जो हुआ, जो आपकी सरकार ने, आपके होम मिनिस्टर ने किया, उसके लिए आप देश के स्टूडेंट से माफी मांगिए और जल्दी से जल्दी एग्जामिनेशन सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम्स पर रिफॉर्म शुरू कीजिए। आप सब ने हमारा समर्थन किया, सारे लोग जो स्टूडेंट्स की इशू के लिए लड़ रहे हैं, एक साथ लड़ रहे हैं, मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं।
9: तो जबरदस्त संसद के बाहर हंगामा और गहमा गहमी पूरे दिन चली। और आपको बता दें कि उसके बाद कांग्रेस के बड़े लीडर्स को, विपक्ष के बड़े लीडर्स को कहना चाहिए कि हिरासत में ले लिया गया था, उसके बाद उनकी रिहाई की गई। रिहाई के बाद प्रियंका गांधी ने क्या कहा, सुनिए।
11: जो हमारे बच्चे, हमारे युवा हैं, हमारे देश के भविष्य हैं, उनकी बात सुनने में क्या हर्ज थी? वो एक जेन्युइन इशू को लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो जो उनके साथ हो रहा है वो उसका दुख लेकर, गुस्सा लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम सारे, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी आवाज हम ऊंची करें और उनकी आवाज हम बुलंद करें और उनके सपोर्ट में हम खड़े हैं, क्योंकि उनके साथ जो कल हुआ वो एकदम गलत हुआ। ये एक लोकतंत्र है, इट्स अ डेमोक्रेसी। इन अ डेमोक्रेसी राइट टू प्रोटेस्ट इट्स अ फंडामेंटल राइट। नोबडी हैज द राइट टू प्रोटेस्ट।
9: और अब बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री आवास के पास से धरना प्रदर्शन हटवाने के लिए और बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और गृह सचिव गोविंद मोहन राहुल गांधी से मिलने जाते हैं और फिर बात नहीं बनती। जितेंद्र सिंह ने बताया कि राहुल गांधी की मांग थी कि नीट पर संसद में चर्चा हो। राहुल गांधी की यह मांग मान ली गई थी, लेकिन राहुल अपनी बात से मुकर गए और उसके बाद राहुल गांधी बोले कि अब उनकी दो मांगे हैं, पहली नीट पर संसद में चर्चा होनी चाहिए, दूसरा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। सरकार कह रही है कि जब छात्रों के हर मुद्दे पर संसद में वो चर्चा के लिए तैयार हैं तो फिर कांग्रेस मुकर क्यों रही है?
12: प्रधानमंत्री आवास के पास लोक कल्याण मार्ग पर दोपहर 4:15 शुरू हुए कांग्रेस के धरने में प्रियंका गांधी नारे लगवाती हैं। तो इस बीच इस सवाल का जवाब सब जानना चाहते हैं कि आखिर सरकार ने तुरंत जब केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को राहुल गांधी से बात करने भेजा तो राहुल क्यों नहीं माने? यहाँ पर आखिर क्या बात हुई? जवाब जो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दिया है उसे उनकी सोशल मीडिया पोस्ट से देखिए। जितेंद्र सिंह ने लिखा कि कुछ समय पहले पता चला कि कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अचानक अकबर रोड के पास एक जगह पर धरने पर बैठ गए। जितेंद्र सिंह लिखते हैं कि सरकार ने उन्हें और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन को राहुल गांधी से बात करने के लिए भेजा। जितेंद्र सिंह ने राहुल गांधी से अनुरोध किया कि वो अपना धरना खत्म कर दें क्योंकि ये जगह धरने की नहीं है, यहाँ पर धरना देने से आम लोगों को काफी मुश्किल होगी। राहुल गांधी ने ये मांग रखी थी कि अगर सरकार संसद में नीट और उससे संबंधित आंदोलन के साथ जुड़े सभी विषय पर चर्चा के लिए मान जाती है तो वो अपना धरना तुरंत खत्म कर देंगे। कुछ ही देरी में सरकार के शीर्ष नेतृत्व की अनुमति लेने के बाद राहुल गांधी को ये भरोसा जितेंद्र सिंह की तरफ से दिया गया कि उनकी मांग को मान लिया गया है और सरकार नीट और उससे संबंधित आंदोलन के साथ जुड़े सभी विषय पर संसद में चर्चा करने को तैयार है। जितेंद्र सिंह के मुताबिक राहुल गांधी को जब ये सूचना पहुंचाई गई तो उन्होंने कहा कि वो इतने पर नहीं मानेंगे बल्कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का भी भरोसा चाहा। राहुल गांधी ने कहा कि अब उनकी दो मांगे हैं, संसद में चर्चा और केंद्रीय शिक्षा मंत्री यानी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के मुताबिक जब राहुल गांधी को याद दिलाया गया कि पहले उन्होंने केवल चर्चा की ही मांग की थी तब राहुल गांधी ने कहा कि अब उनकी मांगें बदल गईं। जब राहुल गांधी को विनम्रता से ये बताने की कोशिश की गई कि उनके जैसे सीनियर लीडर को इतनी जल्दी अपनी बात से मुकर जाना शोभा नहीं देता तो जितेंद्र सिंह लिखते हैं कि राहुल गांधी ने कहा कि ये उनकी मर्जी है। जब गृह सचिव ने राहुल गांधी को ये समझाने की कोशिश की कि ये जगह धरने के लिए अनुकूल नहीं तो जितेंद्र सिंह के मुताबिक राहुल गांधी ने जवाब दिया कि ये भी उनकी मर्जी है, वो जहां बैठे। इसके बाद जितेंद्र सिंह ने लिखा है कि राहुल गांधी जैसे सीनियर नेता और नेता प्रतिपक्ष का अपनी बात से मुकर जाना दुर्भाग्यपूर्ण है और लोकतंत्र की हर मर्यादा के विपरीत है। जितेंद्र सिंह साफ कहते हैं कि सरकार नीट और उससे जुड़े आंदोलन के साथ सभी विषयों पर संसद में चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन इसके विपरीत कांग्रेस ने अब तक इस गंभीर विषय पर औपचारिक चर्चा करने का कोई नोटिस नहीं दिया। जितेंद्र सिंह लिखते हैं कि राहुल गांधी का व्यवहार लोकतंत्र के उसूलों से मेल नहीं खाता है।
13: सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, सरकार तैयार है संसद में चर्चा करने के लिए नीट को लेकर के भी, उसके साथ संबंधित विषयों को लेकर के भी, जो आंदोलन है उसको लेकर के भी। हमने जब ये बात वहीं पर राहुल गांधी जी के आगे दोबारा रखी तो बोले कि साहब मुझे तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी चाहिए। तो हमने कहा साहब अभी कुछ ही क्षण पहले आपसे बार बार जब पूछा गया कि आपका क्या मुतालबा है तो आपने ये कहा था कि अगर मुझे ये आश्वासन दिया जाए कि संसद में कांग्रेस पार्टी को भारत सरकार चर्चा करने देगी या करने के लिए तैयार है तो मैं तुरंत ये धरना समाप्त कर दूंगा। लेकिन अब आप अपनी बात से हट रहे हैं। तो बोले साहब ये तो मेरी मर्जी है, मेरी मांगे बदल चुकी हैं।
14: अब ये मुद्दा इतना ज्वलंत इसलिए है क्योंकि देश के युवा हैं और ये समझ रहे हैं कि हमारे फ्यूचर, हमारे भविष्य के लिए क्या है। हमारे माँ बाप लोन लेकर मुश्किल से हमें पढ़ाते हैं, हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारे लिए इतना मुश्किल है, इसको हल्के में कोई नहीं ले सकता। ये एक बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है, आज युवा बहुत ही दुखी है। एक्चुअली ये जो आप नाराजगी देख रहे हैं, ये एक्चुअली दुख है कि हमारे फ्यूचर, हमारे भविष्य के बारे में कौन सोच रहा है। ये सदन है किसका? ये उन्हीं युवाओं का है ना जिसको आप रोक रहे हैं बाहर, जिन पर आप लाठी चार्ज कर रहे हैं, जिन पर आप आंसू गैस चला रहे हैं। ये तो मतलब ये सदन ही उनका है, हम सब यहाँ हैं, किसने हमें यहाँ रखा है, उन्होंने ही रखा है। तो उनकी बात तो सुन ले, बिल्कुल एंटी यूथ है, देखिए एंटी यूथ है, एंटी गरीब है, एंटी किसान है, बच्चे हैं, सुन लीजिए इनकी बात, क्या होने जा रहा है। अगर इनकी बात शांति से सुन लें, आप मंत्री जी की जिम्मेदारी है, उनसे रिजाइन करवाइए, इस्तीफा दीजिए, जिम्मेदारी लीजिए, और सबसे जरूरी तो ये है कि सिस्टम को दुरुस्त करिए।
15: आप इन विषयों पे जब भी डिस्कशन होता है आप मुंह की खाते हैं, लास्ट में आप जवाब सुन भी नहीं पाते हैं। मैं अभी भी बोलूंगा, ये नकारात्मक जो सोच है विपक्ष का, उसको छोड़ना चाहिए। आपने कर लिया ना जो एक दो दिन है, लेकिन कल से सदन को चलने दिया जाए, सभी जो मुद्दे हैं उन पे बात करिए। कोई ऐसा विषय नहीं है जिस पे संसद में बहस न हो सके, लेकिन इन लोगों को एक आदत लग गई है कि संसद के विषय को सड़क पे ले जाएंगे।
16: सरकार ने 3 घंटे के धरने में राहुल गांधी से 2 बार बातचीत की, लेकिन वो नहीं माने, तो पुलिस ने उन्हें धरना प्रदर्शन से उठाना शुरू कर दिया। कांग्रेस नेताओं और पुलिस के बीच आधे घंटे तक धक्का मुक्की होती रही, आखिर में 12 से ज्यादा पुलिसकर्मी उन्हें उठा कर ले गए।
9: 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज के खिलाफ चेंबूर में गुस्सा फूटा, छात्रों ने लाठीचार्ज के विरोध में प्रोटेस्ट किया। पेपर लीक केस में प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा कि सरकार इस आंदोलन को जितना दबाने की कोशिश करेगी उतना ही आंदोलन उग्र होगा।
17: पेपर लीक केस के बाद पूरे देश में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र के कई शहरों में भी छात्रों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। चेंबूर में भी छात्रों ने 20 जुलाई को जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज के विरोध में प्रोटेस्ट किया, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया।
18: दिल्ली में जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हुआ और उस पर लाठीचार्ज और आंसू गैस फेयर डाले गए, उसके विरोध में अब मुंबई के चेंबूर इलाके में प्रोटेस्ट हो रहा है। और आप देख लीजिए, काफी सारे प्रोटेस्टर्स यहां पे आए थे, लेकिन जितने प्रोटेस्टर्स हैं उससे ज्यादा तादाद में यहां पुलिस के अधिकारी हैं। यहां पे आप देख लीजिए, पुलिसकर्मी इतने ज्यादा हैं, और बताया यही जा रहा है कि जितने प्रोटेस्टर्स थे उनको भी नोटिसेस दी गई। आप लोगों को भी नोटिसेस मिले?
19: हम लोग को भी नोटिसेस मिले।
18: क्या कितने लोगों को दिया गया है, कितने लोगों की कोई उन लोगों को कहां कोई रेस्ट्रिक्ट किया गया उनका मूवमेंट?
19: नहीं, 20-25 से ज्यादा लोगों को नोटिस दिया गया है, और 100 से ज्यादा लोगों को फोन कॉल्स आया है कि कल अगर आप प्रोटेस्ट में इन्वॉल्वमेंट हुए तो आपको केसेस हो सकता है इसकी वजह। और काफी सारे गली के बाहर, घर के बाहर पुलिस जिनको बाहर आने नहीं दे रहे।
18: आप लोग को भी कहीं मोर्चा आप लोग निकालना चाह रहे थे, आप लोग को भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया?
19: हम लोग अभी चेंबूर नाके पे प्रोटेस्ट निकालने चाहते थे, बट हम लोग के एरिया के स्टार्टिंग पॉइंट पे ही पुलिस, मतलब जितने ज्यादा आंदोलन करते थे उससे 3 गुना ज्यादा तो पुलिस है यहाँ पे, और वो लोग बोल रहे कि यहाँ से आप बाहर निकल नहीं सकते। बट हम लोग तो मतलब किसी भी तरह का तीव्र आंदोलन, मतलब कोई तोड़फोड़ करने वाले नहीं थे, हम लोग शांति से आंदोलन करने वाले थे। बट जो चेंबूर के जो सीनियर्स है और बाकी भी सीनियर्स लोग है, वो लोग हम लोग को आगे जाने नहीं दे रहे।
18: तो पुलिस अधिकारियों ने आप लोग के मूवमेंट को पूरा रेस्ट्रिक्ट कर दिया, लेकिन आप ये विरोध प्रदर्शन किस लिए कर रहे हैं?
19: जनरली विरोध प्रदर्शन इसलिए कि कल तक हमारा रात में 8 बजे तक कोई ऐसा प्लानिंग नहीं था कि निदर्शन करना है, कोई आंदोलन करना है। बट जो हिसाब से कल हम लोग ने जो दिल्ली जंतर मंतर में जो आंदोलन देखा, जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ काफी गलत है।
17: मुंबई पुलिस ने लोगों को प्रदर्शन न करने के लिए कई नोटिस भी दिए हैं। पुलिस ने कहा है कि प्रदर्शनकारी सिर्फ एक झुग्गी बस्ती के अंदर ही प्रदर्शन कर सकते हैं।
20: छोटे छोटे बच्चों जब आंदोलन करते हैं तो ये सरकार उनको मारती है, भगाती है, लाठी अलग करती है, तो ये देश में लोकशाही है कि नहीं? और बच्चे क्या मांग रहे हैं? जिसने जो भवितव्य जो भविष्य करने का जो का एग्जाम है वो पेपर लीक किया, और पेपर मतलब ऐसा ये कितने साल से चल रहा है, तो हमारा कुछ भवितव्य है कि नहीं?
18: आप लोग भी प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे, कितने कार्यकर्ताओं को यहाँ पे, कितने लोगों को यहाँ पे रोका गया है?
20: हमारे सब कार्यकर्ता रोका गया है, नोटिस दिया है, वो बोला है कि आंदोलन करने का नहीं। हम बोले कि लोकशाही मार्ग से हम आंदोलन कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, जमाबंदी आदेश लागू किया है तो आप आंदोलन नहीं कर सकते, ऐसा हम लोग को बोला है। फिर भी हम लोग उधर जाने की कोशिश करेंगे।
17: पेपर लीक केस में प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा कि सरकार इस आंदोलन को जितना दबाने की कोशिश करेगी आंदोलन उतना ही उग्र होगा।
21: हाँ, नाराजगी तो है, जो हुआ है वो जो हमारे जो शिक्षण जो मंत्री है उन्होंने तो राजीनामा देना चाहिए, और जो लाठीचार्ज हुआ है उसके वजह से हमारी नाराजगी है। जो आप स्टूडेंट लोगों को मार रहे हो वो गलत है, वो क्रिमिनल नहीं है, वो स्टूडेंट्स है, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनको उनका हक है प्रोटेस्ट करने का, इसके लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उन्हें मारना नहीं चाहिए, ये गलत है।
18: लेकिन आप लोग भी तो यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और पुलिस वालों ने किस तरह से आप लोग?
21: हमारा कल से चालू है कि प्रोटेस्ट करना है, दो दिन से हमारे लोग बाहर निकल रहे हैं, रात को पुलिस को किसी ने तो बता दिया है, तो पुलिस सबसे कांटेक्ट कर रही है, सबको नोटिस दे रही है, आप निकल नहीं सकते, कहीं तो लोकशाही को दबाने का एक ये चल रहा है, लोकशाही को दबाने का एक इरादा है उनका, वो दिख रहा है।
18: जैसा यही बात ये कह रहे हैं, दरअसल अगर आप देखें तो इस पूरे इलाके में छावनी में तब्दील हो चुकी है, तकरीबन हर जगह आप देखिए कॉलोनी से जो सिद्धार्थ कॉलोनी है उससे निकलने का यही रास्ता है, और इस रास्ते पे आप देख लीजिए पुलिस कर्मी इतने ज्यादा भारी तादाद में, और वहीं घर घर जाके नोटिसेस भी दिए गए थे, लोगों को कहा गया था कि वो निकले नहीं। इसके अलावा अगर आप देखें मुंबई में, क्योंकि जहां जहां प्रोटेस्ट हुए हैं वहां पे FIR रजिस्टर हुई हैं, जिस तरीके से शिवाजी पार्क में भी मुंबई के दादर इलाके में जो वहां प्रोटेस्ट हुआ था उसको लेकर भी 3 FIR हुए हैं, इसके अलावा मेरीन ड्राइव पर, तो तमाम जहां जहां प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहां पर FIR जरूर रजिस्टर कर रही है पुलिस, और यही वजह है कि एक के बाद एक धीरे धीरे छोटे छोटे इलाकों में ही सही लेकिन प्रोटेस्ट की आवाजें जरूर उठ रही हैं। कैमरामैन किरण सपकाल के साथ विद्या, मुंबई आज तक।
9: और अब बात करेंगे कुदरत के बादल बॉम्ब के बारे में, क्योंकि पहाड़ों से लेकर मैदानों तक आसमान से ऐसी आफत बरस रही है कि देश के कई इलाकों में त्राहिमाम मच गया है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक बारिश का ब्रेक फेल है, और जगह जगह कुदरत के बादल फट रहे हैं, तो वहीं मैदानी इलाकों में भी मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं।
17: सैलाब में जिंदगी और मौत की सीधी जंग, कहीं उफंती लहरों के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन, कहीं दहकते पहाड़ों पर जिंदगी की लड़ाई, कहीं सैलाब के बीच मौसम से सीधी टक्कर, कहीं कागज के तिनके की तरह बही गाड़ियां, पहाड़ों से लेकर मैदान तक तबाही ही तबाही। जगह जगह फट रहा है बादल बम, सैलाब अटैक जारी, मानसूनी संकट काल भारी। ये तस्वीरें राजौरी के थामंडी इलाके में हुए रेस्क्यू ऑपरेशन की हैं। भारतीय सेना की 61 राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों ने उफानती लहरों के बीच 13 स्थानीय निवासियों की जान बचाई। हुआ यूं कि भारी बारिश के चलते पहाड़ी नाले में अचानक बाढ़ आने से लोग फंस गए,
1: आप देख सकते हैं कि नाले में पानी का बहाव कितना तेज है। सेना के जवानों ने उफनते सैलाब के आर पार एक रस्सी बांधी और फंसे हुए हर नागरिक को एक एक करके सुरक्षित बाहर निकाला। रेस्क्यू किए गए लोगों में 6 महिलाएं, 5 बच्चे और 2 बुजुर्ग शामिल हैं। ये रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत खतरनाक हालात में चलाया गया। क्योंकि भारी बारिश के चलते नाले का बहाव लगातार बढ़ रहा था, ऐसे में रेस्क्यू टीम ने जान पर खेलकर लोगों को बचाया। मुश्किल की घड़ी में देवदूत बनकर खड़े हुए सेना के जवानों ने 13 जिंदगियों को बचा लिया। जिंदगी और मौत की सीधी जंग। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की हैं। रिकॉर्ड तोड़ बारिश का कहर ऐसा है कि पहाड़ दरक रहे हैं, सड़कें पत्थरों का टीला बन चुकी हैं, तो भूस्खलन के चलते यातायात ठप है। कुदरत की इसी क्रोध लीला का शिकार ये बस बन सकती थी। दरअसल अचानक पहाड़ी से पत्थर बरसने लगे। मौके पर मौजूद लोगों ने वक्त रहते बस को रुकवा दिया। आप देख सकते हैं कि मलबे में यही बस फंस गई थी जिसमें कई यात्री सवार थे। हुआ यूं कि भूस्खलन के बाद मलबा बस के सामने आ गया। बस में सवार यात्रियों की सांसें अटक गई थी। गरिमत रही कि बस पलटी नहीं और सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकल आए।
0: हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश कहर बरपा रही है। ऐसा ही मंजर हिमाचल के जिला चंबा में भी देखने को मिल रहा है। रेड अलर्ट के चलते कल रात से लगातार बारिश हो रही है। इससे जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं, रास्ते बंद पड़े हैं और कई जगह जो है सड़क पूरी तरह से बह गई है। चंबा जिला के पांगी में बादल फटने से कई मजदूरों को रेस्क्यू भी किया गया है। वहीं अगर बात करें चंबा जिला के भटियात क्षेत्र की, तो वहां पे नूरपुर को जोड़ने वाली, जिला कांगड़ा को जोड़ने वाली, चंबा से जिला कांगड़ा को जोड़ने वाली लाहड़ू नूरपुर सड़क जो है उसका लगभग 200 मीटर हिस्सा जो है वो पूरी तरह से चक्की नदी में समा गया है। बारिश का कहर जो है लगातार जारी है और अभी आने वाले दिनों में भी ऐसे ही बारिश का अनुमान बताया जा रहा है।
1: सैलाब से जिंदगी की जंग। ये तस्वीरें चंबा के कलाह नाले की हैं। तस्वीरों में कैद मंजर रोंगटे खड़े करने वाला है। आसपास सैलाब का कहर और एक चट्टान पर 3 मजदूर फंसे हुए हैं। अचानक नाले का जल स्तर बढ़ने की वजह से 3 मजदूरों को बचाने का मौका नहीं मिला। तीनों मजदूर बीच जलधारा में फंस गए। जबकि उनके कुछ दूसरे साथी दूसरे छोर पर मौजूद थे। सैलाब में फंसे लोगों के पास तैर कर बचने का रास्ता नहीं था क्योंकि पानी का बहाव उन्हें बेमौत मार सकता था। जबकि हर मिनट बढ़ता जल स्तर उनकी सांसें अटकाने के लिए काफी था। सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। आप देख सकते हैं मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने जलधारा में फंसे मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। एक बड़ी लकड़ी को एक चट्टान से दूसरी चट्टान के बीच रखा गया। उसके बाद तीनों मजदूरों को सुरक्षित बचा लिया गया। चश्मदीदों के मुताबिक बादल फटने के बाद नाले में अचानक बाढ़ आ गई थी। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बरसात के मौसम में नदी नालों और खड्डों के आसपास आवाजाही से बचें क्योंकि अचानक जल स्तर बढ़ने का खतरा बना रहता है।
9: और इसी के साथ हमें रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

राहुल गांधी ने जारी किया वीडियो संदेश, केंद्र पर साधा निशाना, बोले भारत की शिक्षा व्यवस्था हो रही है कमजोर। धर्मेंद्र प्रधान का मांगा इस्तीफा, प्रियंका समेत सभी कांग्रेस के नेता हिरासत से छोड़े गए। नई दिल्ली के मंदिर मार्ग थाने में कांग्रेस के नेताओं से जाकर मिली सोनिया गांधी, रिहाई के बाद बोली प्रियंका, बच्चों की बात क्यों नहीं सुनी जा रही। मोदी सरकार पर राहुल और प्रियंका का बड़ा हमला, लोकतंत्र के लिए बताया खतरनाक, जितेंद्र सिंह का आरोप, नेता विपक्ष ने बदली अपनी बात, धर्मेंद्र प्रधान बोले राहुल गांधी का मकसद टकराव करना, नितिन नवीन ने भी निंदा की। राहुल के धरने के बाद आम आदमी पार्टी ने इसे बताया बीजेपी से मिलीभगत, कहा यह सीजेपी के प्रदर्शन को कमजोर करने की साजिश है। आतिशी ने किया कटाक्ष, क्या जुगलबंदी है। और संसद हंगामे के बीच प्रधानमंत्री ने एनडीए मीटिंग में दिया कड़ा संदेश, कहा नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर नहीं होगा बर्दाश्त, पेपर लीक पर लिया कड़ा एक्शन।

0: संसद का मानसून सत्र शुरू होगा तो दिल्ली में इतना बड़ा सियासी भूचाल आ जाएगा, ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा। मानसून सत्र के पहले दिन कांग्रेस जनता पार्टी के जंतर मंतर से संसद चलो मार्च पर हंगामा, पुलिस से भिड़ंत, और अगले दिन प्रधानमंत्री आवास के पास कांग्रेस और विपक्ष का हाई वोल्टेज हंगामा और साथ ही साथ धरना प्रदर्शन भी। पुलिस ने पहले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी नेताओं को हिरासत में लिया, बाद में सबको छोड़ दिया गया। नीट पेपर लीक पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग से शुरू हुआ ये विरोध प्रदर्शन कैसे प्रधानमंत्री आवास यानी कि 7 लोक कल्याण मार्ग तक पहुंच गया, आइए आपको दिखाते हैं।
1: नीट पेपर लीक की लड़ाई पीएम आवास पर धरने तक आई। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर विपक्ष अड़ा, सड़क पर एक तूफान खड़ा। कांग्रेस का हाई वोल्टेज हंगामा पुलिस ने धरना प्रदर्शन से हटाया। राहुल गांधी, प्रियंका और अखिलेश यादव समेत कई नेता हिरासत में। प्रधानमंत्री आवास के पास विपक्ष का हंगामा, पूरी रणनीति क्या है? दिल्ली की सत्ता के सबसे ताकतवर केंद्र यानी 7 लोक कल्याण मार्ग यानी प्रधानमंत्री आवास के बहाने पर जब देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी अपने दिग्गजों की पूरी फौज के साथ सड़क पर उतरती है तो ऐसा हंगामा मचता है कि दिल्ली से लेकर पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत कांग्रेस और विपक्ष के कई बड़े नेताओं को न सिर्फ धरने से उठाया बल्कि इन सबको हिरासत में भी ले लिया और उन्हें बस में भर कर थाने ले गई।
2: यहाँ पे जो तस्वीर 7 RCR यानी कि लोक कल्याण मार्ग में घट रही है, पीछे हमारे देखिए अखिलेश यादव और राहुल गांधी को कुछ इस तरीके से बस में भर के ले जाया जा रहा है। अखिलेश यादव हाथ देने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी डिटेन कर लिया गया है। मुकुल वासनिक वहाँ पे नजर आ रहे हैं और तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पे नारेबाजी लगाते हुए इस बस पे आगे जाते हुए आइए।
1: आपको बता दें कि जब राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं को प्रधानमंत्री आवास के पास धरने से उठाने के लिए पुलिस ने घेरा बनाया और राहुल गांधी को हटाने की कोशिश की तो वो जमीन पर लेट जाते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे राहुल गांधी सड़क पर लेटे हुए हैं और पुलिस के साथ उनकी काफी देर तक जोर आजमाइश चलती रहती है। आखिर में पुलिस धरने पर बैठे नेताओं को उठाकर ले जाती है।
3: डेमोक्रेसी इन इंडिया इज हैपनिंग राइट नाउ। डेमोक्रेसी इन इंडिया इज हैपनिंग राइट नाउ।
4: कायर है, डरते हैं,
5: बात कर रही है, बात कर रही है।
4: हम नहीं डरते इनसे, ये हमसे
5: डरो यार, एक मिनट। अरे बात कर रही है वो यार।
1: आपको बता दें कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव को दिल्ली पुलिस हिरासत में लेकर अलग अलग थानों में जाती है। इस बीच दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर की सुरक्षा भी बढ़ा दी जाती है, हर गेट पर पुलिस की भारी तैनाती कर दी जाती है।
6: गुंडई और राजनीति गुंडागर्दी की उसका अंत यहाँ नहीं है, ये एक नई क्रांति की शुरुआत है राहुल गांधी के नेतृत्व में। ये क्रांति अब बड़ी ज्वाला बनकर धधकेगी।
7: आज फिर से दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्री के इशारे पर, प्रधानमंत्री के इशारे पर बहुत ही कायरता पूर्वक तरीके से हमारे नेता राहुल गांधी को घसीटकर हिरासत में लिया, हमारी नेता प्रियंका गांधी को बदतमीजी कर और घसीटकर बस में जबरदस्ती ठूसा।
1: हिरासत में लेने के बाद राहुल गांधी का पहला एक्स पोस्ट आता है जिसमें वो लिखते हैं कि मोदी जी हर जोर आजमा लो, सारी ताकत लगा लो, छात्रों के इंसाफ की ये लड़ाई अब रोके ना रुकेगी। पीएम आवास के पास दोपहर करीब 3:30 बजे से शुरू हुआ धरना प्रदर्शन शाम 6 बजे तक एक बड़े सियासी हंगामे में तब्दील हो जाता है। अब उसकी पूरी टाइमलाइन आपको दिखाते हैं। दोपहर करीब 3:30 बजे पीएम आवास के पास कांग्रेस का धरना, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, बाकी सांसदों नेताओं के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर से बैठक करके अचानक मार्च करते हुए निकल पड़ते हैं और सात लोक कल्याण मार्ग पर यानी प्रधानमंत्री के आवास वाली सड़क पर पीएम आवास से कुछ दूरी पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत बाकी कांग्रेस के दिग्गज नेता धरने पर बैठ जाते हैं। राहुल गांधी जब धरना देते हैं तो वहां पर देखा गया कि वो सांकेतिक रूप से हथकड़ी वाला प्रदर्शन करते हैं, जहां राहुल गांधी समेत दूसरे कांग्रेस नेता हाथ में लॉक लगाने वाला थ्रेड बांध लेते हैं। अब राजनीतिक सवाल ये आता है कि अचानक पीएम आवास के पास पहुंचकर राहुल गांधी धरना क्यों देते हैं, उनकी मांग क्या है?
8: हमारे नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में ने इस मांग की है, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में ये मांग की है। गृहमंत्री आए, दोनों सदनों में बयान दे, उस पर चर्चा हो। जिस तरीके से हमारे लोकतंत्र और हमारे संविधान पर हत्या हो रही है, जो हमारे युवाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उनके भविष्य पर अंधेरा छाया हुआ है, उस पर एक बयान दे। और हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग हम 20 करीब 45 दिन से कर।
1: लेकिन जब पीएम आवास के पास ही राहुल गांधी धरना देने लगते हैं, तो इन सब के बीच दोपहर 3:45 पर राहुल गांधी को धरने से हटाने की अपील। अचानक दिल्ली पुलिस वहां पहुंचती है और राहुल गांधी से धरने से हटने के लिए कहा जाता है, लेकिन वो इनकार कर देते हैं। सरकार की तरफ से जितेंद्र सिंह भी राहुल गांधी से बातचीत करने के लिए पहुंचते हैं और फिर कांग्रेस के नेताओं को पुलिस हिरासत में लेकर पीएम आवास के पास वाले धरने से हटाना शुरू कर देती है। शाम 4 बजे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह राहुल गांधी से बात करने पहुंचते हैं। जी हां, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह खुद राहुल गांधी से बात करने पहुंच जाते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को लौटना पड़ता है। वो कुछ बोलते नहीं हैं। पता ये चलता है कि राहुल गांधी ने धरने से हटने से मना कर दिया है।
7: छात्रों को, युवाओं को न्याय नहीं मिल जाता, कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता, हम लोग यहाँ से नहीं हिलने वाले। दिन हो या रात, नरेंद्र मोदी को बाहर आना पड़ेगा। पूरी कांग्रेस पार्टी जो जहाँ है यहाँ आए और धरने पर बैठ जाए। नहीं हिलेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा।
1: शाम 5:18 राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। राहुल गांधी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं और लिखते हैं कि छात्रों पर हमला हर भारतीय परिवार पर हमला है। प्रधानमंत्री मोदी को लगता है कि वो बिना जवाब दिए, बिना किसी नतीजे का सामना किए बच निकलेंगे, नहीं कर पाएंगे, इस बात तो बिल्कुल नहीं। इसके बाद राहुल गांधी ने इस पोस्ट में अपील कर दी कि जो भी मानता है कि छात्रों को न्याय मिलना चाहिए, वो पीएम आवास के सामने धरने में शामिल हो। कांग्रेस के इस धरने में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल हो जाते हैं। उनके साथ विपक्ष के कई और नेता भी इस धरना प्रदर्शन में जुड़ते हैं। आज तक ब्यूरो।
0: हंगामा लगातार जारी है और आपको बता दें कि दोनों ही तरफ से लगातार बयान भी जारी किए जा रहे हैं। राहुल गांधी की तरफ से भी छात्रों के आंदोलन पर एक बयान जारी किया गया है। छात्रों के इस मुद्दे को देश के सामने लाने की कोशिश की है, ये राहुल गांधी ने कहा है। और क्या कहा है नेता विपक्ष ने, सुनिए।
9: दूसरा कि स्टूडेंट्स को जिन्होंने मारा है, जिन्होंने ह्यूमिलिएट किया है, उन पर एक्शन लिया जाए और जो भी स्टूडेंट्स पर केसेस हैं उनको हटाया जाए। फाइनली पूरी ऑपोजिशन चाहती है कि ये जो इशू है, देश का सबसे बड़ा इशू है, इस पे कल लोकसभा में, राज्यसभा में डिबेट हो और हम अपनी बात रख सकें। मेरा मोदी जी से एक सजेशन है, एज एलओपी, कल जो हुआ, जो आपकी सरकार ने, आपके होम मिनिस्टर ने किया, उसके लिए आप देश के स्टूडेंट से माफी मांगिए और जल्दी से जल्दी एग्जामिनेशन सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम्स पर रिफॉर्म शुरू कीजिए। आप सब ने हमारा समर्थन किया, सारे लोग जो स्टूडेंट्स की इशू के लिए लड़ रहे हैं, एक साथ लड़ रहे हैं, मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं।
10: This morning I went and met the speaker of the Lok Sabha.
0: आपने नेता विपक्ष के नाते उन्होंने तमाम बातें कही. उन्होंने कहा भारत की शिक्षा व्यवस्था कमजोर हो रही है, जिस पर काम करने की जरूरत है. धर्मेंद्र प्रधान का राहुल गांधी ने इस्तीफा मांगा है सीधे सीधे. उन्होंने कहा कि माफी मांगनी चाहिए सरकार को जिस तरीके से छात्रों के साथ व्यवहार किया गया है. और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बहुत जरूरी है कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसमें सुधार होना चाहिए, परीक्षा सिस्टम सुधरना चाहिए. एक बार फिर से आपको सुनाते हैं कि क्या कहा गया है राहुल गांधी की तरफ से.
9: और जो स्टूडेंट्स की इशू है, जो देश के लिए सबसे जरूरी इशू है और जो उनके खिलाफ किया गया है वो हम देखते चलो. दीजला धर्मेंद्र प्रधान दूसरा की एब्सोल्युटली नथिंग रॉन्ग विद आस्किंग दीज क्वेश्चंस. स्टूडेंट्स की मांगे हैं, पहला धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह का रेजिग्नेशन, दूसरा की स्टूडेंट्स को जिन्होंने मारा है, जिन्होंने ह्यूमिलिएट किया है उन पर एक्शन लिया जाए और जो भी स्टूडेंट्स पर केसेस हैं उनको हटाया जाए. फाइनली पूरी ऑपोजिशन चाहती है कि ये जो इशू है, देश का सबसे बड़ा इशू है, इस पे कल लोकसभा में राज्यसभा में डिबेट हो और हम अपनी बात रख सकें. मेरा मोदी जी से एक सजेशन है, एज एलओपी कल जो हुआ, जो आपकी सरकार ने, आपके होम मिनिस्टर ने किया, उसके लिए आप देश के स्टूडेंट से माफी मांगिए और जल्दी से जल्दी एग्जामिनेशन सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम्स पर रिफॉर्म शुरू कीजिए. आप सब ने हमारा समर्थन किया, सारे लोग जो स्टूडेंट्स की इशू के लिए लड़ रहे हैं, एक साथ लड़ रहे हैं, मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं.
0: तो जबरदस्त संसद के बाहर हंगामा और गहमागहमी पूरे दिन चली. और आपको बता दें कि उसके बाद कांग्रेस के बड़े लीडर्स को, विपक्ष के बड़े लीडर्स को कहना चाहिए कि हिरासत में ले लिया गया था. उसके बाद उनकी रिहाई की गई. रिहाई के बाद प्रियंका गांधी ने क्या कहा सुनिए.
11: जो हमारे बच्चे, हमारे युवा हैं, हमारे देश के भविष्य हैं, उनकी बात सुनने में क्या हर्ज थी? वो एक जेन्युइन इशू को लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं. वो जो उनके साथ हो रहा है वो उसका दुख लेकर, गुस्सा लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं. तो जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम सारे, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी आवाज हम ऊंची करें और उनकी आवाज हम बुलंद करें और उनके सपोर्ट में हम खड़े हैं. क्योंकि उनके साथ जो कल हुआ वो एकदम गलत हुआ. ये एक लोकतंत्र है, इट्स अ डेमोक्रेसी. इन अ डेमोक्रेसी राइट टू प्रोटेस्ट इट्स अ फंडामेंटल राइट. नोबडी हैज द राइट टू प्रोटेस्ट.
0: और अब बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री आवास के पास से धरना प्रदर्शन हटवाने के लिए और बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और गृह सचिव गोविंद मोहन राहुल गांधी से मिलने जाते हैं और फिर बात नहीं बनती. जितेंद्र सिंह ने बताया कि राहुल गांधी की मांग थी कि नीट पर संसद में चर्चा हो. राहुल गांधी की यह मांग मान ली गई थी लेकिन राहुल अपनी बात से मुकर गए. और उसके बाद राहुल गांधी बोले कि अब उनकी दो मांगे हैं, पहली नीट पर संसद में चर्चा होनी चाहिए, दूसरा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए. सरकार कह रही है कि जब छात्रों के हर मुद्दे पर संसद में वो चर्चा के लिए तैयार हैं तो फिर कांग्रेस मुकर क्यों रही है.
12: प्रधानमंत्री आवास के पास लोक कल्याण मार्ग पर दोपहर 4:15 बजे शुरू हुए कांग्रेस के धरने में प्रियंका गांधी नारे लगवाती हैं. तो इस बीच इस सवाल का जवाब सब जानना चाहते हैं कि आखिर सरकार ने तुरंत जब केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को राहुल गांधी से बात करने भेजा तो राहुल क्यों नहीं माने. यहाँ पर आखिर क्या बात हुई. जवाब जो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दिया है उसे उनकी सोशल मीडिया पोस्ट से देखिए. जितेंद्र सिंह ने लिखा कि कुछ समय पहले पता चला कि कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अचानक अकबर रोड के पास एक जगह पर धरने पर बैठ गए. जितेंद्र सिंह लिखते हैं कि सरकार ने उन्हें और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन को राहुल गांधी से बात करने के लिए भेजा. जितेंद्र सिंह ने राहुल गांधी से अनुरोध किया कि वो अपना धरना खत्म कर दें क्योंकि ये जगह धरने की नहीं है, यहाँ पर धरना देने से आम लोगों को काफी मुश्किल होगी. राहुल गांधी ने ये मांग रखी थी कि अगर सरकार संसद में नीट और उससे संबंधित आंदोलन के साथ जुड़े सभी विषय पर चर्चा के लिए मान जाती है तो वो अपना धरना तुरंत खत्म कर देंगे. कुछ ही देरी में सरकार के शीर्ष नेतृत्व की अनुमति लेने के बाद राहुल गांधी को ये भरोसा जितेंद्र सिंह की तरफ से दिया गया कि उनकी मांग को मान लिया गया है और सरकार नीट और उससे संबंधित आंदोलन के साथ जुड़े सभी विषय पर संसद में चर्चा करने को तैयार है। जितेंद्र सिंह के मुताबिक राहुल गांधी को जब ये सूचना पहुंचाई गई, तो उन्होंने कहा कि वो इतने पर नहीं मानेंगे बल्कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का भी भरोसा चाहा। राहुल गांधी ने कहा कि अब उनकी दो मांगे हैं, संसद में चर्चा और केंद्रीय शिक्षा मंत्री यानी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के मुताबिक जब राहुल गांधी को याद दिलाया गया कि पहले उन्होंने केवल चर्चा की ही मांग की थी, तब राहुल गांधी ने कहा कि अब उनकी मांगें बदल गई। जब राहुल गांधी को विनम्रता से ये बताने की कोशिश की गई कि उनके जैसे सीनियर लीडर को इतनी जल्दी अपनी बात से मुकर जाना शोभा नहीं देता, तो जितेंद्र सिंह लिखते हैं कि राहुल गांधी ने कहा कि ये उनकी मर्जी है। जब गृह सचिव ने राहुल गांधी को ये समझाने की कोशिश की कि ये जगह धरने के लिए अनुकूल नहीं, तो जितेंद्र सिंह के मुताबिक राहुल गांधी ने जवाब दिया कि ये भी उनकी मर्जी है, वो जहां बैठे। इसके बाद जितेंद्र सिंह ने लिखा है कि राहुल गांधी जैसे सीनियर नेता और नेता प्रतिपक्ष का अपनी बात से मुकर जाना दुर्भाग्यपूर्ण है और लोकतंत्र की हर मर्यादा के विपरीत है। जितेंद्र सिंह साफ कहते हैं कि सरकार नीट और उससे जुड़े आंदोलन के साथ सभी विषयों पर संसद में चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन इसके विपरीत कांग्रेस ने अब तक इस गंभीर विषय पर औपचारिक चर्चा करने का कोई नोटिस नहीं दिया। जितेंद्र सिंह लिखते हैं कि राहुल गांधी का व्यवहार लोकतंत्र के उसूलों से मेल नहीं खाता है।
13: सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, सरकार तैयार है संसद में चर्चा करने के लिए, नीट को लेकर के भी, उसके साथ संबंधित विषयों को लेकर के भी, जो आंदोलन है उसको लेकर के भी। हमने जब ये बात वहीं पर राहुल गांधी जी के आगे दोबारा रखी तो बोले कि साहब मुझे तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी चाहिए। तो हमने कहा साहब अभी कुछ ही क्षण पहले आपसे बार बार जब पूछा गया कि आपका क्या मुतालबा है, तो आपने ये कहा था कि अगर मुझे ये आश्वासन दिया जाए कि संसद में कांग्रेस पार्टी को भारत सरकार चर्चा करने देगी या करने के लिए तैयार है, तो मैं तुरंत ये धरना समाप्त कर दूंगा। लेकिन अब आप अपनी बात से हट रहे हैं। तो बोले साहब ये तो मेरी मर्जी है, मेरी मांगे बदल चुकी हैं।
14: अब ये मुद्दा इतना ज्वलंत इसलिए है क्योंकि देश के युवा हैं और ये समझ रहे हैं कि हमारे फ्यूचर, हमारे भविष्य के लिए क्या है। हमारे माँ बाप लोन लेकर मुश्किल से हमें पढ़ाते हैं, हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारे लिए इतना मुश्किल है, इसको हल्के में कोई नहीं ले सकता। ये एक बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है। आज युवा बहुत ही दुखी है। एक्चुअली ये जो आप नाराजगी देख रहे हैं, ये एक्चुअली दुख है कि हमारे फ्यूचर, हमारे भविष्य के बारे में कौन सोच रहा है। ये सदन है किसका? ये उन्हीं युवाओं का है ना जिसको आप रोक रहे हैं बाहर, जिन पर आप लाठी चार्ज कर रहे हैं, जिन पर आप आंसू गैस चला रहे हैं। ये तो मतलब ये सदन ही उनका है। हम सब यहाँ हैं, किसने हमें यहाँ रखा है? उन्होंने ही रखा है। तो उनकी बात तो सुन ले, उनकी बात तो सुन ले।
15: प्राइम मिनिस्टर मोदी एंटी यूथ
14: है। बिल्कुल एंटी यूथ है। देखिए एंटी यूथ है, एंटी गरीब है, एंटी किसान है, बच्चे हैं, सुन लीजिए इनकी बात क्या होने जा रहा है। अगर इनकी बात शांति से सुन लें, आप मंत्री जी की जिम्मेदारी है, उनसे रिजाइन करवाइए, इस्तीफा दीजिए, जिम्मेदारी लीजिए और सबसे जरूरी तो ये है कि सिस्टम को दुरुस्त करिए।
16: आप इन विषयों पे जब भी डिस्कशन होता है आप मुंह की खाते हैं, लास्ट में आप जवाब सुन भी नहीं पाते हैं। मैं अभी भी बोलूंगा, ये नकारात्मक जो सोच है विपक्ष का उसको छोड़ना चाहिए। आपने कर लिया ना जो एक दो दिन है, लेकिन कल से सदन को चलने दिया जाए, सभी जो मुद्दे हैं उन पर बात करिए। कोई ऐसा विषय नहीं है जिस पे संसद में बहस न हो सके, लेकिन इन लोगों को एक आदत लग गई है कि संसद के विषय को सड़क पे ले जाएंगे।
17: सरकार ने 3 घंटे के धरने में राहुल गांधी से 2 बार बातचीत की, लेकिन वो नहीं माने, तो पुलिस ने उन्हें धरना प्रदर्शन से उठाना शुरू कर दिया। कांग्रेस नेताओं और पुलिस के बीच आधे घंटे तक धक्का मुक्की होती रही। आखिर में 12 से ज्यादा पुलिसकर्मी उन्हें उठा कर ले गए।
0: 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज के खिलाफ चेंबूर में गुस्सा फूटा। छात्रों ने लाठीचार्ज के विरोध में प्रोटेस्ट किया। पेपर लीक केस में प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा कि सरकार इस आंदोलन को जितना दबाने की कोशिश करेगी उतना ही आंदोलन उग्र होगा।
18: Yeah! पेपर लीक केस के बाद पूरे देश में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र के कई शहरों में भी छात्रों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। चेंबूर में भी छात्रों ने 20 जुलाई को जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज के विरोध में प्रोटेस्ट किया, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया।
19: दिल्ली में जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हुआ और उस पर लाठीचार्ज और आंसू गैस फेयर डाले गए, उसके विरोध में अब मुंबई के चेंबूर इलाके में प्रोटेस्ट हो रहा है। और आप देख लीजिए, काफी सारे प्रोटेस्टर्स यहां पे आए थे, लेकिन जितने प्रोटेस्टर्स हैं उससे ज्यादा तादाद में यहां पुलिस के अधिकारी हैं। यहां पे आप देख लीजिए, पुलिसकर्मी इतने ज्यादा हैं। और बताया यही जा रहा है कि जितने प्रोटेस्टर्स थे उनको भी नोटिसेस दी गई। आप लोगों को भी नोटिसेस मिले?
20: हम लोग को भी नोटिसेस मिले।
19: क्या कितने लोगों को दिया गया है, कितने लोगों की कोई उन लोगों को कहां कोई रेस्ट्रिक्ट किया गया उनका मूवमेंट?
20: नहीं, 20-25 से ज्यादा लोगों को नोटिस दिया गया है और 100 से ज्यादा लोगों को फोन कॉल्स आया है कि कल अगर आप प्रोटेस्ट में इन्वॉल्वमेंट हुए तो आपको केसेस हो सकता है इसकी वजह। और काफी सारे गली के बाहर, घर के बाहर पुलिस जिनको बाहर आने नहीं दे रहे।
19: आप लोग को भी कहीं मोर्चा आप लोग निकालना चाह रहे थे, आप लोग को भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया?
20: हम लोग अभी चेंबूर नाका पे प्रोटेस्ट निकालने चाहते थे, बट हम लोग के एरिया के स्टार्टिंग पॉइंट पे पुलिस, मतलब जितने ज्यादा आंदोलन करते थे उससे 3 गुना ज्यादा तो पुलिस है यहाँ पे, और वो लोग बोल रहे कि यहाँ से आप बाहर निकल नहीं सकते। बट हम लोग तो मतलब किसी भी तरह का तीव्र आंदोलन, मतलब कोई तोड़फोड़ करने वाले नहीं थे, हम लोग शांति से आंदोलन करने वाले थे। बट जो चेंबूर के जो सीनियर्स है और बाकी भी सीनियर्स लोग है, वो लोग हम लोग को आगे जाने नहीं दे रहे।
19: तो पुलिस अधिकारियों ने आप लोग के मूवमेंट को पूरा रेस्ट्रिक्ट कर दिया, लेकिन अब ये विरोध प्रदर्शन किस लिए कर रहे हैं?
20: जनरली विरोध प्रदर्शन इसलिए है कि कल तक हमारा रात में 8 बजे तक कोई ऐसा प्लानिंग नहीं था कि निदर्शन करना है, कोई आंदोलन करना है। बट जो हिसाब से कल हम लोग ने जो दिल्ली जंतर मंतर में जो आंदोलन देखा, जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ, काफी गलत है।
18: मुंबई पुलिस ने लोगों को प्रदर्शन न करने के लिए कई नोटिस भी दिए हैं। पुलिस ने कहा है कि प्रदर्शनकारी सिर्फ एक झुग्गी बस्ती के अंदर ही प्रदर्शन कर सकते हैं।
21: छोटे छोटे बच्चों जब आंदोलन करते हैं तो ये सरकार उनको मारती है, भगाती है, लाठी अलग करती है, तो ये देश में लोकशाही है कि नहीं? और बच्चे क्या मांग रहे हैं? जिसने जो भवितव्य जो भविष्य करने का जो कई एग्जाम है वो पेपर लीक किया, और पेपर मतलब ऐसा ये कितने साल से चल रहा है, तो हमारा कुछ भवितव्य है कि नहीं?
19: आप लोग भी प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे, कितने कार्यकर्ताओं को यहाँ पे, कितने लोगों को यहाँ पे रोका गया है?
21: हमारे सब कार्यकर्ताओं को रोका गया है, नोटिस दिया है, वो बोला है कि आंदोलन करने का नहीं। हम बोले कि लोकशाही मार्ग से हम आंदोलन कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, जमाबंदी आदेश लागू किया है तो आप आंदोलन नहीं कर सकते, ऐसा हम लोग को बोला है। फिर भी हम लोग उधर जाने की कोशिश करेंगे।
18: पेपर लीक केस में प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा कि सरकार इस आंदोलन को जितना दबाने की कोशिश करेगी आंदोलन उतना ही उग्र होगा।
22: हाँ, नाराजगी तो है, जो हुआ है वो जो हमारे जो शिक्षण जो मंत्री है उन्होंने तो राजीनामा देना चाहिए, और जो लाठीचार्ज हुआ है उसके वजह से हमारी नाराजगी है। जो आप स्टूडेंट लोगों को मार रहे हो वो गलत है, वो क्रिमिनल नहीं है, वो स्टूडेंट्स है, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनको उनका हक है प्रोटेस्ट करने का, इसके लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उन्हें मारना नहीं चाहिए, ये गलत है।
19: लेकिन आप लोग भी तो यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और पुलिस वालों ने किस तरह से आप लोग?
22: हमारा कल से चालू है कि प्रोटेस्ट करना है, 2 दिन से हमारे लोग बाहर निकल रहे हैं, रात को पुलिस को किसी ने तो बता दिया है, तो पुलिस सबसे कांटेक्ट कर रही है, सबको नोटिस दे रही है, आप निकल नहीं सकते, कहीं तो लोकशाही को दबाने

0: तो इस पूरे इलाके में छावनी में तब्दील हो चुकी है। तकरीबन हर जगह आप देखिए, कॉलोनी से जो सिद्धार्थ कॉलोनी है उससे निकलने का यही रास्ता है, और इस रास्ते पे आप देख लीजिए पुलिस कर्मी इतने ज्यादा भारी तादाद में, और वहीं घर घर जाके नोटिसेस भी दिए गए थे, लोगों को कहा गया था कि वो निकले नहीं। इसके अलावा अगर आप देखें मुंबई में, क्योंकि जहां जहां प्रोटेस्ट हुए हैं वहां पे FIR रजिस्टर हुई है, जिस तरीके से शिवाजी पार्क में भी मुंबई के दादर इलाके में जो वहाँ प्रोटेस्ट हुआ था उसको लेकर भी 3 FIR हुए हैं। इसके अलावा मरीन ड्राइव पर, तो तमाम जहाँ जहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहाँ पर FIR जरूर रजिस्टर कर रही है पुलिस, और यही वजह है कि एक के बाद एक धीरे धीरे छोटे छोटे इलाकों में ही सही लेकिन प्रोटेस्ट की आवाजें जरूर उठ रही हैं। कैमरामैन किरण सपकाल के साथ विद्या, मुंबई आज तक।
1: और अब बात करेंगे कुदरत के बादल बॉम्ब के बारे में, क्योंकि पहाड़ों से लेकर मैदानों तक आसमान से ऐसी आफत बरस रही है कि देश के कई इलाकों में त्राहिमाम मच गया है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक बारिश का ब्रेक फेल है और जगह जगह कुदरत के बादल फट रहे हैं, तो वहीं मैदानी इलाकों में भी मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं।
2: सैलाब में जिंदगी और मौत की सीधी जंग, कहीं उफंती लहरों के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन, कहीं दहकते पहाड़ों पर जिंदगी की लड़ाई। कहीं सैलाब के बीच मौसम से सीधी टक्कर। कहीं कागज के तिनके की तरह बही गाड़ियां। पहाड़ों से लेकर मैदान तक तबाही ही तबाही। जगह जगह फट रहा है बादल बम। सैलाब अटैक जारी, मानसूनी संकट काल भारी। ये तस्वीरें राजौरी के थामंडी इलाके में हुए रेस्क्यू ऑपरेशन की हैं। भारतीय सेना की 61 राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों ने उफानती लहरों के बीच 13 स्थानीय निवासियों की जान बचाई। हुआ यूं कि भारी बारिश के चलते पहाड़ी नाले में अचानक बाढ़ आने से लोग फंस गए। आप देख सकते हैं कि नाले में पानी का बहाव कितना तेज है। सेना के जवानों ने उफनते सैलाब के आर पार एक रस्सी बांधी और फंसे हुए हर नागरिक को एक एक करके सुरक्षित बाहर निकाला। रेस्क्यू किए गए लोगों में 6 महिलाएं, 5 बच्चे और 2 बुजुर्ग शामिल हैं। ये रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत खतरनाक हालात में चलाया गया। क्योंकि भारी बारिश के चलते नाले का बहाव लगातार बढ़ रहा था, ऐसे में रेस्क्यू टीम ने जान पर खेलकर लोगों को बचाया। मुश्किल की घड़ी में देवदूत बनकर खड़े हुए सेना के जवानों ने 13 जिंदगियों को बचा लिया। जिंदगी और मौत की सीधी जंग। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की हैं। रिकॉर्ड तोड़ बारिश का कहर ऐसा है कि पहाड़ दरक रहे हैं, सड़कें पत्थरों का टीला बन चुकी हैं, तो भूस्खलन के चलते यातायात ठप है। कुदरत की इसी क्रोध लीला का शिकार ये बस बन सकती थी। दरअसल अचानक पहाड़ी से पत्थर बरसने लगे। मौके पर मौजूद लोगों ने वक्त रहते बस को रुकवा दिया। आप देख सकते हैं कि मलबे में यही बस फंस गई थी जिसमें कई यात्री सवार थे। हुआ यूं कि भूस्खलन के बाद मलबा बस के सामने आ गया। बस में सवार यात्रियों की सांसें अटक गई थी। गनीमत रही कि बस पलटी नहीं और सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकल आए।
3: हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश कहर बरपा रही है। ऐसा ही मंजर हिमाचल के जिला चंबा में भी देखने को मिल रहा है। रेड अलर्ट के चलते कल रात से लगातार बारिश हो रही है, इससे जगह जगह लैंडस्लाइड

0: हो रहे हैं, रास्ते बंद पड़े हैं और कई जगह जो है सड़क पूरी तरह से बह गई है। चंबा जिला के पांगी में बादल फटने से कई मजदूरों को रेस्क्यू भी किया गया है। वहीं अगर बात करें चंबा जिला के भटियात क्षेत्र की, तो वहां पे नूरपुर को जोड़ने वाली, जिला कांगड़ा को जोड़ने वाली, चंबा से जिला कांगड़ा को जोड़ने वाली लाहड़ू नूरपुर सड़क जो है उसका लगभग 200 मीटर हिस्सा जो है वो पूरी तरह से चक्की नदी में समा गया है। बारिश का कहर जो है लगातार जारी है और अभी आने वाले दिनों में भी ऐसे ही बारिश का अनुमान बताया जा रहा है।
1: सैलाब से जिंदगी की जंग, ये तस्वीरें चंबा के कलाह नाले की हैं। तस्वीरों में कैद मंजर रोंगटे खड़े करने वाला है। आसपास सैलाब का कहर और एक चट्टान पर तीन मजदूर फंसे हुए हैं। अचानक नाले का जल स्तर बढ़ने की वजह से तीन मजदूरों को बचाने का मौका नहीं मिला। तीनों मजदूर बीच जलधारा में फंस गए। जबकि उनके कुछ दूसरे साथी दूसरे छोर पर मौजूद थे। सैलाब में फंसे लोगों के पास तैरकर बचने का रास्ता नहीं था, क्योंकि पानी का बहाव उन्हें बेमौत मार सकता था। जबकि हर मिनट बढ़ता जल स्तर उनकी सांसें अटकाने के लिए काफी था। सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। आप देख सकते हैं मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने जल धारा में फंसे मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। एक बड़ी लकड़ी को एक चट्टान से दूसरी चट्टान के बीच रखा गया। उसके बाद तीनों मजदूरों को सुरक्षित बचा लिया गया। चश्मदीदों के मुताबिक बादल फटने के बाद नाले में अचानक बाढ़ आ गई थी। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बरसात के मौसम में नदी नालों और खड्डों के आसपास आवाजाही से बचें, क्योंकि अचानक जल स्तर बढ़ने का खतरा बना रहता है।
2: और इसी के साथ हम यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

राहुल गांधी ने जारी किया वीडियो संदेश, केंद्र पर साधा निशाना, बोले भारत की शिक्षा व्यवस्था हो रही है कमजोर। धर्मेंद्र प्रधान का मांगा इस्तीफा, प्रियंका समेत सभी कांग्रेस के नेता हिरासत से छोड़े गए। नई दिल्ली के मंदिर मार्ग थाने में कांग्रेस के नेताओं से जाकर मिली सोनिया गांधी, रिहाई के बाद बोली प्रियंका, बच्चों की बात क्यों नहीं सुनी जा रही। मोदी सरकार पर राहुल और प्रियंका का बड़ा हमला, लोकतंत्र के लिए बताया खतरनाक, जितेंद्र सिंह का आरोप, नेता विपक्ष ने बदली अपनी बात, धर्मेंद्र प्रधान बोले राहुल गांधी का मकसद टकराव करना, नितिन नवीन ने भी निंदा की। राहुल के धरने के बाद आम आदमी पार्टी ने इसे बताया बीजेपी से मिलीभगत, कहा यह सीजेपी के प्रदर्शन को कमजोर करने की साजिश है। आतिशी ने किया कटाक्ष, क्या जुगलबंदी है। और संसद हंगामे के बीच प्रधानमंत्री ने एनडीए मीटिंग में दिया कड़ा संदेश, कहा नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर नहीं होगा बर्दाश्त, पेपर लीक पर लिया कड़ा एक्शन।

0: संसद का मानसून सत्र शुरू होगा तो दिल्ली में इतना बड़ा सियासी भूचाल आ जाएगा, ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा। मानसून सत्र के पहले दिन कांग्रेस जनता पार्टी के जंतर मंतर से संसद चलो मार्च पर हंगामा, पुलिस से भिड़ंत, और अगले दिन प्रधानमंत्री आवास के पास कांग्रेस और विपक्ष का हाई वोल्टेज हंगामा और साथ ही साथ धरना प्रदर्शन भी। पुलिस ने पहले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी नेताओं को हिरासत में लिया, बाद में सबको छोड़ दिया गया। नीट पेपर लीक पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग से शुरू हुआ ये विरोध प्रदर्शन कैसे प्रधानमंत्री आवास यानी कि 7 लोक कल्याण मार्ग तक पहुंच गया, आइए आपको दिखाते हैं।
1: लीक पेपर लीक की लड़ाई पीएम आवास पर धरने तक आई। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर विपक्ष अड़ा, सड़क पर एक तूफान खड़ा। कांग्रेस का हाई वोल्टेज हंगामा पुलिस ने धरना प्रदर्शन से हटाया। राहुल गांधी, प्रियंका और अखिलेश यादव समेत कई नेता हिरासत में। प्रधानमंत्री आवास के पास विपक्ष का हंगामा, पूरी रणनीति क्या है? दिल्ली की सत्ता के सबसे ताकतवर केंद्र यानी 7 लोक कल्याण मार्ग यानी प्रधानमंत्री आवास के बहाने पर जब देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी अपने दिग्गजों की पूरी फौज के साथ सड़क पर उतरती है तो ऐसा हंगामा मचता है कि दिल्ली से लेकर पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत कांग्रेस और विपक्ष के कई बड़े नेताओं को न सिर्फ धरने से उठाया बल्कि इन सबको हिरासत में भी ले लिया और उन्हें बस में भरकर थाने ले गए।
2: यहाँ पे जो तस्वीर 7 RCR यानी कि लोक कल्याण मार्ग में घट रही है, पीछे हमारे देखिए अखिलेश यादव और राहुल गांधी को कुछ इस तरीके से बस में भर के ले जाया जा रहा है। अखिलेश यादव हाथ देने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी डिटेन कर लिया गया है। मुकुल वासनिक वहाँ पे नजर आ रहे हैं और तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पे नारेबाजी लगाते हुए इस बस पे आगे जाते हुए आइए।
1: आपको बता दें कि जब राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं को प्रधानमंत्री आवास के पास धरने से उठाने के लिए पुलिस ने घेरा बनाया और राहुल गांधी को हटाने की कोशिश की तो वो जमीन पर लेट जाते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे राहुल गांधी सड़क पर लेटे हुए हैं और पुलिस के साथ उनकी काफी देर तक जोर आजमाइश चलती रहती है। आखिर में पुलिस धरने पर बैठे नेताओं को उठाकर ले जाती है।
3: डेमोक्रेसी इन इंडिया इज हैपनिंग राइट नाउ। डेमोक्रेसी इन इंडिया इज हैपनिंग राइट नाउ।
4: कायर हैं, डरते हैं,
5: बात कर रही है, बात कर रही है।
4: हम नहीं डरते इनसे, ये हमसे डर
5: रहा है यार। एक मिनट, अरे बात कर रही है वो यार।
1: आपको बता दें कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव को दिल्ली पुलिस हिरासत में लेकर अलग अलग थानों में जाती है। इस बीच दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर की सुरक्षा भी बढ़ा दी जाती है, हर गेट पर पुलिस की भारी तैनाती कर दी जाती है।
6: गुंडई और राजनीति गुंडागर्दी की उसका अंत यहाँ नहीं है, ये एक नई क्रांति की शुरुआत है राहुल गांधी के नेतृत्व में। ये क्रांति अब बड़ी ज्वाला बनकर धधकेगी।
7: आज फिर से दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्री के इशारे पर, प्रधानमंत्री के इशारे पर बहुत ही कायरता पूर्वक तरीके से हमारे नेता राहुल गांधी को घसीटकर हिरासत में लिया, हमारी नेता प्रियंका गांधी को बदतमीजी कर और घसीटकर बस में जबरदस्ती ठूसा।
1: हिरासत में लेने के बाद राहुल गांधी का पहला एक्स पोस्ट आता है जिसमें वो लिखते हैं कि मोदी जी हर जोर आजमा लो, सारी ताकत लगा लो, छात्रों के इंसाफ की ये लड़ाई अब रोके ना रुकेगी। पीएम आवास के पास दोपहर करीब 3:30 बजे से शुरू हुआ धरना प्रदर्शन शाम 6 बजे तक एक बड़े सियासी हंगामे में तब्दील हो जाता है। अब उसकी पूरी टाइमलाइन आपको दिखाते हैं। दोपहर करीब 3:30 बजे पीएम आवास के पास कांग्रेस का धरना, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, बाकी सांसदों नेताओं के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर से बैठक करके अचानक मार्च करते हुए निकल पड़ते हैं और सात लोक कल्याण मार्ग पर यानी प्रधानमंत्री के आवास वाली सड़क पर पीएम आवास से कुछ दूरी पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत बाकी कांग्रेस के दिग्गज नेता धरने पर बैठ जाते हैं। राहुल गांधी जब धरना देते हैं तो वहां पर देखा गया कि वो सांकेतिक रूप से हथकड़ी वाला प्रदर्शन करते हैं, जहां राहुल गांधी समेत दूसरे कांग्रेस नेता हाथ में लॉक लगाने वाला थ्रेड बांध लेते हैं। अब राजनीतिक सवाल ये आता है कि अचानक पीएम आवास के पास पहुंचकर राहुल गांधी धरना क्यों देते हैं, उनकी मांग क्या है?
8: हमारे नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में ने इस मांग की है, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में ये मांग की है। गृहमंत्री आए, दोनों सदनों में बयान दे, उस पर चर्चा हो। जिस तरीके से हमारे लोकतंत्र और हमारे संविधान पर हत्या हो रही है, जो हमारे युवाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उनके भविष्य पर अंधेरा छाया हुआ है, उस पर एक बयान दे। और हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग हम 20 करीब 45 दिन से कर रहे
1: हैं। लेकिन जब पीएम आवास के पास ही राहुल गांधी धरना देने लगते हैं, तो इन सब के बीच दोपहर 3:45 पर राहुल गांधी को।
0: और अब बात करेंगे कुदरत के बादल बॉम्ब के बारे में, क्योंकि पहाड़ों से लेकर मैदानों तक आसमान से ऐसी आफत बरस रही है कि देश के कई इलाकों में त्राहिमाम मच गया है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक बारिश का ब्रेक फेल है और जगह जगह कुदरत के बादल फट रहे हैं, तो वहीं मैदानी इलाकों में भी मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं।
1: सैलाब में जिंदगी और मौत की सीधी जंग, कहीं उफंती लहरों के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन, कहीं दहकते पहाड़ों पर जिंदगी की लड़ाई, कहीं सैलाब के बीच मौसम से सीधी टक्कर, कहीं कागज के तिनके की तरह वही गाड़ियां, पहाड़ों से लेकर मैदान तक तबाही ही तबाही। जगह जगह फट रहा है बादल बम, सैलाब अटैक जारी, मानसूनी संकट काल भारी। ये तस्वीरें राजौरी के थामंडी इलाके में हुए रेस्क्यू ऑपरेशन की हैं। भारतीय सेना की 61 राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों ने उफंती लहरों के बीच 13 स्थानीय निवासियों की जान बचाई। हुआ यूं कि भारी बारिश के चलते पहाड़ी नाले में अचानक बाढ़ आने से लोग फंस गए। आप देख सकते हैं कि नाले में पानी का बहाव कितना तेज है। सेना के जवानों ने उफंते सैलाब के आर पार एक रस्सी बांधी और फंसे हुए हर नागरिक को एक एक करके सुरक्षित बाहर निकाला। रेस्क्यू किए गए लोगों में 6 महिलाएं, 5 बच्चे और 2 बुजुर्ग शामिल हैं। ये रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत खतरनाक हालात में चलाया गया। क्योंकि भारी बारिश के चलते नाले का बहाव लगातार बढ़ रहा था, ऐसे में रेस्क्यू टीम ने जान पर खेलकर लोगों को बचाया। मुश्किल की घड़ी में देवदूत बनकर खड़े हुए सेना के जवानों ने 13 जिंदगियों को बचा लिया। जिंदगी और मौत की सीधी जंग, ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की हैं। रिकॉर्ड तोड़ बारिश का कहर ऐसा है कि पहाड़ दरक रहे हैं, सड़कें पत्थरों का टीला बन चुकी हैं, तो भूस्खलन के चलते यातायात ठप है। कुदरत की इसी क्रोध लीला का शिकार ये बस बन सकती थी। दरअसल अचानक पहाड़ी से पत्थर बरसने लगे। मौके पर मौजूद लोगों ने वक्त रहते बस को रुकवा दिया। आप देख सकते हैं कि मलबे में यही बस फंस गई थी जिसमें कई यात्री सवार थे। हुआ यूं कि भूस्खलन के बाद मलबा बस के सामने आ गया। बस में सवार यात्रियों की सांसें अटक गई थी। गनीमत रही कि बस पलटी नहीं और सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकल आए।
9: हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश कहर बरपा रही है। ऐसा ही मंजर हिमाचल के जिला चंबा में भी देखने को मिल रहा है। रेड अलर्ट के चलते कल रात से लगातार बारिश हो रही है। इससे जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं, रास्ते बंद पड़े हैं और कई जगह जो है सड़क पूरी तरह से बह गई है। चंबा जिला के पांगी में बादल फटने से कई मजदूरों को रेस्क्यू भी किया गया है। वहीं अगर बात करें चंबा जिला के भटियात क्षेत्र की, तो वहां पे नूरपुर को जोड़ने वाली, जिला कांगड़ा को जोड़ने वाली, चंबा से जिला कांगड़ा को जोड़ने वाली लाहड़ू नूरपुर सड़क जो है उसका लगभग 200 मीटर हिस्सा जो है वो पूरी तरह से चक्की नदी में समा गया है। बारिश का कहर जो है लगातार जारी है और अभी आने वाले दिनों में भी ऐसे ही बारिश का अनुमान बताया जा रहा है।
1: सैलाब से जिंदगी की जंग, ये तस्वीरें चंबा के कलाह नाले की हैं। तस्वीरों में कैद मंजर रोंगटे खड़े करने वाला है। आसपास सैलाब का कहर और एक चट्टान पर तीन मजदूर फंसे हुए हैं। अचानक नाले का जल स्तर बढ़ने की वजह से तीन मजदूरों को बचाने का मौका नहीं मिला। तीनों मजदूर बीच जलधारा में फंस गए। जबकि उनके कुछ दूसरे साथी दूसरे छोर पर मौजूद थे। सैलाब में फंसे लोगों के पास तैरकर बचने का रास्ता नहीं था क्योंकि पानी का बहाव।
0: तो जबरदस्त संसद के बाहर हंगामा और गहमागहमी पूरे दिन चली और आपको बता दें कि उसके बाद कांग्रेस के बड़े लीडर्स को, विपक्ष के बड़े लीडर्स को कहना चाहिए कि हिरासत में ले लिया गया था। उसके बाद उनकी रिहाई की गई। रिहाई के बाद प्रियंका गांधी ने क्या कहा, सुनिए।
10: जो हमारे बच्चे, हमारे युवा हैं, हमारे देश के भविष्य हैं, उनकी बात सुनने में क्या हर्ज थी? वो एक जेन्युइन इशू को लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो जो उनके साथ हो रहा है वो उसका दुख लेकर, गुस्सा लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम सारे, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी आवाज हम ऊंची करें और उनकी आवाज हम बुलंद करें और उनके सपोर्ट में हम खड़े हैं, क्योंकि उनके साथ जो कल हुआ वो एकदम गलत हुआ। ये एक लोकतंत्र है, इट्स अ डेमोक्रेसी। इन अ डेमोक्रेसी राइट टू प्रोटेस्ट इट्स अ फंडामेंटल राइट। नोबडी हैज द राइट टू प्रोटेस्ट।
0: तो जबरदस्त संसद के बाहर हंगामा और गहमागहमी पूरे दिन चली और आपको बता दें कि उसके बाद कांग्रेस के बड़े लीडर्स को, विपक्ष के बड़े लीडर्स को कहना चाहिए कि हिरासत में ले लिया गया था। उसके बाद उनकी रिहाई की गई। रिहाई के बाद प्रियंका गांधी ने क्या कहा, सुनिए।
10: जो हमारे बच्चे, हमारे युवा हैं, हमारे देश के भविष्य हैं, उनकी बात सुनने में क्या हर्ज थी? वो एक जेन्युइन इशू को लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो जो उनके साथ हो रहा है वो उसका दुख लेकर, गुस्सा लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम सारे, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी आवाज हम ऊंची करें और उनकी आवाज हम बुलंद करें और उनके सपोर्ट में हम खड़े हैं, क्योंकि उनके साथ जो कल हुआ वो एकदम गलत हुआ। ये एक लोकतंत्र है, इट्स अ डेमोक्रेसी। इन अ डेमोक्रेसी राइट टू प्रोटेस्ट इट्स अ फंडामेंटल राइट। नोबडी हैज द राइट टू प्रोटेस्ट।
0: तो जबरदस्त संसद के बाहर हंगामा और गहमागहमी पूरे दिन चली और आपको बता दें कि उसके बाद कांग्रेस के बड़े लीडर्स को, विपक्ष के बड़े लीडर्स को कहना चाहिए कि हिरासत में ले लिया गया था। उसके बाद उनकी रिहाई की गई। रिहाई के बाद प्रियंका गांधी ने क्या कहा, सुनिए।
10: जो हमारे बच्चे, हमारे युवा हैं, हमारे देश के भविष्य हैं, उनकी बात सुनने में क्या हर्ज थी? वो एक जेन्युइन इशू को लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो जो उनके साथ हो रहा है वो उसका दुख लेकर, गुस्सा लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हम सारे, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी आवाज हम ऊंची करें और उनकी आवाज हम बुलंद करें और उनके सपोर्ट में हम खड़े हैं, क्योंकि उनके साथ जो कल हुआ वो एकदम गलत हुआ। ये एक लोकतंत्र है, इट्स अ डेमोक्रेसी, इन अ डेमोक्रेसी राइट टू प्रोटेस्ट इट्स अ फंडामेंटल राइट, नोबडी हैज द राइट टू प्रोटेस्ट।
0: और इसी के साथ हम यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
11: क्या मूंगा धारण करने से आत्मविश्वास बढ़ जाता है? क्या मूंगा धारण करने से व्यक्ति का भय दूर होता है? क्या मूंगा धारण करने से महिलाएं स्वस्थ रहती हैं? क्या है मूंगा रत्न की विशेषता और कैसा है इसका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।

राहुल गांधी ने जारी किया वीडियो संदेश, केंद्र पर साधा निशाना, बोले भारत की शिक्षा व्यवस्था हो रही है कमजोर, धर्मेंद्र प्रधान का मांगा इस्तीफा, प्रियंका समेत सभी कांग्रेस के नेता हिरासत से छोड़े गए। नई दिल्ली के मंदिर मार्ग थाने में कांग्रेस के नेताओं से जाकर मिली सोनिया गांधी, रिहाई के बाद बोली प्रियंका, बच्चों की बात क्यों नहीं सुनी जा रही। मोदी सरकार पर राहुल और प्रियंका का बड़ा हमला, लोकतंत्र के लिए बताया खतरनाक, जितेंद्र सिंह का आरोप, नेता विपक्ष ने बदली अपनी बात, धर्मेंद्र प्रधान बोले राहुल गांधी का मकसद टकराव करना, नितिन नवीन ने भी निंदा की। राहुल के धरने के बाद आम आदमी पार्टी ने इसे बताया बीजेपी से मिलीभगत, कहा यह सीजेपी के प्रदर्शन को कमजोर करने की साजिश है, आतिशी ने किया कटाक्ष, क्या जुगलबंदी है। और संसद हंगामे के बीच प्रधानमंत्री ने एनडीए मीटिंग में दिया कड़ा संदेश, कहा नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर नहीं होगा बर्दाश्त, पेपर लीक पर लिया कड़ा एक्शन।

0: संसद का मानसून सत्र शुरू होगा तो दिल्ली में इतना बड़ा सियासी भूचाल आ जाएगा, ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा। मानसून सत्र के पहले दिन कॉकरोच जनता पार्टी के जंतर मंतर से संसद चलो मार्च पर हंगामा, पुलिस से भिड़ंत, और अगले दिन प्रधानमंत्री आवास के पास कांग्रेस और विपक्ष का हाई वोल्टेज हंगामा और साथ ही साथ धरना प्रदर्शन भी। पुलिस ने पहले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी नेताओं को हिरासत में लिया, बाद में सबको छोड़ दिया गया। नीट पेपर लीक पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग से शुरू हुआ ये विरोध प्रदर्शन कैसे प्रधानमंत्री आवास यानी कि सात लोक कल्याण मार्ग तक पहुंच गया, आइए आपको दिखाते हैं।
1: नीट पेपर लीक की लड़ाई पीएम आवास पर धरने तक आई। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर विपक्ष अड़ा, सड़क पर एक तूफान खड़ा। कांग्रेस का हाई वोल्टेज हंगामा, पुलिस ने धरना प्रदर्शन से हटाया। राहुल गांधी, प्रियंका और अखिलेश यादव समेत कई नेता हिरासत में। प्रधानमंत्री आवास के पास विपक्ष का हंगामा, पूरी रणनीति क्या है? दिल्ली की सत्ता के सबसे ताकतवर केंद्र यानी सात लोक कल्याण मार्ग यानी प्रधानमंत्री आवास के बहाने पर जब देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी अपने दिग्गजों की पूरी फौज के साथ सड़क पर उतरती है तो ऐसा हंगामा मचता है कि दिल्ली से लेकर पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत कांग्रेस और विपक्ष के कई बड़े नेताओं को न सिर्फ धरने से उठाया बल्कि इन सबको हिरासत में भी ले लिया और उन्हें बस में भर कर थाने ले गई।
2: यहाँ पे जो तस्वीर 7RCR यानी कि लोक कल्याण मार्ग में घट रही है, पीछे हमारे देखिए अखिलेश यादव और राहुल गांधी को कुछ इस तरीके से बस में भर के ले जाया जा रहा है। अखिलेश यादव हाथ देने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी डिटेन कर लिया गया है। मुकुल वासनिक वहाँ पे नजर आ रहे हैं और तमाम जो नेता है वो यहाँ पे नारेबाजी लगाते हुए इस बस पे आगे जाते हुए आइए।
1: आपको बता दें कि जब राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं को प्रधानमंत्री आवास के पास धरने से उठाने के लिए पुलिस ने घेरा बनाया और राहुल गांधी को हटाने की कोशिश की तो वो जमीन पर लेट जाते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे राहुल गांधी सड़क पर लेटे हुए हैं और पुलिस के साथ उनकी काफी देर तक जोर आजमाइश चलती रहती है। आखिर में पुलिस धरने पर बैठे नेताओं को उठाकर ले जाती है।
3: डेमोक्रेसी इन इंडिया इज हैपनिंग राइट नाउ। डेमोक्रेसी इन इंडिया इज हैपनिंग राइट नाउ।
4: हम नहीं डरते इनसे, ये हमसे
1: आपको बता दें कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव को दिल्ली पुलिस हिरासत में लेकर अलग अलग थानों में जाती है। इस बीच दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर की सुरक्षा भी बढ़ा दी जाती है, हर गेट पर पुलिस की भारी तैनाती कर दी जाती है।
5: गुंडई और राजनीति गुंडागर्दी की उसका अंत यहाँ नहीं है, ये एक नई क्रांति की शुरुआत है राहुल गांधी के नेतृत्व में। ये क्रांति अब बड़ी ज्वाला बनकर धधकेगी।
6: आज फिर से दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्री के इशारे पर, प्रधानमंत्री के इशारे पर बहुत ही कायरता पूर्वक तरीके से हमारे नेता राहुल गांधी को घसीटकर हिरासत में लिया, हमारी नेता प्रियंका गांधी को बदतमीजी कर और घसीटकर बस में जबरदस्ती ठूसा।
1: हिरासत में लेने के बाद राहुल गांधी का पहला एक्स पोस्ट आता है जिसमें वो लिखते हैं कि मोदी जी हर जोर आजमा लो, सारी ताकत लगा लो, छात्रों के इंसाफ की ये लड़ाई अब रोके ना रुकेगी। पीएम आवास के पास दोपहर करीब 3:30 बजे से शुरू हुआ धरना प्रदर्शन शाम 6 बजे तक एक बड़े सियासी हंगामे में तब्दील हो जाता है। अब उसकी पूरी टाइमलाइन आपको दिखाते हैं। दोपहर करीब 3:30 बजे पीएम आवास के पास कांग्रेस का धरना, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, बाकी सांसदों नेताओं के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर से बैठक करके अचानक मार्च करते हुए निकल पड़ते हैं और सात लोक कल्याण मार्ग पर यानी प्रधानमंत्री के आवास वाली सड़क पर पीएम आवास से कुछ दूरी पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत बाकी कांग्रेस के दिग्गज नेता धरने पर बैठ जाते हैं। राहुल गांधी जब धरना देते हैं तो वहां पर देखा गया कि वो सांकेतिक रूप से हथकड़ी वाला प्रदर्शन करते हैं, जहां राहुल गांधी समेत दूसरे कांग्रेस नेता हाथ में लॉक लगाने वाला थ्रेड बांध लेते हैं। अब राजनीतिक सवाल ये आता है कि अचानक पीएम आवास के पास पहुंचकर राहुल गांधी धरना क्यों देते हैं, उनकी मांग क्या है?
7: हमारे नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में ने इस मांग की है, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में ये मांग की है, गृहमंत्री आए, दोनों सदनों में बयान दे, उस पर चर्चा हो, जिस तरीके से हमारे लोकतंत्र और हमारे संविधान पर हत्या हो रही है, जो हमारे युवाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उनके भविष्य पर अंधेरा छाया हुआ है, उस पर एक बयान दे और हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान।
0: हंगामा लगातार जारी है और आपको बता दें कि दोनों ही तरफ से लगातार बयान भी जारी किए जा रहे हैं। राहुल गांधी की तरफ से भी छात्रों के आंदोलन पर एक बयान जारी किया गया है, छात्रों के इस मुद्दे को देश के सामने लाने की कोशिश की है ये राहुल गांधी ने कहा है। और क्या कहा है नेता विपक्ष ने, सुनिए।
8: दूसरा कि स्टूडेंट्स को जिन्होंने मारा है, जिन्होंने ह्यूमिलिएट किया है, उन पर एक्शन लिया जाए और जो भी स्टूडेंट्स पर केसेस हैं उनको हटाया जाए। फाइनली पूरी ऑपोजिशन चाहती है कि ये जो इशू है, देश का सबसे बड़ा इशू है, इस पे कल लोकसभा में, राज्यसभा में डिबेट हो और हम अपनी बात रख सकें। मेरा मोदी जी से एक सजेशन है, एज एलओपी, कल जो हुआ, जो आपकी सरकार ने, आपके होम मिनिस्टर ने किया, उसके लिए आप